0: आज की बैठक से पहले गठबंधन इंडिया में पड़ी दरार, विजन पर राहुल गांधी की टिप्पणी से लेफ्ट आग, बबूला खड़गे को लिखा पत्र, दिल्ली में केजरीवाल से मिली ममता। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर अलापा, ईरान से समझौते करा, कहा कि हम डील के बेहद करीब, तेहरान के पास नहीं है कोई विकल्प। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद टीएमसी के नेताओं पर ताबड़तोड़ एक्शन है। टीएमसी की सत्ता में रहे जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन बंगाल के कई शहरों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें आक्रोशित लोग खुद ही टीएमसी नेताओं से इंसाफ मांग रहे हैं, यहां तक कि सरेआम मान मर्दन कर रहे हैं।
1: जनता जब गुस्सा दिखाती है तो उसका आक्रोश इस हद तक पहुंचता है। एक आदमी का आधा सर मुंडवा दिया गया है, उसके कमर में पालतू जानवर की तरह एक रस्सी बांधी गई है, एक आदमी उसे घसीट कर ले जा रहा है और पीछे से लोग चोर चोर का नारा लगा रहे हैं। देखिए किस कदर इस आदमी की हुरमत उतारी गई है। इसी समय एक आदमी आता है और इस शख्स के गले में जूतों की माला पहनाता है। दर्जनों की भीड़ इस आदमी का मान मर्दन कर रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के श्यामपुर से आई हैं। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम सन्यासी मानना है और ये टीएमसी के नेता है। आरोप है कि इन्होंने रोजगार गारंटी योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। इसके साथ ही कई लोगों के पैसे हड़पने का भी इन पर आरोप है। इन्हीं आरोपों पर लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने इनकी बेइज्जती की, परेड निकाल दी। जानकारी मिली तो पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से इन्हें अपने साथ सुरक्षित ले गई। शुभेंदु सरकार आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी के नेताओं के दुर्दिन आ गए हैं, क्योंकि उनका फैसला सीधे जनता ही कर रही है। तापस सेनगुप्ता, कोलकाता आज तक।
0: बात सिर्फ इतनी नहीं है, टीएमसी के नेताओं पर लोगों का आक्रोश ऐसा फूट रहा है कि वो जहां भी दिखते हैं उन पर अंडे टमाटर बरसाए जा रहे हैं। टीएमसी के खिलाफ लोग खुलकर सामने आ गए।
1: पुलिस थाने के बाहर टीएमसी के नेता पर अंडे बरस रहे हैं। नाराज लोग सैकड़ों की तादाद में अंडे बरसा रहे हैं। पुलिस वाले टीएमसी नेता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं मगर लोग लगातार अंडे फेंक रहे हैं। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं जहां टीएमसी पार्षद बापादित्य दास गुप्ता को निशाना बनाया जा रहा है। 6 जून को बापादित्य की गिरफ्तारी हुई थी। आज जब उन्हें पुलिस थाने से बाहर पुलिस ले जा रही थी तभी अटैक हुआ। टीएमसी नेताओं पर हो रही कार्रवाई की दूसरी तस्वीर देखिए। साड़ी के गट्ठर के नीचे टीएमसी नेता छिपने की कोशिश कर रहे थे मगर पुलिस ने खोज निकाला। ये चौंकाने वाली घटना हावड़ा के उदय नारायणपुर के बिलासपुर इलाके में हुई। पुलिस की कार्रवाई और टीएमसी नेता के छिपने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का नाम ब्रह्मानंद चक्रवर्ती है जो तृणमूल कांग्रेस का स्थानीय नेता है। स्थानीय लोगों ने उस पर हाउसिंग स्कीम के फंड से कट मनी यानी अवैध कमीशन लेने का आरोप लगाया है। जब पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस उसे खोजने पहुंच गई। तभी वो गिरफ्तारी के डर से एक कपड़ा दुकान के स्टोर रूम में साड़ियों के ढेर के नीचे छिप गया। हालांकि पुलिस ने इसे खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया। शुभेंदु सरकार के आने के बाद टीएमसी के दागी नेताओं पर धुआंधार कार्रवाई हो रही है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
0: टीएमसी के नेताओं पर लोगों के हमले के अब वीडियोस वायरल हैं जहां टीएमसी नेताओं को घसीटा जा रहा है, कहीं पर लोग हमला कर रहे हैं।

0: टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर जोरदार हमला हुआ। नाराज लोग मदन मित्रा पर अंडे फेंक रहे हैं। ये हमला उस वक्त हुआ जब वे अपने विधानसभा क्षेत्र कमरहटी पहुंचे थे। वहीं नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक तस्वीर हुगली से भी आई है जहां भीड़ टीएमसी के नेता को सड़क पर खींचते हुए थाने तक ले गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गमछा पहने तृणमूल नेता तपस चक्रवर्ती को लोग खींचकर थाने ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। बीजेपी का दावा है कि कई भ्रष्टाचार और तोलाबाजी के मामलों में इस नेता का नाम सामने आया था। वेस्ट मिदनापुर में पुलिस ने टीएमसी के एक और नेता को गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक सुजोय हाजरा की गिरफ्तारी जबरन उगाही और जमीन घोटाले में की गई है। उधर उत्तर 24 परगना जिले के गोपाल नगर में टीएमसी ट्रेड यूनियन के नेता कथित तौर पर कट मनी के नाम पर लिए पैसे वापस करते दिखे। इन्होंने टोटो ड्राइवरों से ये अवैध वसूली की थी। उधर लंबी पूछताछ के बाद कोलकाता पुलिस ने आरोपी पार्षद जसीमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। मामला 2023 के पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ है जिसमें जसीमुद्दीन आरोपी है। ताबड़तोड़ एक्शन के बाद से टीएमसी के दागियों में खलबली मची हुई है। हुगली से पार्था राहा तापस सेन गुप्ता के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।
1: इस बीच कांग्रेस की ओर से टीएमसी पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस ने कहा कि टीएमसी के नेताओं ने सत्ता में रहते हुए चोरी की थी तो कार्रवाई तो होगी।
2: अगर तृणमूल पार्टी सभा जानता है वेस्ट बंगाल का साथ बहुत अन्याय काम किया है, बहुत चोरी किया है। अभी से नई दो पार्टी पावर आने का 2011 साल आने का बाद अब लोग जानता है वो सब। एक तो सैम कंडो का नाम है, उसका बाद टीचर स्कैम था, उसका बाद कितना स्कैम रहा आदमी से कब से, ये नया चीज नहीं है।
1: बंगाल में शुभेंदु सरकार का नया फरमान आया है। फरमान है मदरसों के सर्वे का। हिंदुत्व के नारे बुलंद करने के क्रम में शुभेंदु सरकार का यह फैसला अहम है। राज्य सरकार ने जो फरमान जारी किया है उसके मुताबिक सभी मदरसों का सर्वे होगा, उनकी वैधता जांची जाएगी, कागजों की पड़ताल होगी। सरकार भविष्य की प्लानिंग का हवाला देकर मदरसों के जो आंकड़े हैं वो जुटाने का हवाला दे रही है।
3: ओ माता की, गंगा माता की जय सिरा।
0: बंगाल में बीजेपी की सरकार और एक्शन लगातार जारी है। शुभेंदु के बंगाल में सत्ता संभाले आज 30 दिन हो गए हैं। वो लगातार अपने हिंदुत्व कार्ड पर अमल में जुटे हुए हैं। सनातन के जयकारे के साथ सरकार का नया फरमान आया है। शुभेंदु सरकार ने कह दिया है कि बंगाल में सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। आदेश बहुत साफ है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मदरसों के सर्वे के दौरान उनकी कार्यप्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी वैधता की जांच की जाएगी। सर्वे से जांच की तैयारी है कि सभी मदरसों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, सभी के पास पर्याप्त कागजात हैं या नहीं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र होगा कि संबंधित मदरसा आवासीय है या नहीं, उसे फंड दिया जाता है या नहीं, और साथ ही ये भी कि वहाँ क्या कोर्स पढ़ाया जाता है। इसमें आदेश दिया गया है कि मदरसों के निर्माण, उनके रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी, वैध कागजात की जांच, छात्रों की संख्या, वहाँ पढ़ाने वाले मौलवियों की संख्या और अन्य कर्मचारियों के आंकड़े भी मुहैया कराए जाएं। बंगाल के अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा से संबंधित विभाग ने 5 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था।
4: मदरसा हो या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है मतलब स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ देखना है कि वो सही तरह से ये यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। यूटिलाइजेशन ये तो सरकार का काम है, सरकार ये काम कर रहा है, अपना काम है सरकार का, सरकार तो अपना काम करेगा ना।
0: बीजेपी अक्सर टीएमसी पर तुष्टिकरण के आरोप लगाती रही है। अब सत्ता संभालते ही शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है। वो साफ कहते हैं कि सेकुलरिज्म का दीमक बंगाल के विकास को चाट गया।
3: बंगाल का भूमि में धीरे धीरे धीरे धीरे सेकुलरिज्म और अपने वोट बैंक की लालच, इसमें विकास प्रगति पीछे चला गया। तुष्टिकरण की राजनीति आगे चलना पड़ा।
0: मदरसों का सर्वे शुभेंदु सरकार का नया सियासी कार्ड है। अब बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि शुभेंदु बहुत शानदार काम कर रहे हैं।
5: कहाँ पे घोटाला चल रहा है, इतना घोटाला क्यों चल रहा है? तो हम सीएम, हमारा जो चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी है ना, तो उन्होंने एकदम ध्यान तरीके से, मतलब इतना ध्यान दे रहा है, क्योंकि देखिए जहां पे टीचर्स नहीं है वहां पे तो कम से कम टीचर को रिक्रूट करना है, तो फिर जहां पे स्कूल का कोई बच्चों नहीं है तो वहां पे फिर टीचर रखने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। खोखला को कहां पे गैप है, कहां पे सिर्फ टीचर भी नहीं है, टीचर आते भी नहीं है फिर भी पेमेंट लेते हैं, तो ध्यान देना चाहिए। एकदम हमारा सीएम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं।
0: बंगाल के मंत्री भी कह रहे हैं कि इस फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और संस्थानों की निगरानी से व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी।
6: उसने जो निर्णय लिया है सर्वे का, सारे मदरसों का, वो बहुत सराहनीय कदम है। जो भी शिक्षण संस्थान हो, वो स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसे हो, सबके ऊपर जवाबदेही सरकार की है। वो वित्तीय मामला हो, कानून का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, कैसे शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसका मामला हो, ये पूर्ण रूप से जिम्मेवारी सरकार की है। तो सरकार का ये कदम जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है।
0: मदरसे के सर्वे के आदेश पर अमल की तैयारी है। अब बंगाल में मदरसों को लेकर आंकड़े भी देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 609 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें 395 हाई मदरसा, 112 जूनियर हाई मदरसा और 102 सीनियर मदरसा हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 685 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा भी हैं। 2026-27 के अंतरिम बजट में ममता सरकार ने अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के लिए 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब सरकार हवाला दे रही है कि इन सभी मदरसों के सर्वे का मकसद अपडेट डाटाबेस तैयार करना है, ताकि भविष्य में मदरसा से जुड़ी की जाने वाली प्लानिंग को लेकर मदद मिल सके। राज्य सरकार कह रही है कि तुष्टिकरण की राजनीति पर चोट जारी रहेगी।
3: तुष्टिकरण की राजनीति से बंगाल झील रहा था, खास करके पिछले कुछ वर्षों में, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ खराब हुआ।
0: मदरसों के सर्वे का फैसला होने के बाद अलग अलग जिलों में तैयारी पूरी है। राज्य सरकार ने सर्वे की रिपोर्ट 5 जुलाई तक मांगी है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
1: पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, जहां शुभेंदु सरकार की नजर उन मदरसों पर अब सख्त हो गए हैं जो नियमों के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। इससे पहले ये सख्ती उत्तर प्रदेश में दिख चुकी है, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कई फैसलों से अवैध मदरसों और अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर चला है।
7: देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसका सीधा और स्पष्ट ऐलान है कि प्रदेश में ना तो एक भी अवैध मदरसा चलेगा और ना ही एक भी गैर कानूनी मस्जिद रहेगी। कानून के दायरे में अतिक्रमण वाली सभी धार्मिक इमारतों पर प्रशासन का हथौड़ा चलेगा, जिसकी ताजा बानगी दिख रही है संबल की मुस्तफा कादरी मस्जिद पर, जहां लगातार दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। ये दो तस्वीरें दो राज्यों में बीजेपी सरकार के तेवर को बयान कर रही है। एक ओर जहां बंगाल में मदरसों पर शुभेंदु की सख्त नजर पड़ चुकी है, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पहले से ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर और हथौड़ा चला रही है। हालांकि सियासत में आरोप ये भी लग रहा है कि पहले यूपी और अब बंगाल में एक खास वर्ग विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है। पहले नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पर जो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों और अवैध धार्मिक स्थलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सख्त हैं। जून 2026 में ही गाजियाबाद के कनावनी और लोनी में दो अवैध मदरसे सील किए गए। मोदीनगर में मस्जिद के साथ बनी 14 दुकानों को भी ध्वस्त करने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं बागपत में अवैध मदरसे और मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है। साथ ही संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद पर बुलडोजर तो चल ही रहा है।
8: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैंड मशीन को यहां पर लाया गया है। और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी, जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही
9: है। जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर काम किया गया कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जाकर के कोई स्टे वगैरह ले सके।
7: हम आपको बता दें कि फरवरी 2026 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की विस्तार से जांच कराने का फैसला किया था। इस जांच का मुख्य उद्देश्य मदरसों में आने वाली विदेशी फंडिंग के स्रोतों का पता लगाना था। सीएम योगी ने भी बार बार चेतावनी दी है कि यूपी में किसी भी तरीके के धार्मिक अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
10: जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई, आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं।
11: पर ये तो बन चुके हैं, अब
10: बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह एक खुदा को स्वीकारे नहीं।
7: उत्तर प्रदेश में सरकार की सख्ती सिर्फ अवैध मदरसों तक ही सीमित नहीं है, कुछ ऐसे फैसले और एक्शन भी सामने आ चुके हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी है। हाल ही में सीएम योगी ने ईद में सड़कों पर नमाज पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले नए मदरसों को सरकारी पैसा नहीं देने का योगी ने फैसला किया था। 2022 में गैर रजिस्टर्ड और अवैध मदरसों के सर्वे के आदेश पारित हुए। नवंबर 2023 में यूपी में हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा सैकड़ों अवैध बूचड़खानों को बंद कराया जा चुका है। साथ ही मई 2025 में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम में बीजेपी सरकारों के कामकाज का तरीका बता रहा है कि उनकी सियासत का फॉर्मूला क्या है और इससे ना तो उन्हें गुरेज है और ना ही परहेज है। खासकर उत्तर प्रदेश में जहां 2027 में विधानसभा चुनाव की जंग ही इन्हीं मुद्दों की बुनियाद में लड़ी जाएगी। संभल से अभिनव माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।
1: अब बात यूपी के जहां पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है। संभल में दूसरे दिन भी मस्जिद पर बुलडोजर चला और बुलडोजर एक्शन के बाद से समाजवादी पार्टी सरकार पर हमलावर है और बुलडोजर पर जोरदार सियासत चल रही है।
0: गरज रहा है बाबा का बुलडोजर और जमींदोज हो रहा है अवैध निर्माण। तस्वीरें संभल की। संभल में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। मेहराबे गिराई जा रही है, मीनारे ढहाई जा रहे हैं।
8: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैंड मशीन को यहां पर लाया गया है। और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो है पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही थी। और इसी तरह से जो लगातार बुलडोजर एक्शन है वो यहां पर लगातार जो है जारी है। और इसी के साथ देखिए ठीक आपको मैं पीछे अगर आपको जो तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए यहां पर आप जो देखेंगे तो देखिए लगातार पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहां पर जो बनी हुई है। यहां पर आप ये बुलडोजर आपको मशीनों में जो है सर नजर आएंगे और देखिए किस तरीके से जो यहां पर बुलडोजर और हाइड्रा मशीनें हैं वो लगातार यहां पर जो है मौके पर मौजूद है।
0: ये मस्जिद 120 वर्ग मीटर में बनी हुई थी।
12: ये कार्रवाई कल से शुरू हुई थी लेकिन स्ट्रक्चर के आसपास चूंकि आबादी है इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही थी और कल ये देर शाम तक काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए आज जो है पोकलैंड मंगा करके उस कार्रवाई को पूरा कराया जा रहा है।
0: अब इस बुलडोजर एक्शन पर यूपी की सियासत सुलग रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि अब तो जुल्म की इंतहा हो गई है।
9: जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर ही काम किया गया कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जाकर के कोई स्टे वगैरह ले सके।
0: 27 के समर में अभी समय है मगर यूपी की सियासत में हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स जोर पकड़ने लगी है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।
1: अगली खबर काशी की, जहां पर तय किया गया है कि महादेव की नगरी में शहर के भीतर मांस मछली की दुकानें शहर से बाहर शिफ्ट की जाएंगी और बाकायदा जगह तय की जा चुकी है और फैसला लिया गया कि शहर के भीतर मांस मछली नहीं बेची जाएगी।
0: वाराणसी में बटर चिकन और मटन कोरमा के शौकीनों को झटका लगा है। रोगन जोश और फिश करी खाने वालों के स्वाद पर भी संकट गहराया है, क्योंकि आदेश ऐसा आया है कि वाराणसी में शहर के भीतर मीट मांस मछली की दुकानें हटाई जाएंगी। तय किया गया है कि शहर के बाहर 5 जगह चिन्हित की जाएंगी और वहां दुकानें बनवाई जाएंगी ताकि दुकानदार अपनी दुकान शिफ्ट कर सके।
13: मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर 5 स्थानों पे हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। जितने दुकानदार हैं उतना दुकान हम बना के देने जा रहे हैं। बकासी एक सांस्कृतिक शहर है और धार्मिक नगरी है। 1.5 से 2 लाख पर्यटक प्रत्येक दिन आते हैं और मुझे लगता है कि मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर होनी चाहिए।
0: बता दें कि सदन में पार्षद गुलशन अली ने मीट मांस की दुकानों को शहर के बाहर रखने का प्रस्ताव दिया था। अब इस पर अमल हुआ है तो मुस्लिम धर्मगुरु इस फैसले को गैर मुनासिब बता रहे हैं।
14: हम ये समझते हैं कि फैसला गैर मुनासिब है, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट डेटा अराउंड 70% जो आवाम है नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी 70% आवाम नॉन वेजिटेरियन है। तो जितनी दूर आप इन दुकानों को करेंगे उतने ही ज्यादा गरानी में इजाफा होगा, कस्टमर्स को जहमत होगी, बिजनेस पर उसका नेगेटिव असर पड़ेगा।
0: लेकिन शिया धर्मगुरु ऐसा नहीं मानते, बल्कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं और एक नई मांग करते हैं।
15: जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल हैं, जिस तरीके से आप मांस मछली को कह रहे हैं उसी तरीके से शराब की दुकानों को भी हटना चाहिए, शहर के बाहर जाना चाहिए, ये गांजा का ठेके जो हैं ये भी हटना चाहिए। किसी भी तरीके के ये जो गलत खाम के अड्डे हैं ये उस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए जहाँ तीर्थ स्थल है।
0: अब यूपी में स्वाद पर सियासत हो रही है, जिसके केंद्र में हिंदुत्व की राजनीति के बीज छिपे हैं। रोशन कुमार, वाराणसी आज तक।
1: आर्म्स एक्ट में केस दर्ज होने के बाद पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले फैजल खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक बार फिर फायर डिपार्टमेंट की टीम फैजल खान के कोचिंग सेंटर में पहुंची और फायर सेफ्टी के मानकों की जांच की।

0: पहले आर्म्स एक्ट में केस, गिरफ्तारी का संकट और अब एक और मुसीबत कोचिंग चलाने वाले फैजल खान के सिर पर आ गई है। खतरा उस कोचिंग सेंटर पर मंडराने लगा है जिस सेंटर से फैजल खान ने नाम बनाया और अपना साम्राज्य खड़ा किया। दरअसल विवादों में घिरे फैजल खान के कोचिंग सेंटर का फायर डिपार्टमेंट की टीम ने मुआयना किया, जहां फायर सेफ्टी के नियमों के पालन में अनदेखी मिली। केजीएस कोचिंग सेंटर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर कई कमियां पाई गईं।
1: कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है।
0: जांच के बाद अग्निशमन विभाग ने कोचिंग सेंटर में इन कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। अगर जल्द ही इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो केजीएस कोचिंग सेंटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, यहां तक कि फैजल खान के कोचिंग सेंटर को सील किया जा सकता है।
1: ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है, तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है जो नियमानुकूल है उस पर कार्रवाई करने का जो है सो निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं।
0: इस एक्शन के एक दिन बाद ही फायर डिपार्टमेंट की टीम फिर ऑडिट करने फैजल खान की कोचिंग पहुंची और पूरे सेंटर का मुआयना किया। फैजल खान पर पहले ही आर्म्स एक्ट का केस दर्ज होने के बाद वो संकट में घिरे हुए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाने की अब तैयारी है।
2: जेल लेने की जरूरत पड़ सकती है, उनका नाम इंसर्ट कर दिया गया है FIR में। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाती है वो पुलिस डायरी से ही पता लगेगा।
0: कुल मिलाकर फैजल खान संकट में है। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक।
3: महंगाई की एक और मार आम जनता पर पड़ी है और घरेलू गैस की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं।
0: फिर पड़ी है महंगाई की मार, फिर बिगड़ेगा किचन का बजट, फिर से कटी है आम आदमी की जेब। जी हाँ, आज फिर से घरेलू गैस LPG के दाम में बढ़ोतरी की गई है। घरेलू LPG सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। नई दरें रात 12 बजे से लागू हो चुकी हैं। दिल्ली में अब 14 किलो 300 ग्राम वाला गैस सिलेंडर 913 रुपए से बढ़कर 942 का हो गया है। इसके पहले भी गैस की कीमतों में इजाफा हुआ था। 3 महीने में दूसरी बार LPG के दाम बढ़े हैं। 7 मार्च को LPG सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। 3 महीने में घरेलू सिलेंडर 89 रुपए महंगा हुआ है। गैस के दाम बढ़े तो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि घरेलू LPG दामों में आग की लपटें आम आदमी की रसोई को भस्म करने पर तुली हुई है।
4: महंगाई की मार गरीब पे जो पड़ती है ना, वो उसका उसका ऐसा साइन हो नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी मार होती है कि पेट्रोल डीजल के साथ में गैस के बराबर LPG का दाम बढ़ता ही जा रहा है।
0: विपक्ष सरकार पर हमलावर है, मगर सरकार कह रही है कि दुनिया में सबसे कम कीमत पर कुकिंग गैस हमारे ही देश में मिलती है। अब गैस पर सियासी गदर है। आज तक ब्यूरो।
3: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर समुद्र की टकराव की शक्ल लेता दिख रहा है। होर्मुज स्ट्रेट के पास दोनों देशों ने एक दूसरे पर उकसाने वाली कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। ईरान ने चेतावनी के तौर पर गोलीबारी करने का दावा किया, जबकि अमेरिका ने कहा कि उसने ईरानी ड्रोन मार गिराया।
0: एक बार फिर अमेरिका ईरान में बारूदी तनाव की स्थिति बन रही है। एक बार फिर होर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। दोनों ओर से हुए हमलों के बाद टकराव बढ़ता दिख रहा है। दरअसल ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर के मुताबिक ईरान ने होर्मुज के पास चेतावनी के तौर पर फायरिंग की। दावा है कि अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की तैनाती में कुछ हरकत के जवाब में ईरान की ओर से गोलियां चलाई गई। दूसरी तरफ एक अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि ईरान ने होर्मुज की ओर कई ड्रोन दागे जिनको तबाह कर दिया गया। दोनों ओर से हुई कार्रवाई ने एक बार फिर समुद्री मोर्चे पर दोनों देशों के बीच बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि एक दिन पहले पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पशुपेश में डाल दिया है। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता रहा। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। इस हमले की तपिश अभी खत्म नहीं हुई थी कि अब हॉर्मूज पर नया मोर्चा खुल गया है, जिससे दोनों देशों में जंग का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक,
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

इसराइल के खिलाफ ईरान ने किया जंग का आगाज। लेबनान पर हमलों के विरोध में मिसाइल ड्रोन अटैक, कहा जवाबी वार तो विनाशकारी होंगे नतीजे। इसराइल का दावा, सभी हमले नाकाम किए गए। ईरान को अमेरिका की दो टूक, जितनी मिसाइलें दागी उतना काफी है, अब बातचीत की टेबल पर लौटे। ट्रंप ने इसराइल को जवाबी हमले से रोका, बोले नेतन्याहू के पास समझौता स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज की बड़ी चिंतन मंथन बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में बढ़ी दरार, विजयन पर राहुल गांधी की टिप्पणी से लेफ्ट आग बबूला, खड़गे को लिखा खत, दिल्ली में केजरीवाल से मिली ममता। बंगाल में नेता विपक्ष ऋतुव्रत बैनर्जी का आज तक पर बड़ा बयान, कहा कई टीएमसी सांसदों से भी हो रही है बात, 61 विधायक हमारे साथ, पार्टी की सलाहकार बने ममता। जयपुर में आज नूरानी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर के तनाव, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, 3,000 से ज्यादा जवान तैनात, रात 12 बजे से इंटरनेट को बंद किया गया।

में हालात फिर से विस्फोटक हो गए हैं। लेबनन पर इजरायली हमलों के बीच ईरान और हिजबुल्ला ने एक साथ इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला बोला है। इससे पूरे इजरायल में सायरन बज उठे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। 100 दिनों के बाद पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव की स्थिति बन चुकी है। ईरान का कहना है कि बार बार चेतावनी के बावजूद इजरायल ने लेबनन पर हमले बंद नहीं किए।

तो बीती रात ईरान ने फिर इसराइल पर हमले किए, मिसाइलें दागी है। ईरान की यह कार्रवाई लेबनन में हो रहे इसराइल के हवाई हमलों के जवाब में है। लेबनन में बच्चों और निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है, ये कहना ईरान का, और कल ही उसकी ओर से कहा गया। और तब ये जानकारी आई कि सुप्रीम काउंसिल ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 5 की मंजूरी दे दी है। इसराइल पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। इसके पहले इसराइल ने कल जिस तरह से लेबनन के बेरूत में दाहिया इलाके में टायर इलाके में हमला किया था, उसकी जवाबी कार्रवाई के रूप में ईरान की ओर से बयान आया। ईरान ने कहा कि ये हमले मंजूर नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर में सबसे बड़ा समझौता लेबनन पर हवाई हमलों को रोकना था। यहां तक कि लेबनन और इसराइल के बीच में वॉशिंगटन में दो दौर की बातचीत हो गई। इसराइल का दावा है कि ईरान की ओर से किए गए सभी मिसाइल हमले हवा में निष्क्रिय कर दिए गए हैं। इसराइली सेना का कहना है कि ईरान को इस हमले का करारा जवाब मिलेगा, लेकिन लेबनन में इसराइल के हवाई हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने बीती रात यानी अब से कुछ घंटों पहले ही इसराइल पर मिसाइलें दागी हैं। उत्तरी इसराइल को निशाना बनाया गया है और ईरान की ओर से कहा गया कि लेबनन पर हमला सीज फायर को तोड़ने की प्रक्रिया और ऐसे में जवाबी कार्रवाई होगी। ईरान ने कहा कि अगर इसराइल अब इस पर पलटवार करता है, जवाबी कार्रवाई करता है, तो और भी घातक हमला होगा। इसराइल का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के सभी मिसाइलों को नेस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन 100 दिनों के बाद 28 फरवरी जब वो वक्त था जब अमेरिका और ईरान ने साझा ऑपरेशन किया ईरान में, और 100 दिन बीतते बीतते जब ऐसा लगा कि अब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होगी, ये तस्वीरें देखिए बीती रात किस तरह इसराइल के अलग अलग इलाकों में ईरान की IRGC ने तस्वीरें भी जारी की जब उन्होंने मिसाइल दागते हुए वो तस्वीरें दिखाई। और इसी के साथ साथ पूरे पश्चिम एशिया में सीरिया ने अपना एयर स्पेस बंद किया, इराक ने अपना एयर स्पेस बंद किया, ईरान के कई सारे एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। और इस बीच ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 5 इसके बारे में कहा जा रहा था कि ईरान की ओर से कार्रवाई होगी, इसराइल पर बड़ा हमला हुआ है। और ईरान ने यह भी कहा कि अगर अब इसराइल जवाबी कार्रवाई करता है तो पलटवार होगा, बड़ा हमला होगा। कुछ देर पहले की वो तस्वीरें हैं जब ईरान की ओर से इसराइल पर मिसाइलें दागी गई। आपको फिर बता दें 100 दिनों के बाद बीते दिन जिस तरह से बेरूत लेबनन की राजधानी बेरूत के दाहिया और टायर में इसराइल ने हमले किए थे, उस हमले में बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिक मारे गए, मारे जाने वाले में महिलाएं और बच्चे भी थी। और उसी के बाद से ईरान की ओर से कहा जाने लगा कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे अलग अलग कि किस तरह ईरान की ओर से मिसाइलें दागी, जवाबी कार्रवाई की गई। उधर जैसे ही यह हमला हुआ तुरंत ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन घुमा दिया। बेंजामिन नेतन्याहू से दो टूक उन्होंने कहा कि इसराइल जवाबी कार्रवाई नहीं करे। आपको बता दें कि लगभग सप्ताह भर पहले भी ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई और तब उन्होंने कहा कि आपको रुकना होगा, दोनों के बीच तनातनी हुई। और उसके बावजूद भी लेबनन में नेतन्याहू ने हवाई हमलों के आदेश दिए और वो हवाई हमले अब तक सबसे भीषण हमलों में माने जा रहे हो, जिसके बाद ईरान की ओर से कहा गया कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा। एक तस्वीर आप ये भी देख रहे हैं कि

0: ये लगभग तय था। उधर तेहरान में इस हमले को लेकर के लोग सड़कों पर उतरे, अपनी सेना के साथ देश के साथ वो खड़े हुए और जवाबी हमले अगर हुए तो विनाशकारी नतीजे होंगे, ये भी कहा है ईरान ने। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 100 दिनों के बाद पश्चिम एशिया क्या एक बार फिर तनाव और जंग के नए दायरे के मुहाने पर है? सुमित, बीती रात वो हुआ जिसके बारे में ऐसा लगता था कि संभवतः इसको रोका जा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने बार बार ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए, उसके बावजूद भी ईरान ने जवाबी कार्रवाई सिर्फ कुवैत पर की या उसके साथ यूएई में की, लेकिन अब तो सीधे सीधे इसराइल पर मिसाइलें दागी हैं, आगे अब क्या?
1: देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल, क्योंकि अब तक देखा जो जा रहा था आशुतोष, यही देखा जा रहा था कि शायद लेबनन को लेकर इसराइल पर इस तरीके के अटैक ईरान ना करे, लेकिन ईरान भी बार बार कहता है, ईरान लगातार इस बात को कहता है कि देखिए अगर लेबनन पर अटैक बंद नहीं हुए तो फिर इस सीजफायर का कोई मतलब नहीं है। 28 फरवरी से जब से अमेरिका इसराइल ने ईरान पर अटैक किए थे उसके बाद से ही इसराइल ने भी लेबनन के अंदर बड़े ऑपरेशन की शुरुआत कर दी थी, लेकिन जो संघर्ष विराम था वो ईरान अमेरिका और इसराइल के बीच हो तो गया था, लेकिन रह रहकर लगातार एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे थे लेबनन पर, फिर भी शांति बरकरार नहीं हो पाई थी। और एक बार फिर से कल रात को ईरान ने वही पोस्टर अटैक दोबारा से करने शुरू किए जिसकी बातें वो कर रहा था। ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा कि लेबनन से वो पीछे नहीं होने वाला, अपने स्टैंड से पीछे हटने नहीं वाला, और उसी के लिए लगातार ईरान के कई इलाकों से, कई मिसाइल लॉन्चर से, कई आप कह सकते हैं कि फाइलों से बड़े अटैक इनिशिएट किए गए इसराइल के नॉर्दर्न पार्ट में, यानी जो लेबनन से लगता हुआ इलाका है वहां पर ये अटैक ज्यादा किए गए आशुतोष।
0: नहीं, ये भी देखिए कि वाशिंगटन में दो दौर की बातचीत इसराइल और लेबनन के बीच हो गई। खुद नेतन्याहू ने कहा कि धीरे धीरे हिजबुल्लाह का डिसार्म करेंगे और करेंगे, लेकिन कल जिस तरह से हमला उन्होंने किया और खासकर बेरूत में बड़ी संख्या में बच्चे मारे गए हैं, वहां पर निर्दोष नागरिक मारे गए, मतलब बेरूत का दहिया में आपने एक बार बड़ा ऑपरेशन कर लिया कि आपने हिजबुल्लाह प्रमुख को मार गिराया टायरे के साथ, उस हमले के जवाब में ईरान ने यह तय कर लिया था। क्या ईरान ने यह कैलकुलेशन नहीं किया था कि इसराइल की ओर से जवाबी कार्रवाई होगी?
1: देखिए, ईरान ये मान के चल रहा था कि जब तक ये जो इसराइल की तरफ से कार्रवाई की जा रही है शायद रुक जाए। हालांकि देखिए, आप और मैं दोनों जानते हैं, क्योंकि आप भी उस इलाके से वाकिफ हैं, आप भी उस इलाके में जा चुके हैं, कि लेबनन का इलाका, साउथ लेबनन का इलाका इसराइल के लिए हमेशा से बहुत सेंसिटिव और बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया रहा है। लगातार इसराइल मानता है कि अगर हिजबुल्लाह को उस इलाके से हटाया नहीं गया तो ये लंबा खतरा है जो इसराइल को जिससे जूझना पड़ेगा। शायद इसी वजह से जब ईरान पे अटैक किए गए उसी बीच लगातार एक तरीके से इसराइल ने बड़े ऑपरेशन चलाए, यहाँ तक कि उसकी जो सेनाएं हैं वो 10 किलोमीटर के इलाकों में आगे बढ़ गई, लितानी रिवर के ठीक पहले तक ही वो पहुंच गई। और शायद यही डर लगातार ईरान को भी था कि अगर इसी तरीके से इसराइल की सेनाओं ने बढ़त बना ली तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह के वजूद पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, जिसको लेकर इसराइल के ईरान कहता था ईरान। लेकिन अब हुआ क्या कि लगातार सीजफायर तो हुआ लेकिन इसराइल नहीं रुका, और शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि जब हिजबुल्लाह के पूरे वजूद पर ही खतरा मंडराने लगा तब ईरान ने वो पोस्टर अटैक अगर आप इससे कह सकते हैं कि बड़े अटैक किए। हालांकि देखिए, अब तक कितना नुकसान इसराइल में उन हमलों को लेकर हुआ है ये अब तक तय नहीं हो पाया, लेकिन ईरान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर इसराइल नहीं रुका तो फिर वो और भी बड़े हमले करता रहेगा।
0: यानी इसे चेतावनी के तौर पर एक हमले के रूप में देखा जाए। सुमिता, बने रहे हमारे साथ, कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे कि कैसे IRGC की ओर से ये तस्वीरें जारी की गई हैं जब ईरान पर जवाबी कार्रवाई की गई है। आपको फिर बता दें, बेरूत में इजरायली हवाई हमलों की जवाबी कार्रवाई ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दाग के की है। बेरूत में कल भारी हमला किया गया था इसराइल के द्वारा, जिसके तुरंत बाद ये कहा गया ईरान की ओर से कि वो अब इसको जो है सीज फायर का उल्लंघन मानता है। अमेरिका ईरान के बीच तय सीज फायर का ये उल्लंघन था और उसमें एक शर्त थी कि अब लेबनन पर हमले रुकेंगे। ईरान ने कहा कि वो लेबनन का साथ नहीं छोड़ेगा। और ये वो तस्वीरें हैं उस मौके की कि जब सीरिया और इराक से गुजरते हुए ईरान की मिसाइलें इसराइल की सीमा में प्रवेश कर रही थीं और ये इसराइल में जब उसको इंटरसेप्ट किया जा रहा था। ईरानी मीडिया भी ये उसके हवाले से एक बड़ी खबर आई है कि मुस्तफा खामने यानी सुप्रीम काउंसिल ने उसे अनुमति दी थी और सिर्फ मिसाइलें ही नहीं बल्कि ड्रोन भी दागे गए थे। अब पश्चिम एशिया के संकट में उसके तुरंत बीच ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पे बातचीत हुई है। सैयद अराक्ची ने ईरान और लेबनन के झंडों की एक साथ तस्वीरें भी पोस्ट की हैं, लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जिसकी संभावना 100 दिनों के बाद एक बार फिर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। अब इस तनाव को रोकने के लिए अमेरिका ने पूरी कोशिश की है और इस बीच ये तस्वीरें देखिए, लेबनन और ईरान की तस्वीरें, ईरान के

0: विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने साझा की हैं। इन झंडों की एक साथ तस्वीरें साझा करके एक संदेश दिया है कि ईरान लेबनन के साथ खड़ा है। हम लोग के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तफा खामनेई के सलाहकार मोहसिन रजाई का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ईरान ने बार बार चेतावनी दी थी कि युद्ध विराम के उल्लंघन और लेबनन पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमलावरों को आज रात इसका जवाब मिल सकता है। तो ईरान के कई सारे बड़े चेहरों की ओर से कल ही चेतावनी भरा वो संदेश, और देर रात होते होते ईरान ने मिसाइलें दागी इसराइल की ओर से। ईरान ने कहा कि वो लेबनन के साथ खड़ा है, लेबनन में हो रहे हमलों को लेकर के वो चुप नहीं बैठेगा। लगातार ईरान चेतावनी दे रहा था कि सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन इसराइल की ओर से किया जा रहा है बार बार लेबनन में। लगातार हर दिन लगभग इसराइल लेबनन के किसी न किसी शहर पर ये हमले होते रहे। तो ईरान की IRGC ने कहा है कि इसराइल अगर लेबनन पर अपने हमले बढ़ाता है और ईरान पर जवाबी हमला करता है तो उसे और भी विनाशकारी हमलों का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सेना ने आरोप लगाया है कि इसराइल लगातार लेबनन में फास्फोरस बमों सहित प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल करके वॉर क्राइम कर रहा है, युद्ध अपराध कर रहा है, जिनेवा कन्वेंशन को तोड़ रहा है। ईरान की पिछली चेतावनियों के बावजूद बेरूत के दाहिया समेत बाहरी इलाकों में इसराइल ने हमले किए हैं, प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल किया है। फास्फोरस बम की तस्वीरें कई बार लेबनन से साझा की गई, खासकर दक्षिण लेबनन में जब उसने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया नागरिकों पर, स्थानीय लोगों पर, निर्दोष लोगों पर, जिसको लेकर के ईरान लगातार नाराजगी जता रहा था। सुमित, इसराइल के हमले सीज फायर के बाद भी नहीं रुके, जबकि पहली शर्त यह थी कि लेबनन पर हमला रुकेगा। दो दौर की बातचीत हो गई, वो कभी टायरे पे निशाना बना रहा है, कभी दाहिया में निशाना बना रहा है, और इन निशानों में सीधा सीधा तो एक मकसद था कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू अमेरिका और ईरान के बीच इस सीज फायर से नाखुश थे। पूरी कोशिश इन्होंने कर ली कि ये सीज फायर टूटे ताकि वो अपने युद्ध को लंबा खींच सके।
1: देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर अभी आशुतोष देखा जाए तो इससे पहले भी 2024 से ही जब लगातार इस तरीके का संघर्ष शुरू हुआ था तब भी इसराइल नहीं रुका था, लेकिन अमेरिका के प्रेशर के बाद और या फिर इसराइल ने जब तक अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर लिया, जब तक हिजबुल्ला को कमजोर नहीं कर दिया, जब तक उनके लगातार जो नसरल्ला थे उस समय के चीफ उसको नहीं मार लिया, तब तक इसराइल नहीं रुका। अब दोबारा से कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरीके से सशक्त, क्योंकि उसके बाद लगातार ईरान ने बहुत मदद की हिजबुल्ला की दोबारा से, उनके मिसाइल को लेकर, उनके दूसरी चीजों को लेकर, तो वो बड़ा कंसर्न बन गया दोबारा से एक बार फिर से इसराइल के लिए। और शायद अब इसराइल बड़े ऑब्जेक्टिव इस बात को लेकर चल रहा है कि इसराइल जो है वो उनके करीबन 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में, जहां पर हिजबुल्ला बहुत ज्यादा मजबूत है, उसको कैप्चर करना चाहता है, उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है ताकि उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो सिक्योर हो सके। और शायद इसी वजह से ना तो इसमें जो इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ना तो डोनाल्ड ट्रंप की सुन रहे हैं, ना ही वो दूसरा कोई प्रेशर इस समय एग्जिस्ट करता। और शायद इसी वजह से लगातार ईरान के लिए बड़ी चुनौती है कि अगर हिजबुल्ला इसी तरीके से खत्म होता रहा तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और शायद उसी वजह को लेकर अब एक बार फिर से ईरान ने इसराइल पर सीधे अटैक किया। लेकिन अगर आप इसके अटैकों को देखें तो शायद इस तरीके से वार्निंग शॉट भी आप इसे कह सकते हैं कि जहां पर वो चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अभी ईरान इसराइल नहीं रुका तो निश्चित तौर पर ईरान एक लंबे युद्ध के लिए तैयार है।
0: ये अब आपने सही शब्द कहा कि ये संभवतः वार्निंग शॉट हो सकता है। इसी वजह से इसराइल को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इन हमलों से कम ईरान ने अपनी मंशा साफ कर दी, अपनी ताकत दिखा दी है कि वो अभी भी सक्षम है। सुमिता बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर ये कि इसराइल पर ईरान और हिजबुल्ला ने साझा हमला किया। हिजबुल्ला ने अपने बयान में कहा है कि उसने ड्रोन और मिसाइलों से इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया है। उधर ईरान की ओर से मिसाइलें दागी गई, ड्रोन दागे गए, तो हिजबुल्ला ने भी इस हमले में ईरान का साथ देते हुए उत्तरी इजरायल के कई इलाकों को निशाना बनाया। बीती रात लगातार सायरन बजे, हालांकि इस हमलों की संभावना थी, लेकिन इसके बावजूद भी इजरायल ने अपने होम कमांडर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया था। लेकिन जब यह युद्ध शुरू हुआ हिजबुल्ला की ओर से भी उत्तरी इसराइल के कई इलाकों में ड्रोन दागे गए। इसके पहले कई सारे ड्रोन हिजबुल्ला ने मार गिराए थे, और कल भी जो वीडियो हिजबुल्ला की ओर से जारी किया गया उसमें यह भी दिखाया गया कि कैसे उसने सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया इजरायली फाइटर जेट के खिलाफ लेबनन की सीमा के भीतर। तो अगली बड़ी खबर यह कि ईरान के हमले के बाद इजरायली सेना अब अलर्ट पर है। IDF की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अब तक ईरान से दागी गई सभी मिसाइलों को रोक लिया गया है, ड्रोन के सभी हमले हवा में निष्क्रिय कर दिए गए हैं। इजरायल ने साफ किया है कि वो ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि इजराइल हमला करता है तो इस इलाके में मौजूद अमेरिका के अब सभी बेस ईरान के निशाने पर होंगे। ईरान की ओर से सीधे ये कहा गया कि अगर हमला हुआ तो अमेरिकी ठिकाने पश्चिम एशिया में उसके लेजिटिमेट ठिकाने होंगे, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। और ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की है, सीधा सीधा कहा है हमला मत करना, डील बिगड़ जाएगी। लेकिन नेतन्याहू नहीं माने, लगातार लेबनन में हमले होते रहे।
2: לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל. נערכנו לכך. צה"ל ערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה. כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צה"ל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה.
0: सुमित, इसराइल ने तो कहा है कि वो पलटवार करेगा। ट्रंप ये कह रहे हैं कि डील चल रही है, कभी भी क्रैक हो सकता है, आपको कुछ नहीं करना है। बीती रात उन्होंने कहा, सीधे जैसे ही हमला शुरू हुआ तुरंत उन्होंने नेतन्याहू को फोन घुमा दिया। वो कह रहे हैं हमला मत करना, जवाबी कार्रवाई मत करना, क्योंकि वो ये सीधे कहते हैं कि अमेरिका के बिना इसराइल है नहीं। क्या नेतन्याहू अभी अफोर्ड कर सकते हैं कि वो जवाबी कार्रवाई करें? और अगर ऐसा होता है तो हम परिस्थितियों को किस ओर जाते देखेंगे?
1: देखिए, वैसे तो अगर हम इसराइल के काम करने के, उनके ऑपरेशन करने के पैटर्न को देखें तो इसराइल, चाहे वो कोई देश हो, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, वो जब तक फैसला नहीं करता या फिर उनके मुताबिक नहीं चलता जब तक वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर लेता। अभी भी, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार इसराइल को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसराइल ना सिर्फ साउथ लेबनन में बल्कि लेबनन की राजधानी बेरूत में दहाइया के अंदर बड़े स्ट्राइक्स किए। और ये तब हुआ जब लगातार डोनाल्ड ट्रंप इस बात से ऐलान कर रहे थे कि देखिए, मैंने फोन कर नेतन्याहू को समझा दिया है, अब पूर्ण तरीके से लेबनन के ऊपर आप सीज़फ़ायर लागू हो जाएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा ही। और अभी भी अगर आप मौजूदा चीजों को देखें, तब ईरान अटैक कर रहा है, जब लगातार ट्रंप की तरफ से फिर बातचीत की गई और समझाने की कोशिश की गई कि देखिए आप रिटेलिएट नहीं करेंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसराइल उन देशों में है कि अगर इसराइल को नुकसान थोड़ा सा भी पहुंचा होगा तो निश्चित तौर पर इसराइल इस समय अपनी नीति पर काम कर रहा होगा कि उसको ईरान को कैसे रिटेलिएट करना, या फिर जहां जहां से ये मिसाइल लॉन्च किए गए हैं, जहां जहां से लगातार ये मिसाइल का आप कह सकते हैं कमांडर कंट्रोल सेंटर है, वहां पर एक पोस्चर अटैक जरूर करे इसराइल। तो अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा आशुतोष कि हाँ, कि इसराइल अटैक करेगा या नहीं करेगा। लेकिन हाँ, इसराइल ये पूरी कोशिश करेगा कि जब जब ईरान की ताकत उसको लगा है कि उसके लिए बड़ा खतरा बनी है, उसने तब तक आप कह सकते हैं जवाब दिया है, भले ही वो अमेरिका के साथ हो या अमेरिका के बगैर हो।
0: नहीं, लेकिन सुमित, कुछ तस्वीरें जो हमारे सामने आए तो हमने देखा कि जब ईरान में इंटरनेट हटाया गया तो इंटरनेट हटाने के बाद वहां तस्वीरें दिखी कि कैसे वो बड़े बड़े साइलो जिस टनल में मिसाइलें रखी हैं, वहां रिस्ट्रक्चरिंग का काम चल रहा है। सुमिता बने हमारे साथ, एक और बड़ी खबर दिखा दे। इसराइल में सायरन और धमाकों की आवाजें गूंज रही है। हाइफा, टेल अवीव शहरों में कई लगातार सायरन बज रहे हैं। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर विस्फोटक हो रहे हैं। सायरन धमाकों की आवाज एक बार फिर लौटी है। 100 दिनों के बाद खाड़ी में एक बार फिर जंग की स्थिति है और यह पूरा इलाका युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। तो ईरान ने इसराइल पर हमला बोला तो तेहरान में लोग सड़कों पर उतर आए। रात भर जश्न का माहौल रहा। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें ईरान से इसराइल की ओर दागी गई मिसाइलें आसमान में नजर आ रही हैं। सड़कों पर लोगों का हुजूम है। ये देखिए तेहरान की वो तस्वीरें हैं कि जब मिसाइलें दागी गईं, लोग सड़कों पर आए ईरान में IRGC के समर्थन में, मुस्तफा खामनेई के समर्थन में। क्यों? क्योंकि ये बदला था लेबनन पर हो रही कार्रवाई। देखिए, आसमान में मिसाइलें, जमीन पर लोग ईरान का झंडा लेकर के और लेबनन का झंडा लेकर के इसराइल पर इस हमले के समर्थन में तेहरान में ईरान के लोग सड़कों पर थे। उधर इसराइल पर ईरान के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एक्शन में आए हैं। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। ट्रंप ने एक न्यूज एजेंसी को दिए बयान में यह कहा है कि ईरान के हमलों से फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि इसराइल जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ एक फाइनल डील के बेहद करीब है और अभी जो हो रहा है उसकी वजह से ये डील बिगड़ सकती है। तो ट्रंप ने दो टूक नेतन्याहू को मना किया है कि वो ईरानी हमले की जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू के पास ईरान के साथ समझौता स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ डील को लेकर के सभी फैसले अब वही करेंगे, नेतन्याहू के पास इस मामले में अब कोई अधिकार नहीं रहेगा। सीधे सीधे दो टूक चेतावनी नेतन्याहू को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के ताजा हमलों के समझौते को लेकर के अब उनके फैसले में कोई बदलाव नहीं आया है। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
4: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports, so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices, so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more. With Premium Upgrade to TuneIn Premium, and start listening now.
5: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल,
6: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी?
5: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल,
6: सीबीएसई के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
5: छात्रों को दिया मंच,
6: उज्मा हमारे साथ कोटा से और अदिति मुंगेर से हैं और तानिया कोटा से हैं और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं, तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
7: नहीं देखिए, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
8: आईआईटी मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
5: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर,
6: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब सरकार की तरफ से सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
5: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: सर्दी जुकाम हो जाता है? क्या बार बार चिंताएं आपको परेशान करती हैं, मन चलता ही रहता है? क्या हार्मोन्स की समस्या से आप जूझ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रमा आपको समस्याएं दे रहा हो? कौन सी हैं चंद्रमा की बीमारियां और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
1: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams so Steely Dan, go back, Jack, do it again. Loggins and Messina, even though we ain't got money. And much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप तक हर हाथ में मौजूद गैजेट्स हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। गैजेट्स की इस चमकती दुनिया के पीछे बैकएंड में एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए भारत लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। मुश्किल ये है कि पड़ोसी देश चीन भारत की इस तरक्की से नाखुश है। वो भारत के रास्ते में रोड़ा अटकाने के लिए नए नए पैंतरे आजमा रहा है। चीन की इसी नई चाल की वजह से भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल ग्लोबल कंपनी सप्लाई चेन के लिए चाइना प्लस वन पॉलिसी पर काम कर रही हैं, लेकिन चीन ने रेगुलेटरी नियमों को कड़ा कर सप्लाई चेन पर नई बंदिशें लगा दी हैं। उसने बाहर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने वाली कंपनीज के सीनियर अफसरों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया है। ड्रैगन के इस कदम का सीधा असर आईफोन बनाने वाली दिग्गज कंपनी एप्पल और भारत में मौजूद उसके सप्लायर्स पर पड़ सकता है। इसके साथ ही जो भारतीय कंपनीज चीनी कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर बनाने की तैयारी में थीं, उनके मंसूबों को भी बड़ा झटका लगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ने सरकार से फौरन मदद मांगी है। इंडस्ट्री का मानना है कि नई बंदिशों से देश में निवेश, एक्सपोर्ट ग्रोथ और सप्लाई चेन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। सरकार भी इस खतरे से वाकिफ है और इंडस्ट्री से बातचीत कर रही है। देखा जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि कंपोनेंट्स, असेंबलीज और कैपिटल इक्विपमेंट के लिए देश काफी हद तक चीन के आयात पर टिका हुआ है। चीन की इस नई चाल की टाइमिंग भी बेहद हैरान करने वाली है। उसने ये पाबंदियां बेहद सोची समझी रणनीति के तहत लगाई हैं, क्योंकि भारत सरकार ने हाल ही में देश में निवेश बढ़ाने के लिए प्रेस नोट 3 के नियमों में ढील दी थी। चीन भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को स्पेस नहीं देना चाहता और खुद का विकल्प बनने से रोकना चाहता है। नई पाबंदियों के जरिए ग्लोबल कंपनीज को डाइवर्सिफाई करने से रोकने की पूरी उसकी कोशिश है। चीन की साफ प्लानिंग है कि जिन कंपनीज ने अपनी सप्लाई चेन भारत में शिफ्ट की है या करने की सोच रही हैं, उनके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएं। जानकार बता रहे हैं कि चीन इस मामले में भारत पर सख्ती और वियतनाम पर नरमी दिखा सकता है। पड़ोसी देश की इन कड़वी बंदिशों ने साफ कर दिया है कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का किंग बनने की लड़ाई आने वाले दिनों में और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। आज तक ब्यूरो।

इसराइल के खिलाफ ईरान ने किया जंग का आगाज। लेबनान पर हमलों के विरोध में मिसाइल ड्रोन अटैक, कहा जवाबी वार तो विनाशकारी होंगे नतीजे। इसराइल का दावा, सभी हमले नाकाम किए गए। ईरान को अमेरिका की दो टूक, जितनी मिसाइलें दागी उतना काफी है, अब बातचीत की टेबल पर लौटे। ट्रंप ने इसराइल को जवाबी हमले से रोका, बोले नेतन्याहू के पास समझौता स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज की बड़ी चिंतन मंथन बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में बढ़ी दरार, विजयन पर राहुल गांधी की टिप्पणी से लेफ्ट आग बबूला, खड़गे को लिखा खत, दिल्ली में केजरीवाल से मिली ममता। बंगाल में नेता विपक्ष ऋतुव्रत बैनर्जी का आज तक पर बड़ा बयान, कहा कई टीएमसी सांसदों से भी हो रही है बात, 61 विधायक हमारे साथ, पार्टी की सलाहकार बने ममता। जयपुर में आज नूरानी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर के तनाव, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, 3,000 से ज्यादा जवान तैनात, रात 12 बजे से इंटरनेट को बंद किया गया।

हो गए हैं लेबनन पर इजरायली हमलों के बीच ईरान और हिजबुल्ला ने एक साथ इजरायल पर हमला बोला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। इजरायल ने लेबनन पर हमला बोला, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि पूरे इजरायल में सायरन बज उठे, एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया। ईरान का कहना है कि बार बार चेतावनी के बावजूद इजरायल ने लेबनन पर हमले बंद नहीं किए, लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जाता रहा और अब ताजा हमले लेबनन की राजधानी बेरूत में किए गए, जिसके जवाब में ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागी। इजरायल ने कहा कि लगातार इजराइल लेबनन में बच्चों निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है, इसी के जवाब में इजराइल पर हमला किया गया। हालांकि इजराइल का दावा है कि ईरान की ओर से दागी गई सभी मिसाइलें हवा में निष्क्रिय कर दी गई। इजरायली सेना का कहना है कि ईरान को इस हमले का करारा जवाब मिलेगा। तो इन अलग अलग तस्वीरों से समझिए कि पूरा घटनाक्रम आखिर क्या होता रहा। ईरान ने मिसाइलें दागी, उधर ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की और उन्हें सख्त चेतावनी दी कि वो पलटवार नहीं करेंगे, ईरान पर इजराइल हमला नहीं करेगा। उधर इजराइल का कहना है कि उसने सभी मिसाइलों को हवा में मार गिराया, उन्हें निष्क्रिय किया, उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन जैसे ही ईरान ने कहा कि वो लेबनन में हो रहे हमलों का जवाब देगा, तेहरान समेत हुरमशाह में ईरान के लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई के समर्थन में नारे लगाए। उधर लेबनन पर हमले जो हुए उसका बदला लिया, सुप्रीम कमांडर और सुप्रीम काउंसिल ने इस बदले को अनुमति दी और उसी के साथ साथ अराक्षी ने, ईरान के विदेश मंत्री ने, लेबनन और ईरान के साझा झंडों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। तो आखिर पूरे घटनाक्रम में अब तक क्या हुआ है? इजराइल पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, 100 दिनों के बाद पश्चिम एशिया में हालात फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। लेबनन पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे, ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी। और ये देखिए, उसके बाद इजराइल के अलग अलग इलाकों में ईरानी मिसाइलें बरसी, हालांकि हवा में उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया। लेकिन इन तस्वीरों ने एक बार फिर अमेरिका और इजराइल के उन दावों की बखिया उकेर दी है जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान की मारक क्षमता ध्वस्त कर दी गई है, उसके मिसाइलों के जखीरे नष्ट कर दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से हमले लगातार ईरान की ओर से किए गए हैं, उसने नया सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने इस बीच ईरान और लेबनन के झंडों के साथ एक तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन हमलों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई के सलाहकार मोहसिन रेजाई का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने बार बार चेतावनी दी थी कि वो युद्ध विराम के उल्लंघन और लेबनन पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा, हमलावरों को इसका जवाब मिल गया है। तो सैयद अराक्ची द्वारा साझा की गई वो दो तस्वीरें और उसी के बाद मुस्तफा खामनेई के सलाहकार का ये बयान। मोहसिन रजाई ने कहा कि ईरान को चेतावनी दी गई है, उसके बाद भी अगर वो युद्ध विराम का उल्लंघन करता, आपको बता दें अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की एक शर्त यह भी थी कि लेबनन पर हमले नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद इसराइल लगातार हमले करता रहा और अब अमेरिका ने दो टूक चेतावनी के बाद भी जब इजराइल नहीं माना तो जवाबी कार्रवाई ईरान की ओर से की गई। उधर ईरान की आईआरजीसी ने कहा है कि इजराइल अगर लेबनन पर हमले बढ़ाता है या ईरान पर जवाबी कार्रवाई करता है तो उसे और भी विनाशकारी हमलों का सामना करना पड़ सकता है। ईरान ने कहा कि अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करने की सोची भी तो पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। ईरानी सेना ने आरोप लगाया कि इजराइल लगातार लेबनन में फॉस्फोरस बम सहित प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल करके वॉर क्राइम कर रहा है। ईरान की पिछली चेतावनियों के बावजूद बेरूत के बाहरी इलाकों पर हमले किए गए और इन हमलों के जवाब में ईरान की ओर से कल मिसाइलें दागी गईं। ये तेल अवीव के आसमान में, उत्तरी हाइफा, इन तमाम सारे इलाकों में ईरान के मिसाइलें बरसती रहीं, जिसकी जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है जिस तरह बेरूत और टायर में इजराइल ने हमले किए। तो 100 दिनों के बाद पश्चिम एशिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर है, एक बार फिर जंग की ऐसी स्थिति जिसके बाद अब सारी नजर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता और युद्ध के परमानेंट उस समाधान को है कि रास्ता निकलेगा या यहां से एक बार महायुद्ध 2.0 शुरू होगा। ईरान ने कहा कि इजराइल ने बच्चों और मासूमों को निशाना बनाया, लगातार चेतावनी दी गई, युद्ध विराम की पहली शर्त थी कि लेबनन पर हमले नहीं होंगे, लेकिन हमले होते रहे। और तब उसने कहा कि अगर लेबनन पर हमले हुए तो जवाब दिया जाएगा। उधर इसराइल ने कहा कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा, जिसको लेकर के भी चेतावनी ईरान ने दी है। देखिए तस्वीरें,
100 दिनों के बाद एक बार फिर इसराइल के शहरों में ईरान की मिसाइलें बरसती रही। तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालात विस्फोटक हो रहे हैं। लगातार प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। बेरूत के बाहरी इलाकों में कल 100 दिनों में अब तक का सबसे भीषण हमला देखने को मिला, जब उसने बेरूत के दाहिया में और दक्षिणी लेबनन में हमले किए थे। निर्दोष नागरिक काफी मारे गए थे और तभी ईरान की ओर से चेतावनी आने लगी थी। उधर इसराइल पर ईरान और हिजबुल्ला ने साझा हमला किया। हिजबुल्ला ने अपने बयान में कहा कि ड्रोन और मिसाइलों से इजरायली सैनिकों को भी निशाना बनाया गया है। यानी हमला जब ईरान ने शुरू किया तो तुरंत इस पूरे जंग में हिजबुल्ला भी कूद पड़ा।

0: तो 100 दिनों के बाद उधर हमला, हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। लगातार इस पूरी खबर पर आज तक की नजर बनी हुई है, 100 दिनों के बाद क्या पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव की स्थिति बन रही है?
1: बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ी बात यह थी कि अब तक ये अंदेशा था आशुतोष कि देखिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन शायद अब ये दोनों देश यानी अमेरिका और इसराइल और ईरान यानी तीसरा देश ईरान भी लगातार शांति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा ही। इसराइल के हमले लगातार लेबनन पर रुक नहीं रहे थे, लेबनन को लेकर ईरान ने प्री कंडीशन रख दी थी कि तब तक बातचीत जारी नहीं हो पाएगी, जब तक शांति नहीं हो पाएगी जब तक इसराइल लेबनन के अंदर रुकेगा नहीं। इसराइल रुका नहीं और अब उसके बाद एक तरीके के वार्निंग शॉट्स हम लगातार इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि ये ईरान दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब भी अगर इसराइल नहीं रुका तो फिर एक और लंबे भीषण युद्ध के लिए ईरान तैयार है, क्योंकि ईरान की बातों को दरकिनार किया जा रहा है ना सिर्फ इसराइल की तरफ से बल्कि अमेरिका की तरफ से। अब कोशिश ये होगी कि इस मामले को ठंडा किया जाए, लेकिन अभी के मौजूदा हालात में माना जा रहा है कि नेतन्याहू लगातार अपने बड़े ऑफिशियल्स के साथ बातचीत कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कभी भी इस युद्ध को वो भी एक तरीके का जवाब दे ईरान को। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कोशिश है कि इस तरीके का जवाब ना दिया जाए और इस मामले को यहीं कंट्रोल किया जाए, जैसा लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इशारा भी किया जा रहा है।
0: और अब तक के घटनाक्रम में क्या क्या हुआ, इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि जैसे ही बेरूत में हमले हुए हैं ईरान ने मिसाइलें दागी हैं और उस बीच इसराइल की कार्यवाही शुरू होती, नेतन्याहू से बात की राष्ट्रपति ट्रंप ने, सीधी चेतावनी दी कि अभी डील होने वाली है, कुछ और नहीं होगा। उधर इसराइल ने कहा है कि उसने ईरान के तमाम हमलों को निष्क्रिय कर दिया और जैसे ही हमले हुए तेहरान की सड़कों पर लोग उतर आए, हमले को सेलिब्रेट किया, जश्न हुआ क्योंकि ये लेबनन पर हो रही कार्यवाही का बदला था। उधर लेबनन पर बड़े हमले के बाद ही ईरान की कार्यवाही शुरू हुई है, तो अराक्ची ने लेबनन और ईरान की तस्वीरें पोल। तो बड़ी खबर यह है कि ईरान के हमले के बाद इजरायली सेना भी अलर्ट पर है। आईडीएफ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अब तक ईरान से दागी गई सभी मिसाइलों को रोक लिया गया है, सभी हमले हवा में ही निष्क्रिय कर दिए गए हैं। इजरायल ने साफ किया है कि वो ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान ने चेतावनी दी कि यदि इसराइल हमला करता है तो इस इलाके में मौजूद अमेरिका के सभी बेस ईरान के लेजिटिमेट टारगेट होंगे।
1: और देखिए इसके बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि इसराइल में सायरन और धमाकों के बीच लगातार बड़ी चिंताएं बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच लगातार आप कह सकते हैं आवाजें गूंज रही है, हाइफा तेल अवीव सहित कई शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए नॉर्थ इसराइल के इलाकों के अंदर ईरान ने अटैक किए हैं, माना जा रहा है कि 10 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं, ना सिर्फ ईरान के सेंट्रल इलाके से बल्कि इश्वाहान से, नतान से, इन इलाकों से भी लगातार इसराइल के नॉर्दर्न एरियाज के अंदर बड़े मिसाइल अटैक किए गए। ये वो इसराइल के शहर है जहां पर बड़े अटैक्स ईरान की तरफ से किए गए। हालांकि देखिए इसराइल का दावा है कि उन्होंने सभी अटैक्स को निष्क्रिय कर दिया है।
0: और सायरन गूंजते रहे रात भर, देखे उत्तरी हाइफा समेत इसराइल के अलग अलग शहरों में, ये इंटरसेप्शन की वो तस्वीरें हैं सुमित, ट्रेलर के तौर पर इसे नहीं देखेगा कि ईरान ने अपना ट्रेलर दिखा दिया, और भी तब जब अमेरिका और इसराइल दोनों कह रहे थे कि देखिए हमने तो उनके मिसाइल हमलों को खत्म कर दिया है, उसके बाद भी ईरान ने अपनी ताकत तो दिखा दी हवा में।
1: देखिए बिल्कुल, और आशुतोष आप भी इलाकों में गए हुए हैं, मैं भी इलाकों में गया हूं, ये वो इलाके हैं जो इसराइल के लिए भी बहुत ज्यादा संवेदनशील है, खासतौर पर लेबनन के इलाकों, साउथ लेबनन का इलाका बिल्कुल करीब है, तो ऐसे में ईरान के इसराइल के लिए हमेशा ही चुनौती होती है कि कैसे अपने नॉर्दर्न एरियाज को सिक्योर किया जाए। जितने ज्यादा लगातार अटैक बड़े किए गए थे साउथ इसराइल के अंदर, उससे ज्यादा बड़ा खतरा इस समय नॉर्दर्न इसराइल में बना हुआ है। इसी बीच आईडीएफ की तरफ से भी कई बड़े दावे इस मामले पर किए गए हैं। आईडीएफ की तरफ से यह भी कहा गया कि उन्होंने सभी हमलों को निष्क्रिय भी कर दिया है।
2: לפני זמן קצר משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל. נערכנו לכך. צה"ל ערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צה"ל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה.
0: तो एक तरफ ईरान की मिसाइलें जब इसराइल की ओर बढ़ रही थी, उधर तेहरान की सड़कों पर लोग उतरे थे, जश्न मना रहे थे क्योंकि ये बदले की कार्रवाई थी लेबनन में हो रहे इजरायली हमलों के जवाब में। जब ईरान ने मिसाइलें दागी तो लोग सड़कों पर थे, मुस्तफा खामनेई और ईरान के समर्थन में झंडे लेकर के, हिजबुल्ला के झंडे लेकर के। देखिए उधर आसमान से मिसाइलें गुजर रही हैं और लोग सड़कों पर झंडा लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में हालात भले विस्फोटक हों, लेकिन ईरान की सड़कों पर लोग इस हमले के समर्थन में उतरे।
1: और देखिए, ईरान के हमलों के बाद ईरान के अलग अलग शहरों में जश्न की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन अब इसराइल पर लगातार ईरान के हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बातचीत की। ट्रंप ने कहा कि एक न्यूज एजेंसी को दिए अपने बयान में कहा कि ईरान के हमलों से कोई नुकसान नहीं हुआ है, उम्मीद है कि इसराइल जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, हम ईरान के साथ एक फाइनल डील के बहुत करीब है, अभी जो भी हो रहा है उसकी वजह से यह डील बिगड़ सकती है। ऐसे में उन्होंने देखे बेंजामिन नेतन्याहू को भी रिटेलिएट करने के लिए कहा कि रिटेलिएट ना करें और अपनी कोई जवाबी कार्रवाई को आगे ना बढ़ाए।
0: तो उस न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि नेतन्याहू के पास ईरान के साथ समझौता स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ डील को लेकर सभी फैसले वही करेंगे, नेतन्याहू के पास इस मामले में कोई अधिकार नहीं है। ट्रंप ने साफ किया कि ईरान के ताजा हमलों से समझौते को लेकर उनके फैसले में कोई बदलाव नहीं आया है।

0: और देखिए इसी बीच इजरायली मीडिया ने भी कई दावे किए हैं। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने माना है कि ट्रंप ने उनसे फोन पर बातचीत की है। नेतन्याहू ने यह भी माना है कि ट्रंप ने उनसे अपील की है कि ईरान के हमलों का जवाब ना दिया जाए, यानी कोशिशें की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस युद्ध को रोका जा सके। यहीं पर हमले के बाद ईरान को ट्रंप की चेतावनी भी मिली है। देखिए हमले के बाद ईरान को ट्रंप ने चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसे हमले होते रहे तो आपने जितनी मिसाइलें दागी हैं उतनी काफी है। एक तरीके से उन्हें बता दिया गया कि आपने जितना अटैक करना था आपने कर लिया, इसके आगे ईरान आगे ना बढ़े।
1: और उसकी बड़ी वजह यह है कि ट्रंप ने जब यह कहा कि ईरान की वार्ता को अब टेबल पर वापस आना होगा, बातचीत करनी होगी, ट्रंप ने कहा कि ईरान ने जितनी मिसाइलें दागी हैं वो अब पर्याप्त है। ट्रंप ने ईरान को यह भी चेतावनी दी कि अमेरिका के सेनाएं अलर्ट हैं। सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी करते हुए कि हम यहां हैं और बिल्कुल तैयार हैं। तो बेहद संभव है कि ईरान को अब समझौते की टेबल पर वापस लौटना चाहिए, डील जल्द से जल्द फाइनल हो। और ट्रंप की लगातार कोशिश है कि हालात को तनाव से खत्म करने के लिए सबसे पहले ईरान और अमेरिका के बीच डील हो जाए, लेकिन इस डील के बीच इजराइल के हमले ने हालात को एक बार फिर तनाव के मुहाने पर पहुंचा दिया है। तो एक चीज तो कम से कम सुनिप जहां तक यह तय है कि ट्रंप वो फोन घुमा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम जब कह रहे हैं कि आपको युद्ध रोकना है, युद्ध रोकने के बजाय आप मिसाइल के हमले कर रहे हैं, और जहां तक अगर हमला था कि आपको कोवर्ट ऑपरेशन करने हिजबुल्ला के खिलाफ, आप बॉम्बिंग कैसे कर सकते हैं, आप बॉम्बिंग कैसे कर रहे हैं बेरूत में जाकर के, टायरे में जाकर के, क्या इसने अब स्थिति को और खराब कर दिया है?
0: बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, अगर आशुतोष आप इन सारी चीजों पर गौर करें तो ये आपको नजर आएगा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत ना तो ईरान मानने को तैयार है ना ही इसराइल मानने को तैयार है। इसराइल ने अब तक ऑपरेशन नहीं रोके, लगातार सीजफायर की कितनी बड़ी बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई, बात उन्होंने इससे पहले भी ऐलान किया था कि मेरी नेतन्याहू से बातचीत हो गई है और मैंने कहा है कि अब वो अटैक नहीं करेंगे, वो वापस चले जाएं। हुआ क्या, इसराइल ने अभी अटैक जारी रखे, यहां तक कि उन्होंने साउथ लेबनन छोड़िए सीधा बेरूत के ऊपर बड़े अटैक्स कर दिए। और शायद यही थी ईरान की, आप कह सकते हैं सब्र का बांध जो कहते हैं ना टूटता है, तो वो इसी वजह से, क्योंकि ईरान को ये डर है कि अगर वो अभी रिटेलिएट नहीं करता, अभी कार्रवाई नहीं करता, तो फिर हिजबुल्ला की तरफ उनका विश्वास और ज्यादा कम हो जाता। और शायद एक तरीके के वार्निंग शॉट्स हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिखाने के लिए है, ना सिर्फ इसराइल को बल्कि अमेरिका को भी, देखिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमको भी इस जंग के मैदान में उतरना पड़ेगा हिजबुल्ला के सपोर्ट में, क्योंकि हिजबुल्ला एक तरीके से पूरी तरह आप मान सकते हैं कि ईरान का समर्थक तो है ही, प्रॉक्सी तो है ही, बल्कि एक तरीके का आप कह सकते हैं कि उसको रिप्रेजेंट करता है लेबनन के इलाकों में और सीधा मुकाबला करने के लिए खासतौर पर इसराइल से। तो ये बड़ी चीज़
1: संभव ये है कि जो नेतन्याहू का रिमोट जो है ना ट्रंप के हाथ में, कितना मुमकिन है कि उस रिमोट के रेडार से दूर जाए और खुद फैसले ले और इसराइल इस पर जाकर के एस्केलेशन लैडर में आगे बढ़े, या वाकई ट्रंप की चेतावनी का असर इसराइल पर होगा?
0: देखिए वैसे तो अगर आप पैटर्न को देखें, कभी भी आप इसराइल की कार्रवाई को देखें, उनकी सैन्य कार्रवाई के तरीकों को देखें, इसराइल अमेरिका छोड़िए दुनिया के किसी देश की नहीं मानता, वो सिर्फ एक ही चीज जानता है, वो मानता है अपनी सिक्योरिटी को लेकर। वो अपनी आप कह सकते हैं कि अपने जब तक ऑब्जेक्टिव को क्लियर नहीं कर लेता तब तक इसराइल पीछे नहीं हटता। और शायद इसी वजह से ये जो बार बार पोस्चर दिखाए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से, ये संकेत है कि इसराइल चाहता है कि लितानी रिवर के उस तरफ यानी दाहिया के आसपास के इलाकों तक सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्ला आकर बैठ जाए, बाकी इलाकों में कंट्रोल सीधे तौर पर इसराइल का बना रहे।
1: ठीक है, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: क्या आपको बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है? क्या बार बार चिंताएं आपको परेशान करती हैं? मन चलता ही रहता है? क्या हार्मोन्स की समस्या से आप जूझ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रमा आपको समस्याएं दे रहा हो? कौन सी हैं चंद्रमा की बीमारियां और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
4: Hockey Talk.

0: बंगाल में अब मदरसों की हकीकत कागजों पर उतरेगी। कौन चला रहा है, किस नियम के तहत चला रहा है और किसके पास क्या दस्तावेज है। शुभेंदु सरकार ने जिला प्रशासन को 5 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बंगाल में मदरसों के सर्वे के लिए 8 सवाल तैयार किए गए हैं। मदरसे की लोकेशन, स्थापना का वर्ष, रजिस्ट्रेशन की जानकारी, वैध दस्तावेजों की स्थिति, छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की जानकारी, आवासीय या गैर आवासीय, सरकारी सहायता प्राप्त या निजी, पढ़ाए जाने वाले कोर्स। क्योंकि बंगाल में मदरसे सिर्फ शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि दशकों से राजनीतिक बहस का हिस्सा भी रहे हैं। बंगाल में मदरसे बरसों से वोट बैंक, पहचान और तुष्टिकरण की बहस के केंद्र में रहा है। चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, महाजंगल राज के साथ इन मुद्दों को बीजेपी ने जमकर उछाला, ममता सरकार को घेरा, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को खूब मिला। पहली बार बीजेपी की बंगाल में सरकार बन पाई। अब जब मदरसों का राज्यव्यापी सर्वे शुरू हुआ है तो बीजेपी इसे अपने पुराने राजनीतिक अभियान से जोड़कर पेश कर सकती है और कह सकती है कि जिन सवालों को उसकी पार्टी चुनावी मंचों से उठाती रही, आज उन्हीं सवालों के जवाब सरकार खुद तलाश रही है। बीजेपी दावा करती है कि पश्चिम बंगाल में 2011 से पहले 2100 मदरसे थे, 2011 से 2026 बांग्लादेश सीमा के पास 35,000 से ज्यादा वैध और अवैध मदरसे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई को सीएम पद की शपथ ली थी। 11 मई को अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में ही भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को 121 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंपी और 45 दिनों के भीतर 600 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने का फैसला किया। स्कूलों की असेंबली में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य किया, गो हत्या पर सख्ती दिखाई, इमामों और पुरोहितों। ये सर्वे ऐसे समय में हो रहा है जब ममता बनर्जी सरकार से बाहर है, उनकी पार्टी तृणमूल तृण हो गई है, रोज टीएमसी में विवाद बढ़ रहे हैं और उनके वोट बैंक पर बीजेपी ने सीधा हमला किया है। यानी बंगाल में अब मदरसों की फाइलें खुलेंगी, लेकिन इसके साथ ही खुल जाएगी राजनीति की एक नई किताब। क्योंकि जिस राज्य में धर्म और राजनीति की रेखाएं अक्सर एक दूसरे को काटती रही हूं, वहां मदरसों का सर्वे सिर्फ प्रशासनिक कवायद नहीं माना जाएगा बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे। आज तक ब्यूरो।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

इसराइल के खिलाफ ईरान ने किया जंग का आगाज। लेबनान पर हमलों के विरोध में मिसाइल ड्रोन अटैक, कहा जवाबी वार तो विनाशकारी होंगे नतीजे। इसराइल का दावा, सभी हमले नाकाम किए गए। ईरान को अमेरिका की दो टूक, जितनी मिसाइलें दागी उतना काफी है। अब बातचीत की टेबल पर लौटे ट्रंप ने इसराइल को जवाबी हमले से रोका, बोले नेतन्याहू के पास समझौता स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज की बड़ी चिंतन मंथन बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में बढ़ी दरार, विजयन पर राहुल गांधी की टिप्पणी से लेफ्ट आग बबूला, खड़गे को लिखा खत, दिल्ली में केजरीवाल से मिली ममता। बंगाल में नेता विपक्ष ऋतुव्रत बैनर्जी का आज तक पर बड़ा बयान, कहा कई टीएमसी सांसदों से भी हो रही है बात, 61 विधायक हमारे साथ, पार्टी की सलाहकार बने ममता। जयपुर में आज नूरानी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर के तनाव, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, 3,000 से ज्यादा जवान तैनात, रात 12 बजे से इंटरनेट को बंद किया गया।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के अंक में हम बात करेंगे कि चंद्रमा आपको जीवन में किस किस तरह की बीमारियां देते हैं और अगर चंद्रमा की बीमारियों से आप परेशान हैं तो उन बीमारियों को दूर करने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 जून 2026, दिन सोमवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, प्रातः 9:09 तक चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं चंद्रमा के रोगों के बारे में और चंद्रमा के रोगों को बेहतर करने के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा किस तरह के रोगों से, किस तरह की बीमारियों से संबंध रखता है। देखिए, हमारा शरीर जल तत्व से बना हुआ है। लगभग 70% हिस्सा हमारे शरीर का जल है और ये जल तत्व चंद्रमा से नियंत्रित होता है। अगर शरीर में जल तत्व की समस्या हो जाए तो विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे मानसिक रोग, मेंटल डिप्रेशन, कोल्ड कफ की समस्या और हार्मोन्स की समस्या परेशान करती है। खान पान, जीवनचर्या और अलग अलग रंगों के प्रयोग से हम चंद्रमा को मजबूत भी कर सकते हैं और तमाम चंद्रमा की बीमारियों से छुटकारा

लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। राशि,

काम पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाहन का सुख मिलेगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

समस्याएं समाप्त होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार में शांति रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, वैसे हार्मोन्स के लिए बुध की शुक्र की भूमिका भी होती है, लेकिन चंद्रमा भी हार्मोन्स में बड़ी भूमिका निभाता है। और अगर महिलाओं के हार्मोन्स की बात करें तो उसमें चंद्र और मंगल की भूमिका ज्यादा होती है। तो अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोन्स की समस्या है, तो क्या करेंगे? रात में पानी में बादाम भिगा लीजिए और इन बादामों को सुबह उठ करके ब्रश करने के बाद खाइएगा। सोमवार के दिन उपवास रखिए और उपवास में केवल जल पीजिएगा या फल खाइएगा। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा चांदी की चेन में गले में धारण कर लीजिएगा सोमवार की रात को। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपके हार्मोन्स की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में सुधार होगा। अगर कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में है, खराब स्थिति में है, तो मानसिक तनाव होना, डिप्रेशन होना ज्यादा हो जाता है। तो अगर चंद्र की वजह से आपको मानसिक तनाव या डिप्रेशन हो रहा है तो क्या उपाय करेंगे? महीने में दो एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास जरूर रखिएगा। और जब आप एकादशी का उपवास रखेंगे तो उस दिन केवल लिक्विड डाइट, केवल जल का आहार ग्रहण करेंगे। सामान्य जीवन में, नॉर्मल लाइफ में, अपने भोजन में दूध और दूध से बनी चीजें,

दूध, दही, छाछ, पनीर, क्रीम इनका प्रयोग करें और रोज रात में कम से कम 9-10 बजे के बाद जब चंद्रमा उदय हो जाए तब बालकनी में बैठकर जहां से चंद्रमा दिखे या छत पर बैठ करके ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप करिएगा। चंद्रमा की बीमारियों पर और उसके समाधान पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, काफी व्यस्तता दिख रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, संपत्ति की समस्या हल होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। अनाज का दान अगर कर दें आज तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंग।

काम पूरे होंगे, धन की स्थिति में सुधार होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अनुराग जी ने हमें लिखा है, बेंगलोर से लिखते हैं। अनुराग जी की जन्म की तारीख है 1 मार्च 1981, सुबह के 10:35, जन्म स्थान है लखनऊ। मेल लिखते हैं बेंगलोर से। अनुराग जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार करना चाहता हूं, तो क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर रहेगा? अनुराग जी, आप बिल्कुल इस समय व्यापार में जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नौकरी मत छोड़िए, नौकरी करते रहिए। नौकरी के साथ साइड में बिजनेस करिए, क्योंकि अभी बिजनेस में तरक्की पाने में 2 साल लगेंगे। तो आप बिजनेस आरंभ कर लें और नौकरी के साथ साइड में अपनी पत्नी, अपनी माता के नाम से अगर बिजनेस कर लें और उसको देखते रहें तो नौकरी और व्यवसाय दोनों तरफ से आपको फायदा होगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना आपको धारण कर लेना चाहिए। देखिए, चंद्रमा अगर कुंडली में गड़बड़ हो, चंद्र का संबंध खास तौर से अगर शनि के साथ बने, निगेटिव संबंध बने, तो ये एपिलेप्सी की, मिर्गी के दौरों की समस्या दे सकता है। अगर ये समस्या हो गई है तो डॉक्टर का इलाज तो करेंगे ही, डॉक्टर की दवाई तो खाएंगे ही, चंद्र के लिए भी उपाय करिएगा। रोज प्रातः जल में केवड़ा जल डाल करके स्नान करिएगा। एक बार में ढेर सारा खाना मत खाइएगा। रात को देर तक जगने से और सुबह देर तक सोने से बचिएगा। हर महीने में 1 बार पूर्णिमा आती है और 1 बार अमावस्या आती है, तो हर पूर्णिमा को, हर अमावस्या को उपवास रखिएगा। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय, इस मंत्र का सुबह और शाम जप करिएगा। देखिए, चंद्रमा अगर गड़बड़ हो, पाप ग्रहों से प्रभावित हो, खासतौर से राहु या केतु से, तो व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है, चिड़चिड़ाहट आती है, घबराहट या बेचैनी की समस्या होती है। अगर ये समस्या आपके साथ है तो आप क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे जल में केवड़ा जल थोड़ा सा डालकर उस जल से स्नान करें। जहां तक हो सके अपने भोजन में तीखी चीजों का प्रयोग ना करें। शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, इनसे ज्यादा से ज्यादा परहेज करें। अगर आप ये उपाय करें तो आपका क्रोध कम होगा, तनाव, चिंता, बेचैनी, घबराहट, ये सब समस्याएं
दूर हो जाएंगी। चंद्रमा की समस्याओं पर चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

सावधानी बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, धन खर्च बढ़ा हुआ रहेगा, वाहन आज सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। अगर किसी फल का आज दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, चंद्रमा की और भी बीमारियां हो सकती हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं, तो और किन तरीकों से चंद्रमा की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? दिन में पानी आपको ज्यादा पीना चाहिए और रात के समय में पानी कम पीना चाहिए। रात में भारी भोजन करने से, गरिष्ठ भोजन करने से आपको बचना चाहिए। जितना संभव हो नियमित रूप से शिव जी की उपासना करें, नमः शिवाय का जप करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और चांदी किसी न किसी रूप में जरूर धारण करें। चांदी का छल्ला, चांदी की ब्रेसलेट, चांदी की चेन, चांदी का कड़ा, ये आप पहन सकते हैं। और महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा पर केवल लिक्विड लेकर के, केवल जलीय आहार लेकर के आप पूर्णिमा पर उपवास रख सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन कौन से काम करें, कौन से काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाणी पर नियंत्रण रखें, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा

होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अनाज का अगर आज दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

में बाधा आ सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, संयम और शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं।

पहनने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन पैरों में सोना या पीतल पहनना मना है। ऐसा क्यों? देखिए, ज्यादातर महिलाएं पैरों में चांदी की पायल और बिछिया धारण करती हैं अपने अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए। तो चांदी को पैर में पहनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी महिला पहन सकती है। जहां तक सोने और पीतल की बात है, ये दोनों बृहस्पति की धातु है और बृहस्पति देव गुरु हैं, अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। तो सोने और पीतल से बृहस्पति का संबंध होने की वजह से पैरों में सोने की पायल या सोने की बिछिया आदि पहनना मना किया गया है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं।

नंबर दो यात्रा के योग बन रहे हैं, नंबर तीन धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, नंबर चार करियर में कुछ बदलाव होगा, नंबर पांच काम की अधिकता रहेगी, नंबर छह धन लाभ के योग बन रहे हैं, नंबर सात यात्रा हो सकती है, नंबर आठ रुके हुए काम पूरे होंगे, और नंबर नौ स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात को 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न निरंजन जी ने लिखा है। निरंजन जी जोधपुर राजस्थान से लिखते हैं, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी बेटी की जन्म की तारीख है 18 जुलाई 1996, रात में 11 बजे, जन्म स्थान है जोधपुर। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती है, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और जो कुंडली मैंने अपने बेटी के लिए भेजी है क्या वो मैच कर रही है। इन्होंने लड़के और लड़की दोनों की कुंडली भेजी है। देखिए, पहली बात ये है कि ये जो मैच मेकिंग है वो बहुत एवरेज है, उसको बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे, तो सामान्य तरीके से तो शादी मिल जाती है। और कुंडली आपकी बेटी की कहती है कि वो जहां विवाह करना चाहती हैं वहीं विवाह करेंगी इस साल के अंत तक, तो उसको लेके परेशान मत होइए, अपनी बेटी को सपोर्ट करिए और उसकी चीजों को समझने का प्रयास करिए। आपकी बेटी का वैवाहिक जीवन बेहतर हो, स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए उनको एक मोती बनवा के पहना दें।

अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से जाएं कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, शक्कर खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है तो शिव जी को जल चढ़ाने के बाद जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि

कुंभ राशि वालों के लिए जीवन में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी, करियर अच्छा रहेगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि वालों के लिए, धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि वालों को, सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। इस समय अधिक मास चल रहा है तो इस समय कोई भी नया काम शुरू मत करिएगा। आज जल और फल का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: तो बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से। इसराइल ने पलटवार कर दिया है। तेहरान, बगदाद, बेरूत पर एक साथ अटैक हुआ है। इराक की राजधानी बगदाद, लेबनन की राजधानी बेरूत और ईरान की राजधानी तेहरान पर एक साथ पलटवार किया है।
1: बिल्कुल, आपको बता दें कि तेज धमाकों की आवाज लगातार ईरान के कई इलाकों में सुनाई गई और ईरान ने हमला किया और अब इसराइल ने पलटवार भी किया। इसराइल की तरफ से भी पलटवार किया गया। बताया जा रहा है कि इसराइल ने कई इलाकों के अंदर, खासतौर पर ना सिर्फ सेंट्रल ईरान के अंदर बल्कि वेस्टर्न ईरान में भी बड़े अटैक किए, जिसमें इस्फहान, नतांज और आप कैसे तबरीज का इलाका, तीन महत्वपूर्ण इलाके हैं जिनके ऊपर सीधे तौर पर इसराइल की तरफ से ये अटैक किए गए हैं।
0: ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है, इस्फहान में हमला हुआ है। पूरा तेहरान धमाकों की आवाज से गूंज रहा है। इसराइल पर जिस तरह ईरान ने मिसाइलें बरसाई, उसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की, लेकिन ऐसा लगता है कि इसराइल किसी के सुनने के मूड में नहीं है और ट्रंप की तो कोई सुनना नहीं चाहता। और उसके बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की है। ईरान ने चेतावनी दी थी अगर जवाबी कार्रवाई हुई तो नतीजे गंभीर होंगे। तो क्या अब महायुद्ध 2.0 की शुरुआत हो चुकी है? देखिए तस्वीरें आने लगी ईरान के अलग अलग इलाकों से जहां पर हमले हुए हैं।
1: और देखिए तस्वीरों के साथ साथ हम आपको ये जानकारी भी दे रहे हैं कि देखिए कौन कौन से इलाकों में इसराइल की तरफ से लगातार ईरान पर अटैक किए गए हैं। वो इलाके हैं इस्फहान, तबरीज और आप कह सकते हैं तेहरान के आसपास भी इस तरीके के अटैक देखे गए हैं। ये इसलिए क्योंकि जहां जहां से ईरान ने इसराइल पर अटैक किए थे उसके नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर, उसके नॉर्दर्न इलाकों पर, उन्हीं इलाकों के ऊपर, उन्हीं कमांडर कंट्रोल सेंटर पर इसराइल की तरफ से रिटेलिएट किया। इसकी जानकारी खुद इसराइल के सेना की तरफ से दी गई कि उसने इन तीन स्पेसिफिक एरियाज को टारगेट किया है जिसमें इस्फहान, तबरीज और नतांज के इलाके मौजूद हैं। देखिए आपको ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें हैं जो ईरान के अलग अलग इलाकों में आ रही है। इसके अलावा तेहरान में मौजूद मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी बड़े अटैक किए गए हैं। ये इसलिए क्योंकि लगातार इन इलाकों में भी जो एयर डिफेंस यूनिट्स हैं या फिर उनकी जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसको भी इसराइल ने टारगेट किया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों के साथ ये भी जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन से इलाकों पर इसराइल की तरफ से अटैक किए गए। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया था कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से लंबी बात की और उनको एक कोशिश किया मनाने की कि वो रिटेलिएट ना करे, अटैक ना करे, लेकिन इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की है जिस थोड़ी देर पहले इसकी आधिकारिक जानकारी खुद इजरायली आर्मी की तरफ से दी गई है।
0: तो सबसे पहले आज तक पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे ईरान के हमलों की जवाबी कार्रवाई, इस समय हमले जो किए जा रहे हैं, अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, ये अंदाजा तो कम से कम अंदेशा भी नहीं था कि ट्रंप नेतन्याहू को चेतावनी देंगे, ईरान कार्रवाई करेगा और उसके बाद वो होगा जो 100 दिनों बाद होने की संभावना थी। नहीं, बात तो शांति वार्ता की हो रही थी। इस समय जो अब स्थिति आगे बढ़ रही है, क्या ये 2.0 लार्जर वॉर एस्केलेशन जिसे कहते हैं, हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं?
2: बिल्कुल आशुतोष, उसी और दिशाएं जो है वो दर्शा रही हैं और जो हालात अब उभर रहे हैं वो साफ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है अब थोड़ी देर बाद ईरान की तरफ से दूसरा वेव ऑफ मिसाइल्स जो है वो इसराइल की तरफ दागा जाएगा। न सिर्फ इसराइल की तरफ बल्कि साथ ही साथ अभी तक इस 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध में जो बातें ईरान ने की है या जो कहे हम धमकियां उन्होंने दी है वो उस पर खड़े उतरे हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी रेड लाइन जो है दक्षिणी लेबनान का बीरूत इलाका है, अगर दहिया में इसराइल की तरफ से हमले नहीं रुके तो वो कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने कल शाम को वही किया और अब ये माना जा रहा था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तुरंत मैदान में आए थे, उन्होंने काफी कोशिश की थी, कई सारे बयान दिए कि इसराइल रुके, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात भी की जो आपने कहा, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं माना। उन्होंने जवाबी कार्रवाई ईरान के खिलाफ की, तीन शहरों पर जो है एरियल स्ट्राइक्स इसराइल की तरफ से हुए, चाहे इस्फियां हो, चाहे फिर वो तेहरान हो या बंदर अब्बास हो, तीनों जगहों पर जो है वायुसेना जो इसराइल की है उनकी तरफ से कई सारे ठिकानों पर, खासतौर से सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए।
1: लेकिन एक बात बताइए अशरफ, आप तो इन चीजों को समझते हैं, हमने 2025 में भी देखा था, फरवरी 2026 के बाद भी इन परिस्थितियों को देखा। अभी जो दोनों तरफ से अटैक करने के बाद जो खबरें दी गई या जो इनपुट दिए गए उसमें देखिए ईरान ने कहा, ईरान ने स्पेसिफिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ के इलाकों पर अटैक किए, वहीं जब इसराइल ने इस तरीके से रिटेलिएट किया तो इसराइल की तरफ से कहा गया कि हमने ईरान के एयर स्पेस को वॉलेट नहीं किया, हमने इराक की तरफ से लगातार अटैक किया या फिर हमारे जो शिप्स थे उधर से मिसाइल लॉन्च की गई। तो क्या आप इसको एक कंट्रोल्ड वे के अंदर अटैक देखते हैं या फिर एक वार्निंग शॉट है कि देखिए आप अटैक करेंगे तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे, लेकिन एक सीमित दायरे के अंदर रहकर?
2: बिल्कुल सुमित, सीमित दायरे के अंदर ही जो है ये हमले दोनों तरफ से किए गए, क्योंकि अगर ईरान चाहता तो तेल अवीव पे भी वो हमला कर सकता था, लेकिन उसने नॉर्दर्न इलाके के जो डेविड एयरबेस है उस पर हमला इसलिए किया क्योंकि वहां से ही दक्षिणी लेबनान में भी और बीरूत पर भी जो है हमले लॉन्च हो रहे थे इसराइल की तरफ से, और इसराइल की जो जवाबी कार्रवाई है वो भी सीमित रही है उन तीन जगहों पर जहां से बैलिस्टिक मिसाइल दागने का जो है उनका आरोप है। लेकिन अभी भी दुनिया भर में जबरदस्त पूछें चल रही हैं कि इसको यहां पर ही थाम दिया जाए। अब दूसरा कदम जो है वो ईरान का देखना होगा। ईरान ने कल साफ किया कि अगर उन पर जवाबी कार्रवाई हुई वो इससे भी गंभीर जो है उसकी जवाबी कार्रवाई या रिटेलिएट करेंगे। तो अगर ईरान की तरफ से कोई फ्रेश वेव ऑफ अटैक्स शुरू होता है इसराइल के खिलाफ तो फिर भी तब तक सीमित माना जाएगा, जवाबी कार्रवाई मानी जाएगी। लेकिन जो ईरान ने कहा है कि हम इसराइल के साथ साथ अमेरिका के ठिकानों यानी खाड़ी के देशों में अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाएंगे।
0: ठीक है अशरफ, आप बने रहे हमारे साथ, एक और बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि हमले के लिए युद्धपोत से मिसाइलें दागी गई हैं और ये मिसाइलें इराक के ऊपर से होते हुए ईरान तक पहुंची हैं। ईरानी मीडिया का यह भी दावा है कि इसराइल ने भूमध्य सागर से किसी युद्धपोत का इस्तेमाल किया है ईरान पर हमले के लिए और ये जो बॉम्बिंग हुई है ये इराक के ऊपर से होते हुए ईरान में आई है जहां पर भूमध्य सागर में उसका जहाजी बेड़ा जो जंगी बेड़ा है वो मौजूद है। यानी ईरान की हवाई सीमा का उल्लंघन नहीं हुआ है सुमित, ये कंट्रोल वे में इसीलिए देखा जा सकता है कि वो अपने रिफ्यूलर लेकर के और पूरा बेड़ा लेकर के घुसता था। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है कि IRGC ने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है इजरायली पलटवार पर। IRGC का यह बयान यह आया है कि इजरायल ने भी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान पर हमला किया गया। इसके पार हमने देखा कि कई मिसाइलें लेकर के फाइटर जेट स्क्रैम्बल होते थे लेकिन इस बार बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल सुमित।
1: बिल्कुल, और देखिए ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि IRGC ने जो हमलों की पुष्टि की थी इससे थोड़ी देर पहले, तब भी IRGC ने कहा था कि 10 अलग अलग इलाकों से ये मिसाइलें नॉर्दर्न इसराइल पर दागी गई हैं, ये अटैक किए गए हैं, और उसी के बाद अब माना जा रहा है कि इसराइल ने भी उसी तरीके का पलटवार का जवाब देने की कोशिश की है। लेकिन आशुतोष, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों तरफ से जो बयान आधिकारिक रूप से आ रहे हैं, चाहे मीडिया की तरफ से या फिर IRGC की तरफ से या IDF की तरफ से, वो ये दिखा रहे हैं कि देखिए हम कंट्रोल एंड कमाया बिल्कुल कंट्रोल तरीके से लगातार अटैक कर रहे हैं। अभी भी जो कहा गया इसराइल की तरफ से या फिर ईरानी मीडिया की तरफ से कि हमारे एयर स्पेस के अंदर कोई वॉयलेशन नहीं हुआ, लेकिन इराक की तरफ से एयरक्राफ्ट ने लगातार ये मिसाइलें दागी हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सी के अंदर जो मौजूद उनके जो छोटे बोट्स या फिर उनके शिप हैं वहां से मिसाइलें दागी गई हैं, तो आप मान के चलिए एक तरीके का पोस्चर दिखाया जा रहा है कि देखिए अभी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और शायद इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जब नेतन्याहू से बात की होगी तो समझाने की कोशिश की होगी कि देखिए अटैक अगर आपको करना, अगर आपको जवाबी कार्रवाई करनी है तो आप कम से कम उनके एयर स्पेस का वॉयलेशन ना करें, इस परिस्थिति को आप एस्केलेट ना करें, इसको आगे और ना ले जाए, सिर्फ एक पोस्चर अटैक करें, और शायद उसी को हम देख पा रहे हैं। लेकिन अब भी सवाल यह खड़ा होता है आशुतोष कि क्या ईरान का जवाब अब सिर्फ नॉर्थ एरिया के अंदर यानी नॉर्दर्न इसराइल में होगा या वो भी इसराइल की तरह उसकी राजधानी यानी तेल अवीव, आप कैसे जेरूसलम पर तेल अवीव के आसपास लगातार अटैक करेगा, ये भी एक बड़ी बातें हैं जो इसका
0: जवाब ले लेते हैं। अशरफ हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। अशरफ, अगर मिसाइलों का इस्तेमाल इसराइल ने किया है, उसने भूमध्य सागर से ही अपने किसी बेड़े का इस्तेमाल करके हमला किया है, क्या ईरान की ओर से रिटेलिएशन होगा? हम माने यहां ये रुक जाएगा, ईरान ने किया, इसराइल ने किया, या इसराइल की इस कार्रवाई का जवाब अब ईरान देगा?
2: कहना कुछ मुश्किल है क्योंकि जैसे मैंने आपको आशुतोष कहा कि दुनिया में जितने भी मध्यस्थ देश थे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कतर हो, चाहे फिर टर्किया हो, वो चाहते नहीं है कि ये जो है एस्केलेट जो है युद्ध हो जाए। युद्ध विराम को लेकर अमेरिका की बड़ी भूमिका है, उनका भी साफ कहना है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ कर दिया कि बहुत नज़दीक हम डील में हैं ईरान के साथ, और अभी तक निगाहें जो हैं वो पूरी तरह से अमेरिका पर इस बात को लेकर है। एक तो उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को साफ आदेश दिया था कि वो कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई जो है वो ना करे ईरान के खिलाफ, लेकिन इसराइल ने नहीं माना। अब कहीं ना कहीं ये युद्ध जो है इसराइल और ईरान के बीच, और ये मजबूरी है इसराइल की। इसराइल डे वन से जब से सीज फायर हुआ था वो नहीं चाहता था कि कोई बातचीत की प्रक्रिया अमेरिका और ईरान के बीच आगे बढ़े, कोई समझौता हो जाए, क्योंकि अक्टूबर में इसराइल में चुनाव होने हैं, बेंजामिन नेतन्याहू की साख दांव पर है, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को किसी भी सूरत में खत्म करना चाहते हैं, वो इस जंग से निकलना चाहते हैं। तो अब ये देखना होगा कि अगला जो बयान डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति का होगा वो क्या होगा, क्या वो सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू को अकेले छोड़ते हैं या फिर कोई बोल्ड जो है बयान देते हैं कि हमें जो शायद उनके लिए करना बहुत कम संभव है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर हम IRGC का इतिहास देखें, खासतौर से इस युद्ध में उन्होंने कल ही ये साफ किया था, अगर रिटिलेट हुआ हमारी कार्रवाई की जवाब इसराइल ने दिया तो हम भी करेंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी
0: और इसीलिए अब उम्मीद ये की जा सकती है कि कार्रवाई को कहीं रोके जाए, क्योंकि बातचीत का समय और अगर तनाव की स्थिति होती है तो वैश्विक संकट और बढ़ेगा। इस पूरी खबर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।

0: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
1: Employers don't hire diplomas, they hire skills. That's why every WGU technology degree is built to prove what you can do. You'll earn industry-recognized certifications at no extra cost, work through hands-on projects mapped to real roles, and build a portfolio that shows your ability. Flexible pacing means you can move through coursework as soon as you show you've mastered it. And when you finish, you'll have a degree plus credentials employers recognize. Because in tech, ability matters, and WGU helps you show it. Learn more at WGU.edu.
2: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.
4: आगे आगे,
5: अरे उधर
4: उधर, करेक्ट करेक्ट.
6: मिल गया.
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
8: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स. ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है. पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें.
9: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
8: सिंह जैसी
10: शक्ति मुझ में.
11: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.

0: इन एसोसिएशन विद
1: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
0: हिंट, बड़े आराम से
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
0: विमल, बोलो जुबा केसरी।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूँ जहाँ पर ये आग लगी।
4: मैं आपको टॉप एंगल से एक तस्वीर दिखाता हूँ और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है।
5: यहाँ पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था।
6: ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है।
4: 20 लोगों की जान चली गई। और देखिए, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके, तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहाँ से नहीं दिखाएंगे।

0: Ya Allah.
1: No, no.
2: अमेरिका ईरान के बीच बीते कुछ दिनों की शांति एक बार फिर धमाकों के शोर में भंग होती दिख रही है। एक बार फिर अमेरिका ईरान में बारूदी तनाव की स्थिति बन रही है। एक बार फिर हॉर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने, दोनों ओर से हुए हमलों के बाद टकराव बढ़ती दिख रही है। दरअसल ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज के पास चेतावनी के तौर पर फायरिंग की। दावा है कि अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की तैनाती में कुछ हरकत के जवाब में ईरान की ओर से गोलियां चलाई गयी। दूसरी तरफ एक अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि ईरान ने हॉर्मुज की ओर कई ड्रोन दागे जिनको तबाह कर दिया गया। दोनों ओर से हुई कार्रवाई ने एक बार फिर समुद्री मोर्चे पर दोनों देशों के बीच बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि एक दिन पहले पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पसोपेश में डाल दिया। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता रहे। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। हम आपको बता दें कि बहरीन में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। अपने सहयोगी देशों पर ईरान के हमले से अमेरिका बौखला गया है। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोला। ईरान के सर्विलांस रेडार सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया। ईरान के रेडार सेंटर पर हमले का वीडियो भी अमेरिका ने जारी किया। अमेरिका का कहना है कि पहले ईरान ने हमला किया था जिसके जवाब में उसके रेडार सर्विलांस टावर को उड़ा दिया गया। अमेरिकी सेना ने समुद्री हमलों से बचाव के लिए गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित ईरानी तटीय निगरानी रडार को ध्वस्त किया। इस हमले की तपिश अभी खत्म नहीं हुई थी कि अब हॉर्मुज पर नया मोर्चा खुल गया है, जिससे दोनों देशों में जंग का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

बंगाल में अब मदरसों की हकीकत कागजों पर उतरेगी। कौन चला रहा है, किस नियम के तहत चला रहा है और किसके पास क्या दस्तावेज है। शुभेंदु सरकार ने जिला प्रशासन को 5 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बंगाल में मदरसों के सर्वे के लिए 8 सवाल तैयार किए गए हैं। मदरसे की लोकेशन, स्थापना का वर्ष, रजिस्ट्रेशन की जानकारी, वैध दस्तावेजों की स्थिति, छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की जानकारी, आवासीय या गैर आवासीय, सरकारी सहायता प्राप्त या निजी, पढ़ाए जाने वाले कोर्स। क्योंकि बंगाल में मदरसे सिर्फ शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि दशकों से राजनीतिक बहस का हिस्सा भी रहे हैं। बंगाल में मदरसे बरसों से वोट बैंक, पहचान और तुष्टिकरण की बहस के केंद्र में रहा है। चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, महाजंगल राज के साथ इन मुद्दों को बीजेपी ने जमकर उछाला, ममता सरकार को घेरा, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को खूब मिला। पहली बार बीजेपी की बंगाल में सरकार बन पाई। अब जब मदरसों का राज्यव्यापी सर्वे शुरू हुआ है तो बीजेपी इसे अपने पुराने राजनीतिक अभियान से जोड़कर पेश कर सकती है और कह सकती है कि जिन सवालों को उसकी पार्टी चुनावी मंचों से उठाती रही, आज उन्हीं सवालों के जवाब सरकार खुद तलाश रही है। बीजेपी दावा करती है कि पश्चिम बंगाल में 2011 से पहले 2100 मदरसे थे, 2011 से 2026 बांग्लादेश सीमा के पास 35,000 से ज्यादा वैध और अवैध मदरसे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई को सीएम पद की शपथ ली थी। 11 मई को अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में ही भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को 121 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंपी और 45 दिनों के भीतर 600 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने का फैसला किया। स्कूलों की असेंबली में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य किया, गो हत्या पर सख्ती दिखाई, इमामों और पुरोहितों। ये सर्वे ऐसे समय में हो रहा है जब ममता बनर्जी सरकार से बाहर है, उनकी पार्टी तृणमूल तृण हो गई है, रोज टीएमसी में विवाद बढ़ रहे हैं और उनके वोट बैंक पर बीजेपी ने सीधा हमला किया है। यानी बंगाल में अब मदरसों की फाइलें खुलेंगी, लेकिन इसके साथ ही खुल जाएगी राजनीति की एक नई किताब। क्योंकि जिस राज्य में धर्म और राजनीति की रेखाएं अक्सर एक दूसरे को काटती रही हूं, वहां मदरसों का सर्वे सिर्फ प्रशासनिक कवायद नहीं माना जाएगा बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे। आज तक ब्यूरो।

0: सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर महंगाई का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर महंगाई का एक ऐसा चौतरफा हमला हुआ है जिसने हर घर के बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। दरअसल थोक महंगाई दर के 8% के पार पहुंचने से हर सामान की कीमतें आसमान छूने लगी है। वहीं जिस तरह से रुपए के 100 के पार जाने से रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने 5 अरब डॉलर का दाव लगाया है, उस डॉलर स्वैप नीलामी से बाजार में नकदी बढ़ने और महंगाई भड़कने का खतरा है। आने वाले दिनों में ये बोझ हमारी जेब पर ज्यादा भारी पड़ने जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा तनाव सीधा हमारी रसोई और मेडिकल स्टोर तक पहुंच गया है। इसकी वजह होर्मुज, जल डमरू मध्य और खाड़ी क्षेत्र में जहाजों के रास्ते बंद होने से दवाओं का कच्चा माल यानी API का भारत नहीं पहुंच पाना है। इस सप्लाई चेन में आई रुकावट की वजह से आने वाले दिनों में हर घर की जरूरी दवाएं बेहद महंगी होने की कगार पर खड़ी हुई है। दवाओं का कच्चा माल समय पर ना मिलने से पैरासिटामोल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। बीमारियों से लड़ने वाली जरूरी एंटीबायोटिक्स दवाएं भी बहुत ज्यादा महंगी हो सकती हैं। वहीं कच्चे तेल के ऊंचे दाम ने FMCG कंपनियों की लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग का खर्च बढ़ा दिया है, जिससे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले साबुन, तेल और राशन के पैकेट महंगे होने की आशंका फिर से बढ़ गई है। रसोई और सेहत के संकट के पीछे एक बड़ी वजह इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में लगी आग भी है। भारत इस समय अपनी जरूरत का तेल ऊंची कीमतों पर खरीदने को मजबूर है। ऐसे में अप्रैल में भारत में क्रूड इंपोर्ट 4.3% घटने के बावजूद इसका बिल 50% तक बढ़ गया। हालांकि LNG का इंपोर्ट 30% घटने से इसके बिल में 1/4 की कमी आई है। तेल की इन बढ़ती कीमतों का असर ट्रांसपोर्टेशन पर भी देखने लगा है। ट्रांसपोर्टर्स ने माल भाड़े में 4% बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। डीजल की कीमतों को एडजस्ट करने के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट फैक्टर का जरिया निकाला गया है, जो सीधे आपकी हर जरूरत को महंगा कर देगा। साफ है कि आने वाले दिनों में महंगाई से राहत मिलना बेहद मुश्किल है, यानी जब तक तनाव खत्म नहीं होगा महंगाई का प्रहार लगातार तेज होता चला जाएगा। आज तक ब्यूरो।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: पलटवार डील का इंतजार।
1: ट्रंप के मना करने पर भी नहीं माने नेतन्याहू। ईरान, इराक, लेबनन पर एक साथ के पलटवार। तेहरान में कई सैन्य ठिकानों को तबाह किया। ईरान का जवाब अब होंगे विनाशकारी परिणाम।
0: दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन का महाजुटान। बैठक से पहले केजरीवाल से मिली ममता बनर्जी। विजन पर राहुल गांधी के बयान से भड़के लेफ्टिस्ट। खड़गे ने किया मान मनोवर।
1: बागी गुट को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने का फैसला आज। कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती देगी ममता की टीएमसी। आज तक से बोले ऋत्वरित बनर्जी, संपर्क में है कई सांसद।

0: खास बुलेटिन सुपर 8 का हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सहयोगी सुमित चौधरी और आज बात होगी युद्ध की खबर के साथ। दरअसल ईरान और इजराइल में फिर से जंग तेज हो गई है। आपको ये भी बताएंगे कि क्यों ट्रंप की नहीं सुन रहे हैं नेतन्याहू। खबर हिजबुल्ला की भी होगी जिसने इजरायली फौज को निशाना बनाया। दिखाएंगे कि बरसते बारूद के बीच तेहरान में जश्न क्यों मना है और बताएंगे कि फिलीपींस में भूकंप से कितनी तबाही मची है।
1: इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या होने वाला है, यह भी आपको विस्तृत जानकारी देंगे। पश्चिम बंगाल में जादवपुर में हुए बवाल की बात भी करेंगे और खबर यूपी के संबल से भी होगी जहां पर बुलडोजर एक्शन पर सियासत भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिरकार बुलडोजर एक्शन पर क्यों सियासत इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और देखिये सबसे पहली बड़ी खबर डिमोनिका से है जहां पर निजी वाहन क्रैश हो गया। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ला रोमाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। एक प्राइवेट जेट लगातार क्रैश होने की खबरें वहां मिल रही है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। डिमोनिका के अंदर रिपब्लिक में एक बड़ा क्रैश हुआ है जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्राइवेट जेट बताया जा रहा है कि देखिए कैसे टेक ऑफ के दौरान ही ये क्रैश हो गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डिमोनिका रिपब्लिक में विमान क्रैश की। ये सीधी तस्वीर है जहां इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ये विमान क्रैश हुआ है।
0: तस्वीर आप देखिए इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विमान हादसा हुआ ला रोमाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ये भीषण हादसा हुआ है। ये तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान पूरा विमान क्रैश हो गया और एकदम से काले धुएं का गुबार उठता नजर आया है।
1: आप ये दो तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे लगातार इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ये एक बड़ा हादसा हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, क्या कुछ बताया जा रहा है इस जेट के बारे में, विमान के बारे में? आखिरकार ये विमान कहां से जा रहा था, कहां जा रहा था और इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ कैसे?
2: देखिए विमान बताया जा रहा है कि ये गल्फ स्ट्रीम 200 एक प्राइवेट जेट विमान था जो कि विमान के अंदर कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण ये इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। डोमिनिकन रिपब्लिक का ला रमोना एयरपोर्ट जो है वहां पर इसकी लैंडिंग हुई है और डोमिनिकन रिपब्लिक के जो सिविल एविएशन अथॉरिटीज हैं उनका कहना है कि इसके अंदर कोई भी यात्री सवार नहीं था। लेकिन जिस तरीके का हादसा हुआ है, जिस तरीके का क्रैश हुआ है, उसके अंदर जो पायलट या क्रू मेंबर्स हैं उनको लेकर फिलहाल किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं सुमित कि किस तरीके का हादसा था और कितना भयावह यह हादसा था कि इस विमान की क्रैश लैंडिंग के बाद इसके अंदर तत्काल आग लग गई विमान के अंदर।
0: प्रणय, अभी तक क्या कुछ पता लग पाया कि कितने क्रू

0: और देखिए इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी जुड़ गए हैं। प्रणय, देखिए ईरान ये बात कहता आया था कि एक रेड लाइन है कि इसराइल को समझनी पड़ेगी कि साउथ लेबनन के अलावा उसको अपनी फोर्सेस भी पीछे खींचनी पड़ेंगी, इसके अलावा वो अटैक भी बंद करे, लेकिन इसराइल मानने को तैयार नहीं था और शायद इसी रेड लाइन के चलते ये वार्निंग शॉट्स थे जो ईरान की तरफ से दिए गए, लेकिन अब ये वार्निंग शॉट्स एक बड़ी जंग में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं।
1: निश्चित रूप से एक बड़ी जंग के अंदर ही तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का एस्केलेशन, जिस तरीके का तनाव पिछले 10-15 दिनों के अंदर देखने को मिला है सुमित, वो ये इस तरफ इशारा करता है, क्योंकि इसके दायरे के अंदर पिछले 10-15 दिनों के दौरान न तो कुवैत भी आया है, बहरीन भी आया है, इराक के अंदर भी आज धमाके हुए हैं, और इसके अलावा जिस तरीके से IDF की कार्यवाही लेबनान के अंदर चल रही थी उसे ईरान ने ये कहते हुए कार्यवाही की है कि सारी रेड लाइंस अब टूट चुकी हैं। हम लगातार इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि लेबनान के अंदर भी संघर्ष विराम लागू होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये नहीं हुआ है इसलिए ये चेतावनी की कार्यवाही है इसराइल के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ आप अच्छी तरीके से जानते हैं सुमित कि इसराइल के ऊपर अमेरिकी दबाव था, इसलिए उसने संघर्ष विराम को स्वीकार किया था। इस कार्यवाही ने ईरान की इसराइल को एक बार फिर बहाना दिया है, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 15 ठिकाने हैं जो कि मध्य और पश्चिम ईरान के हैं जहां पर यह कार्यवाही की गई है इसराइल की डिफेंस फोर्सेज, इसराइल के एयरफोर्स की तरफ से। और बताया जा रहा है तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा कई इलाके हैं जो स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज हैं ईरान की, वहां पर जो है ईरान की इसराइल की तरफ से ये कार्यवाही की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उस संघर्ष विराम का, उन चर्चाओं का, उन डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस का अब क्या होगा। साथ ही इसराइल और अमेरिका के, इसराइल और ईरान के बीच में ये तनाव यदि बढ़ता है तो अब अमेरिका की भूमिका क्या होगी? क्या अमेरिका की जो फोर्सेज इलाके के अंदर तैनात हैं वो इसराइल के साथ एक बार फिर साथ आकर कार्यवाही करेंगी, या अब की बार अमेरिका जो है वो यहां से किनारा करेगा जैसा कि पिछली बार हमने 12 दिन की कार्यवाही के दौरान देखा था।
2: ठीक है प्रणय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटेंगे और भी जानकारी के लिए। तो देखिए ईरान के इस्फहान पर भी हमला हुआ है, खबरों के मुताबिक वहां पर कम से कम 3 धमाके सुनाई दिए गए हैं। यह हमला इसराइल की तरफ से किया गया, इसराइल को अमेरिका की तरफ से पलटवार ना करने की बात लगातार कही जा रही थी, लेकिन नेतन्याहू नहीं माने और ईरान पर जवाबी अटैक कर दिया। इस्फहान में कम से कम 3 धमाके सुनाई दिए गए हैं, जहां एक तरफ युद्ध विराम की बात चल रही थी अमेरिका की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ये भी कहा जा रहा था ईरान पर हमले ना किए जाएं। ऐसे में दोनों ही देश अमेरिका की ना सुनते नजर आ रहे हैं।
0: बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और इस्फहान क्यों महत्वपूर्ण है ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि तेहरान के बाद दूसरा ऐसा सबसे महत्वपूर्ण शहर है ईरान का जहां पर इसराइल हमेशा अटैक करता है। इस्फहान वो जगह है जहां पर न्यूक्लियर, आप कह सकते हैं यूरेनियम इनरिचमेंट की साइट भी मौजूद है। इसके अलावा IRGC की इन्फेंट्री डिवीजन की सबसे बड़ी एयर डिफेंस यूनिट भी इस्फहान में ही मौजूद है, और अब हमेशा इसराइल और अमेरिका की कोशिश रहती है कि वो तेहरान के बाद सबसे ज्यादा घाव, सबसे ज्यादा अटैक इस्फहान पर ही करें, और इसी वजह से लगातार ईरान के इन्हीं इलाकों के ऊपर एक बार फिर से इसराइल ने बड़े अटैक किए हैं। और देखिए ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के एयरबेस पर भी कई एयरक्राफ्ट दाखिल नहीं हुआ। देखिए ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके एयरस्पेस में किसी भी तरीके के एयरस्पेस में कोई इसराइली एयरफोर्स का विमान एंटर नहीं किया। ईरान पर जो बमबारी की गई है वो भूमध्य सागर के मौजूद युद्धपोतों से की गई है, यानी उनके शिप के हिसाब से उनकी मदद की वजह से की गई है।
2: प्रणय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रणय देखिए, पहले तो ये बताइएगा कि ईरान ने इसराइल के कौन कौन से इलाकों पर हमला किया जिसका जवाब इसराइल ने दिया, दूसरी तरफ दोनों ही देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, ऐसे में अमेरिका की भूमिका अब क्या होने वाली है?
1: देखिए बड़ा सवाल यही कि इस समय अमेरिका की भूमिका क्या होगी, क्योंकि अमेरिका की सेंट्रल कमांड की तरफ से अभी तक किसी तरीके का कोई बयान सामने नहीं आया है। आपने जैसा कि कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों से ही आग्रह कर चुके थे कि फर्दर एस्केलेशन नहीं होना चाहिए, यदि ईरान की तरफ से कार्रवाई की गई है तो भी इसराइल को जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन उनका ये आग्रह तो टूट चुका है क्योंकि इसराइल की तरफ से न केवल कार्रवाई की गई है, 15 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। जहां तक आपने पूछा कि ईरान ने इसराइल के किन इलाकों को टारगेट किया है, तो लार्जली उत्तरी इसराइल के इलाकों को टारगेट किया गया है, और ये इसराइल का वो इलाका है जो जिसकी सीमाएं लेबनान से लगती हैं, यही वो क्षेत्र है जहां से कमांड एंड कंट्रोल चल रहा है। दक्षिण लेबनान के अंदर जो इसराइल का ऑपरेशन चल रहा है, IDF का ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अगर आपको याद हो तो 2 दिनों पहले ही, यानी

0: शुक्रवार को ही लेबनान के राष्ट्रपति जो हैं जोसेफ ओंग, उनका स्टेटमेंट आया था और उन्होंने कहा था कि हम इस चीज को कतई स्वीकार नहीं करते कि ईरान लेबनान की जमीन का और लेबनान के लोगों का इस्तेमाल एक मोहरे की तरह कर रहा है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ अपने संघर्ष में।
1: बिल्कुल, पढ़े एक और इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपने बात की कि लेबनान के राष्ट्रपति की तब अराक्ची की तरफ से उनसे बातचीत भी की गई थी, और देखिए इराक्ची जिस अटैक के बाद भी उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से अराक्ची की तरफ से ईरान और लेबनान के झंडों को भी सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया गया। क्या ये माना जाए कि ये एक तरीके का पोस्चर अटैक था सिर्फ लेबनन के साथ, खासतौर पर हिजबुल्ला के साथ दिखाते हुए ईरान का, या फिर ईरान ये चाहता है कि युद्ध आगे बढ़े और वो भी ईरान इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करे?
0: केवल इतना ही नहीं है सुमित, अगर आप देखें कि कल तेहरान के आजादी स्क्वायर के ऊपर या तेहरान के अंदर जिस तरीके से भारी भीड़ उमड़ी थी, लेबनान और ईरान के दोनों के झंडे लिए लोग हाथ के अंदर अपने मोबाइल फोन साथ में लिए फ्लैशलाइट चला चमकाते हुए समर्थन कर रहे थे। साथ ही जो बयान आया है अली अकबर विलायती का, जो कि सुप्रीम लीडर के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मामलों के ऊपर इंटरनेशनल अफेयर्स पर उनके एडवाइजर हैं, अली अकबर विलायती ने भी कहा कि इसराइल की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है में उसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसने सारी रेड लाइंस क्रॉस की हैं। और खत्म अल अनबिया की तरफ से भी यह कहा गया कि तमाम रेड लाइंस टूट चुकी हैं लेबनान की के अंदर जो इसराइल की कार्यवाही है उसने, और उसके बाद अब ईरान के खिलाफ इस कार्यवाही को करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है, क्योंकि लेबनान के अंदर ईरान हमेशा से कह रहा था कि संघर्ष विराम लेबनान में भी लागू होना चाहिए, लेकिन इसराइल ने उसका कतई पालन नहीं किया है, इसलिए अब यह कार्यवाही हो रही है। और ये जो ओनस है इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का वो अब इसराइल के ऊपर है, लेकिन अब दोनों ही एक दूसरे की जिम्मेदारी की जो गेंद है सुमित वो एक दूसरे के पाले में डाल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि करीब 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है संघर्ष विराम के बाद भी, करीब 2 महीने का वक्त जो है वो संघर्ष विराम को हो चुका है, यानी 7 अप्रैल के बाद, और अभी तक ये संघर्ष विराम जो है टूटा फूटा ही सही लेकिन लागू था, लेकिन इस टकराव के बाद क्या ये संघर्ष विराम बचेगा चलेगा, क्योंकि 100 दिनों के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, जो जहाजों की आवाजाही है वो बाधित है, और दुनिया के सामने एक बड़ा ऊर्जा संकट भी खड़ा हुआ है, और साथ ही इस संघर्ष के और ज्यादा फैलने का जो खतरा है वो भी खड़ा हुआ है।
2: प्रणय, जहां पर ईरान ने साफ तौर पर इसराइल को चेताया था, जैसे कि आपने बताया कि लेबनान पर हमला ना किया जाए, उसके बाद भी इसराइल ने लेबनान पर हमला किया, ऐसे में अब लग क्या रहा है कि ईरान आखिर अब चाहता क्या है? चलिए प्रणय आपके पास लौटेंगे, एक बड़ी खबर बता दें आपको, ईरान के IRGC ने दावा किया है कि इसराइल ने ईरान के भीतर कई ठिकानों पर हमला किया। जारी बयान में IRGC ने कहा है कि इसराइल ने कई लक्ष्यों को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक हमले में एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों को इस्तेमाल किया गया।
1: हालांकि देखिए अभी तक किसी भी बड़े नुकसान या हताहतों की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन IRGC ने कहा है कि उनके कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर इस तरीके के अटैक किए गए हैं। 15 से ज्यादा ठिकाने हैं, जिस तरीके से हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी बता रहे थे कि 15 ठिकाने हैं जहां पर ये अटैक किए गए हैं। प्रणय उपाध्याय का रुख करेंगे। प्रणय, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अब अमेरिका का रुख क्या होगा। देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो ये बात लंबे समय से कहते हैं कि आप रुक जाइए इसराइल के प्रधानमंत्री से, इससे पहले भी उन्होंने बातचीत की, इसराइल नहीं माना, तो क्या माना जाए कि अब भी क्या इसराइल मानेगा, क्या रिटेलिएट बढ़ता जाएगा, वार पलटवार का यह सिलसिला चलता रहेगा?
0: देखिए ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के हमले को इसराइल स्वीकार कर ले और चुप बैठ जाए, ये आप भी जानते हैं कि मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ये बेहद मुश्किल और पेचीदा स्थिति होगी, क्योंकि वो कई बार कह चुके हैं कि ईरान को इसराइल को तबाह करने की या इसराइल के ऊपर वार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो ऐसे में जबकि ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, उत्तरी इसराइल के इलाकों को इलाकों को निशाना बनाया गया है, और जिस तरीके से ये एस्केलेशन बढ़ रहा है, ऐसे में अब अमेरिका के सामने बड़ी मुश्किल और पेचीदा स्थिति होगी, क्योंकि इस समय अमेरिका की फोर्सेस इलाके के अंदर मौजूद हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भी बीते कुछ दिनों के दौरान टकराव हुए हैं, जहां जो है करज के अंदर या जो है मशहद के इलाके, जो माफ कीजिएगा, कशम आइलैंड के इलाके के अंदर या खर्ग आइलैंड के इलाके के अंदर ईरान के अमेरिका की तरफ से कार्रवाई की गई है। बंदर अब्बास का भी, ठीक आपने नाम लिया, बंदर अब्बास के इलाके के अंदर भी अमेरिका की तरफ से कार्रवाई की गई है। तो अमेरिका ऐसा नहीं है कि दूर बैठा हुआ है, किनारे बैठा हुआ है, अमेरिका भी एंगेज कर रहा है ईरान को। लेकिन क्या फर्दर एस्केलेशन का ऑर्डर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देते हैं, क्योंकि अमेरिकी फोर्सेज इलाके के अंदर तैनात हैं, और ऐसे में यदि एक बार फिर ये रीइग्नाइट होता है तो वो तमाम जो कोशिशें चल रही थी, वो पाकिस्तान की मध्यस्थता वाली जो बातचीत की कोशिशें थी, वो तो सब धराशायी हो जाती हैं अगर ये लड़ाई एक बार फिर छिड़ जाती
2: है। होती नजर आएंगी अगर ऐसा ही चलता रहा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, ईरान के हमले के दौरान इसराइल में सायरन और धमाकों की गूंज सुनाई दी। हाइफा, टेल अवीव सहित कई शहरों में लगातार सायरन बजते रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से जब हमला किया गया उसके बाद तुरंत सायरन की आवाज सुनाई दी, धमाके की आवाज सुनाई दी है। ऐसे में आप सुमित, इन सब तस्वीरों के बाद जब अमेरिका ये कह रहा है इसराइल को कि अभी वो हमला ना करे, रिटेलिएट ना करे, क्या लग रहा है? अमेरिका की बात तो दोनों ही देश नहीं सुन रहे।
1: देखिए, ईरान की बात को अगर आप पीछे भी कर ले तो इसराइल ही नहीं मानने वाला कि वो अमेरिका किसी भी देश की बात सुने। पढ़े जिस तरीके से हमारे जुड़े हुए थे, ये बात हमेशा क्लियर रहती है इसराइल के बारे में कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को जब तक पूरा नहीं कर लेता, जब तक वो पीछे नहीं हटता। अब इससे पहले कई बार भी जो रूसी, माफ कीजिएगा, कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से यह आग्रह किया गया, बातचीत की गई, प्रेशर बनाया गया कि इसराइल इसमें पीछे हट जाए, लेकिन इसराइल नहीं माना। अभी मौजूदा हालात में जो समीकरण या स्ट्रैटेजिक आप चीजों को देखें तो आप समझेंगे कि इसराइल चाहता है कि वो नॉर्दर्न एरियाज के अपने बॉर्डर्स को आगे बढ़ाए साउथ लेबनन की तरफ में। साउथ लेबनन के इलाके हिजबुल्ला के इलाके माने जाते हैं, वो इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने नॉर्थ के इलाकों को सिक्योर कर सके। और ऐसा ये ईरान भी समझ रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर हिजबुल्ला का वजूद खतरे में आ जाएगा। हिजबुल्ला को आप कितनी भी क्षमताएं ताकत दे ले, हिजबुल्ला कुछ नहीं कर पाएगा। और शायद इसी वजह से यह चेताया जा रहा है कि इसराइल की फोर्सेस पीछे हटे और हिजबुल्ला वहां पर आकर वापस बच जाए। और शायद इसी वजह से एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि इसराइल के मंत्री का ईरान पर बड़ा बयान। देखिए, अब आपको बता रहे हैं कि अब हमलों के बाद बयानबाजी भी एक दूसरे पर शुरू हो गई। तेहरान जलना चाहिए, ये मंत्री की तरफ से कहा गया। इसराइल के मंत्री की तरफ से बड़ी चेतावनी ईरान को लेकर की गई है। इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने धमकी दी है कि अब ईरान जलना चाहिए। देखिए, आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की तरफ से लगातार उनके मंत्री की तरफ से इटमार बैगवीर की तरफ से कहा गया है, बैगवीर की तरफ से, कि देखिए, उन्होंने कहा कि तेहरान जलना चाहिए। यह धमकी लगातार अब इसराइल की तरफ से ईरान को दी जा रही है।
2: ऐसी धमकियों के बाद तो सुमित यही माना जा रहा है कि एक बार फिर से तबाही की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। अगर इसराइल के मंत्री ने कहा है कि तेहरान जलना चाहिए तो आगे क्या कुछ हो सकता है?
1: देखिए, अभी जो मौजूदा हालात हैं, भले ही देखिए इसराइल की तरफ से रिटेलिएट किया गया हो, उनके महत्वपूर्ण इलाकों में इस्फहान, तेहरान, नतांज, इन इलाकों के अंदर अटैक किया गया हो, लेकिन जो अभी व्हाइट हाउस की तरफ से थोड़ी देर पहले बयान आया उसमें कहा गया कि लिमिटेड स्कोप के अटैक थे जो इसराइल ने किए। और इससे पहले ईरान ने भी कहा कि हमने ये जवाबी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ लेबनन के सॉलिडारिटी में की है, उनके साथ खड़े होने के लिए की है। तो अगर आप बयानों को देखें तो ऐसा लगता है कि लिमिटेड स्कोप ऑफ अटैक थे, कोशिश की जा रही थी एक तरीके के वार्निंग शॉट देने की या फिर एक परस्पेक्टिव अटैक करने की, लेकिन आगे कैसे बढ़ेगा ये दोनों ही देशों को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब भी अमेरिका की बात दोनों ही नहीं मान रहे और दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि एक सुप्रीमेसी बने अटैक के बाद कि हमने अपनी जवाबी कार्रवाई की है, लेकिन इस सुप्रीमेसी के अंदर कोई ऐसी बड़ी घटना ना हो जाए जिसको आप कह सकते हैं एक नए युद्ध की शक्ल वो ले ले।
2: ईरान के हमले के बाद इसराइल में देशव्यापी अलर्ट जारी किया गया है। देश भर के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अस्पतालों का संचालन भी अभी भूमिगत होगा और 75% क्षमता के साथ परिवहन संचालन किया जाएगा। देश भर में स्कूल बंद का ऐलान कर दिया गया है। 75% की क्षमता के साथ परिवहन संचालन किया गया है। इस युद्ध के बाद अभी एक बड़ा फैसला लिया गया।
1: और देखिए, इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने ईरान लेबनन के झंडों के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की और उसमें संदेश दिया कि वो ही इसराइल ने इस पर पलटवार किया। ईरान के लेबनन के झंडे की जगह हिजबुल्ला का झंडा लगाकर तस्वीर पोस्ट की गई है। देखिए, आपको दिखा रहे हैं कि लेबनन के साथ साथ उन्होंने लेबनन के साथ साथ हिजबुल्ला के झंडों को भी तस्वीरें पोस्ट की हैं।
2: इसराइल का कहना है कि ईरान लेबनान का नहीं बल्कि हिजबुल्ला का समर्थन कर रहा है और ये तस्वीरें दोनों झंडों की शेयर की गई हैं। रुकते एक और बड़ी खबर का। अगली खबर फिलीपींस से, जहां पर 7.8 तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप से तबाही मची है। भूकंप का केंद्र दक्षिणी फिलीपींस के सारंगानी प्रांत में बताया जा रहा है। झटकों से जनरल सेंट्रोस सिटी में एक इमारत भी ढह गई।
1: आपको बता दें कि फिलीपींस न्यूज एजेंसी के मुताबिक कई इलाकों में नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य भी तेज है। 7.8 दर्ज किया गया है रिक्टर स्केल पैमाने पर। बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि बड़ा संगी, आप बहुत गंभीर परिस्थितियों होगी। फिलीपींस के सरगानी प्रांत में भारी तबाही की आशंका भी जताई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जब ये भूकंप आया तो वहां की तस्वीरें कैसी थी। 5 लोगों की मौत की खबर भी अब तक सामने आई है।
2: फिलीपींस में भूकंप के बाद की तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आवाजें सुनाई दे रही है, काफी हबड़ा तबड़ी वहां पर मच गई है। 7.8 तीव्रता का भूकंप, ऐसे में अभी तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि भी की जा चुकी है।
1: और चलिए सुपर 8 में वक्त छोटे से ब्रेक का, लेकिन युद्ध से जुड़े तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत।
4: Hot mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
3: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
6: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
7: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
5: मतलब
7: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
5: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
7: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाई टेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
11: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स
10: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
12: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
13: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
14: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
12: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
15: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
13: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
12: जहां खबर वहां खबरदार।
16: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: मोंटी कार्लो इट्स द वे यू मेक मी फील।
12: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल।
18: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी।
12: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल।
18: CBSE के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
12: छात्रों को दिया मंच।
18: उज्मा हमारे साथ कोटा से और अदिति मुंगेर से हैं और तानिया कोटा से हैं और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
19: मैम ये देखिए इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
20: IIT मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
12: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर।
18: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक। और अब सरकार की तरफ से CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
12: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

बैठक से पहले केजरीवाल से मिली ममता बनर्जी, विजयन पर राहुल गांधी के बयान से भड़के लेफ्टिस्ट। बागी गुट को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने के फैसले का आज कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती देगी ममता की टीएमसी। आज तक से बोले ऋतव्रत बनर्जी, संपर्क में है कई सांसद। जयपुर की नूरानी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन का दिन, पूरा इलाका छावनी में तब्दील, भारी पुलिस फोर्स तैनात। रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट बंद।

और अब वक्त हो गया है नॉनस्टॉप 100 का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सऊदी अरब से। सऊदी के प्रिंस सुल्तान अरबेस के पास धमाके की आवाज सुनाई गई है। दरअसल सऊदी की मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रिंस सुल्तान अरबेस के पास धमाके की आवाज सुनाई दी गई। सऊदी अरब की मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयरबेस के पास धमाका हुआ है, धमाके की आवाज एयरबेस के पास सुनाई दी गई है। खबर है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास बड़ा धमाका हुआ जिसकी आवाज दूर तक सुनाई दी गई। अब आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है नॉनस्टॉप 100 का।

मिडिस्ट में युद्ध जैसे हालात, ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, पूरे देश में सायरन और एयर डिफेंस एक्टिव। ईरानी हमलों के बाद इसराइल का करारा पलटवार, तेहरान, बेरूत और बगदाद पर एक साथ अटैक। ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट और इस्फहान में हमले का दावा, लगातार धमाकों से तेहरान में दहशत का माहौल। ईरानी मीडिया का बड़ा दावा, युद्धपोत से भूमध्य सागर से मिसाइलें दागी गई, मिसाइलें इराकी हवाई क्षेत्र से होकर अपने लक्ष्य तक पहुंची। ट्रंप की रोक के बावजूद मिडिल ईस्ट में संघर्ष और भड़का, नेतन्याहू ने दिया जवाबी सैन्य हमले का आदेश। जयपुर में सड़क चौड़ीकरण के लिए एक बड़ा एक्शन, मालवीय नगर जगतपुरा मार्ग से हटाए जाएंगे धार्मिक स्थल, भारी पुलिस बल की गई तैनाती। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में 3,000 से अधिक पुलिसकर्मियों, आरएसी की 12 कंपनियों और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई और दरअसल जुलूस, प्रदर्शन और 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया। ज्यादातर इलाकों में पुलिस ने इंटरनेट बंद कर दिए। पुलिस सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रख रही है और भड़काऊ या धार्मिक उन्माद फैलाने वाली सामग्री साझा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। कार्रवाई को लेकर कांग्रेस विधायक रफीक खान ने उठाए सवाल, कहा नियमानुसार बनी मस्जिद को तोड़ा जा रहा। इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली में अहम बैठक। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक, मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाएगी 23 पार्टियां। डीएमके ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग से बनाई दूरी, तमिलनाडु में टीवी के सरकार को समर्थन देने पर कांग्रेस से खफा डीएमके। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक से बनाई दूरी, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बोले, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल होने के लिए कोलकाता से दिल्ली आई ममता बनर्जी, केजरीवाल से ममता और अभिषेक बनर्जी ने की मुलाकात। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग पर कसा तंज, निशिकांत दुबे बोले इस गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं। बंगाल में ममता का विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी ने बढ़ाया सिरदर्द, टीएमसी के सांसदों के संपर्क में होने का दावा, आज तक से कहा सोमवार को कुछ हो सकता है बड़ा। ऋतव्रत बनर्जी ने अभिषेक पर पार्टी को हाईजैक करने का लगाया आरोप, कहा ममता बनर्जी का मिलता रहे मार्गदर्शन। बंगाल के पूर्व मंत्री अरुण विश्वास का फिर से समन, लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में गड़बड़ी, मामले में होगी पूछताछ। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान, बनना चाहता था कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकिन अचानक से हुई साजिश और बदल गए हालात। झारखंड से राज्यसभा चुनाव में बीजेपी नहीं उतारेगी प्रत्याशी, सूत्रों के मुताबिक निर्दलीय परिमल नथवानी को समर्थन करेगी बीजेपी। राहुल गांधी ने सीबीएसई क्वेम्प्ट विवाद को लेकर फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा पीएम चाहते हैं हमारे युवा रील्स बनाते रहें, सवाल न पूछे। सीबीएसई ओएसएम में गड़बड़ी को उजागर करने वाले छात्र सार्थक की तारीफ करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश का 18 साल का बच्चा सीबीआई से तेज निकला। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा नौजवानों की ये जीत सही मायने में सरकार की हार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर में करोड़ों रूपये का चढ़ावा गायब होने का आरोप लगाया, आरोपों पर राम मंदिर समिति ने जवाब दिया। चढ़ावे में गड़बड़ी के अखिलेश के आरोपों पर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बयान जारी किया, कहा कि ऑडिट कार्य कई दिन तक चलता रहा, वही कार्य आजकल हो रहा। ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने भी आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए करारा पलटवार किया, कहा ट्रस्ट में ऐसी गलती होगी ही नहीं, हर लेन देन का पूरा हिसाब रखा जाता। अखिलेश ने चंपत राय की सफाई पर भी पलटवार किया, लिखा कि स्पष्टीकरण की ही स्पष्ट नहीं, सारे ट्रस्टी एक साथ बैठेंगे तो सच तत्काल बाहर आ जाएगा। काशी में शहर के बाहर शिफ्ट होंगी मीट मछली की दुकानें, 5 स्थान किए गए चिन्हित। संभल में अवैध मस्जिद के ध्वस्तीकरण के दौरान पोस्टर मिलने के मामले में बड़ी कार्रवाई, मस्जिद के मुतवली जाकिर सहित 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मस्जिद कमेटी के लोगों के सहकृत्य से हिंदू समुदाय के लोगों में रोष व्याप्त होने के कारण और समाज में कई आरोप भी लगाए गए। पश्चिम बंगाल के श्यामपुर में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे टीएमसी नेता को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा, सिर मुंडवाकर और जूतों की माला पूरे शहर में घुमाया। दुलियान में टीएमसी नेता महबूब आलम गिरफ्तार, महबूब की पत्नी रोशनारा बीवी भी गिरफ्तार हुई, आवास योजना के लाभार्थियों ने किया था घेराव। आसनसोल के बरनपुर में धर्मांतरण कार्यक्रम को लेकर बवाल मचा, बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस ने आयोजक को हिरासत में लिया आसनसोल में। बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बड़ा एक्शन, प्रशासन ने समाज कल्याण मंत्री से जुड़े निजी अस्पताल की बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया। अधिकारियों के अनुसार ये निर्माण सड़क की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया गया था और परियोजना के लिए सभी अतिक्रमण पर समान रूप से कार्रवाई की जा रही है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हत्याकांड में शामिल आरोपियों का सीसीटीवी सामने आया। सीसीटीवी में लिफ्ट से तीनों निकलते हुए दिखाई दे रहे। हत्याकांड के बाद लिफ्ट से नीचे उतरकर जाते हुए सीसीटीवी में कैद पश्चिम बंगाल से पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया। मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। अभी तक इस हादसे में कुल 22 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में रेलवे स्टेशन के पास हॉकरों को हटाने के लिए एक बड़े अभियान दौरान बढ़ा तनाव। बुलडोजर एक्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में झड़प। भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी हुए घायल। सीपीआईएम नेता सृजन भट्टाचार्य हिरासत में लिए गए। उत्तर प्रदेश में 32,679 पदों पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आज से लिखित परीक्षा। बड़ी संख्या में पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने पहुंचे अभ्यर्थी। प्रदेश भर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में होगी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा। 9 और 10 जून को भी होगी परीक्षा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम ने अभ्यर्थियों के हित में लिया एक बड़ा फैसला। भर्ती परीक्षा के लिए यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को बसों में मिलेगी 50% की छूट। नागपुर में सांसद खेल महोत्सव का भव्य समापन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दिखा अलग अंदाज, गाया गाना। संगीत भरे समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए शामिल, गुनगुनाया की। वैश्विक मंच पर भारत के लिए गौरव का पद। भारत की मेजर अभिलाषा को प्रतिष्ठित यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली में आज से शुरू होगा बीएसएफ बीजीबी डीजी सम्मेलन। घुसपैठ फेंसिंग और सीमा सुरक्षा पर होगी निर्णायक चर्चा। संगीतमय हुआ अटारी बॉर्डर का माहौल। पहली बार ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान ने किया परफॉर्म। दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग होगा काशी में स्थापित, प्रशासन से मिली मंजूरी। वीडियो जारी। डीआरआई मुंबई ने सोना तस्करी गिरोह का किया भंडाफोड़। करीब 5 करोड़ रुपए कीमत का सोना जब्त, 7 गिरफ्तार। दिल्ली में फिर से बरसे राहत के बादल। कुछ इलाकों में बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज। दार्जिलिंग में हुई झमाझम बारिश, बरसात के बाद मौसम हुआ सुहावना। एमपी के सीहोर में आंधी बारिश का कहर। सोलर पैनल उखड़कर सड़क पर जाकर गिरे, एक दबकर घायल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में किसानों के मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आया। खुले में रखा धान बारिश में भीगने से हुआ खराब। हिमाचल के पंडुओं में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर भारी ट्रैफिक। मनाली की ओर जा रही पर्यटकों की भारी भीड़। लखनऊ में महिला से छेड़छाड़ की गई, हत्या के प्रयास का आरोप। आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। बारामती में नशे में धुत ट्रक ड्राइवर का खतरनाक स्टंट, कैमरे में कैद हुआ बेकाबू ट्रक पलटा, चालक गंभीर रूप से घायल। टिहरी गढ़वाल में खाई में गिरी गाड़ी, एक की मौत, बाल बाल बचा ड्राइवर। अमृतसर में चोरों ने किसान के घर करोड़ों की चोरी की, सोना और कैश लेकर फरार। गुना में मानसिक बीमार भाई ने भारी लट्ठे से मारकर बड़े भाई को उतारा मौत के घाट। घर में लगाई आग, भैंस को भी मारकर किया घायल, गिरफ्तार। यमुनानगर में रंगदारी केस में बड़ा खुलासा हुआ। विदेशी नंबर से धमकी, आरटीआई के जरिए कारोबारियों पर दबाव बनाने का आरोप। गाजियाबाद में पहले पेट्रोल चोरी करते दिखे संदिग्ध, कुछ घंटों बाद घर के बाहर खड़ी 3 बाइक में लगाई गई। बांदा में पैसों के विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में बच्चे के साथ गाने पर दरोगा का रील बनाना पड़ा महंगा, एसएसपी ने मांगा स्पष्टीकरण। हरदोई में ऑनर किलिंग का मामला, बेटी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, पिता समेत 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में आग लगी, फायर टीम ने 8 लोगों को रेस्क्यू किया। सहारनपुर में चोरों और पुलिस के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में एक चोर घायल। हापुड़ में मीट खाने से इनकार पर खूनी वार, युवक पर चाकू से हमला। गांव में तनाव के चलते पुलिस बल तैनात। बेतिया में रील बनाने के दौरान गंडक नहर में डूबे 2 युवक, दर्दनाक हादसे में मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बुफलिया सेक्टर की दुकानों में लगी भीषण आग, कई दुकानें चपेट में। अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में टीम इंडिया की पकड़ मजबूत, दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान के 113 रन अभी भी 451 रनों से पीछे। भारतीय गेंदबाजों के सामने अफगानिस्तान का सरेंडर, गिरे 5 विकेट। रहमत शाह ने बनाए सबसे ज्यादा 45 रन। माना सुधार ने डेब्यू मैच में ही गेंद में दिखाया जौहर, झटके अफगानिस्तान के 3 विकेट। मुलामपुर टेस्ट में भारत ने पहली बार की पारी घोषित की, साथ ही 8 विकेट पर 564 रन बनाए। भारत की ओर से शुभमन गिल ने 126 और केएल राहुल ने 100 रन बनाए। साई सुदर्शन ने 81 और यशस्वी जायसवाल ने 24 रन बनाए। बीसीसीआई ने वैभव सूर्यवंशी के लिए की विशेष व्यवस्था। वैभव सूर्यवंशी के साथ उनके माता पिता भी जाएंगे इंग्लैंड। टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में चुने गए वैभव। रूस का बड़ा दावा, पिछले 24 घंटों में रूसी सेना ने मार गिराए यूक्रेन के 900 से अधिक ड्रोन। यूक्रेन का दावा, रूस के कई अहम सैन्य और लॉजिस्टिक ठिकानों पर हुआ हमला। यूक्रेन को मिल सकता है नेटो देशों की तरफ से भारी भरकम मदद। यूक्रेन के लिए 70 अरब यूरो के नए सैन्य सहायता पैकेज पर नेटो देश कर रहे हैं विचार। यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप, रविवार को रूस ने
चेर्नोबिल प्रतिबंधित क्षेत्र में मौजूद परमाणु ईंधन भंडार सुविधा पर किया हमला। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा दावा, बीते एक सप्ताह में इजरायली सेना ने लेबनान के अंदर मार गिराए 350 लड़ाकों, कहा कि अंतिम चरण में है सैन्य कार्रवाई। मध्य इजरायल में वेस्ट बैंक के पास भीषण गोलीबारी, एक शख्स की मौत हुई, 5 घायल। इजरायली पुलिस का दावा, हमले के संदिग्ध हमलावर को किया गया ढेर। जल्द पर्दे पर आएगी सलमान खान, उन्हें अंतारा की अनटाइटल्ड मूवी, साउथ के मशहूर फिल्ममेकर वामशी पेरुपल्ली को और दिल राजू की जोड़ी कर रही है निर्देशन। कॉकटेल 2 की रिलीज से पहले ट्रेलर ने बनाया ग्लोबल चार्ट्स पर दबदबा, यूएस टॉप 10 में मारी एंट्री। राजामौली की फिल्म वाराणसी में राम और कुंभकर्ण का 30 मिनट तक युद्ध होगा फिल्म का प्लस पॉइंट, फिल्म के राइटर ने खोला राज। जिम सर्ब और नसरुद्दीन शाह स्टारर वेब सीरीज मेड इन इंडिया अ टाइटन स्टोरी जीता दर्शकों का दिल। ओटीटी पर रिलीज होते ही चाय वेब सीरीज पिरामिड स्कीम, 7 एपिसोड की इस सीरीज ने आते ही टॉप 10 में जमाया कब्जा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 जून 2026, दिन सोमवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि,

संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहे।

होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाहन का सुख मिलेगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, करियर की समस्याएं समाप्त होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार में शांति रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कर्क राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, काफी व्यस्तता दिख रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, संपत्ति की समस्या हल होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। अनाज का दान अगर कर दें आज तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

काम पूरे होंगे, धन की स्थिति में सुधार होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

सावधानी बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के

वृश्चिक राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, धन खर्च बढ़ा हुआ रहेगा, वाहन आज सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

लोग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। अगर किसी फल का आज दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाणी पर नियंत्रण रखें। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, रिश्तों में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अनाज का अगर आज दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

जा सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, संयम और शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: तब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है।
5: 2027 के सियासी समर में बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर सवार है, जहां अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हमले जारी हैं।
6: 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था।
5: योगी विकास से लेकर डबल इंजन तक की खूबियां गिना रहे हैं, तो वहीं पिछली सरकारों की खामियां भी बता रहे हैं।
6: 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था, यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था। रामलीलाओं के आयोजन में अड़चने डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा।
5: उधर अखिलेश को योगी सरकार में जंगल राज नजर आ रहा है। उधर गाजीपुर में कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर विपक्ष और सरकार के सहयोगियों के सुर एक जैसे नजर आ रहे हैं। किसी को अपने वोट बैंक की टेंशन सता रही है तो कोई वोट बैंक में सेध मारने की तैयारी में है।
7: इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप एनकाउंटर, अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है। मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर है, उसको छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं।
8: बहुत ही जो घटना हुई है एनकाउंटर की, तो आखिर जब पुलिस पकड़ सकती थी मुजरिम को तो एनकाउंटर क्यों करा गया? तो सवाल तो ये अपने आप में फ्री कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह उठाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते हैं कि प्रशासन और जो प्रशासन है, जो नियम है, जो कानून है, उससे चले।
5: बहरहाल यूपी में चुनावी पिच पूरी तरह से तैयार है, जहां हर पार्टी अपने हिसाब से बैटिंग कर रही है। आज तक ब्यूरो।
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

खड़गे ने किया मानहुन अव्वल। बागी गुट के नेता प्रतिपक्षी मान्यता देने के फैसले को आज कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती देगी ममता की टीएमसी। आज तक से बोले ऋतव्रत बैनर्जी, संपर्क में है कई सांसद। जयपुर की नूरानी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन का दिन, पूरा इलाका छावनी में तब्दील, भारी पुलिस फोर्स तैनात। रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट बंद।

घड़ी भी 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का आपके साथ हूं मैं निहा बातम। हफ्ते का पहला दिन, नया दिन, नई शुरुआत, बिना ब्रेक के आपका पसंदीदा ब्रेकफास्ट न्यूज शो लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। ईरान का हमला, इसराइल का बदलाव, आगे क्या होगा अंजाम, आज की लीड स्टोरी अब से कुछ ही देर बाद। राम मंदिर की बात करेंगे, राम मंदिर के चढ़ावे पर क्यों मच गया है घमासान, इस बड़ी खबर पर रहेगा फोकस। डोमिनिका रिपब्लिक में विमान बन गया आग का गोला, पूरी घटना और तस्वीरें इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर शुरुआत कर रहे हैं जंग की खबरों के साथ।

0: और अब आपको पश्चिम एशिया में श्री जंग की खबर दिखाएं, उससे पहले आपको तस्वीरें फिलीपींस की दिखा देते हैं, जहां पर आज एक बड़ा भूकंप आया है। वहां पर 7.8 तीव्रता का भयानक भूकंप आया और इस भूकंप के बाद पूरे एशिया में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। 7.8 तीव्रता का ये भूकंप स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:40 पर दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप के तट पर आया। फिलीपींस ज्वालामुखी विज्ञान और भूकंप विज्ञान संस्थान के मुताबिक प्रारंभिक भूकंप के बाद एक घंटे से अधिक समय तक झटके महसूस किए गए। बड़े नुकसान की खबर वहां से आ रही है, तबाही के वीडियो लगातार आ रहे हैं। मिंडानाओ के जनरल सैंटोस शहर में एक 3 मंजिला इमारत जिसमें जॉलीबी रेस्टोरेंट स्थित था, मलबे और धूल के गुबार के साथ ढहती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, शरण लेते खुले मैदान में वहां पर लोग और बच्चे दिखाई दे रहे हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। अक्सर इस तरह के ड्रिल्स भूकंप के कराए जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि खुले आसमान के नीचे पहुंच जाइए ताकि अगर कोई इमारत ढहे या फिर उसे कोई नुकसान पहुंचे तो आप मलबे में ना दब जाएं। और ऐसा ही नजारा कुछ आज फिलीपींस में दिखाई दिया, जहां पर तबाही के बीच चीख पुकार की आवाजें भी आप सुन सकते होंगे। 7.8 तीव्रता, आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा तीव्रता वाला ये भूकंप फिलीपींस को दहला गया है। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमित, और क्या डिटेल्स मिल रही हैं इस भूकंप के बारे में?
1: देखिए, बिल्कुल, अभी कहा जा रहा है कि देखिए 2025 में भी इसी तरीके का भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 7.4 बताई जा रही थी। उसके बाद उसके दौरान भी करीबन 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद भी लगातार अभी फिलीपींस में दोबारा से हाईअलर्ट कर दिया गया कई जगहों पर, खासतौर पर जो फिलीपींस मोबाइल कोस्टल एरियाज हैं वहां पर ज्यादा अलर्ट है। वहां से लोगों को निकाला जा रहा है, वहां से लोगों को कहा जा रहा है कि आप इस चीजों को लेकर सतर्क रहे। और अभी जो ताजा हालात है वहां पर कई जगहों पर नुकसान की खबरें भी मिल रही है, 5 लोगों से ज्यादा के मरने की खबरें भी मिल रही हैं। लेकिन अभी भी नेहा कई और चीजें हैं जिससे कहा जा रहा है कि अभी और जानकारी आनी बाकी है। लेकिन जरूर है कि फिलीपींस ने ऐसे पहले भी अर्थक्वेक भूकंप झेले हैं, लेकिन जो इसकी तीव्रता है 7.8 की, वो इतनी ज्यादा मैसिव है जिससे माना जा रहा है कि नुकसान बहुत ज्यादा व्यापक होगा, बहुत बड़ा होगा। और थोड़ी देर में और भी बड़ी जानकारियां इसको लेकर सामने आएगी।
0: ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और अब रुक करेंगे युद्ध से जुड़ी खबरों का।

ईरान और इसराइल के बीच जंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। ईरान हमले के जवाब में इसराइल ने ईरान में कई जगहों पर एक साथ हमला कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से अपील की थी कि ईरान पर पलटवार ना करें, इससे ईरान के साथ चल रहे समझौते पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद इसराइल ने ईरान पर बारूदी अटैक किया है। तंसीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने तेहरान, इस्फहान, तबरीज समेत कई शहरों में एक साथ बम और मिसाइल बरसाए हैं। करज में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है।

0: धमाके की तेज आवाज। इसराइल का दावा है कि उसके डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया। इसराइल ईरान के मिसाइल हमले को नाकाम करने का दावा कर रहा है, लेकिन ईरान के लोग इस हमले को लेकर जोश में नजर आए। तस्वीरें देखिए, जब ईरान ने मिसाइलें दागी तो करमन शाह में लोग खुशी से चीख रहे थे। लोग खुशी में ईरानी झंडे लहरा रहे थे। कुछ ऐसा ही नजारा ईरान की राजधानी तेहरान में भी नजर आया। हाथों में ईरान और हिजबुल्ला का झंडा, साथ में सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की तस्वीरों के साथ अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। लोगों के जोश का आलम ऐसा था कि मानो ईरान ने जंग फतह कर ली हो। अट्ठाईस फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले से छिड़ी लड़ाई के 100 दिन पूरे हो गए हैं। अप्रैल में अमेरिका और ईरान में युद्ध विराम हुआ था। युद्ध विराम के बाद ईरान का यह पहला हमला हुआ है। ईरान ने यह हमला बेरूत के दक्षिणी उपनगर पर इजरायली हमले के बदले में किया। बेरूत पर हुए इजरायल के हमले में 2 लोगों की मौत हुई और 20 जख्मी हो गए थे। ईरान ने युद्ध विराम का दायरा लेबनान तक फैलाने की मांग की थी, लेकिन इजरायल लगातार लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला करता रहा है। हमले के बाद ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि इजरायल अगर लेबनान पर अपने हमले बढ़ाता है या ईरान पर जवाबी हमला करता है तो उसे और भी विनाशकारी हमलों का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सेना ने आरोप लगाया कि इसराइल लगातार लेबनान में फास्फोरस बमों सहित प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल करके युद्ध अपराध कर रहा है। ईरान की पिछली चेतावनियों के बावजूद बेरूत के बाहरी इलाकों पर हमला किया गया। ईरान के मिसाइल हमले और IRGC की धमकी के बाद इजरायली सेना ने भी जुबानी पलटवार किया। IDF प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल AP डफरिन ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर लिखा कि पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना सतर्क और तैयार है। ईरान का मिसाइल हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पश्चिम एशिया में स्थायी युद्ध विराम की कोशिशें चरम पर हैं। ऐसे में ईरान के इस हमले से शांति वार्ता के पटरी से उतरने और दोबारा युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। आज तक ब्यूरो।
1: सुमित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमित, लाख मना करने के बावजूद इसराइल के हमले हो रहे हैं। अब इसराइल तो साफ तौर पर यह संकेत दे रहा है कि वो किसी समझौते के मूड में नहीं है। इरादा क्या है और अब क्या यह युद्ध फुल थ्रॉटल मोड में आ चुका है?
2: देखिए, वैसे तो इसराइल का इरादा बहुत क्लियर था नया पहले दिन से। इसराइल हमेशा से मानता है कि साउथ लेबनन के इलाके हैं वो इसराइल के पास जाने चाहिए। जो आप कह गुलान हाइट्स के इलाके हों, बेका वैली के इलाके हों, ये सारे इलाके लगातार वो सीरिया से लेबनन से कब्जा करके बैठा हुआ। अब अभी कोशिश ये कर रहा है इसराइल कि ज्यादा से ज्यादा लितानी रिवर के आसपास के इलाकों में वो अपना कब्जा कर ले, ताकि उसके नॉर्दर्न एरिया जो है, यानी नॉर्थ इसराइल का जो इलाका है, हाइफा पोर्ट हो या आसपास के इलाका, वो सिक्योर कर ले। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि फिर हिजबुल्ला के वजूद पर सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हिजबुल्ला को फिर सिर्फ बेरूत के आसपास सीमित रहना पड़ेगा। और अगर वहां से वो मिसाइल लॉन्च करे या ड्रोन लॉन्च करेगा, उसका प्रभाव नॉर्दर्न इसराइल में नहीं पड़ेगा। और शायद इसी कमोबेश लगातार ईरान की तरफ से ये रिटेलिएट, आप कह सकते हैं, या फिर वार्निंग शॉट्स, वार्निंग मिसाइल्स फायर किए गए और ये कोशिश की गई इसराइल को समझाने की कि उसको अपने फोर्सेस को पीछे खींचना पड़ेगा। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि वो किस तरीके से इसराइल को मनाए, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में जब दोनों एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं, तो माना यही जा रहा है कि शायद एक और नए युद्ध का आगाज ना हो जाए। हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा गया कि जो इसराइल की तरफ से हमले किए गए थे ईरान पे, वो बहुत लिमिटेड थे। लेकिन अब ईरान की तरफ से जो हमले होंगे वो कैसे होंगे, क्योंकि ईरान ने जो हमले किए थे वो सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज को स्पेसिफिक रखकर अटैक किए थे, तो अभी देखना होगा कि ईरान क्या दोबारा से जो रिटेलिएशन करेगा या जो अटैक करेगा वो तेल अवीव हो या बाकी इलाकों में करता है, तो फिर तौर पर इसराइल भी इन अटैक्स को या फिर इस वॉर को एक नए मोड पर ले जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है।
1: ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच तेहरान, इस्फहान और तबरीज में मिसाइल अटैक्स हुए हैं और लगातार वहां पर इसराइल के अटैक्स जारी हैं। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, क्योंकि आपने वॉर को कवर किया जब इसकी शुरुआत हुई थी, इसराइल कहीं ना कहीं नाफरमानी कर रहा है अमेरिका की, और ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि इससे अमेरिका पर इस वक्त कितना दबाव है, क्योंकि वो तो असमंजस की स्थिति में, दूसरी तरह समझौते पर बातचीत हो रही है। अब आगे अमेरिका का क्या स्टैंड हो सकता है?
3: नेहा, बिल्कुल, अमेरिका के लिए अब आर या पार वाली स्थिति बन गई है, क्योंकि कल ही शाम को जो है ईरान ने

0: मिसाइल स्ट्राइक की थी इसराइल पर, बेरूत पर हमले को लेकर, उसके बाद तुरंत जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ कहा था, एनफ इज एनफ, कि जो ईरान ने हमले किए हैं इसराइल पर अब उनको रुकना चाहिए। और एक घंटे तक जो है बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइल के प्रधानमंत्री है उनसे बातचीत की थी, और बातचीत इसी बात को लेकर थी कि 2 या 3 दिन में ईरान के साथ अमेरिका की डील होने वाली है, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू रखना न डाले। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू, जैसे कि उनकी आदत है, वो किसी की नहीं मानते हैं। उन्होंने अब की बार भी जो है ट्रंप यानी अमरीकी राष्ट्रपति की बात को जो है उसको नजरअंदाज किया है और ईरान पर हमला किया है। जैसे सुमित बोल रहे थे, अब काफी दिलचस्प ये होगा कि एक तरफ तो डिप्लोमेसी की कोशिशें अमेरिका और ईरान के बीच चल रही हैं, 3 देश मध्यस्थता कर रहे हैं, चीन की भी नजर है इस बातचीत की प्रक्रिया पर, वो भी अमन चाहता है क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मूज से आज भी आप देख रहे हैं कि तेल के दाम करीब 3% बढ़ गए हैं जब से ये स्ट्राइक्स हुई हैं, पहले इसराइल पर और उसके बाद इसराइल का जवाबी हमला ईरान पर। लेकिन अब जो है ये काफी महत्वपूर्ण होगा, जो पहले कहा आया जिसी ने कि अगर रिट्रीट करता है इसराइल ईरान पर या ईरान के सहयोगी लेबनान पर, तो वो जवाबी कार्रवाई और भी सख्त करेगा। मेरे को ये लगता है कि कुछ घंटों के भीतर ईरान की तरफ से पलटवार होगा, और इस पलटवार जो है वो भीषण होगा कल वाले से, क्योंकि कल सिर्फ नॉर्दर्न इसराइल के इलाकों को IRGC और ईरान ने निशाना बनाया था, अब ये दायरा शायद बढ़ सकता है क्योंकि इसराइल जो है Day 1 से इसी प्रयास में लगा है कि किस तरह से जो समझौता संभावित माना जा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच, उसको किस तरह से जो है डिरेल करे। तो कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल की वो कोशिश, दूसरी तरफ अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, अगर बेंजामिन नेतन्याहू या इसराइल इस युद्ध से निकलता है, वो बिना कुछ हासिल किए जो है इस युद्ध को युद्ध से निकलेंगे, जो उनको इलेक्शन में हार में बदल देगा। और यही कारण है कि अब काफी क्वेश्चन चल रही हैं। अभी महत्वपूर्ण 2 चीजें हैं, एक तो ईरान की तरफ से क्या कोई जवाबी कार्रवाई होगी, अगर होगी तो किस नवियत की होगी, और तीसरी बात जो है काफी महत्वपूर्ण कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या होती है, क्या वो पकड़ते हैं इसराइल को कि आप कोई हमला मत करो, या फिर इसराइल को जिस तरह से वो छूट देते आ रहे हैं शुरू से, उस तरह की छूट जवाबी कार्रवाई के लिए देंगे।
1: बने रहे हमारे साथ। इस बीच ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के एयर स्पेस में कोई एयरक्राफ्ट दाखिल नहीं हुआ है। ईरान पर जो बमबारी की गई है वो भूमध्य सागर में मौजूद युद्धपोतों से की गई है। तो ये नई जानकारी सामने आ रही है, ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। ईरानी हवाई क्षेत्र में नहीं आए हैं एयरक्राफ्ट, यानी कुछ हद तक अभी हमले को कंटेन किया जा रहा है, सब जगह हमले नहीं किए जा रहे हैं। भूमध्य सागर में मौजूद युद्धपोतों से यह हमला दरअसल हो रहा है। ईरानी मीडिया अब इस बात की पुष्टि कर रहा है। तो ईरान के IRGC ने दावा किया कि इसराइल ने ईरान के भीतर कई ठिकानों पर हमला किया। इदारा जारी के बयान में IRGC ने कहा कि इसराइल ने कई लक्ष्यों को ठिकाना बनाया है, निशाना बनाया है। और ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक हमले में एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। हालांकि अभी किसी बड़े नुकसान या हताहत की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। सुमित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमित, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का क्या मतलब है?
2: देखिए बिल्कुल नेहा, आपने अब से थोड़ी देर पहले कहा कि कंटेन करने की कोशिश की, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि देखिए जब आप बयान सुनते हैं, जब आप लगातार इसराइल की तरफ से बयान सुनते हैं, ईरान की तरफ से बयान सुनते हैं, अमेरिका की तरफ से बयान सुनते हैं, तो ये ऐसा लगता है कि देखिए आग जरूर लगी है, युद्ध जरूर हो रहा है, लेकिन कोशिश की जा रही है इसको ठंडा करने की भी। अमेरिका की तरफ से स्पेसिफिक कहा गया कि इसराइल के अटैक बहुत लिमिटेड स्कोप के अटैक थे। ईरान ने भी जब अटैक किए तो उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ कंसोलिडेशन के लिए, या फिर आप कह सकते हैं जो लेबनन के लोगों के साथ खड़े होने के लिए ये कार्रवाई की है। तो दोनों की तरफ से पोस्टरिंग ऐसी ही हो रही है कि देखिए ये सिर्फ लिमिटेड अटैक थे, लेकिन अभी जो अटैक किए गए हैं वो उन सभी जगहों पर इसराइल ने अटैक किए हैं जहां से इसराइल के नॉर्दर्न इलाकों पर ईरान ने अटैक किए थे, चाहे वो इस्फहान का इलाका हो, चाहे वो आप कह सकते हैं नतांज का इलाका हो, तबरीज का इलाका हो, या फिर तेहरान के आउटस्कर्ट्स के अंदर जो मौजूद उनके लॉन्च पैड्स हैं या फिर उनके जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं वहां पर अटैक किए गए हैं। तो ये दिखाने की कोशिश की है कि हमने भी सिर्फ रिटेलिएशन किया, लेकिन बहुत लिमिटेड और बहुत स्पेसिफिक जगह पर, ताकि ये जवाबी कार्रवाई ही नजर आ सके। लेकिन क्या अब जब ईरान अटैक करेगा, क्योंकि तेहरान पर जब भी अटैक होता है तो ईरान की कोशिश होती है कि वो तेल अवीव पे, जेरूसलम पर या हाइफा पोर्ट के ऊपर ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो क्या अब अगर ईरान कार्रवाई करता है तो फिर वो कैसा नुकसान पहुंचाएगा और फिर वार पलटवार का दौर कब तक चलेगा, ये देखना भी बाकी होगा।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, दिखाते हैं आपको डोमिनिका रिपब्लिक पर हुए एक विमान हादसे का वीडियो। ये वीडियो एक निजी विमान के क्रैश होने का है। ला रोमाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में पायलट और पायलट की जान चली गई है। हादसा इतना भीषण था कि पूरा विमान आग के गोले में तब्दील हो गया, दूर तक धुएं का गुबार देखा गया और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर बैठे पायलट और को पायलट का क्या हश्र हुआ होगा। क्रैश लैंडिंग दरअसल इस विमान की हुई, सेफ लैंडिंग नहीं हो पाई और अचानक पूरे विमान ने आग पकड़ ली। जब तक रेस्क्यू वहां तक पहुंच पाता तब तक दोनों पायलट और को पायलट मारे गए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है और 23 दलों के शामिल होने की यहां पर उम्मीद है। बैठक से डीएमके और आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया है, हालांकि ममता बैनर्जी के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह आज इंडिया गठबंधन की अहम बैठक और ममता की बंगाल में हार के बाद इंडिया गठबंधन की इस पहली बैठक में ममता बैनर्जी शिरकत कर सकती हैं। डीएमके और आपका किनारा है।
3: देश की बदलती सियासत की यह तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने के साथ साथ अपनी पार्टी के वजूद पर सवालों के बीच ममता बैनर्जी दिल्ली में है। कल उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और आज उस इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने वाली हैं, जिसे चुनावी हार से पहले उन्होंने कोई अहमियत नहीं दी थी।
4: नरकों में ठेलम ठेल एक कहावत है, उस नरक में आप कोई जाना नहीं चाहता है। जो ममता बनर्जी कहती थी है कांग्रेस 40 सीट भी नहीं आएगी, अपना सुपड़ा साफ हुआ तो आ रही है इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी चिट्ठी लिखे विरोध जता रही है, अरविंद केजरीवाल जाएंगे ही नहीं, कपटीवाल साहब काहे का इंडी, ये सारे घमंडियों का फौज बैठा हुआ है। एक चीज जरूर होगा, राहुल गांधी जी सिंहासन की तरह बैठेंगे, बाकी सब चम्मच लेके अखिलेश आते हैं कि नहीं देखिएगा।
3: बीजेपी हमेशा की तरह हमलावर है, लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर हो रही इस हलचल के लिए संजीदा है।
5: इंडिया अलायंस मीटिंग सर्टेनली ऑल इंडिया अलायंस मीटिंग इज इंपोर्टेंट, दिस इज आल्सो इंपोर्टेंट मीटिंग।
6: देखिए बीजेपी को इसी गलत फहमी में रहे तो अच्छा है, उनको ये नहीं पता है कि हर हार के पीछे जीत छुपी होती है और 2024 में हम लोगों ने दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी को धरती पर लाने का काम किया था इंडिया गठबंधन ने और 2029 में भी हम उनको बताएंगे कि किस तरह से सत्ता परिवर्तन होता है।
3: इंडिया गठबंधन की बैठक में 23 राजनीतिक दलों के शामिल होने के आसार हैं। कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, टीएमसी से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, आरजेडी से तेजस्वी यादव, शिवसेना यूबीडी से उद्धव ठाकरे के अलावा कई छोटी पार्टियों के नेता शामिल होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली इस बैठक से पहले विपक्षी धड़े में सब कुछ ठीक नहीं है। डीएमके और आम आदमी पार्टी ने बैठक से खुद को अलग कर लिया है, जबकि लेफ्ट ने कांग्रेस से सवाल पूछा है कि केरलम चुनाव के दौरान उसने लेफ्ट और बीजेपी के मिली भगत के आरोप क्यों लगाए।
7: अब अरविंद जी की पार्टी है, उनकी पार्टी, उन्होंने एक निर्णय लिया, उससे एक व्यापक गठबंधन कमजोर पड़ जाएगा, ये भी अतिरेक में नहीं कहना चाहिए। बेहतर होता साथ होते, और अगर नहीं है तो इसका ऑबिचुअरी लिख दें, इस प्रवृत्ति से भी बाज आना चाहिए।
3: कुल मिलाकर आपसी मनमुटाव को मिटाना और नई ऊर्जा के साथ मिलजुल कर अगली चुनावी लड़ाई की तैयारी इस बैठक का मकसद है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सामने अगले साल बड़ा चुनावी इम्तिहान है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनाव हैं। आज तक ब्यूरो।
1: राहुल गौतम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। राहुल, लेफ्ट ने तो केरलम का नाराजगी का हवाला देते हुए किनारा कर लिया, लेकिन डीएमके और आपके शामिल होने की ना होने की क्या वजह है?
8: देखिए डीएमके ने तो पहले ही अपना जो रास्ता है वो अलग कर लिया था, कोई ध्यान होगा उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीकर साहब है उनको चिट्ठी लिखी थी कि अब हम इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं है, इसलिए अब हमारी जो कुर्सियां हैं, ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो कांग्रेस से अलायदा किया जाए। ये तमाम चीजें तमिलनाडु हार के बाद हुई। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से कल साफ कर दिया गया संजय सिंह सोमनाथ भारती कि जब तक इंडिया अलायंस की जो नुमाइंदगी है या फिर जो लीडरशिप है वो कांग्रेस के पास रहेगी, तब तक हम किसी प्रकार की इंडिया ब्लॉक के अंदर शामिल नहीं हो सकते। यहां तक कि उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी का एक गठजोड़ है। तो कुल मिलाकर ये दो बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने आप को किनारा कर लिया है। लेकिन लेफ्ट की जो सीपीएम है उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है आने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को, और साफ कहा है कि जिस प्रकार की बयानबाजी हुई केरला चुनावों के समय में, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी को क्लैरिफाई करना चाहिए और उसके बाद ही ये फैसला किया गया कि सीपीएम भी शामिल होगी, लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी जता दी। तो कुल मिलाकर देखिए 23 पार्टियां तो जुड़ रही हैं, लेकिन जो वो बड़ी विपक्षी एकता की जो बात होती थी वो शायद अब हमको नहीं देखने को मिले, और जाहिर है इसका अंतिम लाभ बीजेपी को होगा। बीजेपी इस चीज को लेकर हमले भी ले रही है। और
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच आपको एक पोस्टर दिखा देते हैं जो इस महामीटिंग के पहले बनाया गया है। राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है, ये शरद पवार कह रहे हैं। इंडिया अलायंस वाले जो आपस में लड़ रहे हैं वो साथ क्या लड़ेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की मीटिंग दिल्ली में होनी है, और खबर लखनऊ से आ रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आज यूपी चुनाव और सीट बंटवारे को लेकर भी बातचीत संभव है। सूत्र के बारे से खबर यह है कि अखिलेश ने अपने आधे से ज्यादा प्रत्याशियों को हरी झंडी दी है, ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक में यूपी में सीट बंटवारे को लेकर बात होना लगभग तय माना जा रहा है। अखिलेश यादव पहले कह चुके हैं कि सवाल सीट का नहीं जीत का है। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर, तो पहले तो इस बात से इनकार कर दिया गया था कि किसी तरह का गठबंधन नहीं होगा उत्तर प्रदेश चुनाव में, अब कैसे अचानक से संभावनाएं जागृत हो गई।
9: देखिए, अखिलेश यादव का शुरुआत से नया स्टैंड है कि चुनाव साथ में लड़ा जाएगा, और उन्होंने ये बात कही है कि जो उम्मीदवार होगा वो जिताऊ होगा, फिर वो चाहे कांग्रेस पार्टी से हो और चाहे समाजवादी पार्टी से हो। कांग्रेस के नेता भी इस बात को मानते हैं, हालांकि अभी तक ऑफिशियल तौर पर कुछ ही सामने नहीं आई है, लेकिन आज जो बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है उसमें एक बात सामने जानकारी सूत्रों के मुताबिक निकल कर आ रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की शुरुआत आज से हो सकती है। अभी तक जो बातें सामने आ रही थी वो केवल सोशल मीडिया पर थी, लेकिन जो क्योंकि दोनों ही दलों के बड़े नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव की आज मुलाकात भी है उसी मीटिंग के दौरान है, और अगला बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का है, ऐसे में क्योंकि अखिलेश यादव ने तैयारियां अभी से लखनऊ में शुरू कर दी हैं, वो लगातार जिले भर बैठकें ले रहे हैं। इतना ही नहीं, कई नेताओं को तो जो है हरी झंडी भी दे दी गई है कि आप तैयारी करिए, आप ही चुनाव लड़ने वाले हैं, भले उसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई हो। इसलिए समाजवादी पार्टी ये चाहती है उन सीट्स पर क्लैरिटी, कम से कम जहां पर कांग्रेस को लगता है कि उनके उम्मीदवार लड़ सकते हैं, और लड़ने से बड़ी बात है जाति समीकरण साधते हुए जिता सकते हैं। समाजवादी पार्टी को ये मालूम है, पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ सीट्स ऐसे थे जो जानकारी मिली थी कि दोनों दलों के बीच में समन्वय सही नहीं बैठ पाया था, लेकिन जब ऊपर से फोन पहुंचे तो कांग्रेस को टिकट देना पड़ा था। लेकिन इस बार अखिलेश चाहते हैं कि जो भी चीजें हों वो कम से कम जिताऊ कैंडिडेट उतरे, तो ये माना जा रहा है क्योंकि दोनों दिग्गज नेताओं की काफी लंबे वक्त बाद मुलाकात हो रही है और समीकरण साधते हुए आज सीट्स का कहीं ना कहीं शुरुआत हो बंटवारे को लेकर।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात राजस्थान के जयपुर की, जहां पर नूरानी मस्जिद को लेकर माहौल गर्म है। सड़क चौड़ीकरण अभियान के बीच मस्जिद पर कार्रवाई की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। वहीं संवेदनशील और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर शांति बनाए रखने की अपील की है। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने आरोप लगाया कि भवन नियमों के अनुसार बनी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। दूसरी ओर सड़क चौड़ीकरण को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही कार्रवाई के बीच मस्जिद को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज है। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। देवअंकुर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। देवअंकुर, बुलडोजर का तो पूरा रेला दिखाई दे रहा है, कई सारे बुलडोजर वहां पर इस्तेमाल किए जाएंगे क्योंकि जो मस्जिद है वो काफी बड़ी है, और ऐसे में इस कार्रवाई में काफी वक्त लग सकता है। प्रशासन किस कदर तैयार है वहां?
10: देखिए, बेहद पुख्ता इंतजाम है नेहा, यहाँ पर मैं बता दूं आपको, पुलिस का जो है भारी जाप्ता यहाँ पर है, मल्टी लेवल बैरिकेडिंग है। ये जयपुर का नंदपुरी का इलाका है जहां पर ये नूरानी मस्जिद है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन मनीष आपको मस्जिद पर जूम इन करके दिखाएं कि मस्जिद का एक हिस्सा जो है नेहा वो तोड़ा जा चुका है। कहा जा रहा था कि ये 80 फीट की जो है वो विड्थ होनी चाहिए थी सड़क की, और उस पर कब्जा किया गया था, अवैध तौर पर इस मस्जिद को बनाया गया था। पर बड़ा सवाल नेहा ये है कि जयपुर नगर निगम के दफ्तर के ठीक सामने अगर ये अवैध निर्माण हो रहा था तो इतनी बड़ी मस्जिद नूरानी मस्जिद खड़ी कैसे हो गई। इसके अलावा चार और ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें एक मजार है, दो छोटे मंदिर बताए जा रहे थे, एक धर्मशाला बताई जा रही थी जिसको तोड़ने की कवायद जो है वो जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा की जा रही थी। यहाँ पर पुलिस का भारी जाप्ता जो है, एक बार चाहूंगा कैमरा पर्सन दिखाएं आपको किस तरह से यहाँ पर पुलिस की जो रिस्पांस टीम है वो मौजूद है, मल्टी लेवल बैरिकेडिंग है, बुलडोजर्स का एक पूरा जखीरा यहाँ पर आया हुआ है, मोबाइल फोन्स बाहर रखवा लिए गए हैं और ऐसा पुख्ता इंतजाम मैंने पिछले 15 साल में नहीं देखा। नया यहाँ पर इस प्रकार से इंतजाम किया गया है कि कोई भी धार्मिक उन्माद ना हो पाए, किसी भी तरह से मामला जो है वो बिगड़े ना और शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरी जो कवायद है जो अवैध तौर पर निर्माण है उसको तोड़ने की वो की जा रही है। वज्र वाहन यहाँ पर आए हुए हैं और कम से कम 500 पुलिसकर्मी यहाँ पर अलग अलग जगहों से, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर की जो पुलिस है पुलिस लाइन से वो यहाँ पर पहुंची हुई है। पुलिस के कई आला अधिकारी, कई सर्कल इंस्पेक्टर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हो सकता है जल्द ही यहाँ पर जयपुर कमिश्नर सचिन मित्तल भी यहाँ पर पहुंचे। जयपुर के अलग अलग जगहों पर नेहा जो इंटरनेट है, मोबाइल इंटरनेट है, उस पर बैन लगाया जा चुका है और किसी भी तरह से अनाधिकृत तौर पर लोगों का जमावड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि आज शाम तक ये जो अवैध तौर पर निर्माण किए गए थे उसको ध्वस्त कर दिया जाए। पर जैसे मैंने कहा, बड़ा सवाल नेहा ये है कि जयपुर नगर निगम के नाक के ठीक नीचे अगर ये अवैध निर्माण हो रहा था तो क्या अधिकारी सो रहे थे, क्या उनकी संलिप्तता थी, क्या उन्होंने जानबूझकर दूसरी तरफ देखा, क्या इसमें भ्रष्टाचार इन्वॉल्व था, ये सारे सवाल जो है इनके जवाब मिलने चाहिए। और ये पूरी कवायद जो है, ये तोड़ने की जो कवायद है वो जारी है इस समय। जयपुर का नंदपुरी का इलाका है और यहाँ पर जो अलग अलग इलाकों से पुलिस है वो पहुंची हुई है और कोशिश की जा रही है कि ये पूरी कवायद शांतिपूर्ण तरीके से कर ली जाए। पुलिस के कई आला अधिकारी,
1: जानकारी के लिए आपका। खबर पश्चिम बंगाल के जाधवपुर की, जहाँ फेरी वालों के खिलाफ प्रशासन की मुहिम के दौरान जमकर हंगामा मचा, झड़प में कई लोग के जख्मी होने की खबर है। जाधवपुर रेलवे स्टेशन के पास फेरी वालों को हटाने के लिए बीती रात प्रशासन कई जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचा और कई दुकानों को तोड़ दिया। इसके बाद वहां का नाम बढ़ गया। स्थिति को देखते हुए कोलकाता पुलिस, आरपीएफ और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया था। प्रशासन के अभियान से भीड़ उग्र हो गई। देर तक ये तनाव बना रहा और इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। स्थिति ऐसी होगी कि हालात को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: एक्जे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

ईरान और हिजबुल्ला के ताबड़तोड़ हमलों से दहला इजराइल, रमत है बेस पर दागी गई मिसाइल। नेतन्याहू को ट्रंप का फोन, बोले अभी मत करना पलटवार, डील का इंतजार। नेतन्याहू ईरान इराक लेबनान पर एक साथ पलटवार, तेहरान में कई सैन्य ठिकाने तबाह, ईरान का जवाब अब होंगे विनाशकारी परिणाम। गठबंधन का महाजुटान, बैठक से पहले केजरीवाल से मिली ममता, विजयन पर राहुल गांधी के बयान से भड़के लेफ्टिस्ट, खड़गे ने किया मान मनोवर। बागी गुट के नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने के फैसले का आज कोलकाता हाईकोर्ट को चुनौती देगी ममता की टीएमसी। आज तक से बोले रुद्रव्रत बैनर्जी, संपर्क में कई सांसद। जयपुर की निरानी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन का दिन आज, पूरा इलाका छावनी में तब्दील, भारी पुलिस फोर्स तैनात, रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट बंद।

मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात, ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला, पूरे देश में सारन और एयर डिफेंस एक्टिव। ईरानी हमलों के बाद इजराइल का करारा पलटवार, तेहरान, बेरूत और बगदाद पर एक साथ अटैक। ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट और इस्फहान में हमले का दावा, लगातार धमाकों से तेहरान में दहशत का माहौल। ईरानी मीडिया का बड़ा दावा, युद्धपोत से धूम मध्य सागर से मिसाइल दागी गई, मिसाइलें इराक की हवाई क्षेत्र से होकर अपने लक्ष्य तक पहुंची। ट्रंप की रोक के बावजूद मिडिल ईस्ट में संघर्ष और भड़का, नेतन्याहू ने दिया जवाबी सैन्य हमले का आदेश। मिडिल ईस्ट से हालात बेहद गंभीर, इसराइल ईरान के बीच शरम पर तनाव, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव और सायरन बजने से दहशत। तेल अवीव में एयर रेड सायरन, पूरे शहर में हड़कंप, इजरायली सेना अलर्ट पर, स्थानीय प्रशासन ने जांच शुरू की। क्षेत्र में लगातार सैन्य गतिविधियां तेज, दोनों पक्षों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। आईडीएफ चीफ और वरिष्ठ कमांडर इसराइल एयर फोर्स कमांड सेंटर से ईरान पर हमले के नेतृत्व कर रहे हैं। आईडीएफ सभी मोर्चों पर तैयार, कहा हर मोर्चे पर ऑपरेशन जारी रखने की है तैयारी। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का बहुत शक्तिशाली भूकंप, सुनामी का अलर्ट जारी। फिलीपींस में दिखा भूकंप का जोरदार असर, हाई स्कूल की इमारत ढही, छात्रों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। डोमिनिकन रिपब्लिक पे बड़ा विमान हादसा, इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश दौरान प्राइवेट जेट क्रैश। तकनीकी आपात स्थिति के बीच प्राइवेट जेट हुआ क्रैश, सुरक्षित लैंडिंग की कोशिश नाकाम, पायलट और को पायलट की मौत। जयपुर में सील की गई नूरानी मस्जिद पर कार्रवाई शुरू, प्रशासन ने ध्वस्तीकरण प्रक्रिया आगे बढ़ाई। जयपुर में सड़क चौड़ीकरण के लिए बड़ा एक्शन, मालवीनगर जगतपुरा मार्ग से हटाए जाएंगे धार्मिक स्थल, भारी पुलिस बल तैनात। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में 3,000 से अधिक पुलिसकर्मी, आरएसी की 12 कंपनियां और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। क्षेत्र में धारा 163 लागू कर रैली, जुलूस, प्रदर्शन और 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध। पुलिस सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रख रही है, भड़काऊ या धार्मिक उन्माद फैलाने वाली सामग्री साझा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली में बैठक, मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाएंगी 23 पार्टियां। डीएमके ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग से बनाई दूरी, तमिलनाडु में टीवी के सरकार को समर्थन देने से कांग्रेस से खफा हुई डीएमके। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक से बनाई दूरी, आप सांसद संजय सिंह बोले हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल होने के लिए कोलकाता से दिल्ली आई ममता, केजरीवाल से ममता और अभिषेक बैनर्जी ने की मुलाकात। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग पर कसा शिकंजा, निशिकांत दुबे बोले इस गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। बंगाल में ममता का विपक्ष के नेता ऋतव्रत बैनर्जी ने बढ़ाया सिरदर्द, टीएमसी के सांसदों के संपर्क में होने का दावा, आज तक ने से कहा सोमवार को कुछ हो सकता है बड़ा। ऋतव्रत बैनर्जी ने अभिषेक पर पार्टी को हाईजैक करने का लगाया आरोप, कहा ममता बैनर्जी का मिलता रहे मार्गदर्शन। बंगाल के पूर्व मंत्री अरूप विश्वास को फिर समन, लियोनल मेसी के कार्यक्रम में गड़बड़ी मामले में पूछताछ। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान, बनना चाहता था कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकिन अचानक हुई साजिश और बदल गए हालात। झारखंड से राज्यसभा चुनाव में बीजेपी नहीं उतारेगी प्रत्याशी, सूत्रों के मुताबिक निर्दलीय परिमल नथवानी को समर्थन करेगी बीजेपी। राहुल गांधी ने सीबीएसई कॉम को एम्ड विवाद को लेकर फिर केंद्र सरकार पर सवाल निशाना, कहा पीएम चाहते हमारे युवा रील्स बनाते रहें, सवाल ना पूछें। सीबीएसई ओएसए में गड़बड़ी को उजागर करने वाले छात्र सार्थक की तारीफ करते हुए राहुल गांधी ने कहा देश का 18 साल का बच्चा सीबीआई से तेज निकला। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा नौजवानों की ये जीत सही मायने में सरकार की हार है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर में करोड़ों रुपए का चढ़ावा गायब होने का आरोप लगाया। चढ़ावे में गड़बड़ी के अखिलेश के आरोप पर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बयान जारी कर कहा ऑडिट कार्य कई दिन तक चलता है, वही कार्य आजकल हो रहा है। ट्रस्ट के सदस्य महेंद्र विनेंद्र दास ने आरोपों को पूरी तरह खारिज किया, कहा ट्रस्ट में ऐसी गलती होगी नहीं, हर लेन देन का पूरा हिसाब किताब होता है। अखिलेश चंपत राय की सफाई पर पलटवार किया, का स्पष्टीकरण ही स्पष्ट नहीं, सारे ट्रस्टी एक साथ बैठेंगे तो सच तत्काल बाहर आ जाएगा। काशी में शहर के बाहर शिफ्ट होंगी मीट मछली की दुकानें, 5 स्थान किए गए चिन्हित। संभल में अवैध मस्जिद के ध्वस्तीकरण के दौरान पोस्टर मिलने के मामले में बड़ी कार्रवाई, साजिश, मस्जिद के मुतवल्ली जाकिर सहित 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। मस्जिद कमेटी के लोगों ने इस कृत्य से हिंदू समुदाय के लोगों में रोष व्याप्त होने और समाज में वैमनस्यता फैलाने का आरोप। पश्चिम बंगाल के श्यामपुर में भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे टीएमसी नेता को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा, सर मुंडवाकर जूतों की माला पूरे शहर में पहनाकर घुमाया।
धुलियान में टीएमसी नेता महबूब आलम गिरफ्तार, महबूब की पत्नी रोशनारा बीबी गिरफ्तार। आवास योजना के लाभार्थियों से किया था घेराव। आसनसोल के बर्नपुर में धर्मांतरण कार्यक्रम को लेकर बवाल, बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस ने आयोजक को हिरासत में लिया। बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बड़ा एक्शन, प्रशासन ने समाज कल्याण मंत्री से जुड़े निजी अस्पताल की बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया। अधिकारियों के अनुसार यह निर्माण सड़क की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया गया था और परियोजना के लिए सभी अतिक्रमणों पर समान रूप से कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हत्याकांड में शामिल आरोपियों का सीसीटीवी आया सामने, लिफ्ट से तीनों निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हत्याकांड के बाद लिफ्ट के नीचे उतरते हुए सीसीटीवी में कैद, पश्चिम बंगाल से पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया जबकि नाबालिग को हिरासत में लिया गया। मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में लाश चुराने एक और व्यक्ति के अस्पताल मौत, अब तक कुल हादसे में 22 लोगों की गई है जान। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में रेलवे स्टेशन के पास हॉकर्स को हटाने के लिए बड़े अभियान दौरान तनाव बढ़ा, बुलडोजर एक्शन के दौरान प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों में झड़प। भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षाकर्मी ने लाठीचार्ज किया जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल, सीपीआईएम नेता सुजन भट्टाचार्य हिरासत में। उत्तर प्रदेश में 32,679 पदों पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आज लिखित परीक्षा, बड़ी संख्या में पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी पहुंचे। प्रदेश भर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों में 2 पालियों में होगी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, 9 और 10 जून को होगी परीक्षा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम ने अभ्यर्थियों के हित के लिए बड़ा फैसला लिया, भर्ती परीक्षा के रब्ता करने वाले अभ्यर्थियों को बसों में मिलेगी 50% छूट। नागपुर के सांसद खेल महोत्सव का भव्य समापन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दिखा अलग अंदाज, गाया गाना, संगीत भरे समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल, गुनगुनाया गीत। वैश्विक

वैश्विक मंच पर भारत के गौरव का पल, भारत की मेजर अभिलाषाएं प्रतिष्ठित, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से हुई सम्मानित। दिल्ली में आज से शुरू होगी बीएसएफ बीजीबी डीजी सम्मेलन, घुसपैठ फेंसिंग और सीमा सुरक्षा पर निर्णायक चर्चा। संगीत में हुआ अटारी बॉर्डर का माहौल, पहली बार ऑस्कर विजेता संगीतकार ए आर रहमान ने किया परफॉर्म। दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग होगा काशी में स्थापित, प्रशासन से मिली मंजूरी, वीडियो जारी। डीआरआई मुंबई में सोना तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 5 करोड़ रुपए कीमत का सोना जब्त, 7 गिरफ्तार। दिल्ली में फिर बरसे राहत के बाद कुछ इलाकों में बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज। दार्जिलिंग में हुई झमाझम बारिश, बरसात के बाद मौसम सुहाना। एमपी के सीहोर में आंधी बारिश का कहर, सोलर पैनल उखड़कर सड़क पर गिरा, एक दबकर घायल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में किसानों की मेहनत पर फिरा पानी, खुले में रखा धान बारिश में भीगने से खराब। हिमाचल के पंडोह में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर भारी ट्रैफिक, मनाली की ओर जारी पर्यटकों की भारी भीड़। बघार पति से मिलने आई महिला मोबाइल टावर पर चढ़ी, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने सुरक्षित उतारा। इंदौर में बदमाशों का उत्पात, कई वाहनों में तोड़फोड़, पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया। पटना में 2 गुटों में गोलीबारी, ताबड़तोड़ चली गोलियां, 1 की मौके पर मौत, 2 घायल। मधेपुरा में आवासीय स्कूल में 6 साल की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत, शौचालय के पास पाइप से बंधा मिला शव, संचालक फरार। लखनऊ में महिला से छेड़छाड़, हत्या के प्रयास का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। बारामती में नशे में धुत ट्रक ड्राइवर खतरनाक स्टंट, कैमरे में कैद, बेकाबू ट्रक पलटा, चालक गंभीर रूप से घायल। टिहरी गढ़वाल में खाई में गिरी गाड़ी, 1 की मौत, बाल बाल बचा ड्राइवर। अमृतसर में चोरों ने किसान के घर करोड़ों की चोरी की, सोना और कैश लेकर फरार। गोंडा में मानसिक बीमार भाई ने भारी लठ से मारकर बड़े भाई को उतारा मौत के घाट, घर में लगाई आग, भैंस को मारकर किया घायल, हुआ गिरफ्तार। यमुनानगर में रंगदारी केस में बड़ा खुलासा, विदेशी नंबर से धमकियां, आरटीआई के जरिए कारोबारियों पर दबाव बनाने का आरोप। गाजियाबाद में पहले पेट्रोल चोरी करते दिखा संदिग्ध, कुछ देर बाद घर के बाहर खड़ी 3 बाइक्स में लगाई आग। बांदा में पैसों के विवाद में छोटे भाई ने की बड़े भाई की ईंट से कुचलकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में बच्ची के साथ थाने गाने पर दरोगा का रील बनाना पड़ा महंगा, एसएसपी ने मांगा स्पष्टीकरण। हरदोई में लंका मामला, बेटी की पीट पीट कर हत्या, आत्महत्या का रूप देकर जलाया गया शव, पिता समेत 4 गिरफ्तार। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में आग लगी, 8 लोगों को किया गया रेस्क्यू। सहारनपुर में चोरों और पुलिस के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में 1 चोर घायल। हापुड़ में मीट खाने से इनकार करने पर खूनी वार, युवक पर चाकू से हमला, गांव में तनाव के चलते पुलिस बल की तैनाती। बेतिया में रील बनाने के चक्कर में गंडक नहर में डूबे 2 युवक, दर्दनाक हादसे में हुई मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बुफलियाज सेक्टर की दुकानों में लगी भीषण आग, कई दुकानें चपेट में। जल्द पर्दे पर आएगी सलमान खान और नयनतारा की अनटाइटल मूवी, साउथ के मशहूर फिल्म मेकर वामशी पेडीपल्ली और दिल राजू की जोड़ी कर रही है निर्देशन। डॉक्टर 2 की रिलीज से पहले ट्रेलर ने बनाया ग्लोबल चार्ट्स पर दबदबा, यूएस टॉप 10 में मारी एंट्री। राजा मौली की फिल्म वाराणसी में राम और कुंभकर्ण का 30 मिनट का युद्ध होगा फिल्म का प्लस पॉइंट। जिम संबर सर्ब और नसरुद्दीन शाह स्टारर वेब सीरीज मेड इन इंडिया टाइटन स्टोरी ने जीता दर्शकों का दिल। ओटीटी पर रिलीज होते ही छाई वेब सीरीज पिरामिड स्कीम, 7 एपिसोड्स की सीरीज में आते ही टॉप 10 में जमाया कब्जा।

0: इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से। आज यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही है और इसको लेकर पूरे यूपी में पुलिस और एजेंसी अलर्ट पर हैं। यूपी एसटीएफ की प्रयागराज लखनऊ समेत कई यूनिट्स अलर्ट मोड पर हैं। 8, 9 और 10 तारीख को ये परीक्षा होनी है। हर दिन दो पालियों में परीक्षा दी जाएगी। इसको लेकर पुलिस प्रशासन सख्त है, मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, नकल को लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं और ये परीक्षा कड़े इंतजाम के बीच हो रही है। दो पालियों में परीक्षा की जाएगी और इसको लेकर अलग अलग राज्यों से भी लोग उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं। एसटीएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है।
1: उत्तर प्रदेश में आज सबसे बड़ी भर्ती हो रही है और यह भर्ती परीक्षा पुलिस में 32,689 पदों पर सिपाही के लिए हो रही है। आज से 3 दिनों तक रोजाना 2 शिफ्ट में यह परीक्षा होगी। करीब 28,80,000 से अधिक परीक्षार्थी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 1183 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम देंगे और किस तरीके से परीक्षा के इंतजाम किए गए हैं, मैं इस समय पर लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज पर मौजूद हूं जहां पर यह परीक्षा केंद्र बनाया गया है। अनाउंसमेंट करके परीक्षार्थियों को बताया जा रहा है कि चूंकि 10 बजे से परीक्षा होगी तो 10 से 12 की शिफ्ट में तो परीक्षार्थियों को बताया जा रहा है कि जल्द से पहुंचे। इसके साथ ही पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। दूसरी सबसे इस बार भर्ती बोर्ड ने जो नया तरीका अपनाया है कि जो भी व्यक्ति परीक्षा कक्ष से लेकर किसी भी परीक्षा केंद्र में ड्यूटी देने वाला कर्मचारी होगा उसको भर्ती बोर्ड की तरफ से एक अलग से आई कार्ड दिया गया है। यानी कि बिना भर्ती बोर्ड के जारी हुए आई कार्ड के कोई भी व्यक्ति किसी भी परीक्षा केंद्र में नहीं जा पाएगा। उत्तर प्रदेश में करीब 60,000 ऐसे कर्मचारियों को ये आई कार्ड जारी किए गए हैं। 30,000 के लगभग सीसीटीवी लगाए गए हैं। परीक्षा कक्ष से लेकर हर तरफ सीसीटीवी लगाए गए हैं और इन सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। देखिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। अनाउंसमेंट इस बात का कि परीक्षार्थियों को कैसे नियमों का पालन करना है, नियमों का पालन करते हुए परीक्षा देनी है। किसी भी तरीके के अनुचित साधनों का प्रयोग करके उस पर दंडित कार्रवाई होगी।
0: इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
2: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
3: continue to face political pressure to reach a peace deal,
2: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लायन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
6: लायन डेजर्ट किंग डेट्स,
5: सिंह जैसी
7: शक्ति मुझ में।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
10: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
11: इन एसोसिएशन विद
12: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
13: हिंट, बड़े आराम से
14: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
15: विमल बोलो जुबां केसरी।
16: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
17: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूँ जहाँ पर ये आग लगी।
18: मैं आपको टॉप एंगल से एक तस्वीर दिखाता हूँ और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है।
19: यहाँ पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था।
20: ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है।
18: 20 लोगों की जान चली गई। और देखिए जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहां से नहीं दिखाएंगे।

0: يا الله
1: अमेरिका ईरान के बीच बीते कुछ दिनों की शांति एक बार फिर धमाकों के शोर में भंग होती दिख रही है। एक बार फिर अमेरिका ईरान में बारूदी तनाव की स्थिति बन रही है। एक बार फिर हॉर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने, दोनों ओर से हुए हमलों के बाद टकराव बढ़ती दिख रही है। दरअसल ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज के पास चेतावनी के तौर पर फायरिंग की। दावा है कि अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की तैनाती में कुछ हरकत के जवाब में ईरान की ओर से गोलियां चलाई गईं। दूसरी तरफ एक अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि ईरान ने हॉर्मुज की ओर कई ड्रोन दागे जिनको तबाह कर दिया गया। दोनों ओर से हुई कार्रवाई ने एक बार फिर समुद्री मोर्चे पर दोनों देशों के बीच बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि एक दिन पहले पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को पसोपेश में डाल दिया। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता रहे। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। हम आपको बता दें कि बहरीन में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। अपने सहयोगी देशों पर ईरान के हमले से अमेरिका बौखला गया है। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोला। ईरान के सर्विलांस रेडार सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया। ईरान के रेडार सेंटर पर हमले का वीडियो भी अमेरिका ने जारी किया। अमेरिका का कहना है कि पहले ईरान ने हमला किया था, जिसके जवाब में उसके रेडार सर्विलांस टावर को उड़ा दिया गया। अमेरिकी सेना ने समुद्री हमलों से बचाव के लिए गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित ईरानी तटीय निगरानी रडार को ध्वस्त किया। इस हमले की तपिश अभी खत्म नहीं हुई थी कि अब हॉर्मुज पर नया मोर्चा खुल गया है, जिससे दोनों देशों में जंग का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: बंगाल में अब मदरसों की हकीकत कागजों पर उतरेगी। कौन चला रहा है, किस नियम के तहत चला रहा है और किसके पास क्या दस्तावेज है। शुभेंदु सरकार ने जिला प्रशासन को 5 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बंगाल में मदरसों के सर्वे के लिए 8 सवाल तैयार किए गए हैं। मदरसे की लोकेशन, स्थापना का वर्ष, रजिस्ट्रेशन की जानकारी, वैध दस्तावेजों की स्थिति, छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की जानकारी, आवासीय या गैर आवासीय, सरकारी सहायता प्राप्त या निजी, पढ़ाए जाने वाले कोर्स। क्योंकि बंगाल में मदरसे सिर्फ शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि दशकों से राजनीतिक बहस का हिस्सा भी रहे हैं। बंगाल में मदरसे बरसों से वोट बैंक, पहचान और तुष्टिकरण की बहस के केंद्र में रहा है। चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, महाजंगल राज के साथ इन मुद्दों को बीजेपी ने जमकर उछाला, ममता सरकार को घेरा, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को खूब मिला। पहली बार बीजेपी की बंगाल में सरकार बन पाई। अब जब मदरसों का राज्यव्यापी सर्वे शुरू हुआ है तो बीजेपी इसे अपने पुराने राजनीतिक अभियान से जोड़कर पेश कर सकती है और कह सकती है कि जिन सवालों को उसकी पार्टी चुनावी मंचों से उठाती रही, आज उन्हीं सवालों के जवाब सरकार खुद तलाश रही है। बीजेपी दावा करती है कि पश्चिम बंगाल में 2011 से पहले 2100 मदरसे थे, 2011 से 2026 बांग्लादेश सीमा के पास 35,000 से ज्यादा वैध और अवैध मदरसे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई को सीएम पद की शपथ ली थी। 11 मई को अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में ही भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को 121 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंपी और 45 दिनों के भीतर 600 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने का फैसला किया। स्कूलों की असेंबली में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य किया, गो हत्या पर सख्ती दिखाई, इमामों और पुरोहितों। ये सर्वे ऐसे समय में हो रहा है जब ममता बनर्जी सरकार से बाहर है, उनकी पार्टी तृणमूल तृण हो गई है, रोज टीएमसी में विवाद बढ़ रहे हैं और उनके वोट बैंक पर बीजेपी ने सीधा हमला किया है। यानी बंगाल में अब मदरसों की फाइलें खुलेंगी, लेकिन इसके साथ ही खुल जाएगी राजनीति की एक नई किताब। क्योंकि जिस राज्य में धर्म और राजनीति की रेखाएं अक्सर एक दूसरे को काटती रही हूं, वहां मदरसों का सर्वे सिर्फ प्रशासनिक कवायद नहीं माना जाएगा बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो, Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: ईरान इसराइल में जंग फिर शुरू, तेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्ला की ओर से भी हमले, पूरे देश में अलर्ट, स्कूल बंद, आईडीएफ ने इस्फाहान पर किया जवाबी अटैक।
1: फोन पर डील अलापते रहे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन नेतन्याहू ने ठुकराई अपील, ईरान से लेबनन तक ताबड़तोड़ हमले, टॉप कमांडर ने संभाली कमान, आईआरजीसी बोला नतीजे विनाशकारी होंगे।
0: फिलीपींस में आए जबरदस्त भूकंप की तस्वीरें देख सहम गई दुनिया, 7.8 की तीव्रता में तबाह हुए शहर, कई इमारतें जमींदोज, सुनामी की आशंका से दहशत।

0: का महाजुटान। बैठक से पहले केजरीवाल से मिली ममता बनर्जी। विजन पर राहुल गांधी के बयान से बढ़के लेफ्टिस्ट। खड़गे ने किया मान मनोवल।
1: जयपुर की नूरानी मस्जिद पर शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन। पूरा इलाका छावनी में तब्दील। भारी पुलिस फोर्स तैनात। रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट बंद।

0: आपका स्वागत है, मैं हूं अंजलि इस्तवाल।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी और 10 बजे के बुलेटिन में दोनों तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन दो खबरें जिन पर हमारी नजर आएगी। सबसे पहली खबर होगी युद्ध के मोर्चे से, जहां पर इसराइल पर ईरान के हमले के बाद जंग फिर से धधक हुई है। वहीं दूसरी खबर फिलीपींस से भी होगी।
0: फिलीपींस में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही मची है, तो इस सब पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन शुरुआत करते हैं मध्य पूर्व में युद्ध से, जहां आग फिर से धधक रही है। ईरान और हिजबुल्ला ने बीती रात इसराइल के शहरों को टारगेट कर मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद इसराइल का जवाबी हमला भी शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल, इसराइल ने ईरान के कई शहरों पर हमले बोल दिए। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने पश्चिमी और मध्य ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी समाचार एजेंसी इरना ने कहा है कि मुताबिक तेहरान, तबरीज और इस्फहान में कई विस्फोट किए गए हैं।
0: ऐसे में IRGC ने दावा किया है कि इसराइल ने हमलों में एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, और यह भी कहा गया है हालांकि ईरान की तरफ से कि किसी तरह के हवाई उल्लंघन की बात नहीं है। जो भी अटैक आया है वो भूमध्य सागर से आया है, युद्ध पोतों से आया है।
1: बिल्कुल, कहा जा रहा है कि देखिए चार तस्वीरें सबसे पहले आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार बड़े अटैक्स के बाद ये तस्वीरें ईरान और इसराइल से आ रही हैं। इसी बीच ईरान और इसराइल में फिर से लड़ाई की शुरुआत हो गई। आपको बता दें कि सीज़फ़ायर 100 दिन हो चुके हैं इस संघर्ष को, लेकिन एक बार फिर से ईरान और इसराइल के बीच में संघर्ष तेज हो गया है। ईरान ने इसराइल पर फिर से बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हैं।
0: तो खबर यही आ रही है कि एक बार फिर से ईरान ने इसराइल पर अटैक कर दिया है। इसराइल के कई शहरों में धमाके की आवाजें सुनाई दे रही हैं, साइरन बज रहे हैं, लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप बंकरों पर चले जाएं। ध्यान रखें, होम डिपार्टमेंट की तरफ से जो कहा जाता है उसको फॉलो करें। यरूशलेम में भी धमाके की आवाज सुनाई गई है। वैसे ही आपको बताया जा रहा है कि दावा यह है कि इसराइली मीडिया कह रही है कि कई जगह धमाके हुए हैं।
1: आपको बता दें कि ईरान ने जो भी हमले किए हैं इससे पहले वो सिर्फ नॉर्थ इसराइल के इलाकों में किए हैं, हाइफा के आसपास के इलाकों में या फिर उन इलाकों में जो लेबनान से जुड़ी सीमाओं के पास इजरायली फोर्सेस मौजूद हैं, उन जगहों पर अटैक किया। हालांकि इसराइल ने यह भी कहा है कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, उसने सभी मिसाइलों को निष्क्रिय कर दिया है।
0: लेकिन बड़ी खबर इस वक्त, धमाकों की आवाज कई शहरों में। आखिर ये धमाके क्या है, और एक अलर्ट भी जारी किया गया है लोगों के बीच में जो इसराइल की तरफ से किया गया है कि आप लोग सावधान रहें।
1: और देखिए इसी बीच इसराइल की डिफेंस फोर्सेस की ओर से एक बड़ा बयान आया। IDF ने कहा है कि यमन की ओर से भी हमले किए गए हैं, मतलब हूती विद्रोही भी अब लगातार इस जंग में, इस संघर्ष में कूद गए हैं।
0: बड़ी खबर है ये इस वक्त, यमन की तरफ से भी इसराइल पर हमले का दावा है इसराइल का। इसराइल पर लेबनन, यमन और ईरान एक साथ टैंडम में अटैक कर रहे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त है। और बदले में बेरूत में हमला किया था इसराइल ने, तेहरान पर हमला किया था, और इराक में बगदाद को भी निशाना बनाया गया था।
1: और हमारे साथ हमारे सहयोगी अशरफ वानी भी जुड़ गए। अशरफ, देखिए माना यह जा रहा था कि इसराइल की फोर्सेज लितानी रिवर के बेहद करीब पहुंच चुकी है, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी जिसको लेकर ईरान बार बार कह रहा था कि ये रेड साइन है, ये रेड लाइन, अगर ये पार किया गया तो फिर अटैक होंगे, और ऐसा ही हुआ। ईरान ने बड़े अटैक्स कर दिए, खासतौर पर नॉर्थ के इलाकों में।
2: बिल्कुल सुमित, और जो आपने लितानी रिवर की बात की, वहां पर भी भारी नुकसान जो है ऑप्टिकल ड्रोन से इजरायली सेना को जो है उठाना पड़ रहा है, और यही कारण है कि हताशा में उन्होंने पूरे तरह से लेबनान में बीरूत तक जो है अपने हमले जो थे वो तेज किए थे। उसी बीच ईरान ने पहले ही कहा था कि जब सीज़फ़ायर की बात अमेरिका के साथ हुई उसमें सभी मोर्चों पर जो है अमेरिका और इसराइल को युद्ध बंद करना था, लेकिन हमने देखा कि अपने आदत के अनुसार इसराइल ने कहीं पर भी सीज़फ़ायर का पालन नहीं किया, चाहे वो लेबनान हो या गाजा हो। उस बीच जो है रेड लाइन जो थी वो बीरूत थी, और हमने देखा कि शनिवार को जब बीरूत के दहिया इलाके में हमला हुआ इसराइल का, जिस पर अमेरिका ने कहा कि उनसे कोई संपर्क नहीं किया था इसराइल ने इन हमलों को लेकर, और उसकी जवाबी कार्रवाई कल देर शाम भारत के समय के अनुसार ईरान ने की, और ईरान ने उन

0: अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर का आज ठीक 2 महीना पूरा हुआ ही था कि एक बार फिर इसराइल पर बारूदी हमलों की बौछार हो गई। देर रात ईरान और हिजबुल्ला ने दोनों ओर से इसराइल के शहरों को टारगेट किया और तबाही मचाने के लिए मिसाइलें दाग दी। ये हमले कितने भीषण थे, कितने घातक थे, विध्वंस का प्लान कितना बड़ा था, वो हमलों की इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने इसराइल के उत्तर की ओर से 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। बड़ी बात यह है कि अप्रैल में हुए संघर्ष विराम के बाद ईरान की ओर से यह इसराइल पर पहला बड़ा हमला हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ईरान के अचानक इसराइल पर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमलों की वजह क्या है। दरअसल ईरान ने इसराइल पर यह हमले लेबनन की वजह से किए हैं। ईरान चाहता है कि इसराइल लेबनन पर सैन्य एक्शन फौरन बंद कर दे, लेकिन इसराइल वहां हिजबुल्ला समेत दूसरे ठिकानों को लगातार टारगेट कर रहा है। इसराइल की ओर से ताजा हमला लेबनन की राजधानी बेरूत में किया गया था।
1: ईरान और इसराइल के बीच में हुए ताजा संघर्ष को एक तरीके के वार्निंग शॉट्स के तौर पे देखा जा रहा है। ईरान लगातार ये मानता है कि अगर लेबनन के अंदर इसराइल की फोर्सेस की मौजूदगी इसी तरीके से रही तो फिर हिजबुल्ला को कभी भी वो रिवाइव नहीं कर पाएगा। इसी वजह से ईरान ने एक तरीके से बड़े अटैक्स को इनिशिएट किया। वहीं दूसरी तरफ इसराइल ने भी जो अटैक किए वो सिर्फ उन्हीं इलाकों में किए जहां से उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की गई थी। हालांकि दोनों ही देश लगातार अपनी पूरी सैन्य क्षमताओं के साथ लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि एक तरीके के वार्निंग शॉट थे, यानी चेतावनी थी कि अगर एक दूसरे की बातें शर्तों को माना नहीं गया तो फिर निश्चित तौर पर ईरान भी एक बड़ी जंग के लिए तैयारियां कर चुका है।
0: ईरान बार बार इसराइल को चेतावनी दे रहा था और उसकी धमकी ये थी कि अगर इसराइल की ओर से लेबनन पर हमले नहीं थमे तो वो तबाही मचाने को तैयार है। अब ईरान ने अपनी धमकी पर अमल कर जंग को फिर से धक्का दिया है।
2: לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל. נערכנו לכך. צה"ל ערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה. כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צה"ל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה.
0: इन हमलों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सलाहकार मोहसेन रेजाई का बयान भी सामने आया है। खामेनेई के सलाहकार ने कहा है कि ईरान ने बार बार चेतावनी दी थी कि वो युद्ध विराम के उल्लंघन और लेबनन पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमलावरों को आज रात इसका जवाब मिल गया। इसराइल पर हिजबुल्ला के ताजा हमलों ने मध्य पूर्व में हलचल बढ़ा दी है। ट्रंप ने खुद इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात की और जवाबी हमला ना करने की अपील की ताकि ईरान से जारी डील के रास्ते में कोई बाधा ना आए। दावा है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को हमला ना करने का भरोसा दिया, लेकिन कुछ ही देर में इजरायली सेना ने ईरान के कई शहरों में अटैक कर तबाही वाला अभियान शुरू कर दिया। वहीं हमलों के ठीक बाद ही आईआरजीसी ने चेतावनी दी थी कि अगर इसराइल की ओर से जवाबी हमला हुआ तो अंजाम विनाशकारी होगा। ऐसे में अब इसराइल ने भी मिसाइलों का मोर्चा ईरान की ओर खोल दिया है तो युद्ध और भड़कना तय माना जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: और आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी
4: हमारे साथ प्रणय उपाध्याय भी जुड़ गए। प्रणय, देखिए जिस तरीके से अंजलि भी बात कर रही थी कि अब अमेरिका करेगा क्या, क्या अमेरिका के हाथ में इन दोनों को कंट्रोल करना सच में है या बात इतनी आगे निकल चुकी है कि सब अपने अपने डिसीजन ले रहे हैं, सब अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे हैं।
5: देखिए, ईरान के इस पैंतरे ने निश्चित रूप से इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किल और बढ़ा दी है, क्योंकि यदि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस सलाह को, उनके उस आग्रह को मानते हैं कि वो

0: रेस्ट्रेन या संयम बरतें, वो कार्यवाही ना करें, तो उनके लिए घरेलू स्तर पर राजनीति की मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि इसराइल के अंदर अगले कुछ ही महीनों के अंदर अक्टूबर में उनके यहाँ पे चुनाव होने हैं, और उस चुनाव के अंदर वो इस दाग के साथ में चुनाव के मैदान में नहीं जा सकते हैं कि उन्हें एक तो अमेरिका से कंट्रोल किया गया, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ईरान की तरफ से किए गए वार का जवाब नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने यहां से एक दोराहा आता है, यदि वो चाहें तो वो इससे अपने आप को अलग कर सकते हैं, वो इसे एस्केलेशन करार दे सकते हैं, वो कह सकते हैं कि ये इसराइल और ईरान के बीच का जो बढ़ता हुआ तनाव है, इसमें अमेरिका जो है वो फिलहाल अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से इससे अलग है, हम इसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए घरेलू स्तर पर राजनीति की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ती हैं क्योंकि एक तो उनके यहां भी मिड टर्म इलेक्शन होना है, और दूसरी बात यह है कि वो सार्वजनिक तौर पर कई बार कह चुके हैं कि ईरान की मिसाइलें इसराइल को तबाह करना चाहती हैं और इसकी इजाजत अमेरिका नहीं दे सकता है। तो इस मूव के बाद में ये जो पूरा एस्केलेशन था, ये टेंशन था जो कि एक डेडलॉक के ऊपर अटका हुआ था, इस एस्केलेशन के बाद जो फर्दर स्थिति है वो न केवल और कॉम्प्लिकेट हो गई है, और ज्यादा पेचीदा हो गई है, बल्कि यहां से एक एफर्ट भी शुरू हो सकता है कि इस टेंशन को यदि कम किया जाए तो समाधान जल्दी से जल्दी निकाला जाए, क्योंकि 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और करीब 2 महीने से ज्यादा ये सीज फायर जो चला वो आज टूटता हुआ तार तार होता हुआ नजर आ रहा है। अब बड़ा
1: जी
0: सवाल यह है कि क्या ये सीज फायर किसी नई शर्त के साथ बरकरार या बहाल किया जा
1: जी
0: सकता है, या यहां से एक नए लड़ाई के दौर की शुरुआत होती है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है। अंजलि,
1: जी प्रणय, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो सबसे बड़ा धर्म संकट ट्रंप के सामने ही नजर आ रहा है। ईरान और इसराइल के हमलों ने फिर से महायुद्ध का संकट बढ़ा दिया है। ये खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि नेतन्याहू अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी नहीं सुन रहे हैं।

0: जब अमेरिका ईरान में डील फाइनल होने की उम्मीद जग रही थी, जब कई मुल्कों की कोशिशों के बीच स्थायी शांति की चर्चा हो रही थी, ठीक उसी वक्त ईरानी मिसाइलों की बौछार ने इन सारे प्रयासों को युद्ध की आग में झोंक दिया। बीती रात के दूसरे पहर में जब ईरानी मिसाइलें गर्जी, बारूदी धमाका हुआ और दो ओर से इजरायली शहरों को टारगेट किया गया, तभी दुनिया को यह एहसास हो गया था कि अब जवाबी हमला बेहद खतरनाक होगा। लेकिन इजरायल का गुस्सा धधके इससे पहले ही उसे शांत करने की कोशिशें शुरू हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात की, भरोसा भी मिला कि जवाबी हमला नहीं होगा। लेकिन कुछ ही देर में जो कुछ हुआ, उसकी उम्मीद तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सपने में भी नहीं की थी। तंसीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने तेहरान, इस्फहान, तबरीज सहित कई शहरों में एक साथ बम और मिसाइल बरसाए। ईरान के करज शहर में भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ईरान के कई शहरों से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी।
1: ईरान और इसराइल का ये संघर्ष ऐसे वक्त में आया जब युद्ध विराम को लेकर ईरान और अमेरिका की बातचीत एक निर्णायक मोड पर चल रही थी। हालांकि ईरान ये कोशिश कर रहा है कि नेगोशिएशंस के टेबल पर जाने से पहले वो पूरी तरीके से अमेरिका और इसराइल को दिखा सके कि इस जंग के दौरान उसने कुछ खोया नहीं है, उसने कुछ पाया है, और वही पावर वो लगातार इसराइल और अमेरिका को दिखाने की कोशिश भी कर रहा है।
0: ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसराइल ने ट्रंप की अपील क्यों खारिज कर दी? आखिर इजरायली पीएम नेतन्याहू के मन में क्या चल रहा है? क्या इजरायल हिजबुल्ला के पूरी तरह खात्मे की कसम तक युद्ध जारी रखने की रणनीति को आगे बढ़ा रहा है? अभी कुछ दिन पहले ही वॉशिंगटन और तेल अबीब के कूटनीतिक गलियारों से एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। बताया गया कि लेबनन, हिजबुल्ला और ईरान को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच भारी मतभेद है, जिसके बाद ट्रंप को नेतन्याहू को सख्त संदेश भी देना पड़ा था। लेकिन ट्रंप की हर कोशिश इसराइल पर बेअसर दिख रही है। न ही इसराइल ने लेबनन पर हमले रोके, न हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह करना बंद किया। अब जब ईरान की ओर से युद्ध का मोर्चा खोल दिया गया है, तो इसराइल को आर पार की जंग का मौका मिल गया है। अगर अब नेतन्याहू ईरान में तबाही वाले प्लान को तेजी से अंजाम देते हैं, तो ये ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका होगा और फिर से पूरा मध्य पूर्व युद्ध की लपटों में घिरेगा। आज तक ब्यूरो।
2: और अब बात करते हैं फिलीपींस में आए भूकंप की। आज सुबह फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसके चलते कई मकान तबाह हो गए हैं, कई बिल्डिंग्स गिर गई हैं। भूकंप से अब तक फिलीपींस में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। भूकंप के बाद फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया के तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है।
1: और चलिए वो आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि इस समय तबाही का क्या मंजर है फिलीपींस में। अगर आप देखें, ये स्कूल की एक ऐसी तस्वीर है जब ये भूकंप आया, 7.8 बताया जा रहा है, जो इसकी तीव्रता थी वो 7.8 की थी। और उस समय ताजा हालात क्या थे स्कूल के, आप देख सकते हैं, पैनिक था। हालांकि देखिए, फिलीपींस को आदत है ऐसे भूकंपों को पहले भी झेलने की, उसका सामना करने के लिए, इसलिए वहां के लोगों को इसके बारे में पूरा ट्रेनिंग या एग्जाम कह सकते हैं प्रशिक्षण दिया जाता है। ये आप तस्वीर एक और देख सकते हैं कि जहां पर एक पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो गई। आप ये देखिए तस्वीरों में कैसे पल भर के अंदर ये पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो गई। और जो फिलीपींस के जो कोस्टल एरिया है वहां पर ज्यादा तबाही की खबरें सामने आ रही है। दरअसल करीबन जो उनके फिलीपींस मोबाइल, आप कह सकते हैं कि जो उनका कोस्टल एरिया है वहां पर ज्यादा तबाही है। दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पहली तस्वीर एक स्कूल की थी, दूसरी तस्वीर एक रेजिडेंशियल इलाके की थी। और अब कई जगहों पर आप देखें कि कैसे ताश के पत्तों की तरह ये इमारतें आपको बिखरती हुई नजर आ जाएंगी। इस जो अभी की तीव्रता बताई जा रही है भूकंप की वो 7.8 है। 2025 में भी जब इसी तरीके का भूकंप आया था तब भी 7.5 की तीव्रता थी, उस समय भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया था, उस समय भी बहुत ज्यादा नुकसान फिलीपींस को झेलना पड़ा था। लेकिन अब माना जा रहा है कि इस बार जो नुकसान का आकलन है या फिर आप मुसीबत है वो फिलीपींस पे ज्यादा है, क्योंकि इस बार तीव्रता 7.8 के करीब बताई जा रही है। आपको बता दें कि 1976 के आसपास के समय पर इससे ज्यादा, 8 तीव्रता का भूकंप आया था, भारी तबाही हुई थी फिलीपींस में। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर आप कहें तो रिक्टर स्केल पे जो मापा गया भूकंप वो 7.8 है, और इसी वजह से माना जा रहा है कि देखिए तबाही का मंजर इस समय बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान फिलीपींस को झेलना पड़ सकता है। तस्वीरें हम आपको तमाम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय फिलीपींस के लोगों के लिए कितनी ज्यादा मुसीबत की घड़ी है।
2: तो ये अलग अलग तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पल वही है, जगह अलग अलग है। इन सभी तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से इमारतें भरभरा के नीचे गिर रही हैं। स्कूल की शुरुआत ही हो रही थी उस वक्त, और कहा यह जा रहा है कि आज कई स्कूलों का पहला दिन था, और स्कूल में गए बच्चे किस तरीके से देखिए बाहर डर के बैठे हैं, टीचर्स उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं। और ये तस्वीर जब वो इमारत भरभराई है, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जिसकी तस्वीर आपके सामने की, किस तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह गई ये इमारत, लोगों का डर और खौफ उनके सामने सीधा आप एकदम रियल होता हुआ नजर आ रहा है। खुलो
1: और चलिए खबरों का सिलसिला अभी इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी आपको तमाम बड़ी खबरें बताते रहेंगे, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी
4: नीड बेटर इंटरनेट, Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
5: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
6: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
7: Savari.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स, ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
7: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
6: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
8: अरे इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
11: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
12: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
13: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
11: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
14: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
12: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
11: जहां खबर वहां खबरदार।
15: इन एसोसिएशन विद
16: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: to 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
4: Money, money, money, money, every month.
5: Soch badlo aur bank bhi.
6: Lion Desert King Dates, ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेसर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
7: लाइन डेसर्ट किंग डेट्स,
6: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
8: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल,
9: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी?
8: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल,
9: सीबीएसई के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
8: छात्रों को दिया मंच,
9: उज्मा हमारे साथ कोटा से और अदिति मुंगेर से हैं और तानिया कोटा से हैं और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं, तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
10: मैम ये देखिए, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
11: आईआईटी मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
8: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर,
9: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब सरकार की तरफ से सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
8: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद टीएमसी में खींचतान जारी है। पार्टी विधायक टूट चुके हैं, कई सांसदों के भी टूटने की अटकलें लग रही हैं। इस बीच आज तक से खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बैनर्जी ने दावा किया है कि कई टीएमसी सांसद उनके संपर्क में हैं।
3: क्या हो सकता है तृणमूल कांग्रेस के अंदर? क्या ममता बनर्जी का जो धर्म संकट है, क्या वो अपना पार्टी को बचाए या अपना भतीजा को बचाए? इस विषय पे हम इस पर चर्चा करेंगे। और जिनके नेतृत्व में ये बागी विधायक तृणमूल कांग्रेस के अंदर ही विद्रोह करना शुरू किया था, ऋतव्रत बैनर्जी जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा में इस वक्त नेता प्रतिपक्ष है, वो सीधा जुड़ गए हैं आज तक के साथ। ऋतव्रत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहेंगे, जब आपने वो चिट्ठी स्पीकर को दिया था, तब आपने कहा था आपके पास 58 सिग्नेचर्स हैं। पिछले कुछ दिनों में चर्चाएं तो जरूर हुई होंगी, इस वक्त आपके खेमे में टोटल स्ट्रेंथ कितना है, पहले ये बताइए दर्शकों को।
4: अभी इसी वक्त टोटल स्ट्रेंथ, अभी मैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 61 अभी स्ट्रेंथ है और ये भी आगे बढ़ता जाएगा।
3: अगर दर्शकों को थोड़ा सा बताइए, इससे पहले भी आपने कहा है उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया था विधानसभा में, लेकिन सबसे बड़ा इशू, मुद्दा इस रेबल कैंप में क्या है? आप अभी भी मानते हैं ममता बनर्जी आपके लीडर हैं और आप तृणमूल कांग्रेस में रह के ये काम करना चाहते हैं?
4: देखिए, हम लोग, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि खास करके ये जो हम लोग जो इकट्ठे हुए उस दिन, जो स्पीकर के पास गए, सब लोगों का ही कहना था ये कि ये जो कलेक्टिव है, इंडिविजुअल रुझान के खिलाफ जो कलेक्टिविज्म, तो ये कलेक्टिविज्म के तहत ही हम लोग चलना चाहते हैं। खास करके 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदर जो ममता बनर्जी का बनाया हुआ तृणमूल स्तर का जो पार्टी था, वो पार्टी हाईजैक हो गया। अभिषेक बनर्जी का जो कॉरपोरेट ब्यूरोक्रेसी, तो इस कॉरपोरेट ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो असली तृणमूल था, वो असली तृणमूल सिमट गया। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका स्ट्रेंथ ही है ग्रास रूट, वो पॉलिटिकल पार्टी एक कॉरपोरेट ब्यूरोक्रेसी का जो अंधा गली है, एक गली से दूसरी गली, दूसरी गली से और एक जगह, ऐसे जो सिचुएशन पैदा हुआ उसका ही मैनिफेस्टेशन बहुत सारे दिख है। मगर खास करके जो मैनिफेस्टेशन विधानसभा चुनाव में आया कि ये जो, और सबसे जो बड़ी बात है, 6 तारीख जब हम लोग गए थे दीदी का घर में मीटिंग करने के लिए, नया चुने हुए विधायक, कोई रेजोल्यूशन ऐसा हुआ नहीं था कि कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष, कौन प्रतिपक्ष का चीफ व्हिप होगा, कौन डिप्टी लीडर होगा। एक ही रेजोल्यूशन लिया गया था कि पूरी चुनाव के दरमियान अभिषेक बनर्जी का जो एफोर्ट है, सबसे ज्यादा एफोर्ट उनका ही है, तो उनके लिए सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, सब लोग खड़ा होने के लिए राजी नहीं था, इसीलिए दूसरी बार बोलना पड़ा कि खड़ा हुई और रेजोल्यूशन लिखिए, ताली दीजिए, स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग, मैं ही जैसा, मैं भी खड़ा हुआ, मगर इट वॉज नॉट ए फुल फ्लेज्ड ओवेशन। मैं थोड़ा सा, मैं पीछे था, मगर थोड़ा सा आधा खड़ा हुआ बोल सकते हैं, मैंने चेयर से पूरा सीधा होकर खड़ा नहीं हुआ, फिर बैठ गया। मगर उस दिन देखे थे हम लोग, हमारा बागनान का विधायक अरुणाव सेन, राजा सेन बैठे हुए थे, पूरा सब लोग देखा हो बैठे हुए, मगर वो उठा नहीं। तो एज फियर इज कंटेजियस, सो इज करेज। तो उस दिन के बाद जो हादसा फिर हुआ, फिर 19 तारीख मीटिंग हुआ, 19 तारीख मीटिंग में बोला गया कि आप लोग डेट देंगे 6 तारीख। तो आप पूछ सकते हैं हम लोग क्यों अपोज नहीं किए, तृणमूल के अंदर कालीघाट के अंदर बैठ के वहां अपोज करने का स्थिति तब भी नहीं था। तो फिर जब ऐसा माने, और बार बार जब बोला जा रहा था कि 6 तारीख का डेट लिखना है, 6 तारीख का डेट लिखना है, तो मैं और संदीपन बगल में बैठा था, तो हम लोग को लग रहा था सब ठीक नहीं है। फिर जब खाता आया, देखा बहुत सारे जो सिग्नेचर है आदमी नहीं है, सिग्नेचर किया गया है, ब्लॉक लेटर्स में लिख दिया गया है। तो फिर जब मालूम हुआ, एक लिस्ट जमा हुआ है जिसमें वो 19 तारीख का सिग्नेचर ही 6 तारीख का लिस्ट जमा हो गया। तो हम लोग को लगा था क्योंकि देखिए 19 तारीख का मीटिंग में मैं भी खड़ा हुआ था, संदीपन भी खड़ा हुए थे ये फलता के बारे में बात करने के लिए। फलता का दूसरी चरण का जब चुनाव हुआ, उस चरण में तो अभिषेक जी घर से निकले नहीं, घर में ही सिमट गए थे। उसके पहले जो ओरिजिनल 29 तारीख का जो चुनाव था, उस 29 तारीख का चुनाव का पहले जब वो गए थे फलता में, तो क्या बोले थे हम सब लोगों को मालूम है, आपको भी मालूम है कि जहांगीर बहुत दिनों से मुझसे मांग कर रहा है एक इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम का, और खास करके 4 तारीख जब रिजल्ट्स आएगा बहुत लोगों का हार्ट अटैक होगा और इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम का जरूरत पड़ेगा। तो जहांगीर चोजन वन, तो अभिषेक जी का चोजन वन जहांगीर, जहांगीर भाग गया ऐसे समय में भाग गया कि यू कैन नॉट पुट अप ए कैंडिडेट, वॉक ओवर हो गया। तो हम लोग पूछे थे कि जहांगीर का खिलाफ क्या कार्रवाई होगा, और जहांगीर के लिए जहांगीर का मांग था इसीलिए इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम हो रहा था। तो अब इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम क्या अभिषेक जी बना देंगे? खास करके ये जो एरोगेंस है, दिस इज एक्चुअली एरोगेंस।
3: नहीं, आप जो कह रहे हैं उससे ये साफ हो रहा है,
4: जीत का
3: बिल्कुल ऋतुप्रत जी, आप जो कह रहे हैं इससे साफ हो रहा है कि जिस तरह का लीडरशिप अभिषेक बनर्जी दे रहे थे उसको लेके बहुत सारा सवाल है, लेकिन पार्टी के अंदर ये सवाल आपने इससे पहले उठाया क्यों नहीं?
4: हाँ, गुड क्वेश्चन, कि पार्टी के अंदर मैं ये सवाल उठाया कि नहीं। देखिए, पार्टी तृणमूल कांग्रेस, अभिषेक जी जब ने अपना जिम्मेवारी संभाला, धीरे धीरे ये पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी से एक कॉरपोरेट ब्यूरोक्रेसी बन गया। मैं एकदम डेट बताकर आपको बोलूंगा। देखिए, मैं राज्यसभा का 15 महीने के लिए तृणमूल मुझे भेजा था, 2024 का 7 दिसंबर मेरा नाम अनाउंस हुआ था, और उस दिन अभिषेक जी का एक फोन आया था कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। तो मैं उनको पूछा था कि मेरा एक अपॉइंटमेंट चाहिए, एक अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी है, मेरा कुछ उन लोगों को बोलना है। तो ये जो अपॉइंटमेंट मांगे थे 2024 का दिसंबर महीने का 7 तारीख, पूरी 2025 गुजर गया, 3 बार पार्लियामेंट के दरमियान सेशन के दरमियान उनसे मुलाकात हुआ, 3 बार ही बोले कि एक अपॉइंटमेंट आपको बोले थे, तो हर बार बोला गया आपके पास फोन जाएगा। फिर 2025 हो गया, 26 जिस दिन असेंबली में जहांगीर के खिलाफ पहली बोले, वो 19 तारीख के बाद ही होगा, उस दिन कालीघाट में मुझे अपॉइंटमेंट मिला। तो एक एमपी को, फिर एक एमएलए, मेरा एमपी टर्म खत्म होने के बाद मैं एमएलए चुना, मैं एमएलए बनने के बाद मैं पूछा नहीं, मगर एमपी रहते हुए एक एमपी को अगर 15-16 महीने में पार्टी का जनरल सेक्रेटरी से एक अपॉइंटमेंट बार बार बोलने से भी नहीं मिलेगा, और मेरे पास अभी वो मैसेजेस भी है कि मैं मांगा था। और देखिए, रिपोर्टिंग का जहां तक सवाल है, रिपोर्टिंग तो करना पड़ता था आईपैक को, गोदरेज वाटर साइड में आईपैक का एक जो स्ट्रक्चर है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है।
3: मतलब आप कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी जो आप ही के पार्टी के सेकेंड इन कमांड माने जाते हैं, उनके साथ कोई कनेक्शन ही आप लोगों का नहीं था, आप पहुंच ही नहीं सकते थे उनके पास।
4: मेरा आई कैन टेल अबाउट माई सेल्फ ओनली, मैं तो डेट ही बता दिया, 2024 का 7 दिसंबर अपॉइंटमेंट मांगे थे, 2026 का मई महीने में लास्ट वीक में जाकर वो अपॉइंटमेंट मिला, वो भी मीडिया में बाइट देने के बाद।
3: लेकिन क्या आप ममता बनर्जी को अपना नेत्री मानते हैं? क्या उन्हीं के नेतृत्व में आप लोग काम करना चाहते हैं?
4: जहां तक पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस का लेजिस्लेटिव पार्टी का सवाल है। हम लोग पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिए हैं, हम लोग दीदी से गुजारिश करते हैं कि दीदी हम लोगों का मार्गदर्शन करे और प्रधान मार्गदर्शक के रूप में हम लोगों को आगे जाने का जो दिशा है वो दिशा दिखाए।
3: इसका मतलब है क्या उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि मार्गदर्शक मंडल का मतलब है कि थोड़ा सा मतलब उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा उनका होल्ड जितना होना चाहिए था। लेकिन तृणमूल ने रिस्ट्रक्चर किया है अपने पूरे पार्टी को और दो दिन पहले ही यह साफ कर दिया गया है कि ममता बनर्जी चेयरपर्सन है और ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी है और उनको असिस्ट करने के लिए दो ज्वाइंट सेक्रेटरीज दुला सेन और डेरेक ओब्रायन।
4: देखिए हम लोग हमारा जो बात है मेरा इंडिविजुअल का कोई बात नहीं है, कलेक्टिव का जो बात है हम लोग चाहते हैं कि जहां तक लेजिस्लेटिव पार्टी का सवाल है, मैं फिर बोल रहा हूं जहां तक लेजिस्लेटिव पार्टी का सवाल है, ये लेजिस्लेटिव पार्टी बैठकर तैयार किया कि हम लोग चाहते हैं कि दीदी हमारा प्रधान मार्गदर्शक रहे, हम लोगों को गाइड करते रहे, दिशा दिखाए। और जहां तक अभिषेक बनर्जी का सवाल है, हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी के साथ उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। और बाकी जो दो नाम आप लोग लिख लिए हैं तो एक को तो मुझे मालूम है कुछ दिन बाद वो क्विज ही करेंगे सिर्फ, बाकी और जो बोले हैं वो क्या करेंगे 75-25 सब लोग जानते हैं, मगर अभी तो मौका नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग का कहना है कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, जो लोग करप्शन में है जुड़े हुए हैं, जिन लोगों के खिलाफ काट मनी का एजेंडा है, अगर सरकार उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेता है हम लोग उसको स्वागत करेंगे, मगर साथ साथ हमारा जो कहना है, हम लोग डीजी साहब से भी मिलकर बोल के आए हैं कि जो लोग करप्ट है जरूर एक्शन लीजिए, मगर आम कॉमन जो लोग कुछ किए नहीं है ग्राउंड लेवल में वर्कर है सेल्फ, मैंने इन लोगों को मैंने गलत केस में इन लोगों को शामिल मत कीजिए, होना नहीं चाहिए किसी भी हालत में।
3: लेकिन कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल तृणमूल कांग्रेस के जो आला कमान से ये कहा गया है, कल्याण बनर्जी ने ये कहा है कि कल वो कोलकाता हाईकोर्ट मूव करने वाले हैं क्योंकि आपका जो चयन हुआ है नेता प्रतिपक्ष के रूप में और स्पीकर ने आपको जो स्वीकृति दी है वो इलीगल है क्योंकि आपको तो पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, आप एक्सपेल्ड पार्टी से हैं तृणमूल कांग्रेस से, तो आप कैसे नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं, इसको चैलेंज कर रहे हैं लीगली हाईकोर्ट में कल।
4: देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री में कोर्ट में जाना तो फंडामेंटल राइट है, तो मैं तो आई मे नॉट एग्री विथ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू द लास्ट योर राइट टू से इट, तो ये तो डेमोक्रेटिक राइट है, इस पर उन लोग कल्याण बनर्जी को लगा है जाएंगे तो जाएंगे।
3: और जिस तरह से आपने खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से भेंट की, उनके मीटिंग में आप गए, आपके साथ बाकी विधायक भी गए, संदीपन साहा भी गए, तो कहीं ना कहीं जो चर्चा है वो ये लगता है कि आप बीजेपी के साथ संबंध बना के ये पूरा चीज कर रहे हैं, यही तो आरोप लग रहा है आपके खिलाफ।
4: आप जो बात बोल रहे हैं आप भी, क्योंकि देखिए मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं कि सब, मैं ये विश्वास भी करता हूं कि कोई आदमी निरपेक्ष नहीं होता है, तो बंगाल में माने जो बायस्ड जर्नलिस्ट भी है दीदी के साथ अभिषेक जी के साथ, अभी जो पूछ रहे हैं आप कि मैं, आप सिर्फ मेरे और संदीपन साहा के नाम लिए, दीदी का एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में बॉबी हकीम भी उपस्थित थे, अशोक देव भी उपस्थित थे, दीदी का एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में नयना बनर्जी भी उपस्थित थे, जो लोग हमारे इसमें साइन नहीं किए हैं, और मैक्सिमम एमएलए जिस दिन नवान्न में मीटिंग हुआ, हावड़ा साउथ 24 परगनाज और कलकत्ता का जो मीटिंग, तृणमूल का 20 से ज्यादा एमएलए तृणमूल का सिंबल में जीते हुए 24 एमएलए वहां पर मौजूद थे, मगर आप जब नाम ले रहे हैं आप सिर्फ मेरा और संदीपन साहा का नाम ले रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है, थोड़ा करेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उस मीटिंग में जो लोग साइन किए हैं वो तो थे, हम लोग तो चर्चा ही किए हैं, हम लोग जाएंगे हर जगह जाएंगे। आप जो बोल रहे थे ना बीजेपी के साथ रिश्ता, देखिए हम लोग, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला हूं कि हम लोग ऐसे विरोध नहीं करेंगे कि बिल पास होने के बाद, बिल पारित होने के पहले ही हम लोगों को पार्लियामेंट से वॉकआउट कर जाना पड़े, ऐसे विरोध नहीं करेंगे, अगर विरोध करना है तो जम के करेंगे। हाय वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में जब वोट देने का मौका आएगा ऐसा विरोध नहीं करेंगे कि एब्सटेन कर जाएंगे ताकि बीजेपी को फायदा मिल जाए। हमारे जो एमएलएज है जो हम लोगों के साथ है, संदीपन शाह के घर के सामने हमले हुए थे, हमारे राजा सेन उलुवेरिया का बागनान का एमएलए हावड़ा जिला में वहां हमला हुए, तो ये लोग तो हम लोगों के साथ है। ये तो कल हमारा और एक एमएलए का घर में हमला हुए है, तो अगर हम लोग बीजेपी के साथ मिलकर चलते थे तो एटलीस्ट पहले तो मैं हमारे जो एमएलए टीम है उन लोगों का प्रोटेक्शन पहला मेरा सवाल बनता। तो मगर मजे का बात है हम लोगों का कोई एमएलए स्टेट सिक्योरिटी के लिए भी कोई चिट्ठी नहीं लिखा, सेंट्रल सिक्योरिटी के लिए भी चिट्ठी नहीं लिखा। जो लोग इतने बड़े बड़े बात करते हैं ये सिक्योरिटी कवर स्टीप अप करने का बात कर रहे हैं। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं कि कालीघाट का दीदी का घर से वो पोटोपाड़ा तक 50-60 स्टेप लगेगा, कोई सिक्योरिटी के बगैर अभिषेक बैनर्जी थोड़ा अकेले चल के देख ले, वो भी नहीं कर पाएंगे, इतना डर है आवाम का।
3: तो इस वक्त आपका जो फ्यूचर प्लान क्या है, क्योंकि अभी जो जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, और अभिषेक बनर्जी दो दिन पहले इंडिया गठबंधन की मीटिंग से 48 घंटा पहले दिल्ली पहुंच गए, ममता बनर्जी के घर में आज काउंसलर्स का मीटिंग था वो कैंसिल करके वो भी दिल्ली चली गई, और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे सांसद है जो इनकम्युनिकेडो है लेकिन दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो इसको लेके काफी अफवाहें हैं कि आपके साथ आपके खेमे के साथ ऐसे बहुत सांसद है तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के जिनकी बातचीत हो रही है, और जो आपने विधानसभा में किया है वही फॉर्मूला अब लोकसभा में भी पार्लियामेंट में भी अपनाया जा सकता है इस हफ्ते। तो ये जो चर्चाएं हैं उसमें कितना सच है और कितने एमपीज हैं जो आपके खेमे के साथ जुड़ना चाहते हैं,
4: ये तो मैं बताना नहीं पाऊंगा क्योंकि एमपी लोगों से कल तक, कल में असेंबली से फोन लगाया था 4-5 लोगों को, मगर सबका फोन आइदर नॉट रीचेबल और स्विच ऑफ था। तो आज कुछ एमपी से मेरा बात हुआ है, तो जिससे भी बात हुआ देखा वो दिल्ली में है, तो मैं बोला दिल्ली में तो हो सकता ना पार्लियामेंट का स्टैंडिंग कमेटी होता है, दूसरी काम हो सकता है, मगर ये लोग दिल्ली में है। जितने लोगों से भी मेरा बात हुआ मैं पूछा नहीं क्यों वो लोग दिल्ली में है, अगर कुछ होता है तो दिखने को मिलेगा, अगर कोई मुझे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे तो मैं नॉर्मली बात किया कुछ लोगों से।
3: नहीं लेकिन कितनी जल्दी कुछ हो सकता
4: है, कल कुछ होगा,
3: कल होगा कुछ बड़ा कुछ मंडे को,
4: ये सुनने में आ रहा है, मुझे रियल मुझे मालूम नहीं है, देखते हैं।
3: आप ही के कोलीग है सांसद राज्यसभा के सुखेंदु शेखर रॉय, आपके सीनियर कोलीग, वो आए थे इस शो पे कुछ दिन पहले और उन्होंने कहा कि दो तिहाई एमपीज लोकसभा से, एटलीस्ट एक मेजॉरिटी एमपीज लोकसभा से, वो भी रेबल ग्रुप के साथ चले जाएंगे और उनके साथ बातचीत चल रही है, ये सुखेंदु जी का कहना है।
4: सुखेंदु दा को मैं बहुत सम्मान करता हूं, मगर सुखेंदु दा से मेरा इस बीच में बात नहीं हुआ है, तो वो क्या बोले हैं वही बोल पाएंगे, मगर बहुत अनुभवी आदमी है, बहुत दिन से पार्लियामेंट में है, तो सुखेंदु दा के पास हो सकता है कुछ जानकारी है इसलिए बोले हैं।
3: मेरा आखिरी सवाल, ममता बनर्जी बचाना चाह रही है अपनी दल को, लेकिन सब बहुत बड़ा एक सवाल या निशान है, क्या नियर फ्यूचर में ऐसा देखने को मिल सकता है कि ये जो आपने खेमा बनाया है इतना बड़ा हो जाए, जहां पे एमपी एमएलए काउंसलर सब इतना बड़ा हो जाए कि खुद ममता बनर्जी अकेले पड़ जाए तृणमूल कांग्रेस में और अभिषेक बनर्जी का करियर जो पॉलिटिकल करियर है वो एकदम खत्म हो जाए और आप लोग स्टेक क्लेम करेंगे कि ये पार्टी और ये सिंबल आप लोगों का है?
4: देखिए ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का तो मैं पहले ही जिक्र किया, हम लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी हमारा मार्गदर्शक करे, मार्ग उनका, बिकॉज जहां तक ऑपोजिशन पॉलिटिक्स है ऑपोजिशन पॉलिटिक्स में वो बहुत ही टॉल लीडर है। देखिए अभिषेक बनर्जी आप पूछे हैं तो ये तो पार्टी ने, माने मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा, मगर ये बात मैं कह सकता हूं कि कल क्या होगा वो किसी को भी मालूम नहीं, आपको भी मालूम नहीं मुझे भी मालूम नहीं, और खास करके मेरा एक दर्शन है आई लिव फॉर दिस डे आई लिव फॉर द मोमेंट, मगर आई कैन टेल यू दैट रेवोल्यूशन इज अ परमानेंट वॉर, अ वॉर एट एवरी आवर, अ वॉर दैट चेंजेस इंटरेस्ट्स, नीड्स एंड प्रायोरिटीज।
2: और अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की बैठक है। बैठक में 23 दलों के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक से डीएमके और आम आदमी पार्टी ने हालांकि किनारा कर लिया है। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। इस बैठक में शामिल होने के लिए टीएमसी के नेता ममता बनर्जी कल शाम को ही दिल्ली पहुंच चुकी थी। उन्होंने मुलाकात भी की अरविंद केजरीवाल से और उम्मीद यह है कि आज की बैठक में शामिल होंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने किनारा किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
1: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।
6: Starting a business? Put it in the right hands with LegalZoom. Because the last thing you'd want to do is let it fall into the wrong hands. With easy-to-use tech and 25 years of experience, LegalZoom offers personalized support to help ensure your business is formed accurately and complies with state regulations. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
7: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
8: Oh, ouch.
7: However you make money work, we can work with that.
9: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
10: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
12: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: IDF ने इस्फहान पर किया जवाबी अटैक।
1: फोन पर डील डील अलापते रहे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन नेतन्याहू ने ठुकराया अपील। ईरान से लेबनान तक ताबड़तोड़ हमले, टॉप कमांडर ने संभाली कमान। IRGC बोला नतीजे विनाशकारी।
0: फिलीपींस में जबरदस्त भूकंप की तस्वीरें देख सहम गई दुनिया। 7.8 की तीव्रता से तबाह हुए शहर, कई इमारतें जमीन दोज, सुनामी की आशंका से दहशत।
1: बंगाल हारने के बाद इंडिया गठबंधन के सहारे ममता आम आदमी पार्टी ब्लॉक से बाहर। बैठक से पहले समाजवादी सूत्रों का दावा, फाइनल किए यूपी की आधी सीटों पर उम्मीदवार।

0: के बाद चर्चा में आए थे जहांगीर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और एक ग्यारह। आपके साथ हूं मैं नेहा बात।
2: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। समय शतकाश तक है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको देते हैं। टीएमसी नेता जहांगीर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल एसटीएफ ने जहांगीर खान को गिरफ्तार किया है। जहांगीर खान फलता विधानसभा सीट से टीएमसी के प्रत्याशी थे, और आपको याद होगा बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हुए थे और ईवीएम टैंपरिंग के बेहद गंभीर आरोप लगे थे जहांगीर खान पर। अब अरेस्ट कर लिया गया है।
0: ये वही जहांगीर खान है जिन्होंने पुष्पा वाला डायलॉग बोला था, उसके बाद इन्होंने अपना नाम टीएमसी की ओर से विड्रॉ कर लिया। तापस सेन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। किस मामले में गिरफ्तारी हुई है तापस?
3: जी देखिए, जहांगीर खान के खिलाफ कई सारे मामले दर्ज हुए थे, खासकर लोगों को डराना, धमकाना, मौत की धमकी देना। तो इन मामलों में उनसे गिरफ्तार किया गया है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से अभी भी इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर कि जहांगीर खान नेपाल भागने के फिराक में थे और भारत नेपाल सीमा के पास किसी एक जगह से उसे गिरफ्तार किया गया। उसके साथी का जो फोन था, उस फोन की सर्वेलेंस को फोन सर्वेलेंस के तहत उसके नेटवर्क का पता, उसके लोकेशन का पता चला था। उसके बाद एसटीएफ की टीम रवाना हुई थी और उसे वहां धर दबोचा गया है, और फिलहाल यही सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि बंगाल पुलिस के एसटीएफ की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हलचल काफी है कि एक टीम बाहर गई थी और उस टीम के हाथ पुष्पा।
2: ये बहुत बड़ी कामयाबी आप बता रहे हैं कि नेपाल भागने की फिराक में था, सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है। बहुत शुक्रिया था आपस आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब शुरुआत करते हैं शतक आज तक। मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात, ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, पूरे देश में सायरन और एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। ईरानी हमलों के बाद से इसराइल का करारा पलटवार, तेहरान, बेरूत और बगदाद में एक साथ अटैक। ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट और इस्फहान में हमले का दावा, लगातार धमाकों से तेहरान में भी दहशत का माहौल। ईरानी मीडिया का बड़ा दावा है कि युद्धपोत से भूमध्य सागर से मिसाइलें दागी गई, मिसाइलें इराकी हवाई क्षेत्र से होकर लक्ष्य तक पहुंचे। ट्रंप के रोक के बावजूद मिडिल ईस्ट में संघर्ष और बढ़कर, नेतन्याहू ने जवाबी सैन्य हमले का आदेश दिया। मिडिल ईस्ट में हालात बेहद गंभीर, इसराइल और ईरान के बीच में तनाव चरम पर, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव, सायरन बज रहे हैं। तेल अवीव में एयर रेड सायरन, इसके साथ साथ शहर भर में हड़कंप है। इसराइली सेना हाई अलर्ट पर, स्थानीय प्रशासन ने जांच शुरू की। क्षेत्र में लगातार सैन्य गतिविधियां तेज है, दोनों ही पक्षों के बीच में टकराव बढ़ता जा रहा है। आईडीएफ चीफ और वरिष्ठ कमांडर इसराइली एयर फोर्स कमांड सेंटर से ईरान पर हमले का नेतृत्व कर रहे हैं। सेना पूरी तरह से तैयार और हाई अलर्ट पर है। आईडीएफ सभी मोर्चे पर तैयार है, कहा कि हर मोर्चे पर ऑपरेशन जारी रखने की हमारी तैयारियां।
0: फिलीपींस में 7.8 तीव्रता वाला बहुत शक्तिशाली भूकंप, सुनामी का अलर्ट जारी, 4 की मौत, 200 से ज्यादा घायल। फिलीपींस में दिखा भूकंप का जोरदार असर, हाईस्कूल की इमारत ढही, छात्रों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। डोमिनिकन रिपब्लिक में बड़ा विमान हादसा, इमरजेंसी लाने की कोशिश दौरान प्राइवेट जेट क्रैश। तकनीकी आपात स्थिति के बीच प्राइवेट जेट हुआ क्रैश, सुरक्षा लाने की कोशिश नाकाम, पायलट और को पायलट की मौत। जयपुर में सील की गई नूरानी मस्जिद पर कार्रवाई शुरू, प्रशासन ने ध्वस्तीकरण प्रक्रिया आगे बढ़ाई। जयपुर में सड़क चौड़ीकरण के लिए बड़ा एक्शन, माधवी नगर जगतपुरा मार्ग से हटाए जाएंगे धार्मिक स्थल, भारी पुलिस बल की तैनाती। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में 3,000 से अधिक पुलिसकर्मी, आरएसी की 12 कंपनियां और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। क्षेत्र में धारा 163 लागू कर रैली, जुलूस, प्रदर्शन और 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध, ज्यादातर इलाकों में पुलिस ने इंटरनेट बंद किए। पुलिस सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रख रही है, भड़काऊ या धार्मिक उन्माद फैलाने वाली सामग्री साझा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी।
2: इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली में बहुत अहम बैठक, मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाएंगी 23 राजनीतिक पार्टियां। डीएमके ने गठबंधन इंडिया की मीटिंग से बनाई दूरी, तमिलनाडु की टीवी के सरकार में कांग्रेस का समर्थन देने से डीएमके खफा। आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं पहुंच सकी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बोले, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही नहीं। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल होने के लिए कोलकाता से दिल्ली पहुंची ममता बैनर्जी केजरीवाल से मिली, अभिषेक बैनर्जी ने भी मुलाकात की। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग पर कसा तंज, निशिकांत दुबे बोले कि इस गठबंधन का कोई अस्तित्व ही नहीं। बंगाल में ममता का विपक्ष के नेता ऋतुव्रत बैनर्जी ने बढ़ाया सिरदर्द, डीएमसी के सांसदों के संपर्क में होने का दावा, आज तक से कहा सोमवार को कुछ बड़ा हो सकता है। ऋतुव्रत बैनर्जी ने अभिषेक बैनर्जी पर पार्टी को हाईजैक करने का आरोप लगाया, कहा कि ममता बैनर्जी का मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। बंगाल के पूर्व मंत्री अरूप विश्वास को फिर से समन, लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में गड़बड़ी के मामले में पूछताछ होगी। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बनना चाहता था कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकिन अचानक हुई साजिश बदल गए हालात। झारखंड से राज्यसभा चुनावों में बीजेपी नहीं उतारेगी प्रत्याशी, सूत्रों के मुताबिक निर्दलीय परिमल नथवानी को समर्थन करेगी बीजेपी।
0: पश्चिम बंगाल के श्यामपुर में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे टीएमसी नेता को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा, सिर मुंडवाकर और जूतों की माला पहनाकर शहर में घुमाया। धुलियान में टीएमसी नेता महबूब आलम गिरफ्तार, महबूब की पत्नी रोशन आरा बीबी गिरफ्तार, आवास योजना के लाभार्थियों से घिरा किया गया घेराव। आसनसोल के बर्नपुर में धर्मांतर कार्यक्रम को लेकर बवाल, बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस ने आयोजक को हिरासत में लिया। बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बड़ा एक्शन, प्रशासन ने समाज कल्याण मंत्री से जुड़ी निजी अस्पताल की बाउंड्री वॉल को किया ध्वस्त। अधिकारियों के अनुसार यह निर्माण सड़क की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया गया था, परियोजना के लिए सभी अतिक्रमणों पर समान रूप से कार्रवाई की जा रही है। राम मंदिर दान निधि विवाद पर सियासी घमासान तेज, ट्रस्ट और समाजवादी पार्टी के नेता आमने सामने। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के दान को लेकर अनियमितताओं के आरोप, जांच की मांग तेज। दान निधि विवाद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जवाब, यदि गलती हुई तो जांच सामने आएगी सच्चाई। चंबल राय के बयान के बाद अखिलेश यादव ने फिर साधा निशाना, ट्रस्ट की सफाई को बताया कमजोर। अयोध्या धान निधि विवाद पर अखिलेश बोले, स्पष्टीकरण संदिग्ध, ट्रस्ट को एक साथ बैठकर देना चाहिए जवाब। काशी में शहर के बाहर शिफ्ट होंगी मीनपछली की दुकानें, 5 स्थानों को चिन्हित किया गया। संभल में अवैध मस्जिद के ध्वस्तीकरण के दौरान पोस्टर मिलने के मामले में बड़ी कार्रवाई, मस्जिद के मुतवल्ली जाकिर सहित 8 लोगों के खिलाफ FIR। मस्जिद कमेटी के लोगों के इस कृत्य से हिंदू समुदाय के लोगों में रोष और समाज में वैमनस्यता फैलाने का आरोप। प्रकृति और पर्यावरण पर सीएम योगी का संदेश, बोले आधुनिकता जरूरी लेकिन संतुलन बनाए रखना। गाजीपुर में ध्वस्त गजल होटल की जमीन विवाद पर एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा, अब्बास अंसारी को नोटिस जारी।
2: उत्तर प्रदेश में 32,679 पदों पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हो रही है। प्रदेश भर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा कल

0: दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हत्याकांड में शामिल आरोपियों का सीसीटीवी आए सामने। सीसीटीवी में लिफ्ट से तीनों निकलते दिखाई दे रहे हैं। हत्याकांड के बाद लिफ्ट से नीचे उतर कर जाते हुए सीसीटीवी में कैद पश्चिम बंगाल से पति पत्नी को किया गया गिरफ्तार, जबकि नाबालिग को हिरासत में लिया गया। मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की अस्पताल में मौत, अभी तक इस हादसे में कुल 22 लोगों की जान गई। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में रेलवे स्टेशन के पास हॉकर्स को हटाने के लिए बड़े अभियान के दौरान बड़ा तनाव, बुलडोजर एक्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में चढ़ा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल। सीपीआईएम नेता सृजन भट्टाचार्य हिरासत में। देश भर में मानसून की रफ्तार तेज, के राज्यों में भारी बारिश का लो। अगले 3 से 4 दिनों के अंदर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में मानसून आने की संभावना। केरल के कई हिस्सों में लगातार बारिश का अब ऑरेंज अलर्ट है। प्रशासन ने सभी लोगों से सतर्क रहने की केरलम में अपील की। बिहार, झारखंड में आंधी और बारिश की संभावना, उत्तराखंड में भी बारिश की आशंका है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में गर्मी और लू का अलर्ट जारी, 11 जून के बाद राहत मिल सकती है।
1: दिल्ली में फिर बरसे राहत के बादल, कुछ इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट। दार्जिलिंग में हुई झमाझम बारिश, बरसात के बाद मौसम सुहाना। एमपी के सीहोर में आंधी बारिश का कहर, सोलर पैनल उखड़कर सड़क पर गिरा, एक दबकर घायल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में किसानों की मेहनत पर फिरा पानी, खुले में रखा धान बारिश में भीगने से हुआ खराब। बगहा में पति से मिलने आई महिला मोबाइल टावर पर चढ़ी, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने सुरक्षित नीचे उतारा। इंदौर में बदमाशों का उत्पात, कई वाहनों में तोड़फोड़, पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया। पटना में 2 गुटों में हुई गोलीबारी, ताबड़तोड़ चली गोलियां, एक की मौत, 2 घायल। मधेपुरा के आवासीय स्कूल में 6 साल की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत, शौचालय के पास पाइप से बना मिला शव।
0: लखनऊ में महिला से छेड़छाड़, हत्या के प्रयास का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। बारामती में नशे में धुत ट्रक ड्राइवर का खतरनाक स्टंट कैमरे में कैद, बेकाबू ट्रक पलटा, चालक गंभीर रूप से घायल। टिहरी गढ़वाल में खाई में गिरी गाड़ी, एक की मौत, बाल बाल बचा ड्राइवर। अमृतसर में चोरों ने किसान के घर से करोड़ों की चोरी की है, सोना और कैश लेकर फरार। गोंडा में मानसिक बीमार भाई ने लट से मार मार कर बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया और भैंस को भी उसने घायल किया। यमुनानगर में रंगदारी केस में बड़ा खुलासा, विदेशी नंबर से धमकियां, आरटीआई के जरिए कारोबारियों पर दबाव बनाने का आरोप। गाजियाबाद में पहले पेट्रोल चोरी करते दिखे संदिग्ध, कुछ घंटों के बाद घर के बाहर खड़ी 3 बाइकों में आग लगा दी। बांदा में पैसों के विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में बच्चे के साथ गाने पर दरोगा का रील बनाना पड़ा महंगा, एसएसपी ने स्पष्टीकरण मांगा। हरदोई में ऑनर किलिंग का मामला सामने, बेटी की पीट पीट कर हत्या, सर्पदंश और आत्महत्या का रूप देकर शव जलाया गया, पिता समेत 4 गिरफ्तार।
1: दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में आग लगी, 8 लोगों को किया गया रेस्क्यू। सहारनपुर में चोरों और पुलिस के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में एक चोर पकड़ा गया। हापुड़ में मीट खाने से इनकार पर खूनी वार, युवक पर चाकू से हमला, गांव में तनाव के चलते पुलिस बल की तैनाती। बेतिया में रीत बनाने के दौरान गंडक नहर में डूबे 2 युवक, दर्दनाक हादसे में मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बुफलियास सेक्टर की दुकानों में लगी भीषण आग, कई दुकानें चपेट में। जल पर्दे पर आई सलमान खान नयनतारा की अंतर्राज्यीय मूवी, साउथ के मशहूर फिल्म मेकर वामशी पेरीपल्ली और दिल राजू की जोड़ी कर रही निर्देशन। कॉकटेल 2 की रिलीज से पहले ट्रेलर ने बनाया ग्लोबल चार्ट्स पर दबदबा, यूएस टॉप 10 में ने मारी एंट्री। राजा मौली की फिल्म वाराणसी में राम और कुंभकर्ण का 30 मिनट का युद्ध होगा फिल्म का प्लस पॉइंट, फिल्म के राइटर ने खोला राज। जिम संब सर्ब और नसरुद्दीन शाह स्टारर वेब सीरीज मेड इन इंडिया टाइटन लव स्टोरी के ने जीता दर्शकों का दिल। ओटीटी पर रिलीज होती छा गई वेब सीरीज पिरामिड स्कीम, 7 एपिसोड की सीरीज ने आते ही धमाल मचाया। बड़ी खबर का रुख करेंगे, टीएमसी नेता जहांगीर खान को पुलिस से गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल एसटीएफ ने जहांगीर खान को गिरफ्तार किया, फलता विधानसभा से टीएमसी के प्रत्याशी थे, इन पे ईवीएम टैंपरिंग का आरोप लगा।
0: तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि फलता विधानसभा

0: चुनाव से पहले कैंडिडेट थे लेकिन बाद में चुनाव रद्द कर दिया गया था, फिर नए सिरे से वहां पर चुनाव करवाए गए थे, लेकिन जहांगीर खान ने तब अपना नाम वापस ले लिया था। जहांगीर खान पर कुल 7 FIR दर्ज हैं, 7। वो बंगाल पुलिस से बचने के लिए बताया जा रहा है कि छिपते फिर रहे थे, और बताया ये भी जा रहा है कि जहांगीर खान नेपाल भागने की फिराक में था, और तभी एसटीएफ ने बॉर्डर इलाके से जहांगीर खान को गिरफ्तार किया है।
1: नेपाल भागने की फिराक में थे, मोबाइल के जरिए ट्रेस किया गया, 7 FIR पर दर्ज हैं। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं किस मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है, हालांकि इन पर ईवीएम टैम्परिंग का भी गंभीर आरोप लगा था।
0: तो एसटीएफ ने एक गिरफ्तारी की है, लेकिन एसटीएफ ने अभी ऑफिशियली इसकी जानकारी नहीं दी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि नेपाल भागने की जहांगीर खान फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही टीम ने दबोच लिया मोबाइल लोकेशन को, या मोबाइल को ट्रेस करके पुलिस जहांगीर खान तक पहुंची और उसके बाद जहांगीर खान को पकड़ लिया गया। जहांगीर खान पर 1-2 नहीं, 7 FIR दर्ज है। अभी कुछ समय के बाद संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और जानकारी दी जाए, प्रेस रिलीज जारी की जाए, जिसमें बताया जाए कि किस मामले में जहांगीर खान की गिरफ्तारी हुई है, जहांगीर खान को जो कि कुछ समय पहले तक कैंडिडेट थे उनको भागने की नौबत क्यों आई।
1: बंगाल एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है, कुछ दिन से फरार चल रहे थे, उनकी तलाश की जा रही थी और आखिरकार नेपाल के नजदीक से उनकी गिरफ्तारी हुई है। हल्ता सीट से प्रत्याशी थे, बाद में अपना नामांकन वापस ले लिया था, वहां से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने कहा कि मैं पुष्पा हूं, मैं फायर ब्रांड हूं और मुझे कोई नहीं हरा सकता। तापस सेन गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, कुछ डिटेल्स मिल रही है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी इनकी गिरफ्तारी को लेकर?
2: देखिए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई सूचना नहीं है, लेकिन जहांगीर खान को भारत नेपाल सीमा से पकड़ा गया है। जो अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि वो अपने परिवार के साथ वहां पे थे, पिछले कुछ दिनों से वहां पे बकायदा एक घर किराए पे लेकर वो वहां पे रह रहे थे। उनके एक करीबी जो उनसे संपर्क रखे थे, उनके फोन सर्वेलेंस के द्वारा उसके लोकेशन को कई दिनों से ट्रैक किया जा रहा था, और आखिरकार वहां एस्केप की टीम पहुंची, पश्चिम बंगाल पुलिस की एस्केप की टीम पहुंची और उसको घर दबोचा गया। लेकिन ऐसी भी खबरें आ रही है कि नेपाल भागकर वहां पक्के तौर पे रहने का जो बंदोबस्त है वो भी किया जा रहा था। इसके सिलसिले में कई सारे दस्तावेज उस कमरे से मिला है, फिलहाल उससे पूछताछ किया जा रहा है, उसे गिरफ्तार दिखाया गया है, उसके परिवार के सदस्यों को भी पूछताछ किया जा रहा है, लेकिन इससे ज्यादा जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं। हमें पता है कि पिछले कुछ समय से सुर्खियों पर रहे हैं ये जहांगीर, चुनाव के ठीक 2 दिन पहले उन्होंने अपना कैंडिडेशन को वापस ले लिया था और उसके बाद से कहीं भी जहांगीर खान दिखा नहीं था, वो लंबा।
0: लेकिन अब आप एक हैरान करने वाली जानकारी दे रहे हैं कि वो कहां कमरा किराए पर लेकर रहने लगे थे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शामली की, जहां पर धर्मांतरण के नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जहां पर एक मुस्लिम लड़की पर आरोप है कि उसने करोड़पति हिंदू लड़के को अपने प्रेम के जाल में फंसाया और फिर उसका धर्मांतरण कर।
1: शामली की घटना जहां पर करोड़पति हिंदू व्यापारी का बेटा आयुष मलिक चांदी कुरैशी के जाल में फंसकर मोहम्मद अली बन गया। आयुष और मोहम्मद अली फार्मासिस्ट है, मेडिकल स्टोर चलाता है, लेकिन चांदनी कुरैशी पर आरोप है कि उसने प्रेम जाल फंसाकर हिंदू से उसे मुसलमान बना दिया। अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो गई है चांदनी कुरैशी की, प्रेम जाल में उसने फंसाया। ये बताया जा रहा है कि दोनों जिम में मिले थे, उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान के कई वीडियोज चांदनी ने उसे दिखाए और उसका धर्मांतरण करा दिया। शादी का भी यहां पर प्रस्ताव दिया गया था, हालांकि शादी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चांदनी कुरैशी ने इस करोड़पति लड़के का मुस्लिम धर्म करवा दिया था।
0: तो ये बड़ी खबर है। परिवार के जो है सारे आरोप है कि फंसा कर उनके बच्चे का धर्मांतरण किया गया और निगाह पैसों पर भी थी और आयुष उसको कन्वर्ट कराया गया, बाकायदा एक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया, उसका ब्रेन वॉश किया गया, उसको वीडियोस दिखाए गए, उसको मौलानाओं की स्पीच सुनाई गई, तमाम चीजें हुई और एक साजिश के तहत इसे किया गया।
1: फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी
5: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: उधर
1: उधर करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
5: AU सोच बदलो और बैंक भी।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: इन एसोसिएशन विद
8: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
7: हिंट, बड़े आराम से
8: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
7: Vimal, bolo zuba kesri.
9: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
10: Patrakarta ke gur yahan nahi seekhe to kya seekhe, naam hi kafi hai. इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
11: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूं जहां पर ये आग लगी।
12: मैं आपको टॉप एंगल से तस्वीर दिखाता हूं और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है।
13: यहाँ पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था।
14: ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है।
12: 20 लोगों की जान चली गई। और देखिए जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहां से नहीं दिखाएंगे।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: ने सवैध निर्माण को ध्वस्त किया है।
3: अब बड़ी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद थी और आपको बता दें कि पुलिस फोर्स की निगरानी में ये कार्रवाई की गई है। पहले नोटिस दिया गया था, अवैध निर्माण है बताया गया था और उसे अब तोड़ दिया गया है। प्रशासन की ये कार्रवाई पुलिसिया संख्या के बीच में, पुलिसिया बल के बीच में हुई।
2: देवंकुर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। देवंकुर, किस तरह का प्रशासन का वहां पर इंतजाम है, क्योंकि जाहिर तौर पर बेहद संवेदनशील ये मामला, और इसके बाद किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, एक ही झटके में हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में ये मस्जिद ढा दी गई है, और क्या वहां पर मीडिया के जाने की पाबंदी है?
4: बिल्कुल, मीडिया की यहां से आगे जाने की पाबंदी है। मल्टी लेवल की बैरिकेडिंग है, वो कैमरा पर्सन मनीष आपको दिखा सकते हैं। और जो मस्जिद, नूरानी मस्जिद, अब से करीब आधे घंटे पहले 5 मंजिला मस्जिद खड़ी हुई थी, वो जमींदोज हो चुकी है। उसका वो हिस्सा जो कि जो अवैध निर्माण के तौर पर बताया जा रहा था, उसको गिराया जा चुका है। और जयपुर विकास प्राधिकरण की ये पूरी कार्यवाही है, जिसमें कम से कम 1000 के करीब पुलिसकर्मी जो है उनका जाप्ता यहां पर मौजूद था। मल्टी लेवल बैरिकेडिंग थी, कम से कम 1 दर्जन बुलडोजर यहां पर बुलाए गए थे, और जो सारे कर्मचारी थे उनसे तक मोबाइल फोन जो है वो पहले ही रखवा लिए गए थे पुलिस के द्वारा, ताकि कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग ना हो। और केवल मस्जिद नहीं, मैं बताना चाहूंगा यहां पर जो प्रशासन है, जो सरकार है, उन्होंने कोई भी भेदभाव नहीं किया है। और जो भी धार्मिक जो इमारतें बनी हुई थी, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि अवैध तौर पर कब्जा करके बनाई गई हैं, भले ही जिसमें एक धर्मशाला थी, 2 छोटे मंदिर बताए जा रहे थे, एक मजार बताई जा रही थी और एक बड़ी नूरानी मस्जिद बताई जा रही थी, इन 5ों इमारतों में से जो मस्जिद है वो जमींदोज हो चुकी है।
3: विरोध के सुर तो नहीं सुनाई दिए
4: कंपैरिजन में, उनके ऊपर अभी कार्यवाही जो है वो बदस्तूर जारी है। नेहा,
3: क्या कोई विरोध तो नहीं हुआ इस?
2: देवंकुर, आपको आवाज
4: देखिए, यहाँ पर जो आसपास है लोगों का भारी जमावड़ा, जी बिल्कुल, यहाँ पर लोगों का भारी जमावड़ा है। मोबाइल इंटरनेट पर बैन लगाया गया था और यहाँ पर इस समय अभी भी पुलिस की जो है वो भारी मौजूदगी है, पुलिस के भारी जाब्ते की मौजूदगी में। और केवल जयपुर की नहीं, राजस्थान के अलग अलग जिलों की, जिसमें धौलपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, अजमेर तक के जिले शामिल हैं, वहां से पुलिस की टुकड़ियों को बुलाया गया था। पुलिस की मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई जो है वो की गई है। आप देख सकते हैं, जो मेरे पीछे हरे रंग का आप कपड़ा देख सकते हैं, उसके बगल में वो मस्जिद खड़ी थी और उस मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया, जो अवैध तौर पर बनाई गई थी। उसके पीछे का कारण ये है कि ये 80 फीट की जो है वो सड़क होनी चाहिए थी, जिसके ऊपर कब्जा कर करके उसको काफी।
2: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे, द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
5: AU सोच बदलो और बैंक भी।
6: चार मई को बंगाल के चुनावी नतीजों के अगले ही दिन जब ममता बनर्जी ने ये बयान दिया, तो क्या तभी उन्हें अपनी पार्टी पर आने वाले सियासी खतरे का अंदाजा हो गया था? क्या ममता को आभास हो गया था कि 15 साल की सत्ता हाथों से जाने का सीधा असर उनकी पार्टी पर होगा? ममता बनर्जी के मन में क्या था ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन महीने भर का घटनाक्रम ये बता रहा है TMC पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। पहले फर्जी हस्ताक्षर मामले में दो विधायक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गए। ममता ने कार्रवाई की तो दोनों विधायकों ने अपना गुट बनाकर 60 MLA को साथ ले लिया। ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। लेकिन संकट अभी थमा नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि TMC के 28 में से 23 सांसद बाकी विधायकों के संपर्क में है।
7: ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था।
6: यानी चुनाव के बाद बंगाल में टीएमसी के भीतर शुरू हुई लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच गई है, और इस बदले घटनाक्रम के बीच ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन से बड़ी उम्मीद लगाए हुई है। वैसे खबर है कि इंडिया गठबंधन की ये बैठक ममता बनर्जी के ही कहने पर बुलाई जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी नतीजों के ठीक बाद कह चुकी हैं कि अब वो आजाद पंछी हैं और पूरी तरह मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता पर काम करेंगी।
8: I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me. Rahul Gandhi rang up me. Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejasvi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister. All the allies of United Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you.
6: पहले इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की हसरत के साथ कांग्रेस की मीटिंग से दूर रहने वाली ममता बनर्जी इस बार खुद दिल्ली की बैठक में शामिल होने वाली है, क्योंकि अब मसला सिर्फ विपक्षी एकता का नहीं, उनकी पार्टी की फूट का भी है। अगर सांसदों में टूट हुई तो TMC के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए अभिषेक बनर्जी एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। कोशिश विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की है, ताकि टीएमसी के संकट को कुछ कम किया जा सके। आज तक ब्यूरो।
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
11: इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्लाह की ओर से भी हमले, पूरे देश में अलर्ट, स्कूल बंद, IDF ने इस्फहान पर किया जवाबी अटैक।
1: फिलीपींस में आए जबरदस्त भूकंप की तस्वीरें देख सहम गई दुनिया। 7.8 की तीव्रता में तबाह हुआ शहर, कई इमारतें जमी दोस्त, सुनामी की आशंका से भी दहशत।
0: बंगाल हारने के बाद इंडिया गठबंधन के सारे ममता, आम आदमी पार्टी ब्लॉक से बाहर। बैठक से पहले समाजवादी सूत्रों का दावा, फाइनल किए यूपी की आधी सीटों पर उम्मीदवार।
1: जयपुर की नूरानी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन, 5 सेकंड में समेत दोस्त हुई इमारत, पूरा इलाका छावनी में तब्दील, भारी पुलिस फोर्स तैनात, रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद।
0: विवादों में रहे टीएमसी के नेता जहांगीर खान गिरफ्तार, बंगाल SCF ने नेपाल बॉर्डर से दबोचा मोबाइल को ट्रैक कर पुलिस ने पकड़ा, जहांगीर पर दर्ज है 7 FIR।

0: और अब बात करेंगे जयपुर के अवैध नूरानी मस्जिद की, जिसे आज ढा दिया गया। जयपुर के नूरानी मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है और भारी पुलिस फोर्स की निगरानी के बीच ये कार्रवाई की गई है। पहले नोटिस चस्पा किया गया था कि निर्माण अवैध है और अब उसे तोड़ दिया गया।
1: तस्वीर भी हम साथ साथ में आपको दिखा रहे हैं कि कुछ ही सेकंड में पूरी की पूरी मस्जिद जमींदोज हो गए। पूरे इलाके में इस वक्त जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम है, भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आशंका थी कि कहीं हालात न बिगड़े, तो इसके लिए मद्देनजर पहले ही व्यवस्था चाक चौबंद थी। यहां तक कि इंटरनेट सेवा पर भी इसका इंपैक्ट दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड में, चंद सेकंड में पूरी की पूरी इमारत गिर गई।
0: निगरानी के बीच इस इमारत को ध्वस्त किया गया, क्योंकि माना जा रहा था कि मामला बेहद संवेदनशील है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, ताकि व्हाट्सएप के जरिए कोई भ्रामक संदेश इधर से उधर ना दिए जाएं। इस पर भी पुलिस की कड़ी नजर है कि किसी भी तरीके से धार्मिक संवेदनाएं वहां पर सुरक्षित रखी जा सके।
1: और हमारे संवाददाता देवांकुर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। देवांकुर, आज ये जो अवैध हिस्सा था वो पूरी तरह से ढा दिया गया है, लेकिन एक सवाल एक नगर निगम से भी पूछा जाएगा कि ये निर्माण हुआ कैसे, अपने निर्माण बनने कैसे दिया।
2: बिल्कुल वाजिब सवाल है राजीव आपको, और मैं बताना चाहूंगा ये पीछे मेरे नूरानी मस्जिद जहां पर खड़ी हुई थी वो जगह है। यहां से महज 200 मीटर की दूरी भी नहीं होगी जहां पर नूरानी मस्जिद खड़ी थी, और उसके ठीक सामने जयपुर नगर निगम का दफ्तर था, और उसके नाक के बिल्कुल नीचे राजीव ये मस्जिद किस तरह से इतनी बहुमंजिला खड़ी हो गई इमारत। अगर वो अवैध निर्माण था तो वो खड़े क्यों होने दिया गया, ये बड़ा सवाल है। क्या जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की इसमें संलिप्तता थी, क्या उसमें उनका कनाइवेंस था, क्या उसमें कोई भ्रष्टाचार की बू आ रही है, क्योंकि केवल ये इमारत नहीं कई इमारतें ऐसी इस इलाके में बताई जा रही थी जो कि अवैध निर्माण थी, और जयपुर नगर निगम के अधिकारियों के, जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के नाक के सीधा नीचे ये इमारतें जो हैं अवैध निर्माण जिनको आज कहा गया है और जिनको जमींदोज करने की कवायद चल रही है, ये तमाम इमारतें जो हैं वो खड़ी कैसे हो गई, और पिछले कई सालों से ये नूरानी मस्जिद, ये धर्मशालाएं, ये जो इमारतें हैं वो कैसे खड़ी हो गई, ये बड़ा सवाल बनता है। बड़ा सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि सोमवार को ये पूरी कवायद की गई है, आज वर्किंग डे है, आज लोगों को अपने घर से नौकरियों पर जाना होता था। ये कवायद जो है ये इतवार को की जा सकती थी, देर रात की जा सकती थी, 1 AM से लेकर 5 AM के बीच में।
0: यहाँ पर क्योंकि पहले देखिए मस्जिद का स्वरूप ये था, अच्छी खासी बड़ी इमारत है, ऐसा नहीं कि ये किसी की संज्ञान में नहीं आई थी अचानक, लेकिन अब इसे ध्वस्त करने का फैसला लिया गया क्योंकि वहां पर सड़क चौड़ीकरण की योजना चल रही है। इसके तहत कई और अन्य धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया जा सकता है जो उस रास्ते के चौड़ीकरण में आड़े आएंगे।
1: तो ये दो तस्वीरें हैं, पहले और अब में बदलाव बड़ा आ गया। देवांकुर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर है। देवांकुर, हमें बड़ी इमारत का एक बड़ा हिस्सा गिरते हुए दिख रहा है, तो क्या पूरी पूरी मस्जिद ढा दी गई, वो अवैध थी, कुछ हिस्सा गिराया गया?
2: जी देखिए राजीव, बिल्कुल कुछ हिस्सा गिरा है, और आप देख सकते हैं ये जो ट्रक है, ये विजुअल्स मैं दिखा रहा हूं आपको, ये आप देख सकते हैं सरिये जो हैं इमारत के जो तोड़े गए हैं हिस्सा, उसमें से जो सरिये निकले हैं वो सरिये जो हैं वो ये ट्रक लेकर जा रहा है। आप ये देखिए विजुअल्स देखिए राजीव, ये जो इमारत तोड़ी गई है, मस्जिद तोड़ी गई है, उसके जो टूटी हुई जमींदोज इमारत के जो टुकड़े हैं वो यहां से लेकर जाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वो टुकड़े जो हैं, वो पत्थर, जो वो सरिये, वो ईंटें जो उस इमारत को बना रहे थे, जो कई सालों से यहां पर खड़ी थी, यहां पर लोग आया करते थे, और ये कहना बेहद महत्वपूर्ण है यहां पे राजीव की कोई भेदभाव नहीं किया गया। कहा जा रहा था कि एक मस्जिद, एक मजार और दो मंदिरें और एक धर्मशाला जो है वो अवैध तौर पर जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी, और इन पांचों इमारत के खिलाफ यहां पर कार्यवाही चल रही है। पर आज तक ये बड़ा सवाल पूछता है राजीव कि ये इमारतें अगर अवैध तौर पर बनाई गई थी, अगर ये मस्जिद, ये मजार, ये मंदिर, ये धर्मशाला अगर अवैध तौर पर जमीन पर कब्जा करके बनाए गए थे तो ये खड़े कैसे हो गए, क्या इसमें भ्रष्टाचार की बू नहीं है, क्या इसमें संलिप्तता नहीं है, क्या ये लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं है।
0: देवांकुर तमाम जानकारी के लिए आपका। बात मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में नीट के सवाल पर किस तरीके से यूथ कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया उसकी करेंगे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार भी करनी पड़ी।
1: ये बड़ी खबर, जबरदस्त बवाल देखने को मिला है एमपी के अलीराजपुर में। यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट देखने को मिला है और एक बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे और नीट के मुद्दे पर जबरदस्त प्रोटेस्ट देखने को मिला है। नीट मामले में लगातार मांग यही की जा रही है कि शिक्षा मंत्री तत्काल इस्तीफा दें। अभी तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ है और ऐसे में जब इतनी बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा।
0: नहीं, करीब 9 महीने बाद दिल्ली में इंडिया गठबंधन की नेताओं का एक बड़ा जमावड़ा होने जा रहा है। 9 महीनों में सियासत के दरिया में काफी पानी बह चुका है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पूरी तरह से हार गई हैं। तमिलनाडु में डीएमके का अर्श से फर्श तक का सफर पूरा हो गया है।
1: चुनावों ने गठबंधन इंडिया के रिश्ते में नई गांठ भी पैदा कर दी है और सवाल इसलिए अब बड़ा उठ रहा है, क्या विश्वास से भरे विपक्षी दल क्या ऐसे मौसमी मुलाकात से बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे?

0: ना राहुल, ना खरगे, ना अखिलेश, ना उद्धव इंडिया ब्लॉक गठबंधन की बैठक में भाग लेने ममता बनर्जी दिल्ली आई तो पहली मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई। वो केजरीवाल जो इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ चुके हैं, इसकी अहमियत को खारिज कर चुके हैं, लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि आखिर खुद ममता की इंडिया गठबंधन से नई उम्मीद की वजह क्या है। क्या बंगाल की करारी हार से ममता का मनोबल टूटा? क्या ममता को अलग थलग पड़ने का डर सताया? क्या ममता अभी से 2029 की तैयारी में जुट गई है? लेकिन इन सारे सवालों से ज्यादा ये सवाल जरूरी है कि क्या इंडिया गठबंधन में इतनी संभावना है कि वो ममता बनर्जी का भविष्य बचा ले? गौर कीजिएगा, खुद ममता के बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच 36 का आंकड़ा है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस अब आमने सामने है, डीएमके बैठक में शामिल नहीं हो रही। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच खुलकर तनातनी है। राहुल की टिप्पणी से रिश्ते बेहद कड़वे हैं। तो एक तरफ अविश्वास की गहरी खाई है, गठबंधन की गांठें ढीली पड़ी हैं, लंबे समय से बैठक नहीं हुई, कोई संवाद नहीं हुआ और फिर अब अचानक बेमौसम बारिश की तरह दिल्ली में आज बैठक हो रही है। इस बैठक से कितनी उम्मीद की जाए ये आप इन दो बयानों से समझ सकते हैं।
1: टीएमसी पार्टी इज इन शैम्बल्स, द ओरिजिनल टीएमसी पार्टी इज आउट ऑफ ममता बनर्जी एंड शी इज गोइंग टू दिल्ली टू अगेन यू नो क्रिएट कमोशन एंड आई सपोज इंडिया अलायंस मीटिंग इज ऑन द 8th. Where is India Alliance? Mr. Bedi's allegation is, why are you calling us for India Alliance meet when you think you have put this allegation on us? So they aren't going. Mr. Stalin, DMK, they are saying they will not participate. So who is participating in India Alliance? Where is India Alliance?
2: Bengal mein BJP party ke upar samarthan se zyada ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी की गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आम लोगों की गुस्सा जाहिर होता हम देखे हैं। तो अभी बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी ये दोनों मतलब बिखरते जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की भीतर ममता बनर्जी का रोल क्या रोल रही ये भी हम सबको जानकारी में है।
0: बंगाल की नई सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल बैठक का मजाक उड़ा रही हैं। तो बंगाल से ही कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी की नियत पर सवाल उठा रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि खुद ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को गर्त में ढकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब गठबंधन बन रहा था तो ममता ने अड़ंगा लगाकर नीतीश को संयोजक नहीं बनने दिया। नीतीश बेहद नाराज हुए और एनडीए में उनके जाने की एक वजह उनकी नाराजगी भी रही। नीतीश के अलग होने के बाद राहुल गांधी आगे बढ़कर इंडिया गठबंधन को बनाए रखने की कोशिश में जुटे। यहां भी ममता ने अपने आगे किसी की नहीं सुनी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट देने को राजी नहीं हुई। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर से हराने के लिए क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतार दिया। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के अंदर अपने हिसाब से गठबंधन बनाती दिखी।
3: नरकों में ठेलम ठेल एक कहावत है, उस नरक में कोई जाना नहीं चाहता है। जो ममता बनर्जी कहती थी है कांग्रेस 40 सीट भी नहीं आएगी, अपना सुपड़ा साफ हुआ तो आ रही है इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी चिट्ठी लिखे विरोध जता रही है, अरविंद केजरीवाल जाएंगे ही नहीं, कपटीवाल साहब काहे का इंडी, ये सारे घमंडियों का फौज बैठा हुआ है। एक चीज जरूर होगा, राहुल गांधी जी सिंहासन की तरह बैठेंगे, बाकी सब चम्मच लेके। अखिलेश आते हैं कि नहीं देखिएगा।
4: देखिए बीजेपी को इसी गलत फहमी में रहे तो अच्छा है, उनको ये नहीं पता है कि हर हार के पीछे जीत छुपी होती है और 2024 में हम लोगों ने दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी को धरती पर लाने का काम किया था इंडिया गठबंधन ने और 2029 में भी हम उनको बताएंगे कि किस तरह से सत्ता परिवर्तन होता है।
0: लेकिन ये बीते दिनों की बात है, वक्त तेजी से बदला है। ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त खा चुकी है। पार्टी के भीतर बगावत बुलंदियां छू रही हैं। विधायकों ने ममता को दरकिनार कर दिया है। संसदीय दल पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो अब ममता को संकट काल में इंडिया गठबंधन की याद आई है। आज तक ब्यूरो।
5: और हमारे संवाददाता राहुल गौतम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, टीएमसी में टूट, डीएमके का इनकार, आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम तो गठबंधन इंडिया का हिस्सा नहीं है, तो ऐसे में क्या चिंतन मंथन होगा कि बाकी दलों को कैसे साथ लाया जाए, फिर मजबूत कैसे किया जाए खुद को?
6: राजीव, तीन पार्टियों का नाम आपने लिया, एक पार्टी का नाम मैं भी ले लेता हूं, सीपीएम। उनके जो सांसद हैं जॉन बिटास, वो इस मीटिंग के अंदर शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले उनकी पार्टी ने एक लेटर लिखा कि आपने क्यों हम पर आरोप लगाए जब केरला के चुनाव हो रहे थे, मतलब कांग्रेस को लेकर लिखा कि हम बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और हम बीजेपी के साथ मिलकर जो है वो केरला में काम कर रहे हैं, इसका हमें जवाब दीजिए। तो कुल मिलाकर जो दरारें हैं वो अब उभर कर सामने आ रही हैं इंडिया ब्लॉक की, आप कह सकते हैं। और 2024 से पहले जो हम शक्ल देखते थे, एक यूनाइटेड ऑपोजिशन दिखता था, तमाम मीटिंगों में बड़े बड़े लोग आते थे, वो अब कहीं ना कहीं नदारद है। उद्धव ठाकरे बताया जा रहा है वर्चुअली जुड़ेंगे, इसके अलावा जो बड़े बड़े नेता हैं उन शरद पवार को लेकर भी अभी कयास कहा जा रहा है, उनकी बेटी आज इस बैठक में शामिल होगी। मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझा देता हूं कि आखिर हो क्या रहा है इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर। आप देखिए यहां पर तमाम जो नेता हैं वो एक एक करके अंदर जा रहे हैं, अंदर एक हॉल है वहां पर बाकायदा पूरा अरेंजमेंट किया गया है ताकि जो तमाम जो लोग हैं बड़े बड़े नेता है इंडिया ब्लॉक के वो यहां पर जो पहुंच रहे हैं वो यहां पर मंथन किया जा सके। बड़े बड़े मुद्दे आज कहा जा रहा है इस बैठक के अंदर डिस्कस होंगे, चाहे वो नीट का मुद्दा हो, सीबीएसई हो, महंगाई हो, और कुल मिलाकर ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि सोनिया गांधी बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश है कि पूरी तरीके से बताया जाए, विपक्ष पूरी तरीके से एक है और उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, और इसीलिए थोड़ी देर में बताया जा रहा है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी यहां पर पहुंचेंगे।
7: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इंडिया गठबंधन की बैठक में विपक्ष जबरदस्त कटाक्ष कर रहा है,
8: वो खुद कमजोर होंगे, डीएमके भी कमजोर होगी और आम आदमी पार्टी, कम से कम हम डीएमके को कमजोर नहीं देखना चाहते हैं। अगर वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है तो दो परिस्थिति पैदा होती है, या तो न्यूट्रल रहें या तो बीजेपी को सपोर्ट करें। न्यूट्रल रहने में भी एक तरह से बीजेपी को सपोर्ट है क्योंकि इंडिया गठबंधन वीक होगा, और आइडियोलॉजिकली दूर दूर तक आरएसएस बीजेपी से डीएमके के कोई मिलान नहीं होता। जहां तक आम आदमी पार्टी है वो अपने अंतर विरोध से गुजर रही है।
9: देयर इज नो अलायंस एज सच, अभी हमने देख लिया जहां जहां भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अलायंस टूटता नजर आता है, चाहे वेस्ट बंगाल देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, और कांग्रेस जब है जहां पर है वहां कोई अलायंस हो नहीं सकता क्योंकि एक्चुअली ये सारे कांग्रेस से ही टूटे हुए हैं, उनसे पहले से ही खफा थे इसलिए इन्होंने अपनी पार्टीज बनाई, और उसको जबरदस्ती अगर आप जोड़ोगे तो वो ज्यादा दिन तक चलती नहीं है।
10: हम आपस में नहीं लड़ रहे हैं, हम 2029 की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। आज इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग दिल्ली में है, लगभग जो हमारे इंडिया अलायंस के सदस्य हैं लगभग सभी वहां पहुंच रहे हैं, और जो नहीं पहुंच पा रहे वो वर्चुअली उस मीटिंग में शामिल होंगे, जैसे कि शिवसेना पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी, हम सब लोग वर्चुअली मीटिंग में शामिल होंगे, और भी कुछ लोग वर्चुअली शामिल हो गए। ठीक है, इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस एकजुट है, एक रहेंगे।
11: इंडी ब्लॉक इम्पोर्टेंट रहा है ना, उसकी बैठक इम्पोर्टेंट रही है। उनके सामने तो सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जो भी कुनबा उन्होंने इकट्ठा किया था, बारामती का कुनबा, वो कैसे इकट्ठा रहेगा, ये उनके सामने की अस्तित्व का प्रश्न चिन्ह सबसे गंभीर हो गया है। तो ऐसी स्थिति में वो कितना भी मंथन करे, मैं नहीं मानता कि वो जनता की भावना के साथ अपने आप को जोड़ने में सफल हो रहे।
5: दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, और खबर अब लखनऊ से है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में आज यूपी चुनाव और सीट बंटवारे को लेकर बातचीत की शुरुआत हो सकती है।
7: सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि अखिलेश ने अपने आधे से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए, ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक में यूपी में सीट बंटवारे को लेकर बात होना लगभग तय माना जा रहा है। अखिलेश यादव पहले कह चुके हैं कि सवाल सीट का नहीं, जीत का है।
5: समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। समर्थ, गठबंधन की बातचीत हो रही है, सीट बताया जा रहा है कि लगभग तय हो गए आधे से ज्यादा, कहां कहां किस किस की चर्चाएं चल रही हैं?
12: राजीव, देखिए अखिलेश यादव पिछले कई दिनों से जिलेवार बैठकें ले रहे हैं और माना यह जा रहा है जितने जिलों के नेताओं को बुलाया जा रहा है वहां पार्टी के जो बूथ लेवल के नेता हैं या जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत की जा रही है और लगभग कई सीट्स ऐसे भी हैं विधानसभा के जहां पर दावेदारी समाजवादी पार्टी के लेवल पर कम से कम तय हो चुकी है और अखिलेश ने उनको अनऑफिशियली बोल भी दिया कि आप जाकर अपने जनपद में अपने विधानसभा क्षेत्र में तैयारियां शुरू कर दीजिए, चुनाव आपको लड़ना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के स्तर पर भी क्लैरिटी चाहिए कि वो कितने सीट्स पर प्लानिंग कर रहे हैं और उससे बड़ी बात ये है कि क्या उनके पास ऐसे जिताऊ उम्मीदवार हैं जो विधानसभा सीट के अनुसार जातीय समीकरण साधने में कामयाब रहे।
7: ठीक है, तो यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। इस बीच खबर टीएमसी खेमे से भी है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने इस्तीफा दे दिया है।
5: तो ये बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफे के पीछे का कारण क्या रहा अब स्पष्ट नहीं, लेकिन सांसद सुखेंदु राय टीएमसी सांसद और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आप पहले ही तृणमूल कांग्रेस में बहुत ज्यादा खलबली मची है, विधायक टूटकर रुद्रव्रत के साथ दिख रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि कई सांसद मेरे साथ में, लेकिन सांसद हैं सुखेंदु राय, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो बहुत बड़ी खबर इस समय मिल रही है, राज्यसभा के सदस्य हैं, टीएमसी से हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया है।
7: हो सकता है आपसी मनमुटाव या फिर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, जिस तरीके से टीएमसी की जबरदस्त तरीके से हार हुई है उसे देखते हुए अब उन्होंने राज्यसभा पद से इस्तीफा दे दिया है। सुखेंदु राय का ये इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब टीएमसी दो फाड़ हो चुकी है। अब वो किस खेमे में है ये भी देखना दिलचस्प होगा। रुद्रव्रत के साथ जाएंगे या फिर ममता बनर्जी के साथ ही रहेंगे। इंद्रजीत कुंडू मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। इंद्रजीत, इस्तीफे की वजह?
13: देखिए, सुखेंदु शेखर रॉय काफी वेटरन तृणमूल कांग्रेस सांसद है, राज्यसभा में थे। उन्होंने सीधा सीधा ये आरोप लगाया था पार्टी के खिलाफ कि जिस तरह का कार्यक्रम इस वक्त पार्टी में चल रहा है, जिस लाइन पार्टी ले रही है, उनका वो समर्थन नहीं करते। और वो आरजीकर का जब मामला हुआ था तब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और तभी से कहा जा सकता है वो एक वागी सांसद थे। और अब उन्होंने दोनों ही पद से, अपने राज्यसभा के पद से इस्तीफा दे दिया है, उसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो इस्तीफा पत्र है वो पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को ईमेल के जरिए भेज दिया है। तो सुखेंदु शेखर रॉय तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं, उसके साथ साथ तृणमूल के राज्यसभा सांसद के पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
5: ये तो बहुत बहुत बड़ा अपडेट है इंद्रजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कि सिर्फ राज्यसभा का ही पद नहीं छोड़ा उन्होंने, तृणमूल कांग्रेस से छोड़ दिया, बाकायदा इस्तीफा दे दिया है। और अब वक्त उछला छोड़े से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: I have had no luck lately. Wait, lady luck?
17: Bretsky, I got you. I've had so much luck on spinquest.com. They have all of my favorite games, slot games, live blackjack craps, and bubble craps. You can even get a $30 coin pack for just $10.
16: $10 for 30? I'm headed over to spinquest.com right now.
18: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
19: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
20: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
14: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
15: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
14: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
15: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: बंगाल में अब मदरसों की हकीकत कागजों पर उतरेगी। कौन चला रहा है, किस नियम के तहत चला रहा है और किसके पास क्या दस्तावेज है। शुभेंदु सरकार ने जिला प्रशासन को 5 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बंगाल में मदरसों के सर्वे के लिए 8 सवाल तैयार किए गए हैं। मदरसे की लोकेशन, स्थापना का वर्ष, रजिस्ट्रेशन की जानकारी, वैध दस्तावेजों की स्थिति, छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की जानकारी, आवासीय या गैर आवासीय, सरकारी सहायता प्राप्त या निजी, पढ़ाए जाने वाले कोर्स। क्योंकि बंगाल में मदरसे सिर्फ शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि दशकों से राजनीतिक बहस का हिस्सा भी रहे हैं। बंगाल में मदरसे बरसों से वोट बैंक, पहचान और तुष्टिकरण की बहस के केंद्र में रहा है। चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, महाजंगल राज के साथ इन मुद्दों को बीजेपी ने जमकर उछाला, ममता सरकार को घेरा, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को खूब मिला। पहली बार बीजेपी की बंगाल में सरकार बन पाई। अब जब मदरसों का राज्यव्यापी सर्वे शुरू हुआ है तो बीजेपी इसे अपने पुराने राजनीतिक अभियान से जोड़कर पेश कर सकती है और कह सकती है कि जिन सवालों को उसकी पार्टी चुनावी मंचों से उठाती रही, आज उन्हीं सवालों के जवाब सरकार खुद तलाश रही है। बीजेपी दावा करती है कि पश्चिम बंगाल में 2011 से पहले 2100 मदरसे थे, 2011 से 2026 बांग्लादेश सीमा के पास 35,000 से ज्यादा वैध और अवैध मदरसे हैं।
1: मद्रासा मुल्ला और रोहिंग्या के लिए राज कर गए, इसलिए काटेगा तो काटेगा, एक रहेगा तो एक रहेगा।
0: शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई को सीएम पद की शपथ ली थी। 11 मई को अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में ही भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को 121 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंपी और 45 दिनों के भीतर 600 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने का फैसला किया। स्कूलों की असेंबली में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य किया, गो हत्या पर सख्ती दिखाई, इमामों और पुरोहितों। ये सर्वे ऐसे समय में हो रहा है जब ममता बनर्जी सरकार से बाहर है, उनकी पार्टी तृणमूल तृण हो गई है, रोज टीएमसी में विवाद बढ़ रहे हैं और उनके वोट बैंक पर बीजेपी ने सीधा हमला किया है। यानी बंगाल में अब मदरसों की फाइलें खुलेंगी, लेकिन इसके साथ ही खुल जाएगी राजनीति की एक नई किताब। क्योंकि जिस राज्य में धर्म और राजनीति की रेखाएं अक्सर एक दूसरे को काटती रही हूं, वहां मदरसों का सर्वे सिर्फ प्रशासनिक कवायद नहीं माना जाएगा बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

उसकी तैनाती, रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट बंद। ईरान इसराइल में जंग शुरू, तेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्ला की ओर से भी हमले, पूरे देश में अलर्ट, स्कूल बंद, IDF ने इस पहान पर किया जवाबी अटैक।

बजे हमारा रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं सिलसिले की। सबसे पहले ईरान इसराइल तनाव की बात करेंगे, क्योंकि एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। ईरान ने फिर से इसराइल पर हमला बोला है और इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की है। ताजा जंग की शुरुआत ईरान के हमले के साथ हुई थी और ईरान ने मिसाइलों से इसराइल को टारगेट किया था, निशाना बनाया था। हालांकि इसराइल का दावा है कि एयर डिफेंस सिस्टम उनका सक्रिय था, ईरान के हमलों को नाकाम कर दिया गया। इसके बाद इसराइल ने पलटवार करते हुए ईरान के कई जगहों पर एक साथ हमला बोल दिया। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने तेहरान, इस्फहान, तबरीज के साथ कई शहरों में एक साथ बम और मिसाइलें बरसाई है। करच में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी गई।

0: ईरान और इसराइल के बीच में हुए ताजा संघर्ष को एक तरीके के वार्निंग शॉट्स के तौर पे देखा जा रहा है। ईरान लगातार ये मानता है कि अगर लेबनान के अंदर इसराइल की फोर्सेस की मौजूदगी इसी तरीके से रही तो फिर हिजबुल्ला को कभी भी वो रिवाइव नहीं कर पाएगा। इसी वजह से ईरान ने एक तरीके से बड़े अटैक्स को इनिशिएट किया। वहीं दूसरी तरफ इसराइल ने भी जो अटैक किए वो सिर्फ उन्हीं इलाकों में किए जहां से उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की गई थी। हालांकि दोनों ही देश लगातार अपनी पूरी सैन्य क्षमताओं के साथ लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि एक तरीके के वार्निंग शॉट्स थे, यानी चेतावनी थी कि अगर एक दूसरे की बातें शर्तों को माना नहीं गया तो फिर निश्चित तौर पर ईरान भी एक बड़ी जंग के लिए तैयारियां कर चुका है।
1: ईरान ने जब इसराइल की तरफ मिसाइलें दागी तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत नेतन्याहू से अपील की कि ईरान पर पलटवार न करें। ट्रंप को डर था कि इससे ईरान के साथ चल रहा समझौता वो उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। इसके बावजूद इसराइल ने ईरान पर बारूदी अटैक किया। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने तेहरान, इस्फहान, तबरीज समेत कई शहरों पर बम बरसाए, मिसाइल हमले किए, करच में भी धमाके हुए। ट्रंप की अपील को भी नेतन्याहू ने एक तरीके से नकार दिया।
2: ईरान ने देर रात इसराइल के भीतर कई बैलिस्टिक मिसाइल से अलग अलग जगहों को निशाना बनाया तो इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने भी ईरान के भीतर जवाबी कार्रवाई की। ईरान का कहना है कि इसराइल लगातार लेबनान के भीतर बेरूत और दूसरे इलाकों में हमले कर रहा है और हिजबुल्ला पर इस तरह के हमले संघर्ष विराम की कोशिशों और संघर्ष विराम की शर्तों के खिलाफ हैं। वहीं इसराइल का कहना है कि ईरान के साथ अगर कोई भी बातचीत होती है तो हिजबुल्ला के खिलाफ उसके ऑपरेशंस को उससे अलग रखा जाना चाहिए। इस हमले के दौरान दोनों ही देशों ने एक कड़ा संदेश दिया है। ईरान कहना चाहता है कि वो हिजबुल्ला का समर्थक है और हिजबुल्ला पर किसी भी तरह के ऑपरेशंस को संघर्ष विराम में शामिल नहीं किया जा सकता। वहीं इसराइल का कहना है कि वो अमेरिका को मना कर सकता है जब हिजबुल्ला और ईरान के दूसरे प्रॉक्सीज पर ऑपरेशंस की बात हो।
1: ईरान और इसराइल ऐसे वक्त में युद्ध में उलझ गए जब स्थायी युद्ध विराम के लिए शांति वार्ता चल रही थी। अब शांति वार्ता का क्या होगा, बता रहे हैं इस जंग को कवर करने वाले हमारे संवाददाता अशफा ने।
3: 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया था तो उन्हें उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों के बाद ईरान घुटनों पर आएगा और ईरान को पूरी तरह से वो तहस नहस करेंगे, लेकिन उल्टा हुआ। ना ही ईरान कमजोर हुआ और ना ही ईरान अमेरिका और इसराइल के सामने झुका, यहां तक कि अमेरिका को ही झुकना पड़ा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर घोषित कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार अभी भी सीज फायर जारी है, लेकिन उस बीच शनिवार और रविवार शाम को जिस अंदाज से ईरान की तरफ से इसराइल पर हमले हुए और उसकी जवाबी कार्रवाई इसराइल की तरफ से की गई और फिर वार पलटवार का सिलसिला अभी भी जारी है।
1: 12:12 रिपोर्ट में बात करेंगे फिलीपींस की, जहां पर भूकंप से तबाही हुई है। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, इसमें 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस भूकंप के बाद से पूरे एशिया में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। 7.8 तीव्रता का यह भूकंप स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:40 पर दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप के तट पर आया। तबाही के वीडियोस लगातार आ रहे हैं। मिंडानाओ के जनरल सेंटोस शहर में एक 3 मंजिला इमारत जिसमें जॉलीबी रेस्टोरेंट बताया जा रहा है, मलबे और धूल के गुबार के साथ वो ढहता हुआ दिखाई दे रहा है।
4: फिलीपींस की धरती एक बार फिर भीषण भूकंप से दहल उठी। करीब 7.8 तीव्रता का ये भूकंप बताया जा रहा है जो सोमवार की सुबह फिलीपींस में आया सरंगरी इलाके के अंदर और उसके बाद लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिलीपींस के लिए भूकंप कोई नई बात नहीं,

0: पर्सन मनीष को दिखाना के लिए कहूंगा मैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टी लेवल बैरिकेडिंग है राजीव, मल्टी लेवल बैरिकेडिंग के उस तरफ का जो हिस्सा है वहां पर ना तो मीडिया अलाउड है ना ही कोई अनाधिकृत तौर पर कोई व्यक्ति अलाउड है। वो हिस्सा जो आप देख सकते हैं अभी कैमरे में, वो मस्जिद का वो हिस्सा है जो कि गिराया जा चुका है या फिर लगभग पूरी तरह से जो अवैध निर्माण था, जो क्योंकि ये विड्थ जो है सड़क की राजीव वो 80 फीट की होनी चाहिए, पर अवैध निर्माण होते होते होते होते उसका एक छोटा सा हिस्सा रह गया था और उसी छोटे हिस्से को बड़े करने की कवायद में जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा ये बड़ा एक्शन दिया गया है, जिसमें 5 इमारतें, जिसमें एक मस्जिद, एक मजार, 2 छोटे मंदिर और एक धर्मशाला बताई जा रही थी। और पुलिस का अभी भी भारी जाब्ता यहां पर मौजूद है। पर जैसा सवाल जो खड़ा हो रहा है कि जयपुर नगर निगम ने इतने सालों तक क्या किया जब ये निर्माण हो रहे थे, ये इमारतें जो हैं बन रही थी, और क्या ये लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है कि इस तरह से धार्मिक या फिर जो मजहबी ये स्ट्रक्चर्स हैं इनको बनने दिया गया। और
1: यही देवांकुर, बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया देवांकुर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मस्जिद और बुलडोजर एक्शन यूपी के संभल में भी हुआ है, यहां पर भी एक्शन है। मुतवल्ली समेत मस्जिद के 8 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। ये बताया जा रहा है कि मस्जिद में आए आई लव मोहम्मद के पोस्टर से हरा झंडा बरामद हुआ है और इसी के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। इस पर स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। आपको बता दें कि कल मुस्तफा कादरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ था।
2: संभल में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बीच मस्जिद परिसर के अंदर से आई लव मोहम्मद और चांद सितारा बने हुए हरे रंग के झंडे मिलने के मामले को लेकर अब संभल पुलिस ने एक्शन लिया है, जहां मुस्तफ़ा कादरी मस्जिद के मुतवल्ली जाकिर सहित मस्जिद कमेटी के 8 लोगों के खिलाफ BNS की धारा 353(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिस दरोगा की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया उसमें आरोप लगाया गया है कि मस्जिद के अंदर से 49 पोस्टर आई लव मोहम्मद के बरामद हुए और इसी के साथ चांद सितारा बना हुआ एक हरा झंडा भी बरामद हुआ है, जिसके कारण हिंदू समाज में रोष व्याप्त है और इसी के साथ मस्जिद कमेटी के इन लोगों के द्वारा समाज में वैमनस्यता फैलाने का कार्य किया गया है।
1: और अब खबर दिल्ली में होने जा रहे इंडिया गठबंधन की बैठक की। कुछ देर में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह मीटिंग होने जा रही है। इसमें देश विपक्षी दलों के दिग्गज नेता एक मंच पर जुट रहे हैं। TMC में ममता बैनर्जी और अभिषेक बैनर्जी उनके जो दिल्ली पहुंच चुके हैं, अखिलेश यादव भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। बंगाल और अन्य विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों को लगे झटकों पर झटकों के बाद ये बैठक अहम माने जा रहे हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी यहाँ चर्चा की उम्मीद है।
3: दिल्ली में होने वाली इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक से पहले कुछ इस तरह के पोस्टर्स सेंट्रल दिल्ली के कई चौराहों पर आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं अभी मौजूद हूं फिरोजशाह रोड या जनपद के गोल चक्कर के पास और आप देखिए पीछे एक पोस्टर यहां पर चस्पा है जिसमें ममता बैनर्जी ने जो कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि अगर कांग्रेस गठबंधन को नहीं चला सकती है, यानी इंडिया ब्लॉक को नहीं चला सकती है, तो मैं इसे चला सकती हूं। इंडिया अलायंस वाले जो आपस में लड़ रहे हैं वो साथ क्या लड़ेंगे, ये पोस्टर भी यहां पर चस्पा है जिसमें अरविंद केजरीवाल का बयान यहां पर लगा हुआ है कि लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, भला मैं कांग्रेस को क्या कमजोर करूंगा, राहुल गांधी खुद ही अकेले इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इंडिया अलायंस वाले जो आपस में लड़ रहे हैं वो साथ क्या लड़ेंगे, कुल मिलाकर ये कोशिश है एक तरीके से ये दर्शाने की कि जो इंडिया ब्लॉक के जो तमाम जो मेंबर्स हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, उनकी आपस में मनमुटाव है और उसके बावजूद क्योंकि उनको बीजेपी को हराना है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसको हराना है, ऐसे में वो बैठक कर रहे हैं।
1: अब इंडिया गठबंधन की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब TMC में अंदरूनी कलह है, उस पर विराम लगता दिख नहीं रहा है। ताजा खबर भी यह है कि TMC के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले पार्टी के लगभग 60 विधायकों ने बगावत कर दी थी। बागी विधायकों का नेतृत्व कर रहे अरविंद बैनर्जी ने भी यह कह दिया कि कई TMC सांसद उनके संपर्क में, और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कई बागी सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो स्पीकर को चिट्ठी लिख सकते हैं। इसी बीच में सुखेंदु राय ने न सिर्फ राज्यसभा पद से इस्तीफा दिया बल्कि TMC से भी इस्तीफा दे दिया।
4: तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी कलह में कोई विराम लगता हुआ दिख नहीं रहा है। पहले ही 60 विधायक बागी गुट में शामिल हो गए और विद्रोह घोषणा कर दिया पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ, अभिषेक बैनर्जी के लीडरशिप के खिलाफ। अब खबर ये आ रही है कि संसद तक ये पहुंच चुकी है और तृणमूल के जो संसदीय टीम है, जो MPs है, उनमें भी फूट देखने को मिल रहा है, दरार देखने को मिल रहा है और ऐसे बहुत सारे सांसद है जो बागी विधायकों का गुट को

0: जो लीड कर रहे हैं ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, उनके साथ संपर्क बना रहे हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है, और कहीं ना कहीं ये सेम मॉडल जो विधानसभा में देखने को मिला था, वही विद्रोह का मॉडल अब लोकसभा में भी देखने को मिल सकता है।
1: 12 बजे 12 रिपोर्ट में अब अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत का दर्द छलका है। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष न बनने के पीछे साजिश का आरोप लगाया है। अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। सच्चाई यह है कि उनके साथ साजिश हुई थी। क्या है सचिन पायलट और तमाम बातों का उन्होंने उल्लेख किया, लेकिन अध्यक्ष बनने की ख्वाहिश भी जाहिर की लेकिन बन नहीं पाए क्योंकि उनके साथ साजिश हुई, ये कहा।
2: अशोक गहलोत ने कहा कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहता है, मगर हमारे साथ साजिश हुई, अचानक से ऑब्जर्वर भेज दिए गए और फिर मैं अध्यक्ष नहीं बन पाया। अब सवाल उठता है कि ऑब्जर्वर अचानक से किसने भेजे, सोनिया गांधी ने भेजे थे, ऑब्जर्वर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन आए थे, तो साजिश किसने की। अचानक से रविवार को कंस्टिट्यूशन क्लब में बाल कटाने गए अशोक गहलोत ने प्रेस को बुलाया और बिना पूछे 25 सितंबर 2022 के घटनाक्रम पर बोलना शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि सोशल मीडिया में जिस तरह से खबरें आ रही है कि सचिन पायलट वापस राजस्थान में सक्रिय हो सकते हैं, उसे देखते हुए अशोक गहलोत बार बार सचिन पायलट पर हमला बोलते हैं और मानेसर कांड की याद दिलाते हैं।
1: अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है अब आपको सुनाते हैं।
3: मना करूंगा, वो तो इसलिए ही बना दी, वो भी कॉन्सिक्वेंसी थी मेरे ख्याल से, मुझे लगता है वो ही बड़ी कॉन्सिक्वेंसी हुई। अचानक ये ऑब्जर्वर आ गए, अचानक ये तमाशा हो गया, बदनामिया हो गया हिंदुस्तान में। लोग समझते हैं अशोक गहलोत जो है उसको मुख्यमंत्री रहना था, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना था, इसलिए रिवोल्ट हुआ।
1: बात झारखंड की करते हैं। झारखंड में राज्यसभा चुनावों को लेकर एनडीए के में कंफ्यूजन की स्थिति दिख रही है। झारखंड में एनडीए के पास 24 विधायकों का समर्थन है और इसके बाद अभी भी एनडीए की ओर से उम्मीदवार की घोषणा हो नहीं सकी है।
4: झारखंड में भी दो राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को चुनाव होने हैं और नामांकन का आज आखिरी दिन है। इंडिया ब्लॉक के तरफ से दो उम्मीदवारों की घोषणा तो कर दी गई है। एक उम्मीदवार कांग्रेस के प्रणव झा होंगे जबकि दूसरे उम्मीदवार जेएमएम के तरफ से बैद्यनाथ राम होंगे, लेकिन बीजेपी या तो इनडिसाइसिव है या फिर सस्पेंस उसने बरकरार रखा है। कोई उम्मीदवार के नाम की घोषणा बीजेपी के तरफ से नामांकन के आखिरी दिन तक नहीं हुआ है। परिमल नाथ वानी, उनको बीजेपी सपोर्ट कर सकती है, ये बातें भी सामने आ रही है कि उन्हें कहा जा रहा है कि वो ऑफिशियल कैंडिडेट बन जाएं बीजेपी के, लेकिन वो किसी पार्टी के साथ एलिजियंस चाहते नहीं है, बतौर इंडिपेंडेंट खड़ा होना चाहते हैं, ये बताया जा रहा है जो उनके करीबी हैं उनके द्वारा। तो जाहिर तौर पे दिलचस्प मोड़ पे है राज्यसभा का चुनाव। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एनडीए फोल्डर से कोई कैंडिडेट सामने आएगा, अभी तक किसी नाम की घोषणा नहीं हुई है।
1: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद से टीएमसी के नेताओं पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। टीएमसी की सत्ता में रहे जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। अब बंगाल के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही जिसमें आक्रोशित लोग खुद ही दागे टीएमसी नेताओं को सबक सिखा रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही श्यामपुर इलाके में एक टीएमसी नेता को लोगों ने जूतों की माला पहनाकर जुलूस निकाला। अब ये दो तस्वीर है, एक तरफ जूतों की माला पहनाकर जुलूस निकाला गया, नारेबाजी हुई, और दूसरी तस्वीर है जहां पर भगाया जा रहा है, अंडे फेंके जा रहे हैं, टमाटर फेंके जा रहे हैं टीएमसी नेताओं के खिलाफ। लोगों का ये गुस्सा देखने को मिल रहा है।
5: देखिए, भाजपा सरकार पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के बाद एक के बाद एक भ्रष्ट तृणमूल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन पर उतर आई है। लगातार एक के बाद एक काउंसिलर अलग अलग म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जिनके खिलाफ सालों से कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं। कुछ दिन पहले ही श्यामपुर, हावड़ा के श्यामपुर से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, उसे जूते का माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। और सिर्फ यही नहीं, अलग अलग जगहों पे ये भी देखने को मिल रहा है कि लोगों के डर से, जैसे कुछ बिहार में एक काउंसिलर ने खुद बकायदा लोगों को अपने घर बुलाकर उनका पैसा वापस करना शुरू किया है। सूत्रों के माने तो सरकार का रवैया बहुत साफ है, जिसने भी पाप किया है, जिसने भी भ्रष्टाचार का में शामिल रहा है, उन हर एक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: 12 बजे 12 रिपोर्टर में बात। बिहार के सीतामढ़ी में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर अश्वेता गुप्ता और उनके पति डॉक्टर वरुण कुमार के निजी हॉस्पिटल पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने अस्पताल की उस बाउंड्री वॉल को गिराया जो जांच में सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण करके बनाई गई थी।
6: बिहार में सम्राट सरकार का बुलडोजर एक्शन अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ देखने को मिला है। तस्वीरें सीतामढ़ी से सामने आई हैं, जहां बिहार की समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता और उनके पति डॉक्टर वरुण के प्राइवेट हॉस्पिटल और उसी में उनके आवासीय परिसर की चार दीवारी को अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासन ने गिरा दिया। पूरा मामला रिंग बांध सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के अंदर अतिक्रमण हटाने से जुड़ा है। डॉक्टर श्वेता गुप्ता और उनके पति डॉक्टर वरुण का हॉस्पिटल जो है वो सरकारी जमीन में आ रहा था और इसीलिए उनकी हॉस्पिटल की चार दीवारी को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है।
1: यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर चल रहे, बीते 24 घंटों में 6 बदमाशों को पुलिस ने गोली मारी है, इसमें से एक ढेर हो गया और बाकी अस्पताल में। अयोध्या में 1,00,000 से ज्यादा का इनामी बदमाश प्रयागराज में एसटीएफ ने ढेर कर दिया। इसके अलावा हापुड़, अलीगढ़, आगरा में भी बदमाशों का पुलिस से आमना सामना हुआ है।
7: उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का दौर जारी है और जिसका नतीजा है कि अयोध्या से लेकर लखनऊ, चंदौली, हापुड़ में बीते 24 घंटे में एनकाउंटर हुए जिसमें कई बदमाश घायल हुए। तो वहीं अयोध्या में 1,90,000 का इनामी लुटेरा सुपारी किलर भानु प्रताप सिंह यूपीएसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया। भानु प्रताप सिंह पर गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर से 1,90,000 का इनाम घोषित था, जिस पर 40 से अधिक मुकदमे सुपारी किलिंग, डकैती, हत्या के दर्द थे। यूपीएसटीएफ को लंबे समय से तलाश थी और इसी कड़ी में अयोध्या में यूपीएसटीएफ को इसकी भनक लगी और मुठभेड़ में भानु प्रताप सिंह को मार गिराया गया।
1: 12 बजे 12 रिपोर्टर में रुकने, छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
10: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
11: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
13: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn. Sokudo.
14: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
15: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
16: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
5: जहां खबर वहां खबरदार।
9: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
5: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल।
10: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी।
5: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल।
10: CBSE के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
5: छात्रों को दिया मंच।
10: उज्मा हमारे साथ कोटा से और अदिति मुंगेर से हैं और तानिया कोटा से हैं और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
11: मैम ये देखिए, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
12: IIT मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
5: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर।
10: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक। और अब सरकार की तरफ से CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
5: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अप।
14: दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में हुई DU के असिस्टेंट प्रोफेसर देबोस्मिता पॉल की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है और पूरी खबर बता रहे आज तक संवाददाता अंशुल सिंह।
15: दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर देवलीना पॉल की हत्या की गुत्थी दिल्ली पुलिस ने सुलझा ली है। दरअसल ये पूरा मामला एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का था। बताया ये जा रहा है कि देवलीना पॉल की एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी पश्चिम बंगाल के बर्धमान में, जहां ये एक पति पत्नी दंपत्ति पिछले कई सालों से रेंट पर या किराए पर रह रहे थे। पिछले कुछ महीनों से इनके बीच वाद विवाद शुरू हुआ, जिसमें देवलीना चाहती थी कि उनकी ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो है उसको ये किराएदार खाली कर दें, लेकिन वो ये करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर जब एक दिन देवलीना ने उन्हें आखिरी चेतावनी दी और ये कहा कि अगर उन्होंने घर खाली नहीं किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उसके बाद इस पति-पत्नी दंपत्ति ने एक ये पूरा प्लान बनाया जिसके तहत वो 3 तारीख को ट्रेन पकड़ के दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली के दल्लूपुरा इलाके में एक गेस्ट हाउस में रहते हैं और उसके बाद 3 के दिन में ही वो जाकर के देवलीना से मिलते हैं और इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं।
14: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
16: Better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
17: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
18: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
19: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search today's K-pop to start listening now.
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

बंगाल में ममता बनर्जी को फिर लगा डबल झटका। राज्यसभा सांसद सुखेंद्र रॉय ने दिया इस्तीफा। जहांगीर खान को बंगाल एसटीएफ ने नेपाल बॉर्डर से पकड़ा। बंगाल हारने के बाद इंडिया गठबंधन के सहारे ममता, आम आदमी पार्टी ब्लॉक से बाहर। टीवीके और डीएमके ने बनाई दूरी। सूत्रों का दावा यूपी में तय है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। जयपुर की नूरानी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन। 5 सेकंड में जमींदोज हुई इमारत। पूरा इलाका छावनी में तब्दील। भारी पुलिस फोर्स तैनात। रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट बंद। ईरान ने इसराइल में जंग फिर शुरू। तेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें। हिजबुल्ला की ओर से भी हमले। पूरे देश में अलर्ट। स्कूल बंद। आईडीएफ ने इस्फहान पर किया जवाबी अटैक। फिलीपींस में आए जबरदस्त भूकंप की तस्वीरें देख सहमी दुनिया। 7.8 की तीव्रता का कंपन। शहर तबाह। कई इमारतें जमींदोज। सुनामी की आशंका से भी दहशत।

राम मंदिर चंदा विवाद पर सियासी घमासान तेज, स्वास्थ्य और समाजवादी पार्टी के नेता आमने सामने। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के दान को लेकर अनियमितताओं के आरोप है, जांच की मांग तेज। दान निधि विवाद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जवाब कि यदि गलती हुई तो जांच में सामने आएगी सच्चाई। चंबत राय के बयान के बाद अखिलेश यादव ने फिर से साधा निशाना, ट्रस्ट की सफाई को बताया कमजोर। अयोध्या दान निधि विवाद पर अखिलेश बोले कि स्पष्टीकरण संदिग्ध है, ट्रस्ट को एक साथ बैठकर इसका जवाब देना चाहिए। दिल्ली में हो रही इंडिया ब्लॉक की बैठक में अखिलेश यादव समेत कई नेता पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में यूपी चुनाव और सीट बंटवारों को लेकर बातचीत हो सकती है। यूपी में अपराधियों पर पुलिस का प्रहार, 24 घंटे में 6 एनकाउंटर, 1.5 लाख का इनामी बदमाश ढेर। अयोध्या में एसटीएफ का बड़ा एनकाउंटर, 1 लाख से ज्यादा का इनामी कॉन्ट्रैक्ट किलर भानु प्रताप सिंह ढेर। प्रकृति और पर्यावरण पर मुख्यमंत्री योगी का संदेश, बोले आधुनिकता जरूरी लेकिन संतुलन बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक। काशी में शहर के बाहर शिफ्ट होंगी मांस मछली की दुकानें, 5 स्थान किए गए चिन्हित। संभल में अवैध मस्जिद के ध्वस्तीकरण के दौरान पोस्टर मिलने के मामले में कार्रवाई, मस्जिद के मुतवली जाकिर समेत 8 पर FIR। मस्जिद कमेटी के लोगों के इस कृत्य से हिंदू समुदाय में भी रोष, समाज में वैमनस्यता फैलने का भी आरोप। सुल्तानपुर में बीजेपी विधायक विनू सिंह का विवादित वीडियो वायरल, विकास मंच से ग्राम प्रधानों और मुस्लिम समुदाय को जांच की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश में 32,689 पदों पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आज हो रही है लिखित परीक्षा। प्रदेश भर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में हो रही है यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, कल और 10 जून को भी परीक्षाएं होंगी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों के हित में फैसला लिया, अभ्यर्थियों को बसों में 50% की मिलेगी छूट। फिरोजाबाद में पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू, 6 केंद्रों पर 2,000 से ज्यादा अभ्यर्थी दे रहे हैं परीक्षा, सुरक्षा के इंतजाम। पुलिस भर्ती परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों की मांग है कि रिजल्ट के बाद कॉपी भी सरकार दिखाए।

0: और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी खबर आपको देते हैं। गठबंधन इंडिया को लेकर एक बड़ी खबर, दिल्ली में बैठक चल रही है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे। बैठक शुरू होगी कुछ देर के बाद, लेकिन अखिलेश यादव आए। लेकिन दिल्ली में हो रही बैठक में सबकी निगाह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आगामी चुनावों को लेकर होने वाली संभावित चर्चा को लेकर है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान ही यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हो सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव कांग्रेस को कितनी सीटें दे सकते हैं, इसे लेकर कांग्रेस का रुख पूछा जा सकता है। हालांकि इससे पहले यूपी में गठबंधन इंडिया ने मिलजुल कर लड़ने का भी दावा किया, लेकिन सीटों को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हो सकी। और ये बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं कि अब इस बैठक में चर्चा संभव है। हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। समर, एक तरफ यह भी खबर आई कि यूपी में आधी सीटों पर सपा अपने कैंडिडेट तय कर चुके हैं, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक में भी चर्चा की जानकारी मिल रही है, तो क्या या तो बातचीत पहले हो सकी है या नई सिरे से बातचीत इंडिया ब्लॉक की बैठक में ही होगी?
1: राजीव, देखिए अभी तक कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच में आधिकारिक तौर पर कोई बातचीत अलायंस या सीट नंबर्स को लेकर नहीं हुई थी। कि अखिलेश यादव ने हालांकि तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी है और लगातार वो जिलेवार बैठकें ले रहे हैं, और राहुल और अखिलेश की एक तरीके से जो बैठक के तौर पर मुलाकात होती है वो भी काफी समय बाद हो रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सूत्र ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की चर्चा राहुल से और अन्य जो कांग्रेस के नेता हैं दिग्गज, उनसे सीट शेयरिंग नंबर हो या कोई प्रोबेबल जिताऊ कैंडिडेट उनके पास हो उनको लेकर हो सकती है। क्योंकि अखिलेश यादव ने तमाम ऐसे नेता हैं विधानसभा के, उनको अनऑफिशियली कहा हुआ है कि आप अपने अपने जनपदों में अपने अपने विधानसभा सीटों में तैयारियां शुरू कर दीजिए, तो एक तरीके से अनाधिकारिक तौर पर उनको जिम्मेदारी दे दी है। तो रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो उन्हें भी अपना एक नंबर बताना पड़ेगा, उनको भी ऐसे कैंडिडेट्स बताने पड़ेंगे जो जिताऊ तो हो ही हो बल्कि वो यूपी की उस विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण को साधते हुए नजर आए। अखिलेश यादव पीडीए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उनकी उम्मीदें कांग्रेस से यही है कि कांग्रेस पार्टी वही उम्मीदवार लाए जो जातीय समीकरण
0: कांग्रेस का क्या प्लान देख रहे हैं, स्पेशली यूपी कांग्रेस, यूपी की प्रदेश कांग्रेस और सेंट्रल लीडरशिप में क्या मंथन चल रहा है सीट को लेकर? अच्छा, हमारे संवाददाता राहुल गौतम भी इस समय जुड़ गए जो कि इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। राहुल, यूपी को लेकर बताया जा रहा है कि बहुत दिलचस्प चर्चा होने वाली है, तो कांग्रेस क्या बात रखने वाली है, सपा क्या बात रखने वाली है?
2: देखिए, अगले साल महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, और इस बैठक के अंदर बताया जा रहा है तमाम मुद्दे जिन पे सरकार को घेरा जाएगा उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन ये मीटिंग का एजेंडा है। आप देखिए, जो साइडलाइंस होती हैं, जाहिर है उस समय पर कुछ चर्चा हो सकती है कि आखिर कितनी सीट पर कौन लड़ेगा या फिर उम्मीदवारों को लेकर या एजेंडा को लेकर, लेकिन साफ तौर पर आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ा रणनीति खींचने की कोशिश की जा रही है 27 से पहले कि सरकार को घेरा जाए। आप देखिए, 2024 के बाद से कोई बड़ा राज्य विपक्ष के हाथ नहीं लगा है, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, बंगाल हो, ये तमाम जो राज्य हैं वो बल्कि धीरे धीरे भाजपा के पाले में जा चुके हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश अगर कई लोगों को लगता है कि नहीं जीता गया विपक्ष के द्वारा, ऐसे में 29 की जो राह है वो और मुश्किल हो जाएगी। और आप ये जो बात है ये तमाम कांग्रेस के नेता भी जानते हैं, इसलिए लगातार ये बात की जा रही है कि जल्द से जल्द जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है या जो सीट का नंबर है उसको तय किया जाए।
0: ये दोनों ही दल चाहते हैं, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मी अभी शुरू भी नहीं हुई है कि आरोपों की तोहमतें सियासत को सुलगाने लगी हैं। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे के पैसे में चोरी हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि मंदिर ट्रस्ट की ओर से ऐसी किसी भी गड़बड़ी की खबर को निराधार बताया गया है, लेकिन अफवाह उड़ रही है कि चंदे में गड़बड़ी की आशंका है।

0: अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। प्रभु राम की जन्मस्थली पर बना विशाल मंदिर विश्व भर के राम भक्तों के लिए अनन्य तीर्थ है। इस पवित्र भूमि पर पिछले कुछ वर्षों से श्री राम भक्ति की अनवरत धारा बह रही है, मगर इस मंदिर के बनने से पहले, बनते वक्त और बनने के बाद यहाँ राजनीति की भी अनवरत धारा बहती रही है। और अब राजनीति की नई धारा में चंदे की चोरी के आरोप फिर से सिर उठा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई है। केंद्र और राज्य सरकार इस पर चुप है, अदालत स्वतः संज्ञान लेकर जांच करे, क्योंकि असंख्य राम भक्तों की आस्था का सवाल है। अखिलेश की ओर से लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने जवाब देने से इनकार कर दिया।
1: अखिलेश यादव ने आज कहा है कि जो चढ़ावे की राशि है 7 करोड़ मंदिर से गायब हो गई है, सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है।
2: ये सरकार का विषय नहीं है, मंदिर प्रशासन का विषय, मंदिर प्रशासन का जवाब देगी। कहां पे कौन कह रहा गायब हो गई है?
1: तो अखिलेश यादव ने दावा,
2: अखिलेश यादव कहते रहे, उनका हम जवाब थोड़ी देते रहेंगे।
0: बीजेपी की ओर से किसी जवाब से इनकार किया गया, लेकिन अखिलेश के आरोपों पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई दी।
3: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
0: हालांकि अखिलेश यादव ने ट्रस्ट की ओर से दी गई 40 सेकंड की सफाई पर भी सवाल उठाए और ट्रस्ट के सभी सदस्यों को साथ बैठाकर फुल बेंच स्पष्टीकरण मांगा और सीसीटीवी फुटेज के सबूतों पर जांच कराने की मांग की। उधर ट्रस्ट के सदस्यों की ओर से इस खबर पर किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आ रहा, लेकिन ट्रस्ट के सदस्य महंत दीनेंद्र दास कहते हैं कि एक तो ऐसी गलती होगी नहीं और हुई तो राम जी दंड देंगे।
4: जो राम जी के पास आता, राम जी से अपना देख रहे हैं, राम जी पर विश्वास बनाता, वो उनका उन्हीं का काम हो रहा है। सबका विचार है, बुराई बोल, किसी की बुराई नहीं बोलना चाहिए। हमारे लिए तो सब ठीक है, राम जी देख रहे हैं, अपने आप सही कर देंगे, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी राजा है ना, अच्छाई बुराई सब देखने वाले हैं, वो मालिक है, बड़े बड़े को ठीक करे, किसी का बुराई बोलना उचित नहीं है। वो तो भगवान स्वयं देखे, स्वयं दंड दे देंगे।
0: चढ़ावे पर सवाल के पीछे क्या, चढ़ावे में गड़बड़ी की खबरों के पीछे समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान और आरोप हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण उर्फ पवन पांडेय ने अपुष्ट खबरों के आधार पर चंदे में चोरी का दावा कर दिया।
5: और सबसे बड़ी जांच का विषय तो यह है कि अभी जो पकड़ा गया, ये तो एक हफ्ते का मामला है। जब से राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा है, जब से श्रद्धालु आ रहे हैं, जब से लोग दान पात्र में पैसा डाल रहे हैं, अब तो ये विषय है कि कब से चोरी हो रही है, कब से चोरी हो रही है।
0: समाजवादी पार्टी के आरोपों के मुताबिक मंदिर के दान पत्रों में आने वाला चढ़ावा रोज गिना और स्टेट बैंक में जमा किया जाता है, लेकिन पिछले दिनों ये चढ़ावा आश्चर्यजनक रूप से औसत चढ़ावे से कम निकला। आशंका है कि इसमें 5 से 7 करोड़ रुपए की कमी देखी गई, जिसके बाद बैंक कर्मियों से पूछताछ भी की गई। हालांकि ऐसी अफवाहों की पुष्टि किसी ने नहीं की है, क्योंकि तथ्यों के मुताबिक राम मंदिर सहित अन्य सभी मंदिरों के सामने और पूरे दर्शन मार्ग पर करीब 4 दर्जन दान पात्र हैं। श्रद्धालु इनमें नकद पैसे चढ़ाते हैं, जिन्हें रोज गिनकर बैंक में जमा करा दिया जाता है। संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक।
6: तो बिना किसी सबूत, बिना किसी ठोस आधार, सिर्फ कहीं सुनी बातों पर समाजवादी पार्टी ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर और ट्रस्ट के चढ़ावे पर चोरी के आरोप लगा दिए। दरअसल यूपी और देश की सियासत में विपक्ष के लिए अयोध्या का राम मंदिर हमेशा से सवालों वाली सियासत का मुद्दा रहा है, चाहे वो मंदिर के शिलान्यास की बात हो, मंदिर के निर्माण की बात हो या उद्घाटन की बात हो। विपक्ष ने तरह तरह के सवाल राम मंदिर को लेकर उठाए हैं, जिनमें मंदिर के नाम पर मिलने वाले चंदे की चोरी से लेकर जमीन घोटाले तक के आरोप लगाए गए और उसकी कभी भी पुष्टि हो नहीं पाई। और एक बार फिर जब चढ़ावे की रकम में हेरा फेरी के आरोप सामने आए और संदिग्धों से पूछताछ के बाद 5 लाख रुपए की रिकवरी की खबरें भी मीडिया में आई तो विपक्षी दलों को मौका मिल गया।
7: मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भाजपाइयों को प्रभु श्री राम में कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। ये फर्जी खाली अपने आप को राम भक्त बताने का काम करते हैं, इनसे सावधान रहना होगा। ये चंदा चोर लोग हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, तो इनसे सावधान रहिए। ये करोड़ों की चंदा चोरी का जो मामला हुआ है, नया जो मामला सामने आया है, इसको लेकर आवाज उठाइए। हम अपने भगवान श्री राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर चंदा चोरी नहीं होने देंगे, उनके चढ़ावे में चोरी नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। तो मैं, जो पदाधिकारी महोदय ने स्टेटमेंट जारी किया है चंपत राय जी, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप प्रभु श्री राम के प्रतिमा पर हाथ रख के सौगंध खा के ये कह दीजिए कि चंदा चोरी नहीं हुई है, आपकी बात लोग मान लेंगे।
8: ये जो चोरी हो रही थी देख रहे थे, वहां के महंत कह रहे हैं चोरी ये नहीं हुई, अभी कह रहे हैं चोरी हुई, तो इसका मतलब चोर लोग आके इनको बताएं कि हम लोग चोरी किए हैं। ये अखिलेश जी हैं भैया, खाता न बही जो न अखिलेश कहें वह सही। मंदिर में अभी आज तक दर्शन करने नहीं गए, मंदिर में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में कई गो गेट है, अब इनसे पूछेंगे तो बता नहीं सकते। चोरी कहाँ से हो गई? इनके यहाँ सब जितने चोर हैं वो सूचना देते हैं कि हम लोग चोरी आज करने वाले हैं, आप कल बयान दीजिएगा।
6: दरअसल इस तरह के आरोपों के जरिए उत्तर प्रदेश में विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी हिंदुत्व की राजनीति के बीच अपने पांव घुसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 2024 में भले ही संविधान के नाम पर समाजवादी पार्टी की लॉटरी लगी, लेकिन जिस तरह यूपी में सीएम योगी हार्ड हिंदुत्व की लाइन पकड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी उसकी काट नहीं तलाश पा रही है।
0: उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत में सीएम योगी का निशाना क्लियर है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही यूपी पर राज करेगा वाले चुनावी नारे को बीजेपी ने काफी पहले चुनावी रणनीति में तब्दील कर लिया था। लेकिन हिंदुत्व ब्रांड सियासत पर कब्जा करने वाली बीजेपी को अब अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व वाली रणनीति से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण से लेकर महाकुंभ के कोहराम तक, मर्यादा पुरुषोत्तम के सामाजिक न्याय से लेकर शंकराचार्य और गौ माता के बचाव तक, समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार और बीजेपी के हिंदुत्व को घेरने की कोशिश की है। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से आए सीएम योगी के बयानों पर गौर करें तो गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड से लेकर गौ माता के दर्जे तक और धर्मांतरण से लेकर माफिया राज के खात्मे और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण तक सीएम योगी के बयान हार्ड हिंदुत्व की धारा में रंगे दिख रहे हैं, जिसके मुकाबले में समाजवादी पार्टी भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह अख्तियार करती दिख रही।
9: तो हमारे आदर्श डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि धर्म दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म है, तो राजनीति में भी धर्म का, और हमारा धर्म क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पौराणिक राम की मर्यादा क्या है, उनके आदर्श क्या है कि सत्य के साथ रहना। देवाधिदेव भगवान का मंदिर बन रहा, शिव रेखा पर मंदिर बन रहा, दुनिया का सबसे बेहतर मंदिर बन रहा है।
0: समाजवादी पार्टी आए दिन हर मौके पर यह याद दिलाती है कि उनकी ओर से केदारेश्वर मंदिर बनाया जा रहा है। कभी रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी अब वकीलों में रामचरितमानस की प्रतियां बंटवाती है, और तो और ब्राह्मणों के वोट को रिझाने के लिए भगवान परशुराम की मूर्तियां बनवाने से लेकर सरकारी छुट्टी तक की मांग करती है।
10: रहा सवाल अखिलेश यादव का हिंदुत्व, तो ये तो मुस्लिम परस्त पार्टी है जो तुष्टिकरण की उस पराकाष्ठा तक चली जाती है कि अगर अपराधी मुस्लिम है, आतंकी मुस्लिम है, तो उसके लिए भी ये छाती पीटने लगते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश यादव के हिंदुत्व की तो तुलना ही नहीं की जा सकती।
0: दरअसल 2024 में संविधान के नाम पर चोट खा चुकी बीजेपी को लगता है कि हिंदुत्व ही वो कार्ड है जो संविधान बदलने वाली अफवाह से बिखरे दलित पिछड़े वोट को एकजुट कर सकती है।
11: अखिलेश यादव भी सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर आगे आए हैं। अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर एक और इटावा में बनवाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव रामचरितमानस वकीलों में बंटवाते हैं और जो नेता धार्मिक लाइन को क्रॉस करते दिखते हैं उन्हें अखिलेश यादव की फटकार का भी सामना करना पड़ता है। अखिलेश यादव की कोशिश है कि वो पीडीए के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व का जवाब देते दिखाई पड़े। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: अब रुख तो चलाए छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
15: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
16: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
17: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
18: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
19: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
20: सोच बदलो और बैंक भी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

ममता बनर्जी को फिर लगा डबल झटका। राज्यसभा सांसद सुखेंदु रॉय ने दिया इस्तीफा। जहांगीर खान को पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने नेपाल बॉर्डर से किया गिरफ्तार। बंगाल हारने के बाद इंडिया गठबंधन के सारे ममता, आम आदमी पार्टी ब्लॉक से बाहर। बैठक से पहले समाजवादी सूत्रों का दावा, यूपी की आधी सीटों पर उम्मीदवार फाइनल। जयपुर की नूरानी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन, 5 सेकंड में जमींदोज हुई इमारत, पूरा इलाका छावनी में तब्दील। भारी पुलिस बल तैनात, रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद। ईरान इसराइल में जंग फिर से शुरू। तेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्ला की ओर से भी दागे गए मिसाइल। पूरे देश में अलर्ट, स्कूल भी बंद, कॉलेज भी बंद। आईडीएफ ने इस्फहान पर भी किया जवाबी अटैक।

नागेंद्र ध्रुव शेखर रॉय का टीएमसी और राज्यसभा से इस्तीफा, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। टीएमसी छोड़ने के बाद शुकेंद्र शेखर रॉय का बड़ा हमला, कहा कि बंगाल में बीजेपी की जीत को पता ऐतिहासिक जनादेश। टीएमसी नेता जहांगीर खान को पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, लंबे समय से था फरार बताया जा रहा है। जहांगीर खान फालता विधानसभा से टीएमसी के पूर्व प्रत्याशी था, उस पर ईवीएम टैंपरिंग के आरोप भी लगे हैं। इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली में अहम बैठक है, बैठक में भाग लेने पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं का जुटाव भी जारी है। इंडिया ब्लॉक की बैठक में ममता, अभिषेक, तेजस्वी, अखिलेश समेत कई नेता पहुंचे हैं, बैठक में राहुल गांधी और महबूबा मुफ्ती की भी एंट्री हुई है। इंडिया गठबंधन बैठक में डीएमके ने बनाई दूरी, टीएमसी और एसपी के न्योता के बावजूद कनी मौजी नहीं पहुंची। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में बनाई दूरी, आप सांसद संजय सिंह बोले हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग का कसा तंज, निशिकांत दुबे बोले इस गठबंधन में कोई अस्तित्व ही नहीं है। जयपुर की नूरानी मस्जिद का प्रशासन ने किया ध्वस्त, भारी पुलिस फोर्स की निगरानी में हुई कार्रवाई। प्रशासन ने पहले से जारी किया हुआ था नोटिस, तय समय सीमा पूरी होने के बाद बड़ा एक्शन लिया गया। कार्रवाई के दौरान इलाके में बड़ी संख्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, हाई अलर्ट पर शहर और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। जेसीबी मशीनों की मदद से अतिक्रमण हिस्सों को हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, मंदिर मस्जिद और मजार पर भी चलेगा बुलडोजर। जगतपुरा में अतिक्रमण हटा रहा है जेडीए, मुख्य सड़क पर 80 फीट चौड़ा करने के लिए एक्शन लिया जा रहा है। राम मंदिर दान निधि विधान विवाद पर सियासी घमासान तेज हो गया, ट्रस्ट और समाजवादी पार्टी के नेता आमने सामने आ गए। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के दान को लेकर अनियमितताओं का आरोप है, जांच की मांग तेज कर दी गई है। राम निधि विवाद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जवाब है, यदि गलती हुई तो जांच के में सामने आ जाएगी सच्चाई। चंपत राय के बयानों के बाद अखिलेश यादव ने फिर से साधा है निशाना, ट्रस्ट की सफाई को बताया कमजोर। अयोध्या दान निधि विवाद पर अखिलेश यादव बोले हैं स्पष्टीकरण संदिग्ध है, ट्रस्ट को एक साथ बैठकर देना चाहिए जवाब। काशी में शहर के बाहर शिफ्ट होगी मीट मछली की दुकानें, 5 स्थानों को किया गया चिन्हित। संभल में अवैध मस्जिद के ध्वस्तीकरण के दौरान पोस्टर मिलने से मामले में बड़ी कार्रवाई की गई, मस्जिद के मुतलवी जाकिर सहित 8 लोगों के खिलाफ FIR भी की गई। मस्जिद कमेटी के लोगों ने इस कृत्य को हिंदू समुदाय के लोगों से रोष व्यक्त करते हुए समाज में भवन स्थापना फैलाने का आरोप लगाया। प्रकृति और पर्यावरण पर सीएम योगी का संदेश बोले अनधिकृत जरूरी, लेकिन जरूरी व संतुलन बनाए रखना उतना ही जरूरी है। गाजीपुर में ध्वस्त गजल होटल की जमीन विवाद पे MPMLA कोर्ट पहुंचा, अब्बास अंसारी को नोटिस जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में 32,679 पदों पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आज हो रही है लिखित परीक्षा। प्रदेश भर में अलग अलग परीक्षाओं केंद्र पर 2 पालियों में हो रही है यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा, कल और 10 जून को भी होगी परीक्षा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम ने अभ्यर्थियों के हित में लिया बड़ा फैसला, अभ्यर्थियों को बसों में मिलेगी 50% की छूट। फिरोजाबाद में पुलिस परीक्षा भर्ती शुरू कर दी गई है, 6 केंद्रों पर 2,000 से ज्यादा अभ्यर्थी दे रहे हैं परीक्षा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की मांग की है रिजल्ट के बाद कॉपी दिखाए सरकार। शामली में कथित धर्मांतरण और संपत्ति विवाद मामला, चांदनी कुरेशी समेत कई गिरफ्तार, पुलिस जांच में जुटी है। सीतापुर में कथित धर्मांतरण मामले में 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, धार्मिक स्थान सभा के दौरान बरामद हुई है बाइबल, हिंदू शेर सेना की शिकायत पर पुलिस ने किया कार्रवाई। गाजियाबाद में जामा मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का नोटिस जारी कर दिया गया, ध्वस्तीकरण के पहले लोगों ने खुद हटाए हैं दुकानें। गाजियाबाद में अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई से पहले देर रात दुकानों को तोड़ने लगे हैं लोग। दिल्ली पुलिस प्रोफेसर हत्याकांड में शामिल आरोपियों का CCTV भी आ गया सामने, CCTV में लिफ्ट से 3 निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हत्याकांड के बाद लिफ्ट से नीचे उतर कर जाते हुए CCTV में कैद हैं, पश्चिम बंगाल से पति पत्नी और गिरफ्तार किया गया है, जबकि नाबालिग को हिरासत में ले लिया गया है। मालवीनगर होटल अग्निकांड मामले में इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई, अभी तक इस हादसे में कुल 22 लोग की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में जादवपुर में रेलवे स्टेशन के पास हॉकरों को हटाने में एक बड़े अभियान के दौरान बड़ा तनाव हो गया, बुलडोजर एक्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने और सुरक्षा बलों में झड़प हो गई।
भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज भी किया, जिसमें प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए। सीपीआईएम नेता सिजन भट्टाचार्य हिरासत में ले लिए गए। देशभर में मानसून की रफ्तार तेज हो गई है, कई राज्यों में भारी बारिश अलर्ट जारी कर दिया गया। अगले 3 से 4 दिनों के अंदर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में मानसून आने की संभावना है। केरलम के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया, प्रशासन ने कई लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बिहार झारखंड में भी आंधी और बारिश की संभावना है, उत्तराखंड में भी बारिश की आशंका है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान में गर्मी और लू जारी है, 11 जून के बाद मिल सकती है राहत। झांसी में तमंचा लहराते युवक का वीडियो हुआ वायरल, सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप। बिजनौर में कब से 3 महीने बाद निकाला गया शव, पत्नी की शिकायत पर पड़ी की गई है कार्रवाई। देवरिया में झाड़ फूंक के नाम पर महिला से दुष्कर्म, आरोपी ओझा गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्गापुर के निजी अस्पताल में बवाल हुआ है, मरीजों को डिस्चार्ज न करने के आरोप में तोड़फोड़ की गई है, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। नागपुर में खर्च के पैसे के लिए पोते ने दादी के घर पर डाली लाखों रुपए और सोने के गहनों की चोरी, आरोपी गिरफ्तार। बगा में पति से मिलने के लिए महिला मोबाइल टावर पर चढ़ गई, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने सुरक्षित उतारा। इंदौर में बदमाशों का उत्पात, कई वाहनों की तोड़फोड़ की है, पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में भी ले लिया है। पटना में 2 गुटों की गोलीबारी हुई, ताबड़तोड़ चली है गोलियां, एक की मौके पर मौत, 2 लोग घायल हुए। मधेपुरा में आवासीय स्कूल में 6 साल के छात्र की संदिग्ध मौत हो गई, शौचालय के पास पाइप से बंधा मिला शव, संचालक फरार। लखनऊ में महिला से छेड़छाड़, हत्या के प्रयास का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बारामती में नशे में धुत ट्रक ड्राइवर का खतरनाक स्टंट कैमरे में कैद हो गया, बेकाबू ट्रक पलटा, चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। टिहरी गढ़वाल में खाई में गिरी गाड़ी, एक की मौत हो गई है, बाल बाल बचाए ड्राइवर। अमृतसर में चोरों ने किसान के घर पर करोड़ों की चोरी की है, सोना और कैश लेकर फरार हो गए। गोंडा में मानसिक बीमारी से बीमार भाई ने भारी लट्ठे से मारकर बड़े भाई को उतारा मौत के घाट, घर से लगाई आग, भैंस को भी मारकर किया घायल। यमुनानगर में रंगदारी केस में बड़ा खुलासा हुआ, विदेशी नंबर में धमकियां, आरटीआई के जरिए कारोबारियों को दबाव बनाने के आरोप भी लगाए गए। गाजियाबाद में पहले पेट्रोल चोरी और करते थे संदिग्ध, कुछ घंटे घर के बाहर खड़ी

में पैसों के विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरनगर में बच्ची के साथ गाने पर दरोगा का रील बनाना पड़ा उसे महंगा। एसएसपी ने मांगा स्पष्टीकरण। हरदोई में औरंग किलिंग का मामला सामने आया। बेटी की पीट पीट कर हत्या का के संदर्भ में और आत्महत्या रूप देकर जलाया गया। पिता समेत चार लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में इलाके में आग से लगी है। फायर टीम की 8 लोगों को रेस्क्यू भी किया। सहारनपुर में चोरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। गोलीबारी में एक चोर घायल हुआ है। हापुड़ में मीट खाने से इनकार करने पर खूनी वार युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। गांव में तनाव के चलते पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बेतिया में रील बनाने के दौरान नहर में डूबे 2 युवक, दर्दनाक हादसे में मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में उफलियाज सेक्टर में दुकानों में लगी भीषण आग, कई दुकानें चपेट में आई हैं। जल्द पर्दे पर आएगी सलमान खान और नयनतारा की अनटाइटल मूवी। साउथ के मशहूर फिल्म मेकर और दिल राजू की जोड़ी कर रही है निर्देशन। डॉक्टर 2 की रिलीज से पहले ट्रेलर ने बनाया ग्लोबल चार्ट्स का दबदबा। US टॉप 10 में मारी एंट्री। राजा मौली की फिल्म वाराणसी में राम और कुंभकर्ण का 30 मिनट का युद्ध होगा फिल्म का प्लस पॉइंट। फिल्म में राइट्स ने खोला है राज। जिम सर्ब और नसुद्दीन शाह स्टारर वेब सीरीज मेन इन इंडिया टाइटन स्टोरी वे जितना दर्शकों को जीता है दर्शकों का दिल। OTT पर रिलीज हुई छाई वेब सीरीज पिरामिड स्कीम 7 एपिसोड्स की इस सीरीज में आते ही टॉप 10 में मचा अपना कब्जा। 3 जुलाई 2026 को होगी फिल्म बेबी डू डाई डू। फिल्म में हुमा कुरैशी, सिकंदर खेर और चंकी पांडे अहम भूमिका होंगे। फिल्म द इंडियन स्टोरी का टीजर हुआ जारी। 24 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में होगी रिलीज। 11 जून को रिलीज होगा वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर। 26 जून को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म ताल का सीक्वल बनाएंगे शुभम सुभाष कई। फिल्म में ऐश्वर्या अक्षय की जगह नए चेहरे आएंगे नजर। बॉक्स ऑफिस पर बेदी का तूफान आ गया है। दुनिया भर में कर रही है शानदार कमाई। 3 दिन में पार की है 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा। मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात, ईरान और इसराइल पर बड़ा हमला किया गया। पूरे देश में सायरन और एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। ईरानी हमलों के बाद इसराइल का करारा पलटवार। तेहरान, बेरूत और बगदाद पर एक साथ अटैक किए। ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी, इस्फहान में भी हमले किए गए। लगातार धमाकों से तेहरान में दहशत का माहौल है। ईरानी मीडिया का बड़ा दावा है कि युद्धपोत से भूमध्य सागर से मिसाइलें दागी गई हैं। मिसाइलें इराकी हवाई क्षेत्र से होकर अपने लक्ष्य तक पहुंची हैं। ट्रंप की रोक के बावजूद मिडिल ईस्ट में संघर्ष और भी भड़क गया। नेतन्याहू ने दिया है जवाबी सैन्य हमले का आदेश। मिडिल ईस्ट में हालात बेहद गंभीर है। इसराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए। तेल अवीव में एयर रेड सायरन पूरे शहर में हड़कंप है। इजरायली सेना ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। स्थानीय प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में लगातार सैन्य गतिविधियां तेज हो गई है। दोनों पक्षों में बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। IDF चीफ और वरिष्ठ कमांडर इसराइल एयर फोर्स के कमांडर सेंटर में ईरान पर हमले का नेतृत्व करते नजर आए। सेना पूरी तरीके से तैयार और हाई अलर्ट नजर आई। IDF सभी मोर्चों पर तैयार है। कहा हर मोर्चे पर ऑपरेशन जारी रखने की तैयारी है। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का बहुत शक्तिशाली भूकंप आया। सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। 4 की मौत, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। फिलीपींस में दिखा भूकंप का जोरदार असर। हाई स्कूल की इमारत भी ढही। छात्रों के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। डोमिनिकन रिपब्लिकन का बड़ा विमान हादसा हो गया है। इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश करके दौरान प्राइवेट जेट क्रैश हो गया। तकनीकी आपातकालीन स्थिति के बीच प्राइवेट जेट हुआ क्रैश। सुरक्षित लैंडिंग की कोशिश में नाकाम हुआ पायलट और को पायलट की मौत हो गई है।

0: उनकी गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस की टीमें भी गठित कर दी गई। हम आपको बता दें कि पटना में फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी को लेकर लगातार पुलिस उनकी तफ्तीश में उनकी खोज में लगी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण बने हुए हैं। शशि, देखिए पहले तो कहा जा रहा था कि वो अपनी अग्रिम जमानत के लिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब पिछले कई समय से वो फरार ही घोषित है और कहीं मिल नहीं रहे पुलिस को भी।
1: बिल्कुल देखिए, और पटना पुलिस ने और पटना पुलिस के कप्तान ने एक तरीके से इस बात की पुष्टि कर दी है कि फैजल खान जो खान सर के नाम से जाने जाते हैं वो फरार हो गए हैं। और देखिए, पुलिस ने जो FIR दर्ज करी थी उसके बाद ही रात के वक्त दबिश दी गई थी खान सर के कोचिंग पर, फैजल खान के कोचिंग सेंटर पे, KGS पे, लेकिन बाद में वो वहां पाए नहीं गए। और अब पटना पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, हालांकि ऑन कैमरा कुछ पटना पुलिस नहीं कह रही है, लेकिन जो ऑफ कैमरा बातचीत हुई है उसमें वो इस बात को कबूल कर रहे हैं कि फैजल खान फरार हो गया है। हालांकि फैजल खान की तरफ से आज पटना के सिविल कोर्ट में जो अग्रिम जमानत की याचिका है वो भी लगा दी गई है। 12:30 बजे एक समय रखा गया था कि उस पर आज सुनवाई होगी या कल सुनवाई होगी। आज कोर्ट जो है वो 1:30 बजे तक सुनवाई करनी है, अगर आज संभव हो तो आज ही, वरना कल इस मामले पर सुनवाई होगी। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो पूरा प्रकरण हुआ था मारपीट का और जो पानी की घटना से जुड़ा हुआ कदम कोर्ट थाने में केस रजिस्टर्ड हुआ, उस मामले की केस डायरी जो है वो पटना पुलिस ने कोर्ट में जमा की है। तो पटना पुलिस के लिए किरकिरी की भी स्थिति है, क्योंकि जो फैजल खान है वो FIR दर्ज होने के बाद लगातार मौजूद रहा और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और पटना पुलिस भले ही खुलकर ना कबूल करे, लेकिन ऑफ कैमरा इस बात को कबूल कर रही है कि
2: फैजल खान फरार हो चुका है, वो पटना में नहीं।
0: बिल्कुल शशि, एक और बात, क्योंकि देखिए कहा जा रहा था कि ना सिर्फ उनके खिलाफ आर्म्स रखने का बल्कि उनकी जो संस्थान है उसके खिलाफ भी कई अनियमितताएं पाई गई हैं, वो भी मामले हैं लगातार जो खान सर की दिक्कतें बढ़ा सकते हैं।
1: उस सिक्योरिटी एजेंसी से भी पटना पुलिस जानकारी ले रही है। हालांकि जो हथियार इस्तेमाल किए गए फायरिंग में किए गए इस्तेमाल लाइसेंसी है, इस बात की पुष्टि खुद पटना पुलिस कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह का बयान होली आज चाहिए कि
0: बिल्कुल देखिए शशि, लगातार हमारे सहयोगी आप हमारे साथ ये जानकारी साझा करते रहे। शशि, आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में TMC के सांसदों की एक अहम बैठक हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में TMC सांसदों की एक अहम बैठक हुई है। पार्टी में हलचल के बीच TMC सांसदों की एक बड़ी बैठक दिल्ली में की गई है। देखिए, आपको बता दें कि कहा यह जा रहा था कि कई सांसद जो हैं वो पार्टी नेतृत्व से, खासतौर पर ममता बनर्जी से नाराज हैं और उनके नेतृत्व से भी नाराज हैं। इसी बीच पार्टी में हलचल के बीच TMC सांसदों की एक बड़ी बैठक दिल्ली में की गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी तपस्या गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। तपस, क्या हलचल बताई जा रही है, आखिरकार ये मीटिंग क्यों की गई है, क्या इस मीटिंग के अंदर कौन कौन से नेता हैं जो इस मीटिंग में शामिल है?
3: देखिए, इस मीटिंग में फिलहाल जो तस्वीर में दिख रहा है कि जगदीश बासोनिया, प्रसून बनर्जी, साथ में किशन शेखर रॉय, शर्मिला सरकार, अरूप चक्रवर्ती, ये 5 लोग तस्वीर में दिख रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारे सांसद जो है आज दिल्ली में मीटिंग किए हैं और जो सूत्रों के मुताबिक ये खबरें आई है कि आगे जाके इनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि इनमें से ज्यादातर जो सांसद हैं वो पार्टी के अंदरूनी काम से काफी ज्यादा नाराज रहे हैं। शिकंदी शेखर रॉय ने आज बकायदा इस्तीफा दिया है राज्यसभा से, तृणमूल कांग्रेस के सांसद के हिसाब से तरीके से। और दूसरे छोर पर अगर जगदीप बसुनिया की बात की जाए, अरूप चक्रवर्ती, ये भी कुछ महीनों से तृणमूल कांग्रेस के जो आला नेतृत्व है उससे काफी ज्यादा दूरी बना रहे थे। अब ये देखना है कि क्या ये रिजर्व कैंप में जाएंगे या फिर जाके इस्तीफा देंगे, इस बारे में कोई पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। काफी सीक्रेटली ये मीटिंग जो है होल्ड ऑन किया गया था, अब मीटिंग के बाद क्या हुआ इस बारे में कोई भी खुलासा अभी तक इन सांसदों की ओर से नहीं किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम सांसदों का दिल्ली में अलग से बैठना, वो भी ऐसे वक्त पे जब ममता बनर्जी पार्टी की सुप्रीमो खुद दिल्ली में मौजूद है, ना उनके साथ बैठ के या दूसरे छोर पर अपने ही कुछ साथियों को लेकर सुखेंदु शेखर राय बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं बयान करता है कि तृणमूल का आने वाले समय पे जो जो रिबेल एंटिटीज है उनके तरफ से कुछ सोच विचार किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो चित्र हमें देखने को मिला, क्या वही चित्र अब दोहराया जाएगा पार्लियामेंट में, इसको लेकर थोड़ा और इंतजार कर रहा है। लेकिन जो भी फैसला आने वाला है वो बहुत जल्दी आने वाला है और उसी को लेकर आज एक स्ट्रैटेजी मीटिंग बताया जा रहा है इन रिबेल जो MLA MPs हैं उनके बीच ये किया गया दिल्ली में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तपस्यन गुप्ता। हमारे सहयोगी देखिए बता रहे थे कि क्यों ये मीटिंग इतनी ज्यादा सस्पिशियस, इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी भी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान और उसी बीच ये मीटिंग की गई, लेकिन बिना ममता बनर्जी के। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: Hey guys, Lady Luck here. Are you going on any road trips this summer? I know I'm going to be going on a bunch of road trips. And being that I'm going to be passenger princess, I love playing on SpinQuest.com. SpinQuest has all of my favorite slot games, live blackjack, live craps. Head on over to SpinQuest right now and get yourself a $30 coin pack for just $10.
6: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
7: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
8: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
10: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
12: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

नॉनस्टॉप हिंडर के बाद अब बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे और आपको बताते हैं एक बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी से बचने के लिए पटना से फरार हो गए। फैजल खान को पकड़ने के लिए पुलिस की दबिश भी लगातार जारी है। एसआईटी पटना के आसपास के जिलों में लगातार छापेमारी की जा रही है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: उधर
3: उधर
2: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: इन एसोसिएशन विद
6: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: हिंट, बड़े आराम से
6: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
5: विमल बोलो जुबा केसरी।
7: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
8: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
9: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
10: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूँ जहाँ पर ये आग लगी।
11: मैं आपको टॉप एंगल से एक तस्वीर दिखाता हूँ और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है।
12: यहाँ पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था।
13: ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है।
11: 20 लोगों की जान चली गई। और देखिए जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके, तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहाँ से नहीं दिखाएंगे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान से। ईरान ने इसराइल हमले से भड़का है तेहरान, और ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका की शह पर ही इसराइल ने पलटवार किया है, और भूमध्य सागर के किसी युद्धपोत से इसराइल ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ये मिसाइलें तेहरान पर दागी गई हैं। इसके अलावा तेहरान के अलावा इस्फहान, तबरीज के इलाकों में भी इसराइल ने ये अटैक किए हैं। दरअसल पहले ईरान ने कल रात इसराइल पर बड़े हमले किए थे, जिसके बाद इसराइल ने रिटेलिएट करते उसकी जवाबी कार्रवाई करते आज सुबह एक बार फिर से ईरान के कई शहरों पर तेहरान के अलावा बड़े अटैक किए, और अब तेहरान कह रहा है कि अमेरिका की शह पर ही ये अटैक किए गए। एक बार फिर से वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का इन एसोसिएट एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: आगे आगे उधर उधर करेक्ट करेक्ट
1: मिल गया।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: In association with
4: Samakul Cooler, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। Samakul Cooler, लाइफ बनाए वंडरफुल।
3: Hint, बड़े आराम से
4: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: विमल, बोलो जुबां केसरी।
5: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
6: देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसका सीधा और स्पष्ट ऐलान है कि प्रदेश में ना तो एक भी अवैध मदरसा चलेगा और ना ही एक भी गैर कानूनी मस्जिद रहेगी। कानून के दायरे में अतिक्रमण वाली सभी धार्मिक इमारतों पर प्रशासन का हथौड़ा चलेगा, जिसकी ताजा बानगी दिख रही है संबल की मुस्तफा कादरी मस्जिद पर, जहाँ लगातार दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। ये दो तस्वीरें दो राज्यों में बीजेपी सरकार के तेवर को बयान कर रही है। एक ओर जहां बंगाल में मदरसों पर शुभेंदु की सख्त नजर पड़ चुकी है, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पहले से ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर और हथौड़ा चला रही है। हालांकि सियासत में आरोप ये भी लग रहा है कि पहले यूपी और अब बंगाल में एक खास वर्ग विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है। पहले नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पर जो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों और अवैध धार्मिक स्थलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सख्त हैं। जून 2026 में ही गाजियाबाद के कनावनी और लोनी में दो अवैध मदरसे सील किए गए। मोदी नगर में मस्जिद के साथ बनी 14 दुकानों को भी ध्वस्त करने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं बागपत में अवैध मदरसे और मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है, साथ ही संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मुस्तफा कादरी मस्जिद पर बुलडोजर तो चल ही रहा है। हम आपको बता दें कि फरवरी 2026 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की विस्तार से जांच कराने का फैसला किया था। इस जांच का मुख्य उद्देश्य मदरसों में आने वाली विदेशी फंडिंग के स्रोतों का पता लगाना था। सीएम योगी ने भी बार बार चेतावनी दी है कि यूपी में किसी भी तरीके के धार्मिक अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
7: जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई, आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं।
8: पर ये तो बन चुके हैं, अब
7: ये बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह एक खुदा को स्वीकार्य नहीं।
6: उत्तर प्रदेश में सरकार की सख्ती सिर्फ अवैध मदरसों तक ही सीमित नहीं है, कुछ ऐसे फैसले और एक्शन भी सामने आ चुके हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी है।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

में पार्टी सांसदों की बैठक, राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु भी शामिल हुए। बंगाल में ममता को डबल झटका, जहांगीर खान भी गिरफ्तार। दिल्ली में चल रही इंडिया ब्लॉक की बैठक, एसआईआर और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर हो रही है मंथन। समाजवादी सूत्रों का दावा कि यूपी की आधी सीटों पर उम्मीदवार फाइनल।

जयपुर की नूरानी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन, 5 सेकंड में जमींदोज हुई इमारत, पूरा इलाका छावनी में तब्दील, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती, रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट बंद। ईरान इसराइल में जंग फिर से शुरू, तेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्ला की ओर से भी किए गए हमले, पूरे देश में अलर्ट, स्कूल बंद, IDF ने इस्फहान पर किए जवाबी हमले।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूपी में एक बार फिर से लव जिहाद का एक मामला सामने आया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाकर ये साजिश रची है। कई साल तक लड़के को बरगलाया गया, उसका ब्रेन वॉश किया गया। मुस्लिम परिवार लगातार उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाता रहा, और जब लड़के ने धर्म परिवर्तन किया तो उसका निकाह भी कर दिया गया। हालांकि लड़के के घर वाले कह रहे हैं कि वो निकाह फर्जी था, क्योंकि आरोपी मुस्लिम परिवार की नजर करोड़ों रुपए की संपत्ति पर थी। अब धर्मांतरण के शिकार आयुष ने आज तक से बताया कि कैसे वो पाकिस्तानी मौलानाओं की तकरीर से प्रभावित हुआ था। और शामली में हुई इस वारदात को लेकर पुलिस एक्शन में है। जिस युवक आयुष मलिक का धर्मांतरण किया गया था, वो फिर उसका कथित तौर पर निकाह कराया गया और उसे लेकर तफ्तीश भी तेज हो गई है।
1: कभी लव जिहाद, जिसमें हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया। कभी जिम जिहाद, जिसमें जिम के बहाने धर्मांतरण वाली साजिश रची गई। तो कभी दोस्ती जिहाद, गाजियाबाद में 28 मई को जो हुआ उसे यही नाम दिया गया। यूपी में ऐसी तमाम संगीन वारदातों के बीच अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर और देखकर आपको यकीन नहीं होगा। लव जिहाद की नई साजिश सामने आई है। इस बार एक मुस्लिम लड़की को आगे कर साजिश रची गई है। यूपी के शामली में इस कथित धर्मांतरण और संपत्ति हड़पने की साजिश से हड़कंप मचा है। एक ही चेहरे के दो रूप, इस युवक का नाम है आयुष मलिक। यह यूपी के शामली का रहने वाला है। आयुष जन्म से हिंदू है। आयुष का परिवार भी दिन रात अपने धर्म और आस्था के प्रति गंभीर रहने वाला है, लेकिन आयुष ने एक दिन अचानक भेष बदल लिया। अब आयुष की नई पहचान मोहम्मद अली है, इसका नाम बदला है और अब ये मस्जिद के दर पर जाकर इबादत में जुटा है।
2: आयुष मलिक नाम है, डॉक्यूमेंट्स में वही नाम है, मोहम्मद अली जो मैंने नाम अपनाया।
1: अच्छा। आखिर आयुष का मिजाज और अंदाज कैसे बदल गया, कैसे उसने हिंदू धर्म से तौबा कर अपना मजहबी चोला बदल लिया, वो किसके साजिश का शिकार हो गया? आयुष के घर वालों ने पुलिस में तहरीर देकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आयुष करोड़पति पिता का इकलौता बेटा है। जानकारी के मुताबिक शामली में उसकी 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। मेडिसिन का बड़ा कारोबार है, जमीन जायदाद भी काफी ज्यादा है। दर्ज FIR के मुताबिक उसी करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे के लिए मजहब के जाल में आयुष को साजिशन फंसाया गया। आयुष के पिता देवराज मलिक ने बताया कि उनकी करोड़ों की संपत्ति पर शामली के ही एक मुस्लिम परिवार की नजर थी। उन लोगों ने अपनी बेटी के जरिए आयुष को फंसाया, फिर उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। लंबे समय तक धोखे के बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और फिर आरोपी मुस्लिम परिवार ने अपनी बेटी चांदनी का निकाह आयुष उर्फ मोहम्मद अली से कर दिया।
3: बेटे को कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, जो मुल्ला मौलवी, वो अपने कॉन्फिडेंस में लेकर कुछ गलत सलत डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं।
1: जानकारी के मुताबिक चांदनी कुरैशी ने आयुष के साथ 2023 में निकाह किया। शामली से दिल्ली जाकर किसी मस्जिद में निकाह की रस्म पूरी की।
4: उनकी बेटी, उनकी कई बेटियां हैं, उसमें एक चांदनी नाम की उनकी बेटी है, काफी वो वयस्क है, और उसके माध्यम से इसको फंसाया गया इसमें। और तथा कथित उसका दिल्ली में कहीं मस्जिद में निकाह कराई गई और अब वो पूर्णतः लगभग कन्वर्ट सा हो गया है। उससे बातचीत हम लोगों की भी लड़के की हुई, लेकिन माँ बाप कहना यह कि साहब चूंकि मेरी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, ता ये जो इस्लाम नाम का आदमी है, इसके सदार या ये सभी लोग दंगाई रहे पहले उस दंगों में, 13-14 के दंगों में, तो इन लोगों ने इसको फंसा लिया हमारे बेटे को। इनकी निगाह हमारी प्रॉपर्टी पर है और अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मुझे मुकदमा लिखिए इसमें, इसमें कार्रवाई भी कराइए।
0: आपको बता दें कि शामली में धर्मांतरण केस में इस एक्शन को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। करोड़ों की संपत्ति हड़पने की आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसी के लिए धर्मांतरण कराया गया और यह आरोप परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है। और आयुष मलिक, लड़के के माता पिता, लगातार चांदनी के परिवार वालों पर, चांदनी पर आरोप लगा रहे हैं कि चांदनी के भाई और अन्य आरोपियों की तलाश भी इसलिए पुलिस लगातार तेज कर चुकी है। आज भी आयुष मलिक से मिली थी पुलिस और लगातार इस शामली के धर्मांतरण मामले पर तार कहां कहां जुड़े हुए, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त है, इसकी जांच भी पुलिस कर रही है। और देखिए कैसे फंसाया गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आयुष के मेडिकल स्टोर पर काम करती थी और इसके बाद बताया गया कि मोहम्मद की करोड़ों की संपत्ति की जानकारी मिली। 2018 में आयुष मलिक के पैर में फ्रैक्चर हुआ था और इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में ही चांदनी कुरैशी आयुष से पहली बार मिली थी। देखिए, पैर में फ्रैक्चर था, अस्पताल में भर्ती कराया, तब से आयुष चांदनी एक दूसरे को जानने लगे और उसके बाद से फिजियोथेरेपी के बहाने आयुष के करीब आ गई चांदनी और फिर चांदनी ने आयुष को अपने प्रेम जाल में फंसाया। आरोप लगाया जा रहा है परिवार की तरफ से।
1: धर्मांतरण और निकाह के बाद से साजिशन आयुष को घर वालों से दूर करने की कोशिश की गई है। आरोपों के मुताबिक चांदनी और आयुष की पहली मुलाकात करीब 8 साल पहले हुई थी। तब से ही चांदनी के परिवार ने आयुष को फंसाना शुरू कर दिया था। करोड़पति देवराज मलिक ने अपने इकलौते बेटे को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आयुष ने बी फार्मा किया और पिता के कारोबार में हाथ बटाने लगा, लेकिन अब वो मजहबी साजिश का शिकार हो चुका है।
4: इसने बी फार्मा कर रखा था, उसी के आधार पे अपनी ये बहुत बड़ी शोरूम चला रहा था। उसने उसी के माध्यम से इसको इसने संपर्क किया और बाद में जिम में महिला रही है, जिम के माध्यम से टच इसने किया। इसकी सिस्टर ने, इसका एक भाई जो इसके नौकर था आयुष का, इन लोगों ने प्रलोभन देकर के इनको और इसको इसके चक्कर में डाला और बाद में निकाह कराने के लिए जो है इन लोगों ने इसको कन्वर्ट करा दिया। अभी वर्तमान में लंबी लंबी दाढ़ी रखता है और इस्लामिक टोपी लगाता है, कुर्ता पजामे पहनता है ये, और अपने फादर से कम ही बात करता है।
0: और इस मामले में खुलासे के बाद आयुष मलिक से आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने खास बातचीत किया। इस दौरान आयुष ने बताया कि कैसे वो इस्लाम से प्रभावित हुआ। उसने बताया कि वो पाकिस्तान के मौलाना का वीडियो ही देखता था और लगातार उसी के बाद वो, आप कह सकते हैं कि इसी दौरान वो इससे प्रभावित हुआ इस्लाम से, और उसके बाद उसने इस लड़की से शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन भी किया।
5: तो आपका मुस्लिम धर्म का जो परिवर्तन है वो कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में? कहाँ?
2: धर्म परिवर्तन कहीं पे नहीं होता। धर्म परिवर्तन तो अंदर से होकर कभी भी करवा कर सको आप। इसमें कोई मौलवी प्रोफेशन काम नहीं होता। अच्छा। कि कोई मौलवी आपका निकाह पढ़ाएगा, मौलवी किसी का जनाजा पढ़ाएगा या मौलवी आपका धर्म परिवर्तन कराएगा। अगर आप खुद से सीखने के काबिल है तो आप खुद से सीखो, खुद से सीखना चाहिए।
5: अच्छा, और किसका वीडियो, किस पाकिस्तानी मौलाना का वीडियो देखते थे? मतलब
2: देखता था ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी का देखता था। डॉक्टर इशरार अहमद का ज्यादा देखता था, वो पॉइंट पकड़ा जा रहा।
5: अच्छा, डॉक्टर इशरार अहमद पाकिस्तानी मौलाना है जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो
2: धर्म परिवर्तन क्यों कराते
5: हैं? अच्छा,
2: धर्म की बात बताते हैं। अब आप किसी की बात सुनकर उससे प्रभावित हो गए और आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आप कह सकोगे?
5: तो पाकिस्तानी मौलाना इशरार अहमद से आप प्रभावित हैं?
2: प्रभावित सभी से हूँ, प्रभावित मैं इस्लाम से हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ।
0: आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने आयुष मलिक से पूछा कि आखिर धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण कब हुआ, इस पर उसने क्या जवाब दिया, ये आपको सुनाते हैं।
5: तो शुरुआत कहां से हुई? एकदम शुरुआत 17 साल का आयुष मलिक, 18 साल का आयुष मलिक, 13 साल का आयुष मलिक, कैसे शुरुआत हुई आपकी?
2: जैसे बीपी बढ़ा, हाथ कंपे, उन्होंने कहा कि कुल अल्लाह पढ़ो,
5: दिखाओ
2: बीपी बढ़ा, थोड़ा सा बीपी बढ़ता है तो हाथ कांपते हैं, ऐसा कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, पर बीपी बढ़ा तो हाथ कांपते हैं। तो उन्होंने कहा कुल अल्लाह पढ़ो, आपको ताकत आएगी।
5: किसने बोला ये कुल्लू? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आपको बीपी बढ़ा और हाथ कांपने लगे?
2: यूट्यूब पे कोई था, वो उसने बताया कि जैसे ये पढ़ो तो आप कुछ पढ़ोगे तो आपके अंदर ताकत आएगी। तो मैंने पढ़ा धीरे धीरे करके, सीखा जाना, ये नहीं है कि पढ़ा मेरी ताकत आ गई एकदम और ये हाथ कांपने बंद हो गए, वो तो धीरे धीरे करके सीख रहा था।
5: कौन सा यूट्यूब था जिसको देखा और आपके हाथ कांपने बंद हो गए?
2: ऐसा कुछ नहीं है जी, हाथ तो अब भी कांप रहे, देखो हाथ कांप रहे, थोड़ा बंद हो गया। मैं तो आपको रैंडमली एक वैसे मैसेज बता रहा।
5: और क्या क्या यूट्यूब में देखा आपने?
2: यूट्यूब में और क्या क्या देखा? यूट्यूब में बहुत सारी चीजें देखी, ये सब पूरी जिंदगी वीडियो एक मिनट में कैसे बताऊंगा
5: सिलसिलेवार, क्योंकि देश जानना चाहता, लोग जानना चाहते कि एक आयुष मलिक कैसे मोहम्मद अली बन जाता है।
2: तो बहुत सारे सोर्स थे, बहुत सारी दीन की बातें थी, दीन की बातें सबके सामने है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ो, खुले दिल से पढ़ लो, कोई भी पढ़ सके, किसी को अच्छी लगेगी किसी को बुरी लगेगी, क्या पता कोई 10 में से एक चीज अपना भी ले। मैंने 10 में से 8 चीज 9 चीज 10 चीज अपनाई।
5: तो वो सब यूट्यूब में मोस्टली देखा?
2: यूट्यूब में है, सारी अवेलेबल है।
5: सजेस्ट किसने किया था?
2: सजेस्ट की बात नहीं है, आप कुछ भी आपके मन में सवाल आएगा आप गूगल करते हैं, यूट्यूब करते हैं, गूगल करोगे यूट्यूब के लिंक आते हैं, इसमें सजेशन की बात नहीं है कुछ भी।
0: आयुष मलिक को आप सुन रहे थे। आयुष के परिजनों ने भी FIR दर्ज कराई है। गिरफ्तार चांदनी और उसके परिवार पर करोड़ों की संपत्ति हड़पने की साजिश के आरोप भी लगाए। इस पर आज तक के साथ खास बातचीत में आयुष ने कहा कि चांदनी के परिवार वालों को टारगेट किया जा रहा है।
5: मम्मी पापा से आपकी बातचीत हो रही है?
2: मम्मी पापा से बातचीत हो रही, रात में सोया, सुबह यहाँ था।
5: आपको पता है कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पे नजर थी किसी की?
2: किसकी?
5: किसी की थी।
2: किसकी थी सर?
5: चांदनी कुरैशी और उसके परिवार की।
2: ये आप टारगेट कर रहे हैं सर, ये आप उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो मेरी है इस पे, मैंने खुद भी कहा था आपको जो करना पेरेंट्स को अपने आप वो कर लो इस प्रॉपर्टी का, और ना उनके साथ कोई ऐसा मसला है, उन्होंने भी साफ मना कर रखा।
5: और किस किस मौलाना की आपने वीडियो देखी इशरार अहमद के अलावा?
2: ऑल ऑफ द वर्ल्ड के सभी मोटिवेशनल स्पीकर, रीजनल।
5: नाम बताइए दो चार।
2: डॉक्टर इशरार अहमद के मैं ज्यादा देखता था, ऐसा तो रैंडम ही नाम नहीं याद रहते। आप आओगे तो सोर्स में आता रहेगा, एल्गोरिथम इस तरह का वो तो आता रहेगा।
0: और धर्मांतरण के इस मामले में शामली पुलिस ने कहा है कि उसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया जा चुका है। साथ ही पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी भी गठित कर दी है, यानी पुलिस तफ्तीश कर रही है और ये मान रही है कि देखिए आयुष का ब्रेन वॉश पूरी तरीके से किया जा चुका है और इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। इसके लिए एक स्पेशल एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है।
5: हमारे साथ एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह सर हैं। सर, इसमें पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है, कैसे पाकिस्तान का कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ?
6: एक्चुअल में आपने पूरे इसके कंटेंट को, तथ्य को देखा, इस पूरे जो ग्रुप को है, इसमें जो कंप्लेंट हमारे यहां हुई दराज मलिक साहब के द्वारा, उसमें यही कहा गया कि साहब हमारा बेटा कन्वर्ट हो गया है किसी के प्रभाव में और एक लड़की है उससे उसे समोता निकाह कर लिया है। वो उसका क्लेम है उसकी लड़की का, मेरे पास निकाहनामा नहीं, वो फर्जी भी हो सकता है। और उसके फादर इस्लाम जो कुरैसी है हमारे यहाँ ठेले पे जूस बेचते शामली में, और ये लोग मिल करके पिछले सप्ताह हमसे इन लोगों ने क्लेम किया कि साहब चूंकि शादी निकाह इसकी हो गई है, संपत्ति में मेरा भी हिस्सा है, आप ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी बेटी के नाम कर दीजिए आप, जिससे कि बहू और आपके हमारी बेटी, आपका बेटा लोग ठीक से रहे और आप भी कन्वर्ट हो जाए कि हमारे धर्म में आ जाइए आप लोग। तब इनकी इसमें निगाह खुली, इन्होंने कंप्लेंट किया एक धार्मिक गुरु से, बाद में मेरे पास कंप्लेंट आई, मुकदमा लिखा मैंने, और जानकारी हुई कि जो आयुष मलिक है वो बहुत ही होनहार बच्चा था इनका, बहुत ही अग्रकारी बच्चा था और उसने शामली के बहुत अच्छे विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है। लेकिन चांदनी जो कुरैसी है, चूंकि आपको मालूम है पहले वो जिम ट्रेनर रही है, अभी भी शायद जिम में कहीं जाती होगी वो, तो उसके प्रभाव में आया, ये जिम में जाता रहता था लड़का, ये उसके प्रभाव में आया और बाद में उसने पाकिस्तान के एक धर्मगुरु हैं डॉक्टर इसरार, उनका आपने देखा होगा बहुत ही वीडियो चलता रहता है और काफी उनका काम ही है दावत देना कि अन्य धर्म के लोग इस्लाम में दीक्षित हो जाए, हमारे यहाँ कन्वर्ट हो जाए, और उसी प्रभाव में आया। मेरे ख्याल से उनसे टच में भी है, ये यूट्यूब तो उनका आता ही रहता है। वो
0: एसपी शामली को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि क्या कानूनी कार्रवाई, क्या पुलिस कार्रवाई इस पर की जा रही है। वहीं आयुष के पिता से आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने बातचीत की है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं।
5: चांदनी कुरैशी के बारे में आपको कब पता चला?
3: मुझे ये तो कई साल से पता चल रहा था कि ये टेलीफोनिक वार्ता बात करता है सिर्फ, बस यही तक सीमित थी बात। लेकिन इस बात का मुझे जनवरी के आखिरी महीने में, आखिरी सप्ताह में, और मेरे सामने एक दाढ़ी जब रखनी शुरू कर दी इसने, और जब मेरे पास पैसों की भी मांग आनी पड़ी और धर्मांतरण का भी दबाव इधर उधर से मेरे कानों में आना शुरू हुआ, तो मैं थोड़ा सा इस पे संवेदनशील मुद्दा समझते अपने बच्चे से बात की, लेकिन वो बात प्यार से की, बात को सुलझाने की स्थिति में मानसिक रूप से उसका इतना उसे वो कर दिया गा के वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। फिर भी मैं उसे बीच बीच में समय अंतराल, कुछ अंतराल पर बात करता रहा, बात करने से समाधान नहीं निकला। अब जी महाराज जी की जो यशवीर महाराज जी की ये वीडियो आई, तो उस दौरान मैं खुद ही इस बात पे व्यथित चला गया था कि इस मुद्दे को मैं कैसे सॉर्ट आउट करूं।
0: चले वक्त है छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed.
10: Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
11: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
12: In association with
13: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
14: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
15: Acajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

मध्य पूर्व में दो महीनों की शांति एक बार फिर धमाकों के शोर में भंग हो गई। एक बार फिर ईरान इजराइल में बारूदी जंग शुरू हो गई। दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइलें बरसानी शुरू कर दी। ड्रोन से हमला हो रहा है, धमाकों का शोर शहर शहर गूंज रहा है। यूं तो दोनों देशों के बीच तनाव कुछ दिन से बढ़ रहा था। बीते कुछ दिनों से इस बात के संकेत मिल रहे थे कि जंग कभी भी भड़क सकती है, क्योंकि जंगी माहौल में लगातार कुछ ऐसा हो रहा था जो ईरान के गुस्से को धधका रहा था। एक दिन पहले ही हॉर्मुज रूट को लेकर अमेरिका ईरान आमने सामने आए। दरअसल ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज के पास चेतावनी के तौर पर फायरिंग की। दावा है कि अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की तैनाती में कुछ हरकत के जवाब में ईरान की ओर से गोलियां चलाई गईं। दूसरी तरफ एक अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि ईरान ने हॉर्मुज की ओर कई ड्रोन दागे जिनको तबाह कर दिया गया। दोनों ओर से हुई कार्रवाई ने एक बार फिर समुद्री मोर्चे पर दोनों देशों के बीच बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। इससे पहले ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता रहा। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। हम आपको बता दें कि बहरीन में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। अपने सहयोगी देशों पर ईरान के हमले से अमेरिका बौखला गया। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोला। ईरान के सर्विलांस रेडार सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया। ईरान के रेडार सेंटर पर हमले का वीडियो भी अमेरिका ने जारी किया। अमेरिका का कहना है कि पहले ईरान ने हमला किया था, जिसके जवाब में उसके रेडार सर्विलांस टावर को उड़ा दिया गया। अमेरिकी सेना ने समुद्री हमलों से बचाव के लिए गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित ईरानी तटीय निगरानी रडार को ध्वस्त किया। हवा बोला, इस हमले की तपिश अभी खत्म नहीं हुई थी कि अब ईरान इजराइल आमने सामने आ रहे हैं। युद्ध के सायरन का शोर से फिर दहशत हो रही है। आज तक ब्यूरो।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

0: टीएमसी में उठापटक के बीच दिल्ली में पार्टी सांसदों की बैठक, राज्यसभा में इस्तीफा देने पर सुखेंदु भी शामिल, बंगाल में ममता को डबल झटका, जहांगीर खान भी गिरफ्तार। दिल्ली में चल रही इंडिया ब्लॉक की बैठक, एसआईआर और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर हो रही है मंथन, समाजवादी पार्टी सूत्रों का दावा, यूपी की आधी सीटों पर उम्मीदवार फाइनल। गिरफ्तारी के डर से फरार हुए फैजल खान, लगातार दबिश दे रही है एसआईटी की टीमें, पुलिस ने कोर्ट में जमा की डायरी, पटना एसएसपी ने दी जानकारी। जयपुर की नूरानी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन, 5 सेकंड में जमींदोज हुई इमारत, पूरा इलाका छावनी में तब्दील, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती, रात 12 बजे तक के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद। ईरान इजराइल जंग फिर से शुरू, तेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्ला की ओर से भी किए गए हमले, पूरे देश में अलर्ट, स्कूल बंद कर दिए गए, आईडीएफ ने इश्फहान पर की जवाबी कार्रवाई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद भारत।
0: नमस्कार, 2 बजे की इस खास पेशकश न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज रूम लाइव जिसमें हम आपको दोपहर तक की तमाम बड़ी खबरों का जिक्र करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। 3 बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। सबसे पहली खबर होगी, टीएमसी में ही एक नया गुट पैदा हो गया, आखिरकार कौन है उस नए गुट में, कौन कौन से नेता उसमें शामिल हो रहे हैं, ये आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर जो हम आपको बताएंगे, वो बताएंगे कि आखिरकार 2027 की तैयारियों को लेकर इंडिया गठबंधन में क्या मंथन चल रहा है, क्या तैयारियां की जा रही है, क्या विचार किया जा रहा है, क्या नए मुद्दे हैं, ये भी आपको बताएंगे। फिर तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि राम मंदिर ट्रस्ट में खपले की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, इसको लेकर क्या है सच्चाई, क्योंकि अखिलेश यादव भी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उसके बाद 2:30 बजे आपको दिखाएंगे महायुद्ध से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें और बताएंगे कि आखिरकार एक बार फिर से क्यों ईरान और इसराइल के बीच एक नई जंग की शुरुआत हो सकती है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं सबसे बड़ी खबर जो आ रही है दिल्ली से, जहां पर टीएमसी नेता, या फिर आप कह सकते हैं कि टीएमसी की बड़ी नेता ममता बनर्जी खुद दिल्ली में मौजूद है, लेकिन इसी बीच टीएमसी के सांसदों द्वारा एक बड़ी बैठक बुलाई गई। आपको बताते हैं कि दिल्ली में टीएमसी के 5 सांसदों की एक बैठक बुलाई गई और कहा जा रहा है कि इस बैठक में ममता बनर्जी ही मौजूद नहीं थी और ममता बनर्जी इस समय दिल्ली में मौजूद है। उसी बीच ये बैठक भी बुलाई गई जिसमें खुद शुकेंद्र शेखर रॉय भी शामिल थे। आपको बता दें कि लगातार एक बार फिर से कहा जा रहा है कि पार्टी में एक और धड़ा है जो लगातार टूटने की कोशिश है, या फिर वो अलग हो सकता है, और इस बार पार्टी के वो राज्यसभा सांसद हैं जो लगातार ममता बनर्जी से नाराज है। देखिए आपको इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे कि 14 सांसद टीएमसी के भूपेंद्र यादव से मिलने गए हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने गए हैं। आपको बता दें कि आज ही सुखेंद्र रॉय ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद से कहा जा रहा था कि पार्टी के कई बड़े नेता, कई बड़े सांसद टूट सकते हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर टीएमसी के सांसद उनसे मिलने गए। आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव के घर पर 14 टीएमसी के सांसद मिलने गए हैं। इन मुलाकातों का आप कह सकते हैं क्या मायने निकलते हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक बड़ा अपडेट दे दें, ये तमाम घटनाक्रम तब हो रहे हैं जब खुद ममता बनर्जी इस समय दिल्ली में मौजूद है और उन्हीं के पार्टी के सांसद 14 सांसद भूपेंद्र यादव से मिलने उनके घर पहुंचे हैं।

0: हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, देखिए तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे भूपेंद्र यादव से मिलने के लिए 14 सांसद की पहुंचे हैं भूपेंद्र यादव से मिलने के लिए, और वो तस्वीरें भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस समय कौन कौन से सांसद हैं जो इन्वॉल्व हैं या फिर जो इसमें शामिल है?
1: जी देखिए, इसमें जितने सांसद हैं 14 में से तकरीबन 6 लोगों की पहचान हो पाई है, जो कि तस्वीरों में जो साफ नजर आ रहा है। इनमें से जो इम्पोर्टेंट नाम है सुखेंदु शेखर राय, जो विधानसभा राज्यसभा एमपी के पद से इस्तीफा देने के बाद भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे। इसके अलावा साथ में जगदीश बासुनिया है कूचबिहार से, प्रसून बैनर्जी हावड़ा से हैं, शर्मिला सरकार है बर्धमान से, अरूप चक्रवर्ती हैं और कालीपदो सोरेन है झारग्राम से। ये तमाम जो नेता माने जाते हैं लोकसभा के नेता हैं, और इनमें से कई नेताओं ने पिछले कुछ महीनों से तृणमूल कांग्रेस से दूरी बना ली थी और उनमें खासा नाराजगी भी थी। सुखेंदु शेखर रॉय ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि पार्टी की जो स्थिति है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप आ रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है लगातार, और जिस तरीके से तृणमूल सरकार के दौरान चीजों से डील किया गया था, खासकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ता गया था, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना पद छोड़े हैं। साथ में कुछ देर पहले मेरी बात ऋतुव्रतों से हो रही थी, ऋतुव्रतों ने भी साफ कहा है कि पिछले कुछ दिनों से कई सारे तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद है उनसे उनकी बातचीत हो रही है। कल देर रात तक कई सांसदों ने उन्हें फोन किया था, उनसे बातचीत हुई है और उन्हें पता था कि आज दिल्ली में ये सांसद मिलेंगे। तो आप जो आकलन कर सकते हैं, राजनीतिक आकलन कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं बैकडोर में से एक अलग एक पैरेलल नेगोशिएशन चल रहा था, और ये कब हो रहा है? जब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो दिल्ली में मौजूद है। ये तब हो रहा है जब तृणमूल कांग्रेस के सेकंड इन कमांड अभिषेक बनर्जी दिल्ली में है, ये तब हो रहा है जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है समझना इस राजनीतिक समीकरण को।
0: तापस एक बात बताइए,
1: हम कह सकते हैं कि
0: तापस एक बात बताइए, आप ममता बनर्जी को देखते आए हैं, उनके आक्रामक को, उनके आप कह सकते हैं कि हर छोटी छोटी चीज पर वो जिस तरीके से लगातार सड़कों पर उतर आती है, उन्हीं के पार्टी के सांसद लगातार इस समय बीजेपी से मिल रहे हैं, लगातार उनके बिना मीटिंग कर रहे हैं, क्या ये अंदेशा पहले से ममता बनर्जी को लगना शुरू हो गया था तभी वो इतनी ज्यादा साइलेंट है, या इस बारे में कोई बातचीत ही नहीं कर रही है वो?
1: जी बिल्कुल, क्योंकि उनको ये बहुत बारीकी से समझ में आ गया था कि अब उनके विधायक जो है सांसद जो वो बागी हो रहे हैं, विधायकों ने इस कदर अपने गुस्से को सामने लाया कि पूरा कप 80 में से 60 विधायक उनके खेमा छोड़कर पूरी तरीके से ऋतुव्रतों के खेमे में आ चुके हैं। दूसरे छोर पर ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि कई सारे जो सांसद है वो एकजुट हो सकते

0: हमेशा उल्टे रास्ते पर चलना पसंद करती है जहां राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में इन सारे दलों को जिनके मत अलग है, आइडियोलॉजीज अलग है, इनको एकजुट रख के एक साथ काम करना एक इंडी गठबंधन के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। भाजपा को हराना ही नहीं बल्कि अपने पार्टियों को बचाना खुद के सर्वाइवल के लिए बहुत अहमियत रखता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तपस, हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन अब अगली खबर का रुख करते हैं। दरअसल आज ममता बनर्जी जब दिल्ली में है तो इंडिया अलायंस की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, उसमें खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई बड़े बयान दिए। उन्होंने खास तौर पर SIR के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि SIR से करोड़ों लोगों के मत अधिकार को छीना गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इससे संविधान भी खतरे में आ गया है। देखिए, उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने, डराने और धमकाने के औजार के रूप में किया जा रहा है। यानी एक बार फिर से सरकार के कई महत्वपूर्ण फैसलों या फिर कई महत्वपूर्ण चीजों को लेकर कई सवाल इस गठबंधन की, इस ब्लॉक की मीटिंग में किया गया। और देखिए, आखिरकार ये बैठक क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आखिरकार क्या बड़ी बातें की गई है, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि SIR से करोड़ों लोगों का मताधिकार छीना गया, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। ये कई बड़ी बातें थी, कई बड़े हमले हैं सरकार के ऊपर किए गए। अब आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि SIR से करोड़ों लोगों के मताधिकार छीने गए, संविधान पर भी लगातार हमले जारी है। उन्होंने कहा कि देखिए, संविधान पर भी हमले किए जा रहे हैं लगातार, आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा संविधान ही खतरे में है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों को डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल एक तरीके के औजार के तौर पर किया जा रहा है, राजनीतिक विरोधियों को परेशान किया जा रहा है। सरकार लगातार एजेंसियों का इस्तेमाल बेजा इस्तेमाल कर रही है और जो सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है खासतौर पर विपक्षी पार्टियों को, गैर बीजेपी सरकारों के साथ भेदभाव का भी जिक्र किया गया, यह भी बड़ी बात है की गई है। देखिए, आपको बता दें कि आज ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर विपक्ष के, आप कह सकते हैं कि तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियां एक साथ आई हैं। इंडिया अलायंस की बैठक में ये कई महत्वपूर्ण बातें खड़गे की तरफ से कही गई है। जरूरी वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, उन्होंने महंगाई का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए, जो चीजें बहुत जरूरी है, मूलभूत है, उनके दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। परीक्षा प्रणाली यानी नीट को लेकर भी सवाल खड़े किए गए, परीक्षा प्रणाली को किस तरीके से शिकार हो गई है और ये प्रबंधन को जिस तरीके से मैनेज किया जाना था वो कितना ज्यादा खराब हो चुका है, ये भी जिक्र किया। विदेश नीति के साथ भी समझौता किया जा रहा है। उन्होंने देखिए, जो सरकार की विदेश नीति है उसको लेकर भी सवाल किए। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल गौतम हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, देखिए, ये तो तय था कि इस पूरी मीटिंग के अंदर सरकार को कैसे घेरना है, सरकार की जो विफलताएं हैं, सरकार के खिलाफ जो सवाल है वो खड़े करे किए जाएंगे, लेकिन ऐसे समय पर जब जो विपक्ष के जो मजबूत स्तंभ है या फिर जो पार्टियां इसमें इन्वॉल्व है वही लगातार वीक पड़ती जा रही है, चाहे आप DMK की बात कर लीजिए, आप TMC की बात कर लीजिए, तो क्या अपने आप अपना कुनबा ही संभालना सबसे बड़ी दिक्कत है इस समय इस अलायंस के सामने?
2: बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो दरारें हैं वो सामने आ रही हैं। आपने जिक्र किया TMC का, DMK ऑलरेडी इससे बाहर हो चुकी है, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से पहले ही बाहर हो चुकी है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो CPM है उसने भी एक चिट्ठी लिखी थी मल्लिकार्जुन खड़गे को कि आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हम BJP से मिले हुए हैं, उसको लेकर भी आप कह सकते हैं कि नाराजगी है। तो जो कुनबा है उसको समेट के रखना, उसको एक रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन जाहिर कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तमाम जो विपक्षी दल है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर एक रणनीति बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जब तक घर ऑर्डर में नहीं होगा, कई लोगों का मानना है, तब तक जो प्रहार विपक्ष करना चाहता है सरकार पर वो इफेक्टिव नहीं होगा। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जो कोऑर्डिनेशन है, देखिए, अगले साल कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होना है जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड है, गोवा है, इन तमाम राज्यों के अंदर विपक्षी दलों को लगता है कि अगर कांग्रेस तमाम दलों को साथ में लेकर नहीं चलेगी तो विपक्ष की जो ताकत है वो कमजोर हो सकती है। और ऐसे में इस बैठक के अंदर आप ये मान के चलिए कि एक मोटा मोटा एक रणनीति ये तय की जाएगी कि आखिर किस राज्य में किस पार्टी को कैसे सपोर्ट करना है, आगे चलकर क्या चुनावी रणनीति होगी। तो चुनावी जब तक जीत नहीं होगी विपक्ष की, उनको लगता है, तब तक हम जो भी एजेंडा सामने रखें उसको जब लागू हम नहीं कर सकते। तो तमाम मुद्दे तो हैं, चाहे फॉरेन पॉलिसी है, चाहे नीट है, चाहे महंगाई, यह तमाम मुद्दे तो चाहता है विपक्ष उठाना, लेकिन साथ ही साथ चाहता है कि विपक्षी दलों की जीत भी हो चुनावों के अंदर। तो इसी को लेकर अब यह बैठक है। ममता बैनर्जी की खास

0: तस्वीर हम सबने देखी जिसमें वो सोनिया गांधी से गले मिल रही हैं। कई लोगों का ये मानना है कि देखिए इस तरीके की जो कोशिशें हैं अगर चुनावों से पहले की जाती तो जाहिर है जो नतीजे हैं वो कुछ और होते। मैं बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहा हूँ, लेकिन अब क्योंकि आप कह सकते हैं कि अब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताना क्या है, तो उस तर्ज पर भी आप ये कह सकते हैं कि काफी नुकसान हो चुका है इंडिया ब्लॉक का, तो अब जितना कुछ बचा है उसको समेटा जाए, एकजुट किया जाए और प्रोमिनेंटली सरकार को घेरा जाए, यही रणनीति को लेकर पिछले दो घंटे से चर्चा चल रही है। थोड़ी ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें तमाम
1: बिल्कुल देखिए राहुल, कोशिश तो यही की जा रही है कि जिस पार्टी का जो जो कुछ बचा है उसको समेट लिया जाए, क्योंकि पता नहीं कि आखिरकार अगले चुनावों में उनके हाथ में ये हासिल रहे भी या फिर उसके हाथ में बचे भी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल गौतम आपका। अगली खबर का रुख करते हैं जो उत्तर प्रदेश है। दरअसल राम भूमि ट्रस्ट या फिर आप कहते हैं राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज के तरीकों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। वहां पर फंडिंग को लेकर या फिर उनके आप कह सकते हैं कि ट्रस्ट के कामकाज के तरीकों पर सवाल खड़े किए। खुद अखिलेश यादव ने ट्रस्ट को लेकर कई सवाल खड़े किए, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।

0: अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। प्रभु राम की जन्मस्थली पर बना विशाल मंदिर विश्व भर के राम भक्तों के लिए अनन्य तीर्थ है। इस पवित्र भूमि पर पिछले कुछ वर्षों से श्री राम भक्ति की अनवरत धारा बह रही है, मगर इस मंदिर के बनने से पहले, बनते वक्त और बनने के बाद यहाँ राजनीति की भी अनवरत धारा बहती रही है। और अब राजनीति की नई धारा में चंदे की चोरी के आरोप फिर से सिर उठा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई है। केंद्र और राज्य सरकार इस पर चुप हैं, अदालत स्वतः संज्ञान लेकर जांच करे, क्योंकि असंख्य राम भक्तों की आस्था का सवाल है। अखिलेश की ओर से लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने जवाब देने से इनकार कर दिया। बीजेपी की ओर से किसी जवाब से इनकार किया गया, लेकिन अखिलेश के आरोपों पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई दी।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
0: हालांकि अखिलेश यादव ने ट्रस्ट की ओर से दी गई 40 सेकंड की सफाई पर भी सवाल उठाए और ट्रस्ट के सभी सदस्यों को साथ बैठाकर फुल बेंच स्पष्टीकरण मांगा और सीसीटीवी फुटेज के सबूतों पर जांच कराने की मांग की। उधर ट्रस्ट के सदस्यों की ओर से इस खबर पर किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आ रहा। चढ़ावे पर सवाल के पीछे क्या? चढ़ावे में गड़बड़ी की खबरों के पीछे समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान और आरोप हैं। समाजवादी पार्टी के आरोपों के मुताबिक मंदिर के दान पत्रों में आने वाला चढ़ावा रोज गिना और स्टेट बैंक में जमा किया जाता है, लेकिन पिछले दिनों ये चढ़ावा आश्चर्यजनक रूप से औसत चढ़ावे से कम निकला। आशंका है कि इसमें 5 से 7 करोड़ रुपए की कमी देखी गई, जिसके बाद बैंक कर्मियों से पूछताछ भी की गई। हालांकि ऐसी अफवाहों की पुष्टि किसी ने नहीं की है, क्योंकि तथ्यों के मुताबिक राम मंदिर सहित अन्य सभी मंदिरों के सामने और पूरे दर्शन मार्ग पर करीब 4 दर्जन दान पात्र हैं। श्रद्धालु इनमें नकद पैसे चढ़ाते हैं, जिन्हें रोज गिनकर बैंक में जमा करा दिया जाता है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।
2: और चलिए अब रुख करते हैं बिहार से आ रही खबर का। दरअसल फैजल खान यानी खान सर लगातार फरार। एसआईटी की टीम लगातार उनके खिलाफ छापेमारी भी कर रही है, लेकिन उनका कोई पता नहीं लग पाया। इससे पहले भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए खान सर ने कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन अब वो लगातार फरार है। उसकी दबिश में लगातार एसआईटी की कई टीमें अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही है। और अगली खबर जयपुर से, जहां पर अवैध मस्जिद को ढहा दिया गया। 5 सेकंड में पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया गया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
3: तमाम सुरक्षा इंतजाम और हालात को काबू में करते हुए आखिरकार इस मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हो ही गया। ये जयपुर की नूरानी मस्जिद है। इसे ध्वस्त करने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी। इस कार्रवाई से पहले सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिए गए थे। नूरानी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन आज तय था। सुबह से ही सरकारी अमला बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचा। बुलडोजर एक्शन से पहले अतिक्रमण अभियान चलाने वाली टीम ने पहले मस्जिद को ढका, फिर शुरू हो गया बुलडोजर अभियान।
4: जयपुर के नंदपुरी इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्यवाही आज सोमवार तड़के सुबह से जारी थी। आप देख सकते हैं, ये जो इलाका है जयपुर के नंदपुरी का, यहाँ पर भारी पुलिस की मौजूदगी है और पुलिस की भारी जाब्ते की मौजूदगी में यहाँ पर नूरानी मस्जिद का अवैध तौर पर खड़ा किया गया, कब्जे वाली जमीन पर इमारत को ध्वस्त किया जा चुका है। आप देख सकते हैं, वो इलाका जहां पर वो मस्जिद खड़ी की गई थी, वो वहां पर अब मस्जिद का वो हिस्सा जो है मौजूद नहीं है। पुलिस का भारी जाब्ता, मल्टी लेवल बैरिकेडिंग यहां पर मौजूद है। हालांकि यहां पर कुल 5 इमारतें बताई जा रही थी, जिसमें एक मस्जिद, एक बाजार, 2 छोटे मंदिर और एक धर्मशाला बताया जा रहा था, जिसको कहा जा रहा था कि कब्जे वाली जमीन पर खड़ा किया गया था, उसके खिलाफ जो है वो जीडीए की कार्रवाई।
3: जयपुर में मालवीय नगर से जगतपुरा तक जाने वाली इस मुख्य सड़क को चौड़ा करने का अभियान कई दिनों से जारी था। इसे चौड़ा करने के लिए 2011 में मास्टर प्लान बना था। सड़क को 80 फीट तक चौड़ा किया जाना था। एक्शन से पहले ये सड़क 40 फीट चौड़ी थी। कुछ दिनों पहले जयपुर प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण की मुहिम शुरू की थी, लेकिन नूरानी मस्जिद को बीच में ही छोड़ दिया गया। इस पर लोगों ने नाराजगी जताई। बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाजें उठने लगी। मजबूर होकर राजस्थान सरकार ने नूरानी मस्जिद के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का फैसला किया और अब आज उस पर अमल कर दिया गया।
5: आज की कार्रवाई जो जैसे कि आपने देखी, जेडीए का अतिक्रमण निरोधक अभियान के अंदर पुलिस जो है वो कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए यहाँ पे उपस्थित थी। चूंकि इसमें प्रशासन, मीडिया और पब्लिक का सबका पूरा सहयोग रहा, जिससे ये कार्रवाई शांतिपूर्वक सम्पन्न हुई।
3: नंदपुरी इलाके में नूरानी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण और जयपुर पुलिस ने ठोस प्लान बनाया था। 50 अधिकारियों और 3000 पुलिस कर्मियों की खास तैनाती की गई थी। मुस्लिम समाज का दावा है कि ये मस्जिद 100 साल पुरानी थी, लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण ने इसे अवैध निर्माण बताते हुए पिछले दिनों नोटिस थमाया था। जयपुर पुलिस ने बुलडोजर एक्शन से पहले फ्लैग मार्च किया और असामाजिक तत्वों को आगाह कर दिया कि अफवाह फैलाकर धार्मिक उन्माद भड़काने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच बुलडोजर एक्शन किया गया। प्रशासन ने अब दो टूक कह दिया है कि सड़क चौड़ीकरण का अभियान जारी रहेगा। विशाल शर्मा के साथ देवांकुर, जयपुर आज तक।
2: न्यूज रूम लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी
8: Ready to make a move? Start your home buying journey with CME Federal Credit Union. Open an Ohio Homebuyer Plus account to earn 6.5% APY for up to 5 years. Savings towards your home purchase. When ready, lock in a 5-1 ARM mortgage at just 5% APR. Whether it's your first home or a new chapter, CME is here for you. Learn more at cmefcu.org. APY equals annual percentage yield. APR equals annual percentage rate. Terms apply. Membership eligibility required. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Visit cmefcu.org for details.
9: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
11: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Nora Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
12: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
8: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
9: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
7: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
10: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
8: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
7: जहां खबर वहां खबरदार।
11: इन एसोसिएशन विद
12: E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
14: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
11: इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
17: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, दैट सीम्ड ऑड टू द बैंक एंड टू क्लेयर। टू टैप्स लेटर क्लेयर सेज नोप टू द चार्ज एंड वेल्स फार्गो इज ऑन द केस। However you make money work, Wells Fargo can work with that.
18: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
19: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
20: Savari. So.
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU
5: सोच बदलो और बैंक भी।
7: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
8: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
9: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
7: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
10: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
8: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
7: जहां खबर वहां खबरदार।
11: इन एसोसिएशन विद
12: E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
21: झारखंड दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रांची में बुद्धिजीवियों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान इशारों इशारों में कॉकरोच जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत का युवा राष्ट्र निर्माण और इनोवेशन पर ध्यान दे रहा है। रांची में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिना किसी का नाम लिए विपक्षी ताकतों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विदेशों में बैठे कुछ लोग ये मानते हैं कि वे भारत के युवाओं को दिशा दे सकते हैं, लेकिन देश का युवा किसी के हाथ की कठपुतली बनने वाला नहीं है।
22: कुछ लोग विदेश से बैठकर विदेश की जमीन पर बैठकर ये सोच लेते हैं कि हम भारत के युवाओं को दिशा दे देंगे। भारत का युवा चंद लोगों की मुट्ठी से कठपुतली बनकर आगे नहीं बढ़ने वाला।
21: इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि विरोध करना लोकतंत्र में हर किसी का अधिकार है, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा होनी चाहिए। नितिन नवीन ने पड़ोसी देशों में चलाए गए व्यवस्था विरोधी अभियानों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह की राजनीति भारत के युवाओं के हित में नहीं है। उनका कहना था कि देश का युवा अनुशासन, समर्पण और विकास की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
22: चेतावनी देता हूं कि भारत का युवा पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेगा, हम लोकतंत्र के आधार पर निश्चित रूप से हर प्रकार का विरोध करेंगे, पर लोकतंत्र के मापदंड को खत्म नहीं करेंगे। भारत का युवा निर्माण करने के लिए जानता है, भारत का युवा अनुशासन के साथ देश के निर्माण के लिए काम करेगा।
21: कुल मिलाकर झारखंड से बीजेपी ने युवाओं और विकास के मुद्दे को केंद्र में रखकर विपक्ष पर निशाना साधा है। अब देखना होगा कि इस बयानबाजी का राजनीतिक असर आने वाले दिनों में कितना दिखाई देता है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

समाजवादी सूत्रों का दावा, यूपी की आधी सीटों पर उम्मीदवार फाइनल। गिरफ्तारी के डर से फरार हुए फैजल खान, लगातार तबिश दे रही है एसआईटी की टीमें। पुलिस ने कोर्ट में जमा की केस डायरी, पटना एसएसपी ने दी जानकारी। जयपुर के नुरारी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन, 5 सेकंड में जमींदोज हुई इमारत, पूरा इलाका छावनी में तब्दील, भारी पुलिस बल तैनात, रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद। ईरान इसराइल में जंग फिर से शुरू, तेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्ला की ओर से भी हमले, पूरे देश में अलर्ट, स्कूल भी बंद कर दिए गए, आईडीएफ ने इस्फहान पर किया जवाबी अटैक।

0: नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं उस महायुद्ध की आशंकाओं को लेकर जो लगातार ईरान और इसराइल के ताजा संघर्ष के बाद पैदा हो गए। दरअसल ईरान ने एक बार फिर से इसराइल के कई इलाकों में यानी नॉर्थ के कई इलाकों पर ताजा अटैक किए हैं, जिसके बाद इसराइल ने भी ईरान के कई इलाकों पर यानी इश्फहान, नतांज या फिर कई तेहरान के आसपास के इलाकों पर अटैक कर दिए, जिससे अब ये युद्ध या संघर्ष एक महायुद्ध में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको तमाम बड़ी खबरें बताएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार कुछ घंटों में एक बार फिर से आशंका जताई जा रही है कि ईरान इसराइल के कई जगहों पर अटैक कर सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस संघर्ष को ठंडा कर सके, लगातार दोनों को मना सके, लेकिन एक दूसरे पर अटैक लगातार दोनों के बदस्तूर जारी है। इससे जुड़ी तमाम बड़े अपडेट भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान ने इसराइल पर फिर से दागी है मिसाइलें। दरअसल ईरान ने कल रात को भी इसराइल के कई इलाकों पर, खासतौर पर नॉर्दर्न इलाकों के ऊपर अटैक किए थे, जिसका जवाब इसराइल ने सुबह आते आते देना शुरू कर दिया। इसराइल ने भी इश्फहान, नतांज और तेहरान के आसपास के इलाकों पर अटैक किए और अब उसकी जवाबी कार्रवाई रिटेलिएशन भी ईरान ने किया। ईरान ने भी अब ताजा हमलों में इसराइल पर बड़े अटैक किए। और देखिए, ईरान ने अटैक इसराइल पर इसलिए किए थे क्योंकि वो अपने प्रॉक्सी यानी हिजबुल्ला को पूरी तरीके से सुरक्षित करना चाहता था, इसराइल की फोर्सेस को बाहर खींचना चाहता, लेकिन इसी बीच अब हूती भी इस युद्ध में कूद गए हैं। हूतियों ने भी लगातार, विद्रोहियों ने इसराइल पर बड़े मिसाइल अटैक किए हैं। देखिए, माना जा रहा था कि जैसे ही ईरान इसराइल पर अटैक करता है, जितने प्रॉक्सी हैं वो लगातार एक बार फिर से इसराइल के अलग अलग इलाकों में अटैक करने शुरू कर दिए। एक तरफ जहां पर ईरान ने नॉर्दर्न एरियाज के अंदर अटैक शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ हूती की तरफ से भी नॉर्दर्न इलाकों पर इसराइल के अटैक इनिशिएट किए गए। हालांकि इसराइल की तरफ से कहा गया कि उन्होंने इन अटैक्स को निष्क्रिय कर दिया है। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी जुड़े। प्रणय, देखिए, माना तो यही जा रहा था कि देखिए शायद इस चीज को डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे मोड पर ले आए जहां पर सभी देशों के बीच में शांति आ सके, लेकिन अब पिछले 24 घंटे में जो घटनाक्रम बदला है वो तो दिखा रहा है कि एक महायुद्ध की तरफ तब्दील होता जा रहा है संघर्ष।
1: बिल्कुल ठीक है सुमित, आपने 60 दिनों से जो संघर्ष विराम चल रहा था वो पक्का होने की बजाय अब टूटता कमजोर होता, टूटता बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि संघर्ष विराम के बीच यानी इसराइल, ईरान और अमेरिका के संघर्ष के 101 दिन यानी आज ये स्थिति साफ हो गई है कि ये संघर्ष एक बार फिर भड़क गया है इस पूरे इलाके के अंदर। और अब से कुछ देर पहले इसराइल के डिफेंस फोर्सेज की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने ईरान के कई इलाकों के अंदर जबरदस्त बमबारी की है और सुबह से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि ईरान की मिसाइलें जो हैं वो इसराइल के इलाकों के अंदर गिरी हैं और उन्हें इंटरसेप्ट किया जा रहा है, वो दाखिल हुई हैं ईरान के एयर स्पेस के अंदर। और वहीं दूसरी तरफ इसराइल की जो एयरफोर्स है वो भी लगातार पलटवार की कार्रवाई कर रही है। ऐसे में जो सवाल आपने भी उठाया वो दुनिया भर के दिमाग के मन में होगा कि आखिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करेंगे, ये लड़ाई क्या वो रुकवा पाएंगे, क्या वो बेंजामिन नेतन्याहू को यहां से नियंत्रित कर पाएंगे, रोक पाएंगे, ये कहते हुए कि उन्होंने पहले ही कहा था कि इसमें संयम बरतना चाहिए, इसमें एस्केलेशन नहीं होना चाहिए, या अमेरिका जिसकी फौजें पहले से इस इलाके के अंदर मौजूद है वो लड़ाई में एक बार फिर कूदेगा और फिर जो है ईरान के खिलाफ जो बमबारी का सिलसिला है वो चलाया जाएगा। ये बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। और ऐसे में जबकि दुनिया के सामने इस बात की चिंता है सुमित कि वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसके कारण तेल की किल्लत महसूस की जा रही है, तो जो व्यापार कारोबार का नुकसान हो रहा है वो अभी भी बंद है और इस घटना के बाद तो उसके बंद और रहने की आशंका ही बढ़ेगी।
0: बिल्कुल, और पढ़े देखिए, यही कहा जा रहा है कि मिसाइलों की तपिश से ज्यादा वो आर्थिक तपिश पूरी दुनिया झेल रही है जो इस युद्ध से, इस संघर्ष से पैदा हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पढ़े उपाध्याय हमसे जुड़ने के लिए लगातार। पढ़े आप बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन आपको आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार अभी खबरें मिल रही है कि ईरान ने भी इसराइल के रमत जेविड एयरबेस पर बड़े अटैक किए हैं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि इसराइल की तरफ से भी दावा किया गया कि उन्होंने भी ईरान के डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स को टारगेट किया है, उनके एयर डिफेंस यूनिट्स को तेहरान के आसपास के इलाकों में टारगेट किया, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि ईरान ने भी रिटेलिएट करते हुए रमत जेविड एयरबेस पर इसराइल के अटैक किया है। प्रणय, देखिए, ये वार पलटवार का जो सिलसिला चालू हुआ है, ये जो शुरुआत हुई है, लेकिन एक चीज जरूर है कि अमेरिका की तरफ से भी और दोनों देशों की तरफ से भी जो बयान सामने आया अटैक के बाद वो ऐसे थे जो दिखाते थे कि दोनों चाहते हैं कि एक तरीके से स्पष्ट कर दिया जाए कि उनके अटैक सिर्फ और सिर्फ एक कैलकुलेटेड अटैक थे, कोई बड़े जंग का आगाज नहीं था। तो क्या ये सिर्फ एक छोटे संघर्ष के तौर पर इसे देखा जाए या फिर ये कभी भी छोटा संघर्ष एक बड़े युद्ध के तौर पर तब्दील हो सकता है?
1: देखिए, ये आशंका तो हमेशा ही बरकरार रहेगी क्योंकि जब गोलियां, बम, बारूद और मिसाइलें चल रही हों, ड्रोन चल रहे हों, तो कोई भी संघर्ष जो है वो छोटा नहीं होता है, वो किसी भी समय एस्केलेट कर सकता है। अगर आप देखें तो पिछले 10-15 दिनों के अंदर इसके दायरे के अंदर कुवैत भी आया है, बहरीन भी आया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी आया है, और इसके अलावा इसराइल के मेनलैंड तक जो है ईरान की अगर मिसाइलें पहुंची हैं, उसके ड्रोन पहुंचे हैं, और दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से अगर उसकी वायुसेना लगातार बमबारी कर रही है, तो फिर इसे छोटा संघर्ष नहीं कहा जा सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड भले ही ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि इस इलाके के अंदर जो है इसे आप मॉडरेट फायरिंग अगर हो रही हो तो आप उसे सीज फायर ही कह सकते हैं, तो वो अभी भी सीज फायर की बात कर रहे हैं कि सीज फायर अभी भी बरकरार है, संघर्ष विराम अभी भी बरकरार है। लेकिन संघर्ष विराम की ऐसी स्थिति के अंदर इसे कतई संघर्ष विराम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों अगर एक दूसरे पे वार कर रहे हैं, और मैं फिर वापस लौटता हूं स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाले सवाल के मुद्दे के ऊपर, क्योंकि वही दुनिया की सबसे बड़ी चिंता है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो फिलहाल खुलता हुआ नहीं दिख रहा है, कम से कम उस स्थिति में तो पहुंचता नहीं दिख रहा है जो स्थिति 27 फरवरी 2026 को थी, यानी संघर्ष विराम के इस संघर्ष के शुरू होने से पहले थी।
0: बिल्कुल, और देखिए पढ़े यही बातें तो कही जा रही है कि संघर्ष जब भी ऐसा लगता है कि हाँ ये अब अपने शांति की तरफ बढ़ रहा है, लगातार बातचीत बन रही है, उसी समय दो देशों के बीच में संघर्ष ऐसा शुरू हो जाता है तो फिर एक नए युद्ध का आगाज लगना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है कि एक और बड़ा युद्ध शुरू हो गया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ईरान ने कौन कौन से इलाकों में इसराइल के अटैक किए। सबसे पहले अगर आप ये देखें, ये है इसराइल का नक्शा, और अगर आप देखें इसराइल के इन्हीं नक्शों में सबसे पहले अटैक किए थे ईरान ने इन इलाकों में, यानी नॉर्दर्न इलाकों के अंदर जो साउथ लेबनन से मिलते हुए इलाके हैं, जहां पे आप कह सकते हैं कि बेका वैली का इलाका है, गैलीली का इलाका है, ये सारे इलाके थे, इन्हीं हाइफा का पोर्ट है, इन इलाकों को ईरान ने टारगेट किया था। लेकिन उसके बाद दोबारा से जो नई वेव स्टार्ट की, यानी नई वेव के अंदर जो अटैक किए गए वो वेस्ट बैंक पर, तेल अवीव पर, यरूशलेम पर, इन जगहों पर, यानी सेंट्रल इसराइल के अंदर अटैक किए। दरअसल ईरान हमेशा से ये कहता है कि जो अटैक उस पर किए जाएंगे, जिस तरीके के अटैक किए जाएंगे, उसी तरीके का रिटेलिएशन ईरान जवाब देगा। यानी जब इसराइल ने दोबारा से पलटवार किया तेहरान के आसपास, तब उसका जवाब दिया गया तेल अवीव, यरूशलेम और वेस्ट बैंक के इलाकों में। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ ईरान नॉर्दर्न एरियाज के अंदर टारगेट कर रहा था, यानी ये वो महत्वपूर्ण इलाके हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में ईरान ने बड़े अटैक किए हैं इसराइल के इलाकों में। आप मान के चलिए कि अगर ये जो ऐसे ही जारी रहेगा तो फिर अब तक ये सिर्फ और सिर्फ दायरा ये है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो साउथ की तरफ, यानी साउथ इसराइल की तरफ भी बढ़ते चले जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ईरान के कौन कौन से इलाकों के अंदर अटैक किए गए हैं। दरअसल हमने आपको इसराइल की तस्वीर दिखाई, ये बड़ी पिक्चर समझाने की कोशिश की कि आखिरकार कहां कहां पर अटैक किए गए थे इसराइल में। लेकिन अब जब आप तेहरान ईरान की बात करते हैं, तब आपको बताते हैं कि आखिरकार ईरान के कौन कौन से इलाकों के अंदर ये अटैक किए गए। सबसे पहले अगर आप देखें, ज्यादा फोकस जो इसराइल का था वो था तबरीज का इलाका, मशर का इलाका, तेहरान के आसपास के आउटस्कर्ट्स के इलाके और इश्फान का इलाका। तेहरान के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण शहर ईरान के अंदर है वो है इश्फाहान का शहर। दरअसल यहां पर आईआरजीसी का जो इन्फेंट्री डिफेंस यूनिट है, सबसे बड़ा यूनिट यहीं पर है, यहीं पर लगातार जो आप कह सकते हैं यूरेनियम इनरिचमेंट के प्लांट है, इश्फाहान, नतांज और फोर्दो तीनों इसी इलाके में पड़ते हैं, और इसी वजह से लगातार ये कोशिश अमेरिका और इसराइल की रहती है कि जब भी ईरान को जवाब देना हो तो सेंट्रल इलाकों के अंदर ही जवाब सबसे ज्यादा दिया जाए, क्योंकि यहीं पर आईआरजीसी की मौजूदगी रहती है। अब जो अटैक किए गए, जो ईरान की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी कहा गया, वो इराक की तरफ से किए गए, इराक के एयरस्पेस की तरफ से किए गए, तो इस वजह से तबरीज के इलाकों में भी, क्योंकि यहीं से वो मिसाइलें दागी गई थी जहां से लगातार इसराइल पर अटैक किए गए, यानी इसराइल ने उन्हीं जगहों को टारगेट किया है जहां से ईरान ने इसराइल के नॉर्थ इलाकों पर अटैक करने शुरू किए थे। अगर हमारे साथ पढ़े उपाध्याय भी जुड़े, पढ़े देखिए, डोनाल्ड ट्रंप रहकर तो बड़े बड़े दावे करते हैं लगातार, वो ऐसा कहते हैं कि देखिए आज बातचीत हो गई है, रात तक शांति वार्ता हो जाएगी, सुबह अटैक हो जाते हैं, लेकिन अभी दोनों ही, या ना तो ईरान ना ही इसराइल, दोनों ही अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में लगे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तो बात कोई सुन ही नहीं रहा है।
1: ये बात बिल्कुल ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुन रहा है और ये फेस वैल्यू के ऊपर ये चीज नजर आ रही है। लेकिन कई जानकारों का मानना है कि क्या ये केवल एक संयोग है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आता है कि हम डील के बेहद नजदीक हैं और उसके बाद ईरान की तरफ से ये कार्रवाई हो जाती है और लेबनान के मामले को मुद्दा बनाते हुए ईरान की तरफ से इसराइल पर वार किया जाता है और उसके तत्काल बाद इसराइल भी जो है वो एयरफोर्स के जरिए ईरान के अलग अलग इलाकों को टारगेट करना शुरू कर देता है। क्या ये चीजें अचानक हुई हैं या इसके पीछे कोई ट्रिगर है, क्योंकि एक डेडलॉक की स्थिति जो है वो इस पूरे डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन में देखने को मिल रही थी। और साथ ही बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि लेबनान के जो आर्मी कमांडर हैं, आर्मी के जो चीफ हैं, वो इस समय पाकिस्तान के दौरे पर हैं और साहिर तौर
0: बिल्कुल
1: पर कुछ दिनों पहले लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन का बयान भी सामने आया था सुमित, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो स्थिति है इसके अंदर इसे स्वीकार नहीं कर सकता लेबनान, कि
0: बिल्कुल
1: लेबनान की जमीन का इस्तेमाल ईरान अपने राजनीतिक हितों के लिए करे, ईरान इसराइल और अमेरिका के साथ लड़ाई के अंदर हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। जी
0: बिल्कुल। और देखिए प्रणय, यही बातें लगातार सबसे ज्यादा चिंता का विषय कि लेबनन अब एक ऐसे युद्ध में तब्दील हो गया, एक ऐसे युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया जहां पर ज्यादा तबाही हो रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए इसराइल ने भी जो ईरान के हमले किए हैं ईरान पर, उसमें उनके ऊर्जा ठिकानों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। दरअसल इस पूरे युद्ध में अब एक दूसरे पर जो वार पलटवार किए उसमें आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। इसी बीच कहा जा रहा है कि मशर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी हमले किए गए। दरअसल इससे पहले भी लगातार जो आप खारगदीप की बात कर लीजिए या बंदर अब्बास का इलाका हो, इन सभी जगहों पर उन जगहों पर पिन पॉइंटेड अटैक ज्यादा किए गए जहां पर या तो उनके पावर सेक्टर्स हैं या फिर उनके ऑयल डिपो मौजूद है। और इसी वजह से माना जा रहा है कि एक बार फिर से मशर के इलाकों में भी इसी जगह पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी इसराइल की तरफ से हमले किए गए हैं। और देखिए वार पलटवार के अंदर एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज की, यरूशलेम में भी इसराइल के जो मिलिट्री बेस है उस पर भी अटैक किए गए। ईरान ने भी इसराइल को मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जैसा आज सुबह इसराइल की तरफ से अटैक किए गए थे जिसमें तेहरान के आउटस्कर्ट्स में उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर अटैक किए गए थे, उसी तरीके के आप कह सकते हैं कि मिरर अटैक किए गए ईरान की तरफ से भी, जहां पर यरूशलेम के अंदर IDF के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर ईरान ने अटैक किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार एकदम से ईरान ने इसराइल पर अटैक करने शुरू क्यों कर दिए। दरअसल इसराइल जो युद्ध विराम की बातचीत है उससे पहले दो प्री कंडीशन लगाकर बैठा हुआ है। ईरान ये मानता है कि ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका को अपने जितने ब्लॉकेट है हटाने पड़ेंगे, वहां से पीछे हटना पड़ेगा, दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट जो ईरान रखता है वो ये कि युद्ध विराम सभी जगहों पर एक समान लागू होगा, यानी वो युद्ध विराम हमास के खिलाफ भी गाजा में लागू होगा और वो लेबनन पर भी लागू होगा। लेकिन इसराइल के नए ऑपरेशन और बड़े ऑपरेशंस ने लगातार ईरान को ये मजबूर कर दिया कि वो बड़े अटैक करें। ये ईरान की तरफ से कहा गया, ईरान ने ये भी कहा कि देखिए हम एक रेड लाइन थी, यानी लितानी रिवर एक ऐसी रेड लाइन थी अगर जिसको IDF लांगता है तो फिर हमें मजबूरन अटैक करना पड़ेगा। और इसी वजह से लगातार कल जो अटैक किए गए थे बेरूत के आसपास के इलाकों में, उसके बाद ईरान ने ये जवाबी कार्रवाई की है। और देखिए इसराइल के इन हमलों के बाद अब US पर भी ईरान भड़क गया है। ईरान का मानना है कि ये सारे के सारे अटैक लगातार अमेरिका की आप कह सकते हैं कि उनकी नॉलेज में रखकर, उनको पूरे कॉन्फिडेंस में रखकर ही किए गए हैं। और लगातार जहां एक तरफ अमेरिका बातचीत की टेबल सजाए बैठा है, वहीं दूसरी तरफ इसराइल उन पर या फिर लेबनन पर अटैक किए हुए और सीज फायर मारने के अलावा उसका उल्लंघन भी खुलेआम कर रहा है। और देखिए इस पूरे अटैक के बाद, संघर्ष के बाद जो एयर स्पेस है इन तमाम इलाकों का वो बंद कर दिया गया। ईरान के पूरे इलाके में एयर स्पेस बंद कर दिया गया, यहां तक कि इसराइल ने भी कई जगहों पर अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था, ये खबरें भी लगातार सामने आ रही थी। और इसी बीच तेहरान एयरपोर्ट पर लगातार कमर्शियल फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले कुछ दिन पहले ही ईरान ने अपने कई इलाकों के अंदर अपने बेसिस को खोल दिया था, खासतौर पर इस्फहान का इलाका या फिर तेहरान के बेसिस को खोल दिया था, लेकिन एक बार फिर से कमर्शियल फ्लाइट्स को इस जगह पर रद्द कर दिया गया है। और ईरान की तरफ से दागी गई ताजा मिसाइल और ड्रोन के बाद लगातार IDF हाई अलर्ट पर है। पूरे इसराइल के अंदर IDF की तरफ से अलर्ट कर दिया गया, खास तौर पर नॉर्दर्न इलाकों के अंदर, क्योंकि हिजबुल्ला की तरफ से भी इन्हीं इलाकों में बड़े अटैक इनिशिएट किए गए। देखिए इसराइल की होम कमांड लगातार अपने नागरिकों से आग्रह कर रही है कि वो अपने घरों से ना निकले और अगर सायरन बजे तो तुरंत शेल्टर में चले जाएं, और इसी वजह से पूरे इसराइल में इस समय हाई अलर्ट कर दिया गया है। ना सिर्फ नॉर्थ इसराइल के अंदर बल्कि साउथ इसराइल में भी इस तरीके का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मल्टीपल लोकेशन पर यह भी कहा गया है कि अगर कोई सायरन बजे या कोई अलर्ट आए तो आप तुरंत बंकर्स में चले जाएं। न्यूज रूम लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
3: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
4: 50. Oh, hey, Watson. Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine.
5: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months. Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E.
6: Learn more at APGE.com.
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: और बिहार के फैजल खान उफ खान सर की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। माना जा रहा है कि देखिए एसआईटी की टीमें लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए कई इलाकों में तपिश दे रही हैं, उनके खिलाफ कई जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है। इसी बीच खान सर के वकीलों की तरफ से उनकी एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई है, जिसकी सुनवाई कल होनी है।
7: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना।
8: Starting a business? Put it in the right hands with LegalZoom. Because the last thing you'd want to do is let it fall into the wrong hands. With easy-to-use tech and 25 years of experience, LegalZoom offers personalized support to help ensure your business is formed accurately and complies with state regulations. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
9: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
11: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
12: Dunki matlab vek.
13: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: ममता बनर्जी की टीएमसी में फिर बड़ी टूट की आशंका। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले 14 लोकसभा के सांसद, सीएम शुभेंद्र अधिकारी भी रहे मौजूद। दिल्ली में चल रही इंडिया ब्लॉक की बैठक, एसआईआर और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर हो रहा है मंथन। समाजवादी सूत्रों का दावा, यूपी की आधी सीटों पर उम्मीदवार फाइनल। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, इंडिया गठबंधन की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं।
1: आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, इट वॉज एग्रीड टू सेंड ए लेटर टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन एसआईआर, वोट लूट एंड स्टीलिंग इलेक्शंस। द लेटर टू बी डिलीवर्ड टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेरी सून। सेकेंड पॉइंट, इट वॉज यूनैनिमसली एग्रीड टू डिमांड द इमीडिएट रेसिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर बिकॉज ही प्रिसाइडेड ओवर द बिट्रेयल ऑफ लैक्स ऑफ यूथ हु अपियर्ड फॉर नीट एंड सीबीएसई एग्जामिनेशन। थर्ड पॉइंट, द यूनियन गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली कॉल एन ऑल पार्टी मीटिंग टू डिस्कस द प्रिकेरियस करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, अनएम्प्लॉयमेंट प्राइस राइज एंड फार्मर्स इश्यू एंड अदर पीपल सेंट्रिक इश्यूज। फोर्थ पॉइंट, इट वॉज अनएम्प्लॉयमेंट price rise and farmers issue and atrocities and people centric issues. Fourth, it was agreed that all of us parties would meet every 2 months. The next meeting will be held in Hyderabad on 8th August. Then fifth point, Parliament coordination will continue during the monsoon session with daily morning meetings in the office of the Honorable, as usual, leader of opposition party. And just I want to correct it, this I said that every 2 months our meeting will be held. The date will be fixed because I said August 8th. That will decide the date and let you know. But every 2 months we are going to meet. These are 5 points and many people-centric issues we are going to raise. And this is the agenda today we all discussed and unanimously agreed. All the parties. Thank you very much. Now I will give you in Hindi also so that it will be convenient for all. ये सहमति बनी कि एसआईआर मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रस्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रोसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जनों सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक दो माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। पांचवा, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पर सहमति बनी है, हम सभी यूनानिमसली इसको दी है। उद्धव ठाकरे जी और हेमंत सोरेन जी भी वो ऑनलाइन पे बात किए, अपने विचार रखे, वो भी इस सारे चीजों मुद्दों पे सहमत है। बस यही आपको कहना था, संदेश आपको देना था, इसीलिए हम सभी पार्टी के सभी नेता दल यहाँ पर बैठे हैं। आप सबको सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू।
0: और चलिए आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बाद कहा गया सीजीआई को इंडिया गठबंधन लेटर लिखेगा, एक पत्र लिखेगा जिसमें कई मुद्दों का जिक्र किया जाएगा। शिक्षा मंत्री के तुरंत इस्तीफे की मांग भी लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से की जा रही है। नीट में देश के युवाओं के साथ धोखा किया गया, खड़गे की तरफ से कहा गया, कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से कई बड़ी बातें की गई है। भारत सरकार तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाए, ये भी मांग लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से की गई। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि आज इंडिया गठबंधन की बैठक थी जिसमें कई बड़े नेता मौजूद थे, जिसमें अखिलेश यादव के साथ साथ ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव के साथ कई बड़े नेता वहां मौजूद थे और इसी बीच कई बड़ी बातों का जिक्र ऐलान भी किया गया। आप बता दें कि 8 अगस्त को इंडिया ब्लॉक की फिर से बैठक होगी, ये भी खड़गे की तरफ से कहा गया। दरअसल हर दो महीने के अंदर बैठक का ऐलान भी किया गया, मानसून सत्र के दौरान भी गठबंधन के लोग मिलेंगे ये भी कहा गया, हर दूसरे महीने इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी ये भी कहा गया। कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। जुड़ गया राहुल, सबसे बड़ा सवाल या सबसे बड़ा प्रश्न लगातार ये पूछा जाता था कि इंडिया ब्लॉक तो बना लिया लेकिन इसकी मीटिंगें 9-9 महीने के बाद की जाती है, लेकिन आज उसको लेकर भी साफ कर दिया गया है कि हर दो महीने में ये मीटिंग होगी और खास तौर पे सरकार को कैसे घेरा जाए, सरकार के कामों को कैसे उसके खिलाफ बड़ी एकजुटता दिखाई जाए, इसको लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है।
2: और अब जो विपक्षी एकता है वो मात्र कागजों पर है, उसी को लेकर अब ये फैसला किया गया है कि हर दो महीने में मीटिंग होंगी, लगातार मीटिंग होगी, अगली बैठक बताया जा रहा है हैदराबाद में होगी। तो कुल मिलाकर कोशिश है कि एक संदेश दिया जाए, पांच मुद्दों पर मुख्य तौर पर कह सकते हैं कि सहमति बन गई है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि किस कैसे जो वोट चोरी का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे हैं इनको उठाया जाए। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इमीडिएट रेजिग्नेशन की भी मांग की गई है जो धर्मेंद्र प्रधान है उनकी तो उनकी तो कुल मिलाकर कोशिश है कि विपक्ष का जो दबाव है उसको सरकार पर बनाया जाए।
0: लेकिन राहुल एक बात बताइए, क्योंकि आपसे जब पहले भी बात हो रही थी, देखिए तब भी ये कहा जा रहा था कि देखिए भले ही इंडिया गठबंधन ने अब कई चीजों को लेकर बड़े ऐलान तो किए, लेकिन इसके कमजोर होने की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी दूर हो चुकी है, डीएमके की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो भी इसमें शामिल नहीं हुई है। तो माना जाए कि अब इस ब्लॉक का वो वजूद नहीं रहा है जो हमने देखा था पिछले साल की, लगातार कई पार्टीज इसमें इन्वॉल्व थी, लगातार इसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम करी थी, लेकिन अब वो पार्टियां भी पीछे धीरे धीरे हटती

0: एमपी के भी जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी अपनी लीडरशिप के साथ नहीं है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से पार्टियों में टूट हो रही है उसको लेकर भी चर्चा हुई, चिंता व्यक्त की गई, विपक्षी एकता को तोड़ने की बात कही गई। लेकिन इसको लेकर क्या रणनीति बनाई या फिर इसको क्या इलाज है, इसको लेकर भी अभी देखना होगा कि किस प्रकार से क्या तस्वीर साफ होती है। लेकिन जाहिर तौर पर जो जिस प्रकार से विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है, वो तमाम चीजों को टेबल पर रखा गया, वो एजेंडा था तमाम चीजों का, क्योंकि कहा गया कि भाई जो नॉन एनडीए सरकारें हैं उन पर हमला हो रहा है, फिर स्ट्रक्चर पर हमला हो रहा है, तमाम चीजें टेबल पर थी, एजेंडे में थी। और आप ये मान के चलिए कि थोड़ी देर हमें क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष किस प्रकार से ना सिर्फ संसद में बल्कि सड़क में भी आपको कदम ताल करता हुआ नजर आएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल गौतम हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। राहुल गौतम देखिए मैं बता रहे थे कैसे इसको अमली जामा पहनाया जाए, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसको लेकर भी अब विपक्ष जो है वो नई स्ट्रेटजीज डिसाइड करेगा। हालांकि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर
2: पांच मुद्दों पर जो है समिति जो जताई गई है और हम लोग सब लोग साथ हैं।
3: बिहार को लेकर क्या थोड़ा आपसे बात है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बोला उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता से
2: थोड़ा, हम तो पहले से कह रहे हैं बैलेट पर चुनाव होगा तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है।
1: चलिए अब आपको एक बार फिर से सुनाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ सरकार को लेकर कहा, कामकाज को लेकर कहा, ये आपको सुनाते हैं।
4: वॉज एग्रीड टू सेंड ए लेटर टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन एसआईआर वोट लूट and stealing elections, the letter to be delivered to the Chief Justice of India very soon. Second point, it was unanimously agreed to demand the immediate resignation of the Education Minister because he presided over the betrayal of lakhs of youth who appeared for NEET and CBSE examination. Third point, the union government should immediately call an all-party meeting to discuss the precarious current economic situation, unemployment, price rise and farmers issue and other people-centric issues. Fourth point, it was unemployment, price rise and farmers issue and atrocities and people-centric issues.
1: और देखिए आपको बता दें कि आज इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक हुई थी जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, इसके अलावा ममता बनर्जी, कई बड़े नेता इसमें मौजूद रहे इंडिया ब्लॉक की इस बैठक में। और इसी बैठक के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें सरकार के कामकाज को लेकर सरकार को घेरा गया, यहां तक कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की गई, जनहित के सभी मुद्दों को उठाते रहेंगे ये भी कहा गया। मानसून सत्र के दौरान गठबंधन के लोग दोबारा से मिलेंगे और ये भी कहा गया कि अब हर दो महीने के अंदर गठबंधन की मीटिंग होगी, 8 अगस्त को इंडिया ब्लॉक की फिर से बैठक होगी। और देखिए एक तरफ इंडिया गठबंधन एकजुट दिख रहा है तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी में भी भगदड़ मची हुई है, ममता बनर्जी की टीएमसी टूट रही है। सूत्रों के मुताबिक करीब 20 सांसद टीएमसी के अपना अलग रिबल ग्रुप बना सकते हैं, जल्द मूल टीएमसी से वो अलग हो सकते हैं। और लोकसभा स्पीकर अभी दिल्ली से बाहर हैं, वो चंडीगढ़ में है और माना यह जा रहा है कि बहुत जल्दी इसको लेकर फैसला भी आ सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष देखिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि देखिए ममता बनर्जी का पहले तो सरकार से हाथ धोना पड़ा और पार्टी भी लगातार उनके हाथ से निकलती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी पार्टी ही एक तरफ आकर खड़ी होगी और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी एक तरफ आकर खड़े होंगे।
0: जरूर साफ हो गई है कि तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। सर सूत्रों ने हमें यह दावा किया है कि 20 के आसपास तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं, जो ममता बनर्जी की अब तक बात माना करते थे, उन्होंने अब दूसरा रास्ता चुन लिया है

0: 29 सांसदों में से 2/3 मेजोरिटी की अगर बात करें तो लगभग 20 सांसदों की ही जरूरत होती है एक अलग ग्रुप बनाने की, एक अलग दल बनाने की, और उसकी तैयारी हो चुकी है। सूत्रों ने यह दाव साफ कर दिया है कि काकुली घोष के नेतृत्व में एक नया ग्रुप तृणमूल कांग्रेस का बनेगा। कारण यह है कि कई ऐसे सांसद हैं जो ममता बनर्जी की लीडरशिप, अभिषेक बनर्जी के रवैये से पूरी तरह से नाखुश हैं, और पिछले कुछ दिनों में इस तरह की कवायद लगातार चली आ रही है, चाहे वो हम पश्चिम बंगाल में विधायकों की बात करें या फिर सांसदों की बात करें। अब सांसदों ने सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ एक बैठक भी की थी, और इस बैठक के बाद ये जरूर साफ हो गया कि 20 ऐसे तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं जो एक अलग ग्रुप, एक रिबल ग्रुप बनाने की तैयारी कर चुके हैं, और बहुत जल्द लोकसभा स्पीकर को वो अपनी बात रख भी देंगे, एक लेटर भी सबमिट किया जाएगा। हालांकि लोकसभा स्पीकर फिलहाल दिल्ली में नहीं है, वो चंडीगढ़ में है, और संभवतः वो परसों दिल्ली वापस आएंगे, तब ये मुलाकात सांसदों की लोकसभा स्पीकर के साथ हो सकती है। उसी मुलाकात में लगभग चीजें साफ हो जाएगी। लेकिन हाँ, सूत्रों ने यह दावा किया है, और ये विश्वसनीय सूत्र है, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने ये दावा किया और बताया कि 20 के आसपास तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं जिन्होंने एक अलग ग्रुप बनाने की कवायद कर ली है। वो इसलिए क्योंकि वो अब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली जो पार्टी है, जो उनका नेतृत्व है, उसको वो स्वीकार नहीं करना चाहते। अभिषेक बनर्जी के रवैये से वो पूरी तरह से नाखुश हैं।
1: बिल्कुल पीयूष, एक और बात बताइए, क्योंकि ममता बनर्जी को जो भी लोग जानते हैं, उनके राजनीतिक नेचर को जानते हैं, उनके पैटर्न को जानते हैं, वो ये मानते हैं कि ममता बनर्जी हमेशा अग्रेसिव रहती हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर वो सड़कों पर उतर आते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर पार्टी की एक बड़ी नेता के तौर पर भी। लेकिन अभी जब पूरी की पूरी पार्टी ही टूट रही है तब वो शांत है, वो खामोश है, इसलिए क्या ममता बनर्जी मान चुकी हैं कि देखिए पार्टी टूटने वाली है? क्या ये जानकारी उनको पहले से थी, ये अंदेशा उनको पहले से था?
0: ममता बनर्जी फिलहाल दिल्ली में हैं, और उनकी तरफ से एक बात भी कही गई है कि कई ऐसे सांसद हैं जो इस वक्त टू माइंड्स में, यानी कि वो कुछ और सोच रहे हैं। लेकिन ये चीज जरूर साफ हो चुकी है कि उनके हाथ से पार्टी अब निकल चुकी है। अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, डोला सेन, महुआ मोहित्रा और एक दो सांसदों की अगर हम बात कर लें और इनको छोड़ के बाकी लगभग सभी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पीयूष आप बने रहिए हमारे साथ, जितेंद्र बहादुर भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, जिस तरीके से मैं पीयूष से भी पूछ रहा था कि ममता बनर्जी इतनी ज्यादा खामोश, इतनी ज्यादा शांत, और वो भी तब जब पूरी की पूरी पार्टी टूट रही है, क्या उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ पार्टी अब उनके हाथ में नहीं रही है?
2: बिल्कुल, ममता बनर्जी जिस तरीके से आज दिल्ली में सुमित मौजूद थी और इंडिया ब्लॉक की बैठक थी, लेकिन उस बैठक के दौरान भी अगर तस्वीरों को देखा जाए तो काफी खामोश वो दिखाई पड़ रही थी। उससे पहले अगर दिल्ली की हलचल की बात करें तो यहां पर एक उच्च स्तरीय बैठक, मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर भूपेंद्र यादव के घर पर मौजूद हूं, और यहां पर एक उच्च स्तरीय बैठक, कई जो टीएमसी के सांसद हैं, जो सूत्र बताते हैं, उनकी बैठक यहां पर हुई, और यहां पर जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, वो भी पहुंचे थे, और अब से थोड़ी देर पहले वो यहां से निकले हैं विज्ञान भवन के लिए, जहां पर एक हेल्थ मिनिस्ट्री का बड़ा कार्यक्रम है जिसमें एमओयू साइन होना है, उस कार्यक्रम के लिए जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें और जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही, वैसे ये पता चल रहा है कि करीब 20 जो सांसद हैं टीएमसी के, वो रिबेल के तौर पर मतलब जा सकते हैं, यानी कि टीएमसी पूरी तरीके से टूट सकती है, और 20 सांसदों की लिस्ट जो है वो लोकसभा स्पीकर, लोकसभा सचिवालय को जल्द ही दी जा सकती, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। तो इस तरीके का एक बड़ा जो है दिल्ली में इस समय गहमा गहमी चल रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है जिसमें खुद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, ये तमाम लोग मौजूद थे इस बैठक में, और बैठक की जो तस्वीरें हमने देखी उस दौरान ये पता चला कि काफी गुमसुम दिखाई पड़ रही थी ममता बनर्जी। हालांकि सोनिया गांधी से उन्होंने भेंट जरूर की है, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें आ रही थी। और उधर दूसरी तरफ ये आना कि टीएमसी की टूट एक तरीके से ये दर्शा रही कि टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। टीएमसी के जो सांसद हैं, करीब 12 से 13 सांसद यहां पर मौजूद थे भूपेंद्र यादव।
1: एक बात बताइए जितेंद्र, उनकी मीटिंग हुई है, जितेंद्र आप तो वहां पर मौजूद हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि आप भूपेंद्र यादव के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं, आप ही के सामने वो सांसद, अंदर कौन कौन से सांसद थे जो भूपेंद्र यादव से मिल चुके हैं, और क्या कुछ अंदर खाते, कुछ खबर भी पता लगी है कि आखिरकार कोई औपचारिक इसको लेकर स्टेटमेंट भी आएगा, क्या कुछ कहा जा रहा है, कुछ अटकलें लगाई जा रही है कि आखिरकार इस मीटिंग में हुआ क्या?
2: देखिए सुमित, मीटिंग जो हुई थी उस मीटिंग के बारे में अभी कोई विशेष जानकारी नहीं, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि आज राज्यसभा से जिन्होंने इस्तीफा दिया है सुखेंदु शेखर राय, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। इसके साथ साथ 12 से 13 जो सांसद हैं टीएमसी के, वो लोकसभा के सांसद, वो इस बैठक के दौरान मौजूद थे। उस दौरान कुछ देर के लिए जो सुवेंदु अधिकारी हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। तो इन तमाम सांसदों का एक जो है पूरी लिस्ट तैयार हुई है सूत्र बताते हैं, और उसमें काकोली घोष के नेतृत्व में पूरी टीम जो है लोकसभा स्पीकर को पूरा अपनी जानकारी और अपनी पूरी लिस्ट सांसदों की दे सकती है, क्योंकि अगर रिबेल के तौर पर जाना है तो 2/3 बहुमत की जरूरत होती है उसमें अलग रिबेल गुट बनाने के लिए, और उसकी पूरी तैयारी जो है वो टीएमसी के जो दूसरे गुट बनाने की तैयारी कर रहे हैं उन सांसदों ने पूरी तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि जल्द ही लोकसभा स्पीकर को वो पूरा अपना लेटर दे सकते हैं, क्योंकि लोकसभा स्पीकर दिल्ली में मौजूद नहीं है, चंडीगढ़ में उनका एक कार्यक्रम है। जब उनके दिल्ली में आने के बाद इस तरीके की जानकारी मिल रही है कि उनको ये लेटर दिया जा सकता है, और उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होगी, किस तरीके से कदम बढ़ाया जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन टीएमसी में सब कुछ एकदम ठीक नहीं चल रहा है।
1: बिल्कुल,
2: एक तरफ टीएमसी की जो सुप्रीमो है वो दिल्ली में मीटिंग कर रही, तो दूसरी तरफ उनके सांसद उनसे अलग जाकर के रिबेल ग्रुप बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं।
1: बिल्कुल, और देखिए यही बात लगातार जितेंद्र कही जा रही है कि आखिरकार जब सांसद भूपेंद्र यादव से मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, लगातार पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, ममता बनर्जी की लीडरशिप के बारे में बोल रहे हैं, ऐसे में ममता बनर्जी चुप हैं, और इतनी चुप हैं कि वो किसी से मिल नहीं रही, किसी से बातचीत भी नहीं की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र बहादुर सिंह। देखिए लगातार हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे कि आखिरकार इस समय मीटिंग में क्या हुआ और कौन कौन से सांसद थे जो भूपेंद्र यादव से मिलने वहां पहुंचे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
5: What's going on everyone? It's Bluff here, and you know what's more American than America's 250th birthday? Supporting American-owned companies like SpinQuest, America's number one social casino with over 1,000 games like Live Dealer Blackjack and Craps. They're offering new users a $30 coin package for just $10. Go to SpinQuest.com and sign up today.
6: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
7: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
8: Oh, ouch.
7: However you make money work, we can work with that.
9: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank NA, member FDIC.
10: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
11: Savari, Sokudo.
12: आगे आगे,
13: अरे उधर
12: उधर गया,
13: करेक्ट करेक्ट
14: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
4: AU सोच बदलो और बैंक भी।
5: In association with
6: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: हिंट, बड़े आराम से
6: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
5: विमल बोलो जुबां केसरी।
7: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
8: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूं जहां पर ये आग लगी।
9: मैं आपको टॉप एंगल से एक तस्वीर दिखाता हूं और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है।
10: यहां पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था।
11: ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है।
9: 20 लोगों की जान चली गई। और देखिए जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहां से नहीं दिखाएंगे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

इंडिया गठबंधन की बैठक में उठा एसआईआर, नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का मुद्दा, सीजीआई को लिखेंगे चिट्ठी, सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग, हर दो महीने में मीटिंग, 5 मांगों की रखी लिस्ट। टीएमसी के 20 सांसद बना सकते हैं अलग गुट, ममता बनर्जी की पार्टी में एक और टूट की आशंका, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले लोकसभा एमपीज, सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद। गिरफ्तारी के डर से फरार हुए फैजल खान, लगातार दबिश दे रही है एसआईटी की टीम, पुलिस ने कोर्ट में जमा की केस डायरी, पटना एसएसपी ने दी जानकारी। ईरान इसराइल में जंग फिर से शुरू, तेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्ला की ओर से भी हमले, आईडीएफ ने इस्फहान पर किया जवाबी अटैक। टेस्ट इतिहास में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत, एक पारी और 300 रन से अफगानिस्तान को हराया।

0: खबरें असरदार, मैं हूं मारिया शकील। एक तरफ इंडिया गठबंधन की एकजुटता की तस्वीरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ टीएमसी में भगदड़ की तस्वीरें आ रही हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी टूट रही है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के करीब 20 सांसद ममता बनर्जी से अलग हो रहे हैं। अब इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि आज शाम ही शताब्दी रॉय, जो सांसद हैं तृणमूल की, उनके घर बागियों की बैठक हो सकती है। लोकसभा स्पीकर अभी दिल्ली में इनसे बाहर हैं, उनसे मिलने की तैयारी चल रही है, और जैसे ही लोकसभा स्पीकर वापस आएंगे दिल्ली में, तब ये बागी या रेबल टीएमसी एमपी स्पीकर से मिल सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि 20 एमपीज हैं, 20 सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, जो अलग गुट बनाएंगे, और ये सारे रेबल मिलेंगे शताब्दी रॉय के घर आज शाम। ये तस्वीरें उस वक्त आ रही हैं जब ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक के एक अहम बैठक में शामिल रही हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, बताइए कितने सांसद हैं जो अब ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं?
1: देखिए, लोकसभा के जो है वो 20 सांसद जो है जिन्होंने सिग्नेचर किया है कि वो एक अलग ग्रुप बनाना चाहते हैं, जिसको काकोली घोष दफ्तवार ने लीड किया है। और बड़ा कारण ये है, एक टेक्निकल इशू को अगर आप मारिया समझे, तो काकोली घोष को जब हटाया गया था चीफ व्हिप से, तो उसके बाद जो है जो कल्याण बनर्जी है उनके नाम का पत्र जो है वो स्पीकर को नहीं दिया गया। इसी के उसमें काकोली घोष ने कहा कि हम 20 एमपी जो है लोकसभा के वो अलग गुट चाहते हैं, और ये भी खबर आ रही है कि वो एनडीए के साथ नजर आएंगे, यानी कि एनडीए के नए सहयोगी दल के तौर पर जो है ये टीएमसी के का जो नया ग्रुप है ये नजर आएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो लोकसभा में ये हुआ है, सुबह सुखेंदु शेखर रॉय उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था, और ऐसी खबर आ रही है कि कल एक और राज्यसभा की एमपी जो है वो इस्तीफा दे सकती है।
0: तो लेकिन हिमांशु, ये 2/3 नंबर अगर नहीं होगा तो एंटी डिफेक्शन लॉ किक इन हो सकता है, तो यही सवाल है कि
1: नहीं, देखिए मारिया, इसमें क्योंकि अभी जो टीएमसी के सांसदों की संख्या है वो 28 है, ऐसे में 2/3 यानी 2/3 के लिए जो है वो 20 सांसदों की जरूरत है। तो जो हमको खबर मिली है, 20 सांसद जो है लोकसभा के, उन्होंने पत्र दिया है, उन्होंने ये पत्र दिया है कि हम टीएमसी के अलग गुट चाहते हैं, और उसके बाद जो है उनको स्वीकृति के लिए उन्होंने स्पीकर ऑफिस में ही पत्र दे दिया है। आज स्पीकर जो है चंडीगढ़ है, और कल देर शाम जब वो आएंगे उसके बाद टीएमसी का ये गुट जो है 20 सांसदों का वो स्पीकर से मिलकर अपने जो उन्होंने एक पत्र सचिवालय में दिया है लोकसभा, उसको रेटिफाई करेगा, और उसके बाद जो है ये मानकर चला जा सकता है कि अगले उसके 24 घंटे बाद जो है इस गुट को जो है टीएमसी के मान्यता मिल जाएगी।
0: चलिए हिमांशु, हमारे साथ जुड़े रहिए। इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ जुड़े हैं। बड़ी खबर बंगाल से ये आ रही है कि ममता बनर्जी की टीएमसी में जबरदस्त हलचल है। दिल्ली में बगावत करने पर उतारू टीएमसी सांसदों के गुट ने सीएम शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है, और उधर कोलकाता में ममता के राइट हैंड फिरहाद हकीम पहुंच गए हैं बागी खेमे में, ऋतव्रता बनर्जी से मिलने पहुंचे हैं फिरहाद हकीम। फिरहाद हकीम ममता बनर्जी के बेहद भरोसेमंद रहे हैं, क्लोज एड कहा जाता रहा है फिरहाद हकीम को, और अब फिरहाद हकीम भी रिबेल ग्रुप में दिख रहे हैं। इंद्रजीत बताइए क्या हो रहा है कोलकाता में?
2: बिल्कुल बिल्कुल, जहां एक और दिल्ली में जो बागी एमपीज है वो एक गुट बना के अपने बीच इस वक्त डिस्कशंस कर रहे हैं, उसके साथ साथ सीएम शुभेंदु अधिकारी से भी वो मिले हैं, वही दूसरी ओर फिरहाद हकीम जो कोलकाता के मेयर के पद से 2 दिन पहले ही उन्होंने रेजिग्नेशन दी थी, आज वो बागी कैंप के साथ दिखे। ऋतव्रत बनर्जी से उनकी भेंट हुई पश्चिम बंगाल विधानसभा में, और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो भी फ्लिप कर सकते हैं और दूसरे कैंप में जा सकते हैं। ऐसे चर्चाओं के बीच में, जैसे कि हम सुबह से कह रहे हैं कि जो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, लोकसभा के ज्यादातर सांसद जो दिल्ली में हैं, उन्होंने आज सुबह भी बैठक की अपने गुट के बीच में, शाम 6:30 और एक बैठक हो सकती है शताब्दी रॉय तृणमूल कांग्रेस के सांसद उनके घर में ये बैठक हो सकती है। और जहां एक और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और उनके साथ डेरेक ओब्रायन, दोला सेन, कल्याण बनर्जी, जो ये तृणमूल के जो टॉप ब्रास है, वो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के लिए आज दिल्ली में है, वही दूसरी ओर ज्यादातर जो रेबल खेमे के साथ जुड़ गए हैं वो अलग अपना ही मीटिंग कर रहे हैं, और जो हमें सूत्रों के हवाले से पता चली है कि वो 20 लोगों का एक गुट बना के वो ये दावा कर रहे हैं कि वो एनडीए के साथ जुड़ना चाहते हैं, और इसी कारण से वो चिट्ठी देना चाहते हैं लोकसभा।
0: हिमांशु ये बताइए कि जिस तरह से बंगाल में असली टीएमसी की जो जंग शुरू हुई है, जिसमें ऋतव्रता बैनर्जी अब एलओपी हो गए हैं बंगाल असेंबली के, क्या यहां पर भी दिल्ली में भी ये असली टीएमसी की लड़ाई है कि ये लोग चाहेंगे कि इन लोगों को एक सेपरेट रिकॉग्निशन मिल जाए, कि ये लोग का जो गुट है इस गुट को क्या कहा जाएगा?
1: देखिए, क्योंकि संसदीय प्रणाली के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो 20 जो सांसद हैं, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी यानी 2/3 के सांसद अगर एक साथ आते हैं तो उस गुट को मान्यता मिलेगी टीएमसी के तौर पर। जिस तरीके से आपने विधानसभा के अंदर ऋतव्रत बैनर्जी के नेतृत्व में जो है वहां के स्पीकर ने उनको मान्यता दी है, उसी तरीके से लोकसभा के अंदर भी मान्यता मिल जाएगी, और अगर देखा जाए तो राज्यसभा के अंदर भी इसी तरीके की टूट होगी या रेजिग्नेशन होंगे तो ममता बनर्जी के साथ जो लोग हैं उनको ये उसका फायदा तो नहीं मिलेगा, उसका नुकसान बहुत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को इस बात का एहसास तो हो गया होगा कि उनकी पार्टी में जो टूट है वो बहुत बड़ी हो चुकी है। इससे पहले भी हमने देखा है चिराग पासवान हो, उनकी पार्टी में जिस तरीके से टूट हुई थी और पशुपति पारस ने अलग दल बना लिया था, या आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे ने अलग ग्रुप बनाया, उसके बाद अजीत पवार ने, तो ये इस तरीके की चीजें हुई हैं। अगर आपके पास नंबर है तो स्पीकर उसको मान्यता दे देंगे, और मान्यता देने के बाद आप उसको चुनौती जो है वो कोर्ट पे तो नहीं दे सकते, क्योंकि जो कोर्ट की जजमेंट है बोमई केस की 2/3 को लेकर, उसमें साफ है कि अगर 2/3 सांसद और विधायक अगर एक साथ जाते हैं तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो नहीं लागू होगा, और यही कारण है कि इस पूरी तैयारी कर जो है टीएमसी के जो बागी सांसद हैं उन्होंने पूरी तैयारी की है पूरे नंबर्स के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए है उसके साथ वो आने वाले दिनों में दिखाई देंगे।
0: ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, ममता बनर्जी की टीएमसी अब टूट रही है और लगभग 20 सांसद हैं जो अब ममता बनर्जी को छोड़ करके अलग टीएमसी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि 20 सांसद वो हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर लागू नहीं होगा और इसलिए स्पीकर उनको मान्यता दें। हिमांशु और इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको टीएमसी में बगावत का बिगुल भूकने वाले ऋतव्रता को सुनवाते हैं।
3: शुकंदुता से बात नहीं हुआ मेरा, मगर टीवी में शुकंदुता का जो बयान है मैं ये बयान देखा हूँ सुना हूँ। शुकंदुता का जो उन्होंने बोले है मैं मेजॉरिटी जगह में उनके साथ एकमत हूँ, और खास करके जहां तक पार्लियामेंट का अपर हाउस का फंक्शनिंग था शुकंदुता जो बोले है वो एकदम सही है। पार्लियामेंट क्विज करने का जगह नहीं है, क्विज मास्टरी करने का अलग सा जगह है, स्टूडियो है। पार्लियामेंट का फ्लोर, पार्लियामेंट का हाउस के अंदर, हाउस के बाहर भी, वहाँ ये हमें पहले भी बोल चुका हूँ कि अभिषेक बंदोपाध्याय का जो संगठन लोग बोलते हैं उस संगठन में, बंगाली में आप जानते हैं संघ का मतलब क्या है, गठन का मतलब क्या है, उसमें संघ है मगर गठन नहीं है।
0: अब बात इंडिया ब्लॉक की बैठक की, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अब से कुछ देर पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। इस बैठक में नीट पेपर लीक, चुनाव में गड़बड़ी के आरोप समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बैठक में 5 मुद्दों पर सहमति बनी है, हम लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने 8 अगस्त को अगली बैठक हैदराबाद में होने का ऐलान भी किया है, और इंडिया गठबंधन अब मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखेगा। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का डिमांड फिर से रखा है और बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे भी उन्होंने उठाए हैं। खड़गे ने नीट पेपर लीक को युवाओं के साथ धोखा बताते हुए कहा है कि मानसून सत्र के दौरान भी इंडिया गठबंधन ये सब इश्यूज रेस करेगी।
4: ये सहमति बनी कि एसआईआर मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं और इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रस्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, अट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जनसरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं, उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक दो माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। पांचवा, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पर सहमति बनी है, हम सभी यूनैनिमसली इसको दी है।
0: अब रुक करते हैं राहुल गौतम से जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल गौतम, इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि अगली बैठक 8 अगस्त को होगी और उससे पहले मॉनसून जो सेशन होगा उसमें क्या रणनीति होगी, लेकिन सवाल है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इस पर कोई डिस्कशन हुआ? क्योंकि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ने वाली है उत्तर प्रदेश में, जहां पर अखिलेश यादव ने ये अनाउंस कर दिया है कि लगभग आधी सीटों पर कौन कैंडिडेट होगा लगभग तय है।
5: देखिए मारिया, जो तमाम मुद्दे आज टेबल पर रखे गए, जब ये तमाम जो दल हैं, तकरीबन 23 पॉलिटिकल पार्टीज जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है वो इसमें शामिल थी, और जो मुद्दे हैं, चाहे नीट हो या फिर सीबीएसई का मुद्दा हो, महंगाई हो, इसके अलावा जो बेरोजगारी है, इन तमाम चीजों को लेकर, इसके अलावा इस्तीफा जो मांगा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान का, इन तमाम चीजों को लेकर एक खाका तैयार किया गया एक चरणबद्ध तरीके से कि अब बताइए हर दो महीने के अंदर अब ये बैठक होगी, ये तय कर लिया गया है। यानी जिस इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी ये आलोचना होती थी कि आप गाय बगाए मिलते हैं 2024 के बाद, इसका आता पता नहीं है। खुद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि इंडिया ब्लॉक अभी एक्टिव है भी या नहीं, उसके बाद ये फैसला करना कि आप दो महीने में मिलेंगे, जाहिर है ये। और इस बैठक के अंदर आप देखिए एक सोनिया गांधी का शामिल होना ये दर्शाता है कि अब जो विपक्षी दल है वो ये चाहते हैं कि सीरियस हुआ जाए, जिस तरीके से टूट हो रही है अलग अलग पार्टी के अंदर। आम आदमी पार्टी के साथ आपने देखा राज्यसभा में क्या हुआ, लोकसभा में टीएमसी के साथ क्या घट रहा है आज, ये तमाम चीजों को लेकर चिंता है विपक्षी खेमे के अंदर। और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि एक ब्रेव फेस, एक यूनाइटेड फेस लेकर पब्लिक के बीच में जाएं। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया कि जो कोऑर्डिनेशन चलता है पार्लियामेंट के अंदर वो भी बदस्तूर जारी रहेगा, उसकी मीटिंग्स होती रहेंगी। लेकिन इसमें देखिए मीटिंग के अंदर आज अभिषेक बैनर्जी भी थे, इसके अलावा ममता बैनर्जी भी थी, अखिलेश यादव थे, तेजस्वी यादव थे, तमाम जो बड़े नेता थे या बड़ा आप कह सकते हैं कि जो।
0: राहुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया उस अपडेट के लिए। उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मी अभी शुरू भी नहीं हुई है कि आरोपों तहमतों की सियासत सुलगने लगी है। अब समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे के पैसे में चोरी हो रही है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हालांकि मंदिर ट्रस्ट की ओर से ऐसी किसी गड़बड़ी की खबर को निराधार बताया गया है, लेकिन अफवाह उड़ रही है कि चंदे में गड़बड़ी की आशंका है।

0: अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। प्रभु राम की जन्मस्थली पर बना विशाल मंदिर विश्व भर के राम भक्तों के लिए अनन्य तीर्थ। इस पवित्र भूमि पर पिछले कुछ वर्षों से श्री राम भक्ति की अनवरत धारा बह रही है, मगर इस मंदिर के बनने से पहले, बनते वक्त और बनने के बाद यहाँ राजनीति की भी अनवरत धारा बहती रही है। और अब राजनीति की नई धारा में चंदे की चोरी के आरोप फिर से सिर उठा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई है। केंद्र और राज्य सरकार इस पर चुप हैं, अदालत स्वतः संज्ञान लेकर जांच करे, क्योंकि असंख्य राम भक्तों की आस्था का सवाल है। अखिलेश की ओर से लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने जवाब देने से इनकार कर दिया। बीजेपी की ओर से किसी जवाब से इनकार किया गया, लेकिन अखिलेश के आरोपों पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई दी।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
0: हालांकि अखिलेश यादव ने ट्रस्ट की ओर से दी गई 40 सेकंड की सफाई पर भी सवाल उठाए और ट्रस्ट के सभी सदस्यों को साथ बैठाकर फुल बेंच स्पष्टीकरण मांगा और सीसीटीवी फुटेज के सबूतों पर जांच कराने की मांग की। उधर ट्रस्ट के सदस्यों की ओर से इस खबर पर किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आ रहा। चढ़ावे पर सवाल के पीछे क्या? चढ़ावे में गड़बड़ी की खबरों के पीछे समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान और आरोप हैं। समाजवादी पार्टी के आरोपों के मुताबिक मंदिर के दान पत्रों में आने वाला चढ़ावा रोज गिना और स्टेट बैंक में जमा किया जाता है, लेकिन पिछले दिनों ये चढ़ावा आश्चर्यजनक रूप से औसत चढ़ावे से कम निकला। आशंका है कि इसमें 5 से 7 करोड़ रुपए की कमी देखी गई, जिसके बाद बैंक कर्मियों से पूछताछ भी की गई। हालांकि ऐसी अफवाहों की पुष्टि किसी ने नहीं की है, क्योंकि तथ्यों के मुताबिक राम मंदिर सहित अन्य सभी मंदिरों के सामने और पूरे दर्शन मार्ग पर करीब 4 दर्जन दान पात्र हैं। श्रद्धालु इनमें नकद पैसे चढ़ाते हैं, जिन्हें रोज गिनकर बैंक में जमा करा दिया जाता है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।
2: अखिलेश यादव के आरोप पर यूपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रिजेश पाठक ने भी हमला बोला है, सुनिए।
3: चर्चा कर रहा हूं प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उनके अध्यक्ष जी ने कभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत नहीं किया। जब भव्य निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व भूमि पूजन हुआ तब भी आपके शब्द नहीं निकले। जब भव्य वास्तुकला अयोध्या धाम की धरती पर स्थापित हो रही थी, प्रभु श्री रामलला का विग्रह स्थापित हुआ, आपने कोई स्वागत नहीं किया, न चर्चा की सनातन संस्कृति की। आज झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके आप सनातन संस्कृति पर, प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर पर झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके गढ़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं। आपको हो क्या गया है?
2: वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
7: What's going on, everyone? It's Bluff here. And you know what's more American than America's 250th birthday? Supporting American-owned companies like SpinQuest, America's number one social casino with over 1,000 games like Live Dealer Blackjack and Craps. They're offering new users a $30 coin package for just $10. Go to SpinQuest.com and sign up today.
8: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
9: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
10: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
11: In association with
5: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
12: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
13: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
14: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
15: Oh, ouch.
14: However you make money work, we can work with that.
16: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
17: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
18: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?

तमाम सुरक्षा इंतजाम और हालात को काबू में करते हुए आखिरकार इस मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हो ही गया। ये जयपुर की नूरानी मस्जिद है। इसे ध्वस्त करने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी। इस कार्रवाई से पहले सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिए गए थे। नूरानी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन आज तय था। सुबह से ही सरकारी अमला बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचा। बुलडोजर एक्शन से पहले अतिक्रमण अभियान चलाने वाली टीम ने पहले मस्जिद को ढका, फिर शुरू हो गया बुलडोजर अभियान। जयपुर में मालवीय नगर से जगतपुरा तक जाने वाली इस मुख्य सड़क को चौड़ा करने का अभियान कई दिनों से जारी था। इसे चौड़ा करने के लिए 2011 में मास्टर प्लान बना था। सड़क को 80 फीट तक चौड़ा किया जाना था। एक्शन से पहले ये सड़क 40 फीट चौड़ी थी। कुछ दिनों पहले जयपुर प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण की मुहिम शुरू की थी, लेकिन नूरानी मस्जिद को बीच में ही छोड़ दिया गया। इस पर लोगों ने नाराजगी जताई। बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाजें उठने लगी। मजबूर होकर राजस्थान सरकार ने नूरानी मस्जिद के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का फैसला किया और अब आज उस पर अमल कर दिया गया। नंदपुरी इलाके में नूरानी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण और जयपुर पुलिस ने ठोस प्लान बनाया था। 50 अधिकारियों और 3000 पुलिस कर्मियों की खास तैनाती की गई थी। मुस्लिम समाज का दावा है कि ये मस्जिद 100 साल पुरानी थी, लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण ने इसे अवैध निर्माण बताते हुए पिछले दिनों नोटिस थमाया था। जयपुर पुलिस ने बुलडोजर एक्शन से पहले फ्लैग मार्च किया और असामाजिक तत्वों को आगाह कर दिया कि अफवाह फैलाकर धार्मिक उन्माद भड़काने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच बुलडोजर एक्शन किया गया। प्रशासन ने अब दो टूक कह दिया है कि सड़क चौड़ीकरण का अभियान जारी रहेगा। विशाल शर्मा के साथ देवांकुर, जयपुर आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

मुद्दा, सीजेआई को लिखेंगे चिट्ठी, सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग, हर दो महीने में मीटिंग, पांच मांगों की रखी लिस्ट।

टीएमसी के एमपी शाम को बागियों की बैठक। गिरफ्तारी के डर से फरार हुए फैजल खान, लगातार दबिश दे रही है एसआईटी की टीम। पुलिस ने कोर्ट में जमा की केस डायरी, पटना एसएसपी ने दी जानकारी। ईरान और इसराइल के बीच जंग फिर शुरू, टेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्ला की ओर से भी हमले, आईडीएफ ने इस्फहान पे किया बड़ा जवाबी अटैक।

0: से अफगानिस्तान को हराया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
3: जिसका डर था वही हुआ, महायुद्ध फिर शुरू हो गया। दोनों तरफ गिरी मिसाइल, न ईरान रुका न इजराइल। दुनिया में डर भयंकर, नेतन्याहू ट्रंप के कंट्रोल से बाहर। आग बबूला ईरान, लेबनन के लिए जंग में कूदा तेहरान। धुएं में तेल अवीव का आसमान, धड़कने लगा इस्पहान।

सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। जिसका डर था वही हुआ। ईरान और इसराइल के बीच फिर से जंग छिड़ गई है और जबरदस्त जंग। लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की कार्रवाई से नाराज ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। कई घंटों की चुप्पी के बाद इसराइल ने भीषण पलटवार किया, हवाई हमले किए, क्रूज मिसाइलों से ईरान के कई शहरों को दहला दिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। चैनल 14 ने दावा किया है कि इसराइल ने ईरान पर हमला अमेरिका के साथ तालमेल बैठा कर किया, लेकिन अमेरिकी सेना ने या अमेरिकी वायुसेना ने या नौसेना ने इस हमले में भाग नहीं लिया। इजरायली चैनल 4 के मुताबिक IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि ईरान के भीतर किए गए ताजा हमलों का अमेरिका के साथ सामंजस्य, समन्वय, कोऑर्डिनेशन बैठाया गया था। हालांकि IDF के अनुसार अमेरिकी सेना इन हमलों में सीधे तौर पर शामिल नहीं थी और ना ही उसने ऑपरेशन में भाग लिया। यह दावा ऐसे समय आया है जब अमेरिका आधिकारिक रूप से कह चुका है कि ईरान पर सोमवार को हुए इजरायली हमलों में उसकी कोई भूमिका, सैन्य भूमिका नहीं रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ इसराइल की तरफ से हमले हुए ईरान के कई शहरों में। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान की मीडिया के मुताबिक इस्फहान में अभी भी धमाके सुनाई दे रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि कल और आज सवेरे ईरान के हमलों के जवाब में इसराइल ने इस्फहान पर अब एक नया हमला किया है। इस्फहान में IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कमांड सेंटर है। इस्लामी सत्ता का, ताकत का यह महत्वपूर्ण केंद्र है, सबसे बड़ा इस्फहान में केंद्र है। और इसराइल ने पिछले कुछ घंटों में इस्फहान पर दूसरी बार ताबड़तोड़ हमला किया है। ईरान की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर ताजा हमले करने शुरू कर दिए हैं। यानी इसराइल अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस हमले की शुरुआत तो दरअसल ईरान की तरफ से हुई जब इसराइल का ऑपरेशन हिजबुल्ला के खिलाफ लेबनान में चल रहा था। दरअसल कल आधी रात के बाद पूरे इसराइल में ईरान के मिसाइल हमलों के सायरन सुनाई देने लगे। कुछ ही देर बाद हमले का एक दूसरा दौर शुरू हुआ। पूरे इसराइल में आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं, अस्पताल अंडरग्राउंड ऑपरेट हो रहे हैं और बाकायदा वहां पर ऑपरेशन थिएटर बेसमेंट के भी दूसरे दर्जे पर बनाए गए हैं। मिसाइलों का हमला हो भी तो स्कूलों को या अस्पतालों में कामकाज, खासतौर पर अस्पतालों का कामकाज ना रुके, स्कूल बंद है। वाहन 75% लोग इस समय ट्रैवल कर रहे हैं, बाकी वर्क फ्रॉम होम इस समय इसराइल में है। कल रात इसराइल पर हमलों की शुरुआत ईरान की तरफ से हुई। ईरान की IRGC ने कहा कि इसराइल क्योंकि लगातार लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ अटैक्स कर रहा है तो फिर ईरान ने वार किया। पहला मिसाइल हमला जो था वो चेतावनी के तौर पर हुआ, लेकिन उसके बाद यह कहा गया जब इसराइल ने जवाबी हमला किया तो फिर ईरान की तरफ से इसराइल के मिसाइल बेसिस को, एयर बेसिस को और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और उन्हें रुकने को, यानी उनको रोका गया कि आप पलटवार ना करें। लेकिन अमेरिका में रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने बात मान तो ली, लेकिन फिर वो पलट गए और उन्होंने जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने ईरान पर जवाबी हमले के आदेश दे दिए और सुबह होते होते ईरान के कई शहर एक के बाद एक दहलने लगे। पहले राजधानी तेहरान, फिर इस्फहान, फिर तबरेज, फिर कराज, मशदहल, ये सारे के सारे मशहर ये सब दहलने लगे। वहीं इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है उसने कई ईरान से आने वाली मिसाइलों को पहले ही रोक दिया, लेकिन इसके बावजूद जहां जहां चूक हुई वहां ईरान की मिसाइलों ने इसराइल में भी और खासतौर पर यरूशलम के बाद वेस्ट बैंक में एक ईरानी मिसाइल ने जो तबाही मचाई उसकी हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जो तस्वीर सामने आई है वेस्ट बैंक से। लेकिन इस बीच वेस्ट बैंक से ईरान के हमले की जो तस्वीर आ रही है वो दिल दहला देने वाली है। ईरान से दागी गई मिसाइल वेस्ट बैंक में आकर गिरी और जहां इसराइल की बस्तियां हैं उन इलाकों में गिरी। ईरान के हमले से वेस्ट बैंक की बस्तियों के कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। हालांकि इसराइल ने सीधे तौर पर कहा है कि
नुकसान सीधी मिसाइल हमले से नहीं हुआ बल्कि इंटरसेप्ट जब हुए तो इंटरसेप्ट होने पर जो टुकड़े मिसाइलों के गिरे या जो ईंधन गिरा उससे नुकसान पहुंचा है, जिससे कई घरों की छतें और दीवारें टूट गई, कुछ घरों में आग लगने की खबर है। आप ये तस्वीर देख भी रहे हैं जहां धुआं उठता नजर आ रहा है। तो ये नुकसान की तस्वीरें हैं, लेकिन किसी के मारे जाने की या घायल होने की खबर नहीं है। इसराइल का दावा यह है कि उसने ईरान की सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन मिसाइल के टुकड़े फिर भी आगे रहे। दूसरी तरफ ईरान अभी इसे अपनी तरफ से सफल हमला बता रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईरान ने इसराइल पर हमला इस समय क्यों किया। इस पर हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता ये रहे हैं कि ईरान ने इस समय यह हमला क्यों किया और यह हमला क्यों किया, क्योंकि इसराइल तो वैसे भी हिजबुल्ला के खिलाफ ऑपरेशंस कर ही रहा था। पहली तस्वीर दक्षिणी लेबनान की है, जिसे ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला का गढ़ माना जाता है, उनका मेन बेस। और पिछले कई दिनों से इसराइल की जो वायुसेना है, इसराइल की जो थल सेना है और ड्रोन्स हिजबुल्ला के गढ़ पर ताबड़तोड़ लगातार हमले कर रहे हैं। इसराइल की दलील यह है कि हिजबुल्ला उत्तरी इसराइल पर क्योंकि निरंतर रॉकेट अटैक्स कर रहा था और रुकने को उसको कहा गया, उसके बावजूद रॉकेट अटैक्स हो रहे थे जिसमें इसराइल के नागरिकों की जान जा रही थी। कई सौ नागरिक उनके उत्तरी इसराइल पर क्योंकि निरंतर रॉकेट अटैक्स कर रहा था और रुकने को उसको कहा गया, उसके बावजूद रॉकेट अटैक्स हो रहे थे जिसमें इसराइल के नागरिकों की जान जा रही थी। कई सौ नागरिक उनके उत्तरी इसराइल के शहर छोड़कर या हाइफा में या टेलवीव में जाकर रह रहे हैं और साल भर से ज्यादा। इसीलिए उसने जवाबी जमीनी और हवाई कार्रवाई की। ईरान लगातार कह रहा है कि युद्ध विराम के तहत सभी मोर्चों पर युद्ध बंद करने की शर्त थी, लेकिन इसराइल लगातार लेबनान में उस शर्त को तोड़ रहा था। सच ये भी है कि ईरान अपने प्रॉक्सी हिजबुल्ला को पूरी तरह से तबाह नहीं होने देना चाहता, वो उसको बचा रहा है। जब ईरान से जो मिसाइल अटैक्स हुए, वो ईरान से इसराइल की तरफ मिसाइलें उड़ान भर रही थी, तो ईरान के लोग अपने देश के साथ हिजबुल्ला के झंडे भी लहरा रहे थे, जैसा आप उन तस्वीरों में देख भी सकते हैं। दूसरी तरफ इसराइल बीते 26 वर्षों में लेबनान में उसने अपनी सपनी सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है, और इससे ईरान का मानना यह है कि हिजबुल्ला का वजूद मिट जाने का खतरा लेबनान में है, और यही वजह है कि उसने युद्ध विराम की शर्त का हवाला देते हुए इसराइल पर हमला कर दिया। वहीं इसराइल दो टूक कह चुका है कि ईरान की जो आतंकी शासन है आखिरकार आतंकी संगठन के साथ ही खड़ा होगा, यह साबित हो गया है, और लेबनान में उसकी पूरी जो सेनेवाई है वो पूरी तरह से जायज थी, सही थी। कल रात ईरान का जो हमला हुआ उसके कई घंटे बाद तक तो इसराइल में पूरी तरह से सन्नाटा था, सस्पेंस बना हुआ था कि इसराइल पलटवार करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के अधिकारी लगातार बयान ये दे रहे थे या दबाव बना रहे थे नेतन्याहू पर, इसराइल के प्रधानमंत्री पर, कि वो आगे कार्रवाई ना करें। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसराइल ने जो पलटवार किया उससे पहले वहां चल क्या रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कहा कि तुमने जो शुरू में मिसाइलें दागी हैं अब और नहीं, अब रुक जाओ। ट्रंप बोले जब उन्होंने बात की बेंजामिन नेतन्याहू से कि मैं ईरान से कहूंगा कि वो अपने मिसाइलों को रोक दे, आगे ना अटैक करे, टेबल पर आए और अब डील हो जानी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि सोमवार मंगलवार या ज्यादा से ज्यादा बुधवार तक समझौता होने की उम्मीद है, लेकिन ईरान ने तब तक हमला कर दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि बेरूत में इसराइल के हमले नहीं आगे से होंगे, जब बेरूत में हमले हो रहे थे वो उससे खुश नहीं थे, और इसराइल को मना लिया गया कि वो दक्षिणी लेबनान में अगर ऑपरेशन कर रहा है तो वो बेरूत में ना करे, राजधानी लेबनान की है, उस पर हमला ना हो, दक्षिणी बेरूत में दाहिये में तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो। इसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। बातचीत के बाद उन्होंने अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस से कहा कि ईरान के हमले से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, उम्मीद है इसराइल पलटवार नहीं करेगा क्योंकि डील बिगड़ सकती है। वैसे भी कोशिश यह है कि अब शांति आए, वैसा ना चलता रहे जैसा पिछले 47 वर्षों से चला रहा है, या अमेरिका के मुताबिक 3000 वर्षों से जो यहूदी बनाम इस्लाम के मानने वालों का जो युद्ध है वो लगातार चल रहा है हजारों वर्षों से, वो रुक जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स के साथ बकायदा एक इंटरव्यू में कहा
कि नेतन्याहू के पास ईरान से डील स्वीकार करने के सिवाय अब कोई रास्ता नहीं है, मैंने उनसे बात कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि सारे फैसले करते ही नेतन्याहू उनके साथ है, फैसले अब वो अलग से नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरह अमेरिकी अधिकारियों ने एक्सियस से कहा कि इसराइल तुरंत हमला करेगा, ऐसा लगता नहीं है। इजरायली मीडिया ने भी बताया कि नेतन्याहू ने ट्रंप की इस गुजारिश को मान लिया है कि वो ईरान पर पलटवार नहीं करेंगे, लेकिन नेतन्याहू माने नहीं थे।

हमला किया। इसराइल का दावा यह है कि ईरान यहां बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा था। इसराइल के हमलों के बाद ईरान का एक पेट्रोकेमिकल का प्लांट, आप इसको तस्वीरें देख भी रहे हैं, वो आग के गोले में तब्दील हो गया। दक्षिण पश्चिम ईरान के खुजेस्तान प्रांत में भी बंदर मशहर में कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी पर इसराइल ने बमबारी की। IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इस हमले की अब पुष्टि भी कर दी है कि उसने मशहर में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर कई ठिकानों को टारगेट किया है, ध्वस्त किया है। और इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने दावा किया है कि उसने ईरान के एक बड़े एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़ा हमला किया है, बड़े पैमाने पर हमला किया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक बकायदा वीडियो पोस्ट किया और दिखाया कि उसने कहां कहां ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को ध्वस्त किया है। इसराइल के मुताबिक हाल ही में पूरे ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती दोबारा की गई थी ताकि जून 2025 में जो इसराइल के हमले हुए थे उसमें जो एयर डिफेंस उसके नष्ट हो गए थे ईरान के, दोबारा ताकत से उन्हें बहाल किया जाए। और इसी के साथ साथ कई एयर डिफेंस सिस्टम्स पिछले 1.5 महीने में ईरान के पास आए थे जिनको लगाया गया था। लेकिन इसराइल के ताजा हमलों में इसराइल का दावा यह है कि जो भी नए एयर डिफेंस सिस्टम आए थे उन्हें आज नष्ट कर दिया। 2 महीने पहले छिड़े युद्ध के दौरान ईरान ने अमेरिका के 2 विमानों को गिरा दिया था। उसे यह अंदाजा था कि उसने अपने एयर डिफेंस को और मजबूत कर लिया है, ये इसराइल ने अंदाजा लगाया ईरान के इस ऑपरेशन के बाद, और इसीलिए उन दोनों को ध्वस्त कर दिया गया। इस बार इसराइल ने उन्हीं सुरक्षा प्रणालियों को पहले निशाना बनाया। तो इजरायली सेना ने कहा कि उसने पश्चिमी और सेंट्रल ईरान में, मध्य ईरान में और पश्चिम ईरान में कई आतंकी शासन के सैन्य ठिकानों को पहले निशाना बनाया है। लेकिन इस बार इसराइल के हमले में 2 बातें बहुत चौंका देने वाली है और यह हम आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। नई रणनीति क्या है इस समय इसराइल की? दरअसल जिस तरह से इसराइल ने अपने भूमध्य सागर में युद्धपोत को तैनात किया है, युद्धपोत से ईरान पर उन्होंने अटैक किया है। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? ताकि जब पलटवार हो तो उनका जो इंटरसेप्शन मैकेनिज्म है वो सही तरीके से, और इंटरसेप्ट करने के लिए यानी ईरान की तरफ से जो मिसाइलें आ रही हैं उसको ईरान में ही या तो ध्वस्त कर दिया जाए या फिर इसराइल पहुंचने से पहले ही खतरे को ध्वस्त किया जाए। ईरान में बिना घुसे बड़ा हमला किया है इस बार इसराइल ने, भूमध्य सागर से ही। अच्छा, इराक का हवाई क्षेत्र इस्तेमाल किया गया, वहां पर आए ईरान इसराइल के जो लड़ाकू विमान हैं यहां तक पहुंचे और फिर उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। पहले भूमध्य सागर में युद्धपोत से हमला किया। IRGC ने कहा कि उस पर एयर लॉन्च हवा से भी अटैक्स हुए हैं। तो जो इसराइल का 5th generation स्टेल्थ फाइटर जेट है F-35 लाइटनिंग 2, उसका इस्तेमाल किया और अन्य इस्तेमाल, जो पहले विमान अंदर घुसते हैं वो F-35 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स हैं और उसके बाद बाकी विमान अंदर घुसते हैं एक बार वो एयर डिफेंसेस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दे। तो ईरान की सीमा के पास पहुंचकर फिर भी स्टैंड ऑफ वेपन्स से उन्होंने हमला किया। किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया? उन्होंने रैम्पेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। रैम्पेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और डलाइला क्रूज मिसाइल दोनों ही दागी गई। डलाइला क्रूज मिसाइल खासतौर पर लोइटरिंग म्यूनिशन के रूप में भी डलाइला का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये इसको आप एक बार फायर कर दीजिए, इसको लॉन्च कर दीजिए और उसके बाद ये दुश्मन के इलाके में मिसाइल घूमती रहती है और जैसे ही इसको अपने टारगेट को देख लेती है, पुष्टि हो जाती है, उसके बाद हमला होता है। इराक का जो एयर स्पेस है वो अमेरिका के एयर डिफेंस शील्ड में आता है, यानी अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम वहां लगे हुए हैं। तो इसीलिए इसराइल को इस बात की पूरा भरोसा था कि उस इराक की एयर स्पेस में उसके लड़ाकू विमान पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे और इसीलिए इसराइल की तरफ से एक लंबा रास्ता लिया गया ताकि ईरान के एयर डिफेंसेस को बाईपास करके उसे ध्वस्त किया जा सके। भूमध्य सागर में तैनात इसराइल की जो नौसेना और युद्धपोत है, संभवतः कहा यह जा रहा है कि उनकी सबमरीन्स भी यहां पर हैं, पॉपाई टर्बो या अन्य क्रूज मिसाइल यहां से दागी गई। ये मिसाइलें पश्चिम से ईरान के अंदरूनी इलाके

0: में उन्होंने मिसाइल फैक्ट्रियों को, रेडार साइट्स को टारगेट किया था और ये ईरान के लिए एक बड़ा सेटबैक था। वैसे ईरान ने भी पलटवार जो किया, सटीक हमला किया ईरान ने भी इसराइल पर। ईरान ने यरूशलम के उत्तर में इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला किया। हालांकि ईरान की जो मिसाइल है वो एक बस्ती में आके गिरी, एक सैन्य ठिकाने पर नहीं गई गिरी, क्योंकि इसराइल का दावा यह है कि उसके आयरन डोम सिस्टम ने ईरान से आ रही मिसाइलों को नाकाम कर दिया, लेकिन मिसाइल के जो टुकड़े हैं वो यरूशलम के पास शामरोन में गिरती दिखाई दी गई। अच्छा, जो इतामार नाबल्स का जो इलाका है, यहां पर इजरायली सेटलमेंट्स हैं और ईरान इसे अवैध कब्जे का प्रतीक मानता है और इसीलिए सेटलमेंट्स पर उसने टारगेट किया। उसका मानना है ये पूरी तरह से फिलिस्तीन की भूमि है। हालांकि ईरान के हमले में जानमाल के किसी तरह के कोई नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो ईरान ने कल रात इसराइल के रमत डेविड एयरबेस पर टारगेटेड मिसाइल अटैक किया। ईरान की ओर से इस एयरबेस को एक खास वजह से भी निशाना बनाया गया है। दरअसल ईरान यह मानता है कि यहीं से इसराइल ने हाल ही में लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ अपने ऑपरेशंस को शुरू किया था। इन ठिकानों से ही निशाना बनाया गया था हिजबुल्ला को लेबनान में। यह आयरन डोम की सुरक्षा में है और इसी वजह से ईरान ने एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। उसकी कोशिश यह थी कि आयरन डोम सिस्टम को वो ओवरवेल्म कर देगा, यानी उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है अपनी पूरी, जब उसके रॉकेट खप जाएंगे तब भी उसकी मिसाइलें आकर एयरबेस पर गिरेंगी। ईरान की कई मिसाइलों को आयरन डोम ने नष्ट कर तो दिया, लेकिन एक या दो मिसाइलें आकर गिरी या उनका मलबा आकर गिरा। ये जो रमत डेविड इसराइल का एक बहुत महत्वपूर्ण एयरपार सेंटर है, पार हब है, यहां से फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं और ईरान ने इसी लिए चुनिंदा तरीके से इसे टारगेट किया ताकि इसराइल की जो हवाई क्षमता है और लेबनान में उसकी सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता है उसे और कमजोर किया जा सके। और इस बीच इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक बहुत चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है। इसराइल की तरफ से दागी गई मिसाइल का जो टुकड़ा है वो वेस्ट बैंक के एक सुनसान इलाके में गिरा और जमीन में घुसा नजर आया। ये मिसाइल आज सवेरे ईरान से इसराइल की तरफ दागी गई थी। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए आप, ये ईरान की मिसाइल है, इसराइल की तरफ दागी गई थी और ये जमीन में इस तरह से आके धंस गई, फटी नहीं और केवल इसका फ्यूल खत्म हो गया ऐसा लगता है। यह वेस्ट बैंक में जेरिको शहर के पास एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके में आकर गिरी। यह इसराइल से आकर बसे लोगों ने मिसाइल के टुकड़ों के पास आके बकायदा तस्वीर भी खिंचाई। इस ये देखिए, ये आप तस्वीर जरा गौर से देखिए, ये ईरान की एक मिसाइल है जिसका संभवतः ईंधन खत्म हो गया और इसीलिए वो आके बिना फटे ऐसे गिर गई। इससे पहले सुबह इसराइल ने कहा था कि उसने आज पश्चिम और मध्य ईरान में सैन्य ठिकानों पर जो हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि वो पलटवार न करें, लेकिन पलटवार फिर भी हुआ। तो ईरान और इसराइल के बीच सोशल मीडिया पर एक अलग जंग छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर ईरान और इसराइल के विदेश मंत्री आपस में भिड़ गए। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने ईरान के हमले के बाद ईरान और लेबनान के झंडे को एक साथ दिखाते हुए एक पोस्ट किया। इसका जवाब इसराइल की तरफ से भी आया। इसराइल के जो विदेश मंत्री हैं गिरोन सार, उन्होंने ईरान के साथ हिजबुल्ला का झंडा पोस्ट किया। इस तस्वीर को उन्होंने साझा किया और कहा, यही नहीं उन्होंने पोस्ट में कहा, अराग्ची फरेबी हैं, चालबाज हैं और यह दिखाता है कि ईरान आतंक के साथ खड़ा है। ईरान की भी जो सत्ता है वो एक आतंकी सत्ता है, ये इसराइल का मानना है। इस खबर पर रहेगी नजर क्योंकि अंदेशा भी इसी बात का है कि यह युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है और अमेरिका की जो शांति की अपील है उसका कोई असर होगा या नहीं, इस खबर पर रहेगी नजर। एक छोटा सा ब्रेक, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसे
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Terms apply. Visit wellsfargo.com/depositdisclosures for fees and details.
6: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
8: Sokudo.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
5: जहां खबर वहां खबरदार।
9: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
10: The action never stops and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
5: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल।
11: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी।
5: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल।
11: CBSE के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
5: छात्रों को दिया मंच।
11: उज्मा हमारे साथ कोटा से और अदिति मुंगेर से हैं और तानिया कोटा से हैं और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
12: मैम ये देखिए, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
13: IIT मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
5: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर।
11: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक। और अब सरकार की तरफ से CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
5: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: थोड़ी देर में बागियों की शताब्दी रॉय के घर पर बैठक, बीजेपी में विलय को लेकर भी चर्चा तेज। पटना में गिरफ्तारी के डर से फरार हुआ फैजल खान, फायरिंग मामले में लगातार दबिश दे रही है एसआईटी की टीम, पुलिस ने कोर्ट में सौंपी केस डायरी। ईरान और इसराइल में फिर शुरू हुआ युद्ध, तेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्ला की ओर से भी हमले, आईडीएफ ने इश्फहान पर किया जवाबी प्रहार। और मुंबई के दादर में बेकाबू बेस्ट बस का कहर, कई गाड़ियों को मारी टक्कर, एक युवक की मौत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
0: और रणभूमि में इस वक्त हम आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं, दादर से एक खबर आ रही है रफ्तार का कहर। दादर में हम आपको दिखाएंगे तेज रफ्तार बेस्ट की बस के बीच ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है, हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, तीन लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये तेज रफ्तार बस एकाएक बहुत तेज रफ्तार से उसने एक चक्कर गोल चक्कर पे काटा और फिर एक के बाद एक वो गाड़ियों से भिड़ती चली गई। ये देखिए, इन तस्वीरों को आप एक बार फिर से देखिए, ये मुंबई में बेस्ट की एक बस है, तेज रफ्तार बस जैसे ही एक गोल चक्कर के पास आई तो संभवतः एक बैरिकेड को बचाते हुए बहुत तेज गोल चक्कर पर वो निकली और बहुत तेजी से जब वो आगे बढ़ी तो कई गाड़ियों से भिड़ गई। ये देखिए, पहले एक ऑटो रिक्शा, फिर एक कार और फिर दो और गाड़ियों से भिड़ती हुई फिर वो बस जाके रुकी और इसी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अगली खबर हम आपको फिलीपींस से दिखा रहे हैं। फिलीपींस में एक जबरदस्त भूकंप आया, 8.2 रिक्टर स्केल पर इसे आंका गया है और किस तरह की तबाही मचाई उसने, हम आपको दिखाएंगे इस खबर में।
3: फिलीपींस में भूकंप से तबाही का तांडव, ढह गई स्कूल की इमारत, ढह गया आलीशान मॉल, ढह गए घर, शहर शहर हाहाकार, भूकंप से कोहराम, कईयों की गई जान। अब सुनामी का संदेश आया, समंदर के किनारे खौफ का साया, जमीन ऐसी हिली कि एक के बाद एक इमारतें जमींदोज होती चली गई। कितने बजे आया भूकंप, कितनी बर्बादी लेकर आया भूकंप और अब भी किस खौफ के साए तले जी रहे हैं फिलीपींस के लोग। हर सवाल का जवाब और फिलीपींस की तबाही की हर तस्वीर देखिए इस खास पेशकश में।
0: कल्पना कीजिए, आपके बच्चे स्कूल में हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल गए हैं, नए सेशन का पहला दिन है और कुछ ही देर बाद जमीन ऐसे हिलने लगे। फिलीपींस की जमीन आज सवेरे इस कदर डोलने लगी कि बड़ी बड़ी इमारतें और मॉल्स पल भर में जमींदोज हो गए। अब कहा यह जा रहा है यह लगभग 7.8 तीव्रता का भूकंप था और इससे जानमाल का भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें हम आपको कई दिखाएंगे, कैसे एक स्कूल पर बच्चों को सुरक्षित स्कूल से बाहर तो निकाला गया, पार्क में वो जमीन पर बैठ गए, रो रहे थे क्योंकि उनके पीछे एक धरती उनके नीचे बहुत तेजी से हिल रही थी, पीछे जो शेड है वो गिर गया था और एक स्कूल ही नहीं कई बड़े बड़े मॉल, रेस्टोरों, बड़ी बड़ी इमारतें इस भूकंप की चपेट में आ गई और धूल धूसरित हो गई। इस भूकंप में फिलीपींस में कई लोगों की जान भी गई। कई देशों की एजेंसियां कहा जा रहा है कि आफ्टर शॉक्स अभी भी आ रहे हैं, और जो बड़े टेंशन की बात इस समय यह है कि सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है और समुद्र के पास के इलाकों से किसी ऊंचाई के इलाके पर सुरक्षित जाने को कहा गया है। लोगों से कहा गया है कि वो जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि डर इस बात का है कि अगले कुछ घंटों में सुनामी आ सकती है। घर सुरक्षित रहेंगे या नहीं, नहीं मालूम, जान बचनी चाहिए और इसीलिए लोग चले जाएं सुरक्षित इलाकों में। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भी लोगों से अभी अपील की है कि जान से बढ़कर और कुछ नहीं है, इसीलिए आप सुरक्षित स्थान पर पहाड़ की तरफ या ऊंचाई की तरफ जाइए, कम से कम 5 से 7 किलोमीटर समुद्र की तट से दूर हो जाइए। फिलीपींस को कई मोर्चों पर इस समय लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ राहत अभियान की चुनौतियां हैं, तो दूसरी तरफ जानमाल के नुकसान का आकलन और फिर सुनामी जैसी मुश्किलों का सामना करना और अगली बार और बेहतर तैयार उसके लिए क्या करेंगे, ये तो उनको आकलन करना होगा। लेकिन इस समय सुनामी से कैसे बचें, हम आपको तबाही की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। दुनिया भर में इस समय ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। फिलीपींस में आज सवेरे भूकंप आया, बर्बादी का ऐसा मंजर कि लोग हैरान रह गए। फिलीपींस हर साल दो साल बाद कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आती है, वो झेलता है, लड़खड़ाता है और फिर खड़ा होने की हिम्मत करता है। पिछले 8 घंटों में फिलीपींस पर भूकंप के कहर ने विनाश का जो खेल खेला है उससे उबरने में उसे वक्त लगेगा। देखिए आज सवेरे भूकंप किस तरह तेज आया, 7.8 इस समय आंका जा रहा है। सवेरे की रिपोर्ट्स में कहा गया 8 से ज्यादा उसकी तीव्रता थी। देखिए ये रिपोर्ट,
3: 7.8 तीव्रता का भूकंप, 10 किलोमीटर जमीन के नीचे 5 से ज्यादा लोगों की गई जान, 200 से ज्यादा लोग घायल। फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप में दहशत की ये तस्वीरें सोमवार की सुबह की हैं। एक के बाद एक इमारतें गिरती जा रही हैं। जमीन के नीचे इस कदर हड़कंप मचा है कि जमीन के ऊपर जैसे बवंडर ही आ गया। ताश के पत्तों की तरह इमारतें गिरती चली गईं। भूकंप के वक्त फिलीपींस के एक स्कूल की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तबाही ने किस कदर तांडव मचाया होगा। स्कूल में पढ़ने वाले तमाम बच्चे परिसर में ही इकट्ठा हो गए, छोटे बच्चों को अपने पास बैठाए हुए हैं। कुछ बच्चे और स्टाफ स्कूल कैंपस में बने शेड के नीचे बैठे हैं। अचानक शेड हिलने लगता है और सबके सामने भरभरा कर गिर पड़ता है। कुछ लोग उसमें से निकलकर भागने में कामयाब हो जाते हैं तो कई इसकी चपेट में आकर घायल हो जाते हैं। गनीमत इस बात की रही कि ज्यादातर स्कूलों में प्रशासन ने भूकंप की चेतावनी के मद्देनजर बच्चों को खुली जगह पर इकट्ठा कर दिया था। वैसे इस तरह की तबाही की तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो रही हैं, जिनमें फिलीपींस में आज सुबह आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के दौरान का नुकसान और खौफ का साया साफ साफ देखा जा सकता है। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए, शॉपिंग मॉल की ये आलिशान बिल्डिंग भी भूकंप के झटकों को ज्यादा वक्त तक झेल नहीं पाई और ताश के पत्तों की तरह गिर गई। इलाके की दूसरी इमारतों का भी वही हाल था। जमीन में मच रही तेज हलचल ने इमारतों की नींव इस कदर हिला दी कि एक के बाद एक इमारतें जमींदोज होती जा रही थी। धूल का गुबार चारों तरफ दिख रहा था, लोगों में चीख पुकार मची हुई थी और सब बचने के लिए खुली जगहों पर भाग रहे थे। राहत दल जगह जगह लोगों को बचाने के लिए पहुंच रहे थे। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने कई लोग दहशत में सड़क पर ही बैठ गए, कई लोग गाड़ियों को पकड़कर खड़े रहे। अचानक देखते ही देखते सामने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। 5 सेकंड में ही इस इमारत का नामो निशान मिट गया। अपनी आंखों से इस विनाश लीला को देख रहे लोगों के चीखने की आवाजें आने लगती हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। भूकंप की ये तबाही दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर देखने को मिली, जहां सोमवार को 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया। भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे होने की वजह से भारी नुकसान देखने को मिला है। इस भूकंप की वजह से फिलीपींस और इंडोनेशिया समेत कई देशों की एजेंसियों ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। सुनामी की इस चेतावनी के बाद अब खौफ और ज्यादा बढ़ गया है। समंदर के आसपास रहने वाले लोगों को सावधान रहने को कहा गया है और अपील की गई है कि वो फौरन ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। फिलीपींस के साथ साथ कई देशों ने समंदर से लगते इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी की है। इंडोनेशिया के कई इलाकों में तो 3 मीटर ऊंची लहरों की आशंका जताई गई है। सुनामी की चेतावनी के बाद से लोगों में खौफ और बढ़ गया है। ज्यादातर लोग सुरक्षित इलाकों की ओर जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: फिलीपींस में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। शुरू का आंकड़ा 5 का था, लेकिन अभी सरकारी एजेंसियों ने एक ताजा रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से जो 12 मृतक हैं, ये जनरल सेंटोस सिटी और उसके आसपास के इलाकों से हैं, जहां पर सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है। सेंटोस सिटी में ही 12 लोगों की जान गई। मलबे में अभी भी कई लोग दबे हैं, इस तरह की आशंका है। अभी भी घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है और कुछ ऐसे गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें अभी ही मृतक घोषित किया गया है। तो भूकंप आने के बाद कई झटके फिर आते हैं और कई बार तो ये बड़े भूकंप से ज्यादा विनाशकारी होते हैं, और फिलीपींस में भी ऐसा ही हुआ है। भूकंप के बाद एक या दो आफ्टरशॉक्स नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा भूकंप के झटके मेन 7.8 के झटके के बाद भी आए। भूकंप के बाद 7 घंटों तक आफ्टरशॉक्स या भूकंप के बाद कई और ऐसे झटके आते रहे। आफ्टरशॉक्स की जो तीव्रता है वो 1.3 से 6.7 आंकी गई है अभी तक। कहा यह जा रहा है कि ये भूकंप के जो झटके हैं इसकी वजह से सुनामी का भी खतरा है। कई हफ्तों तक जो आकलन है, कई हफ्तों तक ऐसे आफ्टरशॉक्स आते रह सकते हैं। उम्मीद यही कि ज्यादातर बहुत हल्के होंगे। नुकसान की उम्मीद उन बात के उसमें अब नहीं हो सकती, होनी चाहिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्षतिग्रस्त इमारतों को और ज्यादा नुकसान आफ्टरशॉक्स से लग सकता है, तो ये इस समय चिंता की बात है। अच्छा, अब चलिए मैं आपको मानचित्र पर दिखाता हूं, एक मैप पर, कि आखिर भूकंप का जो एपिसेंटर था इस समय वो कहां पर था। ये वैसे भी भूकंप की दृष्टि से एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है, और अब इस समय फिलीपींस के जो कौन कौन से शहर हैं जिसमें आफ्टरशॉक्स का भी खतरा है और भूकंप का खतरा अभी भी है। फिलीपींस के कई शहरों में जो मुख्य केंद्र है वो मिदनाओ में बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी जम्बोंगा को बताया जा रहा है, किरापवन में, कोरोनाडाल में, डिगोस में, मेटी में, साउथ कोटाबटो में और जनरल सेंटोस सिटी, जहां पर ज्यादा नुकसान पहुंचा। एपिसेंटर तो ये नहीं है, एपिसेंटर से कुछ दूर है, लेकिन यहां पर 12 लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर 15 लोगों की मौत के बारे में अभी कहा जा रहा है। लेकिन जो बड़ा खतरा है वो समुद्र से सुनामी की लहरों के उठने का है, कि उससे अभी खतरा और बड़ा हो सकता है, और इसीलिए ये चिंता की बात है। फिलीपींस को लेकर एक और बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है। फिलीपींस के कई शहरों में इस समय पूरी तरह से अंधेरा है और अब इसका असर विमानों की आवाजाही पर भी हो रहा है। चाहे आप मनीला की बात करें या सेंट्रोस सिटी की बात करें, उनके बीच में जो चलने वाले विमान हैं, 17 फ्लाइट्स अब तक रद्द कर दी जा चुकी हैं। सैन्य और सरकारी फ्लाइट्स को इस समय उड़ने की इजाजत है। कोशिश उनकी ये भी है कि सबसे पहले इमरजेंसी सर्विसेज की विमान वो आ सकें, और अगर किसी को और रसद सामग्री, मदद, या किसी को अगर सेंटोस से मनीला लेके जाना है तो उन विमानों के लिए आवाजाही की इजाजत हो। अच्छा, इस बीच बड़ा प्रश्न यह है कि फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, ये जो देश हैं, भूकंप हो या ज्वालामुखी फटने की बात हो या सुनामी का कहर हो, यहां पर इतना ज्यादा इसका खतरा क्यों है? ये अति संवेदनशील बेल्ट में क्यों आते हैं? दरअसल अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये रिंग ऑफ फायर के जो देश है ना, यहां पर खतरा ज्यादा क्यों है और ये रिंग ऑफ फायर है क्या, इसकी वजह से जो तबाही आती है। ये जो आप प्रशांत महासागर का इलाका जो देखते हैं, अब आप दुनिया को एक दूसरी दृष्टि से अगर आप देखें, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो आप उस दृष्टि से देखिए तो एक तरफ दक्षिण अमेरिका के इलाके जिसमें चिली पेरू का इलाका है, आप मेक्सिको पर आइए वहां से पूरा प्रशांत महासागर, और यहां पर हम लोग को जापान को पूर्व में देखने की आदत है, लेकिन मानचित्र को क्योंकि आप गोल पृथ्वी के रूप में देख रहे हैं तो जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया ये रिंग ऑफ फायर के देश में आते हैं। प्रशांत महासागर के आसपास ये दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका है। पहली बात, क्यों है ये रिंग ऑफ फायर का? फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान का ये जो इलाका है ये भी उसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो टेक्टोनिक प्लेट्स यहां पर आपस में जो कोलाइड करती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचलों की वजह से यहां बार बार भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी का भी खतरा रहता है, और सुनामी शब्द ही जापानी भाषा से लिया गया है। समुद्र के नीचे जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स या भूकंप आता है, टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं तो उससे लहर बाय लहर समुद्र के बीच से बीच के इलाके तक आते आते ये 30-30 फीट ऊपर लहरें पहुंच जाती हैं। भूकंप के लिहाज से ये दुनिया का सबसे संवेदनशील और सबसे सक्रिय इलाका माना जाता है यहां का ये इलाका, और इसीलिए यहां सुनामी का खतरा भी ज्यादा रहता है। तूफान हो, चक्रवात हो, उस दृष्टि से भी ये रिंग ऑफ फायर का जो क्षेत्र है ये बेहद संवेदनशील माना जाता है। पिछले साल अक्टूबर में फिलीपींस में 6.9 तीव्रता का जो विनाशकारी भूकंप आया था, इससे 69 लोगों की इसमें जान चली गई थी। तो भूकंप इस इलाके में बार बार आता है, ऐसे में लोग यहां रहना बंद नहीं करते। जापान की अगर आप बात करें तो वो इमारतें ऐसी बनाते हैं जो इस भूकंप को झेल सके। उनकी बुलेट ट्रेन्स जो है शिनकानसन, वो उस समय आके रुक जाती हैं जब तेज भूकंप आता है, और लोगों ने इसे अपने जीवन की रफ्तार में भूकंप का, पृथ्वी का सम्मान इस तरह से वो लोग करते हैं कि फिर भी जीवन निरंतर वहां चलता रहता है। एक और 12 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के इस समय पूरे हो गए हैं, उस पर इंडिया गठबंधन ने जो बैठक की उस पर क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का, हम आपको सीधे लिए चलते हैं और वो सुनवाते हैं।
4: हुआ ऐसा यार, तो केरल में भी हुआ, तमिलनाडु में आप झटपट से वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर ली और सरकार बना लिया, और डीएमके वहां बोल रही है यहां तो वोट चोरी नहीं, यहां तो अलाई ही चोरी हो गई, वहां तो एलआई चोरी हो गई। केरल में आपने सरकार बना लिया तो एसआईआर को कोस नहीं रहे, बंगाल में हार गए तो एसआईआर का रोना रो रहे। तो ये जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है ये सब हम और हिंदुस्तान देख रहा है। अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं, सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है, इनकी ईमान चोरी हुई है, और इनकी ईमान चोरी के कारण जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया है। आप सोच के देखिए, मैं तो मीडिया देख के घर से ही आ रहा हूं, अभी हर टीवी चैनल में टीएमसी के अंदर का जो द्वंद है, टीएमसी के अंदर की जो लड़ाई है उसको दर्शाया जा रहा है।
0: तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन की जो अभी बैठक हुई थी उसमें जो बातें की गई उस पर पलटवार भारतीय जनता पार्टी का, इस खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
6: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
8: Oh, ouch.
7: However you make money work, we can work with that.
9: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
10: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.

0: जब अमेरिका ईरान में डील फाइनल होने की उम्मीद जग रही थी, जब कई मुल्कों की कोशिशों के बीच स्थायी शांति की चर्चा हो रही थी, ठीक उसी वक्त ईरानी मिसाइलों की बौछार ने इन सारे प्रयासों को युद्ध की आग में झोंक दिया। बीती रात के दूसरे पहर में जब ईरानी मिसाइलें गर्जी, बारूदी धमाका हुआ और दो ओर से इजरायली शहरों को टारगेट किया गया, तभी दुनिया को यह एहसास हो गया था कि अब जवाबी हमला बेहद खतरनाक होगा। लेकिन इजराइल का गुस्सा धधके इससे पहले ही उसे शांत करने की कोशिशें शुरू हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात की, भरोसा भी मिला कि जवाबी हमला नहीं होगा। लेकिन कुछ ही देर में जो कुछ हुआ, उसकी उम्मीद तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सपने में भी नहीं की थी। तंसीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने तेहरान, इस्फहान, तबरीज सहित कई शहरों में एक साथ बम और मिसाइल बरसाए। ईरान के करज शहर में भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ईरान के कई शहरों से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी।
1: ईरान और इसराइल का ये संघर्ष ऐसे वक्त में आया जब युद्ध विराम को लेकर ईरान और अमेरिका की बातचीत एक निर्णायक मोड पर चल रही थी। हालांकि ईरान ये कोशिश कर रहा है कि नेगोशिएशंस के टेबल पर जाने से पहले वो पूरी तरीके से अमेरिका और इसराइल को दिखा सके कि इस जंग के दौरान उसने कुछ खोया नहीं है, उसने कुछ पाया है, और वही पावर वो लगातार इसराइल और अमेरिका को दिखाने की कोशिश भी कर रहा है।
0: ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसराइल ने ट्रंप की अपील क्यों खारिज कर दी? आखिर इजरायली पीएम नेतन्याहू के मन में क्या चल रहा है? क्या इसराइल हिजबुल्ला के पूरी तरह खात्मे की कसम तक युद्ध जारी रखने की रणनीति को आगे बढ़ा रहा है? अभी कुछ दिन पहले ही वॉशिंगटन और तेल अवीव के कूटनीतिक गलियारों से एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। बताया गया कि लेबनन, हिजबुल्ला और ईरान को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच भारी मतभेद है, जिसके बाद ट्रंप को नेतन्याहू को सख्त संदेश भी देना पड़ा था। लेकिन ट्रंप की हर कोशिश इसराइल पर बेअसर दिख रही है। न ही इसराइल ने लेबनन पर हमले रोके, न हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह करना बंद किया। अब जब ईरान की ओर से युद्ध का मोर्चा खोल दिया गया है, तो इसराइल को आर पार की जंग का मौका मिल गया है। अगर अब नेतन्याहू ईरान में तबाही वाले प्लान को तेजी से अंजाम देते हैं, तो ये ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका होगा और फिर से पूरा मध्य पूर्व युद्ध की लपटों में घिरेगा। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
2: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
3: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
6: तब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था। डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है।
7: 2027 के सियासी समर में बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर सवार है, जहां अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हमले जारी हैं।
6: 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था।
7: योगी विकास से लेकर डबल इंजन तक की खूबियां गिना रहे हैं, तो वहीं पिछली सरकारों की खामियां भी बता रहे हैं।
6: 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था, यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था, रामलीलाओं के आयोजन में अड़चने डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा।
7: उधर अखिलेश को योगी सरकार में जंगल राज नजर आ रहा है। उधर गाजीपुर में कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर विपक्ष और सरकार के सहयोगियों के सुर एक जैसे नजर आ रहे हैं। किसी को अपने वोट बैंक की टेंशन सता रही है तो कोई वोट बैंक में सेध मारने की तैयारी में है।
8: इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप एनकाउंटर, अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है। मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर है, वो छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं।
9: ये बहुत ही जो घटना हुई है एनकाउंटर की, तो आखिर जब पुलिस पकड़ सकती थी मुजरिम को तो एनकाउंटर क्यों करा गया? तो तरह सवाल तो ये अपने आप में पूरी कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह उठाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते हैं कि जो शासन और जो प्रशासन है, जो नियम है, जो कानून है, उससे चले।
7: बहरहाल यूपी में चुनावी पिच पूरी तरह से तैयार है, जहां हर पार्टी अपने हिसाब से बैटिंग कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नीट पेपर लीक पर इंडिया गठबंधन का बड़ा दांव, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सर्वदलीय बैठक की मांग, सीजेआई को लिखेंगे पत्र, 5 सूत्रीय एजेंडा तय, बीजेपी ने विपक्ष पर उठाए सवाल। ममता की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट की आशंका, 20 सांसद बनाएंगे अलग गुट, थोड़ी देर में बागियों की शताब्दी रॉय के घर बैठक, बीजेपी में विलय को लेकर भी चर्चा तेज। पटना में गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हुआ फैजल खान, फायरिंग मामले में लगातार दबिश दे रही है एसआईटी की टीम, पुलिस ने कोर्ट में सौंपी केस डायरी। ईरान इसराइल में युद्ध फिर शुरू, तेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्ला की ओर से भी हमले, आईडीएफ ने इस्फहान पर किया जवाबी प्रहार। मुंबई के दादर में बेकाबू बीएसटी बस का कहर, कई गाड़ियों को मारी टक्कर, एक युवक की मौत, 3 घायल, हादसे का सीसीटीवी आया सामने।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी, दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल टीएमसी के अंदर मचे घमासान पर होगा। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन का मेला लगा हुआ था, लेकिन उधर टीएमसी के अंदर ही खेला हो गया। बड़ी खबर यह है कि विधायक दल में टूट के बाद अब टीएमसी के संसदीय दल में बड़ी टूट होने वाली है। काकोली घोष ने पुष्टि की है कि टीएमसी के 20 सांसद जल्द ही स्पीकर को चिट्ठी देंगे। टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों का एक गुट बना है, जिसकी आज दिल्ली में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात हुई है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ हुई मुलाकात के बाद अब टीएमसी संसदीय दल में टूट तकरीबन तय हो चुकी है, क्योंकि पूर्वी वर्धमान से टीएमसी की सांसद शर्मिला सरकार ने कहा है कि जल्द ही उनका गुट स्पीकर को चिट्ठी देगा। हालांकि यह तय नहीं है कि इस गुट की पहचान टीएमसी के तौर पर होगी, टीएमसी के बागियों के तौर पर होगी, या इनका विलय किया जाएगा बीजेपी के भीतर। लेकिन यह तय हो चुका है कि टीएमसी सिर्फ बंगाल ही नहीं दिल्ली में भी टूट के आसार पर है। यह खबर उस दिन आई है जब दिल्ली में विपक्षी दलों को जोड़ने के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई थी। 25 सियासी दल, विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ जमकर आवाज उठाई जा सके। बैठक के आयोजक कांग्रेस पार्टी ने बताया है कि इस बैठक में एक शिकायत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी भेजी जाएगी, जिसमें चुनावी धांधली की शिकायत की जाएगी। 2 मांगे रखी गई है केंद्र सरकार से, और एक तो शिक्षा मंत्री के धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए, और दूसरा ये कि तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाकर आर्थिक हालात, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की जाए। और फिर प्लान बना है कि इंडिया गठबंधन हर 2 महीने पर बैठक करेगा, संसद सत्र के दौरान रोज बैठक करेगा। यानी अब यह तय करने की कोशिश हो रही है कि गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में ही चलेगा। हालांकि इस बैठक में सभी दलों के अपने अपने मुद्दे भी थे, लेकिन उसकी बात नहीं हुई है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त टीएमसी के टूट का चल रहा है, उस पर भी कोई भी बयान नहीं आया हुआ है। ऐसे में आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या अब चुनावी हार के बाद क्षेत्रीय दल टूटते बिखरते जा रहे हैं, और ऐसे में इंडिया गठबंधन की एकजुटता कितनी मजबूत दिखाई देगी। तमाम सवाल और है टीएमसी और बंगाल में विपक्ष के चेहरे को लेकर भी हम सवाल करेंगे, चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं।
3: दिल्ली में 25 दलों के दम के साथ इंडिया गठबंधन जुटा तो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक शिकायत, 2 मांग और 2 प्लान की बात हुई। शिकायत चीफ जस्टिस से होगी कि एसआईआर से वोट चोरी हो रही है और चुनाव में धांधली। मांगे ये कि एक तो नीट और सीबीएसई मामले में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, और दूसरे देश के आर्थिक हाल, महंगाई, बेरोजगारी, किसान अत्याचार जैसे मुद्दों पर सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए। फिर प्लान ये बना कि अब हर 2 महीने में इंडिया गठबंधन की मीटिंग जरूर होगी और संसद के सत्र में रोजाना प्लान बनेगा। कहां तो खड़गे राहुल ने 25 दलों को न्योता दिया। देश के हालात, SIR, संविधान, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, निजीकरण के मुद्दों पर मंथन के लिए मीटिंग बुलाई। सारे लोग दिल्ली पहुंचे भी, लेकिन इंडिया गठबंधन के मेले की खबर को TMC के अंदर खाने हो रहे खेला ने लूट लिया। TMC विधायक दल में दो तिहाई से बड़ी टूट के बाद अब काकोली घोष की अगुवाई में TMC संसदीय दल में बड़ी टूट होने का दावा चलने लगा। खबर है कि जल्द TMC के 20 सांसदों की सूची लोकसभा स्पीकर को सौंपी जा सकती है।
4: जो सांसद हैं TMC के, वो रिबेल के तौर पर मतलब जा सकते हैं, यानी कि TMC पूरी तरीके से टूट सकती है और 20 सांसदों की लिस्ट जो है वो लोकसभा स्पीकर, लोकसभा सचिवालय को जल्द ही दी जा सकती है।
3: यानी कोलकाता में ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई में 80 में से 61 विधायकों की टूट के बाद दिल्ली में काकोली घोष की अगुवाई में 28 में 20 सांसदों की टूट हो सकती है। ये इत्तेफाक नहीं था। जब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी आए थे, बंगाल की चुनावी हार के बाद BJP को शिकस्त देने का कोई फॉर्मूला बनाएंगे। उसी मौके पर बंगाल के CM शुभेंदु भी दिल्ली पहुंच गए। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में व्यस्त थी। उधर उनकी पार्टी के सांसद बगावत करके आगे का रोड मैप तय कर रहे थे। पार्टी की सदस्यता छोड़ चुके TMC के राज्यसभा सांसद सुखेंद्र शेखर रॉय के साथ TMC के लोकसभा के 5 सांसदों की तस्वीर सोशल मीडिया पर पहले सामने आई। पूर्वी वर्धमान की TMC सांसद शर्मिला सरकार इस बैठक में थी, तो हावड़ा के प्रसून बनर्जी थे, कुछ बिहार के जगदीश बासुनिया थे, तो झारग्राम के कालीपत सोरेन और बांकुरा की सांसद अरूप चक्रवर्ती भी। TMC के सांसद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से क्यों मिल रहे थे या भूपेंद्र यादव से मुलाकात का मकसद क्या था, किसी ने कुछ बताया नहीं। लेकिन सुखेंद्र शेखर रॉय के बयान ने TMC के भविष्य के संकेत जरूर बता दिए हैं।
5: डकैत, रेपिस्ट, ये लोग सब सामने आ गए। अभी तो सब निकल रहा है ना, TV पर दिखाई दे रहा है।
3: दरअसल 2 बरस बाद इंडिया गठबंधन का मंथन तो हो रहा है, लेकिन इस मंथन में कोई एक मुद्दा नहीं। देश में अपना कुनबा जोड़ना है, समाजवादी पार्टी को UP पर बात करनी है, RJD में घर के अंदर कलह खत्म नहीं हो रही, JMM को डर है कि राज्यसभा चुनाव में विधायक बिक न जाए, लेफ्ट विजयन के अपमान से परेशान है, NCP कहती अभी तो चुनाव दूर है, और सबसे ताजा पीड़ित TMC को अपनी पार्टी बचानी है, क्योंकि जिस तरह TMC दरक गई है, इसमें ममता की सियासी विरासत पर शक के बादल है। भले असली TMC की लड़ाई हाईकोर्ट में पहुंच चुकी है, जिस पर 11 जून को सुनवाई है, लेकिन तब तक शायद लोकसभा में TMC के संसदीय दल के अंदर भी बड़ी टूट की पुष्टि हो सकती है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक।
0: तो क्या तृणमूल कांग्रेस के भीतर वही होगा जो एक वक्त शरद पवार की NCP और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के भीतर भी हमने देखा था। हालांकि तब उनकी सरकार वहां पर चल रही थी और यहां पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार खत्म हो चुकी है, वो विपक्ष में जाकर बैठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बीच उनके पार्टी के भीतर भी यहां पर बड़ी टूट होते हुए नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस का असली चेहरा कौन होगा, चर्चा हम करेंगे इस पर। क्या BJP भी इसके पीछे इस बागी गुट के साथ खड़ी है, क्योंकि आज 5 तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की है, यह भी खबर आ रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। चरण सिंह सप्रा, कांग्रेस पार्टी से इस चर्चा में शामिल होंगे। शुभंकर भट्टाचार्य, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं कोलकाता से, तृणमूल कांग्रेस में क्या हो रहा है वो उनसे भी पूछेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आशुतोष, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट। रशीद किडवाई, वरिष्ठ पत्रकार, भी इस चर्चा में शामिल होंगे। जिस तरीके से यह टूट पड़ रही है, 3 सवाल मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि अब भविष्य में क्या होगा। 2022 में महाराष्ट्र में जो हुआ उसके बाद कई लोग उसका कयास, अंदाजा लगा सकते हैं। पहला सवाल, क्या TMC के टूट रहे विधायक सांसद BJP में विलय करेंगे, क्योंकि काकोली घोष दस्तेदार ये कह रही है कि उनके साथ 20 सांसद शामिल हो चुके हैं और वो NDA को समर्थन देना चाहते हैं। वही दूसरी तरफ ऋतुव्रता बैनर्जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि असली TMC वो है और वही विपक्ष में बने रहेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन फिलहाल पश्चिम बंगाल में ऋतुव्रता बैनर्जी को चुना गया है। दूसरा सवाल, क्या TMC से हुई टूट के बाद बागी विधायक या सांसद पार्टी पर भी दावा करेंगे, क्योंकि अब तक उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर दावा नहीं किया हुआ है, लेकिन क्या पार्टी पर भी दावा होगा। और तीसरा अहम सवाल, क्या TMC में टूट के पीछे भ्रष्टाचार के दाग है या सरकारी कार्रवाई का डर, क्योंकि बार बार यह देखा गया है कि चुनाव हारने के बाद, सरकार जाने के बाद, उन्हीं के चुने हुए विधायक और सांसद जिस तरीके से भागते हैं, कहीं ना कहीं कार्रवाई का डर भी उसके पीछे लगा रहता है। गौरव जी, शुरुआत तो आप ही से करनी होगी। 7 सांसद आम आदमी पार्टी से आए, अब काकोली घोष कह रही है कि एनडीए को समर्थन देंगे, अब ये टीएमसी को आप अपने पास शामिल कर लेंगे, यही सांसद जो आपके खिलाफ खड़े थे, या अभी तक इस पर विचार नहीं हुआ है, क्या यही टीएमसी बनेगी?
6: देखिए साहिल जी, हम लोग राजनीति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं और हम लोग मंथन भी करते रहते हैं। एक तरफ एनडीए का कुनबा है, जो सब लीडर किसी भी पार्टी के हों वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं और हम उनके नेतृत्व में देश हित में कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप इस इंडी अलायंस, जिसने अपना नाम यूपीए से इंडी अलायंस इसलिए किया था कि जब यूपीए का नाम लेते थे ये लोग तो इनके भ्रष्टाचार घोटाले, इनकी चोरी याद आ जाती थी जनता को, तो इन्होंने कहा नाम बदल दो और इनसे पूछे इनका नेता कौन है, तो ये नहीं बता पाएंगे इनका नेता कौन है। कांग्रेस वाले कहते हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी अलायंस आगे बढ़ेगा और बाकी नेता कहते हैं चाहे वो शरद पवार जी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, कि राहुल गांधी में वो काबिलियत नहीं है, मैं बयान भी बता सकता हूं। दूसरी बात विचारधारा की, एनडीए का जो विचारधारा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। बड़े बड़े जो निर्णय लिए गए अनुच्छेद 370 सब लोग साथ थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान कहता है साथ थे। आप इनसे पूछिए इनकी क्या सोच है, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, जनता के हित में क्या करना चाहते हैं, कुछ नहीं बताएंगे। केवल एक ही लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है, नकारात्मक राजनीति करके मोदी जी को हटाना है और सत्ता पे बैठ जाना है, फेविकोल लगा के चिपक जाना है, जनता ये भी जान चुकी है। अब आप तीसरा विरोधाभास देखिए, आज की ही बैठक में क्या आपको विजय जी दिखाई दिए, नहीं दिखाई दिए। डीएमके, क्या तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था? लड़ा था, और खंजर भोका पीठ में लहू लुहान कर दिया स्टालिन जी को, और राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले कहते थे मेरा एक ही भाई है बड़ा और वो है स्टालिन, और उसको ही आपने खंजर भोका, इसलिए विश्वसनीयता की भी कमी है। और सवाल यह है, जो बड़ा सवाल आज आपको करना चाहिए, देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है, राहुल गांधी भस्मासुर हैं, हम सब जानते हैं, पहले तेजस्वी यादव को बिहार में निपटाया, उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में निपटाया।

0: गांधी ने कहा सांप्रदायिक है ममता बनर्जी और भ्रष्टाचारी है जो जनता जवाब दे रही है। इसलिए यहां दो फाड़ हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दोषारोपण करना कितना उचित है। अब आपकी बात का उत्तर भी दे देता हूं साहिल जी, एक बात बताइए, अगर देश को आगे लेके चलना है और कितने मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पे आपको एक मत बनाना होता है, बातचीत करनी होती है, अगर कोई सांसद अगर कोई विधायक ये कहता है कि देश हित में वो एक समझ रखता है और वो सकारात्मक कदम उठाना चाहता है, क्या आप कह रहे हैं कि हमें हक नहीं कि हम बातचीत भी करें किसी से? और अगर बातचीत नहीं करेंगे तो ये लोग कहेंगे देखिए ये लोग किसी से बातचीत नहीं करते हैं। तो मैं तो समझता हूं ये कैसा दोगलापन है, ये तो गिरगिटान जो प्रजाति है उसके जैसे।
1: बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चुनाव के हार के बाद सांसद इकट्ठा हो रहे हैं और अचानक जिन सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोला गया था वही आज आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बड़ी दिलचस्प बात है। शुभंकर भट्टाचार्य अगर हमारे साथ में तो ये सवाल मुझे उनकी उनसे पूछना
0: है। रोक लीजिए ना।
1: नहीं नहीं नहीं, तो ये शुभंकर भट्टाचार्य आपसे सवाल पूछना है, क्या हो गया अचानक एक महीने के भीतर आपके 20-20 लोग भाग रहे हैं वहां से, क्या हो गया?
2: जी नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ ऐसे, तो कोई बात ही नहीं। देखिए गौरव जी ने तो इतनी अच्छी तरीके से बताई आपको, आपको तो बात अभी तक समझ में आई होगी कि देखिए सब कुछ जो है जो इनके साथ आ जाता है उनके लिए इनके दरवाजे खुले हुए हैं, वो नेता भी खुले हुए हैं जिनके बारे में जो है प्रधानमंत्री जी दिखाते थे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे नोट खुश रहते ऐसे ऐसे एक मीठा सा चारा लेके जाते हैं ऐसे ऐसे। ये मेरे डायलॉग नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रकार से दिखाया था, इसी प्रकार से नोट खोजते हुए दिखाया था, उस वीडियो का वर्णन करते थे जो दिखाया जाता था। आज उन्हीं को जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया है तो भैया अच्छी बात है। और ऐसे कई भ्रष्टाचारियों के लिए उन्होंने कहा कि भैया देखिए हमने ईडी सीबीआई सब उनके पीछे खदेड़ रखा है, टीएमसी का एक एक नेता करप्ट है, इन्हीं की भाषा है। और अब कह रहे एक एक नेता हमारे यहां उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, अरे भाई करप्ट है तो मत लो, साफ सुथरों को मौका दो ना, देश की 144 करोड़ की जनता
0: है, आपको नेता नहीं मिल रहा है, क्यों झूठ बोल रहे हैं?
2: तो फिर ये भी तो मैंने नहीं टोका गौरव जी, मैंने आपको नहीं टोका है
0: राजनीतिक
2: गौरव जी, आपने जितना अभी तक जितना विशाल बोली बोली है मैंने आपको टोका नहीं गौरव जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपने जब तक अपनी विशाल बोली बोली मैंने उसको भी हजम किया, मैंने आपको टोका नहीं, मैंने आपको टोका नहीं। अब मेरा वक्तव्य गलत लगे सही लगे वो बाद में, बाद में सोचते
0: रहिएगा, केवल ये सवाल पूछने का हक मुझे है।
2: अगर आज तक आप इसी तरीके से अगर आपको सिर्फ बीजेपी का ही शो बनाना है तो दुबास्तों को बाहर कर दीजिए, आपको अगर बीजेपी का शो बनाना है, आपने अगर यहाँ पे साष्टांग प्रणाम कर लिया इन लोगों को तो बंद कर दीजिए।
0: वैसे ही जनता
1: जी बोलिए ना, आपका आपको बोलने का मौका मिला,
2: उन्हीं की भाषा बोल
1: रहा भाटी, आपके बीच में कोई बोलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, जरा सुन लीजिए ना क्या बोल रहे हैं, वो भी तो कुछ अपनी भूमिका रखने की कोशिश कर रहे हैं कि सांसद आपको प्यारे क्यों लग रहे हैं, बता रहे हैं वो चीज, वो भी सुन लीजिएगा, उसका जवाब देने का मौका आपको भी मिलेगा, वो भी अपनी भूमिका रख रहे हैं। बोलिए शुभंकर जी।
2: नहीं मैं पूरा समय इन लोगों को दे देना चाहता हूं, जहां पे जो है इनको अपना जहां विशाख बोली रखनी हो वो रख सकते हैं, हम अपनी आपने हमको यहाँ पे बुलाया, अगर मैं अपना राय यहाँ पे रख सकूं उसको आप नकारात्मक तरीके से ले सकारात्मक तरीके से ले वो आपके ऊपर है, आपकी खुद की मानसिकता के ऊपर है। और मैं देखिए किसी आदमी को यहाँ पे ज्यादा समझा नहीं सकता हूँ क्योंकि किसी जो है डिबेट पैनल पे इन्हीं के जो है एक महान नेता बता के गए हैं कि जहां कचड़ा भरा हो उसके ऊपर खीर नहीं डाली जा सकती, तो इसलिए मैं वहां पे जाके ज्यादा समझाने का प्रयत्न भी नहीं करूंगा। अब रही बात यहाँ पे कि भाई काकोली दस्तीदार जा रहा है, कौन कौन जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं चैनलों के माध्यम से, सब लोग इधर से देख पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, जिन जिन के ऊपर ईडी और सीबीआई का वो नोटिस पहुंचा उन सबके नाम सबसे पहले से आखिर तक आ चुका कि कौन कौन जा रहा है। और रही बात बंगाल में जो नया जो उस तरीके से दिखाया जा रहा है वो तो सबसे अच्छा तरीका है एक कंट्रोल्ड ऑपोजिशन सौंपने का, एक सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि संविधान शायद यही अब अलाउ करने लगा है कि हर चीज कंट्रोल्ड हो, ईडी कंट्रोल में है, सीबीआई कंट्रोल में, इलेक्शन कमीशन कंट्रोल में है, आप इनसे सवाल नहीं पूछ सकते, आप सुप्रीम कोर्ट से सवाल नहीं पूछ सकते, वहां पे कंटेम्प्ट हो जाएगा हर चीज पे, तो आदमी क्या करेगा?
1: शुभंकर जी,
2: आज के दिन में एक ही चीज रह गया है,
1: साठ सांसद
2: वो भी सड़क पे आके लड़ रहे
1: हैं। शुभंकर जी शुभंकर जी ठीक है, चलिए मैं एक बार आपकी बात मान भी लूं कि कई सांसदों को एसआईटी का डर होगा, पुलिस का डर होगा, ईडी का डर होगा, एजेंसीज का डर होगा, लेकिन 80 में से 61 विधायक और करीब करीब 20 सांसद जो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, जो दावा किया जा रहा है काकुली दस्तीदार से, इतनी बड़ी संख्या में आपके पार्टी में लोग हैं कि जिनको अलग अलग एजेंसियों का डर है, अगर इतना ही डर है तो

0: थे कि भाई इतने साल से आप क्यों पाल रहे थे उनको?
1: एजेंसियों का यहाँ सिर्फ एजेंसी तो बहुत छोटी बात कह दी आपने। हमारे यहाँ के एक महिला नेता के घर के ऊपर वहां पे पथराव किया गया, उनके सारे शीशे तोड़ दिए गए। अभी तक जो है
0: लेकिन सभी के सभी विधायक 61 विधायक,
1: मैं वही बात बार बार कह रहा हूँ, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि वहां पे जिस तरीके से जो है डर की राजनीति शुरू की गई है। 61 विधायक, बोलिए बोलिए गौरव जी, मेरे ख्याल से इनसे गौरव जी से तो शिष्टाचार की तो उम्मीद की नहीं जा सकती। तो वो अपना
0: चलिए एक मिनट पहले हमारे संवाददाता है, ये बागी सांसद है आपसे, इंद्रजीत कुंडू है हमारे, उन्होंने बात की थी, जरा वो एक बार सुना देते हैं, उसके बाद में जरा आगे आगे खबर बढ़ाएंगे हम लोग, क्योंकि उनसे बात की, उनका भी एक कुछ दावा है। उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस में हमने हमारी पार्टी के नेताओं को बताने की कोशिश की थी कि क्या गलत हो रहा है पार्टी में, वो नहीं सुन रहे थे, इसके लिए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। जरा सुन लेते हैं कि क्या कहा उन्होंने।
2: क्या आप और आपके साथ कितने ऐसे सांसद हैं जिन्होंने आज ये सिग्नेचर किया है, कहा जा रहा है आपके ओर से?
3: हम 20 लोग थे जिन्होंने आज सिग्नेचर किए हैं, तो हम लोग एक सेपरेट ब्लॉक मतलब तैयार किए हैं, हम लोगों का वॉइस यहाँ से मतलब सेपरेट ब्लॉक से उठेंगे अभी।
2: अच्छा, तो तृणमूल के अंदर आप लोग एक अलग गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तृणमूल से निकलने की कोई गुंजाइश अभी नहीं है अलग से?
3: नहीं।
2: तो आप लोग तृणमूल कांग्रेस में ही रहेंगे?
3: अभी तक तो ऐसा ही है, मतलब हम लोग तृणमूल का ही है लेकिन सेपरेट ब्लॉक है हम लोगों का, मतलब जो है काकुलीत घोष दोस्तीदार अभी भी चीफ व्हिप है और शताब्दी राय है डिप्टी लीडर, तो अभी देखा जाएगा कि हम लोगों का लीडर कौन होगा। तो हम लोगों का जो है ये 20 अभी तक तो 20 है, शायद और भी बढ़ जाएगा, तो हम लोग इकट्ठा होकर ये डिसीजन ली है।
2: क्यों आपने ये डिसीजन लिया? आप सिर्फ 2 साल पहले चुन के आए हैं।
3: हाँ वही मैं तो 2 साल पहले एकदम पॉलिटिक्स में, मैं एकदम नई हूँ, ठीक है, मुझे पॉलिटिक्स नहीं आता एकदम क्लियर, यही बात है, मुझे पता नहीं था, बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो काम करने आई थी इधर नौकरी छोड़ के, और कोई भी मुझे बोल सकते है कि मैं किसी से एक पैसा ली हूँ और मैं चोर हूँ, ये कोई मुझे बदनाम नहीं कर सकते कि इस कारण से मैंने मतलब।
0: चलिए वो कह रहे हैं कि कोई राजनीति नहीं है, लेकिन 20 लोगों का गुट, टीएमसी में बड़ी टूट से कीर्ति आजाद का इनकार। कीर्ति आजाद ये कह रहे हैं कि सिर्फ 13 सांसदों के दस्तखत है उनके पास, चिट्ठी पर केवल 13 सांसदों के दस्तखत है। कीर्ति आजाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद यह दावा कर रहे हैं, हालांकि अभी तक चिट्ठी लोकसभा के स्पीकर के पास सौंपी नहीं गई है, लेकिन काकोली दस्तेदार ने थोड़ी देर पहले ये दावा किया है कि 20 सांसदों का समर्थन उनको हासिल है। हालांकि कानून के मुताबिक, एंटी डिफेक्शन कानून के मुताबिक अलग गुट नहीं बनाया जा सकता, या तो उन्हें किसी पार्टी में शामिल होना होगा या तो दावा करना होगा कि असली पार्टी वही है। कीर्ति आजाद यह कह रहे हैं कि चिट्ठी पर केवल 13 सांसदों के दस्तखत है, 20 सांसदों के दस्तखत उनके पास नहीं है। टूट से कीर्ति आजाद का इनकार यहां पर नजर आ रहा है। आशुतोष, क्या हम कह सकते हैं कि क्या पार्टी ममता बनर्जी के हाथ से चली गई? अब किसके पास कितने सांसद, ये तो लड़ाई 3-4 दिन चलती रहेगी, लेकिन हम देख चुके हैं 2022 में पार्टी चली गई क्या उनकी?
4: साहिल, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि अगर उनकी लेजिस्लेचर पार्टी विधायक दल में से अगर 60 विधायक अगर टीएमसी से निकलकर अगर अलग गुट बनाते हैं तो फिर ममता बनर्जी के हाथ से तो पार्टी एक तरीके से निकली गई है, और लगभग 3/4 विधायक उनकी पार्टी से चिटक के बाहर गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके ऊपर दबाव डाला गया हो, एजेंसी से दबाव डाला हो, लेकिन अगर पार्टी के अंदर अगर असंतोष नहीं होता तो इतने बड़े पैमाने पर छिटक कर बाहर नहीं जाते। निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर असंतोष था, लोग नाराज थे, अब वो ममता बनर्जी से नाराज थे या अभिषेक बनर्जी से नाराज थे, और उस नाराजगी का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और 3/4 विधायक जो है वो निकल के उधर चले गए हैं। जहां तक लोकसभा की बात है तो लोकसभा में भी अगर आप देखें तो 28 सांसद लोकसभा के अंदर है, 13 सांसद राज्यसभा के अंदर है, टोटल 41 सांसद होते हैं, और इनमें से अगर सिर्फ 20 ही लोग अगर पार्टी से अलग गुट बनाने की बात कर रहे हैं तो सीधे सीधे इनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा, क्योंकि 2/3 बहुमत प्लस पार्टी में मर्ज होना ये उसकी शर्त है। अगर ये पार्टी में मर्ज नहीं होते हैं और 2/3 भी अगर नहीं होता है तो दिक्कत पैदा होगी यहाँ पे। ऐसे में 41 में से
0: बड़ी दिलचस्प बात है कि विधायक यहां पर कह रहे हैं कि हम तो अपोजिशन में बैठेंगे और हमें मार्गदर्शन करिए ममता बनर्जी, सांसद यहां पर कह रहे हैं हम तो एनडीए के साथ जाना चाहते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन कर दिया है संगीत रागी, ये कंफ्यूजन की राजनीति किसकी होती है? आपने भी देखा है कई बार, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, शोपन दास गुप्ता थोड़ी दिन पहले दो तीन दिन पहले की बात है, वो कह चुके हैं कि अब टीएमसी से किसी को नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहां तो वो एनडीए के साथ जाने के लिए तैयार है और लग रहा है कि बीजेपी उनको एक्सेप्ट कर लेगी।
5: देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बाकी नेताओं ने जोर से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का टीएमसीकरण न हो जाए, जैसा कि टीएमसी का सीपीएमकरण हो गया था संस्कृति को लेकर के। तो ये बचाव तो भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए, लेकिन मैं फिर बात कहता हूँ, देखिए आपकी अपनी जीत तो जीत होती ही है, लेकिन दुश्मन को परास्त करना भी एक जीत का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। यदि बिखरती है टीएमसी तो इसलिए नहीं बिखर रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रलोभन दिया होगा या नहीं दिया होगा, इसका हमारे पास के न पुख्ता प्रमाण है न किसी और के पास पुख्ता प्रमाण है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस भी जब सत्ता से आई थी साहिल, तो कांग्रेस और सीपीएम के लोगों को तोड़ी थी, जो जीते हुए भी थे उनको भी तोड़ करके अपने पास लाई थी। तब ये सवाल नहीं उठाया गया था कि तृणमूल कांग्रेस, तब हुआ था कि हम बड़ी पार्टी के साथ अपने राजनीतिक भविष्य को देख रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? जब इतने बड़े पैमाने पर पार्टी के अंदर विद्रोह हो तो समझ लीजिए कि पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं सड़न थी और आप उसे ताकत के बदौलत उसे दबा करके आप रख रहे थे, नहीं तो ऐसा संभव ही नहीं था। दो डिसग्रंटल फोर्स हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, दस विधायक हो सकते हैं, पांच विधायक हो सकते हैं, पांच सांसद हो सकते हैं, लेकिन पार्टी में यदि इतनी बड़ी फूट हो तो इसका मतलब है कि आप अंदर से दीमक की तरह आपके अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी को चाट रहे थे। या फिर ये ध्यान रखिए,
0: मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि कीर्ति आजाद हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है, जरा उनसे ही पूछेंगे क्योंकि उनका दावा है कि 20 सांसद फिलहाल काकोली दस्तीदार के साथ नहीं है, जो उनका दावा है। कीर्ति जी, ये आप दावा कर रहे हैं कि सिर्फ 13 सांसद फिलहाल काकोली घोष दस्तीदार के साथ में है, क्योंकि उनका यह दावा है 20 सांसद उनके साथ में है और वो तृणमूल कांग्रेस के भीतर ही है लेकिन अलग गुट बनाना चाहती है, एनडीए के साथ जाना चाहती है, ये क्या कंफ्यूजन है?
6: देखिए साहिल जी, मुझे तो दावा करना नहीं, जो मुझे फैक्ट है मुझे मालूम है। जिन्होंने 20 सांसदों का दावा किया है उसमें उनका ये नाम तो 20 लोगों का देंगे ना। आपको याद होगा कि जब महाराष्ट्र में गए थे तो एमपीओ के नाम आ गए थे कि कौन लोग गए हैं। मैं आपको 12 लोगों के नाम बता देता हूं जिन्होंने मीटिंग अटेंड की आज, बाकी लोगों से बात हुई, किसी ने ना कोई साइन किया है ना कुछ दिया है। ये बीजेपी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, शुरू से चलता रहता है। अच्छे अच्छे लोग बोलने वाले आते हैं वो भी बोलते हैं, लोगों के मन में ये भ्रांति फैलती है। मैं आपको 12 नाम बताता हूँ, 12 नाम कौन से हैं? 12 नाम हैं, एक तो आपकी काकोली हो गई, दूसरी शताब्दी रॉय हो गई, तीसरे अबू ताहिर हो गए, चौथे अरुण अरूप चक्रवर्ती हो गए, खलीलुर रहमान हो गए, शर्मिला सरकार, असीत मल, जगदीश बसुनिया, कालीपदा सोरेन, प्रसून बैनर्जी, रचना बैनर्जी, पार्थ भौमिक। यह लोग आज भूपेंद्र यादव जी के यहाँ इनकी मीटिंग थी, वहां पर ये 12 लोग गए हैं। बाकी लोग जिनका नाम है उसका लिस्ट तो आउट करेंगे ना साहिल भैया, आउट करेंगे नहीं करेंगे? यह है, आप लोगों के मन में भ्रम फैलाते रहो, उसके बाद फिर डराते रहो और कराते रहो। उसमें से काफी लोगों से बात भी, सबने कहा कि हमें फोन आया, सब कुछ हुआ। सुन लीजिए, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, या तो मैं चुप हो जाता हूँ, आप ही बोलिए। हाँ, तो
0: उन्होंने
6: कहा कि हमें फोन आया, हमसे कहा गया कि तुम नहीं आ सकते तो सिग्नेचर कर दो, तो हमने मना कर दिया। वो तो उसमें, अब मुझे ये बताइए, अब जब ये 20 या 21 सांसदों का कह रहे हैं तो उसकी लिस्ट दे दें। इन्होंने 58 विधायकों की बात कही है, इतने दिन हो गए, लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन भी वहां बन गया, विप भी हो गया, दूसरा धड़ा भी हो गया, स्पीकर ने भी मंजूरी कैसे दे दी? अरे भाई, पार्टी की मंजूरी तो इलेक्शन कमीशन देता है ना, वहां पर रजिस्टर होते हैं, तो कम से कम इन सब चीजों पर तो बता दें, बाकी नाम कौन से 9 है वो सामने खड़ा कर दें।
0: ठीक है, मेरा सवाल यह कि क्या इन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि फिलहाल आप कह रहे हैं कि 12 सांसद गए हैं पार्टी के खिलाफ काम करने के लिए, क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? क्या आपके तरफ से कोई लोकसभा के स्पीकर के पास कोई चिट्ठी भेजी जाएगी, क्योंकि उनके पास फिर 2/3 लोग हैं नहीं, अगर आपका दावा है कि सिर्फ 12 लोग वहां पर गए थे तो?
6: फिर वही बात, आप मेरे दावे की बात मत कीजिए, दावा इनको करना है। मेरे तो 28 के 28 हैं, ये जो 12 नाम आपको गिनाए हैं ये भी मैं कैसे मान लूं कि ये दबाव में ना गए हूं? क्या मालूम है ये वापस आके हमसे कहें कि नहीं साहब, हम तो दबाव में गए थे। तो दावा मेरा नहीं है, दावा बीजेपी का है। दावा इन लोगों का है जो गए हैं, तो ये 21 नाम तो देंगे ना, दावा तो इनका है। आपने यदि कोई चीज कहनी है तो प्रूव आप करेंगे ना कि ये आपके जमीन के कागज हैं, ये आपका म्यूटेशन है, ये आपकी रजिस्ट्रेशन है और ये म्यूटेशन है, ये तो आप दिखाओगे ना। जब आप दावा किसी जमीन पे कर रहे हो तो कागज दिखाओगे ना, तो जब आप दावा कर रहे हो तो 21 लोगों के नाम तो दोगे।
0: ठीक है कीर्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये जानकारी दी इसके लिए। कुणाल घोष यहाँ पर कुछ बात कर रहे हैं, वो जरा सुन लेते हैं, प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस के।
7: बोला कि नेशनल जिनके हाथ में था जिम्मेदारी, वो इनकी कहीं ना कहीं खामी है।
8: हाँ, जो लोग नेशनल बहुत सारे लोग थे जो नेशनल देखे थे, लोकसभा जो पार्लियामेंट्री पार्टी का बहुत सारा सीनियर लीडर्स था, तो क्या उसका कोऑर्डिनेशन नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था? कुछ लोग भाजपा से छुपी छुपी बात कर रहा था, तो यह क्या खबर नहीं था उसका? तो कैसे वो पार्टी चलाया? आज इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सिर्फ भाजपा को ब्लेम करके नहीं चलेगा।
0: गौरव भाटिया जी, यहाँ पर कीर्ति आजाद दावा कर रहे हैं कि सिर्फ 12 सांसद वहां पर थे, और ये भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि बीजेपी इसके पीछे है। एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस का यह दावा है।
9: साहिल जी, ऐसा है, मुझे अच्छा लगा कि आपने कीर्ति आजाद जी को समय दिया। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है कि टीएमसी के प्रवक्ता भी आजकल चैनल पे नहीं बैठते हैं, और राजनीतिक विश्लेषक अपने आप को टीएमसी का प्रवक्ता समझते हैं, तो फिर विश्लेषण कैसा होगा? कीर्ति आजाद जी से अगर वो होते लाइन पे तो मैं जरूर पूछता। संविधान में 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल में 2nd पैराग्राफ में डिस्क्वालिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया दी है। वो कह रहे थे दावा ठोकेंगे। अरे कीर्ति आजाद जी, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अर्जी कौन देगा? और आप कह रहे हैं आपके 12 सांसद कहीं और बैठ के चर्चा कर रहे हैं, और ये इंतजार कर रहे हैं कि जब तक पूरे 40 नहीं आ जाएंगे हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर ये सच है तो आप सोचिए कि टीएमसी की हालत आज क्या है। दूसरी बात साहिल जी, ये पूछना पड़ेगा असली टीएमसी कौन है। संवैधानिक दृष्टि से 80 में से 60 MLA अगर एक तरफ है, अगर 20 सांसद एक तरफ है और वो कहते हैं हम हैं टीएमसी, तो भाजपा का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये सवाल तो आएगा कि ऐसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया कि असली टीएमसी यही है, और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का वर्चस्व।
0: बड़ी दिलचस्प बात गौरव भाटिया जी आपने छेड़ी है, आपने बहुत ही दिलचस्प बात यहां पर छेड़ी, और आप चूंकि अधिवक्ता भी है, आप कानून भी जानते हैं, इसके लिए इस पर चर्चा करने में भी बहुत मजा आएगा। शुभंकर जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये चर्चा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट साफ शब्दों में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये कह चुका है कि विधायकों की संख्या के आधार पर, सांसदों की संख्या के आधार पर यह तय नहीं होगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा। राजनीतिक पार्टी यह तय करेगी कि उनके विधायक दल का नेता कौन होगा और विप कौन होगा। ये जस्टिस चंद्रचूड़ जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाकर अपना फैसला सुना चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर ये सवाल उठ रहा है तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। शुभंकर जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद मुझे कांग्रेस प्रवक्ता के पास भी जाना है, क्योंकि यहां पर ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे एनडीए के एक एक पार्टनर टूट रहे हैं, उस पर भी उनसे सवाल पूछना जरूरी है। शुभंकर जी,
1: सर एक चीज है, पहली तो बात यह है कि बहुत सिंपल सी बात है, डिफेक्शन, और ये मेरा सिर्फ एक बात की शिकायत है कि यहाँ पे जो नेता खुलकर जो है एक पार्टी सिंबल के नीचे लड़ते हैं, उनका यही रहता है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि अचानक बन गया, एक महीने के अंदर अब सारे डिसेंट उठ खड़े हो रहे हैं, एक महीने के अंदर सब चीजें एक वो आ रही है। आपको ये देखना पड़ेगा कि बंगाल की राजनीति में ऐसा आखिर होता क्या है। पहले भी हमने देखा है, बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस पूरी टूटी, कांग्रेस से जो है आपने देखा होगा कि फिर लेफ्ट तक आए, लेफ्ट पूरा टूटा, लेफ्ट से ही फिर तृणमूल पे, जो पार्टी की वहां पे सरकार गई वो पार्टी वहां पे बिखर गई, खत्म हो गई। उसके बाद इस पर से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, मान लेता हूं। लेकिन अब एक बात, अगर हम टीएमसी के इस पर से जाए, यहां पे जो हो रहा था कंटिन्यूअस, सारे जो नेता हैं जो जम के कैंपेनिंग कर रहे थे, कन्वर्सिंग कर रहे थे, वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, आपने इसको देखा होगा क्या, जब तक काउंटिंग के डेट तक 4 मई तक जो है सारे के सारे लोगों में कोई डिसेंट नहीं था, कुछ नहीं था, अचानक डिसेंट पैदा हुआ। यह अंदर इतना दबा हुआ
0: होता है
1: खुलने के लिए।
0: आपने अगर 2022 से महाराष्ट्र की राजनीति देखी होती तो आपको पता चलता कि ऐसा ही होता है, देश की राजनीति में आजकल ऐसा ही होता है।
1: मैं वही बात कह रहा हूँ, ऐसे ही होता है। अरे क्या क्या हमने क्या शिवसेना
0: की हालत जी ऐसे ही होता है ना,
1: क्या हमने बिहार में
0: ऐसे ही होता है ना, संगीत रागी जी
1: को नहीं देखे,
9: बड़ा
1: लोग देख रहे हैं ना
9: विश्लेषक जी को,
5: साहिल
0: संगीत रागी देख रही
5: है, साहिल साहिल
0: संगीत रागी जी, संगीत रागी
9: अच्छा विश्लेषण कर,
5: साहिल साहिल साहिल साहिल जो कहते हैं ना, जब पाला बदलना होता है ना तो जोर से ही बोलते हैं लोग। आपको ध्यान में होगा कि सीपीएम के लोग भी इतना ही जोर जोर से अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, और टीएमसी के प्रवक्ता को बता दूं कि पंचायत चुनाव के बाद कितने कांग्रेस के और सीपीएम के जो काउंसिलर्स थे वो छोड़ करके चले आ गए थे। तो अपनी मर्जी से छोड़ करके आ गए थे या उनका गिरेबान पकड़ करके लाया गया था? सच्चाई इस बात की स्वीकार कीजिए कि तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी,
0: बंगाल बड़ी दिलचस्प जगह बन चुकी है,
5: डिक्टेटर की बात ही बात की है
10: जी।
5: आज
0: यहाँ पर बीजेपी पर तो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस, लेकिन वहां पर अधीर रंजन चौधरी भी वहां पर फांसा डाल के बैठे हुए हैं कि कुछ लोग निकलेंगे तो कुछ कांग्रेस के पास भी आएंगे। कल हमारे साथ जुड़े हुए थे परसों और वो यही कह रहे थे। और इंडिया का तो मामला अब करीब करीब खत्म हो गया। अभी आपकी पार्टी का नेतृत्व सब लोग स्वीकार कर ही लेंगे क्योंकि अब कोई बचा ही नहीं है कि जो आपको भी चैलेंज कर सके वहां पर।
10: देखिए साहिल जी, जो हम ये सारा वाक्य देख रहे हैं और जो सारी चर्चा अभी हो रही थी उसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो डर्टी पिक्चर है ना, ये जो इनका ऑपरेशन लोटस जो इनकी टूल किट का हिस्सा है, ये हम आज से नहीं 2015 से हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये एक एक राज्य को तोड़ते आए। पहले मध्य प्रदेश तो था, फिर कर्नाटका, फिर अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं आपके बीच में तो नहीं बोला था ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए मध्य प्रदेश, कर्नाटका हो, अरुणाचल हो, गोवा हो, ये तमाम सारी जगहों पर हमने देखा इनकी ये टूल किट का हिस्सा था ऑपरेशन लोटस। और वही ऑपरेशन लोटस जो है वो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए चिंगारी के बिना कहीं आग नहीं सुलगती है, ये चिंगारी लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी है। तो ये इनकी डर्टी पिक्चर है, ये ऑपरेशन लोटस है। और इनके जो कहते ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और मुंह में राम बगल में छुरी, ये इस तरह का काम करते हैं। यानी अगर इनसे चर्चा करेंगे तो ये एकदम दिखाएंगे कि ये आदर्शवादी है, लेकिन दरअसल इनकी हकीकत अवसरवादिता की है। ये अवसरवादी है, ये देख रहे हैं टीएमसी में, टीएमसी की
0: सपना जी, अभी आपको भी तो अवसर मिल रहा है ना, जो टीएमसी पर आपदा आई है उसमें कांग्रेस पार्टी को भी तो अवसर मिल रहा है ना।
10: नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात,
0: साल से आप कोशिश कर रहे हैं वहां पर बढ़ने की, पहले लेफ्ट ने बढ़ने नहीं दिया, फिर टीएमसी ने बढ़ने नहीं दिया, अब बीजेपी टीएमसी अगर सपोज मान भी लीजिए खत्म कर रही है तो मौका मिल जाएगा ना।
10: नहीं, हर पार्टी को अधिकार है अपने आप को, अपने आकार को, अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा करने का अधिकार है। वो अधिकार कांग्रेस पार्टी को भी है, वो सभी पार्टियों को है। हम ये नहीं देख रहे कि टीएमसी की कॉस्ट पर आज की तारीख में हमको बढ़ना है। सवाल यह है कि देश के अंदर बहुत बड़े मुद्दे हैं, देश के अंदर जो आने वाले समय में जो लड़ाई होने वाली है वो दो विचारधाराओं की लड़ाई होने वाली है। एक विचारधारा होगी धर्मनिरपेक्षता की, सेक्युलरिज्म की, और दूसरी विचारधारा होगी जातिवाद की और विभाजनकारी राजनीति की। तो ये हमारे इंडिया गठबंधन के लोग जो है उनके उनका ये दृढ़ निश्चय है कि उन्हें सेक्युलरिज्म के लिए लड़ना है, उन्हें संविधान की रक्षा करने के लिए लड़ना है, उन्हें गांधी जी की विचारधारा
0: कर लिया है। लेकिन आज ही की मीटिंग में समाजवादी पार्टी और लेफ्ट ये पूछ रही थी कि कोऑर्डिनेशन कौन करता है, कोऑर्डिनेशन तो होता ही नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हर दो महीने में मिलेंगे, यही दो महीने पहले जब मुलाकात की बात होती थी तब तो कोई मिलने के लिए तैयार था नहीं
11: जी साहिल। और देखिए ममता बनर्जी ने और आम आदमी पार्टी ने नीतीश कुमार को उसका संयोजक नहीं बनने दिया, तमाम बातें हैं। ये आज जो मीटिंग हो रही है इसमें कांग्रेस को आप छोड़ दें तो सब लोग अपना बचाव करना चाह रहे हैं, एक तरीके का कोई रक्षा का एक मैकेनिज्म चाह रहे हैं, कोई डिफेंस मैकेनिज्म बन जाए कि वो बचे। पिछली बार जब मीटिंग हुई थी साहिल आपने देखा होगा, पांच विपक्ष के मतलब गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री थे, आज केवल जो है उमर अब्दुल्ला है। और जो भाजपा का देखिए जो हमारे भाटिया साहब कह रहे थे, उन्होंने बड़ी गंभीर बात कही थी, वो हम लोग उसको चर्चा में मिस कर गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित में सब कुछ संभव है, तो राष्ट्र हित में टीएमसी के सांसद भी आ जाएंगे, राष्ट्र हित में उन्होंने पीडीपी से अलायंस भी किया था, राष्ट्र हित में वो डीएमके को भी अपने साथ ले लेंगे, राष्ट्र हित में वो दो तिहाई बहुमत हासिल कर लेंगे लोकसभा में, मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद वो डिलिमिटेशन बिल भी लाएंगे जिसपे उन्हें एक बार मुंह की खानी पड़ी थी। तो पूरा राष्ट्र हित में ही सारा काम हो रहा है। देखिए देश में राजनीतिक रूप से कैरेक्टर का अभाव है, कांग्रेस एक अकेला राजनीतिक दल है जिसने भाजपा के साथ समझौता नहीं किया। ममता बनर्जी दो बार की सरकार में रही,
0: तो राष्ट्रहित में अब टीएमसी भी
5: नहीं नहीं
9: राशिद जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं,
5: कांग्रेस पार्टी है,
9: लेकिन अगर इस चर्चा में वो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो मैं राशिद जी को जरा कांग्रेस का कैरेक्टर बताना चाहता हूं। जनता तो ये मानती
12: है, बताइए ना, राजस्थान भी क्या,
9: राजस्थान में सरकार थी कांग्रेस, मैं उत्तर दे रहा हूं एक मिनट, राजस्थान में राशिद जी आप याद करिए कांग्रेस की सरकार थी, 6 बीएसपी के विधायक थे, समर्थन कर रहे थे कांग्रेस पार्टी को, मर्ज करा लिया, ऐसा कैरेक्टर है कांग्रेस पार्टी
11: का।
9: अभी चुनाव लड़े डीएमके के साथ और उसके बाद सरकार विजय के साथ बना ली, क्या कैरेक्टर है
10: टीएमसी में करा,
9: तो इसलिए
12: ऐसा है कि
9: कम से कम राशिद जी
12: जब कोई पार्टी अपनी सत्ता खो देती है तो वो किस तरीके से डेसिमेट होती है, खत्म होते लगती है, बंगाल के भीतर तो ये एक महीने के भीतर दिखने लगा है। और आज की स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि जो टूट रहे हैं क्या वो अब पार्टी पर भी दावा करेंगे, क्योंकि अब तक तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी ये ममता बनर्जी की पार्टी के नाम से जानी जाती थी, आज की स्थिति में वो क्या काकोली घोष दस्तीदार की पार्टी के नाम से जानी जाएगी या ऋतव्रत बनर्जी के नाम से जानी जाएगी, क्या वो बीजेपी के साथ में राजनीति करेंगे या नेता विपक्ष के तौर पर राजनीति करेंगे, ये सारे सवाल अभी भी कायम है, धीरे धीरे परतें खुलेंगी, उस पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: इन एसोसिएशन विद
4: समकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े समकूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
3: हिंट बड़े आराम से
4: cool stylish fans enhance home decor with beautiful fans। Sharda University, the world comes together at Sharda University, where are you?
3: Vimal bolo zuban kesri।
5: Punjab National Bank bharose ka prateek।
6: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
7: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
8: ये सहमति बनी कि एसआईआर मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं। वो इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और CBSE परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रस्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रोसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जनसरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। पांचवा, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पर सहमति बनी है, हम सभी यूनानिमसली इसको दी है।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: दिल्ली में 25 दलों के दम के साथ इंडिया गठबंधन जुटा तो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक शिकायत, दो मांग और दो प्लान की बात हुई। शिकायत चीफ जस्टिस से होगी कि SIR से वोट चोरी हो रही है और चुनाव में धांधली। मांगे ये कि एक तो नीट और CBSE मामले में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और दूसरे देश के आर्थिक हाल, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, अत्याचार जैसे मुद्दों पर सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए। फिर प्लान ये बना कि अब हर दो महीने में इंडिया गठबंधन की मीटिंग जरूर होगी और संसद के सत्र में रोजाना प्लान बनेगा। कहां तो खड़गे राहुल ने 25 दलों को न्योता दिया। देश के हालात, SIR, संविधान, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, निजीकरण के मुद्दों पर मंथन के लिए मीटिंग बुलाई। सारे लोग दिल्ली पहुंचे भी, लेकिन इंडिया गठबंधन के मेले की खबर को TMC के अंदर खाने हो रहे खेला ने लूट लिया। TMC विधायक दल में दो तिहाई से बड़ी टूट के बाद अब काकोली घोष की अगुवाई में TMC संसदीय दल में बड़ी टूट होने का दावा चलने लगा। खबर है कि जल्द TMC के 20 सांसदों की सूची लोकसभा स्पीकर को सौंपी जा सकती है।
1: जो सांसद हैं TMC के, वो रिबेल के तौर पर मतलब जा सकते हैं, यानी कि TMC पूरी तरीके से टूट सकती है और 20 सांसदों की लिस्ट जो है वो लोकसभा स्पीकर, लोकसभा सचिवालय को जल्द ही दी जा सकती है।
0: यानी कोलकाता में ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई में 80 में से 61 विधायकों की टूट के बाद दिल्ली में काकोली घोष की अगुवाई में 28 में 20 सांसदों की टूट हो सकती है। ये इत्तेफाक नहीं था जब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी आए थे बंगाल की चुनावी हार के बाद BJP को शिकस्त देने का कोई फॉर्मूला बनाएंगे। उसी मौके पर बंगाल के CM शुभेंदु भी दिल्ली पहुंच गए। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में व्यस्त थी, उधर उनकी पार्टी के सांसद बगावत करके आगे का रोड मैप तय कर रहे थे। पार्टी की सदस्यता छोड़ चुके TMC के राज्यसभा सांसद सुखेंद्र शेखर रॉय के साथ TMC के लोकसभा के 5 सांसदों की तस्वीर सोशल मीडिया पर पहले सामने आई। पूर्वी वर्धमान की TMC सांसद शर्मिला सरकार इस बैठक में थी तो हावड़ा के प्रसून बनर्जी थे, कूच बिहार के जगदीश बासुनिया थे तो झारग्राम के कालीपत सोरेन और बांकुरा की सांसद अरूप चक्रवर्ती भी। TMC के सांसद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से क्यों मिल रहे थे या भूपेंद्र यादव से मुलाकात का मकसद क्या था, किसी ने कुछ बताया नहीं, लेकिन सुखेंद्र शेखर रॉय के बयान ने TMC के भविष्य के संकेत जरूर बता दिए हैं।
2: डकैत, रेपिस्ट, ये लोग सब सामने आ गए, अभी तो सब निकल रहे हैं ना, TV पर दिखाई दे रहा है।
0: दरअसल दो बरस बाद इंडिया गठबंधन का मंथन तो हो रहा है, लेकिन इस मंथन में कोई एक मुद्दा नहीं। देश में अपना कुनबा जोड़ना है, समाजवादी पार्टी को UP पर बात करनी है, RJD में घर के अंदर कलह खत्म नहीं हो रही, JMM को डर है कि राज्यसभा चुनाव में विधायक बिक न जाए, लेफ्ट विजयन के अपमान से परेशान है, NCP कहती अभी तो चुनाव दूर है और सबसे ताजा पीड़ित TMC को अपनी पार्टी बचानी है, क्योंकि जिस तरह TMC दरक गई है इसमें ममता की सियासी विरासत पर शक के बादल है। भले असली TMC की लड़ाई हाईकोर्ट में पहुंच चुकी है जिस पर 11 जून को सुनवाई है, लेकिन तब तक शायद लोकसभा में TMC के संसदीय दल के अंदर भी बड़ी टूट की पुष्टि हो सकती है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक।
3: फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप में दहशत की ये तस्वीरें सोमवार की सुबह की हैं। एक के बाद एक इमारतें गिरती जा रही हैं। जमीन के नीचे इस कदर हड़कंप मचा है कि जमीन के ऊपर जैसे बवंडर ही आ गया। ताश के पत्तों की तरह इमारतें गिरती चली गईं। भूकंप के वक्त फिलीपींस के एक स्कूल की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तबाही ने किस कदर तांडव मचाया होगा। स्कूल में पढ़ने वाले तमाम बच्चे परिसर में ही इकट्ठा हो गए, छोटे बच्चों को अपने पास बैठाए हुए हैं। कुछ बच्चे और स्टाफ स्कूल कैंपस में बने शेड के नीचे बैठे हैं। अचानक शेड हिलने लगता है और सबके सामने भरभरा कर गिर पड़ता है। कुछ लोग उसमें से निकलकर भागने में कामयाब हो जाते हैं तो कई इसकी चपेट में आकर घायल हो जाते हैं। गनीमत इस बात की रही कि ज्यादातर स्कूलों में प्रशासन ने भूकंप की चेतावनी के मद्देनजर बच्चों को खुली जगह पर इकट्ठा कर दिया था। वैसे इस तरह की तबाही की तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो रही हैं, जिनमें फिलीपींस में आज सुबह आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के दौरान का नुकसान और खौफ का साया साफ साफ देखा जा सकता है। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। शॉपिंग मॉल की ये आलिशान बिल्डिंग भी भूकंप के झटकों को ज्यादा वक्त तक झेल नहीं पाई और ताश के पत्तों की तरह गिर गई। इलाके की दूसरी इमारतों का भी वही हाल था। जमीन में मच रही तेज हलचल ने इमारतों की नींव इस कदर हिला दी कि एक के बाद एक इमारतें जमींदोज होती जा रही थीं। धूल का गुबार चारों तरफ दिख रहा था। लोगों में चीख पुकार मची हुई थी और सब बचने के लिए खुली जगहों पर भाग रहे थे। राहत दल जगह जगह लोगों को बचाने के लिए पहुंच रहे थे। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने कई लोग दहशत में सड़क पर ही बैठ गए। कई लोग गाड़ियों को पकड़कर खड़े रहे। अचानक देखते ही देखते सामने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। 5 सेकंड में ही इस इमारत का नामोनिशान मिट गया। अपनी आंखों से इस विनाश लीला को देख रहे लोगों के चीखने की आवाजें आने लगती हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। भूकंप की ये तबाही दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर देखने को मिली, जहां सोमवार को 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया। भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे होने की वजह से भारी नुकसान देखने को मिला है। इस भूकंप की वजह से फिलीपींस और इंडोनेशिया समेत कई देशों की एजेंसियों ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। सुनामी की इस चेतावनी के बाद अब खौफ और ज्यादा बढ़ गया है। समंदर के आसपास रहने वाले लोगों को सावधान रहने को कहा गया है और अपील की गई है कि वो फौरन ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। फिलीपींस के साथ साथ कई देशों ने समंदर से लगते इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी की है। इंडोनेशिया के कई इलाकों में तो 3 मीटर ऊंची लहरों की आशंका जताई गई है। सुनामी की चेतावनी के बाद से लोगों में खौफ और बढ़ गया है। ज्यादातर लोग सुरक्षित इलाकों की ओर जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.
7: तो तृणमूल कांग्रेस के भीतर ये जद्दोजहद जारी है और इस पर हमारी नजर रहेगी। दंगल में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ। आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: पेपर लीक पर इंडिया गठबंधन का बड़ा दाव, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सर्वदलीय बैठक की मांग, सीजीआई को लिखेंगे पत्र, 5 सूत्री एजेंडा तय, बीजेपी ने विपक्ष पर उठाए सवाल। ममता की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट की आशंका, 20 सांसद बनाएंगे अलग गुट, थोड़ी देर में बागियों की शताब्दी, रॉय के घर बैठक, बीजेपी में विलय को लेकर भी चर्चा तय। पटना में गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हुआ फैजल खान, फायरिंग मामले में लगातार दबिश दे रही एसआईटी की टीम, पुलिस ने कोर्ट में सौंपी केस डायरी। ईरान इसराइल में युद्ध फिर शुरू, तेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्ला की ओर से भी हमले, आईडीएफ ने इस्फहान पर किया जवाबी प्रहार। और मुंबई के दादर में बेकाबू बेस्ट बस का कहर, कई गाड़ियों को मारी टक्कर, एक युवक की मौत, 3 घायल, हादसे का सीसीटीवी आया सामने।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: एकजे, द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।

0: विचार विमर्श कुछ नहीं किया गया, इतना क्योंकि उसका पावर मस्तिष्क माथे में अंदर चला गया कि हमको कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया में।
1: बंधु राष्ट्र बने, हमारी कोशिश होगी बंधु राष्ट्र बने।

0: आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। माहौल तो इंडिया गठबंधन की बैठक के बहाने विपक्ष को मजबूत करने का बनाया गया था, लेकिन दिल्ली में ममता बनर्जी के सांसद कुछ ऐसे छिटक गए कि विपक्ष पहले से और कमजोर नजर आया। आज दिल्ली में टीएमसी के लोकसभा के बागी सांसदों की बैठक हुई। सांसद काकोली घोष का दावा है कि 20 सांसदों ने अलग अलग ब्लॉक बनाने एनडीए में शामिल होने का फैसला किया। इन बागी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने को हो जाने की भी अटकलें अब तेज हैं। उधर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का दावा है कि बागियों के साथ सिर्फ 13 सांसद हैं। उधर आज की इंडिया गठबंधन की बैठक में यूपी को लेकर अखिलेश और राहुल के बीच पक्की सहमति बनने की अटकलें हैं। इस पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन बंगाल में ममता के हाल के बाद सवाल उठा है कि क्या यूपी में अखिलेश संभाल लेंगे। और इधर जब विधायकों के बाद सांसद तक ममता बनर्जी के साथ नहीं, तो ऐसे साथियों के साथ कैसे इंडिया गठबंधन बीजेपी की चुनौतियों से लड़ सकेगा। सांसद तक संग नहीं, हम किसी से कम नहीं। हल्ला बोल में हम चर्चा करेंगे, पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में एक और ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की बैठक में पहुंची थी, तो उधर दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद बागी विधायकों जैसी राह पकड़ चुके थे। लोकसभा के 28 में से 20 टीएमसी सांसद अपना अलग गुट बनाने का फैसला कर चुके हैं। बाकी सांसद अभिषेक बनर्जी की जगह काकोली घोष को लोकसभा में अपना नेता चुनना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर टीएमसी के 14 बाकी लोकसभा सांसदों की बैठक भी हुई। इसमें बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए। मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी भूपेंद्र यादव के घर से निकलते देखे गए। इससे पहले राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर रॉय की तस्वीर सामने आई, जिसमें वो टीएमसी के कुछ बागी लोकसभा सांसदों के साथ देखे जा रहे हैं।
1: अभी नहीं, तो मैं पार्टी से बाहर हूँ। हमारा पार्टी का जो हम जब पार्टी में थे उस समय वो लोग जो थे, कोई इसका विचार विमर्श कुछ नहीं किया गया इतना, क्योंकि उसका पावर मस्तिष्क मथे में अंदर चला गया कि हमको कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया में। अरे भाई, आम जनता ने तुमको चुन के भेजा है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने तुमको नीचे गिरा दिया, अब देखो कैसे गिराया।
2: शुकेंद्रता से बात नहीं हुआ मेरा, मगर टीवी में शुकेंद्रता का जो बयान है, मैं ये बयान देखा हूँ, सुना हूँ। शुकेंद्रता का जो उन्होंने बोले है, मैं मेजोरिटी जगह में उनके साथ एकमत हूँ, और खास करके जहां तक पार्लियामेंट का अपर हाउस का फंक्शनिंग था, शुकेंद्रता जो बोले है वो एकदम सही है। अभिषेक बंदोपाध्याय का जो संगठन लोग बोलते हैं, उस संगठन में बंगाली में आप जानते हैं संघ का मतलब क्या है, गठन का मतलब क्या है, उसमें संघ है मगर गठन नहीं है।
0: ममता बनर्जी की पार्टी में मची ये भगदड़ इंडिया गठबंधन की मजबूती पर एक और चोट है। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होंगे, तब अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच कैसा तालमेल बनता है, ये बेहद दिलचस्प हो गया है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बीच यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हुई या नहीं, ये तो साफ नहीं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है। पार्टी ने अपने आधे से ज्यादा प्रत्याशियों को हरी झंडी भी दे दी है। समाजवादी पार्टी अपनी सीटों के बंटवारे से पहले कांग्रेस से उनके प्रत्याशियों की सूची भी मांग सकती है। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर अखिलेश यादव ने बंधु राज बनाने का नया शब्द ईजाद किया है।
3: बंधु राष्ट्र बने, हमारी कोशिश होगी बंधु राष्ट्र बने। बंधु राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहां से चल के आया हूं यूपी में, तो आप देख ही रहे होंगे क्या हो रहा है। अब तो महिलाएं भी नाराज हैं इनसे।
0: वैसे जब इंडिया अलायंस के सहारे बीजेपी के खिलाफ मोर्चे को मजबूत करने का दांव चला गया है, हर दो महीनों में इंडिया अलायंस की बैठक का फैसला हुआ है।
4: ये सहमति बनी कि यस आया मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा।
5: केरल में आपने सरकार बना लिया तो SIR को कोस नहीं रहे, बंगाल में हार गए तो SIR का रोना रो रहे। तो ये जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है, ये सब हम और हिंदुस्तान देख रहा है। अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं, सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है।
0: आज की बैठक में कथित वोट चोरी पर चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखने और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जैसे पांच मसलों पर सहमति बनी है। तब डीएमके और आम आदमी पार्टी की बैठक से दूरी साफ दिखी। वैसे बैठक में 23 दलों के प्रतिनिधि थे। हेमंत सोरेन और उद्धव ठाकरे बैठक में ऑनलाइन जुड़े थे। आज तक ब्यूरो, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता टीएमसी के। अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए हैं। सुनील सिंह साजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी गुट के। और धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपी के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो अभी मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार है बाकी लोगों के जुड़ने का, क्योंकि आज तो बड़ी खबर टीएमसी से ही जुड़ी हुई आ रही है। 20-20 सांसद उनके ऐसा लग रहा है निकलने के फिराक में हैं, और इसी के साथ साथ उन्होंने सीधा काकुली घोषणा तो चिट्ठी तक लिख दी है। लेकिन आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं अभय दुबे जी, आप लोगों की कोशिश है कि इंडिया गठबंधन को एक साथ लेकर आगे जाएं, लेकिन बड़े बड़े प्लेयर्स आज नहीं आए, मतलब आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई, डीएमके में आपका कोई अब वहां से नहीं आ रहा है, वो अलग हो गए हैं, और विजय जिनके साथ आप सरकार बना रहे हैं वो भी नहीं आए हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या ये इस बात में सच्चाई है कि बंगाल हारने के बाद ही ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन को लेकर वापस सीरियस हुई है?
6: अंजना जी, पहली बात तो इंडिया गठबंधन अपने दलों को मजबूत करने के लिए एकत्रित नहीं हुआ है, वो देश की मजबूती के लिए एकत्रित हुआ है। जैसे भारतीय जनता पार्टी देश के प्रजातंत्र पर प्रहार कर रही है, बच्चों का भविष्य भर्ती और प्रवेश परीक्षा में करोड़ों बच्चों का भविष्य बेचा जा रहा है, उससे इंडिया गठबंधन के दल चिंतित हैं। जो आर्थिक बदहाली की कगार पर देश को ला दिया है, जो भारत माँ की भूभागीय अस्मिता और उसकी स्वायत्तता पर अमेरिका की ट्रेड डील जिस प्रकार की जा रही है उसके खिलाफ एकजुट हम लोग हुए हैं। हम लोग जो इस देश के प्रजातंत्र को एसआईआर के माध्यम से, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोट्स के माध्यम से वोट काट कर प्रजातंत्र को खतरे में डाल रहे हैं, उसके लिए एकजुट हुए हैं। जो संविधान संशोधन हमने पारित नहीं होने दिए देश के खिलाफ जो थे, उसके लिए फिर भारतीय जनता पार्टी पीछे के दरवाजे से प्रयास कर रही है, सांसदों को और विधायकों को तोड़कर कुछ सांसदों को अपने साथ लाकर फिर वो वन नेशन वन इलेक्शन और डिलिमिटेशन के बिल, जो संवैधानिक संशोधन बिल है, उस पर काम करना चाहती, उसको हम गठबंधन के लोग होने नहीं देंगे। अपने दोस्त की कंपनी के लिए कंपनियों पर छापे मारे जा रहे हैं, जैसे कोस्टल एनर्जन पर 32 महीने उस आदमी को जेल में रखा, उसकी कंपनी खरीद ली अडानी जी ने, उसके बाद उसको क्लीन चिट मिल गई। वेदांता पर जिस प्रकार ईडी के छापे पड़ रहे हैं, और ये कहा है पूर्व आर्थिक जो पूर्व सलाहकार है प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने जिक्र किया है कि क्यों हिंदुस्तान से कंपनियां छोड़ छोड़कर भारत की कंपनियां बाहर विदेशों में निवेश कर रही है, उसका कारण है कि ये रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस हिंदुस्तान में बहुत बढ़ गया है। तो जो आर्थिक बदहाली कर दी, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल के आप दाम देख लीजिए कहां है, किसानों को खाद की तकलीफ है, प्रारंभ हो गई खरीफ के सीजन में, 7 करोड़ हेक्टेयर खेती के लिए खाद हिंदुस्तान के पास नहीं है, न पेट्रोलियम रिजर्व की तैयारी करके रखी, न खाद का उचित मात्रा में विदेशों से पहले से मंगा के रखी, जबकि इनको पता था कि ये क्राइसिस आएंगे। 2025 में एक बार अमेरिका ने युद्ध किया था ईरान पर, तभी इस बात का आभास समूचे विश्व के देशों को हो गया था। तो इन सारे चीजों के लिए इंडिया गठबंधन दल एक साथ आ रहा है। हाँ, हम जानते हैं कि जो प्रादेशिक कुछ राजनीतिक दलों की अपनी प्रादेशिक प्रतिबद्धताएं हैं, इसलिए हो सकता है नहीं दिखे हो, लेकिन 25 बड़े गठबंधन के दल यहां एकत्रित हुए और यह मैसेज समूचे देश को दिया कि अग्रणी भूमिका अब यह इंडिया गठबंधन दल लेगा, देश को बचाने की जो लड़ाई है वो हम दृढ़ता से लड़ेंगे।
0: सुधांशु जी, अब आप बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभालिए, अब आरोप यह लग रहा है कि अब आप सरकार ही नहीं बनाते, नेता विपक्ष भी तय करते हैं, टीएमसी में तो भगदड़ मच गई है।
7: देखिए, वास्तविकता यह है कि इंडिया गठबंधन का सदन के पटल पर कोई अस्तित्व नहीं है। अभय जी बताएं कि क्या लोकसभा या राज्यसभा में तथा कथित इंडी गठबंधन के दलों ने लिख कर दिया था कि यह हमारा नेता है? नहीं। जैसे एनडीए के सारे सदस्यों ने लिख के दिया हुआ है सभी घटक दलों ने कि श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, आपका लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में कहीं लिख के नहीं दिया हुआ। तो भाई साहब जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो फिर उसके बारे में डिस्कशन करने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा मैं अंजना जी ये कहना चाहता हूं कि जो ये इंडिया गठबंधन सदन के बाहर सो कॉल्ड इंडिया अलायंस अस्तित्व में था यह केवल एम फैक्टर की वजह से था। एम फैक्टर मतलब मोदी जी से नफरत और मुसलमानों से मोहब्बत। ये सब सुविधा भोगी राजनीति करने वाले दल थे कि एक मुश्त वोट मिल जाएगा और जितना ज्यादा हम मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे वो वोट हमारे लिए उतना काम आएगा। मगर समस्या क्या हो जाती है कि राष्ट्रीय स्तर पर तो दोनों के लिए चल जाता है पर जब अपने अपने राज्य में बात आती है तो एम फैक्टर में मोदी विरोध तक तो चल जाता है, मुस्लिम अपीजमेंट में दूसरा दल दूसरे को हिस्सा नहीं देना चाहता क्योंकि उसमें एक तीसरा फैक्टर आता है एम, यानी जो मनी की जो मलाई खाने की संभावना दिखती है उसमें वो दूसरे को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। इस कारण से इनमें स्वाभाविक रूप से आपस में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो जो कुछ हो रहा है तृणमूल कांग्रेस में या जो कुछ हुआ शरद पवार जी की पार्टी में या जो कुछ हुआ शिवसेना में ये एक नैसर्गिक स्वाभाविक परिणति है एक ऐसे दलों की जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती, जिनका कोई संगठन नहीं होता है तो सिर्फ सत्ता ही एक जोड़ने का आधार होती है और अंततः वो सिर्फ और सिर्फ इतना परिवार केंद्रित हो जाते हैं कि वो बाकी चीजों को भूल जाते हैं। जैसे अमित शाह जी ने आप ही के कार्यक्रम में कहा था अंजना जी आपको ध्यान होगा कि महाराष्ट्र में हमने किसी दल को नहीं तोड़ा, एक दल पुत्र मोह में टूटा एक पुत्री मोह में टूटा। तो वहां एक दल पुत्र मोह में टूटा एक पुत्री मोह में, एक यहां भतीजा मोह में टूटा, जो स्थिति हो रही है। तो जो कुछ है वो उनका अंदरूनी कारण है, जो कुछ है वो इंडी गठबंधन के अंदर की संरचना की स्वाभाविक और सहज परिणति है और इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, वो सब कुछ

0: गजब है मातृभूमि, जिनके नेता जाके पाकिस्तान में ये कहते थे सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर, अरे भाई मोदी को हटाना है तो हमें आपकी जरूरत है, इसलिए छोड़िए उस बात को। मगर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, दुबे जी आप मुख्य विपक्षी दल बने हैं इसमें असम में, जरा विधायकों में कितने सिख और ईसाई हैं और कितने हिंदू हैं और कितने मुस्लिम भाई हैं जरा बता दीजिए दर्शकों। 19 विधायकों में 18 मुस्लिम हैं, एक हिंदू है और सिख ईसाई का तो पता ही नहीं। और दूसरी अगर आप सत्ता में जहां आ गए हैं परिस्थिति वश वो है केरल, वहां बताइए आपका सबसे बड़ा दक्षिण भारत में गठबंधन सहयोगी अब इंडी गठबंधन में डीएमके के हटने के बाद मुस्लिम लीग बचा है। भारत के इतिहास में पहली बार कांग्रेस नेतृत्व की सरकार में 5 मंत्री मुस्लिम लीग के हैं। अरे सिख तो छोड़िए ईसाई भी नहीं है। मुनम्बम जो केरल में 100% ईसाई डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां हम चुनाव जीते क्योंकि वक्फ बोर्ड ने उनकी जमीन पे भी कब्जा कर लिया था, आप उनके लिए नहीं आए। तो आप पे सबको पता है, एक ही फैक्टर है और बाकी सब तौल तौल के देखना है कि क्या करना है, वरना बता दीजिए कि इन चुनावों में जिनमें आप लोग जीते हैं ये कितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का प्रपोर्शन
1: है। खबर आ रही है इस वक्त बागी टीएमसी सांसदों पर ऋतव्रत बैनर्जी जो कि लीडर ऑपोजिशन बने हैं उनका बयान आया है, सांसदों का खुलकर बोलना स्वस्थ परंपरा। देखिए सांसद एक के बाद एक टीएमसी के बताया जा रहा है वो पार्टी को लेकर एक अलग गुट बना रहे हैं। और आप सोचिए कल्पना कीजिए 28 में से 20 सांसद अलग हो सकते हैं। लेकिन ऋतव्रत भट्टाचार्य ने अब देखिए बोला है फिराद हकीम पर, फिराद हकीम जो कि मेयर थे वो बहुत करीबी बताए जाते हैं ममता बैनर्जी के। बागी टीएमसी सांसदों पर ऋतव्रत बैनर्जी का बयान, उन्होंने कहा ये स्वस्थ परंपरा है लोकतंत्र में, अगर पार्टी से वो नाराज है तो बोल रहे हैं। और इस बीच फिराद हाकिम को लेकर भी आइए आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है।
2: शाहिदा बने अभिषेक बनर्जी का खास आदमी, वो जगह को तृणमूल के अंदर बोला जाता था यूनियन टेरिटोरी, केंद्र शासित अंचल। तो उस यूनियन टेरिटोरी का बेताज बादशाह जहांगीर बहुत पहले ही भाग गया था। पुष्पा झुकेगा नहीं से पुष्पा एकदम फूल जो है पुष्प गिर गया, अभी वो पकड़ा गया है। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद करेंगे कि जहांगीर के खिलाफ जितना एलिगेशन से उसका प्रूव होना चाहिए और जहांगीर का कहां तक रिलेशन है इसका भी जांच होना चाहिए। जहांगीर खान के साथ डायमंड हार्बर एमपी का क्या क्या संपर्क है, क्या क्या संबंध है, सब अगर जांच के अंदर आना चाहिए, हम लोग ये मांग कर रहे हैं।
1: थैंक यू दादा।
2: एवर बांग्ला,
3: एवर बांग्ला, बांग्ला, बांग्ला, बांग्ला, बांग्ला।
1: लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित जी को दिखाइए, पुरोहित जी बिछड़े सभी बारी बारी, और जब इतने बड़े करीबियों का नाम आ रहा है फिराद हाकिम तो बहुत करीबी, वो कह रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी वो कहलाते थे वहां पे।
4: नहीं नहीं ठीक है, फिराद हकीम को कलकत्ता का मेयर बनाया था ममता बंदोपाध्याय ने ही बनाया था, तो अगर कोई भी व्यक्ति इधर उधर दाएं बाएं जाना चाहता है, गिदड़ों का झुंड कहीं भी जाए शेरनी के चरित्र पर उसे फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो गिदड़ है वो इधर उधर जा सकते हैं, जिनको जाना है, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, जो जा रहे हैं आप देख रहे हैं किधर जा रहे हैं, सारे के सारे एक ही तरफ जा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि मैं एनडीए के पक्ष में जा रहा हूं, उनको डिफेंड किया जा रहा है। कोई व्यक्ति रुपया चोरी टीवी चैनल में नेता भारतीय जनता पार्टी सुधांशु जी जैसे नेता है जो बहुत स्वच्छ बात करते हैं, मगर कोई व्यक्ति को अगर चोर कहा जाता है उसकी सजा जेल के अंदर में होनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में अगर काबिज है तो ये सब बेकार बातें हैं, इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। असली मुद्दा क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस तरह से धांधली करवाई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस चुनाव के अंदर में, उसकी मांग को लेकर के आज इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण मीटिंग दिल्ली में हुई है और आगामी कुछ दिनों में रेगुलर होगी ये मीटिंग, जो इंटरवल्स में होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ताकत जो इतनी बड़ी है ना ये दिल्ली से बढ़ी हुई है। दिल्ली में सारे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करती है भारतीय जनता पार्टी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, जितने भी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज्ञानेश कुमार जी ने क्या किया आपको सबको पता है, 27 लाख लोगों के नाम काट दिए, अभी तक नाम जुड़ रहे हैं। चुनाव हो गया 12 बजे के बाद की हमने 100 डिटेल्स 100 लिस्ट दी कि 100 सीटों पर धांधली हुई है, आपने सीसीटीवी फुटेज लगाया है, आप 10 सीटों की सीसीटीवी फुटेज जारी कर दीजिए, यही तो मांग थी ना। और जो लोग जा रहे हैं, जाने वाले को कौन रोक सकता है, जाने वाले की मैं बात नहीं करूंगा, उनका जाना तय था तभी ना ये नतीजा है, ये तो पहले ही जा चुके थे, जो बचा हुआ है उसको रख करके क्या करेंगे, तो उनको जाना ही बेहतर है, बंगाल की जनता के लिए बेहतर है ऐसे लोग, क्योंकि

0: तृणमूल कांग्रेस के नाम पर तोलाबाजी करता था, अभी वो तृणमूल कांग्रेस के नाम पर अगर जैसे आप लोग आरोप लगाती हैं कि ये व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस का तोलाबाज था, तो ये जो 80 विधायक में से जो 60 जा रहे हैं, उसमें से एक का नाम लेता हूं, संदीपन शाह, जो उन कमेटी के अंदर में टॉप 5 के अंदर में है। संदीपन शाह जहां पे बोरो 7 में, वो बोरो 7, उसके 15 साल उसके पिताजी विधायक रहे 2011 से 2026 तक, और 26 में उनके बेटे को टिकट दिया गया। और क्या ये अपराध है ममता बनर्जी का कि उसके बेटे को भी टिकट दे दिया? अरे भाई, तुमको काम करने का मौका मिला, अब तुम बोल रहे हो अभिषेक बनर्जी, अब
1: तो अरे
0: तुमको
1: वो कह
0: तुम्हारी
1: रहे
0: अपनी
1: भतीजा
0: पार्टी।
1: मुंह में, भतीजा मुंह में पार्टी का आपने सत्यानाश कर दिया, ये कह रहे
0: नहीं नहीं
1: हैं।
0: नहीं, नहीं, नहीं सुनिए ना, भतीजा मुंह में पार्टी का सत्यानाश हो गया, ये पार्टी बनाने वाली ममता बनर्जी है। भतीजा मुंह में नहीं, तुम्हारे जैसे नेताओं के चक्कर में पार्टी का सत्यानाश हुआ है, तुम्हारे जैसे गली गली में जो, सुनिए, अभिषेक बनर्जी को कितनी उम्र है? अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक आप देखिए, उन्होंने उन्होंने अपनी दायरे से रह करके ही सारा काम किया है। आईपैक को आज इल्जाम लगा रहे हैं, ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 2024 में, ये आईपैक काम कर रहा था, 29 सीटें हमारी जीत करके आई थी, तब काकोली घोष दस्तीदार चुप थी, वही आईपैक ने इनको नारा देते थे, स्ट्रेटेजी बनाते थे। अभिषेक बनर्जी एक सांसद है, हमारे नेता है लोकसभा में, और वो जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, उनको अपना दायरा पता है, वो अपना काम करती है। मगर एक काउंसिलर क्या काम करेगा, एक विधायक क्या काम करेगा, एक वार्ड सभापति क्या काम करेगा, ये अभिषेक बनर्जी तय नहीं करते हैं, वहां के स्थानीय नेता काम करते हैं। अगर अब आप काकोली गोल दस्तीदार अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगा देगी, तो एक आरोप लगाना बहुत आसान है, मैं आप पर भी बहुत आरोप लगते हैं अंजना जी, आरोप लगाना आज के दिन में किसी पे भी लग सकते हैं। मगर ममता बनर्जी ने दल बनाया है, और 1989 में ममता बनर्जी हारी थी, 2 साल तक ममता बनर्जी बिना किसी पद के रही है, 1989 टू 1991, उसके बाद केंद्र में मंत्री बनी है। तो ये छोड़ दीजिए कि राजनीति कभी भी राजनीति करने वालों की खत्म होती है, मगर जो लोग पीठ पे
1: सुनिए
0: छुरा
1: ना,
0: भुका
1: अब आपको
0: वो,
1: अपनी पार्टी को बचाने की नौबत आ गई स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। पहले तो आप लोग यही
0: हमारे
1: कह रहे थे कि, सुनिए ना, आप कह रहे थे कि 60 विधायक जो हैं आपके वो किसी लालच में आ गए, डर में आ गए हैं। यहाँ दिल्ली में रहने वाले 20 सांसद आपके मुंह मोड़ रहे हैं, एक ही बात सारे कह रहे हैं,
0: अच्छा
1: मतलब आप
0: सुनिए ना,
1: समझने को
0: सुनिए
1: तैयार
0: ना
1: नहीं है
0: अंजना
1: ज्यादा।
0: जी,
1: हाँ
0: अंजना जी, अंजना जी, उस 20 सांसद में एक भी
1: बैठ
0: सांसद ऐसा
1: हाँ
0: नहीं है जो नीट की परीक्षा पर सवाल कर सके केंद्र में भारतीय जनता पार्टी पर। उस 20 सांसदों में एक का भी आप ट्वीट दिखा दीजिए मुझे, क्योंकि वो सब बंधे हुए लोग हैं, वो डरे हुए लोग हैं, तो वो लोग ऐसा करेंगे? इतना है इस देश के अंदर में घुटन की जिंदगी में लोग जी रहे हैं, जो घुटे हुए लोग हैं, जो खुद
1: ठीक
0: घुटे
1: है
0: हुए
1: सुनील
0: हैं,
1: जी,
0: वो क्या दल को बचाएंगे? उनकी
1: सुनील
0: वजह से
1: जी,
0: दल का शुद्धिकरण हो रहा है,
1: सुनील जी,
0: शुद्धिकरण हो रहा है।
1: अच्छा शुद्धिकरण आप इसको कह रहे हैं, लेकिन क्या ये चैलेंज नहीं है?
0: एकदम
1: ठीक है रुके, अब सुनील जी को भी बोलने
0: चैलेंज तो,
1: दीजिए।
0: देखिए चैलेंज
1: असल तो
0: एकदम
1: अब
0: है।
1: उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, जिसकी तैयारी चारों तरफ चल रही है। अब सवाल यही है कि विपक्ष ये कह रहा है कि हम वोट चोरी पर चिट्ठी लिखेंगे, लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार में भी उठाया गया, ये वही मुद्दा है जो पश्चिम बंगाल में भी उठाया गया। अब ऐसे में सुनील जी, आज सवाल ये है कि क्या विपक्ष में वो एकजुटता है कि आप बीजेपी को चैलेंज कर पाए? क्योंकि अगर कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, क्या सीट शेयरिंग को लेकर कोई सार्थक बात अभी तक हो पाई है? क्या तस्वीर दिख रही है? तमिलनाडु की सारी पार्टियां इंडिया गठबंधन से अलग हो गई, आम आदमी पार्टी भी इस बैठक में नहीं आई, ममता बनर्जी भी तब उत्साहित दिख रही है, इतने दिनों बाद ये बैठक हो रही है जब वो बंगाल में हार गई है, तो फिर कैसी ताकत?
2: देखिए अंजना जी, मैं केवल एक बात कह सकता हूं कि आज इंडिया गठबंधन की बैठक इंडिया को बचाने के लिए थी। और जहां तक सवाल आपका उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने माननीय राहुल गांधी जी के साथ गठबंधन करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हाफ किया है। तो हमारे पास समीकरण है, हमारे पास नारा है, या आप कहिए कि समाजवादी पार्टी के पास एक मंत्र है पीडीए का, जिससे ये लोग हाफ हुए थे और जिससे ये लोग साफ होंगे 2027 में। अब हमारे यहां हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है कि हम सब लोग मिलकर के बंधु राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और ये बंधु राष्ट्र वही है जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था, जिसका सपना डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था, जिसका सपना डॉक्टर लोहिया ने देखा था, या जो हमारे क्रांतिकारी थे जो फांसी पर चढ़े, जो गोली खाए, जिन्होंने पूरा जीवन जेल में काटा, उन्होंने ये सपना देखा था बंधुत्व राष्ट्र का, कि जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान महिलाएं आदिवासी सब मिलकर के रहें, उनमें कोई भेदभाव ना हो, कोई नफरत की भावना ना हो, कोई ऊंच नीच की भावना ना हो, किसी का आरक्षण छीनने की भावना ना हो, जात के आधार पे, धर्म के आधार पर किसी को अपमानित करने की किसी के मन में मनसा ना हो। और एक बात मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह सकता हूं आपके कार्यक्रम में कि अगर आप बीजेपी को देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री 2014 में दो बड़ी उम्मीदों के साथ आए, एक तो भ्रष्टाचार के खिलाफ और दूसरा वो भाषण करते थे परिवारवाद के खिलाफ। भ्रष्टाचार अब उनके लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया और मुझे लगता है दो तीन फैमिली छोड़ दीजिए तो सारे जो इनके घटक दल हैं जो परिवारवाद से आते हैं या इनकी खुद की पार्टी में जो परिवारवाद है तो दोनों मुद्दे नहीं रहे। और सरकार की जिम्मेदारी होती है अंजना जी लोकतांत्रिक मूल्यों को बचा के रखे, तोड़े नहीं, किसी का दल तोड़े दे रहे हैं, किसी के विधायक तोड़े दे रहे हैं, तो इससे लोकतांत्रिक परंपरा नहीं बच रही है। यह समय है, जनता ने आपको मौका दिया है, आप देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, जनता आपको हटाएगी फिर ये भारत और इंडिया और इंडिया गठबंधन सब तरक्की की तरफ जाएंगे। तो सवाल, मैं एक बात और कह दूं, बीजेपी हमेशा परिवारवाद की बात करती है, उत्तर प्रदेश में अंजना दी दो परिवारों के बीच लड़ाई होने जा रही है, एक तरफ पीडीए परिवार है और एक तरफ संघ परिवार है। और देखिएगा जब 27 का रिजल्ट आएगा संघ परिवार को पीडीए परिवार ही हराएगा।
1: चलिए ठीक है, धीरेन्द्र जी जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। विपक्ष एकजुट है।
3: देर से मैं सुन रहा था उत्तर प्रदेश की बात, ये नहीं एकजुट है, ये गाने सुने थे कभी, मैं किस फिल्म का है मुझे पता नहीं, कि खिलते हैं गुल यहाँ मिलकर बिछड़ने को, तो ये लोग तो लगातार मिलते हैं और उसमें से दो इधर उधर होते ही रहते हैं। बैठक इनके क्यों करते हैं, मोदी जी को हटाने के लिए बैठक ये क्यों करते हैं, चुनाव आयोग को हटाने के लिए बैठक क्यों करते हैं, लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए बैठक ये क्यों करते हैं, महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने के लिए। अरे भाई बैठक आप करिए ना, देश के लोगों के लिए बैठक करिए, देश के गरीब के लिए, महिलाओं के लिए करिए, छात्रों के लिए करिए, इसके लिए तो ये करते नहीं है, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए करते हैं। और जहां तक बात ये कह रहे हैं कि पीडीए उत्तर प्रदेश की, मैं बात करना चाहता हूं अंजना जी कि जिस पासी समाज की दो हत्याएं को सांभी में होती है वहां पर बगल में अखिलेश यादव जी जाते हैं लेकिन उस पीड़ित परिवार के यहां वो जाना तक मुनासिब नहीं समझते हैं और पीडीए का नारा देते हैं। तो इस पर मुझे एक एक, एक लाइन में कहना चाहता हूं कि गमछा हरा बिहार में, यूपी में है टोपी लाल, और दलितों का लेकर वोट ये दलितों को ही करे हलाल, जब ये की स्थिति है और पीडीए का नारा दिए जा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश में लगातार इन दिनों भ्रमण कर रहा हूं और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पोषित गुंडों के द्वारा दलितों पर, एक खास पासी समाज पर अत्याचार किया जा रहा है, उसी से ये लोग अभी तक उनको नहीं बकस पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या देश को न्याय देंगे। और बैठक कर रहे हैं, ठीक करें इनके तो सांसद इनको ही जब छोड़ करके जा रहे हैं अंजना जी, इनके विधायक ही इनको बंगाल में छोड़ करके जा रहे हैं, देश की जनता ने पहले छोड़ा, अब इनको विधायकों को भी, इनके विधायकों और सांसदों को भी समझ में आ रही है कि ऐसे नेतृत्व के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं जहां से देश का बुरा होना है, भला होने की बात नहीं है अंजना जी।
1: अच्छा दुबे जी, आपको कई बार आईना दिखाते हैं विपक्ष में रह के, बताइए उद्धव जी क्यों नहीं आए, उद्धव ठाकरे जी नहीं आए, क्या चक्कर है?
4: अंजना जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। देखिए हम लोग मुंबई में, अंजना जी
1: बोलिए बोलिए,
4: अंजना जी आनंद दुबे,
1: हाँ दुबे, हाँ
4: मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग मुंबई में रहते हैं,
5: आनंद जी से आपसे,
4: हम लोग मुंबई में रहते हैं, क्षेत्रीय दल हैं, हमारी अपनी भी कुछ रणनीतियां होती हैं, हमारी अपने भी कुछ काम है, लेकिन इंडिया गठबंधन में तो हम जुड़े, वर्चुअली जुड़े, मोदी जी कहते हैं कभी कभी डीजल बचाओ पेट्रोल बचाओ, तो हमने सोचा यहीं से बैठ के हम इस गठबंधन में हिस्सेदारी करेंगे, अपनी सलाह कर देंगे, वो हमने किया। अंजना जी विषय ये नहीं है कि उद्धव ठाकरे जी वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे, विषय ये है कि जैसे महाभारत में चक्रव्यूह की रचना होती थी तो उसे तोड़ना और बनाना चार लोग जानते थे, एक कृष्ण भगवान खुद जानते थे, एक अर्जुन जी जानते थे, एक उनके बेटे प्रद्युम्न जी जानते थे और एक द्रोणाचार्य जी जानते थे। उसी प्रकार हमारे इस गठबंधन में चक्रव्यूह बनाना और चक्रव्यूह तोड़ना ये हमको जानना होगा, क्योंकि अंततः गत्वा हमें चुनाव जीतना होगा। ठीक है आज हमारी मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग हुई, सकारात्मक मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग के बाद क्या निरंतर हमारी मीटिंगें होंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा नेता कौन है? मैं आज बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उस तरफ से तो एक नेता है आदरणीय मोदी जी, हमारी तरफ से नेता कौन है? क्या चुनाव के 10 दिन पहले हम नेता बनाएंगे? क्या चुनाव के 10 दिन पहले हम रणनीति बनाएंगे? हमें हर दिन चुनाव की तरह लड़ना होगा, हर दिन अपने आप को खपाना होगा, सुबह उठ के रात तक जीना मरना जनता के बीच में होगा, वोटर को तैयार करना होगा, वोटर को घर से खींचकर मतदान बूथ तक लाना होगा प्यार से, और उससे मतदान करवाना होगा, तब हम चुनाव जीतेंगे। और ये एक बहुत बड़ा काम है, सेम उसी चक्रव्यूह की तरह, सेम उसी महाभारत की तरह, कि जिसके लिए अपने आप को युद्ध में पूरी तरह से पांडवों ने खपा दिया। हम ये अगर करेंगे, धरती की कोई पार्टी को हम हरा देंगे। और अगर हम केवल खानापूर्ति करेंगे कि वहां उद्धव जी नहीं आए, अरे उद्धव जी जो कह रहे हैं आप उसे सुनिए, उद्धव जी का प्रवक्ता जो कह रहा है आप उसे सुनिए, हमारी सलाह को सकारात्मक ढंग से लीजिए, हम आपके दुश्मन नहीं है। लेकिन आप केवल एक फॉर्मेलिटी कर देंगे, आज डीएमके नाराज है, आज आम आदमी पार्टी नाराज है, टीएमसी वहां टूट रही है, और भी बहुत सारे दल नहीं पहुंच रहे हैं, कि सीपीएम जैसी पार्टियों के पास सांसद नहीं बचे हैं, तो हम लोग गठबंधन कैसे मजबूत बनाएं? नाम के लिए 25 दल कर दिए और उसमें किसी के पास सांसद नहीं है, तो बताइए कैसे हम करेंगे? हमें 272 सांसद चाहिए, वो 272 सांसद के लिए हमारी क्या योजना है, क्या रणनीति है?
1: एक इंडिया गठबंधन होने के नाते,
4: कार्यकर्ता होने के नाते, मेरे जैसे
1: दुबे जी, ये 20 सांसद जा रहे हैं,
4: वो जो जा रहे हैं अंजना जी, वो
1: 200 पर केस है, 200
4: जो जा रहे हैं,
1: सुनिए ना, अरे वो 200 पर केस है, 200 डर से जा रहे हैं, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा।
4: अरे तो मैं वही बता रहा हूँ कि जो 200 जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? ताकत के पास जा रहे हैं। ताकत बनाइए, समर्थ के नहीं दोस्त गोसाई। कब तक रोइएगा, कब तक विलाप करिएगा? जो ताकतवर होता है उसके सारे अवगुण माफ हो जाते हैं। ताकत कमाइए, ताकत बनिए। बीजेपी कहती है हम किसी को नहीं तोड़ते, लोग खुद टूट जाते हैं, इसलिए कहती है हमारे को, इंडिया गठबंधन को। अगर इंडिया गठबंधन
1: एक आईना तो अखिलेश जी ने भी दिखाया था, अखिलेश जी ने, हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें, तो इशारा तो आप ही की तरफ था ना, जब उन्होंने ममता बनर्जी से हारने के बाद उनसे भी वो मिले, स्टालिन से भी मिले, 8 मई का उनका ट्वीट दिखा रही हूं, आप ही को आईना दिखा रहे थे। अभय दुबे जी,
5: जी अच्छा, आपने मुझसे पूछा अंजना जी,
1: हाँ,
5: 8 मई जी देखिए, पहले
1: का
5: तो
1: पोस्ट दिखा रही हूँ सर, अगर आवाज नहीं आई तो एक बार सुन लीजिएगा, हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे, ये उन्होंने पोस्ट डाला था अखिलेश जी ने 8 मई को, उसमें उन्होंने कहा था कि मतलब वो एक तरफ ममता बनर्जी से भी मिल रहे हैं और एमके स्टालिन से भी मिल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं छाड़ साथ, आप ही को सुना रहे थे।
5: नहीं नहीं नहीं, हम हमारे गठबंधन दल के प्रमुख हिस्सा हैं अखिलेश जी, और मुश्किलों में कोई गठबंधन दल का कोई भी साथी किसी का साथ नहीं छोड़ता है। जहां तक आपका तमिलनाडु का प्रश्न है, तो तमिलनाडु राज्य का साथ हमने दिया है, हमने किसी दल से धोखा नहीं किया। दूसरी बात, ममता जी के लिए चूंकि हमने कई बार डिबेट में कहा है कि वहां राज्यों की परिस्थितियां अलग होती, कई बार हम राज्यों में आमने सामने इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन जब देश को बचाने की लड़ाई है तो साथ में लड़ेंगे। मैं सुधांशु जी से प्रश्न करना चाहता हूं, कांग्रेस के तो 664 एमएलएज हैं, आउट ऑफ विच 520 हिंदू है, 78%, 12% मुस्लिम है, 10% दूसरे दल के लोग हैं। मुझे बताइएगा ये कौन है? गुलाम मोहम्मद मीर, अब्दुल राशिद, नासिर अहमद लोन, फकीर मोहम्मद, एक लंबी लिस्ट है जिसको कश्मीर में मुसलमानों को टिकट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश और असम में नहीं दोगे, क्योंकि पोलराइज करना है वहां चुनाव। देश के लोगों, आंखें खोलकर, कान खोलकर सुनिए गौर से, आतंकवादियों तक को टिकट दिए इन्होंने, सैफुल्ला फारूक 10 साल जेल काट के आया, कश्मीर से टिकट दिया, तारिक अहमद मीर पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाले को टिकट दिया, तालिब हुसैन जो मंच साझा करता है, गृहमंत्री के जनता ने पकड़ा आतंकवादी, आतंकवादियों से भी परहेज नहीं है। लेकिन देश में ये दो हिस्से करना चाहते हैं।
1: अब जवाब दीजिए सुधांशु।
5: अब सुधांशु जी ने कहा कि लोकसभा या राज्यसभा में एक मिनट, इन्होंने कहा लोकसभा या राज्यसभा में इन दलों को इन्होंने मेंशन नहीं किया। और अरे साहब, आपकी सरकार बैसाखियों पर थी, आपको आवश्यकता है क्योंकि आपने सरकार बनाई है। यहाँ कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा में दर्ज कराएं कि इतने राजनीतिक दलों का गठबंधन है। हमारा गठबंधन, हमने कहा कि राज्यों में अलग स्तर पर हम चुनाव लड़ते हैं और देश को बचाने के लिए हम साथ आते हैं। तो ये अब आप अपने पापों पर इससे पर्दा नहीं डाल सकते कि कितने कितनों को टिकट दिया, बताइए आपने असम में मुसलमान को, तो फिर जाएगा कहाँ? जीतेंगे तो सही ना, सभी धर्म के लोगों का हिस्सा है यहाँ, बराबरी का, इसलिए सब धर्म के लोग जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी जब अवसर आता है तब ईद पर कहते हैं कि मुसलमान के घर का खाना खाता हूं मैं, मुस्लिमों से विदेशों में जा जाकर गले लगते हैं, और यहाँ रोज टेलीविजन की डिबेट में आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं।
1: अब जवाब सुनिए सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु,
6: मुझे लगता है, देखिए अभय दुबे जी कांग्रेस के प्रवक्ताओं में शालीनता से जवाब देते हैं, परंतु मुझे लगता है उनको मैं दोष नहीं दे रहा हूं, ये कांग्रेस ऐसे मूर्खतापूर्ण तर्क दे सकती है कि हम विपक्ष में हैं तो हमें इंडिया अलायंस का लीडर बताने की जरूरत ही नहीं थी। जब हमारे नेता प्रतिपक्ष थे सुषमा जी और जेटली जी तो पूरे एनडीए के थे, जब हम विपक्ष में थे तो अटल जी एनडीए के नेता थे, बाद में अडवाणी जी एनडीए के नेता थे, आपका इंडिया का नेता कौन? ये विपक्ष में रह के बचने का प्रयास। अब आइए आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं, मौका परस्त कौन? तमिलनाडु में अभी आप साथ में चुनाव लड़े और बुरी तरीके से जनता ने हराया, और मौका परस्ती की इंतहा की सत्ता के लिए चले गए डीएमके के साथ। वैसे वो उनकी मजबूरी थी अंजना जी, क्योंकि जो टू चार पांच विधायक आए थे, अगर राहुल गांधी जाके खड़े नहीं होते विजय के शपथ ग्रहण में तो वो भाग जाते। वैसे ही इनको पता था कि अपने नेताओं की फितरत क्या है, जो आकर ये लोग आके यहां पे स्वयं ही बोलने लगते हैं। और भाई साहब, आतंकवाद वाली बात पे अभय दुबे जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, गुजराल जी की सरकार 1997 में क्यों गिरी थी? क्योंकि एक जैन कमीशन की रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि राजीव गांधी जी की हत्या में जो एलटीटी के आतंकवादियों की भूमिका थी उसमें डीएमके के नेता शामिल थे, और कांग्रेस ने कहा था कि यूनाइटेड फ्रंट से डीएमके को बाहर करो नहीं तो हम सरकार गिरा देंगे, और यूनाइटेड फ्रंट ने बाहर नहीं किया तो डीएमके के आतंकवाद में संलिप्त होने के आरोप में भारत में एक सरकार गिराई कांग्रेस ने, और फिर उसी डीएमके से मिलके गजब का हाथ मिलाया, और सत्ता से बाहर जाते ही डीएमके को झटका मारा और पलटकर टीवीके से हाथ मिलाया। आप लोग तो अद्भुत हैं, और मैं देश को बताना चाहता हूं, इस देश में पहली बार प्लेन हाईजैक कब हुआ? जनवरी 1978, लखनऊ से दिल्ली जाने वाली प्लेन, और जो हाईजैकर्स थे उनको कांग्रेस ने टिकट देकर एमएलए और एमपी बनाया, और वो 15-15, 20-20 साल उत्तर प्रदेश में रहे, जिन्होंने हाईजैक होने में डिमांड क्या थी, इंदिरा गांधी से केसेस हटाए जाएं, इंदिरा गांधी को जेल से बाहर निकाला जाए। ऐसा अद्भुत उदाहरण, वाकई आप लोग जितना साथ देते हैं, ये मुझे लगता है मैंने सिर्फ दो फैक्ट बताए डीएमके के साथ क्या किया, और आज जो कुछ आप बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी जुलाई 2011 में बोल चुके हैं आतंकवाद को तो समाप्त ही नहीं किया जा सकता, ये ऑन रिकॉर्ड राहुल गांधी का दिया गया बयान है, मगर क्या किया जा सकता है, मोदी जी ने सत्ता में आके दिखाया। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं,
5: तो इसलिए टिकट देंगे
6: आपके साथ समस्या है कि गठबंधन
5: राहुल जी ने बयान
6: तो साथ में रहकर, एक मिनट एक बात करूं, अबे जी साथ में रहकर अभी अखिलेश जी को दिखाया जा रहा था। अंजना जी याद करिए, ये तो 2023 में गठबंधन में थे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में, अबे जी आपके ही राज्य में क्या बोला था कमलनाथ जी ने, अखिलेश वखिलेश को छोड़ो, साथ में रहते हुए क्या गजब का मैं भाईचारा था। और अखिलेश जी ने मध्य प्रदेश में जाके क्या बोला था, बहुत चालू पार्टी है ये कांग्रेस, ये तो साथ में रहते हुए आप थे, इसलिए सबको पता है कि आपके अंदर की हकीकत क्या है, वही स्वाभाविक रूप से बाहर आ रही है, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ देखने की जरूरत है।
1: चलो बाबे जी जल्दी से जवाब दीजिए, आ रही हूं दुबे जी, आ रही हूं उधर,
5: अपने दामन की सियाही अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले। क्या कहा शकुनी चौधरी के पिताजी ने, बिहार की जनता मोदी जी के लिए क्या कहा था, बिहार की जनता एकजुट हो गई तो जमीन में गाड़ देंगे, उनके बच्चे को मुख्यमंत्री बना दिया आपने। नीतीश बाबू ने क्या कहा था याद नहीं है क्या आपको, कि डीएनए चेक कराओ, मोदी जी ने जैसा अपमान किसी ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे नीतीश के लिए, कि इससे ज्यादा अश्लील भाषा किसी सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति ने आज तक नहीं बोली, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूं, और हमको पाठ पढ़ा रहे हैं आप। आपने बुनियादी बातों का जवाब नहीं दिया। आपने जितनी कहानियां सुनाई वो आपको अधिकार संपन्न नहीं करती कि घोषित सजायाफ्ता आतंकवादी को पाकिस्तान में जिसने ट्रेनिंग ली अजहर मसूद का शिष्य, उसको टिकट दे दोगे आप? उसको टिकट दे दोगे? उसको सैफुल्ला फारूक को? आप तालिब हुसैन को, तारिक अहमद मीर को अपनी पार्टी में रख लोगे? क्या बात करते हो? और इधर हिंदू मुसलमान करते जाते हो। आपके एक प्रांत में कहते हैं अभी वेस्ट बंगाल में सरकार बनी। अरे गो माता नहीं होती? 14 साल के बाद काट के खाओ प्रेम से, ये कह रहे हो आप लोग? आपके हेमंत तो विश्वा शर्मा कह रहे हैं कि चुपचाप घर में बैठ कर गाय को खा लो, और दूसरे प्रांत में जा चुनाव है वहां घर में घुस घुस के लोगों को मार दोगे? इसी इतनी बेशर्मी मत कीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी, कम से कम जो अपने पहले आपने कहा है वक्तव्य और व्यवहार के अंतर को समाप्त कीजिए। ये देश धीरे धीरे आपके चरित्र को समझने लगा है। अब हर बार सिर्फ हिंदू मुसलमान करके अपने पापों पर पर्दा नहीं डाल।
1: छोटा सा जवाब आ रही दो बजे
6: बस छोटा सा जवाब। देखिए हम हिंदू मुसलमान तो नहीं कर रहे, देश आपके चरित्र को समझता है। क्यों भाई साहब, ये किसका डायलॉग है? कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के मुख्यमंत्री तेलंगाना के, 100% मुसलमानों का वोट मिलना चाहिए, 1% भी कम नहीं होना चाहिए। कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, और भाई साहब आतंकवाद पे आप बोलते हैं? हाफिज को साहब किसने कहा? कांग्रेस ने। ओसामा को जी किसने कहा? कांग्रेस ने। जाकिर नायक को शांति का मसीहा किसने कहा? कांग्रेस ने। बुरहान वानी को भटका नौजवान किसने कहा? कांग्रेस ने। अफजल गुरु के साथ गलत हुआ, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है नारे वालों के साथ कौन खड़ा रहा? कांग्रेस। इशरत जहां को बेटी कहने वाले इंडी गठबंधन वाले लोग थे। और अगर आप यह भी देखना चाहें तो भाई साहब याकूब मीनन की जुडिशियल किलिंग हुई है किसने कहा? कांग्रेस ने। और हाफिज सईद ने अगर तारीफ की है तो कांग्रेस पार्टी की तारीफ की है। इसलिए आतंकवाद से आपका जो गठबंधन है वो बहुत पुराना है। ये सब तो कहा कांग्रेस ने।
1: ठीक है, एक बार आनंद दुबे जी को जल्दी से दिखा दे। दुबे जी छोटा छोटा सा रिस्पांस हो गया। अब ये रोज की बात,
4: एक ही बात अंजना जी छोटा सा।
1: ठीक है दुबे जी जल्दी से।
4: अंजना जी बीजेपी कह रही है यम, कांग्रेस कह रही है यम, हम कह रहे हैं न यम न डी। डी मतलब देश। देश कैसे जानती हैं आप? हमारे शरीर में आत्मा भी रहती है और मन भी रहता है। मन हमारा विकास है तो आत्मा हमारा धर्म है। हमें दोनों लेकर चलना होगा। जिस दिन या इंडिया गठबंधन या विपक्ष आत्मा की बात सुनने लगेगा, मन तो अपने आप दौड़ पड़ेगा, लेकिन हम आत्मा की सुनते नहीं, सनातन की सुनते नहीं, हम धर्म को लेकर चलते नहीं। हमें धर्म को लेकर चलना पड़ेगा।
1: आपको टोक रही हूँ, बड़ी खबर आ रही है विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। पिघला स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत बताई जा रही है। दर्दनाक घटना ये विशाखापट्टनम में, पिघला स्टील और पिघले स्टील से गिरने से 8 मजदूरों की मौत हो गई। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बताएंगे कि फिर से शुरू हुई ईरान इजराइल जंग के बीच क्या नेतन्याहू ट्रंप की जासूसी कर रहे हैं। दुनिया में तनाव के बीच शी जिनपिंग किम जोंग उन से मिलने आखिर क्यों पहुंच गए, और इसके बाद आपको बताएंगे कि हिंदू लड़का आयुष मलिक मोहम्मद अली कैसे बन गया, और आखिर में आपको बताएंगे महंगे सिलेंडर पर दावों का सिलेंडर कितना खाली है। देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
6: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
5: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
11: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
12: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
10: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
13: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
11: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
10: जहां खबर वहां खबरदार।
14: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
15: Digital first channels, 11 billion views, 85 million unique viewers, one-stop solution for your brand, regional or hyper-local reach. Har shahar, har kasbe tak, advertise karne ke liye email karein.
10: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल।
16: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी।
10: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल।
16: CBSE के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
10: छात्रों को दिया मंच।
16: उज्मा हमारे साथ कोटा से, और अदिति मुंगेर से हैं, और तानिया कोटा से हैं, और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
17: नहीं, देखिए इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
18: IIT मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
10: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर।
16: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब सरकार की तरफ से CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
10: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।

0: रूस और यूक्रेन के बीच का घमासान अब सिर्फ सरहदों या मोर्चों तक सीमित नहीं रहा, ये एक दूसरे को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ने के दौर में पहुंच चुका है। कीव पर हुए भीषण रूसी हमले से कुछ ही घंटे पहले यूक्रेन ने भी रूस के भीतर एक बड़ा और रणनीतिक पलटवार किया। यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी ताकत, उसके तेल कारोबार पर सीधा वॉर किया। यूक्रेनी ड्रोनों ने रूस की तेल रिफाइनरीज और पंपिंग स्टेशनों को निशाना बनाया, जिससे बड़े पैमाने पर आग लग गई। यूक्रेन का दावा है कि सारातोव तेल रिफाइनरी पर हमला बेहद सटीक था और इसका बड़ा हिस्सा जल उठा। अब जंग का तरीका बदल चुका है। टैंक और सीमा पार करने की जगह ड्रोन से सीधे दुश्मन के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। कहावत है कि युद्ध किसी एक मोर्चे पर नहीं लड़ा जाता। यूक्रेन के ड्रोन यहीं नहीं रुके, एक दूसरे हमले में किरोव इलाके के लाजारेवो तकनीकी तौर पर रिफाइनरी में लगी इन आगों को भले ही बुझा लिया गया हो, लेकिन इस तरह के तबाह हुए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने में महीनों का वक्त और करोड़ों की रकम लगती है। ये हमला साफ दिखाता है कि युद्ध अब दोनों देशों के आम नागरिकों की जिंदगी और उनकी अर्थव्यवस्था को कितनी गहराई से जख्मी कर रहा है। इसी बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को खुले पत्र के जरिए बातचीत का प्रस्ताव दिया, लेकिन रूस ने इसे खारिज कर दिया। ऐसे में शांति की उम्मीदें फिलहाल धुंधली नजर आ रही हैं।
1: मुझे लगता है कि उनकी दिलचस्पी बातचीत में नहीं है, लिहाजा हमें इस पत्र और उसके लिखने वाले को संबोधित नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं हमारे लड़ाकों और सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों को संबोधित कर रहा हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, साथियों सैनिकों और नाविकों, एडमिरलों, जनरलों, अधिकारियों, देश की निगाहें आप पर टिकी हैं, देश को आप पर गर्व है और आप ही पर सबकी आशाएं टिकी हैं। भाइयों अपने काम में पूरी मुस्तैदी से लगे रहिए।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
7: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: दिल्ली में एक और ममता बैनर्जी इंडिया अलायंस की बैठक में पहुंची थी, तो उधर दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद बागी विधायकों जैसी राह पकड़ चुके थे। लोकसभा के 28 में से 20 टीएमसी सांसद अपना अलग गुट बनाने का फैसला कर चुके हैं। बाकी सांसद अभिषेक बैनर्जी की जगह काकोली घोष को लोकसभा में अपना नेता चुनना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर टीएमसी के 14 बाकी लोकसभा सांसदों की बैठक भी हुई। इसमें बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए। मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी भूपेंद्र यादव के घर से निकलते देखे गए। इससे पहले राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर रॉय की तस्वीर सामने आई, जिसमें वो टीएमसी के कुछ बागी लोकसभा सांसदों के साथ देखे जा रहे हैं। ममता बैनर्जी की पार्टी में मची ये भगदड़ इंडिया गठबंधन की मजबूती पर एक और चोट है। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होंगे, तब अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच कैसा तालमेल बनता है, ये बेहद दिलचस्प हो गया है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बीच यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हुई या नहीं, ये तो साफ नहीं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है। पार्टी ने अपने आधे से ज्यादा प्रत्याशियों को हरी झंडी भी दे दी है। समाजवादी पार्टी अपनी सीटों के बंटवारे से पहले कांग्रेस से उनके प्रत्याशियों की सूची भी मांग सकती है। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर अखिलेश यादव ने बंधु राज बनाने का नया शब्द ईजाद किया है। वैसे जब इंडिया अलायंस के सहारे बीजेपी के खिलाफ मोर्चे को मजबूत करने का दांव चला गया है, हर दो महीनों में इंडिया अलायंस की बैठक का फैसला हुआ है। आज की बैठक में कथित वोट चोरी पर चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखने और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जैसे 5 मसलों पर सहमति बनी है। तब डीएमके और आम आदमी पार्टी की बैठक से दूरी साफ दिखी। वैसे बैठक में 23 दलों के प्रतिनिधि थे। हेमंत सोरेन और उद्धव ठाकरे बैठक में ऑनलाइन जुड़े थे। आज तक ब्यूरो।
1: तब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है।
2: 2027 के सियासी समर में बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर सवार है, जहां अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हमले जारी हैं।
1: 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था।
2: योगी विकास से लेकर डबल इंजन तक की खूबियां गिना रहे हैं, तो वहीं पिछली सरकारों की खामियां भी बता रहे हैं।
1: 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था, यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था, रामलीलाओं के आयोजन में अड़चने डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा।
2: उधर अखिलेश को योगी सरकार में जंगल राज नजर आ रहा है। उधर गाजीपुर में कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर विपक्ष और सरकार के सहयोगियों के सुर एक जैसे नजर आ रहे हैं। किसी को अपने वोट बैंक की टेंशन सता रही है, तो कोई वोट बैंक में सेध मारने की तैयारी में है।
3: इतना बड़ा तो दुर्दांत अपराधी नहीं है कि जिससे आप एनकाउंटर, अब मुख्य आरोपी उसको बनाया भी नहीं गया, मुख्य आरोपी कोई और है। मुख्य आरोपी को तो पकड़ने दूर है, उसको छुएंगे नहीं। आज जो साधारण है, जो वोट अभी गाजीपुर हारे हैं, अब गाजीपुर में बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है, जौनपुर में बिंदुओं की संख्या अधिक है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ के हम सारी सीटें हार गए हैं।
4: बहुत ही जो घटना हुई है एनकाउंटर की, तो आखिर जब पुलिस पकड़ सकती थी मुजरिम को, तो एनकाउंटर क्यों करा गया? तो पहला सवाल तो ये है, ये अपने आप में पूरी कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह उठाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते हैं कि प्रशासन और जो प्रशासन है, जो नियम है, जो कानून है, उससे चले।
2: बहरहाल यूपी में चुनावी पिच पूरी तरह से तैयार है, जहां हर पार्टी अपने हिसाब से बैटिंग कर रही है। आज तक ब्यूरो।

0: हल्ला बोल में इंडिया गठबंधन की बैठक पर आप देख रहे थे बहस, हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, अब देखिए सात तक नेहा के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: बजने वाले आज तक के इस खास शो में अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नीट पेपर लीक पर इंडिया गठबंधन का बड़ा दांव, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सर्वदलीय बैठक की मांग, सीजेआई को लिखेंगे पत्र, 5 सूत्रीय एजेंडा तय, बीजेपी ने विपक्ष पर उठाए सवाल। ममता की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट की आशंका, 20 सांसद बनाएंगे अलग गुट, शताब्दी रॉय के घर बागियों की बैठक, बीजेपी में विलय को लेकर चर्चा तेज। पटना में गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हुआ फैजल खान, फायरिंग मामले में लगातार दबिश दे रही है एसआईटी की टीम, पुलिस ने कोर्ट में सौंपी केस डायरी। ईरान इजराइल में युद्ध फिर शुरू, तेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्ला की ओर से भी हमले, आईडीएफ ने इस्फहान पर किया जवाबी प्रहार। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, पिघला स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौके पर मौत, आग की तेज लपटें उठी। तो सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की, जहां पर एक स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। भीषण हादसे में 8 मजदूरों की जान चली गई जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्लांट के यूनिट में पिघले स्टील के गिरने से यह हादसा हुआ। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सीएम ने अधिकारियों से बात कर स्थिति की जानकारी ली है और प्रभावितों को हर संभव सहायता मुहैया कराने के निर्देश दिए। तो घटना स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप सोच सकते हैं एक बड़ा बॉयलर अगर पिघली हुई स्टील से नीचे गिर जाए तो क्या तबाही मचेगी। 8 मजदूरों की मौके पर ही जान चली गई। स्टील प्लांट में यह बड़ा हादसा, कई घायल बताए जा रहे हैं। पिघला हुआ स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौके पर ही मौत हुई। और अब बात पश्चिम बंगाल में मचे घमासान की करेंगे, क्योंकि विधायक दल में टूट के बाद अब टीएमसी के संसदीय दल में बड़ी टूट होने वाली है। काकोली घोष ने पुष्टि कर दी है कि टीएमसी के 20 सांसद जल्द ही स्पीकर को चिट्ठी देंगे। टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों का एक गुट बना है जिसकी आज दिल्ली में सीएम शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात हुई है।
1: जिस वक्त सोनिया गांधी से गले मिलकर ममता बनर्जी गठबंधन की गांठ को मजबूत बनाने की कवायद कर रही थी, ठीक उसी वक्त टीएमसी का मेला लुटा जा रहा था। खबर है कि काकोली घोष की अगुवाई में जल्द ही टीएमसी के 20 सांसदों की सूची लोकसभा स्पीकर को सौंपी जाएगी। यानी कोलकाता में ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई में 80 में से 61 विधायकों की टूट के बाद दिल्ली में काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई में 28 में से 20 सांसदों की टूट हो सकती है।
2: हम 20 लोग थे जब हमने आज सिग्नेचर किए हैं, तो हम लोग एक सेपरेट ब्लॉक मतलब तैयार किए हैं। हम लोगों का वॉइस यहाँ से मतलब सेपरेट ब्लॉक से उठेंगे अभी।
1: इधर ममता गठबंधन को मजबूत करने में जुटी थी, उधर पार्टी की सदस्यता छोड़ चुके टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय के साथ टीएमसी के लोकसभा के 5 सांसदों की तस्वीर सोशल मीडिया पर तैर रही थी। पूर्वी बर्धमान की टीएमसी सांसद शर्मिला सरकार थी तो हावड़ा के प्रसून बनर्जी थे, कूच बिहार के जगदीश बसुनिया थे तो झारग्राम के कालीपत सोरेन और बांकुरा के अरूप चक्रवर्ती भी थे। टीएमसी के ये सांसद सीएम शुभेंदु अधिकारी से क्यों मिल रहे थे या भूपेंद्र यादव से मुलाकात का मकसद क्या था, किसी ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन सुखेंदु शेखर रॉय के बयान ने टीएमसी के भविष्य के संकेत जरूर दे दिए हैं।
3: परसों से उन्होंने लड़ाई किया बाम मोर्चा के खिलाफ, वो लोग पीछे चले गए, दलाल लोग, चोर, डकैत, रेपिस्ट, ये लोग सब सामने आ गए। अभी तो सब निकल रहा है ना, टीवी पर दिखाई दे रहा है।
1: साफ है कि जिस तरह से टीएमसी दरक गई है उसमें ममता की सियासी विरासत पर शक के बादल घेर आए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: तो आपने देखा किस तरीके से एक तरफ टीएमसी के भीतर घमासान मचा है, दूसरी ओर टीएमसी के नेताओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। आज टीएमसी नेता जहांगीर खान को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया, मगर उसके पहले जहांगीर खान के घर पर लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की।
1: जिस घर के चैनल को तोड़ा जा रहा है वो जहांगीर खान का है। जिस कार को चकनाचूर किया जा रहा है वो भी जहांगीर खान की है। जय श्री राम के नारे लगाते हुए इन आक्रोशित लोगों ने पहले जहांगीर खान की कार को चकनाचूर किया, उसके बाद उसके घर का ताला तोड़कर घर में घुस गए। देखिए, घर में घुसने के बाद ये जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। एक दर्जन से ज्यादा लोग घर में घुस आए हैं, वो घर का सामान तोड़ रहे हैं, घर पर लगी पेंटिंग्स को बर्बाद कर रहे हैं। घर का एक एक सामान इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। इधर जहांगीर खान के घर पर तोड़फोड़ हो रही थी, उधर नेपाल बॉर्डर पर जहांगीर खान गिरफ्तार हो गए। जहांगीर खान पर हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और दंगा भड़काने समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। जहांगीर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज है, जिसकी जांच ईडी कर रही है।
4: जो गुंडे हैं, क्रिमिनल है, उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। किसी बॉर्डर पे भागने का प्रयास कर रहा था नेपाल बॉर्डर, इसलिए पकड़ लिया।
1: हल्ता में रीपोलिंग के समय से ही जहांगीर खान फरार थे, लेकिन अब वो गिरफ्तार हैं। शुभेंदु सरकार के बनने के बाद टीएमसी नेताओं पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। तापस सेन गुप्ता, कोलकाता आज तक।
0: उधर टीएमसी में भी खलबली मची हुई है। इधर आज इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में बैठक की और इस बैठक में विपक्ष ने तय किया कि वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की गई।
1: दिल्ली में 25 दलों के दम के साथ इंडिया गठबंधन जुटा तो मोदी सरकार के खिलाफ एक शिकायत, दो मांग और दो प्लान की बात हुई। शिकायत चीफ जस्टिस से होगी कि एसआईआर से वोट चोरी हो रहा है और चुनाव में धांधली हो रही है। मांगे ये, एक तो नीट और सीबीएसई मामले में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और दूसरे देश के आर्थिक हाल, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, अत्याचार जैसे मुद्दों पर सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए।
5: शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए।
1: प्लान ये बना है कि हर दो महीने में इंडिया गठबंधन की मीटिंग जरूर होगी और संसद के सत्र में रोजाना प्लान बनेगा। इंडिया गठबंधन की बैठक के तुरंत बाद बीजेपी का जवाब भी आया।
6: केरल में आपने सरकार बना लिया तो एसआईआर को कोस नहीं रहे, बंगाल में हार गए तो एसआईआर का रोना रो रहे। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश।
1: दरअसल दो बरस बाद इंडिया गठबंधन का मंथन तो हो रहा है, लेकिन इस मंथन में कोई एक मुद्दा नहीं है। कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ देश में अपना कुनबा जोड़ना है, समाजवादी पार्टी को यूपी पर बात करनी है, आरजेडी में घर के अंदर ही कलह खत्म नहीं हो रही, जेएमएम को डर है कि राज्यसभा चुनाव में विधायक बिक ना जाए, लेफ्ट विजयन के अपमान से परेशान है, एनसीपी कहती है कि अभी चुनाव दूर है और सबसे ताजा पीड़ित टीएमसी को तो अपनी पार्टी बचानी है। ऐसे में इंडिया गठबंधन आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे मजबूत होगा, ये अपने आप में सवाल है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू, दिल्ली से पीयूष मिश्रा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे पर घमासान छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई करोड़ों रुपए की राशि गायब पाई गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश ने इस मामले की न्यायिक जांच और कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। वहीं मंदिर ट्रस्ट ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चढ़ावे की पाई पाई का लिखित हिसाब मौजूद है। ट्रस्ट की सफाई पर अखिलेश यादव ने फिर पलटवार करते हुए कहा कि अगर सभी ट्रस्टी एक साथ बैठ जाएं तो सच तुरंत सामने आ जाएगा। अखिलेश का आरोप राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ था, लिहाजा विवाद को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बयान जारी किया।
7: हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है, यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
8: आपकी सोच बाबरवादी है अखिलेश जी, सनातन के वैभव के प्रतीक माता सबरी की चर्चा आप नहीं करेंगे? माता सबरी ने किस ढंग से प्रोफेसर रामलला का इंतजार किया था? आप भगवान जटायु की भी चर्चा नहीं कर पाएंगे? आप महर्षि वाल्मीकि के महाकाव्य को भी भूल गए हैं? किस ढंग से प्रभु राम लला के चरित्र का वर्णन उन्होंने दुनिया में पहुंचाने का काम किया? समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी, कृपया अपनी सोच को सनातन संस्कृत के खिलाफ मत करिए, आने वाले दिनों में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा।
0: उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद पर बुलडोजर चलने के बाद अब मस्जिद परिसर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर और चांद सितारों वाला झंडा बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने मस्जिद के मुतवल्ली समेत 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।
1: आई लव मोहम्मद के ये पोस्टर, चांद सितारे वाला ये झंडा संभल में नए विवाद को हवा दे रहे हैं। एक दिन पहले संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद की मेहराबें और मीनारें गिराई गई थी। मुस्तफा कादरी मस्जिद को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया था, लेकिन उसके बाद मस्जिद परिसर में आई लव मोहम्मद वाले ऐसे 49 पोस्टर्स मिले, साथ में ये झंडा बरामद हो गया। इस बरामदगी के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश पैदा हुआ और प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी।
9: थाना नखासा क्षेत्र में कसेरुआ गांव में मस्जिद की ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा था, उसके उसी दौरान बिल्डिंग में से कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है, जिस पर संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में 7 व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है।
1: पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है। अब समाजवादी पार्टी के सांसद सवाल उठा रहे हैं कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर रखना गुनाह कैसे हो गया?
10: तो ठीक क्या है, मैं भी कह रहा हूँ मेरे पास भी आई लव मोहम्मद का पोस्टर है, मैं भी झंडा हरा रंग का रख सकता हूँ, कौन सा मुकदमा दर्ज करेंगे? हिंदुस्तान का संविधान, पहले IPC और भारतीय संहिता के तहत कौन सा ऐसा धारा लगती है, किसके तहत मुकदमा दर्ज करेंगे?
1: अब मस्जिद पोस्टर और झंडे पर जंग छिड़ी हुई है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
0: और अब बात जयपुर की, जहां पर आज दुरानी मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन ने कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत की। सड़क चौड़ीकरण का काम कई दिन से चल रहा था, लेकिन मस्जिद को बीच में छोड़ दिया गया था, लेकिन आज इसे ढा दिया गया है।
1: चंद सेकंड में मस्जिद जमींदोज हो गई। ये जयपुर की नूरानी मस्जिद है, इसे ध्वस्त करने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी। इस कार्रवाई से पहले सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिए गए थे। नूरानी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन आज तय था। सुबह ही सरकारी अमला बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचा। बुलडोजर एक्शन से पहले अतिक्रमण अभियान चलाने पहुंची टीम ने पहले मस्जिद को ढक दिया, फिर शुरू हुआ बुलडोजर अभियान।
11: जयपुर के नंदपुरी इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्यवाही आज सोमवार तड़के सुबह से जारी थी। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है जयपुर के नंदपुरी का, यहाँ पर भारी पुलिस की मौजूदगी है और पुलिस की भारी जाब्ते की मौजूदगी में यहाँ पर नूरानी मस्जिद का अवैध तौर पर खड़ा किया गया, कब्जे वाली जमीन पर इमारत को ध्वस्त किया जा चुका है।
1: जयपुर में मालवीय नगर से जगतपुरा तक जाने वाली इस मुख्य सड़क को चौड़ा करने का अभियान कई दिनों से जारी था। इसे चौड़ा करने के लिए 2011 में मास्टर प्लान बना था। सड़क को 80

0: की जान नहीं गई। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये महाराष्ट्र में बारामती की तस्वीरें हैं। नशे में धुत ट्रक ड्राइवर स्टंट कर रहा है, अचानक ट्रक अनियंत्रित हुआ और सड़क पर गेंद की तरह लुढ़कता चला गया। वो तो शुक्र था कि आसपास चलने वाले लोग सावधान थे, इसलिए बड़ा हादसा नहीं हुआ। अलबत्ता ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। दोनों हादसों में लोगों की जान बाल बाल बची। बारामती से वसंत मोरे के साथ अखिलेश कुमार, चित्रकूट आज तक।
1: रबा शेयर बाजार की करेंगे। कारोबार के दौरान बिकवाली के दबाव के चलते घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 719 अंक कमजोर होकर 73,524 और निफ्टी 224 अंक टूटकर 23,123 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार की गिरावट के बीच रुपए पर भी दबाव बना रहा। डॉलर के मुकाबले रुपया 56 पैसे कमजोर होकर 95.74 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सराफा बाजार में आज गिरावट का रुख जारी रहा। 10 ग्राम सोना 3,422 रुपए सस्ता होकर 1,50,768 रुपए पर आ गया है, जबकि चांदी प्रति किलो 13,790 रुपए टूटकर 2,41,160 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई है। बाद भारत में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हरा दिया है। यह टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की अब तक की सबसे बड़ी जीत है।
0: तीन दिन में ही अफगानिस्तान को तबीयत से टेस्ट क्रिकेट सिखा दी टीम इंडिया ने। करीब करीब तीन सेशन में दो बार उसे ऑल आउट कर ऐतिहासिक जीत हासिल की। पारी और 300 रन की धमाकेदार जीत भारत के नाम। अफगानिस्तान को पी टेस्ट की सबसे बड़ी विजय पताका फहरा गया हिंदुस्तान। अफगानिस्तान के बल्लेबाज एक के बाद एक सरेंडर करते जा रहे थे। पहली पारी में उसकी पूरी की पूरी टीम 152 रन पर पवेलियन लौट गई। फिर फॉलो ऑन के बाद दोबारा बल्लेबाजी करने उतरी तो दो सेशन तक निकाल नहीं पाई। कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर 7 बल्लेबाजों को चलता कर दिया। नतीजा ये हुआ कि दूसरी पारी में अफगानिस्तान की टीम 112 रन ही बना सकी और एक पारी और 300 रन से मुकाबला हार गई। वैसे मैच के हीरो रहे मानव सुधार, जिन्होंने करियर के पहले ही मैच में पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 1 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया की मुल्लापुर टेस्ट में ये जीत उसके टेस्ट इतिहास की पारी और रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत है। आज तक ब्यूरो।
1: वही फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया और जिससे कई इमारतों को वहां भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि भूकंप की चपेट में आने से 5 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप के बाद अब सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई।
0: फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप में दहशत की तस्वीरें हैं। ये एक के बाद एक इमारतें गिरती जा रही हैं। भूकंप के वक्त फिलीपींस के एक स्कूल की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तबाही ने किस कदर तांडव मचाया होगा। कुछ बच्चे और स्टाफ स्कूल कैंपस में बने शेड के नीचे बैठे हैं। अचानक शेड हिलने लगता है और सबके सामने भरभरा कर गिर पड़ता है।
1: और अब तक अपडेट यह है कि इस भूकंप से 32 लोगों की जान चली गई है। अब अगली खबर का रुख करेंगे। बीते 2 महीनों से ईरान शांत था, लेकिन लेबनान में इसराइल के हमलों को लेकर वो बार बार चेतावनी दे रहा था, लेकिन बीती रात ईरान ने फिर से इसराइल के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया और इन हमलों में दूसरी ओर से हिजबुल्ला ने भी उसका साथ दिया है।

0: मिसाइलें दाग दी। ये हमले कितने भीषण थे, कितने घातक थे, विध्वंस का प्लान कितना बड़ा था, वो हमलों की इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने इसराइल के उत्तर की ओर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। बड़ी बात यह है कि अप्रैल में हुए संघर्ष विराम के बाद ईरान की ओर से यह इसराइल पर पहला बड़ा हमला हुआ है।
1: तो अभी इस बुलेटिन में साथ बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akaje, the number one.
5: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: Hey, it's Harry Douglas for Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
8: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
7: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
8: They score!
7: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
9: Orient skincare brand.

एक बार फिर इसराइल पर बारूदी हमलों की बौछार हो रही है। देर रात ईरान और हिजबुल्ला ने दो और इसराइल के शहरों को टारगेट किया और तबाही मचाने के लिए

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स, ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
12: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
11: सिंह जैसी
13: शक्ति मुझ में।
14: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
16: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार, एकदम सॉलिड।
17: इन एसोसिएशन विद
18: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
17: हिंट, बड़े आराम से
18: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
17: विमल बोलो जुबा केसरी।
0: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
19: शेयर बाजार, जहां कुछ लोग सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं। आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है, कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिस्तर की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव दिए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिस्तर पर।
20: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
21: हम आपको बता दें कि फरवरी 2026 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की विस्तार से जांच कराने का फैसला किया था। इस जांच का मुख्य उद्देश्य मदरसों में आने वाली विदेशी फंडिंग के स्रोतों का पता लगाना था। सीएम योगी ने भी बार बार चेतावनी दी है कि यूपी में किसी भी तरीके के धार्मिक अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
22: जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई, आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं।
23: पर ये तो बन चुके हैं, अब
22: बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह एक खुदा को स्वीकारे नहीं।
21: उत्तर प्रदेश में सरकार की सख्ती सिर्फ अवैध मदरसों तक ही सीमित नहीं है, कुछ ऐसे फैसले और एक्शन भी सामने आ चुके हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी है। हाल ही में सीएम योगी ने ईद में सड़कों पर नमाज पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले नए मदरसों को सरकारी पैसा नहीं देने का योगी ने फैसला किया था। 2022 में गैर रजिस्टर्ड और अवैध मदरसों के सर्वे के आदेश पारित हुए। नवंबर 2023 में यूपी में हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा सैकड़ों अवैध बूचड़ खानों को बंद कराया जा चुका है। साथ ही मई 2025 में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम में बीजेपी सरकारों के कामकाज का तरीका बता रहा है कि उनकी सियासत का फॉर्मूला क्या है, और इससे ना तो उन्हें गुरेज है और ना ही परहेज है। खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव की जंग ही इन्हीं मुद्दों की बुनियाद में लड़ी जाएगी। संभल से अभिनव माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।

0: उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत में सीएम योगी का निशाना क्लियर है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही यूपी पर राज करेगा वाले चुनावी नारे को बीजेपी ने काफी पहले चुनावी रणनीति में तब्दील कर लिया था। लेकिन हिंदुत्व ब्रांड सियासत पर कब्जा करने वाली बीजेपी को अब अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व वाली रणनीति से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण से लेकर महाकुंभ के कोहराम तक, मर्यादा पुरुषोत्तम के सामाजिक न्याय से लेकर शंकराचार्य और गौ माता के बचाव तक समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार और बीजेपी के हिंदुत्व को घेरने की कोशिश की है। लेकिन पिछले दो हफ्तों से आए सीएम योगी के बयानों पर गौर करें तो गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड से लेकर गौ माता के दर्जे तक और धर्मांतरण से लेकर माफिया राज के खात्मे और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण तक सीएम योगी के बयान हार्ड हिंदुत्व की धारा में रंगे दिख रहे हैं, जिसके मुकाबले में समाजवादी पार्टी भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह अख्तियार करती दिख रही। समाजवादी पार्टी आए दिन हर मौके पर ये याद दिलाती है कि उनकी ओर से केदारेश्वर मंदिर बनाया जा रहा है। कभी रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी अब वकीलों में रामचरितमानस की प्रतियां बंटवाती है, और तो और ब्राह्मणों के वोट को रिझाने के लिए भगवान परशुराम की मूर्तियां बनवाने से लेकर सरकारी छुट्टी तक की मांग करती है। दरअसल 2024 में संविधान के नाम पर चोट खा चुकी बीजेपी को लगता है कि हिंदुत्व ही वो कार्ड है जो संविधान बदलने वाली अफवाह से बिखरे दलित पिछड़े वोट को एकजुट कर सकती है।
1: अखिलेश यादव भी सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर आगे आए हैं। अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर एक और इटावा में बनवाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव रामचरितमानस वकीलों में बंटवाते हैं, और जो नेता धार्मिक लाइन को क्रॉस करते दिखते हैं उन्हें अखिलेश यादव की फटकार का भी सामना करना पड़ता है। अखिलेश यादव की कोशिश है कि वो पीडीए के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व का जवाब देते दिखाई पड़े। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: लीड पेपर लीक पर इंडिया गठबंधन का बड़ा दांव, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सर्वदलीय बैठक की मांग, सीजीआई को लिखेंगे पत्र, पांच सूत्री एजेंडा तय, बीजेपी ने विपक्ष पर उठाए सवाल। टीएमसी में बड़ी टूट की आशंका, 20 सांसद बनाएंगे अलग गुट, शताब्दी रॉय के घर बागियों से मिलने पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी में विलय को लेकर चर्चा तेज। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, पिघला स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत, मौके पर उठी आग की तेज लपटे।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, बागी सांसदों के टीएमसी से अलग होने पर अब शुभेंदु अधिकारी उनसे मिलने पहुंचे हैं, पहले एमएलए अलग हुए थे, अब टीएमसी में सांसदों के अलग होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शताब्दी रॉय के घर बागी सांसदों की बैठक हो रही है, 20 टीएमसी सांसद ऐसे हैं जो काफिली घोष बता रही है, जो हमारे साथ हैं, शुभेंदु अधिकारी इनसे मिलने पहुंचे हैं। तो क्या कुछ पक रहा है इस वक्त टीएमसी के भीतर, ये दरअसल समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। उनकी करारी हार के बाद पहले एमएलए छिटक गए, अब एमपी साथ नहीं दे रहे हैं, 20 बागी सांसद हैं। पीयूष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, क्या खबर मिल रही है, 20 ही नंबर है या फिर ज्यादा भी हो सकता है?
3: जी देखिए, फिलहाल अगर हम नंबर की बात करें तो 20 तृणमूल कांग्रेस सांसद जो है वो एक साथ हैं और वो बागी हो चुके हैं। उनका ये साफ कहना है कि वो केंद्र सरकार के साथ और राज्य सरकार के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल का विकास चाहते हैं और इसीलिए पहले बागी विधायक हुए पश्चिम बंगाल के अंदर, और अब केंद्र की अगर राजनीति की बात करें तो 29 में से 20 तृणमूल कांग्रेस के सांसद बागी हो चुके हैं। उनकी बैठक इस वक्त तृणमूल कांग्रेस सांसद शताब्दी रॉय के घर पर चल रही है। अब मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं, देखिए ये शताब्दी रॉय का घर है और कुछ देर पहले ही यहाँ पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे हैं और उन्होंने भी उन्होंने इससे पहले भी इन सांसदों से मुलाकात भूपेंद्र यादव के घर पे की थी, लेकिन इस वक्त बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में तिलक मार्ग पर चल रही है, जहां पर शताब्दी रॉय के घर पर ये सभी बागी सांसद पहुंचे हैं और इनसे मिलने के लिए शुभेंदु अधिकारी पहुंच चुके हैं, जिसका ये साफ साफ कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, ये दर्शाता है कि तृणमूल
0: हलचल इस वक्त तेज है। पहले एमएलए अलग कर छिटक हो गए और अब एमपी के अलग होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाकर ये पूरी साजिश रची। कई साल तक लड़के को बरगलाया गया, उसका ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद शुरू हुई लव जिहाद की कहानी।
4: कभी लव जिहाद जिसमें हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया, कभी जिम जिहाद जिसमें जिम के बहाने धर्मांतरण वाली साजिश रची गई, तो कभी दोस्ती जिहाद। गाजियाबाद में 28 तारीख को जो हुआ उसे यही नाम दिया गया। यूपी में ऐसी तमाम संगीन वारदातों के बीच अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर और देखकर आपको यकीन नहीं होगा। लव जिहाद की नई साजिश सामने आई है। इस बार एक मुस्लिम लड़की को आगे कर साजिश रची गई है। यूपी के शामली में इस कथित धर्मांतरण और संपत्ति हड़पने की साजिश से हड़कंप मचा हुआ है। एक ही चेहरे के दो रूप। इस युवक का नाम है आयुष मलिक, ये यूपी के शामली का रहने वाला है। आयुष जन्म से हिंदू है। आयुष का परिवार भी दिन रात अपने धर्म और आस्था के प्रति गंभीर रहने वाला है, लेकिन आयुष ने एक दिन अचानक भेष बदल लिया। अब आयुष की नई पहचान मोहम्मद अली है, इसका नाम बदला है और अब ये मस्जिद के दर पर जाकर इबादत में जुटा है।
5: आपका नाम क्या हो चुका है? आयुष मलिक नाम है, डॉक्यूमेंट्स में वही नाम है, मोहम्मद अली जो मैंने नाम अपनाया।
6: अच्छा, किस तरह से आप मोहम्मद अली बने इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए।
5: मोहम्मद अली नाम तो मैंने अभी रखा, इस्लाम में मैं कैसे आया वो धीरे धीरे करके सीख कर आया।
4: आयुष मलिक जो अब मोहम्मद अली है, उससे सवाल किया गया कि उसका धर्म परिवर्तन कहाँ हुआ, जवाब सुनिए हैरान रह जाएंगे।
5: धर्म परिवर्तन कहीं पे नहीं होता, धर्म परिवर्तन तो अंदर से होगा, कभी भी करवा कर सको आप। इसमें कोई मौलवी प्रोफेशन काम नहीं होता। अच्छा। कि कोई मौलवी आपका निकाह पढ़ाएगा, मौलवी किसी का जनाजा पढ़ाएगा, या मौलवी आपका धर्म परिवर्तन कराएगा। अगर आप खुद से सीखने के काबिल है तो आप खुद से सीखो, खुद से सीखना चाहिए।
6: अच्छा,
4: आयुष का पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका है। आयुष बताता है कि पाकिस्तान के एक मौलाना का वीडियो देख देख कर उसके भीतर इस्लाम अपनाने की इच्छा हुई।
5: ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी का देखता था, डॉक्टर इशरार अहमद का ज्यादा देखता था, वो पॉइंट पकड़ा जा रहा।
6: अच्छा, डॉक्टर इशरार अहमद पाकिस्तानी मौलाना है जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं,
5: तो धर्म परिवर्तन की तरह।
6: अच्छा,
5: धर्म की बात बताते हैं। अब आप किसी की बात सुनकर उससे प्रभावित हो गया और आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आप कह सकोगे?
6: तो पाकिस्तानी मौलाना इशरार अहमद से आप प्रभावित हैं?
5: प्रभावित सभी से हूँ, प्रभावित मैं इस्लाम से हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ, तो मैं प्रभावित उन सब से हूँ। तो ये सिर्फ एक तरीका कि उन्होंने बयान बताया कि समझाया, कुरान शरीफ को समझा दिया, वो बात बता दी थी इनकी हदीस की।
4: ऐसा नहीं है कि आयुष ने एक दिन में इस्लाम अपना लिया, वो काफी वर्षों से इस्लाम के रंग ढंग सीख रहा था, वो मौलवियों को सुनता था और उस पर अमल करता था।
6: क्या कनेक्टिविटी था कि आप मोहम्मद अली
5: कुछ सीखता था? ऐसा कोई कनेक्टिविटी नहीं है कि मुझे आज पसंद आया और कल से मैं मुसलमान हो गया। धीरे धीरे करके सीखा, जाना पहचाना, निभाया उसको, अपनाया उसको।
6: लंबा वक्त लगा?
5: बहुत लंबा वक्त लगा, 2007-08 से सीख रहा सर।
6: शादी कहाँ
5: से सीख रहे? शादी मस्जिद के पास जगह थी, वहाँ पे भी।
4: आयुष चोरी छिपे इस्लाम की डगर पर चल चुका था, वो चोरी छिपे नमाज अदा करता था, लेकिन इस बार उसने खुले में नमाज पढ़ी तो मालूम चल गया कि उसके अंदर परिवर्तन तो बहुत पहले हो चुका था।
5: पहले ईद की नमाज बाहर पढ़ता था, इस बार पहली बार ईदगाह में सामने में पढ़ी, तो तस्वीर आई, वो वायरल कर दी उन्होंने, फोटो वोटो खींच के, बाहर लोग जानते नहीं, यहाँ जाने सब एक दूसरे को, छोटा शहर है।
6: अब आयुष मलिक नहीं बनना है?
5: आयुष मलिक तो आयुष मलिक, डॉक्यूमेंट्स तो आयुष मलिक ही है। वो आप पूछ रहे इनडायरेक्टली कि हिंदू नहीं बनना है, जैसा मेरे पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि हिंदू बनो।
4: अब सवाल ये है कि क्या आयुष मलिक धर्मांतरण कराने वाले किसी रैकेट का शिकार हुआ? इसका जवाब भी बिना लाग लपेट के आयुष देता है।
6: चूंकि इस तरह से देश में धर्म परिवर्तन का एक बड़ा रैकेट है, अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही?
5: धीरे दूर है सर जी, वो मेरे से दूर है। अगर कोई रैकेट है इस तरीके का तो मेरे से अलग है, उसका मेरे से कोई मतलब नहीं है।
6: नहीं, आप मुझे एक बात बताइए कि जो आपने बोला कि भाई शुरुआत में, तो शुरुआत कहाँ से हुई? एकदम शुरुआत 17 साल का आयुष मलिक, 18 साल का आयुष मलिक, 13 साल का आयुष मलिक, कैसे शुरुआत हुई आपकी?
5: जैसे बीपी बढ़ा, हाथ कंपे, उन्होंने कहा कि कुल अल्लाह पढ़ो,
6: दिखाओ
5: बीपी बढ़ा, थोड़ा सा बीपी बढ़ता है तो हाथ कांपते हैं, ऐसा कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, पर बीपी बढ़ा तो हाथ कांपते हैं, तो उन्होंने कहा कुल अल्लाह पढ़ो, आपको ताकत आएगी।
6: किसने बोला ये कुल? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको बीपी बढ़ा और हाथ कांपने लगे?
5: यूट्यूब पे कोई था, वो उसने बताया कि जैसे ये पढ़ो तो आप कुछ पढ़ोगे तो आपके अंदर ताकत आएगी। तो मैंने पढ़ा, धीरे धीरे करके सीखा जाना, ये नहीं है कि पढ़ा मेरी ताकत आ गई एकदम, अरे ये हाथ कांपने बंद हो गए, वो तो धीरे धीरे करके सीख रहा था।
6: कौन सा यूट्यूब था जिसको देखा और आपके हाथ कांपने बंद हो गए?
5: ऐसा कुछ नहीं है जी, हाथ तो अब भी कांप रहे, देखो हाथ कांपने थोड़ा बंद हो गए, मैं तो आपको रेंडमली वैसे मैसेज बता रहा।
6: और क्या क्या यूट्यूब में देखा आपने?
5: YouTube में और क्या क्या देखा? YouTube में बहुत सारी चीजें देखी, ये तो पूरी जिंदगी वीडियो एक मिनट में कैसे बताऊंगा।
4: आयुष बताता है कि कैसे उसके इस्लाम अपनाने की जर्नी कैसी थी।
5: दीन की बात है, सबके सामने है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ो, खुले दिल से पढ़ लो, कोई भी पढ़ सके, किसी को अच्छी लगी किसी को बुरी लगी, क्या पता कोई 10 में से एक चीज अपना भी ले। मैंने 10 में से 8 चीज, 9 चीज, 10 चीज अपनाई।
6: तो वो सब यूट्यूब में मोस्टली देखा आपने?
5: यूट्यूब में है, सारी अवेलेबल है।
6: सजेस्ट किसने किया था?
5: सजेस्ट की बात नहीं है, आप कुछ भी आपके मन में सवाल आएगा आप गूगल करते हैं, यूट्यूब करते हैं, गूगल करोगे यूट्यूब के लिंक आते हैं, इसमें सजेशन की बात नहीं है कुछ भी।
4: आयुष मलिक मानने के लिए तैयार नहीं है कि किसी ने उसका धर्मांतरण कराया, वो बार बार एक ही रट लगाए हुए है कि उसे इस्लाम में रुचि थी, वो बचपन से ही पूजा पाठ करने के बजाय नमाज पढ़ना पसंद करता था।
6: देखिए ये आयुष मलिक मोहम्मद अली, अब ये इतने इन्फ्लुएंस्ड, जरा इनकी तस्वीर दिखाइए, ये इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं, और इन्वेस्टिगेशन में, कई इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की बातें सामने आई हैं कि जब किसी का ब्रेन वॉश किया जाता है कोई किसी का धर्मांतरण कराया जाता है तो उसको डीरेडिकलाइज करना काफी ज्यादा टफ होता है। शामली पुलिस ने एक बेहतरीन काम किया इस मामले में और चांदनी कुरैशी उसके पिता को गिरफ्तार किया है। मौलवी फिलहाल फरार चल रहा है, लेकिन बीते दिनों जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई यूपीएटीएस की बाकी अदर एजेंसियों की, एक सुनियोजित धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है और इसमें जब किसी का ब्रेन वॉश होता है, वो अपना धर्म परिवर्तन करा लेता है तो वो इतना इन्फ्लुएंस होता है कि उसको डीरेडिकलाइज करना काफी टफ होता है। तो ये आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली थे। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, शामली आज तक।
0: आरोप यह है कि मुस्लिम परिवार लगातार उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता रहा और जब लड़के ने धर्म परिवर्तन किया तो उसका निकाह करा दिया गया। हालांकि लड़के के घर वाले कह रहे हैं कि वो निकाह फर्जी था क्योंकि आरोपी मुस्लिम परिवार की नजर करोड़ों की संपत्ति पर थी। अब धर्मांतरण के शिकार आयुष ने आज तक से बातचीत में पूरी कहानी बता दी।
4: शामली धर्मांतरण केस में वाकई चांदनी कुरैशी की नजर आयुष मलिक की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर थी। आरोप है कि चांदनी और उसका परिवार आयुष के पिता की 100 करोड़ के करीब की संपत्ति हड़पना चाहता था।
7: मैं शामली के उसी मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ जहाँ फिलहाल आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली रहता है। अगर आप ये देखेंगे तो इस मेडिकल स्टोर का नाम है भारत मेडिक शॉप और ये जो प्रॉपर्टी है केवल यही ही प्रॉपर्टी 20 करोड़ से ज्यादा की मानी जाती है और इस तरह की कई प्रॉपर्टी आयुष मलिक और उसके पिता की है। पुलिस की तहकीकात में ये सामने आया है कि इन्हीं प्रॉपर्टी को किसी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए पहले आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, फर्जी निकाहनामा भी तैयार किया गया था और ये सब कुछ चांदनी कुरैशी उसके पिता और उसके परिवार ने किया था। चांदनी कुरैशी को गिरफ्तार किया जा चुका है, उसके पिता इस्लाम को गिरफ्तार किया जा चुका है, कुछ मौलवी इस मामले में फरार चल रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो बेशकीमती ये प्रॉपर्टी है जिसका नाम भारत मेडी शॉप है। होलसेल जो दवाओं का काम भी है इनका, शामली के सबसे रईस माने जाते हैं आयुष मलिक के पिता। और जो जानकारी लंबी तहकीकात के बाद सामने आई कि आयुष मलिक का पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया जा चुका है, वो इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है। आज तक इंडिया टुडे की टीम ने आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली से बातचीत की, वो इतना फिलहाल इन्फ्लुएंस है कि वो खुद को मुस्लिम मानता है।
4: सवाल है कि आखिर आयुष का मिजाज और अंदाज देखते ही देखते कैसे बदल गया। आयुष से ही सुनिए वो कैसे चांदनी कुरैशी के संपर्क में आया और फिर उसको अपना दिल दे बैठा।
6: कैसे कांटेक्ट में आए आप चांदनी कुरैशी के, पूरा अगर आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं। आप
5: फिजियोथेरेपिस्ट थी, वो शोल्डर इंजरी थी, मुझे लिगामेंट टियर था, फिजियोथेरेपी कराने जाता था। कभी कभार चले गए तो कॉन्टेक्ट में पता लग गया कि हाँ वो फिजियोथेरेपी है, मुसलमान है।
6: चांदनी कुरैशी से आप कैसे मिले और किस तरह से नजदीकियां होंगी? सुना शादी भी कर लिया आपने।
5: अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल पहले निकाह हुआ था सर, 4 साल पहले निकाह हुआ था।
4: सुना आपने कैसे चांदनी से फिजियोथेरेपी कराते कराते वो पूरी तरह से चांदनी के कब्जे में आ गया। अब आयुष अपने घर वालों से भी ठीक से बात नहीं करता, लेकिन आयुष कह रहा है कि आरोप बेबुनियाद है कि चांदनी ने उसकी करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए उससे निकाह किया है।
6: आपकी मम्मी पापा से आपकी बातचीत हो रही है?
5: मम्मी पापा से बातचीत हो रही, रात में सोया, सुबह यहाँ था।
6: आपको पता है कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पे नजर थी किसी की?
5: किसकी?
6: किसी की थी।
5: किसकी थी सर?
6: चांदनी कुरैशी और उसके परिवार की।
5: ये आप टारगेट कर रहे हैं सर, ये आप उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो मेरी है इस पे, मैंने खुद भी कहा था आपको जो करना पेरेंट्स को अपने आप वो कर लो इस प्रॉपर्टी का, और ना उनके साथ कोई ऐसा मसला है, उन्होंने भी साफ मना कर रखा।
0: रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: AU savings account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
4: Money, money, money, money every month.
5: सोच बदलो और बैंक भी.
6: Line Desert King Dates, ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
7: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
6: सिंह जैसी
8: शक्ति मुझ में।

तमाम सुरक्षा इंतजाम और हालात को काबू में करते हुए आखिरकार इस मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हो ही गया। ये जयपुर की नूरानी मस्जिद है। इसे ध्वस्त करने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी। इस कार्रवाई से पहले सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिए गए थे। नूरानी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन आज तय था। सुबह से ही सरकारी अमला बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचा। बुलडोजर एक्शन से पहले अतिक्रमण अभियान चलाने वाली टीम ने पहले मस्जिद को ढका, फिर शुरू हो गया बुलडोजर अभियान। जयपुर में मालवीय नगर से जगतपुरा तक जाने वाली इस मुख्य सड़क को चौड़ा करने का अभियान कई दिनों से जारी था। इसे चौड़ा करने के लिए 2011 में मास्टर प्लान बना था। सड़क को 80 फीट तक चौड़ा किया जाना था। एक्शन से पहले ये सड़क 40 फीट चौड़ी थी। कुछ दिनों पहले जयपुर प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण की मुहिम शुरू की थी, लेकिन नूरानी मस्जिद को बीच में ही छोड़ दिया गया। इस पर लोगों ने नाराजगी जताई। बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाजें उठने लगी। मजबूर होकर राजस्थान सरकार ने नूरानी मस्जिद के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का फैसला किया और अब आज उस पर अमल कर दिया गया। नंदपुरी इलाके में नूरानी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण और जयपुर पुलिस ने ठोस प्लान बनाया था। 50 अधिकारियों और 3000 पुलिस कर्मियों की खास तैनाती की गई थी। मुस्लिम समाज का दावा है कि ये मस्जिद 100 साल पुरानी थी, लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण ने इसे अवैध निर्माण बताते हुए पिछले दिनों नोटिस थमाया था। जयपुर पुलिस ने बुलडोजर एक्शन से पहले फ्लैग मार्च किया और असामाजिक तत्वों को आगाह कर दिया कि अफवाह फैलाकर धार्मिक उन्माद भड़काने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच बुलडोजर एक्शन किया गया। प्रशासन ने अब दो टूक कह दिया है कि सड़क चौड़ीकरण का अभियान जारी रहेगा। विशाल शर्मा के साथ देवांकुर, जयपुर आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। प्रभु राम की जन्मस्थली पर बना विशाल मंदिर विश्व भर के राम भक्तों के लिए अनन्य तीर्थ है। इस पवित्र भूमि पर पिछले कुछ वर्षों से श्री राम भक्ति की अनवरत धारा बह रही है, मगर इस मंदिर के बनने से पहले, बनते वक्त और बनने के बाद यहाँ राजनीति की भी अनवरत धारा बहती रही है। और अब राजनीति की नई धारा में चंदे की चोरी के आरोप फिर से सिर उठा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई है। केंद्र और राज्य सरकार इस पर चुप हैं। अदालत स्वतः संज्ञान लेकर जांच करे, क्योंकि असंख्य राम भक्तों की आस्था का सवाल है। अखिलेश की ओर से लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने जवाब देने से इनकार कर दिया।
1: अखिलेश यादव ने आज कहा है कि जो चढ़ावे की राशि है 7 करोड़ मंदिर से गायब हो गई है, सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है।
2: ये सरकार का विषय नहीं है, मंदिर प्रशासन का विषय, मंदिर प्रशासन का जवाब देगी। कहां पे कौन कह रहा गायब हो गई है?
1: अखिलेश यादव
2: कहते रहे, उनका हम जवाब थोड़ी देते रहेंगे।
0: बीजेपी की ओर से किसी जवाब से इनकार किया गया, लेकिन अखिलेश के आरोपों पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई दी।
3: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
0: हालांकि अखिलेश यादव ने ट्रस्ट की ओर से दी गई 40 सेकंड की सफाई पर भी सवाल उठाए और ट्रस्ट के सभी सदस्यों को साथ बैठाकर फुल बेंच स्पष्टीकरण मांगा और सीसीटीवी फुटेज के सबूतों पर जांच कराने की मांग की। उधर ट्रस्ट के सदस्यों की ओर से इस खबर पर किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आ रहा, लेकिन ट्रस्ट के सदस्य महंत दीनेन्द्र दास कहते हैं कि एक तो ऐसी गलती होगी नहीं और हुई तो राम जी दंड देंगे। चढ़ावे पर सवाल के पीछे क्या? चढ़ावे में गड़बड़ी की खबरों के पीछे समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान और आरोप हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण उर्फ पवन पांडेय ने अपुष्ट खबरों के आधार पर चंदे में चोरी का दावा कर दिया। समाजवादी पार्टी के आरोपों के मुताबिक मंदिर के दान पत्रों में आने वाला चढ़ावा रोज गिना और स्टेट बैंक में जमा किया जाता है, लेकिन पिछले दिनों ये चढ़ावा आश्चर्यजनक रूप से औसत चढ़ावे से कम निकला। आशंका है कि इसमें 5 से 7 करोड़ रुपए की कमी देखी गई, जिसके बाद बैंक कर्मियों से पूछताछ भी की गई। हालांकि ऐसी अफवाहों की पुष्टि किसी ने नहीं की है, क्योंकि तथ्यों के मुताबिक राम मंदिर सहित अन्य सभी मंदिरों के सामने और पूरे दर्शन मार्ग पर करीब 4 दर्जन दान पात्र हैं। श्रद्धालु इनमें नकद पैसे चढ़ाते हैं, जिन्हें रोज गिनकर बैंक में जमा करा दिया जाता है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।

0: quality. विशेष मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही. आगे देखिए खबरदार मेरी सहयोगी श्वेता सिंह के साथ.
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
1: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस.
2: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया.

0: बंगाल में करारी हार के बाद ममता को एक और झटका, पार्टी में टूट की आशंका। 20 बागी सांसदों की शताब्दी रॉय के घर मीटिंग, शुभेंदु अधिकारी से मिलने पहुंचे। बीजेपी में विलय को लेकर चर्चा तेज। नीट पेपर लीक पर इंडिया गठबंधन का बड़ा दांव, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, सर्वदलीय बैठक की मांग, सीजीआई को लिखेंगे पत्र, 5 सूत्रीय एजेंडा तय, बीजेपी ने विपक्ष पर उठाए सवाल। यमुना सफाई को लेकर गृह मंत्री की हाई लेवल बैठक, एनडीडीबी मॉडल के तहत साफ सफाई पर जोर, हर 20 दिन में काम की समीक्षा का आदेश। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, पिघला स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत, मौके पर आग की तेज लपटें। और ईरान इसराइल में युद्ध फिर शुरू, तेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्ला की ओर से भी हमले, आईडीएफ ने इस्फहान पर किया जवाबी प्रहार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
2: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: नमस्कार, आज तक पर आपका स्वागत है। वक्त है हर खबर से आपको खबरदार करने का। इस वक्त सबसे बड़ी सियासी हलचल दिल्ली से बंगाल तक मची हुई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी के हाथ से क्या अब पार्टी भी जाने वाली है? विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसद भी टूट रहे हैं। ममता के 20 सांसदों ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा आज टीएमसी के एक राज्यसभा सांसद ने भी इस्तीफा दे दिया।
1: जिस वक्त ममता बनर्जी विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटती हैं, ठीक उसी वक्त उन्हीं की पार्टी के सांसद बगावत की नई कहानी लिख रहे होते हैं। विधायकों के बाद अब टीएमसी के सांसदों ने भी ममता का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। मतलब जिस वक्त सोनिया गांधी से गले मिलकर ममता बनर्जी गठबंधन को मजबूत करने में जुटी थी, उसी वक्त टीएमसी में विद्रोह की नई पटकथा लिखी जाती है। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए का हिस्सा बनकर सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। सांसद और टीएमसी की पूर्व नेता काकोली घोष ने यह दावा किया कि 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। इस बारे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी भेज दिया गया है। बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन की जहां बैठक हो रही थी उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर ममता बनर्जी के 14 बागी सांसद दोपहर में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक करते हैं। इस दौरान सुबह ही टीएमसी के राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके सुखेंदु शेखर राय भी मौजूद रहे। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनसे मिलने पहुंचे। इसी बैठक में लोकसभा सांसद काकोली घोष, शताब्दी रॉय, अबू ताहिर, अरूप चक्रवर्ती, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, असित मल, कालीपत सोरेन, जगदीश बसुनिया और प्रसून बनर्जी भी मौजूद होते हैं।
2: एमपी हो या एमएलए हो, ये तृणमूल कांग्रेस से दीदी का सिंबल लेकर 2 दिन पहले दीदी दीदी दीदी दीदी आज क्या एनडीए के साथ मैं सुन रहा हूँ, तो ये क्या पॉलिटिक्स हुआ?
1: लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इससे पहले 3 जून को पश्चिम बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। इस गुट ने ऋतुव्रत को अपना नेता बनाया है। ये इत्तेफाक नहीं है कि जब ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली में मौजूद होते हैं उसी मौके पर पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु भी दिल्ली पहुंचते हैं। इससे पहले राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर रॉय की तस्वीर सामने आई जिसमें वो टीएमसी के कुछ बागी लोकसभा सांसदों के साथ देखे जाते हैं। सुखेंदु ने इस्तीफे के बाद मीडिया से कहा कि पार्टी के कई लोग ममता के मनमाने ढंग से पार्टी चलाने से नाराज थे और इसीलिए इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 2029 तक का था, अब सीट खाली हो चुकी है, अब इस पर उपचुनाव कराया जा सकता है।
3: अभी तो मैं पार्टी से बाहर हूँ। हमारा पार्टी का जो हम जब पार्टी में थे उस समय वो लोग जो थे कोई इसका विचार विमर्श कुछ नहीं किया गया इतना, क्योंकि उसका पावर मस्तिष्क मथे में अंदर चला गया कि हमको कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया में। अरे भाई, आम जनता ने तुमको चुन के भेजा है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने तुमको नीचे गिरा दिया, अब देखो कैसे गिराया।
4: शुकेंदुदा का जो उन्होंने बोले है, मैं मेजोरिटी जगह में उनके साथ एकमत हूँ और खास करके जहां तक पार्लियामेंट का अपर हाउस का फंक्शनिंग था, शुकेंदुदा जो बोले है वो एकदम सही है।
1: इस बगावत ने तब और गंभीर रूप ले लिया है जब बागी सांसद शर्मिला सरकार ने एनडीए को समर्थन दिए जाने की घोषणा की है और कहा है कि वो मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष को बताने वाली हैं कि वही असली तृणमूल कांग्रेस है।
5: हम 20 लोग थे जो जिनने सिग्नेचर किए हैं, तो हम लोग एक सेपरेट ब्लॉक मतलब तैयार किए हैं। हम लोगों का वॉइस यहाँ से मतलब सेपरेट ब्लॉक से उठ गया।
1: टीएमसी में विद्रोह का आलम यह कि जो नेता कल तक ममता बनर्जी को दीदी दीदी कहकर संबोधित करते थे वो अब खुलेआम उनका नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं। इसे ममता बनर्जी के सियासी कद में आई कमी के तौर पर देखा जा रहा है।
4: 2/3 से ज्यादा एमपी साइन किए हैं, उसका मतलब है 20 एमपी मतलब 2/3 से ज्यादा, तो लोग क्यों किए हैं ये बोल नहीं पाऊंगा, मगर एक तानाशाही के खिलाफ लोगों का आवाज उठ रहा है और ये जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है।
6: सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी, तो टूट गया।
1: टीएमसी में 28 साल के इतिहास में पहली बार औपचारिक तौर पर टूट सामने आई है। पहले 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए। विधायक ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता चुना। विधानसभा स्पीकर रतींद्र बोस को समर्थन पत्र दिया। इसमें मांग की गई कि ऋतव्रत को नेता विपक्ष घोषित किया जाए। और अब ममता बनर्जी के 20 सांसदों ने दिल्ली में विद्रोह करके ममता को राजनीतिक रूप से सबसे कमजोर हालत में पहुंचा दिया है।
0: पश्चिम बंगाल की राजनीति से ही जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, अब से कुछ देर पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के बाकी सांसदों से मिलने पहुंचे हैं। शताब्दी रॉय के घर पर यह मुलाकात हुई है, जहां ममता बनर्जी के बाकी सांसद मौजूद हैं। दावा है कि अब तक 20 सांसद टीएमसी से अलग होकर अपना गुट बनाने की तैयारी कर चुके हैं, जिन्होंने काकोली घोष को संसद में अपना नेता चुना है।
7: We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating and we will be working in conjunction of the central and state government for development of West Bengal and we are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years.
0: कोलकाता से दिल्ली तक बिखरती पार्टी को लेकर ममता बनर्जी तो चुप हैं, लेकिन उनकी सांसद महुआ मोइत्रा बोल रही है। महुआ मोइत्रा ने बगावत करने वाले सांसदों को कहा है कि हिम्मत है तो वो सब इस्तीफा देकर दोबारा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर दिखाएं। महुआ मोइत्रा ने यूसुफ पठान पर भी निशाना साधा है। पिछले दिनों खबर आई थी कि यूसुफ को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था ताकि ममता उस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सके, लेकिन यूसुफ ने इनकार कर दिया। हालांकि बाद में यूसुफ पठान ने इस दावे को खारिज किया। अब महुआ मोइत्रा बगावत या ममता पर सवाल उठाने वाले हर सांसद को ललकार रही है।
8: तृणमूल कांग्रेस में चल रहे अंदरूनी जंग के बीच अब तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रो ने अपने ही पार्टी के सांसद यूसुफ पठान पर हमला बोल दिया है। जहां एक ओर यूसुफ पठान को लेकर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ममता बनर्जी ने उनको अपना सीट छोड़ने के लिए कहा है, लेकिन यूसुफ पठान ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट जारी करके ये साफ कर दिया कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से किसी ने भी, कोई भी नेता ने उनको बहरमपुर सीट छोड़ने के लिए नहीं कहा है। हालांकि इस वक्त जब तृणमूल कांग्रेस के अंदर बागी नेता, खासकर एमपीस, लोकसभा के सांसद, वो एक अलग गुट बना चुके हैं काकुली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में, तब महुआ मोइत्रो ने सोशल मीडिया पर जमकर यूसुफ पठान पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो अब दिल्ली आ रहे हैं, ये बागी ग्रुप के साथ वो ज्वाइन करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जनता का जो मैंडेट है, जिन्होंने उनको बहरमपुर से जिताया है, उनके खिलाफ उनको जाना नहीं चाहिए। उन्होंने देश के लिए खेला है, अगर उनको थोड़ा सा भी करेज दिखाना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं तृणमूल कांग्रेस के, जो समर्थक हैं जिन्होंने उनको वोट देके जिताया, अगर वो एनडीए के समर्थन में चले जाते हैं, बागी कैंप में चले जाते हैं, तो उनके खिलाफ ये बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। तो महुआ मोइत्रो ने जमकर हमला बोला है यूसुफ पठान पर इस वक्त, जब ये कहा जा रहा है कि 20 सांसद काकुली घोष दस्तीदार ने दावा किया है बागी कैंप में चले गए हैं और एनडीए को समर्थन जताना चाहते हैं।
0: और अब आपको दिल्ली में आज हुई उस बैठक से खबरदार करते हैं, जहां इंडिया गठबंधन फिर एकजुटता दिखाने के लिए जुटा और परसों यानी बुधवार को एनडीए गठबंधन अपनी ताकत दिखाने वाला है। उससे पहले आज इंडिया अलायंस ने मीटिंग की तो 5 मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन आज तक के पास इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी है, जिसमें पता चला है कि भीतर कई दलों ने कांग्रेस को लेकर सवाल किया है। ममता बनर्जी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाती है, चुप मतलब एकदम चुप, शीशा बंद कर देती है, मीडिया के सवालों से बचती है। इससे कुछ देर पहले इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी सोनिया गांधी से गले मिलती हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान ममता बनर्जी को सोनिया गांधी के ठीक बगल में बैठाया जाता है।
1: तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में ममता बनर्जी बैठती हैं। इंडिया ब्लॉक की दो साल बाद हुई सातवीं बैठक में 25 दलों के नेता शामिल होते हैं। दो घंटे बैठक चलती है, पांच मुद्दों पर आपसी सहमति बनती है। पहला मुद्दा, एसआईआर में करोड़ों वोटर के नाम कटे, एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर अब सीजीआई को इंडिया गठबंधन चिट्ठी लिखेगा। दूसरा मुद्दा, नीट में देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ, नीट और सीबीएसई की गड़बड़ी के लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं, वो इस्तीफा दें। तीसरे मुद्दे पर जो आपसी सहमति इंडिया गठबंधन में बनी है वो ये कि सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। चौथा मुद्दा है कि हर दो महीने पर अब इंडिया गठबंधन की मुलाकात होगी, अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी। और पांचवा मुद्दा, संसद में इंडिया गठबंधन का समन्वय जारी रहेगा, रोज नेता विपक्ष के दफ्तर में बैठक की जाएगी। विपक्षी गठबंधन की हालत इस बात से समझिए कि जिन पांच मुद्दों पर सहमति अगर बनी तो दो मुद्दे यही हैं, बैठक बहुत लंबा टालो मत, समन्वय जल्दी करो। असल में विपक्षी गठबंधन की समस्या है समन्वय की, क्योंकि दिल्ली में ममता को गले लगाती कांग्रेस के विचार ममता को ही लेकर डेढ़ महीने पहले क्या थे, इसको आज याद करिए।
9: बीजेपी को मौका कौन दे रहा है? तृणमूल कांग्रेस दे रही है। तृणमूल कांग्रेस भी अपने काम में लगी हुई है, वो भी बंगाल के लिए काम नहीं कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट हैं, तो तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। बंगाल की जनता का फायदा नहीं होता है यहां।

0: situations with regard to Congress Party's conduct and approach, we will raise those issues in the meeting. Undoubtedly, our General Secretary also has written a letter.
1: कांग्रेस के तरीकों पर उन्हीं के गठबंधन के लोगों ने मीटिंग के पहले से लेकर मीटिंग के बाद तक सवाल उठाया. समन्वय यानी आपसी साथ कितना है, इसका सबूत देख लीजिए पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी वाले युवाओं के साथ प्रदर्शन पर, जहां कांग्रेस के नेता प्रश्न उठाते हैं. वहीं इंडिया गठबंधन की मीटिंग में उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि अगर मुद्दा समान हो तो आंदोलन का समर्थन किया जाना चाहिए. डीएमके से कांग्रेस के अलग होने पर भी सवाल उठा है. दावा के एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा कि डीएमके का गठबंधन में ना होना चिंताजनक है. अखिलेश यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि हम वो नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ दें. पिछले साल दिल्ली चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की रणनीति और नेतृत्व तक पर शिवसेना यूबीटी के नेता सवाल उठाते आए.
2: जो भी डिफरेंसेस है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि डिफरेंसेस नहीं है. डिफरेंसेस हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म है.
1: आपसी डिफरेंस ही इंडिया गठबंधन की वो कमजोर नब्ज है जिसे मीटिंग से पहले दिल्ली में ऐसे लगे पोस्टर से पुरजोर दबाने की कोशिश की गई. ऐसे पोस्टर जिस पर ये नहीं लिखा था कि किसने लगवाया, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते इंडिया गठबंधन के ही नेताओं के पुराने बयान इन पोस्टर पर दिखाए गए, जिन्हें बाद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आकर हटा दिया. पोस्टर तो हट गया, अब हर दो महीने पर मीटिंग करके आपसी समन्वय सुधारने की बात भी कर ली गई. लेकिन सवाल है कब तक. उत्तर प्रदेश का मोर्चा खुलने वाला है, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लोकसभा जैसी एकता दिखेगी, या फिर चार दिन की एकता और फिर वही आपसी विवाद चलता रहेगा.
3: अब आज की वो खबर जो बड़ी चिंता पैदा करती है. उत्तर प्रदेश के शामली में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है जिसमें आयुष मलिक नाम का एक हिंदू नौजवान मोहम्मद अली बन गया. आयुष के पिता ने बेटे के धर्मांतरण का आरोप चांदनी कुरैशी नाम की जिम ट्रेनर पर लगाया है. आयुष के परिवार का कहना है कि जब उन्होंने बेटे के धर्म परिवर्तन का विरोध किया तो चांदनी के परिवार ने उन पर भी धर्म बदलने का दबाव बनाया, जान से मारने की धमकी भी दी.
4: जब मैंने FIR दर्ज की पुलिस प्रशासन में तो इसके बाद पता लगा कि उसके बाद आप मोहम्मद अली बता रहे, कोई रहमान बता रहा, कोई कुर्बान बता रहा, मुझे तो कुछ नहीं. मेरे लिए तो आयुष मलिक है. इस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह.
1: उत्तर प्रदेश का शामली, यहाँ पर एक करोड़पति हिंदू परिवार का इकलौता लड़का आयुष मलिक मुसलमान बनकर मोहम्मद अली हो जाता है. इस धर्म परिवर्तन के बाद एक जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी सवालों के घेरे में आती है, जिस पर आयुष मलिक के दवा कारोबारी पिता आरोप लगाते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए चांदनी कुरैशी ने उनके बेटे को प्यार के जाल में फंसा कर मुसलमान बनाकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया.
4: चांदनी नामक एक लड़की ने चांदनी कुरैशी उस लड़के को प्रेम जाल में फंसा, और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे मौलवियों का और बाह्य लोगों का कुछ जो अंतर्राज्य स्तर पे काम कर रहे और अपने परिवार से सभी से वो करके उसको ब्रेन वॉश किया.
1: खबरदार करता सवाल है कि क्या करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए एक हिंदू नौजवान को मुसलमान बना दिया गया ताकि उसके परिवार को भी आगे जाकर हिंदू से मुस्लिम बनाकर प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जा सके.
4: ब्रेन वॉश करने के बाद उसका मुख्य उद्देश्य ये था, लड़के तो उसके समुदाय में भी बहुत मिलते, इससे भी स्मार्ट मिल जाते, लेकिन उसकी निगाह एक नामचीन बच्चे पे थी. क्योंकि आयुष के पास नाम काम दाम सब चीज पर्याप्त मात्रा में है, और तो उन्होंने इसे ब्रेन वॉश करके मौलवी वगैरह वगैरह और फर्जी दस्तावेज करके शादी का निकाहनामा फर्जी निकाहनामा करा कर और उसकी संपत्ति हड़पने का मामला मेरे संज्ञान में जो स्थानीय स्तर पर मैं अपनी जानकारी से अपने ईस्ट मिस्ट घनिष्ठ जो बात पता लगाई, मुख्य उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का है.
1: आयुष मलिक का परिवार शामली के संपन्न लोगों में से एक है. मेडिकल होलसेल की इसी दुकान पर आयुष मलिक बैठता था. दुकान के ऊपर ही रहने का घर भी है. आयुष के पिता का दावा है कि चांदनी नाम की जिम ट्रेनर फर्जी निकाह के आधार पर अब इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करने का दबाव डाल रही है.
5: कैसा लड़का था आयुष बचपन में, कैसे?
4: आयुष स्वभाव से बहुत ही बढ़िया, जिसे लोग ये कहते हैं कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता. बहुत संस्कारिक, बहुत मेहनती, बहुत निष्ठावान, बहुत ही मिलनसार और हर तरह से ईमानदार, सब खूबियां उसमें थी जितने एक बच्चे में हूँ. इस चांदनी कुरैशी ने मेरे घर का प्रॉपर्टी के चक्कर में और मेरा सब घर पर बात कर

0: दिया।
1: शामली के इस पिता की लाचारगी की वजह उसका बेटा है, जो न माँ की बात सुनने को तैयार है न तीन बहनों की। उसके दिलो दिमाग पर चांदनी छाई हुई है।
2: जो कुरैसी है हमारे यहाँ ठेले पे जूस बेचते शामली में, और ये लोग मिल करके पिछले सप्ताह हमसे इन लोगों ने क्लेम किया कि साहब चूंकि शादी निकाह इसकी हो गई है, संपत्ति में मेरा भी हिस्सा है, आप ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी बेटी के नाम कर दीजिए आप, जिससे कि बहू और आपके हमारी बेटी आपका बेटा लोग ठीक से रहे और आप भी कन्वर्ट हो जाए कि हमारे धर्म में आ जाइए आप लोग।
3: आपको पता है कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पे नजर थी किसी की?
4: किसकी?
3: किसी की थी।
4: किसकी थी सर?
3: चांदनी कुरैशी, उसके परिवार की।
4: ये आप टारगेट कर रहे हैं सर, ये आप उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तो मेरी है इस पे। मैंने खुद भी कहा था आपको जो करना पेरेंट्स को अपने आप वो कर लो इस प्रॉपर्टी का, और ना उनके साथ कोई ऐसा मसला है, उन्होंने भी साफ मना कर रखा।
3: और कोर्ट किन किस किस मौलाना की आपने वीडियो देखी इशरार अहमद के अलावा?
4: ऑल ओवर द वर्ल्ड के सभी मोटिवेशनल स्पीकर, रीजनल।
3: नाम बताइए दो चार।
4: डॉक्टर इशरार अहमद के मैं ज्यादा देखता था, ऐसे तो रैंडम ही नाम नहीं याद रहते।
1: आमतौर पर धर्म परिवर्तन की खबरों में लोगों को लालच दिया जाता है, लेकिन शामली की कहानी पूरी तरह उल्टी है। यहाँ पर हिंदू नौजवान को मुसलमान बनाने के पीछे दावा है, उसकी संपत्ति पर कब्जा करके उसके पूरे परिवार को मुसलमान बनाने का मकसद।
5: एक रूप से उसका इतना उसे वो कर दिया गया कि वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। फिर भी मैं उसे बीच बीच में समय अंतराल कुछ अंतराल पर बात करता रहा, बात करने से समाधान नहीं निकला।
1: शामली में धर्म परिवर्तन की यह कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये शहर के सबसे रईस परिवार से जुड़ी है, जिसकी प्रॉपर्टी की कीमत 100 करोड़ के आसपास बताई जाती है।
3: मैं शामली के उसी मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ जहाँ फिलहाल आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली रहता है। अगर आप ये देखेंगे तो इस मेडिकल स्टोर का नाम है भारत मेडिक शॉप, और ये जो प्रॉपर्टी है केवल यही ही प्रॉपर्टी 20 करोड़ से ज्यादा की मानी जाती है। और इस तरह की कई प्रॉपर्टी आयुष मलिक और उसके पिता की है। पुलिस की तहकीकात में ये सामने आया है कि इन्हीं प्रॉपर्टी को किसी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए पहले आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, फर्जी निकाहनामा भी तैयार किया गया था।
1: आयुष के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में जांच की, जिसमें यह बात सामने आती कि इस पूरे मामले के लिए एक फर्जी निकाहनामा तैयार किया गया, जिससे दावा है कि चांदनी कुरैशी और उसके परिवार ने मिलकर अंजाम दिया है।
2: फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गया है इसमें। अभी इसका जो भाई है, जो उसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है, और भी तमाम जो इसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने इस ढंग की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए, उन पे हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। जिम के माध्यम से फंसाए इसको, और इसकी दुकान पे लड़के जो काम कर रहे थे उसमें इसका एक भाई था, वो हेड ही था इनकी दुकान का, शोरूम का, इसके आयुष के, उसने इसको प्रलोभन दिया।
1: शामली पुलिस का कहना है कि जब किसी का इस स्तर पर ब्रेन वॉश कर दिया जाता है तो उसे दोबारा डी रेडिकलाइज करना बेहद मुश्किल और चुनौती भरा होता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो SIT बनाई गई है वो हर पहलू पर बारीकी से काम कर रही है ताकि सुनियोजित रैकेट की तह तक पहुंचा जा सके। अरविंद ओझा, शामली आज तक।
6: आयुष मलिक किस तरह से मुसलमान बन गया? क्या उसे किसी ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया? क्या इस्लामिक विचारधारा से जुड़े वीडियो दिखाकर उसका ब्रेन वॉश किया? पाकिस्तान का वो प्रसिद्ध इस्लामिक वक्ता कौन है जिसके भाषणों का प्रभाव आयुष मलिक पर कुछ ऐसा हुआ कि वो मोहम्मद अली बन गया? क्या इसके पीछे पाकिस्तान का कोई एंगल है?
1: शामली का हिंदू नौजवान आयुष मलिक कैसे मोहम्मद अली बन गया? क्या उत्तर प्रदेश में साजिश के साथ हिंदू नौजवानों को मुसलमान बनाने के लिए उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है?
4: धर्म परिवर्तन कहीं पे नहीं होता, धर्म परिवर्तन तो अंदर से होकर कभी भी करवा कर सको आप, इसमें कोई मौलवी प्रोफेशन काम नहीं होता। तथा डॉक्टर इशरार अहमद का ज्यादा देखता था, वो पॉइंट पकड़ा जा रहा।
3: अच्छा, डॉक्टर इशरार अहमद पाकिस्तानी मौलाना है जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो
4: धर्म परिवर्तन की करते
3: हैं? अच्छा,
4: धर्म की बात बताते हैं। अब आप किसी की बात सुनकर उससे प्रभावित हो गया और आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आप कह सकोगे?
1: खुद को मुस्लिम धर्म से प्रभावित कहने वाले आयुष मलिक की टोपी कुछ ही सालों में बदल गई। जो आयुष मलिक फैशनेबल टोपी वाली तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता था, जब वो अचानक ईद की नमाज करता हुआ देखा गया तो पूरे शामली शहर में हंगामा मच गया। सवाल है कि आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किसने और कैसे किया?
0: कि जो लड़का आयुष है इतना वो ब्रेन वॉश्ड है कि अपने फादर से बात करने को तैयार नहीं है, अपनी माँ से बात करने को तैयार नहीं है वो, और अपनी बहनों को तो भूल ही गया है वो। चांदनी के मन में बात जरूर आई कि अगर वो उससे संपर्क में रहेगा तो प्रॉपर्टी हमको नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसने ऐसा ब्रेन वॉश्ड किया, कराया उसने अपने परिचितों से कि अब उनसे बात नहीं करता है वो, और तमाम ऐसी कमियां आपको बताएगा अन्य धर्म के बारे में जो सुन करके आप दंग रह जाएंगे, जो किसी कोई स्पिरिचुअल लीडर बात करता है उसके बारे में।
1: आयुष मलिक की ये तस्वीरें तब की हैं जब वो हिंदू था, लेकिन आज वो पूरी तरह बदल चुका है, चेहरे पर दाढ़ी है और उसकी पहचान धार्मिक रूप से बदल चुकी है। सवाल है कि आयुष ने अपना धर्म क्यों बदला? क्या इसकी वजह चांदनी है? क्या चांदनी ने ही उसका ब्रेन वॉश किया?
4: अल्हम्दुलिल्लाह, 4 साल पहले निकाह हुआ था सर, 4 साल पहले निकाह हुआ था।
1: भले ही आयुष के पिता ने चांदनी और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हों, लेकिन उनका बेटा आयुष चांदनी के बारे में एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं। पुलिस का कहना है कि आयुष का ब्रेन वॉश कई सालों से किया जा रहा था और ये उसी का असर है।
4: मोहम्मद अली नाम तो मैंने अभी रखा, इस्लाम में मैं कैसे आया वो धीरे धीरे करके सीख कर आया।
3: अच्छा, कैसे कांटेक्ट में आए आप चांदनी कुरैशी के, पूरा अगर आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं। आप
4: फिजियोथेरेपिस्ट थी, वो शोल्डर इंजरी थी मुझे, लिगामेंट टियर था, फिजियोथेरेपी कराने जाता था, कभी कभार चले गए तो कॉन्टेक्ट में पता लग गया कि हाँ वो फिजियोथेरेपी है, मुसलमान है। वैसे
1: आयुष का परिवार भले ही चांदनी को अपने बेटे के धर्म परिवर्तन के लिए दोष दे, हकीकत यह है कि परिवार की अनदेखी की वजह से आयुष यूट्यूब के जरिए मुस्लिम धर्म से बहुत पहले प्रभावित होने लगा, जिसकी शुरुआत एक वीडियो से होती है।
4: बीपी बढ़ा, हाथ कंपे, उन्होंने कहा कि कुल अल्लाह पढ़ो,
3: दिखाओ
4: बीपी बढ़ा, थोड़ा सा बीपी बढ़ता है तो हाथ कांपते हैं, ऐसा कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, पर बीपी बढ़ा तो हाथ कांपते हैं, तो उन्होंने कहा कुल अल्लाह पढ़ो, आपको ताकत आएगी।
3: किसने बोला ये कुल? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपको बीपी बढ़ा और हाथ कांपने लगे?
4: यूट्यूब पे कोई था, वो उसने बताया कि जैसे ये पढ़ो तो आप कुछ पढ़ोगे तो आपके अंदर ताकत आएगी, तो मैंने पढ़ा धीरे धीरे करके सीखा जाना, ये नहीं है कि पढ़ा मेरी ताकत आ गई एकदम और ये हाथ कांपने बंद हो गए, वो तो धीरे धीरे करके सीख रहा था।
1: तो आयुष का ब्रेन वॉश करने की शुरुआत किसी मौलाना ने नहीं की, बल्कि यूट्यूब के वीडियो में दी गई कुल हुवल्लाह पढ़ने की सलाह से हुई, जिससे उसे ताकत महसूस हुई। इसके बाद यूट्यूब के एल्गोरिदम और सजेस्टेड वीडियो के जरिए आयुष का दावा है कि वो इस्लाम के करीब पहुंच गया, जिसमें एक पाकिस्तानी मौलाना का बड़ा हाथ है।
3: पहले आप पूजा पाठ मंदिर जाते थे, आप हिंदू थे?
4: इतना ज्यादा था नहीं सर मेरे अंदर, मैं क्योंकि यंग एज से ही टीन एज से ही सीखने लगा था ना धीरे धीरे करके।
3: क्या इन्फ्लुएंस किया आपको, कैसे इन्फ्लुएंस किया, क्या क्या देखकर? क्योंकि आप तो मेडिकल स्टोर, आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, 100 करोड़ से ज्यादा की तो आपकी वर्थ प्रॉपर्टी है, किस तरह से आप मोटिवेट हुए और क्या कैसे आपके यहाँ?
4: इतना हाईलाइट करने की बात है, 100 करोड़ की कहाँ हुई प्रॉपर्टी?
3: ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी
4: स्टोर वाले हैं नॉर्मल। और जी अपना जी जो आप पूछ रहे कि कैसे प्रभावित हुए, धीरे धीरे करके प्रभावित हुए, कुछ सिक्का और ज्यादा सिक्का और ज्यादा सिक्का, ऐसे सीखते चले गए धीरे धीरे करके, सिक्का जाना पहचाना, निभाया उसको, अपनाया उसको।
3: लंबा वक्त लगा?
4: बहुत लंबा वक्त लगा, 2007-08 से सीखा।
1: भारत में पाकिस्तान के धर्म गुरुओं और मौलवियों के YouTube वीडियो आसानी से देखे और सुने जा सकते हैं। पाकिस्तान के इसरार अहमद के कुरान और हदीस पर दिए गए भाषणों को अक्सर धर्म परिवर्तन से जोड़कर देखा जाता है। उनकी साल 2010 में मौत हो चुकी है, लेकिन YouTube पर उनके वीडियो आसानी से कोई भी देख सकता है, जिसे सुनने की बात आयुष मलिक ने भी कही है। चिंता की बात यह कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ छांगुर बाबा जैसे लोगों के धर्मांतरण के रैकेट को पूरी तरह सरकार ध्वस्त करने का दावा करती है, उसकी गैर कानूनी संपत्ति बुलडोजर से ढहा दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान के मौलानाओं पर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है, जो YouTube को हथियार बनाकर उत्तर प्रदेश और देश भर में धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का काम खुलेआम करते हैं, ताकि आयुष मलिक जैसे नौजवानों को धीरे धीरे अपनी बातों में फंसा कर उनका धर्म बदलवाया जा सके। अब सवाल है कि क्या चांदनी को इस बात की खबर थी जिसने आयुष की मुस्लिम धर्म में दिलचस्पी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके उसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया?
3: अच्छा, आयुष मलिक माफ करिए आपको टोक रहा हूँ, अब आपके घर में साथ में आया, नमाज वमाज पढ़ता, पहले आप तो हिंदू समुदाय जाट समुदाय से हैं, क्या उसका एक्टिविटी रहता है,
7: क्या वो कहता है आप लोगों को? आप उसको बोलते हैं आप मुस्लिम बन गए हिंदू हो, तुम क्या बोलते?
5: नहीं नहीं नहीं, वो ये सब बातें अब जांच का विषय जब आया, जब मैंने FIR दर्ज की बयान वगैरह में, और जब ये मेरे सामने वीडियो आ रहे, इनसे पता लगा कि आयुष नवाज पढ़ रहा दाढ़ी जब रखने के बाद मैंने उसे कहा बेटे से कटा, तो वो उसमें ऐसे हिलता नजर आई मुझे, उसमें वो कटाई नहीं, तो उसके बाद में और गंभीरता से बात ली।
1: आयुष का परिवार आज भले ही आरोप लगाए कि उनके बेटे का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, लेकिन ये परिवार भी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता। सवाल है कि आयुष खुद कह रहा है कि वो साल 2008 से इस्लामिक धर्म गुरुओं की वीडियो देख रहा था, तब परिवार ने क्यों कुछ नहीं किया? चांदनी से फोन पर बातचीत की बात को भी परिवार मानता है, इसके बावजूद परिवार नहीं चेता। जब नौबत प्रॉपर्टी गंवाने और उसके बाद पूरे परिवार के ऊपर धर्मांतरण के दबाव की आई, तब जाकर आयुष का परिवार पुलिस से शिकायत करने पहुंचता है।
3: कि जब किसी का ब्रेन वॉश किया जाता है, कोई किसी का धर्मांतरण कराया जाता है, तो उसको डील रेडिकलाइज करना काफी ज्यादा टफ होता है। शामली पुलिस ने एक बेहतरीन काम किया इस मामले में, और चांदनी कुरैशी उसके पिता को गिरफ्तार किया है, मौलवी फिलहाल फरार चल रहा है।
6: और अब खबर नीट इम्तिहान से जुड़ी हुई। पिछली बार पेपर लीक की वजह से एग्जाम रद्द हुआ, अब की 21 जून को परीक्षा होनी है। इस बार पेपर लीक रोकने के लिए वायुसेना की मदद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ले रही है। दावा है कि नीट का पेपर ले जाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: सेना का वो हेलीकॉप्टर जो अब तक बाढ़ बारिश के खतरे के बीच वहां फंसे नागरिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता से उतरता रहा। भारतीय वायुसेना की वो ताकत जो जंगलों की आग तक को बुझाने में इस्तेमाल होता आया है। कठिन से कठिन हालात में जिंदगी बचाने वाला भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर, जिसके जरिए अब की दावा है कि नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा में पेपर पहुंचाया जाएगा। सूत्र कहते कि इंडियन एयरफोर्स देश भर के 18 जगहों से नीट की दोबारा परीक्षा में प्रश्न पत्र के पैकेट पहुंचाएगी, ताकि उनकी सुरक्षित और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। यानी 21 जून को इस बार नीट का जब पेपर होगा, तो उसे MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुंचाया जा सकता है।
6: देश में पहली बार भारतीय वायुसेना नीट के रीटेस्ट के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाली है। पूरे देश में 18 रीजनल हब्स पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स प्रश्न पत्र पहुंचाएंगे। ये पैकेट्स को पूरी सुरक्षा के साथ इन रीजनल हब्स तक ड्रॉप करेंगे, और उसके बाद इन रीजनल हब से सड़क के रास्ते एग्जामिनेशन सेंटर्स तक ये क्वेश्चन पेपर्स पहुंचाए जाएंगे। पहली बार देश के इतिहास में इस तरह की पहल हो रही है, जब भारतीय वायुसेना किसी एग्जाम के लिए मदद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरी परीक्षा की निगरानी कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमाम दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर इसकी रिव्यू मीटिंग्स ले चुके हैं, और अब भारतीय वायुसेना 18 अलग अलग रीजनल हब्स पर Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए इन पेपर्स को पहुंचाएगी। Mi-17 हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर फ्लीट के सबसे रिलायबल हेलीकॉप्टर्स हैं। बड़े विमानों से इन केंद्रों पर पहुंचना मुश्किल है, लिहाजा इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन पैकेट्स को जिनमें क्वेश्चन पेपर्स होंगे, उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ इन एग्जामिनेशन सेंटर्स के रीजनल हब्स पर पहुंचाया जाएगा, जहां से इन्हें अलग अलग एग्जामिनेशन केंद्रों पर भेजा जाएगा।
1: नीट UG परीक्षा में केवल 12 दिन का समय बचा है, इसलिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ी तैयारी की बैठक पहले हो चुकी है। सरकार सवालों के लीक होने की किसी भी आशंका को खत्म करने के लिए एयरफोर्स की मदद से पेपर को अलग अलग शहरों तक पहुंचाने की योजना बना चुकी है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ऐसा क्या है कि एयरफोर्स की मदद से नीट का पेपर पहुँचाया जाएगा? दावा है कि नई व्यवस्था के तहत प्रश्न पत्रों को वायुसेना के जरिए सीधे प्रमुख केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा, इसके बाद कड़ी निगरानी में उन्हें दूसरे एग्जाम सेंटर तक भेजा जाएगा। पेपर लीक होने की 3 सबसे बड़ी जगह होती हैं। पहली जहां से पेपर बनता है, दूसरा पेपर जहां छपता है, तीसरा रास्ते में पेपर लाने ले जाने के दौरान। इस बार नीट का पेपर चूंकि पेपर बनाने के दौरान ही लीक हुआ, तो उस रास्ते को नीट री एग्जाम में बंद करके बाकी 2 रास्तों को बंद करने की तैयारी NTA की है। इसीलिए एयरफोर्स के सख्त प्रोटोकॉल और सीमित बाहरी हस्तक्षेप के चलते सुरक्षा बढ़ाने की पूरी तैयारी की गई, जिससे लीक की गुंजाइश कहीं ना रहे। 22,89,000 बच्चों को दोबारा नीट का पेपर देना है। एक बार पेपर लीक हुआ, लाखों बच्चे टूट चुके हैं। इस बार एयरफोर्स की मदद से पेपर पहुंचाने की प्रक्रिया के जरिए ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि सरकार कहीं भी रत्ती भर भी चूक नहीं होने देना चाहती।
6: इम्तिहान देना क्या एक जंग है? ये सवाल तभी उठने लगा था जब नीट का पेपर दोबारा कराने में वायुसेना तक से मदद लेने की बात आई थी। लेकिन बात केवल एक परीक्षा की नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती एग्जाम आज से शुरू हुआ है। प्रशासन ने कई इंतजाम बेरोजगार युवाओं के लिए किए हैं, लेकिन क्या सारे इंतजाम जमीन पर उतर पाए हैं?
1: कहीं ट्रेन में बैठकर भर्ती परीक्षा देने जाने की मारामारी, कहीं सड़क किनारे एक पॉलिथीन फुटपाथ पर बिछाकर अपनी परीक्षा की पाली का इंतजार, कहीं रात में ही परीक्षा वाले शहर पहुंचकर बस या रेलवे स्टेशन के बाहर खुले आसमान के नीचे रात काटने को लाचार बेरोजगार, कहीं लंबी लंबी कतार और भविष्य को उज्जवल बनाने की लाइन जिसमें जांच है। उत्तर प्रदेश में 32,600 लाइन जिसमें जांच है। उत्तर प्रदेश में 32,679 पदों पर सिपाही भर्ती परीक्षा हो रही, भीषण गर्मी है। इसी भर्ती परीक्षा में 28 लाख से अधिक बेरोजगार परीक्षा दे रहे हैं जिसमें जांच है। उत्तर प्रदेश में 32,679 पदों पर सिपाही भर्ती परीक्षा हो रही, भीषण गर्मी है। इसी भर्ती परीक्षा में 28 लाख से अधिक बेरोजगार परीक्षा दे रहे हैं, मतलब एक पोस्ट के लिए 85 बेरोजगारों में परीक्षा नहीं अग्नि परीक्षा है। 75 के 75 जिलों में सेंटर बना है। प्रशासन का दावा है लखनऊ में बस स्टेशन से रेलवे स्टेशन तक अभ्यर्थियों के लिए टेंट लगाकर वहां रुकने ठहरने के बीच पंखा कूलर लगा दिया गया। बसों में 50% किराए में छूट भी देने का दावा।
8: इस समय पर लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनके लिए इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जहाँ अभ्यर्थियों के जो परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं उनको किराए में 50% छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ स्टेशन पर इस तरीके से हॉल्ट भी बनाए गए हैं। लखनऊ नगर निगम की तरफ से रात्रि विश्राम के लिए बनाया गया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए, तो ये एक इंतजाम है। सहायता केंद्र है,
9: रुकने की तो व्यवस्था सभी उपलब्ध है।
10: व्यवस्थाएं तो ठीक थी,
11: प्रशासनिक व्यवस्था सर बहुत अच्छी थी, पुलिस वाले बहुत थे, हेल्प भी कर रहे थे।
1: लेकिन कहीं सुविधा है, कहीं बेरोजगारों के लिए उत्तर प्रदेश में दुविधा है। घर की रोटी सब्जी स्टेशन पर खाया, वहीं चादर बिछाया, थोड़ी देर पढ़ाई की, वहीं सो गए। इंतजार में सुबह होगी, पुलिस भर्ती की परीक्षा देंगे। काश नौकरी की नई सुबह भी जिंदगी में आए। पता चला यहाँ स्टेशन के बाहर वैसा इंतजाम नहीं जैसा लखनऊ में चमचमाता बताया गया, न ही किराए वाली सुविधा मिल पाई।
12: सरकार से थोड़ा उम्मीद भी था कि जो है कुछ छूट मिलेगा जैसे बस भाड़े के लिए, लेकिन कोई छूट नहीं मिला, तो इसके वजह से थोड़ा सा तकलीफ हुआ हमें। बस और कोई दिक्कत नहीं, पहुंच गए हैं, आके बस स्टैंड पे बैठे हैं।
1: गोरखपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर 20 से 50 रुपए की प्लास्टिक की शीट खरीद कर बैठे युवा रात भर लेटे बैठे नजर आए, क्योंकि किसी तरह पढ़ाई का खर्च निकालकर भर्ती देने निकले इन बेरोजगार नौजवानों के घर वालों की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं होती कि कोई कमरा लेकर ये वहाँ ठहर सके। ये इस बात से डरते भी नहीं, ना ही सवाल करते। ये चाहते हैं, ये सब सह लेंगे, बस परीक्षा ईमानदारी से हो जाए, रिजल्ट समय से निकल आए, नौकरी कोर्ट में ना फंसे।
13: पेपर पूरी तरीके से हो जाए, निष्पक्ष तरीके से, यही चाहते हैं।
11: पेपर बढ़िया था, अब यही डर है कि सही रहे।
14: क्या सही
11: रहे? दिन ब दिन पेपर लीक हो रहा है, और क्या।
15: पेपर तो बढ़िया रहा, बस एक ही टेंशन बनी है कि कहीं लीक ना हो जाए पेपर, इसका डर है। क्योंकि पेपर अगर न लीक हो तो काफी अच्छा पेपर बना है इस टाइम।
1: सोमवार से शुरू हुई परीक्षा से पहले रविवार को सेंटर वाले जिले तक पहुंचने में ट्रेन में सीट पाने की जद्दोजहद जंग के रूप में बदलती दिखी। ऐसा तब जब प्रशासन दावा करता है स्पेशल ट्रेन चली है, किराया हाफ हुआ है, लेकिन कानपुर से मेरठ तक तस्वीर कुछ बदली।
16: पहले तो बोला गया था बसों का किराया भी हाफ किया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा। जब हम फतेहपुर से आए यहाँ तक के लिए एडमिट कार्ड दिखाया, कोई डिस्काउंट नहीं, कहते मुझे कोई सुविधा मिली ही नहीं।
17: सेंटर सर आगरा फेंक दे, इन्होंने तो टिकट भी नहीं मिल रहा है, यहाँ तो हमें
18: टिकट नहीं मिल रहा,
17: नहीं मिल रहा है। तो नू कह रहे हैं, हमने पुलिस वालों से पूछे तो नू कह रहे हैं हमारे पास तो यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ऐसी। और बस वालों से वहाँ पूछा, वहाँ से इनके को आए, और अब दोबारा उनके को जा रहे। टिकट इतना महंगा कर रखा, 350 रुपए का।
1: ये सारे बच्चे इन सब की तो शिकायत भी नहीं करते कि अरे स्टेशन पर सोना पड़ रहा है या बस अड्डे पर आकर मच्छर के बीच में रुकना पड़ रहा। इनके लिए चिंता केवल इतनी है कि पेपर लीक ना होने पाए, जो पहले दिन नहीं हुआ है, कहीं से कोई खबर नहीं हुई है। सिपाही भर्ती की परीक्षा पहले दिन शांति से पूरी हुई है।
18: परीक्षा फेयर होनी चाहिए और जो कि पॉसिबल लगती नहीं है, और कोई बात नहीं है परीक्षा। और हम लोग तैयारी तो करते ही है ना हर एक एग्जाम के लिए, लेकिन एग्जाम अच्छा हो ये ज्यादा जरूरी है ना। अगर पेपर लीक नहीं होता है या किसी प्रकार का धांधली नहीं होता है तो इस बार हो ही जाएगा, बताइए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं।
6: फिलीपींस में सुबह आए भूकंप से 32 लोगों की मौत हो गई, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। फिलीपींस में रिक्टर स्केल पर 7.8 का भूकंप आया जिसने भारी तबाही मचाई। भूकंप भारतीय समयानुसार सुबह 5 बजे आया, जो इस साल फिलीपींस में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। भूकंप के बाद सुनामी भी आई, सबसे ऊंची लहर करीब 4.5 फीट की रही।
19: फिलीपींस में भूकंप से ताश के पत्तों की तरह गिरती गई इमारतें। फिलीपींस में ढह गई स्कूल की बिल्डिंग। फिलीपींस में भूकंप से मिट्टी में मिला आलिशान मॉल। फिलीपींस का मिंडानाओ द्वीप, जहां भूकंप के रूप में तबाही ने ऐसी दस्तक दी पूरी दुनिया डर गई, सहम गई। भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:07 पर फिलीपींस में इमारतें हिलने लगी। अब आप ही सोचिए भूकंप के दौरान 36 मंजिला इस इमारत में रहने वाले लोगों की क्या हालत हुई होगी। भूकंप से आप इस इमारत को हिलते हुए देख सकते हैं। 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने जमीन को इस कदर झकझोरा कि सब कुछ हिला दिया। भूकंप के तेज झटकों से एक वाटर टैंक से पानी बाहर गिरने लगा। जमीन के ऊपर सब कुछ हिलता है, ताश के पत्ते की तरह इमारतें भरभराकर मानो गिरती चली गई। ये तस्वीर फिलीपींस के एक स्कूल की है, जिसमें पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भूकंप की कभी ना भूलने वाली यादों से रूबरू हुए। जमीन के ऊपर सब कुछ हिलता है, ताश के पत्ते की तरह इमारतें भरभराकर मानो गिरती चली गई। ये तस्वीर फिलीपींस के एक स्कूल की है, जिसमें पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भूकंप की कभी ना भूलने वाली यादों से रूबरू हुए। भूकंप आते ही बच्चे स्कूल परिसर में इकट्ठा हो गए। इस दौरान टीचर और स्कूल के स्टाफ ने बहादुरी से समझबूझ दिखाते हुए छोटे छोटे बच्चों को अपने पास बैठाए रखा। इस दौरान कुछ बच्चे और स्कूल का स्टाफ कैंपस में बने शेड के नीचे डूबके रहे। अचानक शेड हिलने लगता है और सबके सामने भरभराकर गिर पड़ता है। कुछ लोग उसमें से निकलकर भागने में कामयाब हो गए तो कई इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि ज्यादातर स्कूलों में प्रशासन ने भूकंप की चेतावनी के मद्देनजर बच्चों को खुली जगह पर इकट्ठा कर दिया था। भूकंप की एक और डरावनी तस्वीर शॉपिंग मॉल की है, जिसकी इमारत भूकंप के झटकों को ज्यादा वक्त तक झेल नहीं पाई और गिर जाती है। इलाके की दूसरी इमारतों का भी वही हाल रहा। जमीन में मच रही तेज हलचलों ने इमारतों की नींव इस कदर हिला दी, एक के बाद एक इमारतें जमींदोज होती रही। धूल का गुबार चारों तरफ फैलता रहा, लोगों में चीख पुकार मची रही और सब बचने के लिए खुली जगहों पर भागते रहे। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने कई लोग दहशत में सड़क पर ही बैठ गए, कई लोग गाड़ियों को पकड़कर खड़े हो गए। अचानक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग ढह जाती। 5 सेकंड में इस इमारत का नामो निशान मिट गया। अपनी आंखों से इस विनाश लीला को देख रहे लोगों की चीखने की आवाजें तेज होती गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। भूकंप की तबाही दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर देखने को मिली, जहां सोमवार को 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे होने की वजह से भारी नुकसान देखने को मिला है। फिलीपींस के ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान ने बताया कि स्थानीय भूकंप के बाद 138 आफ्टरशॉक दर्ज किए गए। इन झटकों की तीव्रता 1.3 से 6.7 के बीच रही। नुकसान देखने को मिला है। फिलीपींस के ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान ने बताया कि स्थानीय भूकंप के बाद 138 आफ्टरशॉक दर्ज किए गए। इन झटकों की तीव्रता 1.3 से 6.7 के बीच रही।
20: फिलीपींस की धरती एक बार फिर भीषण भूकंप से दहल उठी। करीब 7.8 तीव्रता का ये भूकंप बताया जा रहा है, जो सोमवार की सुबह फिलीपींस में आया सरंगनी इलाके के अंदर, और उसके बाद लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिलीपींस के लिए भूकंप कोई नई बात नहीं है। फिलीपींस दुनिया के नक्शे पर उस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मौजूद है जिसे भूकंप और ज्वालामुखी के लिहाज से दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका कहा जाता है। लेकिन लगातार ये आ रही ये तस्वीरें लोगों को डराने वाली भी हैं, और जिस तरीके से वहां पर ये एक घंटे के भीतर लगातार भूकंप के झटके सामने आते रहे हैं, यानी मुख्य भूकंप के बाद लगातार आफ्टर शॉक्स पूरे फिलीपींस को भी दहला रहे हैं, और लगातार पूरे पूर्वी एशिया के अंदर इस बात की आशंका बढ़ गई है कि कहीं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक्टिवेट तो नहीं हो गई है, जिसके कारण पूरा इलाका एक बड़े प्राकृतिक आपदा की सद में आ सकता है।
19: भूकंप के बाद सुनामी भी आई। सबसे ऊंची लहर 4.6 फीट रही। एहतियात के तौर पर इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी सुनामी की चेतावनी जारी की, जिसे कुछ घंटों बाद वापस ले लिया गया।
21: खबरदार में वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ये मजबूर हैं पर आप नहीं, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
2: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
3: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
4: आगे आगे
5: अरे उधर
4: उधर किधर
5: करेक्ट करेक्ट
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स, ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
9: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
8: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
10: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
11: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
10: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
12: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
13: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
14: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTA को पता नहीं।
12: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
15: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
13: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
12: जहां खबर वहां खबरदार।
16: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
5: Acajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: जब अमेरिका ईरान में डील फाइनल होने की उम्मीद जग रही थी, जब कई मुल्कों की कोशिशों के बीच स्थायी शांति की चर्चा हो रही थी, ठीक उसी वक्त ईरानी मिसाइलों की बौछार ने इन सारे प्रयासों को युद्ध की आग में झोंक दिया। बीती रात के दूसरे पहर में जब ईरानी मिसाइलें गर्जी, बारूदी धमाका हुआ और दो ओर से इजरायली शहरों को टारगेट किया गया, तभी दुनिया को यह एहसास हो गया था कि अब जवाबी हमला बेहद खतरनाक होगा। लेकिन इजरायल का गुस्सा धधके इससे पहले ही उसे शांत करने की कोशिशें शुरू हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात की, भरोसा भी मिला कि जवाबी हमला नहीं होगा। लेकिन कुछ ही देर में जो कुछ हुआ, उसकी उम्मीद तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सपने में भी नहीं की थी। तंसीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने तेहरान, इस्फहान, तबरीज सहित कई शहरों में एक साथ बम और मिसाइल बरसाए। ईरान के करज शहर में भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ईरान के कई शहरों से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी।
1: ईरान और इसराइल का ये संघर्ष ऐसे वक्त में आया जब युद्ध विराम को लेकर ईरान और अमेरिका की बातचीत एक निर्णायक मोड पर चल रही थी। हालांकि ईरान ये कोशिश कर रहा है कि नेगोशिएशंस के टेबल पर जाने से पहले वो पूरी तरीके से अमेरिका और इसराइल को दिखा सके कि इस जंग के दौरान उसने कुछ खोया नहीं है, उसने कुछ पाया है, और वही पावर वो लगातार इसराइल और अमेरिका को दिखाने की कोशिश भी कर रहा है।
0: ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसराइल ने ट्रंप की अपील क्यों खारिज कर दी? आखिर इजरायली पीएम नेतन्याहू के मन में क्या चल रहा है? क्या इसराइल हिजबुल्ला के पूरी तरह खात्मे की कसम तक युद्ध जारी रखने की रणनीति को आगे बढ़ा रहा है? अभी कुछ दिन पहले ही वॉशिंगटन और तेल अबीब के कूटनीतिक गलियारों से एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। बताया गया कि लेबनन, हिजबुल्ला और ईरान को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच भारी मतभेद है, जिसके बाद ट्रंप को नेतन्याहू को सख्त संदेश भी देना पड़ा था। लेकिन ट्रंप की हर कोशिश इसराइल पर बेअसर दिख रही है। न ही इसराइल ने लेबनन पर हमले रोके, न हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह करना बंद किया। अब जब ईरान की ओर से युद्ध का मोर्चा खोल दिया गया है, तो इसराइल को आर पार की जंग का मौका मिल गया है। अगर अब नेतन्याहू ईरान में तबाही वाले प्लान को तेजी से अंजाम देते हैं, तो ये ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका होगा और फिर से पूरा मध्य पूर्व युद्ध की लपटों में घिरेगा। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको इसराइल पर ईरान के हमलों और इसराइल के जवाबी पलटवार के बारे में बताएंगे। जिस वक्त सीजफायर को 2 महीने पूरे हो रहे थे, उस वक्त ये युद्ध फिर से शुरू हो गया और इस बार पहला हमला अमेरिका या इसराइल नहीं बल्कि ईरान की ओर से हुआ। कहा जा रहा है कि यह हमला लेबनान के समर्थन में किया गया, लेकिन दावा यह भी है कि ईरान ने यह हमला अली खामनेई के जनाजे को टालने के लिए किया। क्या आज आपको बताएंगे कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच दरार क्यों बढ़ती जा रही है। दावा यह है कि ईरान अमेरिका की डील किन शर्तों पर हो सकती है, इसकी खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इसराइल अमेरिका के अधिकारियों की जासूसी करा रहा था। आज आपको यह भी बताएंगे कि इस जंग का तेल और गैस की कीमतों पर क्या असर होने वाला है। इसके बाद आपको बताएंगे कि दुनिया में तनाव के बीच चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहां पहुंचे, नॉर्थ कोरिया, जहां उनका स्वागत सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने किया। अब देखिए, पूरे विश्व में अगर आप देखिए तो ऐसा लगता है जैसे हर कोने में कोई ना कोई बड़ा बदलाव हो रहा है और उसी कड़ी के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। आज आपको बताएंगे कि शी जिनपिंग आखिर नॉर्थ कोरिया से क्या चाहते हैं और नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया की जोड़ी कैसे अमेरिका के लिए खतरा बन सकती है। और इसके बाद आपको शामली के मोहम्मद अली के बारे में बताएंगे, जो पहले आयुष मलिक था। आरोप है कि इसका ब्रेन वॉश किया गया और ब्रेन वॉश करने वाली जिम ट्रेनर चांदनी, उसके परिवार और 3 मौलवियों ने किया। इस घटना में पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। क्या आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। और आखिर में आपको बताएंगे फिलीपींस में भूकंप, भयानक भूकंप आया, बड़ी बड़ी इमारतों को ताश के पत्तों के महल की तरह ढहते हुए देखा गया है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर सऊदी अरब से आ रही है, जहां दावा है कि ईरान ने सऊदी अरब के अल खर्ज एयरबेस पर हमला किया। इस हमले में कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन ईरान ने इस तरह के दावे को पूरी तरह से गलत बताया है। तो ये दावा एक तरफा है और ये कहा है कि उसने सिर्फ इसराइल पर हमले किए हैं। तो आज बड़ा सवाल ये भी है कि जब ईरान बार बार इस बात से इनकार कर रहा है कि उसने सऊदी के अल खारिज एयरबेस पर हमला नहीं किया है, तो सऊदी की तरफ से यह दावा क्यों किया जा रहा है कि ईरान ने उसके अल खारिज एयरबेस पर हमला किया। ये हमले भी इसलिए किए गए क्योंकि इसराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में उसके प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्ला पर बारूद बरसा रही है और ऐसा करके सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। यानी आज सुबह से सऊदी अरब और यूएई पर ईरान के हमलों की जितनी भी खबरें चल रही थी, वो सारी खबरें गलत साबित हो गई हैं। ईरान का कहना है कि उसके हमले सिर्फ इसराइल तक सीमित थे। दूसरी खबर यह है, बड़ी खबर, कि ईरान ने इसराइल पर हमले करने के लिए अपने प्रॉक्सी संगठन हूती की मदद ली, जिसने येमेन से इसराइल पर मिसाइल दागी और इसराइल का दावा है कि इस मिसाइल को उसने हवा में ही नष्ट कर दिया। जिस तरह इस युद्ध की लपटें एक बार फिर से मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले रही हैं, उसे देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षा चेतावनी जारी कर दी है और यह कहा है कि इसराइल पर दागी जा रही ईरान की मिसाइलें जॉर्डन में भी गिर सकती हैं, जिससे जान जाने का खतरा है। अमेरिका ही नहीं बल्कि भारतीय दूतावास ने भी एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी भारतीयों से ईरान की यात्रा ना करने की अपील की गई है। और भारतीय दूतावास ने यह भी कहा है कि ईरान में रह रहे भारतीय जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। ये एडवाइजरी मैं अपने हाथ में भी लेकर आई हूं। सोचिए, भारतीय दूतावास ऐसी अपील कर रहा है तो क्या अब एक बार फिर ये युद्ध खतरनाक रूप ले सकता है, लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ इसराइल के हमलों के बाद ईरान में भी काफी तनावपूर्ण हालात हैं। ईरान की सरकार ने रेड क्रेसेंट सोसाइटी को तैयार रहने को कहा है। तो भारत की तरफ से जो एम्बेसी ऑफ इंडिया ने ये एडवाइजरी जारी किया है, वो जरा आपको बता दे, क्योंकि इसमें 8 जून को आज ही की तारीख में इन व्यू ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द रीजन, यानी जिस तरह के हालात एक बार फिर से पूरे इलाके में बन रहे हैं, एम्बेसी ये फिर से आपके सामने कहता है कि reiterates its earlier advice to all Indian nationals to avoid any travel to Iran. मतलब ईरान अभी ना जाएं, पहले भी हमने कहा था, अब नए सिरे से कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एडवाइजरी साफ साफ संकेत है कि ईरान का ट्रैवल ना करें और इसको बड़ा संकेत माना जा रहा है। भारत सरकार जिस तरह से एहतियात बरत रही है, क्या एक बार फिर से युद्ध के फिर से एस्केलेशन की संभावना बन रही है। इंडियन नेशनल्स प्रेजेंटली इन ईरान आर ऑल्सो एडवाइज टू एग्जिट द कंट्री बाय अवेलेबल मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। पॉइंट नंबर 2 यही है कि अगर भारतीय वहां पर रह रहे हैं ईरान में, तो वो भी ऐसी कोशिश करें कि वो
भारत वापस आ जाए, और जो भी इस वक्त आपको यातायात का साधन मिल रहा है उससे आप भारत वापस आ जाइए। तो कुल मिलाकर स्थिति एक बार फिर से तनावपूर्ण बन रही है। आप पहले युद्ध की नई तस्वीरों को देखिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस युद्ध से और कितनी महंगाई बढ़ सकती है।

0: Whoa! Whoa!
1: आज बात सिर्फ युद्ध की नहीं है बल्कि आज बात नफरत की भी है। कल जब ईरान ने इसराइल के शहरों पर मिसाइलें दागी तब ईरान के कुछ हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें लोग आसमान में जो मिसाइलें जा रही थी जाती हुई मिसाइलों को देखकर नारे लगा रहे थे, जश्न मना रहे थे। और ये तस्वीरें सामान्य नहीं थी, ये तस्वीरें बता रही थी कि ईरान और इसराइल का ये युद्ध एक बार फिर से लोगों के मन में भी लड़ा जा रहा है। और अब आप इस मन को टटोलेंगे तो इसमें आपको एक दूसरे के खिलाफ कट्टर दुश्मनी, जबरदस्त नफरत नजर आएगी। और आज यही चैलेंज पूरी दुनिया के सामने है। इसराइल के लोगों को मरता हुआ देखकर तालियां पीटी जा रही है, ईरान के लोगों को मरता हुआ देखकर इसराइल में जश्न मनता है। दोनों तरफ वही हाल है, युद्ध का यह सबसे खतरनाक।

0: شاهد و خیبه رو بزن، از هیچی نگذر و بزن، خیبه برادر ضربه آخر رو بزن.
1: बताया जा रहा है कि इसराइल में भी ऐसे ही जश्न मन रहा है। अब सवाल यह है, ये दृश्य बता रहे हैं कि ईरान और इसराइल के बीच कागज पर सीज फायर हो सकता है, सीमाओं पर गोलियां चलनी भी बंद हो सकती हैं, लेकिन जो लोगों के मन में अब एक दूसरे के लिए कड़वाहट है, वो कड़वाहट, वो कट्टर नफरत खत्म होने को तैयार नहीं है। दोनों देशों के लोगों में किसी समझौते के साथ क्या ये जो गुस्सा है लोगों का, जो आक्रोश है, वो खत्म होगा? क्या ये भी देखिए कि अब तक हर बार युद्ध की शुरुआत इसराइल और अमेरिका की तरफ से होती थी, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ जब ईरान ने इसराइल पर शुरुआती हमले किए। ईरान ने 10 से 12 मिसाइलें इसराइल के 4 बड़े शहरों पर दागी और इनमें भी ऐसे इलाकों को निशाना बनाया गया जहां यहूदी आबादी ज्यादा रहती है। इस पर इसराइल की सेना यह भी आरोप लगा रही है कि ईरान के इन हमलों का मकसद ज्यादा से ज्यादा यहूदियों का खून बहाना था, जिस पर अभी पूरी दुनिया, और इनमें भी ऐसे इलाकों को निशाना बनाया गया जहां यहूदी आबादी ज्यादा रहती है। इस पर इसराइल की सेना यह भी आरोप लगा रही है कि ईरान के इन हमलों का मकसद ज्यादा से ज्यादा यहूदियों का खून बहाना था, जिस पर अभी पूरी दुनिया खामोश है। इसराइल की सेना का यह भी दावा है कि उसने ईरान की सभी मिसाइलों को आयरन डोम की मदद से हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ जगहों पर इन मिसाइल्स का मलबा गिरने से लोगों के घरों को नुकसान हुआ। और इस हमले के बाद जिस तरह से इसराइल के तेलवीव और दूसरे शहरों में सायरन बज रहे थे, उसके कारण पूरा इसराइल तनाव में रहा। देखिए,

ईरान ने ये हमले ऐसे वक्त में किए हैं जब इस युद्ध में लागू हुए सीज फायर को 2 महीने पूरे हो रहे थे। इससे ये सवाल उठता है कि क्या इन हमलों के पीछे कोई ऐसी कहानी है जो अब तक बाहर नहीं आई। अब ये वेस्टर्न मीडिया का दावा है, पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ये हमले लेबनान के कारण हुए, यानी इसराइल सीज फायर की शर्तों का पालन नहीं कर रहा था। और ये बात लंबे समय से आ रही थी कि ईरान इस बात से बहुत नाराज है। उसने कई बार ये खुलकर कहा कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर बारूद बरसा रहा था जब तक इसराइल, उसने ईरान को आग बबूला किया, उसने हिजबुल्ला के समर्थन में ये मिसाइल हमले किए। ये वेस्टर्न मीडिया का कहना है। लेकिन एक और थ्योरी चल रही है जिसको कई लोग सोशल मीडिया पर खास तौर पर डाल रहे हैं कि इसके पीछे पूर्व सुप्रीम लीडर आयतल्ला अली खमनई का सलातल जनाजा भी हो सकता है, जिसका मतलब होता है आयतल्ला अली खमनई को राष्ट्रीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक करना। आप देख ही रहे हैं कितने दिन बीत चुके हैं। ईरान कहता है कि आयतल्ला खमनई 28 फरवरी को इसराइल के हमले में मारे गए थे, लेकिन हकीकत यह है कि तब से अब तक उनका शव किसी ने नहीं देखा है और उन्हें लेकर कई तरह के दावे भी किए जाते हैं। और इनके पीछे एक कारण यह है कि ईरान की इस्लामिक सरकार हर बार उन्हें सुपुर्दे खाक करने की एक तारीख बता देती है, लेकिन हर बार उस तारीख पर कार्यक्रम को टाल दिया जाता है। अब ऐसा तो इस बार भी, जब 2 जून को ईरान के सरकारी मीडिया ने ऐलान किया कि आखिरकार 3 महीने बाद आयतल्ला खामनेई को दफनाया जाएगा, ये कार्यक्रम 21 जून को हो सकता है। तब उससे पहले ये युद्ध शुरू हुआ है तो कई लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि ईरान के नेता ऐसे किसी भी दावे को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमला हिजबुल्ला के समर्थन में हुआ है। वैसे आज सवाल सिर्फ ईरान को लेकर नहीं है, बल्कि आज सवाल अमेरिका और इसराइल को लेकर भी है, जिनकी दोस्ती अब कभी भी टूट सकती है। कल रात जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया, तब उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी परेशान थे। उन्हें डर था कि अगर इसराइल ने इन हमलों का जवाब दिया तो ये युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा और अमेरिका और ईरान की डील फिर से फंस जाएगी। इसी चिंता में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन मिलाया और उनसे ये कहा कि वो इन हमलों का बदला ना लें, ईरान पर कोई जवाबी कार्रवाई ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बातचीत के बाद खुद अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस को एक इंटरव्यू दिया और ये कहा कि ईरान के हमलों में इसराइल को बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और इसीलिए इसराइल भी ईरान पर हमले नहीं करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप यही नहीं रुके, वो इतने उत्साहित थे कि उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को भी एक इंटरव्यू दिया और ये कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पास ईरान से डील करने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। और इन सारे बयानों से राष्ट्रपति ट्रंप ये दिखाना चाहते थे कि उन्होंने इसराइल को हमला ना करने के लिए मना लिया है और ईरान युद्ध को फिर से सुलगने से रोक लिया है, जबकि ये युद्ध शुरू उन्होंने ही किया था। लेकिन यहां राष्ट्रपति ट्रंप एक अलग माहौल बना रहे थे और अमेरिका का मीडिया भी यही लिख रहा था कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप की बात मान ली है और वो ईरान पर जवाबी हमले नहीं करेंगे। लेकिन देर रात ये सारी खबरें गलत निकली और इसराइल ने ईरान पर हवाई हमले लॉन्च करके ये बता दिया कि वो अब राष्ट्रपति ट्रंप को यस बॉस कहने के मूड में नहीं है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान में कम से कम 2 बड़े धमाके हुए, इस्फहान में 3 बड़े धमाके, तबरीज में धमाकों की आवाजें सुनाई दी और खुद इसराइल ने भी बताया कि उसने पश्चिमी और मध्य ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इनमें भी ईरान के मैशहर में उस पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हवाई हमले किए गए, देखिए, जिसे ईरान के लिए सबसे अहम माना जाता है। तो अब तक जो पश्चिम के देश इसराइल या फिर मिडिल ईस्ट के देश ये रो रहे थे कि हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर वो हमले कर रहे हैं, अब इसराइल भी वही कर रहा है। ये प्लांट फारस की खाड़ी के पास मौजूद है जहां 2,00,000 टन से ज्यादा के पेट्रोकेमिकल्स उत्पाद बनते हैं और अगर ये बनना बंद हो जाए तो इस पूरे इलाके में सोचिए किस तरह की तबाही मचेगी और विश्व में जो पूरा सप्लाई चेन है उस पर कैसा असर होगा और ईरान में तो खैर महंगाई बढ़ सकती है। और यही सोचकर इसराइल ने ईरान पर ये हमले किए हैं। अब यहां बड़ी खबर यह नहीं है कि इसराइल ने ईरान पर पलटवार किया, बल्कि बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप की बात नहीं मानी, उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। क्यों किया, अब उसके पीछे का खेल समझिए। इसराइल ये मानता है कि ईरान और हिजबुल्ला उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकते हैं। ईरान तो कहता भी है कि उसका लक्ष्य इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना है, जिसमें हिजबुल्ला उसकी मदद करता है। और पिछले 1 हफ्ते में हिजबुल्ला ने लेबनान से इसराइल पर 18 से ज्यादा रॉकेट हमले किए और यही हमले प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती में दरार डाल रहे हैं। इसराइल का कहना है कि

0: नेगेव रेगिस्तान में स्थित एक बहुत बड़ा वायुसेना का अड्डा है, जहां F-35 एडी, C-130 और खुफिया विमान तैनात रहते हैं। और यहां इसराइल का सबसे बड़ा परमाणु ठिकाना भी मौजूद है, लेकिन ईरान की मिसाइलें इन एयर बेसिस पर पहुंच गई और अब इसराइल कह रहा है कि वो इन हमलों का ईरान को करारा जवाब देगा, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप अभी किसी भी तरह से इस युद्ध को रोकने की कोशिश में लग गए।
1: Abba, this is hit the first part. Wow, that is crazy. I just get.
0: इस दौरान अमेरिकी एजेंसियों को इसराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा इनपुट मिला है, और जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस तरह से चीजें काम करती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है कि पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा विभाग ने जासूसी के मामले में इसराइल को क्रिटिकल श्रेणी में डाल दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को अब लगता है कि इसराइल अमेरिकी अधिकारियों, अमेरिकी सैन्य अधिकारियों और ईरान से जुड़ी अमेरिकी नीतियों की जासूसी कर रहा है। यानी अब इसराइल को अमेरिका पर भरोसा नहीं, और अमेरिका कैसे भरोसा करे अगर इसराइल जासूसी कर रहा है अमेरिका में। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म करने के लिए एक डील करना चाहते हैं, जबकि इसराइल इसे खुश नहीं है, और इसलिए अमेरिका को शक है कि इसराइल यहां यह जानना चाहता है कि अमेरिका ईरान से आखिर क्या बातचीत कर रहा है, वो क्या करना चाहता है। अमेरिकी अधिकारियों का यह कहना है कि इसराइली एजेंसियां अमेरिकी सैन्य अधिकारियों पर नजर रख रही हैं, सरकारी अधिकारियों के बारे में जानकारी जुटा रही हैं और ईरान से जुड़ी नीति चर्चाओं की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। इनमें भी विशेष रूप से उन लोगों पर नजर है, बताया जा रहा है कि विशेष रूप से उन लोगों पर नजर रखने की बात कही गई है जो ईरान के साथ डील के लिए चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इसराइल ने इन आरोपों को खारिज किया है और यह कहा है कि इसराइल अमेरिकी अधिकारियों या संस्थाओं की कोई भी जासूसी नहीं करता। लेकिन यहां सोचिए, यह मामला अब सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच मतभेदों तक सीमित नहीं है। अब बात यहां तक आ गई है कि दोनों देशों के बीच भरोसा कम हो रहा है। कुछ अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने दावा किया है कि उनके मोबाइल फोन में ऐसा सॉफ्टवेयर मिला जो उनकी बातचीत सुन सकता था या उनकी हर गतिविधि की निगरानी कर सकता था। और अगर यह दावा सही साबित हो जाता है तो इससे यह पता चलेगा कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद किसी भी तरह से यह जानने को बेताब है कि आखिर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान से किस तरह की डील कर रहे हैं। और यह जानना इसराइल के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब से कुछ देर पहले ईरान ने कहा कि वो इसराइल पर दोबारा हमला नहीं करेगा और इसराइल को भी लेबनान पर हमले अब बंद कर देने चाहिए, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह ऐलान शायद इसलिए हुआ क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को मुक्त कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। और यह इसलिए भी अहम है क्योंकि देखिए, अमेरिका ने ईरान की $100 बिलियन यानी 9,55,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की हुई है। अगर यह संपत्ति ईरान को मिल जाए तो उसकी अर्थव्यवस्था का नक्शा बदल सकता है, वो खुद को मिडिल ईस्ट में और भी मजबूत कर सकता है, और अगर ईरान मजबूत होगा तो इसराइल के लिए सीधा खतरा है। और इसीलिए इसराइल पर आरोप लग रहा है कि वो डील को लीक कराने के लिए अमेरिकी अधिकारियों की जासूसी करा रहा है, उनके फोन टैप करा रहा है, जबकि ईरान कह रहा है कि ये सब कुछ दिखावा है, अमेरिका और इसराइल मिले हुए बस सतही तौर पर लड़ाई दिखाई जा रही है।
2: हमने पहले भी जोर दिया था और अब भी कहते हैं कि लेबनन में युद्ध विराम किसी भी व्यापक युद्ध विराम और युद्ध समाप्त करने वाले अंतिम समझौते का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाल के दिनों में इसराइल द्वारा लेबनन में बढ़ते हमले और अपराध वास्तव में उन कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर कर रहे हैं जो इस स्थिति को और बेहतर बना सकते थे, और इस स्थिति के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है।
0: हमारे देश में भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसमें पाकिस्तान के पक्ष में लोग नारे लगाते हैं, जब उन्हें कहा जाता है कि भाई वहीं चले जाइए अगर आपको प्रेम है,

0: तो ऐसे में कई लोग उनको डिफेंड भी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं मुस्लिम देशों में जब कोई नागरिक अपने दुश्मन देश का समर्थन करता है तो उसके साथ क्या किया जाता है? पहले कुवैत को देखिए, 71 लोगों की सिर्फ इसलिए नागरिकता रद्द कर दी गई है, सिटीजनशिप कैंसल्ड, क्योंकि ये लोग उसके दुश्मन देश ईरान का समर्थन कर रहे थे और उसके पक्ष में वीडियो बना रहे थे। बहरीन में 69 लोगों को इसलिए उनकी नागरिकता रद्द कर दी गई क्योंकि ये लोग ईरान का समर्थन कर रहे थे। इसके बाद ईरान पर आइए, जिससे आज ही 3,121 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। ईरान का सरकार का आरोप है कि इन लोगों ने युद्ध के दौरान या तो अमेरिका और इसराइल की मदद की या उनका समर्थन किया या अपनी सरकार के खिलाफ कोई जासूसी की। ऐसे सभी लोगों को ईरान ने देशद्रोही माना है और देशद्रोही मानकर विदेशी ताकतों का एजेंट घोषित कर दिया है और आने वाले दिनों में इन्हें फांसी की सजा भी हो सकती है। यह बात सिर्फ ईरान की नहीं है, यूएई में जो पाकिस्तानी शिया मुसलमान ईरान का समर्थन कर रहे थे उनके खिलाफ भी वहां कार्रवाई हुई थी, जिससे यह पता चलता है कि ये सारे देश अपने नागरिकों से यही उम्मीद करते हैं कि वो दुश्मन देश को दुश्मन ही माने। लेकिन कई बार हमारे देश के अंदर आपने देखा ही होगा राजनीति हावी हो जाती है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, पाकिस्तान के साथ हम कई युद्ध लड़ चुके हैं, पाकिस्तान के खिलाफ अभी भी हमने अलग अलग मौकों पर उनकी आतंकी घटनाओं के बाद सैन्य कार्रवाई की, लेकिन आज भी पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने वाले लोग इस देश में मौजूद हैं, जबकि मुस्लिम देशों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने देश के लिए वफादारी कर रखनी पड़ेगी। खैर, इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक ऑयल टैंकर पर फंसे सभी भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। भारत की शिपिंग मिनिस्ट्री के मुताबिक जिस जहाज पर हमला हुआ उसका नाम MT मैरिवेक्स है और ये जानकारी अभी गलत है। इनके मुताबिक कि ये जहाज हमले के बाद डूब गया है। सभी नागरिक सुरक्षित हैं ये बताया जा रहा है। इस जहाज में आग लगी थी, 24 भारतीय नाविक फंस गए थे, लेकिन बाद में इन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है और ये जानकारी सरकार ने खुद दी है। सुनिए,
1: रिसेंट रिपोर्ट दैट टुडे अराउंड 1:30 PM देयर हैज बीन अ फायर रिपोर्टेड ऑन अ वेसल MT मैरिवेक्स इन विच There were 24 Indian seafarers. This is the preliminary information which we have received, based on which, as per available information, all Indian seafarers are presently safe. We are coordinating with Ministry of External Affairs, our Indian missions abroad, Indian Navy, Ministry of Defence, to ensure their safety.
0: अब बताया जा रहा है, इस हमले के बाद हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही फिर से रुक सकती है, इससे कच्चे तेल गैस की कीमतों में इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं होगी और इसका आपकी जेब पर बुरा असर पड़ सकता है। युद्ध के बाद से अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतें 4 बार, रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 2 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। युद्ध से पहले घरों में इस्तेमाल होने वाला लगभग 14.2 किलोग्राम का एक सिलेंडर 853 रुपए का था, जो अब 942 रुपए का हो चुका है। यानी एक सिलेंडर 89 रुपए महंगा हो चुका है और इसकी कीमतें लगभग 10.4% बढ़ चुकी हैं। ये कीमतें भी दिल्ली की हैं और दूसरे राज्यों में इसी सिलेंडर की कीमत 1,000 के आसपास भी है। यहां बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यूपीए के मुकाबले मौजूदा सरकार में रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ी हैं, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक ये जानकारी पूरी तरह से सही नहीं है। ये बात सही है कि 1 मई 2014 को एक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 928.50 रुपए थी, जबकि 7 जून 2026 को इसकी कीमत 942 रुपए है। इससे ऐसा ही लगता है कि पिछले 12 साल में रसोई गैस सिलेंडर ज्यादा महंगा नहीं हुआ, लेकिन इसका एक और पहलू यह भी है कि यूपीए सरकार में हर रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी, जिससे यह सिलेंडर तब सिर्फ 412 रुपए का पड़ता था, लेकिन आज सभी सिलेंडर पर सरकारी सब्सिडी नहीं मिलती। बिना सब्सिडी का एक सिलेंडर दिल्ली में 942 रुपए का है, जबकि उज्ज्वला योजना के तहत जरूर, जब आप देखें तो उज्ज्वला योजना के तहत जितने सिलेंडर मिलते हैं वो पूरे साल में 4 सिलेंडर पर, जो अगर आप घर में 4 सिलेंडर साल में ले रहे हैं तब आपको सब्सिडी मिलती है, 300 रुपए की मिलती है और इस सब्सिडी से सिलेंडर की कीमत हो जाती है 642 रुपए। अब इस सवाल पर आते हैं कि सरकार को गैस सिलेंडर महंगा क्यों करना पड़ा, सरकार की सबसे बड़ी दुविधा क्या है? देखिए, रसोई गैस सिलेंडर में LPG गैस भरी जाती है और हम अपनी 60% LPG गैस अकेले सऊदी अरब से आयात करते हैं। अब युद्ध से पहले एक टन एलपीजी गैस भारत को लगभग $542.5 में मिलती थी, लेकिन अब यही गैस प्रति टन हमें 46% महंगी मिल रही है और इसके दाम $790 पर पहुंच गए हैं। वैश्विक परिस्थितियों ने ऐसी मजबूरी पैदा की है, इससे एक रसोई गैस सिलेंडर हमारी तेल कंपनियों को लगभग ₹1600 का पड़ रहा है, जबकि आपको यह मिल रहा है ₹942 का दिल्ली में। यानी गैस महंगी होने से हर सिलेंडर पर तेल कंपनियों को ₹700 का घाटा हो रहा है, जिसके कारण घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 2 बार इजाफा कर दिया गया है। हालांकि यहां एक सवाल यह भी आता है कि अगर सरकार गैस की कीमतें बढ़ने से सिलेंडर के दाम बढ़ा सकती है तो क्या वो अपने टैक्स को कम नहीं कर सकती? दिल्ली में ₹942 के एलपीजी सिलेंडर पर 5% जीएसटी लगता है, जिससे सरकार को हर सिलेंडर पर ₹45.19 मिलते हैं। और जानते हैं इस जीएसटी में आधा हिस्सा केंद्र सरकार का होता है, आधा हिस्सा राज्य का। लेकिन सोचिए, आपने किसी भी सरकार को ये कहते हुए सुना है कि जब तक ये संकट है तब तक वो घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर पर टैक्स नहीं लेगी? साल 2025-26 में भारत में 3,32,00,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस की खपत हुई थी, जिसमें 90% गैस घरेलू सिलेंडर में इस्तेमाल हुई थी और इस पर सरकारों ने 5% का जीएसटी वसूला था, जिससे उसे ₹4,000 करोड़ ये ज्यादा की कमाई हुई थी। यहां एक और बड़ा बिंदु यह है कि सरकारें सिलेंडर पर जीएसटी को वसूलती हैं, वही सरकारें चुनाव में जब जाती हैं तो जनता को मुफ्त सिलेंडर देने का वादा भी करती हैं, जैसे 2022 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, 2023 में राजस्थान, साल 2024 में झारखंड, साल 2025 में दिल्ली, साल 2026 में तमिलनाडु में टीवी के पार्टी, असम में बीजेपी ने मुफ्त सिलेंडर देने का चुनाव में वादा किया। लेकिन जब बात इन्हीं सिलेंडर्स पर जीएसटी लेने की आती है तो किसी भी पार्टी की सरकार ये नहीं कहती कि संकट के दौरान टैक्स छोड़ देते हैं। यह इन आंकड़ों को भी देखना होगा कि भारत में सब्सिडी वाला सिलेंडर ₹642 का है और बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर ₹942 की आती है तो किसी भी पार्टी की सरकार ये नहीं कहती कि संकट के दौरान टैक्स छोड़ देते हैं। यह इन आंकड़ों को भी देखना होगा कि भारत में सब्सिडी वाला सिलेंडर ₹642 का है और बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर ₹942 का। ये कीमतें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में मिलने वाले गैस सिलेंडर से कम है, लेकिन फिर भी हमारे देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। हमने इसीलिए सारी जगहों का जो कन्वर्जन है वो रुपए में कर दिया आपके लिए। इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत भारत में हर व्यक्ति साल भर में 4.71 सिलेंडर इस्तेमाल करता है, लगभग 4.5 सिलेंडर। आम उपभोक्ता भी हर कनेक्शन पर लगभग 6.74 सिलेंडर्स का इस्तेमाल करता है और हमारे देश में औसत हर एक कनेक्शन पर 6.1 सिलेंडर की सालाना खपत होती है। यानी देश में रसोई गैस का औसत सालाना खर्च ₹5,652 है, जबकि देश में 7,52,00,000 लोग ऐसे हैं जो 20 दिन काम करके इतना पैसा कमा पाते हैं। मौजूदा सरकार में गैस सिलेंडर की खपत बहुत तेजी से बढ़ी है और देश में लगभग सभी लोगों के पास एलपीजी गैस है, लेकिन ईरान युद्ध के कारण संकट बहुत बड़ा है और इस संकट में महंगाई लोगों को बुरी तरह घेर रही है और ये बात सरकार भी समझती है, जिसके कारण दूसरे देशों के मुकाबले रसोई गैस की कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिशें हो रही हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हम लोग पूरे विश्व में जो युद्ध के हालात चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन अलग भिड़े हुए हैं, इधर ईरान इसराइल के बीच फिर से स्थिति खराब है, वहीं तीसरी तरफ अगर आप देखिए तो चीन पर सबकी नजर है कि आखिर चीन क्या कर रहा है। क्योंकि आपको यह बताते हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग क्यों जाना पड़ा। जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोविड के बाद दूसरे देशों के दौरे पर जाना कम कर दिया या लगभग बंद ही कर दिया, तब वो उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचे और वहां जिस तरह सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने उनका स्वागत किया है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए।

0: 间六月八号下午，中共中央总书记、国家主席习近平在平壤锦绣山迎宾馆同朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩举行会谈。
1: तो प्योंगयांग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत करने के लिए जो भीड़ जुटाई गई है और जिस तरह की परेड निकली वो सामान्य नहीं है। प्योंगयांग उत्तर कोरिया का वो शहर है जहां आम लोगों को बसने की इजाजत नहीं है। इस शहर में सिर्फ सुप्रीम लीडर किम जोंग उनके करीबी, सेना के बड़े अधिकारी, प्रभावशाली लोग, उत्तर कोरिया का इलीट क्लास रह सकता है। लेकिन शी जिनपिंग का स्वागत करने के लिए राजधानी प्योंगयांग में हजारों लोगों को इकट्ठा किया गया और वहां लोगों ने इस तरह से फूल, झंडे अपने हाथों में लेकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आभार जताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर कोरिया की सेना ने एक पूरी परेड वहां पर उनके लिए निकाली। उत्तर कोरिया और चाइना में इस तरह के स्वागत को मास मोबिलाइजेशन का हिस्सा माना जाता है, जिसे बड़ी भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन भी करना एक पुरानी परंपरा रही है। और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत के लिए भी इसी तरह की मास मोबिलाइजेशन, यानी चाइना और नॉर्थ कोरिया की एक साथ ताकत। साल 2013 से 2019 के बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने औसतन हर साल 14 विदेश यात्राएं की थी, लेकिन कोविड के बाद बहुत कम कर दी उन्होंने यात्राएं। पिछले कुछ वक्त से स्थिति यह है कि दुनिया के ज्यादातर बड़े नेता खुद बीजिंग जाकर उनसे मिलते हैं। और इसीलिए आज ये समझना जरूरी है कि जब शी जिनपिंग खुद प्योंगयांग पहुंचे हैं तो उसके पीछे असली वजह क्या है। तो पहला कारण हो सकता है रशिया। पारंपरिक रूप से चाइना और उत्तर कोरिया का रिश्ता ऐसा था जिसमें चाइना बड़ा भाई था और उत्तर कोरिया आर्थिक रूप से चाइना पर निर्भर था, उसका छोटा भाई समझ लीजिए। एक समय उत्तर कोरिया का लगभग 95% व्यापार अकेले चाइना से होता था, लेकिन 2022 में रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद स्थिति बदल गई और रशिया उत्तर कोरिया के करीब जाने लगा। नॉर्थ कोरिया ने रशिया के वो तोप के गोले दिए, मिसाइलें दी, हथियार, यहां तक कि सैनिकों की टुकड़ियां भेजी। कई विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर कोरिया की मदद ने रशिया की युद्ध क्षमता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बदले में रशिया ने भी उत्तर कोरिया को काफी मदद दी। रशिया ने उत्तर कोरिया को लगभग $14.4 बिलियन तक का भुगतान किया, जिनमें सैन्य मदद भी शामिल थी, और यहीं से चाइना चिंतित है। वो उत्तर कोरिया को रशिया के करीब जाता देखकर उसे अपने पाले में खींचना चाहता है। दूसरा कारण यह है कि चाइना खुद भी बहुत शक्तिशाली उत्तर कोरिया नहीं चाहता। ये सुनने में अजीब लगेगा लेकिन सच यही है कि चाइना नहीं चाहता कि उत्तर कोरिया बहुत ज्यादा सैन्य रूप से ताकतवर हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर उत्तर कोरिया ज्यादा परमाणु हथियार बना ले, ज्यादा आधुनिक मिसाइलें हासिल कर ले, अधिक आक्रामक हो जाए, तो इससे पूरे कोरियाई क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है और इसका नुकसान चाइना को भी हो सकता है। तीसरा कारण यह है कि उत्तर कोरिया तेजी से हथियार बढ़ा रहा है। 2026 की शुरुआत से उत्तर कोरिया 8 मिसाइल परीक्षण कर चुका है, AI से ऑपरेट होने वाली नई क्रूज मिसाइल्स बना चुका है, अपने नए परमाणु फैक्ट्री का प्रदर्शन कर चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम तेजी से बढ़ सकता है और चाइना इस पूरी गतिविधि को बहुत ध्यान से देख रहा है। चौथा कारण यह है कि दक्षिण कोरिया और जापान एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। हाल के महीनों में साउथ कोरिया और जापान सुरक्षा सैन्य सहयोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं और चाइना पहले से ही जापान के सैन्य विस्तार को लेकर बहुत असहज रहा है। अगर जापान दक्षिण कोरिया और अमेरिका के एक मजबूत ब्लॉक बना लेते हैं तो चाइना के लिए चैलेंज है और इसीलिए चाइना उत्तर कोरिया को अपने पाले में मजबूती से बनाए रखना चाहता है। और पांचवा कारण यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात की काफी संभावनाएं हैं, जिससे शी जिनपिंग असहज है और चाइना नहीं चाहता कि उत्तर कोरिया के साथ उसके ऐतिहासिक रिश्ते बिल्कुल भी कमजोर पड़े। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। शामली की यह खबर है जहां पर धर्म परिवर्तन का ऐसा मामला सामने आया, इस वक्त यूपी की सबसे बड़ी खबर है। यहां एक बड़े दावे के हिसाब से कारोबारी देवराज मलिक का बेटा आयुष मलिक अचानक एक दिन मुस्लिम टोपी पहनकर बकरीद की नमाज पढ़ने ईदगाह पहुंच गया, जिसके बाद उसकी एक तस्वीर वायरल हुई। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद उसके परिवार को पता चला कि आयुष मलिक अब खुद को मोहम्मद अली बताता है। उसका नाम अभी भी आयुष मलिक है लेकिन अलग अलग तरीकों में वो मोहम्मद अली बन चुका है। परिवार ने जबरन धर्म परिवर्तन की शिकायत दर्ज कराई है। उसकी फैमिली ने ही कराई है, परिवार की शिकायत है कि आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया गया है और ये काम उसकी जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी ने किया है। पुलिस ने शिकायत के बाद जांच शुरू की तो पता चला कि साल 2022 में आयुष और चांदनी कुरैशी की मुलाकात एक फिजियोथेरेपी सेंटर में हुई थी। यहां पर दोनों ने एक दूसरे से फोन नंबर एक्सचेंज किए, फिर दोनों की बातचीत शुरू हुई। जल्द ही दोनों ने कुरैशी प्लस नाम का एक जिम ज्वाइन कर लिया, जिसमें चांदनी कुरैशी आयुष मलिक की जिम ट्रेनर बन गई। आयुष मलिक के बारे में ज्यादातर लोग जानते थे कि वो करोड़पति परिवार से ताल्लुक रखता है। आरोप है कि प्रॉपर्टी और पैसे के लालच में चांदनी ने आयुष से नजदीकियां बढ़ाई और बाद में उसका धर्म परिवर्तन करवाकर चोरी छिपे उससे निकाह कर लिया। ये परिवार का आरोप है। धर्म परिवर्तन के बाद आयुष मलिक मोहम्मद अली बन चुका था, लेकिन उसकी खबर किसी को नहीं थी। पिछले 6 महीने से आयुष पर मुस्लिम दिखने का दबाव था, इसलिए वो अपनी दाढ़ी बढ़ा रहा था, मस्जिद में जाकर 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा था, टोपी लगा रहा था, मेडिकल स्टोर पर भी बैठने लगा था। परिवार को उसकी इन हरकतों पर शक था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो मुस्लिम धर्म अपना चुका है, इस्लाम धर्म अपना चुका है। इस साल बकरीद के दिन जब ईदगाह पर उसकी नमाज पढ़ते हुए तस्वीर वायरल हुई तो इलाके के हिंदू संगठनों को शक हुआ और हंगामा शुरू हुआ। इस बीच आयुष मलिक के पिता देवराज पर प्रॉपर्टी में हिस्सा देने का दबाव डाला जाने लगा। ये दबाव चांदनी कुरैशी के परिवार की तरफ से दिया जा रहा था। देवराज को हिदायत दी गई कि वो सारी प्रॉपर्टी आयुष उर्फ मोहम्मद अली और चांदनी कुरैशी के नाम कर दें। सिर्फ यही नहीं, देवराज मलिक का आरोप है कि चांदनी कुरैशी और उसके परिवार की तरफ से उन पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा था। देवराज ने हिंदू संगठनों की मदद ली, पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी और उसके परिवार के 6 सदस्यों, 3 मौलवियों पर जबरन धर्म परिवर्तन, अवैध वसूली का केस दर्ज किया है। पुलिस को जांच में पता चला है कि आयुष मलिक का धर्म परिवर्तन लंबे समय तक ब्रेन वॉश करके किया गया था। इस काम में चांदनी कुरैशी, उनका परिवार, दिल्ली के कुछ मौलवी, पाकिस्तान के एक धर्मगुरु इसरार अहमद के कट्टरपंथी वीडियोस का हाथ है। आयुष मलिक धार्मिक किस्म का इंसान नहीं है, वो मंदिर भी नहीं जाता था। चांदनी कुरैशी को इसके बारे में पता था, इसलिए मौका देखकर उसने आयुष से नजदीकियां बढ़ाने के बाद उसको मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। चांदनी ने आयुष मलिक को पाकिस्तान के धर्मगुरु डॉक्टर इसरार अहमद का वीडियोस दिखाने की सलाह दी, देखने की सलाह दी। इसरार अहमद की मौत साल 2010 में हो चुकी है, लेकिन गैर मुस्लिमों के ब्रेन वॉश करने से जुड़े सैकड़ों वीडियोस इस वक्त यूट्यूब पर मौजूद है। इसरार अहमद दावत देने के प्रसिद्ध था। दावत का मतलब एक ऐसी बैठक आयोजित करना जिसमें गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। इसरार अहमद की वीडियोस देखने के बाद सलाह देने के अलावा चांदनी कुरैशी, उनका परिवार, मौलवियों के इशारे पर आयुष मलिक की बातचीत पाकिस्तान के कुछ मौलानाओं से भी कराई गई और अब ये मामला ऐसा बन गया है। आयुष मलिक केवल 4-5 साल पहले ही चांदनी कुरैशी के संपर्क में आया था। परिवार के मुताबिक वो बहुत धार्मिक व्यक्ति भी नहीं था, लेकिन जब हमने उनसे बात की तो उसने किसी कट्टर धार्मिक व्यक्ति की तरह जवाब दिया। उसने हमें कुछ ऐसी बातें कही जिससे पता चला कि उसका ब्रेन वॉश किस हद तक हो चुका है। जैसे हमने आयुष से पूछा कि उसके दिमाग में मुस्लिम बन जाने का ख्याल कब आया। इस सवाल के जवाब में उसने कहा कि जब वो 13 साल का था तभी से वो मुस्लिम बनना चाहता था। जब हमने उससे पूछा कि धर्म परिवर्तन कहां पर कराया गया तो उसने कहा कि धर्म परिवर्तन कहीं होता नहीं है, ये अपने आप हो जाता है, अंदर से हो जाता है। अब हम आपको हमारे संवाददाता अरविंद ओझा और आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली की बातचीत का कुछ हिस्सा दिखाते हैं।
2: आपका नाम क्या हो चुका है?
3: आयुष मलिक नाम है, डॉक्यूमेंट्स में वही नाम है, मोहम्मद अली जो मैंने नाम अपनाया।
2: अच्छा, किस तरह से आप मोहम्मद अली बने इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए।
3: मोहम्मद अली नाम तो मैंने अभी रखा, इस्लाम में मैं कैसे आया वो धीरे धीरे करके सीख कर आया।
2: अच्छा, कैसे कॉन्टेक्ट में आए आप चांदनी कुरैशी के, पूरा अगर आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं। आप
3: फिजियोथेरेपिस्ट थी, वो शोल्डर इंजरी थी मुझे, लिगामेंट टियर था, फिजियोथेरेपी कराने जाता था, कभी कभार चले गए तो कांटेक्ट में पता लग गया कि हाँ वो फिजियोथेरेपी है, मुसलमान है।
2: तो आपका मुस्लिम धर्म का जो परिवर्तन है वो कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में? कहाँ?
3: धर्म परिवर्तन कहीं पे नहीं होता, धर्म परिवर्तन तो अंदर से होकर कभी भी कर सको आप, इसमें कोई मौलवी प्रोफेशन काम नहीं होता।
2: और किसका वीडियो, किस पाकिस्तानी मौलाना का वीडियो देखते थे? मतलब
3: ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी का देखता था, डॉक्टर इशरार अहमद का ज्यादा देखता था।
2: डॉक्टर इशरार अहमद पाकिस्तानी मौलाना है जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं,
3: तो धर्म परिवर्तन की तरफ।
2: अच्छा,
3: धर्म की बात बताते हैं। अब आप किसी की बात सुनकर उससे प्रभावित हो गया और आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आप कह सकोगे?
2: चांदनी कुरैशी से आप कैसे मिले और किस तरह से नजदीकियां हुई? सुना शादी भी कर लिया आपने?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, 4 साल पहले निकाह हुआ था सर।
2: ऐसा क्या कनेक्टिविटी था कि आप मोहम्मद अली को
3: सीख था? ऐसा कोई कनेक्टिविटी नहीं है कि मुझे आज पसंद आया।
1: आयुष के पिता देवराज मलिक इस मामले को सीधे सीधे प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश मानते हैं। उनका कहना है कि आयुष को चांदनी कुरैशी और उसके परिवार ने फंसाया, मुस्लिम बनाकर उसके हिस्से की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की एक साजिश रची है। पिता को सुनिए।
4: आयुष के पास नाम काम दाम सब चीज पर्याप्त मात्रा में है, और तो उन्होंने इसे ब्रेन वॉश करके मौलवी वगैरह वगैरह और फर्जी दस्तावेज करके शादी का निकाहनामा फर्जी निकाहनामा करा कर और उसकी संपत्ति हड़पने का मामला मेरे संज्ञान में जो स्थानीय स्तर पर मैं अपनी जानकारी से अपने ईस्ट मिस्ट घनिष्ठ जो बात पता लगाई, मुख्य उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का है।
1: फिलीपींस में कुदरत ने ऐसा खौफनाक तांडव मचाया जिसने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को हिलाकर रख दिया। सोमवार सुबह आए रिक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप ने मिंडानाओ आइलैंड को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगे। स्कूल के पहले ही दिन मासूम बच्चे मौत के साए में चीखते नजर आए। पल अब झपकते बड़े बड़े मॉल्स, इमारतें, जमींदोज। अब तक 32 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सुनामी के अलर्ट के बीच लाखों लोग पलायन कर रहे हैं। फिलीपींस में सोमवार की वो सुबह बाकी दिनों की तरह नहीं थी। बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे, बाजार खुलने लगे थे कि अचानक जमीन इस कदर, देखिए ये तस्वीरें देखिए, महाभूकंप ने दक्षिणी फिलीपींस को जद में लिया। कुदरत का एक कहर यही नहीं रुका, मुख्य झटके के बीच बाद में पूरा इलाका 6.5 तीव्रता के शक्तिशाली आफ्टर शॉक से भी लगातार कांपता रहा। 32 लोगों की मौत के अलावा सैकड़ों लोग मलबे के नीचे जिंदगी और मौत की जंग इस वक्त भी लड़ रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। देश में होने वाली परीक्षाओं को लेकर छात्रों में अविश्वास पैदा हो गया है। किसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, कहीं मार्किंग में गड़बड़ी हो जाती है। पिछले कुछ दिनों में नीट, सीबीएसई, सीयूईटी जैसी परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हुई उसको लेकर छात्र बहुत नाराज हैं। खासतौर पर अगर आप देखिए तो हालात यह है कि संस्थाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है लीक प्रूफ एग्जाम कराना। परीक्षाओं के प्रति अविश्वास के इस माहौल के बीच आज यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा हो रही है। अगले 3 दिनों तक यूपी के 75 जिलों में ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। यूपी पुलिस में 32,679 सिपाही पद हैं, जिनके लिए परीक्षा का आयोजन हुआ है। इस परीक्षा में 28,80,000 परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। 28 लाख। प्रदेश में 1,183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2 शिफ्ट में सुबह 10 से 12, दोपहर में 3 से 5 एग्जाम कराया जाएगा। इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट और प्रमोशन बोर्ड ने सुरक्षा में सख्ती बढ़ाई है। इस बार यूपीएससीएफ ने परीक्षाओं के लिए डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था बनाई है। और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
4: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
3: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
5: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
6: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
7: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
5: मतलब
7: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
6: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
7: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
8: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
9: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
10: ये थर्ड नहीं 13 डिग्री का केस है।
11: माल मैंने चुराया, शौचालय के पीछे पीपल के नीचे दबाया।
10: हवालात की हवा अच्छे अच्छों को सुधार देती है शुक्ला।
12: समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है।
10: समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का, और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
2: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
5: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
4: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।

0: इन एसोसिएशन विद
1: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
0: हिंट, बड़े आराम से
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
0: विमल, बोलो जुबां केसरी।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: है बाबा का बुलडोजर और जमींदोज हो रहा है अवैध निर्माण। तस्वीरें संभल की, संभल में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। मेहराबें गिराई जा रही हैं, मीनारें ढहाई जा रही हैं।
1: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैंड मशीन को यहां पर लाया गया है। और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो है पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही थी। और इसी तरह से जो लगातार बुलडोजर एक्शन है वो यहां पर लगातार जो है जारी है। और इसी के साथ देखिए ठीक आपको मैं पीछे अगर आपको जो तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए यहां पर आप जो देखेंगे तो देखिए लगातार पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहां पर जो बनी हुई है। यहां पर आप ये बुलडोजर आपको मशीनों में जो है सर नजर आएंगे। और देखिए किस तरीके से जो यहां पर बुलडोजर और हाइड्रा मशीनें हैं वो लगातार यहां पर जो है मौके पर मौजूद है।
0: ये मस्जिद 120 वर्ग मीटर में बनी हुई थी।
2: ये कार्रवाई कल से शुरू हुई थी, लेकिन स्ट्रक्चर के आसपास चूंकि आबादी है इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही थी। और कल ये देर शाम तक काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए आज जो है पोकलैंड मंगा करके उस कार्रवाई को पूरा कराया जा रहा है।
0: अब इस बुलडोजर एक्शन पर यूपी की सियासत सुलग रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि अब तो जुल्म की इंतहा हो गई है।
3: जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर ही काम किया गया कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जाकर के कोई स्टे वगैरह ले सके।
0: 27 के समर में अभी समय है, मगर यूपी की सियासत में हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स जोर पकड़ने लगी है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही. अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे. तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए. और कर्म का गणित बहुत सीधा है, वक्त आने पर जिंदगी का मानचित्र बदल देता है. नमस्कार.
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो. Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: शताब्दी रॉय के घर बैठक, शुभेंदु अधिकारी रहे मौजूद। कोकाली का दावा, हमारे साथ 20 सांसद। दोपहर भूपेंद्र यादव से भी मिले थे नाराज सांसद। नीट पेपर लीक पर इंडिया गठबंधन का बड़ा दाव, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, सर्वदलीय बैठक की मांग, सीजीआई को लिखेंगे पत्र, 5 सूत्रीय एजेंडा तय, बीजेपी ने उठाए सवाल। यमुना सफाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक, एनडीडीबी मॉडल के तहत साफ सफाई पर जोर, हर 20 दिन में काम की समीक्षा करने के आदेश। विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, पिघला स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत, मौके पर आग की तेज ऊंची लपटें। और ईरान इसराइल में युद्ध फिर हुआ शुरू, तेल अवीव पर बरसते रही मिसाइलें, हिजबुल्ला की ओर से भी हमले, आईडीएफ ने इस्फहान पर किया जवाबी प्रहार।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
2: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo. Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं सईद अंसारी। रात के 10 बज रहे हैं, आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक, स्वागत है आपका। और आज दस्तक में बात फैसल खान और खान सर। बिहार पुलिस खान सर को खोज रही है और खान सर हैं कि बिहार पुलिस को मिल ही नहीं रहे। अब खान सर को गिरफ्तार करने के लिए एसआईटी की टीम पटना और उसके आसपास के जिलों में दबिश दे रही है, लेकिन खान सर का कुछ अता पता नहीं है। खान सर पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ है, 4 दिन हो चुके हैं। खान सर की अग्रिम जमानत याचिका भी ऑनलाइन दाखिल की गई, जिस पर मंगलवार को यानी कि कल पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। तो आइए हम आपको दिखाएं खान सर का ये फरारी चैप्टर।
3: सब लूट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हम नीम जैसे ही कड़वा हैं, पसंद नहीं आएंगे लेकिन बीमारी ठीक कर देंगे आपको, याद रखिए। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं।
4: फैजल खान और खान सर को लफ्जों की जादूगरी खूब आती है, पढ़ाते वक्त जिस तरह से खान सर शब्दों में घुमाते हैं, इसी से वो यूट्यूब और सोशल मीडिया के स्टार भी बने हैं।
5: देर से बनिए लेकिन जरूर कामयाब बनिए, क्योंकि कुछ वक्त बाद लोग आपकी खरियत नहीं हैसियत पूछेंगे।
4: खान सर का पढ़ाने का स्टाइल कुछ अलहदा है, इसीलिए वो कोचिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गए हैं।
3: शेरों के उस फौज से डर नहीं लगता है जिसका नेतृत्व कोई गीदड़ कर रहा हो, बल्कि मुझे डर उस गीदड़ की फौज से लगता है जिसका नेतृत्व कोई शेर कर रहा हो।
4: लेकिन लोकप्रिय होने और अपनी कोचिंग को हिट कराने के चक्कर में खान सर एक दिन इतना बुरा फंस जाएंगे, ये उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, कोचिंग वॉर में आज खान सर फरार हैं, क्योंकि खान सर की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस की छापेमारी। पटना और आसपास के जिलों में एसआईटी का ऑपरेशन खान सर। खान सर फरार, मिलते ही कर लिए जाएंगे गिरफ्तार। खान सर पर बीएनएस की धारा 109 के तहत केस दर्ज। खान सर पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट का केस। पटना पुलिस ने केस डायरी कोर्ट में जमा करा दी है। पटना और आसपास के जिलों में गिरफ्तारी के लिए खान सर की तलाश जोर शोर से चल रही है, लेकिन खान सर कहाँ है कोई बता नहीं रहा है। आपको बता दें कि खान सर की अग्रिम जमानत याचिका भी ऑनलाइन दाखिल की गई, जिस पर पटना सिविल कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या उससे पहले खान सर की गिरफ्तारी होगी?
6: अरे खान गिरफ्तार कब होगा? पटना पुलिस, बिहार पुलिस ये पूछ रहे हैं कि रंगा सियार नटवर लाई कब गिरफ्तार होंगे खान सर।
4: और ये सवाल उस ज्ञान बिंदु कोचिंग वालों की तरफ से उठाए गए हैं जिनसे खान सर की लड़ाई हुई है। जिस ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को खान सर ने गोलीकांड में गिरफ्तार करवा दिया।
6: सबसे बड़ा सवाल है कि जो निर्दोष थे रोशन आनंद सर, उनकी गिरफ्तारी मात्र 12 घंटों में होती है गार्ड की लड़ाई में, लेकिन जो अपराधी हैं और उनके अपराध की जो चीजें दिख रही हैं मीडिया में भी दिख रही है और एविडेंस के तौर पर आप लोग हर जगह देख सकते हैं और खुद पुलिस ने उनके खिलाफ FIR किया है, फिर भी वो आजाद घूम रहे हैं, फिर भी वो क्लास ले रहे हैं और क्लास में कैसे पत्थर चला, कैसे गोली चला, ये सब बातें बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये कहां तक सही है?
4: 4 जून को फैजल खान उर्फ खान सर पर FIR रजिस्टर होती है और उसके बाद वो अपनी कोचिंग सेंटर के स्मार्ट क्लासरूम में छात्रों को अपना केस समझाते हुए नजर आते हैं, यानी लफ्जों की वही जादूगरी दिखाते हुए जिसमें खान सर को महारत हासिल है।
7: वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता। ये लोग कहे कि खान सर के ऊपर माला चढ़ जाए, फोटो पे क्या चढ़ जाए माला, यही तो चाहते हैं लोग। अरे पागलो मेरे भाई लोग, एक बात बताए यार, वो हमला किसके ऊपर करने आया है? हमारे ऊपर। दिन में आया कि रात में? रात। अकेले आए ग्रुप में? पथराव किया कि नहीं? गोली चलाए कि नहीं चलाए? गार्ड को अधमरा किया कि नहीं किया? क्या FIR भी नहीं करें? ले अब पूछिए जरा ये बात। सबसे जरूरी चीज जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग, चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी, तो सेल्फ डिफेंस में वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता। एक गार्ड का कर्तव्य क्या होता है? सुरक्षा करना।
4: और तो और खान सर अपनी कोचिंग के स्मार्ट क्लासरूम में 2 जून की घटना की CCTV फुटेज का पूरा विश्लेषण भी करते हैं।
8: इसकी गिरफ्तारी अभी तक।
4: खान सर मार्कर से स्क्रीन पर आरोपियों को घेर घेर कर दिखाते हैं और छात्रों को बताते हैं कि देखिए इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है।
8: ये आदमी कौन है और कैसे आता है 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जाता है? 20-25
4: खान सर उसका नाम विकास बताते हैं और उसकी पूरी पहचान भी बताते हैं।
8: इसका नाम विकास या विवेक करते हैं। विकास, इसने बयान दिया है, देखो हम लोग तो पढ़ाने वाला, हम लोग को इतना नहीं पता रहता कि कौन कहा क्या काम कर रहा है। क्या हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? सेल्फ इसकी गिरफ्तारी पटना पुलिस से मांग करते हैं कि अभी तक बाहर घूम रहा है।
4: इस स्मार्ट लेक्चर के बाद खान सर का फरारी चैप्टर शुरू हो जाता है।
9: खान की गिरफ्तारी हुआ क्यों? 4 तारीख को आप FIR रजिस्टर्ड करते हैं। आपके FIR रजिस्टर्ड करने के बाद वो अपने क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड पे CCTV फुटेज को चला करके और वो आदेश का एक कर रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना, ये फलाना लड़का है, इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, जो कि उस व्यक्ति के ऊपर खुद ऐसे ऐसे धाराएं लग गई हैं जिसमें उसकी प्रत्यक्ष गिरफ्तारी एट ए टाइम गिरफ्तारी होनी चाहिए।
4: जैसे ही खान सर गायब होते हैं एक्शन शुरू हो जाता है। उनके कोचिंग सेंटर पर फायर सेफ्टी वाले पहुंच जाते हैं। कोचिंग सेंटर में नियमों की पड़ताल शुरू होती है और खामियां नोट कर ली जाती हैं और फायर सेफ्टी कहती है कि अगर खान ग्लोबल स्टडीज ने खामियों को दूर नहीं किया तो कोचिंग सेंटर को सील कर दिया जाएगा।
10: कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो टूटी पाई गई है या था जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है, जो यदि वे उसका मिट कर देते हैं तब कोई बात नहीं है, यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी, यथाविनिश प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी, उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है।
4: 2 जून को हुए कोचिंग वॉर में विरोधी पार्टी पर गोलीकांड का आरोप लगाकर लीड खान सर ने ले ली थी, लेकिन जैसे ही ज्ञान बिंदु की ओर से वीडियो जारी किया गया जिसमें खान सर के गार्ड फायरिंग करते हुए दिखाई दिए, उसके बाद से मामला पूरी तरह पलट गया और खान सर बुरी तरह से फंस गए। ऊपर से खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दे दिया कि खान सर ने ही उनसे कहा था कि तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे, और अब खान सर फरार हैं और फरारी में ही अपने वकीलों के जरिए अग्रिम जमानत की कोशिशों में जुटे हुए हैं। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और अब खबर पश्चिम बंगाल की, जहां आज ममता बनर्जी के पुष्पा यानी कि जहांगीर खान को एसटीएफ ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। इधर जहांगीर खान की गिरफ्तारी हुई, उधर जहांगीर खान के घर में गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ कर दी। आइए दिखाएं आपको।
11: जी हाँ, झुकेगा नहीं फिल्म पुष्पा का डायलॉग मारने वाले टीएमसी नेता और अभिषेक बनर्जी के सबसे करीबी जहांगीर खान को पुलिस नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार करके लाई है। बंगाल से ममता बनर्जी का 15 साल का शासन उखड़ते ही शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के पुष्पा का मजाक भी उड़ाया था। और आज न सिर्फ टीएमसी का पुष्पा झुका हुआ है बल्कि सलाखों के पीछे भी भेजा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता पुलिस स्टेशन में जहांगीर खान के खिलाफ पूरी 7 एफआईआर दर्ज की गई थी। पश्चिम बंगाल में हार के बाद टीएमसी का बुरा दौर शुरू हुआ तो न सिर्फ अभिषेक बनर्जी पर अंडे और पत्थर पड़े, अब उनके करीबियों की भी शामत आ रही है।
12: गुंडा थे, क्रिमिनल थे, जाने माने लीडर कब थे, वो तृणमूल के जाने माने गुंडा थे। ठीक किया गया, ये अरेस्ट बहुत साल पहले होना चाहिए था लेकिन पुलिस नहीं किए थे क्योंकि अभिषेक को मना था, ममता को भी मना था। अभी तो अभिषेक नहीं है, ममता नहीं है। और
0: अब खबर लव जिहाद के एक बेहद सनसनीखेज आरोप की। उत्तर प्रदेश की शामली में बड़े दवा व्यापारी साजिश के तहत धर्मांतरण कर आरोप एक लड़की और कुछ मौलानाओं पर लगाते हैं। आरोप के अनुसार करोड़ों की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए पहले आयुष को प्रेम जाल में फंसाया गया और फिर इस आयुष का धर्मांतरण करवाकर चांदनी कुरैशी नाम की लड़की से निकाह करवा दिया गया। आयुष का घरवालों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चांदनी कुरैशी उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि धर्मांतरण करवाने वाले मौलानाओं और दूसरे लोगों को पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। आखिर आयुष मलिक कैसे बन गया मोहम्मद अली, आपको हम दिखाते हैं।

0: शामली में हिंदू के मुस्लिम बनने का पूरा सच। क्या धर्मांतरण के पीछे है करोड़ों का साम्राज्य? जिम ट्रेनर चांदनी के लव ट्रैप में फंसा आयुष। सौ करोड़ की प्रॉपर्टी और धर्मांतरण का रैकेट। आयुष के धर्म परिवर्तन का पाकिस्तानी कनेक्शन। आयुष मलिक बन गया मोहम्मद अली। टीवी स्क्रीन पर आपको दो तस्वीरें नजर आएंगी। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब ये लड़का आयुष मलिक हुआ करता था। दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब आयुष मोहम्मद अली बन गया। अब चेहरे पर दाढ़ी है, सिर पर टोपी और आयुष उर्फ अली बाकायदा मस्जिदों में नमाज पढ़ता है, क्योंकि आयुष हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है।
1: मैंने बातचीत की लेकिन वो नुकाय कोई बात नहीं है पापा, गोल मोल जवाब, स्पष्ट जवाब मेरे सामने नहीं देता। वो मीडिया में या कहीं कुछ दे दिया हो, कह रहा हो, मुझे नहीं पता इस बात का ना, वही मेरे सामने आई बात। लेकिन वो दाढ़ी रख रहा और नवाज के वीडियो आ रहे, इसका मतलब तो धर्मांतरण कर दिया। इसका तो यही स्पष्टीकरण देना चाह रहा ना अपना।
2: ये हमारे सामने आयुष मलिक खड़े हैं। अब ये आपका नाम क्या हो चुका है?
3: आयुष मलिक नाम है, डॉक्यूमेंट्स में वही नाम है, मोहम्मद अली जो मैंने नाम अपनाया।
2: अच्छा,
0: अब सवाल यही है कि आयुष के मोहम्मद अली बनने पर बवाल क्यों मच गया? तो इसका जवाब है आयुष मलिक और मोहम्मद अली के पिता देवराज मलिक का सनसनीखेज आरोप। बहुत गौर से पिता देवराज मलिक के आरोप को सुनिए।
1: मुझे इस प्रकरण का कि उसने धर्मांतरण किया, उसकी दाढ़ी से के रख रखाव से आइडिया आया, और दूसरे पक्ष से जब पैसे की मांग, प्रॉपर्टी नाम करने की बात और उधर उसकी दाढ़ी, ये सब कुछ देखते हैं मैं अपने दिमाग से देखा कि इस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया गया। चांदनी नामक एक लड़की ने, चांदनी कुरेशी, उस लड़के को प्रेम जाल में फंसा, और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे मौलवियों का और बाह्य लोगों का कुछ जो अंतर्राज्य स्तर पर काम कर रहे और अपने परिवार से सभी से वो करके उसको ब्रेन वॉश किया। शादी का निकाहनामा, फर्जी निकाहनामा करा के मुख्य उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का है।
0: घर वालों का आरोप है कि सुनियोजित साजिश के तहत चांदनी कुरैशी ने अपने घर वालों की मदद से आयुष को प्रेम जाल में फंसाया। मकसद यही था कि देवराज के इकलौते बेटे आयुष का धर्म परिवर्तन करवा कर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पना।
2: इस तरह की कई प्रॉपर्टी आयुष मलिक और उसके पिता की है। पुलिस की तहकीकात में ये सामने आया है कि इन्हीं प्रॉपर्टी को किसी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए पहले आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। फर्जी निकाहनामा भी तैयार किया गया था और ये सब कुछ चांदनी कुरैशी, उसके पिता, उसके परिवार ने किया था। चांदनी

0: के पिता जूस का ठेला लगाते हैं, जबकि उसका एक भाई आयुष की मेडिकल शॉप पर काम करता था। शुरुआती जांच में पता चला कि पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट चांदनी कुछ साल पहले आयुष के संपर्क में आई। इसके बाद चांदनी उस जिम में आने जाने लगी जहां पर आयुष जाता था। धीरे धीरे दोनों करीब आए और यहीं से आयुष के धर्म परिवर्तन का खेल शुरू हुआ।
1: चांदनी जो कुरैसी है, चूंकि आपको मालूम है पहले वो जिम ट्रेनर रही है, अभी भी साथ जिम में कहीं जाती होगी वो, तो उसके प्रभाव में आया, ये जिम में जाता रहता था लड़का, ये उसके प्रभाव में आया। और बाद में उसने पाकिस्तान के एक धर्मगुरु हैं डॉक्टर इसरार, उनका आपने देखा होगा बहुत ही वीडियो चलता रहता है, और काफी उनका काम ही है दावत देना कि अन्य धर्म के लोग इस्लाम में दीक्षित हो जाए, हमारे यहाँ कन्वर्ट हो जाए, और उसी प्रभाव में आया।
0: आयुष के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने तीन मौलानाओं चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम समेत कई लोगों को नामजद किया। चांदनी और उसके पिता की गिरफ्तारी तक हो चुकी है।
2: कुछ मौलाना भी रडार पर हैं क्या सर? बता रहे थे कि दिल्ली में कहीं धर्म परिवर्तन कराया गया था निकाहना।
1: जी बिल्कुल, वो खुद ही बता रहा, आप उससे बात करेंगे बताएगा। दिल्ली के पास कोई मस्जिद है, वहाँ पे वो गया था, वहाँ पे इसकी निकाह हुई, वहाँ इसको कन्वर्ट कराया गया इसको।
0: घर वालों ने करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि कानूनन धर्म परिवर्तन जुर्म नहीं, लेकिन किसी लालच या दबाव में धर्म परिवर्तन गुनाह है। पुलिस के मुताबिक आयुष के मोहम्मद अली बनने के पीछे बड़ी साजिश है। हालांकि खुद आयुष उर्फ अली धर्म परिवर्तन को अपना निजी फैसला बता रहा है।
3: बहुत लंबा वक्त लगा, 2007-08 से सीख रहा सर।
2: शादी कहाँ से सीख रहे?
3: शादी मस्जिद के पास जगह थी, वहाँ पे भी
2: ईद में इस बार गए थे, तस्वीरें हैं ईद में।
3: पहले ईद की नमाज बाहर पढ़ता था, इस बार पहली बार ईदगाह में सामने में पड़ी, तो तस्वीर आई वो वायरल कर दी उन्होंने, फोटो वोटो खींच के। बाहर लोग जानते नहीं यहाँ जाने सब एक दूसरे को, छोटा सा।
2: अब आयुष मलिक नहीं बनना है?
3: आयुष मलिक तो आयुष मलिक डॉक्यूमेंट्स में आयुष मलिक ही है। वो आप पूछ रहे इनडायरेक्टली कि हिंदू नहीं बनना है, जैसा मेरे पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि हिंदू बनो, और मेरे इन लॉज को प्रेशराइज करा जा रहा है कि तुमने बनवाया उसको।
0: आयुष उर्फ अली की माने तो वो हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम बन चुका है। वहीं घर वाले और पुलिस मानती है कि आयुष का इस कदर ब्रेन वॉश किया जा चुका है कि वो कुछ भी सुनने और समझने को तैयार नहीं है।
2: शामली पुलिस ने बेहतरीन काम किया इस मामले में, और चांदनी कुरैशी उसके पिता को गिरफ्तार किया है। मौलवी फिलहाल फरार चल रहा है, लेकिन बीते दिनों जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई यूपीएटीएस की, बाकी अदर एजेंसियों की, एक सुनियोजित धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है, और इसमें जब किसी का ब्रेन वॉश होता है, वो अपना धर्म परिवर्तन करा लेता है, तो वो इतना इन्फ्लुएंस होता है कि उसको डीरेडिकलाइज करना काफी टफ होता है। तो ये आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली थे। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, शामली आज तक।
4: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको बताएंगे शुरू हो गया है महायुद्ध ईरान और इसराइल के बीच, आगे अब क्या होगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए दस्तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Acoj, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
5: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
4: सिंह जैसी
6: शक्ति मुझ में।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
11: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
12: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
10: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
13: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
11: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
10: जहां खबर वहां खबरदार।
14: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
10: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल।
15: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी।
10: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल।
15: CBSE के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
10: छात्रों को दिया मंच।
15: उज्मा हमारे साथ कोटा से, और अदिति मुंगेर से हैं, और तानिया कोटा से हैं, और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
16: मैम ये देखिए, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
17: IIT मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
10: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर।
15: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब सरकार की तरफ से CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
10: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।

0: खुलासा हुआ है कि पहली बार चांदनी और आयुष की मुलाकात 2018 में हुई थी। तब से चांदनी लगातार आयुष को झांसा देती रही। आखिरकार वो अपनी साजिश में कामयाब रही।
1: से आप मोहम्मद अली बने, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए।
2: मोहम्मद अली नाम तो मैंने अभी रखा, इस्लाम में मैं कैसे आया धीरे धीरे करके सीख कर आया।
1: अच्छा,
0: आयुष अब खुद को मुस्लिम बता रहा है। धर्मांतरण और निकाह की साजिश कैसे आगे बढ़ी, इसकी कड़ियों को सुनिए और समझिए। आयुष शामली में ही अपनी मेडिकल स्टोर संभालता रहा है। उसी मेडिकल स्टोर पर गिरफ्तार चांदनी का भाई आस मोहम्मद काम करता था। आस मोहम्मद को पता था कि आयुष अकूत संपत्ति का मालिक है। 2018 में आयुष के पैर में फ्रैक्चर हो गया। उसी के इलाज के सिलसिले में वो स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुआ। वहीं चांदनी कुरैशी की पहली मुलाकात हुई। उसने आयुष की मुलाकात अपनी बहन से कराई। तब से दोनों एक दूसरे को जानने लगे। फिजियोथेरेपी के बहाने चांदनी कुरैशी ने आयुष मलिक से नजदीकियां बढ़ाई और अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। चांदनी के जाल में फंसकर आयुष मलिक उसी जिम में जाने लगा जहां चांदनी कुरैशी ट्रेनर थी। वो अब साजिशों में फंस चुका था। चांदनी का परिवार करोड़ों की संपत्ति हथियाना चाहता था। खुलासा ये भी हुआ है कि चांदनी कुरैशी आयुष मलिक को पाकिस्तान के एक मौलाना का वीडियो देखने के लिए भी दबाव डालती थी। पूरी तरह फंस चुका आयुष भी उस पाकिस्तानी मौलाना की वीडियो देखने लगा। आयुष के पिता ने अपने बेटे की घर वापसी के लिए पुलिस से शिकायत की, कथित निकाह के बारे में बताया, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को कोई निकाहनामा नहीं मिला। इन सब के बीच अब बेबस पिता को कानून से उम्मीद बंधी है। वो भरोसा जता रहे हैं कि पुलिस की जांच में संपत्ति हड़पने वाली साजिश का खुलासा होगा और उनके बेटे आयुष की घर वापसी हो जाएगी। शामली में इस खुलासे के बाद से हड़कंप मचा है। वैसे संपत्ति हड़पने के लिए धर्म परिवर्तन और ब्लैकमेलिंग के आरोपों से मौलाना इनकार कर रहे हैं। इस संगीन मामले में पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है ताकि धर्मांतरण की साजिश रचने वालों को कानूनन सबक सिखाया जा सके। अरविंद ओझा, शामली, आज तक।

0: कभी लव जिहाद, जिसमें हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया। कभी जिम जिहाद, जिसमें जिम के बहाने धर्मांतरण वाली साजिश रची गई। तो कभी दोस्ती जिहाद, गाजियाबाद में 28 मई को जो हुआ उसे यही नाम दिया गया। यूपी में ऐसी तमाम संगीन वारदातों के बीच अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर और देखकर आपको यकीन नहीं होगा। लव जिहाद की नई साजिश सामने आई है। इस बार एक मुस्लिम लड़की को आगे कर साजिश रची गई है। यूपी के शामली में इस कथित धर्मांतरण और संपत्ति हड़पने की साजिश से हड़कंप मचा है। एक ही चेहरे के दो रूप। इस युवक का नाम है आयुष मलिक। ये यूपी के शामली का रहने वाला है। आयुष जन्म से हिंदू है। आयुष का परिवार भी दिन रात अपने धर्म और आस्था के प्रति गंभीर रहने वाला है, लेकिन आयुष ने एक दिन अचानक भेष बदल लिया। अब आयुष की नई पहचान मोहम्मद अली है। इसका नाम बदला है और अब ये मस्जिद के दर पर जाकर इबादत में जुटा है।
1: आयुष मलिक नाम है, डॉक्यूमेंट्स में वही नाम है, मोहम्मद अली जो मैंने नाम अपनाया।
0: अच्छा। आखिर आयुष का मिजाज और अंदाज कैसे बदल गया? कैसे उसने हिंदू धर्म से तौबा कर अपना मजहबी चोला बदल लिया? वो किसके साजिश का शिकार हो गया? आयुष के घर वालों ने पुलिस में तहरीर देकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आयुष करोड़पति पिता का इकलौता बेटा है। जानकारी के मुताबिक शामली में उसकी 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। मेडिसिन का बड़ा कारोबार है। जमीन जायदाद भी काफी ज्यादा है। दर्ज FIR के मुताबिक उसी करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे के लिए मजहब के जाल में आयुष को साजिशन फंसाया गया। आयुष के पिता देवराज मलिक ने बताया कि उनकी करोड़ों की संपत्ति पर शामली के ही एक मुस्लिम परिवार की नजर। उन लोगों ने अपनी बेटी के जरिए आयुष को फंसाया, फिर उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। लंबे समय तक धोखे के बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और फिर आरोपी मुस्लिम परिवार ने अपनी बेटी चांदनी का निकाह आयुष उर्फ मोहम्मद अली से कर दिया। जानकारी के मुताबिक चांदनी कुरैशी ने आयुष के साथ 2023 में निकाह किया। शामली से दिल्ली जाकर किसी मस्जिद में निकाह की रस्म पूरी की। धर्मांतरण और निकाह के बाद से साजिशन आयुष को घर वालों से दूर करने की कोशिश की गई है। आरोपों के मुताबिक चांदनी और आयुष की पहली मुलाकात करीब 8 साल पहले हुई थी। तब से ही चांदनी के परिवार ने आयुष को फंसाना शुरू कर दिया था। करोड़पति देवराज मलिक ने अपने इकलौते बेटे को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आयुष ने बी फार्मा किया और पिता के कारोबार में हाथ बटाने लगा, लेकिन अब वो मजहबी साजिश का शिकार हो चुका है। आयुष के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। FIR दर्ज कर शामली पुलिस ने आरोपी लड़की चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को जेल भेज दिया है। दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। शरद मलिक के साथ अरविंद ओझा, शामली, आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। और अब बात उस युद्ध की जिसने दुनिया के लिए नए खतरे की घंटी बजा दी। जी हाँ, अमेरिका और ईरान के बीच 2 महीने के युद्ध विराम के बाद एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल से हमला किया तो इसराइल ने ईरान पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। तेहरान, तबरीज, इस्फहान में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। इसराइल के हमले को देखते हुए ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, तो वहीं इराक और सीरिया ने भी अपने अपने हवाई क्षेत्र एहतियातन बंद कर दिए। युद्ध फिर से शुरू हो चुका है। अब देखना यही है कि क्या इस बार ईरान और इसराइल ही लड़ेंगे या अमेरिका भी इस युद्ध में ईरान पर हमला करेगा।

0: टूट गया ईरान और अमेरिका का अस्थाई युद्ध विराम। ईरान ने इसराइल पर दागी 30 बैलिस्टिक मिसाइलें। इसराइल के केमिकल प्लांट पर ईरान का हमला। इसराइल का ईरान पर विध्वंसक पलटवार शुरू। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इसराइल का हमला। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाने का दावा। ईरान और इसराइल में फिर नया युद्ध शुरू। आठ अप्रैल को युद्ध विराम का ऐलान हुआ था, उसके ठीक दो महीने बाद पहली बार ईरान और इसराइल के बीच मिसाइलों से हमला हुआ। दो महीने बाद पहली बार ईरान ने इसराइल पर मिसाइल से हमला किया और इसराइल ने ईरान के खिलाफ भीषण सैन्य कार्रवाई की। दरअसल ईरान ने रविवार की रात इसराइल पर 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये हमला बेरूत में इजरायली हमले के जवाब में किया गया था। IRGC के मुताबिक इसराइल पर हमले सिर्फ एक चेतावनी है। अब अगर अमेरिका या इसराइल की तरफ से फिर कोई हमला हुआ तो विध्वंसक पलटवार होगा। लेकिन ईरान की धमकी के बावजूद इजरायली एयरफोर्स ने ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इसराइल का दावा यही है कि उसकी वायुसेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। सेना के मुताबिक ईरान के उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां ऐसी मिसाइल मौजूद थी जो लड़ाकू विमानों को निशाना बना सकती थी। इसराइल के हमलों के बाद ईरान के कई शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गयी। वहीं अमेरिकी सेना ने भी ईरान के दो ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरान के दो ड्रोन को निशाना बनाया गया जो हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा बन रहे थे। मतलब यही है कि एक बार फिर महायुद्ध की घंटी बज गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसराइल और अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका और ईरान तनाव कम करने के बजाय अपनी सैन्य कार्रवाई से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। ईरानी सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइल के किसी भी नए हमले की और भी कड़ी सैन्य प्रतिक्रिया होगी। इसराइल की आक्रामकता की जिम्मेदारी अमेरिका पर है। अगर दुश्मन अपनी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों को दोहराता है तो हमारे हमले भी और विध्वंसक होंगे। IRGC के मुताबिक उसने इसराइल के हाइफा शहर में एक केमिकल प्लांट पर मिसाइल हमला किया है। ये कार्रवाई उसके पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हुए इसराइली हमले के जवाब में की गई। ईरान ने आरोप लगाया कि इसराइल ने ऊर्जा और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाकर संघर्ष का दायरा बढ़ा दिया है। इसराइल के हमलों के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अमेरिका और इसराइल को युद्ध की सीधी धमकी दी है। हमने न तो युद्ध क्षेत्र छोड़ा है और न ही बातचीत की मेज। हम ईरान के अधिकारों की रक्षा पूरी ताकत से करेंगे और किसी भी खतरे के सामने पीछे नहीं हटेंगे। ये पहली बार है जब ईरान ने इसराइल पर सीधा हमला किया। ये हमले का नया पैटर्न है, वरना इससे पहले इसराइली हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइलों से हमला किया था। बड़ी बात यह है कि ईरान के इसराइल पर मिसाइलें दागे जाने के कुछ घंटों बाद इसराइल ने ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने ईरान में कई सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया। ये हमले एकदम सटीक थे, जबकि ईरान की तरफ से किए गए मिसाइल हमलों को इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने इसराइल पर हमला करके नेतन्याहू को बड़ा मौका दे दिया है, क्योंकि इजरायली सेना शुरू से ही युद्ध विराम के खिलाफ थी। नेतन्याहू भी यही चाहते हैं कि जंग फिर से शुरू हो, ताकि अपने नाराज समर्थकों को ये संदेश दे सकें कि जब तक युद्ध में ईरान की हार नहीं होगी तब तक जंग जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ये भी मैसेज दे रहे हैं कि वो ट्रंप के सामने झुकने वाले नहीं हैं। इसराइल ने ईरान पर दो चरणों में हवाई हमले किए। सैन्य अधिकारी के मुताबिक पहले चरण में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। इसके बाद दूसरे चरण में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया गया। इसराइल का दावा है कि इस प्लांट में बैलिस्टिक मिसाइलों और दूसरे हथियारों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री तैयार की जाती है। इजरायली सेना का दावा है कि हमने ऐसे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जो भविष्य में इजरायल और उसके नागरिकों के लिए खतरा पैदा करती है। ये ईरानी आतंकी शासन के मिसाइल कार्यक्रम का उत्पादन करने वाले बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। ईरान पर इसराइल के हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को मोर्चा संभालना पड़ा। इसराइल और ईरान दोनों तुरंत युद्ध विराम चाहते हैं। शांति को लेकर अंतिम बातचीत आगे बढ़ रही है, बस बेवकूफी इसमें रुकावट ना बने। जब तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो जाता तब तक ईरान पर लगी नाकेबंदी पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी। बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही कोई नतीजा सामने आ सकता है। दोनों पक्ष संघर्ष खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की, यही समझाया कि वो अभी ईरान पर नया हमला ना करें। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि फिलहाल इजरायल को और जवाब देने की जरूरत नहीं है। चैनल 12 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायल ने ट्रंप के अनुरोध पर ईरान पर हमले रोक दिए हैं और चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्ला की तरफ से इजरायली शहरों पर हमले जारी रहते हैं तो वो बेरूत को फिर से निशाना बनाएंगे। अगर हिजबुल्ला इजरायली समुदायों पर हमले जारी रखता है तो इजरायल बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमला करेगा। भले ही अमेरिका के दखल के बाद इजरायल ने ईरान के खिलाफ नए हमलों को रोक दिया है और ईरान ने भी हमले रोक दिए हैं, लेकिन ये हमले कितने घंटे तक रुके रहेंगे भविष्यवाणी करना मुश्किल है, क्योंकि इजरायल के हमलों का जवाब ईरान किसी भी वक्त दे सकता है। ऐसा हुआ तो एक बार फिर इजरायल हमले शुरू कर देगा, यानी अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। आज तक ब्यूरो।
1: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे घायल ईरान अब और भी घातक हो चुका है। जी हां, ईरान और इसराइल के बीच फिर से युद्ध छिड़ चुका है। अप्रैल में लागू हुए युद्ध विराम के बाद पहली बार ईरान ने सीधे इसराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। ईरान की तरफ से भी सीधे धमकी दी जा रही है कि उनके अभी ऐसे ऐसे उनके पास विध्वंसक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल युद्ध में नहीं हुआ है। इस बार ईरान और इसराइल के बीच महायुद्ध की शुरुआत लेबनान पर इसराइली हमले के बाद हुई है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि अगर इसराइल ने लेबनान पर हमले नहीं रोके तो वो अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल भी करेगा। दिखाएं आपको ये युद्ध अब कितना घातक होने वाला है।

0: शुरू हो गया महायुद्ध, अब ईरान निकालेगा अपना ब्रह्मास्त्र। ईरान और इजराइल के बीच तबाही का नया चैप्टर खुला। आग बबूला ईरान, लेबनन के लिए ईरान ने छेड़ा महायुद्ध। सीज़फ़ायर टूटा, अब डोनाल्ड ट्रंप का अगला प्लान क्या होगा? मुश्तबा के माइंड में ओपन वॉर, इसराइल कितना तैयार? ईरान ने अब लेबनन के लिए सीधे सीधे महायुद्ध छेड़ दिया है। इसराइल ने लेबनन की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में बारूद बरसाया, तो ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें बरसा दी। इसी के साथ ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि उसके पास बड़ी संख्या में मिसाइलें तत्काल लॉन्च के लिए तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर इसराइल के और ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई ने कहा कि यह हमला युद्ध विराम उल्लंघन और लेबनन के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी है। आगे किसी भी नए कदम का जवाब पहले से ज्यादा सख्ती से दिया जाएगा। जबकि ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य अलाउद्दीन बुरोज़ेर्दी ने भी इसराइल को बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऐसे विध्वंसक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक युद्ध में नहीं किया गया है, लेकिन इसराइल की तरफ से लेबनन पर हमले जारी रहे तो हम उनका इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ करेंगे। जब ये हमले होंगे तो इसराइल में तबाही ही तबाही नजर आएगी। IRGC ने बताया कि उसने हाइफा के दक्षिण पूर्व में स्थित रामत डेविड एयरबेस पर हमला करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका और इसराइल की सरकारों पर युद्ध विराम के तहत अपना वादा पूरा न करने का भी आरोप लगाया। ईरान ने यरूशलम के उत्तर में नाबलुस के पास इजरायली सैन्य ठिकाने पर हमला किया। हालांकि ईरान की एक मिसाइल नाबलुस की जमीन पर बनी इतामार बस्ती में गिरी। इसराइल के आयरन डोम ने ईरान की कई मिसाइलों को नाकाम कर दिया, लेकिन ये मिसाइल यरूशलम के पास शोमरोन में गिरती दिख रही है। इतामार नाबलुस के पूर्व में एक इजरायली सेटलमेंट है। ईरान इसे अवैध कब्जे का प्रतीक मानता है और ऐसे सेटलमेंट को अक्सर वैध टारगेट बताता है क्योंकि ये फिलिस्तीनी भूमि पर बने हैं। हालांकि ईरान के हमले में जानमाल के नुकसान के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। ईरान ने इसराइल के रामत डेविड एयरबेस पर हमला किया। ईरान ये मानता है कि यहीं से इसराइल ने हाल में लेबनन में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया है। ये आयरन डोम की सुरक्षा में है और इस वजह से ईरान ने इस पर एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरान की कई मिसाइलों को आयरन डोम ने नष्ट कर दिया, लेकिन एक या दो मिसाइलें उसके आसपास गिरती नजर आई हैं। रामत डेविड इसराइल का एक महत्वपूर्ण एयर पावर हब है जहां से फाइटर जेट उड़ान भरते हैं। ईरान ने इसे चुनिंदा तरीके से टारगेट किया ताकि इसराइल की हवाई क्षमता और लेबनन में उसकी सैन्य कार्रवाई को कमजोर किया जा सके। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची ने ईरान के हमले के बाद ईरान और लेबनन के झंडे को एक साथ दिखाते हुए पोस्ट किया। इसका जवाब इसराइल की तरफ से आया। इसराइल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने ईरान के साथ हिजबुल्ला का झंडा पोस्ट किया। यही नहीं, उन्होंने लिखा कि अब ये पोस्ट सही है। उन्होंने अराग़ची को फरेबी और चालबाज भी बता दिया। अब सवाल ये है कि इस महायुद्ध में डोनाल्ड ट्रंप का रोल क्या रहता है। भले ही ट्रंप इसराइल से अभी पलटवार के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो ट्रंप ने कहा वो ये दर्शाता है कि ट्रंप के दिमाग में भी कोई बड़ा प्लान चल रहा है। क्योंकि 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद से ईरान और अमेरिका के बीच कोई पीस डील नहीं हो पाई। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि कभी ये वादा नहीं किया था कि अमेरिका किसी नए युद्ध में शामिल नहीं होगा। कोई युद्ध नहीं होगा जैसी कोई गारंटी नहीं दी है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि कोई युद्ध नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो मैं दुनिया की सबसे मजबूत सेना क्यों बनाता। मुझे लंबे समय तक चलने वाले युद्ध पसंद नहीं है, लेकिन ये वैसा युद्ध नहीं है। ये अंतहीन युद्ध नहीं है, ये सिर्फ 3 महीने से चल रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका ने इजराइल की हवाई सुरक्षा में मदद करते हुए कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान ने अब तक 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। वहीं हूती विद्रोहियों ने यमन से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी। इनमें से एक को इजराइल ने रास्ते में ही मार गिराया, जबकि दूसरी इजरायली क्षेत्र तक पहुंचने से पहले ही गिर गई। इसके जवाब में इजराइल ने ईरान पर 2 चरणों में हवाई हमले किए। इस बीच ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने लोगों को ईरान की यात्रा न करने और वहां मौजूद भारतीयों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम और सुरक्षा हालात को देखते हुए भारतीय नागरिक ईरान की यात्रा से बचे। दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीयों से भी अपील की है कि वो उपलब्ध परिवहन साधनों का उपयोग कर जल्द से जल्द देश छोड़ दें। हालांकि ईरान के खातम अल अंबिया संयुक्त सैन्य कमान ने कहा है कि इसराइल को मिली दर्दनाक प्रतिक्रिया के बाद सशस्त्र बलों ने इसराइल के खिलाफ अभियान रोक दिए हैं। ये हमले दक्षिणी लेबनन और दहिये में इसराइली हमलों के बाद लेबनन के लोगों के समर्थन में किए गए थे। दक्षिणी लेबनन सहित किसी भी प्रकार के हमले जारी रहने पर कहीं अधिक कठोर प्रतिक्रिया दी जाएगी। आज तक ब्यूरो।
1: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। शुभ रात्रि।
2: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
3: Oh, ouch.
2: However you make money work, we can work with that.
4: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
6: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: ओ माता की जय। गंगा माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम।
5: बंगाल में BJP की सरकार और एक्शन लगातार जारी है। शुभेंदु के बंगाल में सत्ता संभाले आज 30 दिन हो गए हैं। वो लगातार अपने हिंदुत्व कार्ड पर अमल में जुटे हुए हैं। सनातन के जयकारे के साथ सरकार का नया फरमान आया है। शुभेंदु सरकार ने कह दिया है कि बंगाल में सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। आदेश बहुत साफ है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मदरसों के सर्वे के दौरान उनकी कार्यप्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी वैधता की जाँच की जाएगी। सर्वे से जांच की तैयारी है कि सभी मदरसों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, सभी के पास पर्याप्त कागजात हैं या नहीं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र होगा कि संबंधित मदरसा आवासीय है या नहीं, उसे फंड दिया जाता है या नहीं, और साथ ही ये भी कि वहां क्या कोर्स पढ़ाया जाता है। इसमें आदेश दिया गया है कि मदरसों के निर्माण, उनके रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी, वैध कागजात की जाँच, छात्रों की संख्या, वहाँ पढ़ाने वाले मौलवियों की संख्या और अन्य कर्मचारियों के आंकड़े भी मुहैया कराए जाए। बंगाल के अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा से संबंधित विभाग ने 5 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। BJP अक्सर TMC पर तुष्टिकरण के आरोप लगाती रही है। अब सत्ता संभालते ही शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है। वो साफ कहते हैं कि सेकुलरिज्म का दीमक बंगाल के विकास को चाट गया। मदरसों का सर्वे शुभेंदु सरकार का नया सियासी कार्ड है। अब BJP सांसद कह रहे हैं कि शुभेंदु बहुत शानदार काम कर रहे हैं। बंगाल के मंत्री भी कह रहे हैं कि इस फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और संस्थानों की निगरानी से व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी। मदरसे के सर्वे के आदेश पर अमल की तैयारी है। अब बंगाल में मदरसों को लेकर आंकड़े भी देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 609 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें 395 हाई मदरसा, 112 जूनियर हाई मदरसा और 102 सीनियर मदरसा है। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 685 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा भी है। 2026-27 के अंतरिम बजट में ममता सरकार ने अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के लिए 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब सरकार हवाला दे रही है कि इन सभी मदरसों के सर्वे का मकसद अपडेट डाटाबेस तैयार करना है, ताकि भविष्य में मदरसा से जुड़ी की जाने वाली प्लानिंग को लेकर मदद मिल सके। राज्य सरकार कह रही है कि तुष्टिकरण की राजनीति पर चोट जारी रहेगी। मदरसों के सर्वे का फैसला होने के बाद अलग अलग जिलों में तैयारी पूरी है। राज्य सरकार ने सर्वे की रिपोर्ट 5 जुलाई तक मांगी है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: जब अमेरिका ईरान में डील फाइनल होने की उम्मीद जग रही थी, जब कई मुल्कों की कोशिशों के बीच स्थायी शांति की चर्चा हो रही थी, ठीक उसी वक्त ईरानी मिसाइलों की बौछार ने इन सारे प्रयासों को युद्ध की आग में झोंक दिया। बीती रात के दूसरे पहर में जब ईरानी मिसाइलें गर्जी, बारूदी धमाका हुआ और दो ओर से इजरायली शहरों को टारगेट किया गया, तभी दुनिया को यह एहसास हो गया था कि अब जवाबी हमला बेहद खतरनाक होगा। लेकिन इजराइल का गुस्सा धधके इससे पहले ही उसे शांत करने की कोशिशें शुरू हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात की, भरोसा भी मिला कि जवाबी हमला नहीं होगा। लेकिन कुछ ही देर में जो कुछ हुआ, उसकी उम्मीद तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सपने में भी नहीं की थी। तंसीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने तेहरान, इस्फहान, तबरीज सहित कई शहरों में एक साथ बम और मिसाइल बरसाए। ईरान के करज शहर में भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ईरान के कई शहरों से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी।
1: ईरान और इसराइल का ये संघर्ष ऐसे वक्त में आया जब युद्ध विराम को लेकर ईरान और अमेरिका की बातचीत एक निर्णायक मोड पर चल रही थी। हालांकि ईरान ये कोशिश कर रहा है कि नेगोशिएशंस के टेबल पर जाने से पहले वो पूरी तरीके से अमेरिका और इसराइल को दिखा सके कि इस जंग के दौरान उसने कुछ खोया नहीं है, उसने कुछ पाया है, और वही पावर वो लगातार इसराइल और अमेरिका को दिखाने की कोशिश भी कर रहा है।
0: ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसराइल ने ट्रंप की अपील क्यों खारिज कर दी? आखिर इजरायली पीएम नेतन्याहू के मन में क्या चल रहा है? क्या इजरायल हिजबुल्ला के पूरी तरह खात्मे की कसम तक युद्ध जारी रखने की रणनीति को आगे बढ़ा रहा है? अभी कुछ दिन पहले ही वॉशिंगटन और तेल अवीव के कूटनीतिक गलियारों से एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। बताया गया कि लेबनन, हिजबुल्ला और ईरान को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच भारी मतभेद है, जिसके बाद ट्रंप को नेतन्याहू को सख्त संदेश भी देना पड़ा था। लेकिन ट्रंप की हर कोशिश इसराइल पर बेअसर दिख रही है। न ही इसराइल ने लेबनन पर हमले रोके, न हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह करना बंद किया। अब जब ईरान की ओर से युद्ध का मोर्चा खोल दिया गया है, तो इसराइल को आर पार की जंग का मौका मिल गया है। अगर अब नेतन्याहू ईरान में तबाही वाले प्लान को तेजी से अंजाम देते हैं, तो ये ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका होगा और फिर से पूरा मध्य पूर्व युद्ध की लपटों में घिरेगा। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: आज तक भर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ क्षणों में वारदात लेकर शम्स होंगे आपके साथ। देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

टीएमसी से तैयार ममता के बागी सांसद शताब्दी रॉय के घर बैठक, शुभेंदु अधिकारी भी रहे मौजूद। काकोली का दावा, हमारे साथ 20 सांसद दोपहर भूपेंद्र यादव से भी मिला था नाराज सांसदों का दल। नीट पेपर लीक पर इंडिया गठबंधन का बड़ा दांव, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सर्वदलीय बैठक की मांग, सीजीआई को लिखेंगे पत्र, 5 सूत्रीय एजेंडा तय, बीजेपी ने विपक्ष पर उठाए सवाल। यमुना सफाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक, एनडीडीबी मॉडल के तहत साफ सफाई पर जोर, हर 20 दिन में काम की समीक्षा करने के आदेश। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, पिघला स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत, मौके पर उठी आग की तेज लपटें। और ईरान इजराइल में युद्ध फिर से शुरू, तेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्लाह की ओर से भी हमले, आईडीएफ ने इस्फहान पर किया जवाबी प्रहार।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या ट्विशा की मौत के मामले की जांच में भोपाल पुलिस ने जानबूझकर लापरवाही बरती? क्या क्राइम सीन को सील करने और मौके से सबूत उठाने में साजिशन देरी की गई? दरअसल भोपाल पुलिस के प्रॉपर्टी सीजर मेमो से ये पता चलता है कि ऐसे कई सबूत जो पुलिस की निगाहों के सामने थे उसे उठाने में 11 दिन लगा दिए। इस बीच ट्विशा की मौत के मामले की जांच सीबीआई अब भी कर रही है। हालांकि सीबीआई को शक है कि ट्विशा की मौत के तार कहीं ना कहीं उसकी प्रेगनेंसी से जाकर जुड़ रहे हैं। इस सीसीटीवी कैमरे की घड़ी और तारीख दोनों गलत है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल सही है। ये तस्वीर असल में 12 मई की रात 10 बजे के आसपास की है। ये ट्विशा है, इस घर की बहू। ट्विशा के हाथ में काले रंग का एक हेडफोन है। वही हेडफोन हाथ में लिए ट्विशा इस वक्त सीढ़ी के रास्ते छत पर जा रही है। जिंदा रहते ये ट्विशा की आखिरी तस्वीर थी। इसके करीब घंटे भर बाद ट्विशा की लाश इसी छत पर, शायद इसी जगह इलास्टिक की रस्सी से लटकी मिली। शायद इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस रस्सी से लटके होने की बात सिर्फ दो लोगों ने कही थी, एक ट्विशा के पति समर्थ सिंह और दूसरी जज रही ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह। इसके अलावा इस मामले का कोई और चश्मदीद नहीं है और ये दोनों चश्मदीद इसी ट्विशा की मौत के आरोपी हैं। छत पर जाते हुए ट्विशा की ये तस्वीर पूरे देश ने देखी। ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने सीसीटीवी की ये तस्वीर खुद ही मीडिया को दी। अब जाहिर है तब केस की जांच कर रही भोपाल पुलिस ने भी शर्तिया ये तस्वीर देखी होगी और इस तस्वीर में ट्विशा के हाथ में ये हेडफोन भी देखा होगा। अब हेडफोन में कोई राज हो या इस केस पर कोई रोशनी डाल सके कहा नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि आखिरी वक्त में ये हेडफोन ट्विशा के पास था, लिहाजा ये केस प्रॉपर्टी होने के साथ साथ एक अहम सबूत भी है। जाहिर है ऐसी केस प्रॉपर्टी या सबूत जो मौके वारदात यानी क्राइम सीन पर हो उसे अनाड़ी पुलिस वाले भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन अब जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनने और देखने के बाद आप भी कहेंगे कि अच्छा हुआ यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया, भोपाल पुलिस से ना हो पाता। ये भोपाल के कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन में दर्ज उसी ट्विशा केस की प्रॉपर्टी सीजर मेमो यानी संपत्ति जब्ती पत्र है। अमूमन किसी भी केस में पुलिस क्राइम सीन, पीड़ित, आरोपी या चश्मदीदों से जो भी सामान बरामद करती है बाकायदा लिखित में उसकी एंट्री होती है। आगे चलकर यही चीजें कोर्ट में पेश भी की जाती है। ट्विशा केस में भोपाल पुलिस ने किस इंतहा तक लापरवाही बरती उसका जीता जागता सबूत ये प्रॉपर्टी सीजर मेमो है। इस मेमो की तारीख पर गौर कीजिएगा, इस पर तारीख लिखी है 23 मई 2026। वक्त के कॉलम में आगे 20:41 यानी रात के 8:41 लिखे हैं। इसी प्रॉपर्टी सीजर मेमो में दो चीजें जब्त या बरामद किए जाने का जिक्र है। इसमें जिस दूसरी चीज को जब्त या बरामद करने का जिक्र है जानते हैं वो क्या है? वही हेडफोन जो 12 मई की रात छत पर जाते वक्त ट्विशा के हाथ में आखिरी बार दिखा था। अब जरा सोचिए, ट्विशा की मौत 12 मई की रात को हुई। भोपाल पुलिस ने दावा किया था कि ट्विशा की मौत की खबर मिलते ही पुलिस टीम उसी रात ट्विशा के घर पहुंच गई, क्राइम सीन का मुआयना किया, सारी तफ्तीश अच्छे से की। पर उसी भोपाल पुलिस का ये प्रॉपर्टी सीजर मेमो ये बता रहा है कि ट्विशा की मौत को लेकर पुलिस ने किस लापरवाही और बेपरवाह अंदाज में जांच की थी। 12 मई को हुई ट्विशा की मौत के पूरे 11 दिन बाद पुलिस को याद आया और तब कहीं जाकर 23 मई को इस हेडफोन को जब्त किया गया। हालांकि भोपाल पुलिस की मासूमियत पर भी तरस आता है। सीजर मेमो में वो ये भी लिख डालते हैं कि सोनी कंपनी का ब्लैक कलर हेडफोन मृतिका यानी ट्विशा अपने साथ लेकर ऊपर छत पर गई थी।
1: इसके बाद जो वीडियो रिलीज करे गए आरोपियों द्वारा, उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि ट्विशा शर्मा एक हेडफोन लेकर ऊपर जा रही है। उस हेडफोन की जब्ती घटनास्थल से 10 दिन बाद की जाती है और उस सीजर मेमो में प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है जिसमें आरोपी गिरिबाला सिंह आइडेंटिफाई करती हैं कि ये वही हेडफोन है। 10 दिन तक घटनास्थल पर वो हेडफोन पड़ा रहता है, उसके बाद प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद उस हेडफोन को सीज करा जाता है 23 तारीख को। तो अगर इतना इंपॉर्टेंट एविडेंस जो लिगेचर था उसमें किसी आरोपी से आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं कराया गया, इसका जवाब एमपी पुलिस को देना है।
0: इतना ही नहीं, इसी मेमो में इस बात का भी जिक्र है कि ट्रिशा की मौत के 11 दिन बाद ट्रिशा की सास गिरिबाला सिंह से एक फोन भी जब्त किया गया, गोल्डन पिंक कलर के इस मोबाइल से, हालांकि सिम गायब था। पर ये तो सिर्फ बानगी है। भोपाल पुलिस के इसी प्रॉपर्टी सीजर मेमो में एक चीज तो ऐसी लिखी है जिस पर कोर्ट में मुकदमे के पहले ही दिन कोई भी वकील इनकी धज्जियां उड़ाते। अमूमन पुलिस क्राइम सीन से जब भी कोई चीज उठाती या जब्त करती है तो प्रॉपर्टी सीजर मेमो में बाकायदा उस पुलिस वाले का नाम, जिसने इसे जब्त किया या जिसने जब्त करवाया उसका नाम और इससे जुड़े चश्मदीदों के नाम लिखे जाते हैं। अब भोपाल पुलिस का कमाल देखिए। भोपाल पुलिस को ट्रिशा की मौत की खबर पहली बार 13 मई की रात 12:05 पर मिलती है, यानी ट्रिशा की मौत के पूरे 2 घंटे बाद। खबर मिलते ही पुलिस की टीम भोपाल के एम्स अस्पताल, जहां ट्रिशा की लाश रखी थी, और फिर ट्रिशा के घर जाती है। खुद भोपाल पुलिस ने दावा किया था कि खबर मिलते ही पुलिस के साथ साथ FSL की टीम भी न सिर्फ मौके पर पहुंची बल्कि छत पर भी गई जहां ट्रिशा की मौत हुई थी। अब जरा भोपाल पुलिस के इस दावे की सच्चाई देखिए। ये भोपाल पुलिस के उसी कटारा हिल्स थाने में दर्ज प्रॉपर्टी सीजर मेमो है। इस मेमो में लिखा है कि 13 मई की सुबह 9:40 पर मकान के छत पर शेड के नीचे से फांसी लगाने में इस्तेमाल इलास्टिक की लगभग 1 इंच चौड़ी काली रंग की पट्टी, जिसकी लंबाई 99 सेंटीमीटर 2 इंच लगभग, जिसकी दूसरी पट्टी करीब 51 इंच की गोल पहिए में बंधी थी, जब्त। लेकिन इस सीजर मेमो में कहीं ये नहीं लिखा है कि किसकी निशानदेही पर या किसकी गवाही पर इसे जब्त किया गया। इस प्रॉपर्टी सीजर मेमो के कॉलम नंबर 6 यानी साक्षी गण वाले कॉलम में किसी का भी नाम नहीं है, बल्कि ये जो R1689 या इसके आगे जो भी नाम लिखे हैं, ये सब भोपाल पुलिस के नाम है। अगर गिरिबाला सिंह या समर सिंह के कहने पर इलास्टिक की रस्सी जब्त नहीं की गई और पुलिस वाले ने अपनी मर्जी से इसे जब्त किया, तो सवाल ये है कि उन्हें कैसे पता कि मरते वक्त ट्रिशा के गले में इलास्टिक की यही रस्सी थी, क्योंकि समर सिंह और गिरिबाला सिंह ने तो पुलिस को खबर करने से पहले ही लाश नीचे उतार ली थी, गले का फंदा भी खोल दिया था। इस सीजर मेमो से ये साफ हो गया कि ट्रिशा की मौत के लगभग 12 घंटे बाद पुलिस ने पहली बार वहां से कुछ जब्त किया था। इन सबसे कीमती 12 घंटों में क्राइम सीन को सील तक नहीं किया गया, यानी कोई भी क्राइम सीन को आसानी से अपने हिसाब से बदल सकता था, सबूत गायब कर सकता था, निशान मिटा सकता था।
1: 13 तारीख की सुबह लगभग घटना के 14 घंटे बाद कटारा हिल्स से एक SI आते हैं। वो 9:42 पे सुबह एक सीजर एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें एक लिगेचर जब्त करते हैं, एक मोबाइल फोन जब्त करते हैं, एक हेडफोन जब्त करते हैं, उसको तथाकथित रूप से घटनास्थल से जब्त होना बताते हैं। लेकिन जो लिगेचर है, जिसको जो दो सस्पेक्ट थे आज आरोपी हैं, यही आइडेंटिफाई कर सकते थे, उनके आइडेंटिफिकेशन के संबंध में उस डॉक्यूमेंट में सीजर में किसी भी तरह की लिखा पढ़ी नहीं करी जाती, उनको जो आरोपी हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, तो सब इंस्पेक्टर को कैसे पता कि लिगेचर क्या था, कौन सा मटीरियल था, कैसे एलिजिबली सुसाइड हो गया, इस संबंध में कोई भी लिखा पढ़ी उस सीजर में नहीं की जाती।
0: यह गिरिबाला सिंह का घर है और यह उसी घर के छत की तस्वीर है जिस छत पर 12 मई की रात ट्रिशा की मौत हुई थी। इस छत और यहाँ रखे सामान को देखकर ये साफ पता चलता है कि इस जगह को एक जिम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। तस्वीर में आपको जमीन पर ट्रिशा की चप्पल भी पड़ी दिखाई देगी, लेकिन इस तस्वीर की सबसे खास बात यह है कि इसमें इलास्टिक का वो फंदा भी नजर आ रहा है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसी फंदे से ट्रिशा ने खुदकुशी की थी। छत से नीचे रबड़ जैसे दिखने वाले रिंग के दो टायर आपको लटके हुए नजर आ रहे होंगे। इन दोनों ही रिंग के साथ इलास्टिक की दो रस्सियां भी अब भी लटकी हुई है। बाईं तरफ की रस्सी बिल्कुल सीधी है और लगभग जमीन से टकरा रही है, लेकिन दाहिनी तरफ की इलास्टिक की रस्सी सीधी नहीं, बल्कि उसका एक सिरा छोटा और एक सिरा बड़ा है। इसे देखकर साफ पता चलता है कि दाहिनी तरफ वाले रिंग से ही लटकती इलास्टिक की रस्सी का फंदा बना होगा। तस्वीर में छत पर या यूं कहें कि इस क्राइम सीन पर दो लोग भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर से ये भी साफ है कि ये तस्वीर रात के अंधेरे की नहीं बल्कि दिन के उजाले की है। अब रिपोर्ट के मुताबिक ट्रिशा की मौत रात 10 से 10:30 बजे के दरमियान हुई, पर कमाल देखिए, रात को पुलिस छत पर इस क्राइम सीन पर पहुंची। जाहिर है पूछताछ में पुलिस को ये बताया गया होगा कि किस फंदे से ट्रिशा को घरवालों ने उतारा था, लेकिन पूरी रात बीत गई, सुबह हो गई, 12 घंटे निकल गए, फिर भी पुलिस को यह ख्याल ही नहीं आया कि जिस फंदे से ट्रिशा की मौत हुई है उस पर लिगेचर मार्क के अलावा उंगलियों के निशान और दूसरे कई सबूत हो सकते हैं। उसे अपने कब्जे में लेना चाहिए, पर पुलिस ऐसा करती नहीं। ट्रिशा की मौत के बाद 13 मई को कहीं जाकर पुलिस फंदेनुमा इस सबूत को अपने साथ ले जाती है। क्या यह अनजाने में हुई भोपाल पुलिस की गलती थी या जज रही ग्रीवाला सिंह का खौफ? कमाल की भोपाल पुलिस का कमाल यही नहीं रुकता। 12 घंटे बाद वो फंदा, जिस फंदे से बकौल ग्रीवाला सिंह और समर सिंह ट्रिशा ने फांसी लगाई। घर से जब्त करने के बाद जब्त करने वाला पुलिस अफसर, उसे फॉरेंसिक टीम, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर या मालखाने को सुपुर्द करने की बजाय अपनी गाड़ी में रखकर भूल जाता है। बाद में याद आया तो मालखाने में रखवाते हैं। भोपाल पुलिस की इन्हीं कोताहियों, लापरवाहियों या शायद जज रही सास ग्रीवाला सिंह के खौफ के चलते बाद में ये केस सीबीआई को देना पड़ा। खुद सीबीआई भी प्रॉपर्टी सीजर मेमो को देखकर हैरान है कि ऐसी लापरवाही अनजाने में हुई या जानबूझकर। सूत्रों के मुताबिक इसी सिलसिले में सीबीआई जल्द ही कटारा हिल्स थाने के जिम्मेदार पुलिस वालों से पूछताछ कर सकती है। उधर ट्रिशा की मौत को लेकर सीबीआई की जांच जारी है। डमी ट्रायल और रिक्रिएशन का रिजल्ट सीबीआई के सामने है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों ने ट्रिशा का जो दूसरा पोस्टमार्टम किया था उसकी रिपोर्ट भी सीबीआई को मिल चुकी है। हालांकि इस दूसरी रिपोर्ट को अभी आम नहीं किया गया है, लेकिन सीबीआई सूत्रों की माने तो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कत्ल की बात साफ नहीं है। सीबीआई फिलहाल विसरा और कुछ दूसरी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ट्रिशा की मौत की सही वजह तलाशने के लिए खास तौर पर ट्रिशा के गर्भवती होने से लेकर उसकी मौत के दिन तक की तमाम घटनाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को लगता है कि ट्रिशा की मौत के तार कहीं न कहीं उसकी प्रेगनेंसी से जाकर जुड़ते हैं। ग्रीवाला सिंह और समर सिंह से भी सीबीआई ने हिरासत के दौरान खास तौर पर इसी से जुड़े सवाल पूछे थे। सीबीआई के पास इसे लेकर ट्रिशा और उसकी माँ के बीच हुए चैट्स भी मौजूद है। सीबीआई ये जानना चाहती है कि क्या सचमुच ट्रिशा खुद बच्चा नहीं चाहती थी या फिर समर्थ और ग्रीवाला ने ताने मारकर उसका गर्भपात करवाया, क्योंकि ट्रिशा ने अपनी माँ से बातचीत में ये कहा था कि समर्थ उसे बार बार ताने मारता है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा किसी और का है। शायद यही वजह ट्रिशा की मौत की वजह बनी।
2: ट्रिशा मौत मामले में ग्रीवाला सिंह और समर्थ सिंह जहाँ एक तरफ जेल में बंद है तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की जांच का दायरा अब उन किरदारों तक बढ़ गया है जिनका कहीं ना कहीं ट्रिशा के अंतिम दिनों से कोई वास्ता था, और इन्हीं में दो प्रमुख किरदार हैं भोपाल के दो वो डॉक्टर जिनमें से एक ने ट्रिशा को गर्भपात की सलाह दी थी, तो वहीं दूसरे वो मनोचिकित्सक जिनसे ट्रिशा की मुलाकात हुई थी। दरअसल इन दोनों डॉक्टरों से सीबीआई की पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई ने इन दोनों डॉक्टरों के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की है कि ट्रिशा की सेहत से जुड़े हुए जितने भी बयान ग्रीवाला सिंह और समर सिंह की तरफ से दिए गए हैं क्या वो सच हैं या फिर डॉक्टरों के बयान और ग्रीवाला सिंह और समर सिंह के बयानों में कोई विरोधाभास है। जब तक सीबीआई ये तमाम बयान ले रही है उसके बाद ही सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि क्या जेल में बंद ग्रीवाला और समर सिंह से दोबारा सीबीआई को कोई पूछताछ करनी है या नहीं।
0: हालांकि ट्रिशा की मौत के दोनों आरोपी यानी पति समर्थ सिंह और सास ग्रीवाला सिंह से सीबीआई की पूछताछ खत्म हो चुकी है। सीबीआई ने सिर्फ 5 दिन ही ग्रीवाला सिंह को अपनी हिरासत में रखा था। इसके बाद सीबीआई ने ग्रीवाला सिंह की और कस्टडी नहीं मांगी, न ही समर्थ की। लिहाजा अब दोनों माँ

जाता है कि एक लेटेस्ट है जिसे बबीता ने अपने गायब होने से महज एक या दो दिन पहले ही क्लिक करवाया था और शेयर किया था। उत्तराखंड की वादियों में बसा ये है ट्रैक दयारा बुग्या और ये है इस ट्रैक का इंसेप्शन पॉइंट यानी शुरुआती बिंदु गांव रेथा। तकरीबन 21 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक को नापने के लिए दुनिया भर के बीसियों पर्यटक हर साल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पहुंचते हैं और इसे पूरा करने में तकरीबन 4 से 5 दिनों का वक्त लगता है। रामनगर की रहने वाली 24 साल की MBA स्टूडेंट बबीता पांडे ने भी अपने दो दोस्तों के साथ इसी एडवेंचर की तलाश में उत्तरकाशी के इस दयारा बुग्याल ट्रैक तक पहुंची थी। तारीख थी 29 मई लेकिन अभी उनकी ट्रैकिंग शुरू ही हुई थी कि बीच रास्ते से बबीता ऐसे गायब हो गई कि उसकी गुमशुदगी अब एक पहेली बन चुकी है। बबीता के गायब होने के बाद अगर पीछे कुछ बचा है तो वो है बबीता का एक बैग जिसे लेकर वो ट्रैकिंग के लिए गई थी और ये आखिरी CCTV फुटेज जो 28 मई को दिन में उत्तरकाशी के एक होटल के बाहर रिकॉर्ड हुई। इस CCTV फुटेज में बबीता अपने दो दोस्तों के साथ दिखाई दे रही है। फिलहाल उसे गुम हुए 9 दिनों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है लेकिन बबीता का दूर दूर तक कोई सुराग नहीं है। सवाल है आखिर उसके साथ क्या हुआ, वो कहां चली गई, आखिरी बार उसे कब और किसने देखा, क्या वो अपनी मर्जी से कहीं गई या फिर उसकी गुमशुदगी के पीछे कोई और वजह है। असल में उधम सिंह नगर से निकलकर बबीता अपने इन्हीं दोस्तों के साथ गांव रेथल पहुंची थी और यहां से तीनों ने ट्रैकिंग की शुरुआत करते हुए गोई तक अपना सफर पूरा किया। गोई के बाद ही असली ट्रैकिंग शुरू होती है। जानकारी के मुताबिक बबीता और उसके दोस्तों ने गोई के पास ही एक टेंट लगाया था और रात को वहीं रुके थे। ये पूरा इलाका जंगलों से घिरा है लेकिन सुबह होने पर जब बबीता के दोस्तों की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि बबीता गायब है, वो टेंट में नहीं थी। हालांकि बबीता का बैग टेंट में ही रखा था। बबीता को गायब देखकर पहले तो उसके दोस्त घबरा गए और फिर उन्होंने पुलिस को इसकी खबर दी। बबीता को आखिरी बार देखने वाले उसके दोस्तों ने पुलिस की पूछताछ में ये स्वीकार किया है कि उस रात वो दोनों टेंट लगाने के बाद शराब पीने लगे थे जिसके बाद बबीता कुछ देर के लिए टेंट से बाहर निकल गई थी। चूंकि वो शराब के नशे में थे इसलिए उनकी आंख लग गई और उन्हें बबीता का ख्याल ही नहीं रहा। लेकिन जब अगले दिन उनकी आंख खुली तो बबीता गायब मिली। बबीता सिर्फ एक चप्पल पहने हुए अपने मोबाइल फोन के साथ टेंट से बाहर निकली थी और गुम हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में FIR दर्ज कर ली है और बबीता के साथ आखिरी बार मौजूद दोनों लड़कों से पूछताछ कर रही है मगर नतीजा सिफर है। अब सवाल यह है कि आखिर बबीता की गुमशुदगी के पीछे क्या क्या संभावित वजहें हो सकती हैं? तो तफ्तीश में पुलिस उन सारी वजहों को एक्सप्लोर कर रही है। अव्वल तो यही है कि बबीता किसी को बताए बगैर खुद ही अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो। दूसरा ये कि बबीता के साथ ट्रैकिंग पर गए दोस्त झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने ही बबीता को कहीं गायब कर दिया हो। तीसरा ये कि वो टेंट के बाहर निकली हो और कोई जंगली जानवर उसे उठा ले गया हो। और चौथा ये कि वो या तो जंगलों में रास्ता भटक गई हो या फिर उसके साथ कोई और अनहोनी हुई हो। इन आशंकाओं के मद्देनजर 150 से ज्यादा लोगों का लवाजमा बबीता को ढूंढने में लगा है। पुलिस के साथ साथ SDRF, NDRF, SOG, ITBP, वन विभाग, डॉग स्क्वाड, ड्रोन सर्चिंग टीम और यहां तक कि गोताखोर भी बबीता की तलाश कर रहे हैं। 5 दिनों की तलाशी के बाद भी जब बबीता का कुछ पता नहीं चला तो 6 दिन जिला प्रशासन ने गोई के पास मौजूद एक झील की गहराई को नापने का फैसला किया और इसके लिए खास तौर पर गोताखोरों की टीम बुलाई गई। वैसे भी अगर खुदा न खास्ते बबीता किसी जंगली जानवर का शिकार बनी होती तो फिर उसके कुछ न कुछ निशान अब तक की तलाशी में जरूर नजर आते। ऐसे में अब ये शक होने लगा है कि कहीं बबीता गलती से पानी में तो नहीं गिर गई। इसी के बाद लगभग 9 फीट गहरे इस झील को भी खंगाला गया लेकिन बबीता का कोई सुराग नहीं मिला। अब जब बबीता की तलाश शुरू हुई तो पहले ही कदम पर शासन प्रशासन और खासकर उत्तरकाशी के पर्यटन विभाग की घोर लापरवाही और पर्यटन के नाम पर चल रही धंधेबाजी का खुलासा हो गया।
असल में

0: ट्रैकिंग के लिए जाने वाले हर पर्यटक के बारे में एक्सप्लोर उत्तरकाशी नाम की एक वेबसाइट में पहले से ही जानकारी दर्ज करवानी होती है, ताकि पर्यटन विभाग के पास हर सैलानी की खबर मौजूद रहे। लेकिन जब बबीता की गुमशुदगी के बाद पर्यटन विभाग ने अपने तौर पर उसका ब्यौरा खंगालना शुरू किया, तो देखा कि बबीता और उसके नाम से तो उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई एंट्री ही नहीं है, और जो एंट्री हुई भी है वो फर्जी है। फिलहाल डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस पर्यटन विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। लेकिन यह भी सच है कि इस फर्जीवाड़े के बाद एक लड़की 9 दिनों से ज्यादा वक्त से गायब है और उसका कोई पता ठिकाना किसी के पास नहीं है। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी आज तक।
1: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
3: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Terms apply. Visit wellsfargo.com/depositdisclosures for fees and details.
5: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
6: To right field, and it will leave.
5: From the first pitch of the season to the stretch run,
6: and that's the ball game.
5: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
7: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूं जहां पर ये आग लगी।
8: मैं आपको टॉप एंगल से तस्वीर दिखाता हूं और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है।
9: यहां पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है, तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था।
10: ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है।
8: 20 लोगों की जान चली गई। और देखिए, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके, तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहाँ से नहीं दिखाएंगे।

0: टीएमसी से तैयार ममता के बागी सांसद शताब्दी रॉय के घर बैठक, शुभेंदु अधिकारी भी रहे मौजूद। काकोली का दावा, हमारे साथ 20 सांसद दोपहर भूपेंद्र यादव से भी मिला था नाराज सांसदों का दल। नीट पेपर लीक पर इंडिया गठबंधन का बड़ा दाव, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सर्वदलीय बैठक की मांग, सीजीआई को लिखेंगे पत्र, 5 सूत्री एजेंडा तय, बीजेपी ने विपक्ष पर उठाए सवाल। यमुना सफाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक, एनडीडीबी मॉडल के तहत साफ सफाई पर जोर, हर 20 दिन में काम की समीक्षा करने के आदेश। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, पिघला स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत, मौके पर उठी आग की तेज लपटें। और ईरान इजराइल में युद्ध फिर से शुरू, तेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्लाह की ओर से भी हमले, आईडीएफ ने इस्फहान पर किया जवाबी प्रहार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा, मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में एक तरफ एमएलसी चुनाव की वजह से सियासी संग्राम लगातार जारी है, दूसरी तरफ राज्यसभा उपचुनाव का राजनीतिकरण भी शुरू हो चुका है, ये रण है। एनसीपी ने सुनेत्रा पवार की खाली हुई सीट पर छगन भुजबल की अनदेखी करके प्रफुल्ल पटेल के करीबी राजेंद्र जैन को प्रत्याशी बना दिया है, और इस फैसले से जहां प्रफुल्ल पटेल का दबदबा बरकरार है, तो नाराज भुजबल अपने हालात पर तंज कस रहे हैं कि वो कबड्डी के खिलाड़ी हैं, शतरंज के नहीं। लेकिन महायुति दावा कर रही है कि उनके सहयोगी दलों में आपस में कोई मतभेद नहीं है।

0: सुनेत्रा पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने आने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए राजेंद्र जैन को उम्मीदवार बनाया है। इससे एनसीपी के अंदर बदलते समीकरणों और वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल का दबदबा फिर से कायम होता दिख रहा है। हालांकि इस फैसले से भुजबल नाराज बताए जा रहे हैं। उनका दर्द मीडिया के सामने भी छलक उठा।
1: मैं कबड्डी का खिलाड़ी हूँ, शतरंज का खिलाड़ी नहीं हूँ। शतरंज नहीं जमता है मुझे पूरे। धन्यवाद। अरे हमने कहा ना, हम कबड्डी के प्लेयर है, शतरंज के खिलाड़ी नहीं है।
0: महाराष्ट्र में राज्यसभा की ये सीट सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, क्योंकि उन्होंने अजीत पवार की परंपरागत सीट रही बारामती से विधानसभा उपचुनाव लड़ा था, जो बारामती सीट अजीत पवार के निधन से खाली हुई थी। राज्यसभा उपचुनाव में एनसीपी के प्रत्याशी बनाए गए प्रफुल्ल पटेल के बेहद करीबी राजेंद्र जैन दो बार एमएलसी रह चुके हैं। वो अजीत पवार के भी वफादार माने जाते थे। बताया जा रहा है कि इस सीट के लिए छगन भुजबल के साथ अमरावती से पूर्व सांसद नवनीत राणा के नाम पर भी विचार किया गया था, लेकिन पार्टी के अंदर विरोध की वजह से जैन बाजी मार गए।
2: डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार इनकी राज्यसभा के सीट खाली होने के बाद अब राजेंद्र जैन इन्होंने उसके लिए नामांकन भरा है। आज महाराष्ट्र के विधान भवन में नामांकन भर के वो आए हैं। सर किस तरह से पूरी प्रक्रिया हुई, क्योंकि कई नाम चर्चा में थे?
3: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत उम्मीदवारी मांगने का सबको अधिकार है, लेकिन उम्मीदवारी का जो चयन होता है वो सारे नेता और नेतृत्व मिलकर करता है। हमारी नेता आदरणीय सुनेत्रा ताई पवार ने जो मेरे पे विश्वास दिखाया, मैं उनका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और सभी नेताओं ने मिलकर एक अच्छा निर्णय लिया और पूर्व विदर्भ के एक सामान्य कार्यकर्ता को अवसर दिया। अनुभव के तौर पर मैं 12 वर्ष विधान परिषद में मैंने काम किया। 12 वर्ष विधान परिषद में काम करते हुए माननीय अजीत दादा पवार साहब के साथ काम करने का मौका मिला, और कोऑपरेटिव सेक्टर में स्वर्गीय आदरणीय अजीत दादा पवार ने मुझे बहुत शिक्षा दी, और उस वजह से मैं महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर भी था, और आज पिछले 19 वर्षों से मैं गोंदिया जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक पर काम कर रहा हूं। और मुझे सभी लोगों ने और महायुति पूरी ताकत से आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और आदरणीय सुनेत्रा ताई पवार के नेतृत्व में काम कर रही है, और मुझे जो अवसर दिया गया ये बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है।
0: राजेंद्र जैन के चयन प्रक्रिया के दौरान एनसीपी के वरिष्ठ नेता और फडणवीस सरकार में मंत्री छगन भुजबल की नाराजगी साफ दिखी, क्योंकि शुरुआत में इस सीट के लिए छगन भुजबल पहली पसंद थे, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि उन्होंने दिल्ली जाने के लिए शर्तें रखी कि उनके भतीजे समीर भुजबल को महाराष्ट्र कैबिनेट में शामिल किया जाए। पर जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि दिल्ली में आलाकमान ने सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कैबिनेट विस्तार को मंजूरी नहीं दी, तो भुजबल ने राज्यसभा जाने या अपने मौजूदा पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया।
1: इतरांचे जसे राज्यसभेवर लोकसभेवर आणि इकडे मंत्री आहेत मुलं बाळ, त्याप्रमाणे मी सुद्धा हा पक्ष जो आहे स्थापन करण्यापासून पुढाकार घेतलेला आहे पवार साहेबांमुळे। मला सुद्धा हाच न्याय मिळाला पाहिजे ही माझी मागणी होती, परंतु ते
0: हालांकि राजेंद्र जैन कह रहे हैं कि खुद भुजबल साहब ने उनके नाम का समर्थन किया, इसलिए नाराजगी का सवाल ही नहीं उठता।
2: लेकिन क्या आप चुनौती मानते हैं, क्योंकि ज्येष्ठ नेता और मंत्री छगन भुजबल वो भी कहीं ना कहीं इस चर्चा में थे कि वो भी भर सकते हैं, वो उनके बाद नवनीत राणा का भी नाम चल रहा था, सभी को पिछाड़कर आपने यहाँ पर नाम?
3: पिछाड़ने जैसे शब्द की कोई बात नहीं है, किसी प्रकार का कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। निर्णय में भुजबल साहब सबसे आगे थे। निर्णय करते समय आदरणीय नेता सुनेत्रा पवार जी हो, माननीय सुनील तटकरे साहब हो, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी हो, आदरणीय दिलीप वड़से पाटिल साहब हो, सबने मिलकर एक मत होकर निर्णय लिया और किसी प्रकार की कहीं कोई नाराजगी नहीं।
2: लेकिन भुजबल साहब को जब हमने पूछा, उन्होंने कहा कि मैं शतरंज का खिलाड़ी नहीं हूं, मैं कबड्डी का खिलाड़ी।
3: वो इतने वरिष्ठ नेता है, उनकी वरिष्ठता, उनका अनुभव, हमारे पिता तुल्य नेता है वो, और उनकी बराबरी करना बहुत संभव नहीं है। लेकिन मेरे को बहुत आशीर्वाद उन्होंने दिया और बहुत अच्छी से चुनौती जो शब्द है इसमें मैं यही कहना चाहूंगा, जब भी कोई टास्क पार्टी देती है तो उसमें बहुत लगन के साथ काम करना पड़ता है, और मेरे ये दो वर्ष बहुत ऐतिहासिक रूप से काम करने में जाएंगे।
0: राजेंद्र जैन को मौका देकर सुनेत्रा पवार ने प्रफुल्ल पटेल का सम्मान बढ़ाया है, क्योंकि पिछले महीने सुनेत्रा पवार ने चुनाव आयोग को भेजी गई पार्टी की आधिकारिक लिस्ट से पटेल का नाम हटा दिया था, जिससे उन्हें साइडलाइन करने की खबरें उड़ी थी। हालांकि बाद में सुनेत्रा ने इसे प्रशासनिक गलती बताकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी। इधर बीजेपी कह रही है कि ये एनसीपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन महायुति में कोई मतभेद नहीं है।
4: राज्यसभा का बाई इलेक्शन, उसके लिए नामांकन महायुति की तरफ से हम सबने मिलकर पर्चा दाखिल किया, उम्मीदवार श्री जैन, इनके उम्मीदवारी का पर्चा हम सबने दाखिल किया। महायुति की तरफ से राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता भी थे, शिवसेना की तरफ से गोगावले जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं, और इस बाई इलेक्शन में हम चुनाव जीतेंगे ऐसा हमें पूरा भरोसा है। और जहां तक राष्ट्रवादी कांग्रेस में उम्मीदवार के चयन के प्रक्रिया का मामला, ये उनका अंदरूनी मामला है, इसके ऊपर हम भाष्य क्या करें।
0: सवाल है कि क्या सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम के साथ एनसीपी की एकजुटता को बनाए रखने में कामयाब रहेंगी।
2: महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के राज्यसभा के सीट के लिए राजेंद्र जैन ने आज नामांकन तो दाखिल कर लिया, लेकिन इसके बाद अब एनसीपी पार्टी में जो आपसी रंजिश उभर कर सामने आ रही है उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री छगन भुजबल और पूर्व सांसद नवनीत राणा इस सीट पर दावा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल जो पार्टी के आला नेता है उन्होंने अपने करीबी राजेंद्र जैन को मौका देकर पार्टी में अपना स्थान फिर एक बार मजबूत कर लिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह आपसी घमासान थमेगा या फिर और तीव्र होगा। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
5: उधर टीएमसी में खलबली मची हुई है। इधर आज इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में बैठक की है और इस बैठक में विपक्ष ने तय किया कि वो सामूहिक रूप से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे और साथ ही साथ महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की गई है।
6: दिल्ली में 25 दलों के दम के साथ इंडिया गठबंधन जुटा तो मोदी सरकार के खिलाफ एक शिकायत, दो मांग और दो प्लान की बात हुई। शिकायत चीफ जस्टिस से होगी कि एसआईआर से वोट चोरी हो रहा है और चुनाव में धांधली हो रही है। मांगे ये, एक तो नीट और सीबीएसई मामले में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और दूसरे देश के आर्थिक हाल, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, अत्याचार जैसे मुद्दों पर सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए।
7: शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं और इस्तीफा देना चाहिए।
6: प्लान ये बना है कि हर दो महीने में इंडिया गठबंधन की मीटिंग जरूर होगी और संसद के सत्र में रोजाना प्लान बनेगा। इंडिया गठबंधन की बैठक के तुरंत बाद बीजेपी का जवाब भी आया।
8: केरल में आपने सरकार बना लिया तो एसआईआर को कोस नहीं रहे, बंगाल में हार गए तो एसआईआर का रोना रो रहे। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश।
6: दरअसल दो बरस बाद इंडिया गठबंधन का मंथन तो हो रहा है, लेकिन इस मंथन में कोई एक मुद्दा नहीं है। कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ देश में अपना कुनबा जोड़ना है, समाजवादी पार्टी को यूपी पर बात करनी है, आरजेडी में घर के अंदर ही कलह खत्म नहीं हो रही, जेएमएम को डर है कि राज्यसभा चुनाव में विधायक बिक ना जाएं, लेफ्ट विजयन के अपमान से परेशान है, एनसीपी कहती है कि अभी चुनाव दूर है और सबसे ताजा पीड़ित टीएमसी को तो अपनी पार्टी बचानी है। ऐसे में इंडिया गठबंधन आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे मजबूत होगा, ये अपने आप में सवाल है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू, दिल्ली से पीयूष मिश्रा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
5: दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे तो नहीं शामिल हुए, लेकिन वो वर्चुअली मीटिंग में जुड़े जरूर। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता आपस में नहीं लड़ रहे, बल्कि हम 2029 की लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। आगे किया कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और आगे की लड़ाई राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे भी स्पष्ट राय दे चुके हैं, 2029 के चुनाव से पहले विपक्ष को एक चेहरे पर सहमति बनानी चाहिए।
9: हम आपस में नहीं लड़ रहे, हम 2029 की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। आज इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग दिल्ली में है, लगभग जो हमारे इंडिया अलायंस के सदस्य हैं, लगभग सभी वहां पहुंच रहे हैं और जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो वर्चुअली उस मीटिंग में शामिल होंगे। जैसे कि शिवसेना पार्टी जी, उद्धव ठाकरे जी, हम सब लोग वर्चुअली मीटिंग में शामिल हो गए और भी कुछ लोग वर्चुअली शामिल हो गए। देखिए, इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस एकजुट है, एक रहेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। मैं सुन रहा था ये पश्चिम बंगाल में जो लोग सत्ता पे आए हैं, हाँ, उनके दिमाग में हवा चढ़ गई है सत्ता की। वो बोल रहे थे कि इंडिया ब्लॉक में क्या बचा है और ममता दीदी के बारे में कुछ बोल रहे थे। ये ठीक नहीं है। इंडिया ब्लॉक में क्या बचा है, इंडिया ब्लॉक क्या है, इंडिया अलायंस क्या है, ये 2029 में पता चलेगा।
5: मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक सोसाइटी में मराठी और जैन समुदाय आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि जैन समुदाय ने अपने संतों के आगमन के लिए सफेद पेंट से एक चौड़ी पट्टी बना दी, जिसको लेकर पूरी सोसाइटी दो विचारधाराओं में बढ़ गई। पूरा का पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए।

0: पूर्वी मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक हाउसिंग सोसाइटी में एक सफेद लकीर ने इलाके की शांति भंग कर दी। दरअसल जैन समुदाय के लोगों ने इस सोसाइटी के एक विंग से सड़क तक एक चौड़ी सफेद लाइन पेंट कर दी है। ये चौड़ी सफेद लाइन कैलाश एवेन्यू सोसाइटी के अंदर लगे पेवर ब्लॉक तक बनाई गई थी, जिसमें 33 फ्लैट है। जैन समुदाय का तर्क है कि बारिश के मौसम में जमीन में काई जम जाती है, जिससे कई सूक्ष्म जीव होते हैं। इसलिए जैन साधु उनकी सोसाइटी में आना नहीं चाहते, क्योंकि वो अगर इस काई पर पैर रखेंगे तो कई जीवों की हत्या हो जाएगी। इसी वजह से सफेद ऑयल पेंट फुटपाथों से लेकर कई सोसाइटियों में कराया गया है।
1: ये लाइन क्या परमानेंट लाइन है जो आप लोगों ने जो किया?
2: देखिए, ये मैंने बुलाया था, ये परमानेंट यानी थोड़े टाइम बारिश होती है तो अपने आप लाइट हो जाती है ये। और कलर वो क्या करते, सब बिल्डिंग में यही कलर वाले आते, मैंने उनको ही बुला के करवाया, दूसरा कुछ इसमें है ही नहीं। मैटर
1: हर बिल्डिंग में हो रहा है,
2: मोस्टली घाटकोपर के। आप देखो, आप चलोगे तो दूसरे सब बिल्डिंग में आप जाके देखो, क्योंकि हमारे साधु संत सब जगह आते हैं, तो वो लोग आते हैं तो करते ही है कि वो लोग चल के आ सके, नहीं तो रेनी सीजन में हमारे यहाँ आ ही नहीं सकते हैं ना।
1: वजह क्या है ये व्हाइट पेंट?
2: वो काई होती ना, काई उसके अंदर हम लोग में बोलते हैं कि बहुत जीव रहते हैं, उसके ऊपर वो लोग पैर नहीं रख सकते, तो इसके लिए वो लोग 4 महीना फिर यहाँ आने का अवॉइड करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तो आपके बिल्डिंग में हम लोग नहीं आ सकते, यहाँ काई रहती है तो इसके ऊपर पैर जाता है तो बहुत पाप लगता है, इसके लिए वो लोग नहीं आते। तो हम लोग ने एक सॉल्यूशन निकाला कि इसके ऊपर चल के वो लोग हमारे घर तक आ सकते हैं, दूसरा कोई रीजन ही नहीं है बस।
1: क्या ये सिर्फ टेम्पररी है ये लाइन?
2: नहीं, वैसे तो लोग तो
3: रखते हैं 4 महीने के लिए, रखते हैं 4 महीने के लिए रहते, सब सोसाइटी में रहते हैं। ये जैन धर्म और काई के हिसाब से और साइंस भी प्रूव किया है, साई के
2: एक ही जगह रहते हैं, साइंस भी प्रूव किया है। ठीक है, एक ही जगह 4 महीना रहते हैं हमारे साधु संत, और वो 4 महीने में आने के लिए स्पेशली होते, बाकी दूसरे सीजन में कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है उनको आने में, सब लोग आते ही है।
0: लेकिन मराठी समाज के लोग इस लाइन का कड़ा विरोध कर रहे हैं।
1: एक सफेद लाइन जो एक सोसाइटी के बीच में खींची हुई है, इसने इस पूरे सोसाइटी को कांजुरमार्ग के, मुंबई के कांजुरमार्ग इलाके में ये सोसाइटी है, वह उस इलाके के सोसाइटी को डिवाइड करके रख दिया। आखिर वजह क्या है, ये लाइन कहाँ से आई, किसने खींची, जानते हैं। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं हमारे साथ, उनके साथ प्रसाद वेद प्रकाश जी, आप मतलब ये सडनली कब दिखी ये लाइन? जब खींच रही थी तभी दिखी थी?
4: मुझे लगता है आज 5वां दिन है, इसीलिए मैं चप्पल निकाल रहा हूँ और ये करना सही होगा। इस लाइन ने हमारी सोसाइटी को जिस तरीके से डिवाइड किया है, 25 साल में कभी डिवाइड नहीं किया था, इसीलिए मैं पूरे जैन समाज से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ ये ऐसी चीज़ जो हमारी सोसाइटी में हुई है, जिससे कि बहुत ज़्यादा धार्मिक तनाव बढ़ गया है, धार्मिक तरीके से आगत हो चुके हैं हम लोग, हमारा परिवार डिस्टर्ब्ड है, आज 5वां दिन है, प्लीज इसे यहाँ से हटाइए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जीव दया थोड़ी सी प्लीज हमारे तरफ भी दिखाइए, बहुत मान सम्मान है हमें आपका, आपके धर्म का, मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना मुझे यहाँ पे शायद इसी तरीके से धरने पे बैठना पड़ जाएगा, पर ये लाइन जो सोसाइटी में 25 साल से नहीं थी वो मैं यहाँ पे नहीं रहने दूंगा।
0: मराठी समाज के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं कि जैन समुदाय के लोगों ने बाकी लोगों से उनकी राय तक नहीं पूछी, इसलिए सोसाइटी बेवजह 2 हिस्सों में बट गई है, जिससे आपसी भाईचारा प्रभावित हो रहा है।
4: ये इपॉक्सी ऑयल पेंट है जो परमानेंट पेंट है, 1 घंटे में ये पेंट कर दिया गया, मैं घर पे नहीं था, मैं आया तभी मैंने देखा कि यहाँ पे पेंटिंग का काम हो चुका है, मैंने पूछा ये किस चीज़ की लाइन है, तो जो कमेटी मेंबर है वो उन्होंने सीधी तरीके से बात नहीं करी, और ये बहुत ही छोटा इशू है, इसके लिए मीडिया कवरेज और इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बात करके हम लोग नेबर्स हैं, ये सॉल्व हो सकता था, पर इन्हें बात नहीं करनी है। कल भी मीटिंग हुई है, मीटिंग सिर्फ कमेटी मेंबर में होती है, अगर मैं ये मुद्दा रख रहा हूँ, अगर हमारे यहाँ पे 7 फ्लैट्स हैं, इफ़ वी आर ऑल्सो द लैंडलॉर्ड्स हियर, तो प्लीज़ कंसिडर अस।
1: लेकिन ये वाइट लाइन क्यों खींची गई है, कुछ बताया गया है क्या?
4: मैम, इट्स रियली वेरी डिसग्रेसफुल, डिसहार्टनिंग, ये सही नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा है, मेरी मॉम मैसेजेस ये लोग व्हाट्सएप पे डालते हैं, कोई बात नहीं करता है, हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है, जस्ट बीइंग लैंडलॉर्ड्स अचानक से हम लोग विलन कैसे बन गए, कहाँ है जीव दया, कहाँ है जैनिज्म, कहाँ है करुणा, प्रेम, ये क्या चल रहा है, Isn't this religious politics?
0: सोसाइटी के 33 में से 7 फ्लैट वेद पाठक परिवार के हैं, जो जमीन के मालिक भी हैं। उनका कहना है कि उन्होंने सोसाइटी के अंदर कॉमन जगह पर सफेद लाइन बनाने का वीडियो तब अपलोड किया जब उन्हें हाउसिंग सोसाइटी कमेटी से कोई जवाब नहीं मिला जिसने इसे बनाने की इजाजत दी थी।
5: मेरे रिलीजन के हिसाब से गोंधळ ठेवतात, गोंधळ माहिती आहे का तुम्हाला, जिसमें बकरा और हेन काटी जाती है, तो मैं यहाँ पे करूँ वो, आपको चलेगा?
6: वो आप अपनी सोसाइटी से
5: वो मेरे धर्म में है, वो मेरे धर्म में है सोसाइटी
6: से परमिशन ले, वो अप्रूव करेंगे तो हम लोग को ऑब्जेक्शन नहीं है। आप सोसाइटी से परमिशन वो अप्रूव करेंगे तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
5: वो मेरा अच्छा मन है कि मैं नहीं कर रहा हूँ।
7: हम सोचते हैं कि यहाँ धर्म के
5: मैं मिच्छामी दुक्कड़म बाद में नहीं बोलता हूँ।
6: आपको सोसाइटी अप्रूव करेंगे
7: समझ रहे हो ना, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? किसी
1: वो वही चाहते हैं कि इसे निकाल दिया जाए।
6: एक साल में समझो निकाल देगा, नेक्स्ट ईयर
1: चतुर
6: सामने बोले नहीं तो अभी सोसाइटी।
1: तो ये थे यहाँ सोसाइटी के मेंबर्स जिनका यही कहना है कि वो जैसा कि ये जो लाइन है खींची हुई है वो निकाल देंगे, लेकिन अभी क्योंकि इस बार बन गई है लाइन तो इस बार अभी वो नहीं निकालेंगे, लेकिन कोशिश जो है आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर बीच बहस शुरू हो गई है एक तरीके से, पर जो सोसाइटी है वो नियरली डिवाइडेड है इस पूरे मुद्दे पर, इस लाइन की एक वजह से पूरा सोसाइटी एक तरीके से आप कह लीजिए डिवाइडेड दिख रही है, और यही वजह है कि जो शांति शायद पिछले कई वर्षों से दशकों से यहाँ पर दिख रही थी वो अब डिवाइडेड दिख रही है।
0: इस वीडियो को 4000 से ज्यादा लोगों ने शेयर किया है और 17000 से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है।
8: मुंबई के वर्ली में NSDI डोम में शनिवार शाम हुए टेक्नो म्यूजिक इवेंट में 28 साल के एक लॉ स्टूडेंट की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस लड़के के साथ एक महिला ने भी इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि दोनों की तबीयत बिगड़ गई, महिला तो बच गई है लेकिन म्यूजिक कॉन्सर्ट में शामिल लॉ स्टूडेंट की मौत हो गई है। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। फिलहाल अभी तक ड्रग्स का एंगल सामने नहीं आया जिसके लिए पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
9: शनिवार की शाम मुंबई में NSDI डोम में एक कॉन्सर्ट हुआ। ये एक टेक्नो म्यूजिक कॉन्सर्ट था जिसमें बहुत से लोग अटेंड करने आए थे। इसमें 28 वर्षीय एक लॉ स्टूडेंट भी था, ऋषभ गांगुर्डे। ऋषभ गांगुर्डे पार्टी अटेंड कर रहा था तब उसकी पार्टी में तबीयत खराब हुई, उसे ब्रिज कैंडी अस्पताल ले जाया गया। ब्रिज कैंडी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद एक 31 वर्षीय महिला जो उसी पार्टी में थी, उसी कॉन्सर्ट में थी, उसकी भी तबीयत बिगड़ी और उसे जसलोक अस्पताल ले जाया गया। वहां पर डॉक्टर्स और मेडिकल टीम ने उस महिला को स्टेबलाइज किया, उसको स्टेबल किया और अब उस महिला की तबीयत ठीक है और अभी भी वो अस्पताल में ही एडमिट है। आपको बता दें कि ऋषभ गांगुर्डे और इस महिला ने दोनों ने ही शराब पी रखी थी। ये शक जताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में इन दोनों ने ही शराब पी थी जिसके वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी और ऋषभ गांगुर्डे की मौत हुई और जो महिला है उनकी तबीयत बिगड़ गई। पुलिस हर एंगल से इस केस की जांच कर रही है और इस मामले में अब FIR भी रजिस्टर कर ली गई है। जो कॉन्सर्ट के आयोजक थे स्पेस बाउंड वेब लैब्स लिमिटेड, इस कंपनी के खिलाफ और इस कंपनी के जो ओनर हैं करण सिंह और उनके मैनेजर, उनके खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया है। लापरवाही से मौत होने के जो सेक्शंस हैं वो सेक्शंस BNS के तहत लगाए गए हैं और इन्हें नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है, स्टेटमेंट्स के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि अप्रैल के महीने में मुंबई में एक और कॉन्सर्ट हुआ था, वो भी टेक्नो म्यूजिक कॉन्सर्ट ही था। वो कॉन्सर्ट गोरेगांव में हुआ था, वहां पर दो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी, दोनों ने ही ड्रग्स लिए थे और इस पार्टी में ड्रग्स लाए जाने की जो साजिश थी उस बारे में पता चला। उसमें 10 से 11 लोग अरेस्ट हुए, एक ड्रग नेटवर्क का भी भंडाफोड़ हुआ था। आपको बता दें कि पुलिस अब इस वर्ली NSDI डोम के कॉन्सर्ट में भी हर एंगल से शिनाख्त कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई ड्रग एंगल इस कॉन्सर्ट में भी था, पर अभी तक ड्रग एंगल सामने नहीं आया है। ऋषभ गांगुर्डे की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी तक सामने नहीं आई है ताकि ये पता चल पाए कि उसकी मौत की वजह क्या थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट का पुलिस इंतजार कर रही है। फिलहाल लोगों से पूछताछ जारी है, आयोजकों से पूछताछ की गई है, उन्हें फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाएगा। आयोजकों पर FIR दर्ज कर ली गई है। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
8: मीरा भायंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सुबह करीब 5 बजे गोल्ड नेस्ट सर्किल इलाके में बिना इजाजत बनी हुई नूरी मस्जिद और उसकी कॉम्प्लेक्स में बने हुए अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया और इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरे इलाके में कड़ा पुलिस बंदोबस्त किया गया था। इस बुलडोजर एक्शन में मस्जिद कमेटी ने प्रशासन का साथ देने का फैसला किया था। इसी बीच बिना मंजूरी बने मंदिर को भी तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है और दोनों ही धार्मिक जगहों पर कार्रवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया। हालांकि इलाके में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल जरूर बन गया था लेकिन फिलहाल हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
3: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
4: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
5: भारत ने न्यू चंडीगढ़ में खेले गए टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हरा दिया है और यह टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की अब तक की सबसे बड़ी जीत है.
6: मानव सुता गॉट इट एंड ग्रैब्ड इट विद बोथ हैंड्स जस्ट लाइक द ट्रॉफी 7 for 62 ऑन डेब्यू.
7: तीन दिन में ही अफगानिस्तान को तबीयत से टेस्ट क्रिकेट सिखा दी टीम इंडिया ने. करीब करीब तीन सेशन में दो बार उसे ऑल आउट कर ऐतिहासिक जीत हासिल की. पारी और 300 रन की धमाकेदार जीत भारत के नाम. अफगानिस्तान को पीट टेस्ट की सबसे बड़ी विजय पताका फहरा गया हिंदुस्तान. अफगानिस्तान के बल्लेबाज एक के बाद एक सरेंडर करते जा रहे थे. पहली पारी में उसकी पूरी की पूरी टीम 152 रन पर पवेलियन लौट गई. फिर फॉलो ऑन के बाद दोबारा बल्लेबाजी करने उतरी तो दो सेशन तक निकाल नहीं पाई. कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर 7 बल्लेबाजों को चलता कर दिया. नतीजा ये हुआ कि दूसरी पारी में अफगानिस्तान की टीम 112 रन ही बना सकी और एक पारी और 300 रन से मुकाबला हार गई. वैसे मैच के हीरो रहे मानव सुधार, जिन्होंने करियर के पहले ही मैच में पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 1 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता. शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया की मुल्लापुर टेस्ट में ये जीत उसके टेस्ट इतिहास की पारी और रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत है. आज तक ब्यूरो.
5: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक.
4: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
0: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy. However you make money work, we can work with that.
1: Mobile carriers, message, and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn, and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
4: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

0: ममता की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट की आशंका, शताब्दी रॉय के घर बैठक, शुभेंदु अधिकारी भी रहे मौजूद। काकोली का दावा, हमारे 7-20 सांसद भूपेंद्र यादव से भी मिला था नाराज सांसदों का दल। नीट पेपर लीक पर इंडिया गठबंधन का बड़ा दाव, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सर्वदलीय बैठक की मांग, सीजीआई को लिखेंगे पत्र, 5 सूत्री एजेंडा तय, बीजेपी ने विपक्ष पर उठाए सवाल। पटना में गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हुआ फैजल खान, फायरिंग मामले में लगातार दबिश दे रही है एसआईटी की टीम, पुलिस ने कोर्ट में सौंपी केस डायरी। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, पिघला स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत, मौके पर उठी आग की तेज लपटें। और ईरान इजराइल में युद्ध फिर से शुरू, तेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्ला की ओर से भी हमले, आईडीएफ ने इस्फहान पर किया जवाबी प्रहार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

ममता की पार्टी टीएमसी में फूट, दिल्ली में लोकसभा के 28 में से 20 बागी सांसदों की शताब्दी रॉय के घर मीटिंग, बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ली की मुलाकात की, काकोली घोष ने लगाई मोहर। बागी सांसदों पर महुआ मोइत्रा का फूटा गुस्सा, सोशल मीडिया पर लिखा लाल चीटर पोक गद्दार बीजेपी में जा सकते हैं। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु रॉय ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, राज्यसभा चेयरमैन ने इस्तीफा मंजूर किया। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने फिर से थमाया नोटिस, कल शाम 5 बजे बुलाया। उत्तर दमदम नगर पालिका के चेयरमैन विधान विश्वास समेत 35 में से 21 पार्षदों ने इस्तीफा दिया, विधानसभा चुनाव में टीएमसी की भारी हार के बाद नैतिक जिम्मेदारी ली। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के 25 दलों की बैठक, 5 मुद्दों पर बनी है सहमति, खड़गे बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, नीट और सीबीएसई की गड़बड़ी के लिए बताया जिम्मेदार। एसआईआर चुनाव की निष्पक्षता को लेकर इंडिया गठबंधन लामन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखने की तैयारी। इंडिया गठबंधन ने सरकार से महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की, हर 2 महीने में गठबंधन ने मीटिंग का फैसला लिया। विपक्ष की बैठक के जरिए उद्धव ठाकरे ने केंद्र को घेरा, कहा देश में हालत गंभीर है, संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा, एक होकर चुनौतियों का सामना करना होगा। विपक्षी गठबंधन पर बीजेपी का पलटवार, समित पात्रा बोले केरल में एसआईआर को क्यों नहीं कोस रहे हैं जबकि बंगाल में एसआईआर को ठहरा रहे हैं दोषी, इस गठबंधन का वजूद चोरी हुआ। देहरादून में एनएसयूआई ने नीट के पेपर लीक को लेकर किया प्रदर्शन, पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार की राज्यसभा सीट पर राजेंद्र जैन ने किया नॉमिनेशन, छगन भुजबल का पत्ता कटा, एनसीपी कोर कमेटी की बैठक में बढ़के भुजबल, कहा मैं कबड्डी का खिलाड़ी हूं शतरंज का नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को 65 शख्सियतों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करेंगे, अभिनेता ममूटी आर माधवन के नाम शामिल हैं, पिछले महीने 66 लोगों को दिया गया था सम्मान। सूरत में बीजेपी के डिप्टी मेयर के बेटे और प्रदेश बीजेपी किसान मोर्चा के महासचिव के बीच हुआ विवाद का वीडियो वायरल हुआ, गोचर की जमीन पर कब्जा करने को लेकर हुआ था विवाद। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड मामले में होटल के मैनेजर जय मिश्रा ने सरेंडर किया, साकेत कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। बिहार में एमएलसी के सभी 10 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा, एनडीए के 9 और आरजेडी के 1 और उम्मीदवार ने दाखिल किया है नामांकन। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रसाद प्रकाश नहीं भर सके एमएलसी के लिए पर्चा, एनडीए से नाराजगी के सवाल को उपेंद्र कुशवाहा ने खारिज किया, दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर संकट गहराया। विधान परिषद चुनाव में सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद आरजेडी में नाराजगी, पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने आरजेडी के सभी पदों से दिया इस्तीफा, मीडिया के सामने ही रो पड़े। शिवचंद्र राम को उम्मीदवार नहीं बनाने पर एचएएम के संस्थापक जीतनराम मांझी ने आरजेडी पर निशाना साधा, बोले जो गरीबों की जमीन तक को नहीं छोड़े ऐसे लोगों से किसी भी तरह की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पटना में सम्राट कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर मोहर लग गई है, सासा मूसा चीनी मिल को बड़ा आर्थिक पैकेज, करीब 3600 करोड़ की पेंशन को मंजूरी। चंडीगढ़ में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और हरियाणा के सीएम ने इलेक्ट्रिक बस से सफर किया, ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 के 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। संगरूर में किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर किसानों का प्रदर्शन, केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर उठाई गई आवाज। टीएमसी नेता जहांगीर खान गिरफ्तार, भारत नेपाल सीमा से पकड़ा गया, बंगाल एसटीएफ को मिली कामयाबी। शिमला में संजौली में लव जिहाद का मामला सामने आया, पहले नाबालिग का वीडियो बनाया और फिर ब्लैकमेल भी किया। ओमान तट के पास जहाज में लगी थी आग, सभी 24 भारतीय नाविक सुरक्षित, रेस्क्यू जारी। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह, वीरता और उत्कृष्ट सेवा के लिए सैन्य अधिकारियों को सम्मानित किया गया। सेना के मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र से किया गया सम्मानित, अरुणाचल में सैन्य अभियान के दौरान असाधारण वीरता का किया था प्रदर्शन। दिल्ली में यमुना के पुनरुद्वार को लेकर अमित शाह की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में साफ स्वच्छ यमुना हमारा संकल्प है। दिल्ली में भव्य पोर्टल का शुभारंभ, उद्योगों को मिलेगा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ईंधन बचत अभियान के तहत ट्रेन से यात्रा की, ई रिक्शा से पहुंचे गुरुकुल। पटना में फैजल खान उर्फ खान सर अंडरग्राउंड हुए, पुलिस लगातार दबिश दे रही है, पुलिस ने केस डायरी कोर्ट में जमा किया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए की याचिका पर 7 विदेशी नागरिकों को नोटिस जारी किया है, वॉइस सैंपल को लेकर मांगा है जवाब, 2 जुलाई को अगली सुनवाई।
अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़, अफगान नागरिक समेत चार की गिरफ्तारी, 8 विदेशी पिस्तौल भी बरामद। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला, मस्जिदों दरगाहों के संरक्षण के लिए विशेष टीम गठित की गई। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ, पिघला हुआ स्टील गिरने की वजह से 8 लोगों की जान गई, प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। बिहार के मुजफ्फरपुर में जीवित वृद्धा को मृत दिखाकर 3 महीने से रोकी गई पेंशन, दफ्तरों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर, मानवाधिकार आयोग पहुंचा है पूरा मामला। सीकर में सामूहिक धर्मांतरण के आरोप में 3 गिरफ्तार, बीएचपी ने की है कड़ी कार्रवाई की मांग। दिल्ली में अग्निकांड के बाद जामनगर में प्रशासन सतर्क हुआ, नियमों की अनदेखी करने वाले कई होटल और रेस्टोरेंट सील हुए। मुंबई के दादर में बेस्ट की बसों ने 2 गाड़ियों को टक्कर मारी, 1 की मौत हुई, 3 घायल हुए। गुरुग्राम में पारिवारिक कलह का खूनी अंत, सिरफिरे पति ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से पत्नी और बेटे को गोली मारी, आरोपी गिरफ्तार। 4 बीघा जमीन के लिए पुत्र ने पिता को कुल्हाड़ी से मार डाला, मृतक के पौत्र ने अपने पिता के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया। अलीगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाला शातिर गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज बरामद। चंदौली में 2 दिन पहले गोली मारकर किए गए हत्याकांड का खुलासा, ब्याज पर पैसा न देने पर सुपारी किलर ने हत्या कराई। मथुरा में दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर पलट गई बस, 1 महिला की मौत हुई, 15 गंभीर रूप से घायल हुए। कानपुर में चंद रुपए को लेकर महिला डॉक्टर की कार में तोड़फोड़ की गई, पुलिस मौजूदगी में होता रहा बवाल। बिहार के गोपालगंज में शादी के 1 महीने के बाद ही दहेज के लिए बहू की हत्या, 4 पहिया वाहन की मांग को लेकर गला दबाकर मार डाला। बिहार के मोतिहारी में पिता ने नशे में बेटी की हत्या कर डाली, मृत बच्ची की मां के बयान पर केस दर्ज। रोहतास नारायण मेडिकल कॉलेज में छात्र की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई, पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह का खुलासा होगा। बेगूसराय में हथियार लहराने वाले युवक की गांव वालों ने पिटाई कर डाली, पुलिस ने हथियारों के साथ आरोपी को हिरासत में लिया। बिहार के सहरसा में ट्रेन में सीट को लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई, 1 की मौत हुई, 2 गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह में पिता ने 3 बेटियों को गला रेत कर मार डाला, पुलिस ने गिरफ्तार किया। देवघर में पुलिस को मिली कामयाबी, वारदात में पहले 5 शातिर अपराधी हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए। जामनगर में शेयर मार्केट से ज्यादा मुनाफे के लालच में करीब 26 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई, राजस्थान से आरोपी गिरफ्तार किए गए। हैदराबाद में लूट और हत्या के मामले में 2 युवक गिरफ्तार, एमपी के बालाघाट में वारदात को अंजाम दिया गया था। कौशाम्बी में संविदा लाइन कर्मी का कत्ल, सिर कटा हुआ शव बरामद, घर से ऑफिस जाने के लिए निकला था। यूपी के महोबा के धसान नदी में डूबने से 2 सगे भाई उनकी जान गई, परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया। यूपी के बलिया में पति रज्जव हुसैन ने से छुटकारा पाने के लिए पत्नी अमीना खातून ने अपने भाई के साथ मिलकर घर में ही लूट कराई, खुलासे के बाद घरवाले शर्मसार। गाजियाबाद में करोड़ों रुपए की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचने का खुलासा, रिटायर्ड लेखपाल समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में बदमाशों का आतंक, लाठी डंडों से पीटकर 2 व्यापारी भाइयों पर हमला, वीडियो वायरल हुआ। भोपाल में कमिश्नर ऑफिस में युवक को आया काटे कर अटैक, 2 पुलिसकर्मियों ने CPR देकर जान बचाई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में डॉक्टर्स का कमाल, अनोखे अंदाज में की ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, इलाज के दौरान पूरी तरह से होश में रहा मरीज। असम के तेजपुर में 2 दिवसीय तेजपुर लीची महोत्सव का आयोजन, 500 किलो सिंगापुर भेजा गया है लीची। अकोला में अंतर्राष्ट्रीय महायोगोत्सव का भव्य आयोजन, हजारों साधकों ने किया योग। छत्तीसगढ़ के भिलाई में पिंक मैराथन का दिखाई दिया क्रेज, 2300 महिलाओं ने मैराथन में हिस्सा लिया। वाराणसी में गंगा किनारे भारी भरकम शिवलिंग मिलने के बाद लोग हैरान थे, 2 क्विंटल और 2500 साल पुराने शिवलिंग का लगाया जा रहा है अनुमान। भारत की टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत, न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हराया। अफगानिस्तान के खिलाफ मानव सुधारने की थी शानदार गेंदबाजी, झटके थे 7 विकेट, चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच। जापान में आयोजित अंडर 18 एशिया कप 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय अंडर 18 पुरुष और महिला हॉकी टीम पहुंचे दिल्ली, भव्य स्वागत। जर्मनी में फीफा वर्ल्ड कप का छाया खुमार, एसएन शहर में 70 साल के फुटबॉल फैन ने जर्मन झंडों से सजाया मोहल्ला। मैक्सिको सिटी में फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले बेहद दुर्लभ झील आकर्षण का केंद्र बन गया है, शहर की दीवारों पर नजर आई रंग बिरंगी तस्वीरें। इसराइल ईरान में फिर से जंग तेज हुई, हिजबुल्लाह के साथ मिलकर तेहरान में बोला गया हमला है, RGC ने इसराइल के नेवातिम और तेल नोफ एयरपोर्ट पर अटैक किया। जवाबी हमले में इजरायली सुरक्षा बलों ने ईरान के कई बड़े शहरों को बनाया था निशाना, IRGC ने भी पुष्टि की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान बोले, राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता है, किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। ईरान में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, भारतीयों को ईरान यात्रा से बचने की सलाह दी गई। फिलीपींस में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 दर्ज की गई, कम से कम 35 लोगों की जान गई।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको इसराइल पर ईरान के हमलों और इसराइल के जवाबी पलटवार के बारे में बताएंगे। जिस वक्त सीजफायर को 2 महीने पूरे हो रहे थे, उस वक्त ये युद्ध फिर से शुरू हो गया और इस बार पहला हमला अमेरिका या इसराइल नहीं बल्कि ईरान की ओर से हुआ। कहा जा रहा है कि यह हमला लेबनान के समर्थन में किया गया, लेकिन दावा यह भी है कि ईरान ने यह हमला अली खामनेई के जनाजे को टालने के लिए किया। क्या आज आपको बताएंगे कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच दरार क्यों बढ़ती जा रही है। दावा यह है कि ईरान अमेरिका की डील किन शर्तों पर हो सकती है, इसकी खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इसराइल अमेरिका के अधिकारियों की जासूसी करा रहा था। आज आपको यह भी बताएंगे कि इस जंग का तेल और गैस की कीमतों पर क्या असर होने वाला है। इसके बाद आपको बताएंगे कि दुनिया में तनाव के बीच चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहां पहुंचे, नॉर्थ कोरिया, जहां उनका स्वागत सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने किया। अब देखिए, पूरे विश्व में अगर आप देखिए तो ऐसा लगता है जैसे हर कोने में कोई ना कोई बड़ा बदलाव हो रहा है और उसी कड़ी के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। आज आपको बताएंगे कि शी जिनपिंग आखिर नॉर्थ कोरिया से क्या चाहते हैं और नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया की जोड़ी कैसे अमेरिका के लिए खतरा बन सकती है। और इसके बाद आपको शामली के मोहम्मद अली के बारे में बताएंगे, जो पहले आयुष मलिक था। आरोप है कि इसका ब्रेन वॉश किया गया और ब्रेन वॉश करने वाली जिम ट्रेनर चांदनी, उसके परिवार और 3 मौलवियों ने किया। इस घटना में पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। क्या आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। और आखिर में आपको बताएंगे फिलीपींस में भूकंप, भयानक भूकंप आया, बड़ी बड़ी इमारतों को ताश के पत्तों के महल की तरह ढहते हुए देखा गया है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर सऊदी अरब से आ रही है, जहां दावा है कि ईरान ने सऊदी अरब के अल खर्ज एयरबेस पर हमला किया। इस हमले में कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन ईरान ने इस तरह के दावे को पूरी तरह से गलत बताया है। तो ये दावा एक तरफा है और ये कहा है कि उसने सिर्फ इसराइल पर हमले किए हैं। तो आज बड़ा सवाल ये भी है कि जब ईरान बार बार इस बात से इनकार कर रहा है कि उसने सऊदी के अल खारिज एयरबेस पर हमला नहीं किया है, तो सऊदी की तरफ से यह दावा क्यों किया जा रहा है कि ईरान ने उसके अल खारिज एयरबेस पर हमला किया। ये हमले भी इसलिए किए गए क्योंकि इसराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में उसके प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्ला पर बारूद बरसा रही है और ऐसा करके सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। यानी आज सुबह से सऊदी अरब और यूएई पर ईरान के हमलों की जितनी भी खबरें चल रही थी, वो सारी खबरें गलत साबित हो गई हैं। ईरान का कहना है कि उसके हमले सिर्फ इसराइल तक सीमित थे। दूसरी खबर यह है, बड़ी खबर, कि ईरान ने इसराइल पर हमले करने के लिए अपने प्रॉक्सी संगठन हूती की मदद ली, जिसने येमेन से इसराइल पर मिसाइल दागी और इसराइल का दावा है कि इस मिसाइल को उसने हवा में ही नष्ट कर दिया। जिस तरह इस युद्ध की लपटें एक बार फिर से मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले रही हैं, उसे देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षा चेतावनी जारी कर दी है और यह कहा है कि इसराइल पर दागी जा रही ईरान की मिसाइलें जॉर्डन में भी गिर सकती हैं, जिससे जान जाने का खतरा है। अमेरिका ही नहीं बल्कि भारतीय दूतावास ने भी एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी भारतीयों से ईरान की यात्रा ना करने की अपील की गई है। और भारतीय दूतावास ने यह भी कहा है कि ईरान में रह रहे भारतीय जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। ये एडवाइजरी मैं अपने हाथ में भी लेकर आई हूं। सोचिए, भारतीय दूतावास ऐसी अपील कर रहा है तो क्या अब एक बार फिर ये युद्ध खतरनाक रूप ले सकता है, लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ इसराइल के हमलों के बाद ईरान में भी काफी तनावपूर्ण हालात हैं। ईरान की सरकार ने रेड क्रेसेंट सोसाइटी को तैयार रहने को कहा है। तो भारत की तरफ से जो एम्बेसी ऑफ इंडिया ने ये एडवाइजरी जारी किया है, वो जरा आपको बता दे, क्योंकि इसमें 8 जून को आज ही की तारीख में इन व्यू ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द रीजन, यानी जिस तरह के हालात एक बार फिर से पूरे इलाके में बन रहे हैं, एम्बेसी ये फिर से आपके सामने कहता है कि reiterates its earlier advice to all Indian nationals to avoid any travel to Iran. मतलब ईरान अभी ना जाएं, पहले भी हमने कहा था, अब नए सिरे से कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एडवाइजरी साफ साफ संकेत है

आसमान में जो मिसाइलें जा रही थी, जाती हुई मिसाइलों को देखकर नारे लगा रहे थे, जश्न मना रहे थे। और ये तस्वीरें सामान्य नहीं थी, ये तस्वीरें बता रही थी कि ईरान और इसराइल का ये युद्ध एक बार फिर से लोगों के मन में भी लड़ा जा रहा है। और अब आप इस मन को टटोलेंगे तो इसमें आपको एक दूसरे के खिलाफ कट्टर दुश्मनी, जबरदस्त नफरत नजर आएगी। और आज यही चैलेंज पूरी दुनिया के सामने है। इसराइल के लोगों को मरता हुआ देखकर तालियां पीटी जा रही हैं, ईरान के लोगों को मरता हुआ देखकर इसराइल में जश्न मनता है। दोनों तरफ वही हाल है, युद्ध का यह सबसे खतरनाक।

0: آخری برو بزن از هیچی نگذر و بزن حیله برادر ضربه آخر رو بزن.
1: बताया जा रहा है कि इसराइल में भी ऐसे ही जश्न मन रहा है। अब सवाल यह है, ये दृश्य बता रहे हैं कि ईरान और इसराइल के बीच कागज पर सीज फायर हो सकता है, सीमाओं पर गोलियां चलनी भी बंद हो सकती हैं, लेकिन जो लोगों के मन में अब एक दूसरे के लिए कड़वाहट है, वो कड़वाहट, वो कट्टर नफरत खत्म होने को तैयार नहीं है। दोनों देशों के लोगों में किसी समझौते के साथ क्या ये जो गुस्सा है लोगों का, जो आक्रोश है, वो खत्म होगा? क्या ये भी देखिए कि अब तक हर बार युद्ध की शुरुआत इसराइल और अमेरिका की तरफ से होती थी, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ जब ईरान ने इसराइल पर शुरुआती हमले किए। ईरान ने 10 से 12 मिसाइलें इसराइल की 4 बड़े शहरों पर दागी और इनमें भी ऐसे इलाकों को निशाना बनाया गया जहां यहूदी आबादी ज्यादा रहती है। इस पर इसराइल की सेना यह भी आरोप लगा रही है कि ईरान के इन हमलों का मकसद ज्यादा से ज्यादा यहूदियों का खून बहाना था, जिस पर अभी पूरी दुनिया खामोश है। इसराइल की सेना का यह भी दावा है कि उसने ईरान की सभी मिसाइलों को आयरन डोम की मदद से हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ जगहों पर इन मिसाइल्स का मलबा गिरने से लोगों के घरों को नुकसान हुआ। और इस हमले के बाद जिस तरह से इसराइल के तेल अवीव और दूसरे शहरों में सायरन बज रहे थे, उसके कारण पूरा इसराइल तनाव में रहा। देखिए,

ईरान ने ये हमले ऐसे वक्त में किए हैं जब इस युद्ध में लागू हुए सीज फायर को 2 महीने पूरे हो रहे थे। इससे ये सवाल उठता है कि क्या इन हमलों के पीछे कोई ऐसी कहानी है जो अब तक बाहर नहीं आई। अब ये वेस्टर्न मीडिया का दावा है, पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ये हमले लेबनान के कारण हुए, यानी इसराइल सीज फायर की शर्तों का पालन नहीं कर रहा था। और ये बात लंबे समय से आ रही थी कि ईरान इस बात से बहुत नाराज है। उसने कई बार ये खुलकर कहा कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर बारूद बरसा रहा था जब तक इसराइल, उसने ईरान को आग बबूला किया, उसने हिजबुल्ला के समर्थन में ये मिसाइल हमले किए हैं। ये वेस्टर्न मीडिया का कहना है। लेकिन एक और थ्योरी चल रही है जिसको कई लोग सोशल मीडिया पर खास तौर पर डाल रहे हैं कि इसके पीछे पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई का सलातल जनाजा भी हो सकता है, जिसका मतलब होता है आयतुल्लाह अली खमेनेई को राष्ट्रीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक करना। आप देख ही रहे हैं कितने दिन बीत चुके हैं। ईरान कहता है कि आयतुल्लाह खमेनेई 28 फरवरी को इसराइल के हमले में मारे गए थे, लेकिन हकीकत यह है कि तब से अब तक उनका शव किसी ने नहीं देखा है और उन्हें लेकर कई तरह के दावे भी किए जाते हैं। और इनके पीछे एक कारण यह है कि ईरान की इस्लामिक सरकार हर बार उन्हें सुपुर्दे खाक करने की एक तारीख बता देती है, लेकिन हर बार उस तारीख पर कार्यक्रम को टाल दिया जाता है। अब ऐसा तो इस बार भी, जब 2 जून को ईरान के सरकारी मीडिया ने ऐलान किया कि आखिरकार 3 महीने बाद आयतुल्लाह खामेनेई को दफनाया जाएगा, ये कार्यक्रम

21 जून को हो सकता है। तब उससे पहले ये युद्ध शुरू हुआ है तो कई लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि ईरान के नेता ऐसे किसी भी दावे को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमला हिजबुल्ला के समर्थन में हुआ है। वैसे आज सवाल सिर्फ ईरान को लेकर नहीं है, बल्कि आज सवाल अमेरिका और इसराइल को लेकर भी है, जिनकी दोस्ती अब कभी भी टूट सकती है। कल रात जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया, तब उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी परेशान थे। उन्हें डर था कि अगर इसराइल ने इन हमलों का जवाब दिया तो ये युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा और अमेरिका और ईरान की डील फिर से फंस जाएगी। इसी चिंता में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन मिलाया और उनसे ये कहा कि वो इन हमलों का बदला ना लें, ईरान पर कोई जवाबी कार्रवाई ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बातचीत के बाद खुद अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस को एक इंटरव्यू दिया और ये कहा कि ईरान के हमलों में इसराइल को बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और इसीलिए इसराइल भी ईरान पर हमले नहीं करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप यही नहीं रुके, वो इतने उत्साहित थे कि उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को भी एक इंटरव्यू दिया और ये कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पास ईरान से डील करने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। और इन सारे बयानों से राष्ट्रपति ट्रंप ये दिखाना चाहते थे कि उन्होंने इसराइल को हमला ना करने के लिए मना लिया है और ईरान युद्ध को फिर से सुलगने से रोक लिया है, जबकि ये युद्ध शुरू उन्होंने ही किया था। लेकिन यहां राष्ट्रपति ट्रंप एक अलग माहौल बना रहे थे और अमेरिका का मीडिया भी यही लिख रहा था कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप की बात मान ली है और वो ईरान पर जवाबी हमले नहीं करेंगे। लेकिन देर रात ये सारी खबरें गलत निकली और इसराइल ने ईरान पर हवाई हमले लॉन्च करके ये बता दिया कि वो अब राष्ट्रपति ट्रंप को यस बॉस कहने के मूड में नहीं है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान में कम से कम 2 बड़े धमाके हुए, इस्फहान में 3 बड़े धमाके, तब्रीज में धमाकों की आवाजें सुनाई दी और खुद इसराइल ने भी बताया कि उसने पश्चिमी और मध्य ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इनमें भी ईरान के मैशहर में उस पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हवाई हमले किए गए, देखिए, जिसे ईरान के लिए सबसे अहम माना जाता है। तो अब तक जो पश्चिम के देश इसराइल या फिर मिडिल ईस्ट के देश ये रो रहे थे कि हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर वो हमले कर रहे हैं, अब इसराइल भी वही कर रहा है। ये प्लांट फारस की खाड़ी के पास मौजूद है जहां 2,00,000 टन से ज्यादा के पेट्रोकेमिकल्स उत्पाद बनते हैं और अगर ये बनना बंद हो जाए तो इस पूरे इलाके में सोचिए किस तरह की तबाही मचेगी और विश्व में जो पूरा सप्लाई चेन है उस पर कैसा असर होगा और ईरान में तो खैर महंगाई बढ़ सकती है। और यही सोचकर इसराइल ने ईरान पर ये हमले किए हैं। अब यहां बड़ी खबर यह नहीं है कि इसराइल ने ईरान पर पलटवार किया, बल्कि बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप की बात नहीं मानी, उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। क्यों किया, अब उसके पीछे का खेल समझिए। इसराइल ये मानता है कि ईरान और हिजबुल्ला उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकते हैं। ईरान तो कहता भी है कि उसका लक्ष्य इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना है, जिसमें हिजबुल्ला उसकी मदद करता है। और पिछले एक हफ्ते में हिजबुल्ला ने लेबनान से इसराइल पर 18 से ज्यादा रॉकेट हमले किए हैं और यही हमले प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती में दरार डाल रहे हैं। इसराइल का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा पहले देखेगा और वो राष्ट्रपति ट्रंप के लक्ष्यों के लिए अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि वो किसी तरह ईरान के साथ डील करें और दलदल बन चुके इस युद्ध से खुद को बाहर निकालें। अब यहां राष्ट्रपति ट्रंप का जो लक्ष्य है उसके लिए इसराइल अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता, जिसके कारण प्रधानमंत्री नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप की एक नहीं सुन रहे। और यह भी तब हो रहा है जब पिछले हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ गाली गलौज की थी और उन्हें एहसान फरामोश बताते हुए कहा था कि अगर वो ना होते तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू जेल की सजा काट रहे होते। अल जजीरा का दावा है कि इस बातचीत के लीक होने से भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू काफी असहज है। वो ऐसे फैसले लेना चाहते हैं जिससे दुनिया को ये दिखाया जा सके कि इसराइल अमेरिका के रिमोट से कंट्रोल नहीं होता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अब तक खुद को ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो इसराइल की सुरक्षा पर समझौता नहीं करता, जो बाहरी दबाव के आगे घुटने नहीं टेकता और जो जरूरत पड़ने पर भी अमेरिका से सहमति जता सकता है। और इसीलिए जब यह संदेश गया कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में आकर सीज फायर स्वीकार कर रहे हैं तो उन्होंने ट्रंप से किनारा किया और ट्रंप से किनारा करना शुरू करने के बाद उन्होंने अब ये वापसी हमला भी कर दिया है। अपने दूसरे कार्यकाल में अब तक राष्ट्रपति ट्रंप का ये 15 देशों से झगड़ा हो चुका है जो अमेरिका के मजबूत सहयोगी एक वक्त पर माने जाते थे।
कौन कौन से वो दोस्त है, मतलब जो पक्के अलायंस पार्टनर माने जाते थे, उनके साथ बकझक की नौबत। कनाडा, स्पेन, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब। और सोचिए यूरोपियन यूनियन, नेटो, ओमान, और अब इस सूची में इसराइल भी शामिल हो सकता है। और लोग कह रहे हैं कि अब इसराइल ने भी अमेरिका को ना कहना सीख लिया।

0: ईरानी आतंकवादी शासन ने एक बार फिर आतंक का रास्ता चुनकर बड़ी गलती की है। ये शासन एक नया नियम बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो दहिये में आईडीएफ के हमलों के जवाब में सीधे रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है। हम इसे होने नहीं देंगे।
1: एक तरफ इसराइल लबनान में हमले रोकने के लिए तैयार नहीं है तो दूसरी तरफ ईरान की सेना ये कह रही है कि वो लबनान को रेड लाइन मानती है। अब और अगर इस रेड लाइन को इसराइल पार करेगा तो उस पर और भी बड़े हमले होंगे, घातक हमले होंगे। सुनिए।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
0: ज़ायोनी शासन बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है और अमेरिका के समर्थन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की चुप्पी के बीच लेबनान के लोगों पर अत्याचार कर रहा है। बल्कि वो तो यहाँ फॉस्फोरस बम जैसे प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल कर युद्ध अपराध कर रहा है। हमने पहले भी चेतावनी दी थी लेकिन इसराइल ने सभी सीमाएं पार करके बेरूत के दहिये और दक्षिणी लेबनान में हमले बढ़ा दिए। हमने पहले भी कहा था कि अगर बेरूत में ये हमले बढ़े तो हम इसराइल के अलग अलग ठिकानों पर हमला करेंगे।
1: ईरान यह भी दावा कर रहा है कि उसने इसराइल के दो बड़े एयरबेसेस को निशाना बनाया। इनमें एक है नेवाटिम एयरबेस और दूसरा है टेलनॉफ एयरबेस और इन्हें इसराइल के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य हवाई अड्डों में गिना जाता है। इनमें भी नेवाटिम एयरबेस दक्षिणी इसराइल के नेगेव रेगिस्तान में स्थित एक बहुत बड़ा वायुसेना का अड्डा है जहां F-35 एडी, C-130 और खुफिया विमान तैनात रहते हैं और यहां इसराइल का सबसे बड़ा परमाणु ठिकाना भी मौजूद है। लेकिन ईरान की मिसाइलें इन एयर बेसिस पर पहुंच गई और अब इसराइल कह रहा है कि वो इन हमलों का ईरान को करारा जवाब देगा। जबकि राष्ट्रपति ट्रंप अभी किसी भी तरह से इस युद्ध को रोकने की कोशिश में लग गए।
3: Abba, this just hit the first part. Wow, that is crazy.
1: इस दौरान अमेरिकी एजेंसियों को इसराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा इनपुट मिला है और जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस तरह से चीजें काम करती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स से लिखता है कि पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा विभाग ने जासूसी के मामले में इसराइल को क्रिटिकल श्रेणी में डाल दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को अब लगता है कि इसराइल अमेरिकी अधिकारियों, अमेरिकी सैन्य अधिकारियों और ईरान से जुड़ी अमेरिकी नीतियों की जासूसी कर रहा है। यानी अब इसराइल को अमेरिका पर भरोसा नहीं। और अमेरिका कैसे भरोसा करे अगर इसराइल जासूसी कर रहा है अमेरिका में? इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म करने के लिए एक डील करना चाहते हैं जबकि इसराइल इसे खुश नहीं है और इसलिए अमेरिका को शक है कि इसराइल यहां यह जानना चाहता है कि अमेरिका ईरान से आखिर क्या बातचीत कर रहा है, वो क्या करना चाहता है। अमेरिकी अधिकारियों का यह कहना है कि इसराइली एजेंसियां अमेरिकी सैन्य अधिकारियों पर नजर रख रही हैं, सरकारी अधिकारियों के बारे में जानकारी जुटा रही हैं और ईरान से जुड़ी नीति चर्चाओं की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। इनमें भी विशेष रूप से उन लोगों पर नजर है, बताया जा रहा है कि विशेष रूप से उन लोगों पर नजर रखने की बात कही गई है जो ईरान के साथ डील के लिए चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इसराइल ने इन आरोपों को खारिज किया है और यह कहा है कि इसराइल अमेरिकी अधिकारियों या संस्थाओं की कोई भी जासूसी नहीं करता। लेकिन यहां सोचिए, यह मामला अब सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच मतभेदों तक सीमित नहीं है। अब बात यहां तक आ गई है कि दोनों देशों के बीच भरोसा कम हो रहा है। कुछ अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने दावा किया है कि उनके मोबाइल फोन में ऐसा सॉफ्टवेयर मिला जो उनकी बातचीत सुन सकता था या उनकी हर गतिविधि की निगरानी कर सकता था। और अगर यह दावा सही साबित हो जाता है तो इससे यह पता चलेगा कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद किसी भी तरह से यह जानने को बेताब है कि आखिर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान से किस तरह की डील कर रहे हैं। और यह जानना इसराइल के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब से कुछ देर पहले ईरान ने कहा कि वो इसराइल पर दोबारा हमला नहीं करेगा और इसराइल को भी लेबनान पर हमले अब बंद कर देने चाहिए। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह ऐलान शायद इसलिए हुआ क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को मुक्त कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि देखिए अमेरिका ने ईरान की 100 बिलियन डॉलर यानी 9,55,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की हुई है। अगर ये संपत्ति ईरान को मिल जाए तो उसकी अर्थव्यवस्था का नक्शा बदल सकता है, वो खुद को मिडल ईस्ट में और भी मजबूत कर सकता है, और अगर ईरान मजबूत होगा तो इसराइल के लिए सीधा खतरा है। और इसीलिए इसराइल पर आरोप लग रहा है कि वो डील को लीक कराने के लिए अमेरिकी अधिकारियों की जासूसी करा रहा है, उनके फोन टैप करा रहा है, जबकि ईरान कह रहा है कि ये सब कुछ दिखावा है, अमेरिका और इसराइल मिले हुए, बस सतही तौर पर लड़ाई दिखाई जा रही है।
0: हमने पहले भी जोर दिया था और अब भी कहते हैं कि लेबनन में युद्ध विराम किसी भी व्यापक युद्ध विराम और युद्ध समाप्त करने वाले अंतिम समझौते का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाल के दिनों में इसराइल द्वारा लेबनन में बढ़ते हमले और अपराध वास्तव में उन कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर कर रहे हैं जो स्थिति को और बेहतर बना सकते थे, और इस स्थिति के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है।
1: हमारे देश में भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसमें पाकिस्तान के पक्ष में लोग नारे लगाते हैं जब उन्हें कहा जाता है कि भाई वहीं चले जाइए अगर आपको प्रेम है, तो ऐसे में कई लोग उनको डिफेंड भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं मुस्लिम देशों में जब कोई नागरिक अपने दुश्मन देश का समर्थन करता है तो उसके साथ क्या किया जाता है? पहले कुवैत को देखिए, 71 लोगों की सिर्फ इसलिए नागरिकता रद्द कर दी गई है, सिटीजनशिप कैंसल्ड, क्योंकि ये लोग उसके दुश्मन देश ईरान का समर्थन कर रहे थे और उसके पक्ष में वीडियो बना रहे थे। बहरीन में 69 लोगों को इसलिए उनकी नागरिकता रद्द कर दी गई क्योंकि ये लोग ईरान का समर्थन कर रहे थे। इसके बाद ईरान पर आइए, जिससे आज ही 3,121 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। ईरान का सरकार का आरोप है कि इन लोगों ने युद्ध के दौरान या तो अमेरिका और इसराइल की मदद की या उनका समर्थन किया या अपनी सरकार के खिलाफ कोई जासूसी की। ऐसे सभी लोगों को ईरान ने देशद्रोही माना है और देशद्रोही मानकर विदेशी ताकतों का एजेंट घोषित कर दिया है, और आने वाले दिनों में इन्हें फांसी की सजा भी हो सकती है। यहां बात सिर्फ ईरान की नहीं है, यूएई में जो पाकिस्तानी शिया मुसलमान ईरान का समर्थन कर रहे थे उनके खिलाफ भी वहां कार्रवाई हुई थी, जिससे यह पता चलता है कि ये सारे देश अपने नागरिकों से यही उम्मीद करते हैं कि वो दुश्मन देश को दुश्मन ही माने। लेकिन कई बार हमारे देश के अंदर आपने देखा ही होगा राजनीति हावी हो जाती है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, पाकिस्तान के साथ हम कई युद्ध लड़ चुके हैं, पाकिस्तान के खिलाफ अभी भी हमने अलग अलग मौकों पर उनकी आतंकी घटनाओं के बाद सैन्य कार्रवाई की, लेकिन आज भी पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने वाले लोग इस देश में मौजूद हैं, जबकि मुस्लिम देशों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने देश के लिए वफादारी कर रखनी पड़ेगी। खैर, इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक ऑयल टैंकर पर फंसे सभी भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। भारत की शिपिंग मिनिस्ट्री के मुताबिक जिस जहाज पर हमला हुआ उसका नाम MT मैरिवेक्स है, और ये जानकारी अभी गलत है। इनके मुताबिक कि ये जहाज हमले के बाद डूब गया है। सभी नागरिक सुरक्षित हैं ये बताया जा रहा है। इस जहाज में आग लगी थी, 24 भारतीय नाविक फंस गए थे, लेकिन बाद में इन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है, और ये जानकारी सरकार ने खुद दी है। सुनिए।
4: रिसेंट रिपोर्ट दैट टुडे अराउंड 1:30 PM देयर हैज बीन अ फायर रिपोर्टेड ऑन अ वेसल MT मैरिवेक्स इन विच देयर वर 24 इंडियन सी फेयरर्स। दिस इज द प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन विच वी हैव रिसीव्ड, बेस्ड ऑन विच एज पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन all Indian seafarers are presently safe. We are coordinating with Ministry of External Affairs, our Indian missions abroad, Indian Navy, Ministry of Defence to ensure their safety.
1: अब बताया जा रहा है इस हमले के बाद हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही फिर से रुक सकती है, इससे कच्चे तेल गैस की कीमतों में इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं होगी और इसका आपकी जेब पर बुरा असर पड़ सकता है। युद्ध के बाद से अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतें 4 बार, रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 2 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। युद्ध से पहले घरों में इस्तेमाल होने वाला लगभग 14 किलोग्राम का 14.2 किलोग्राम का एक सिलेंडर 853 रुपए का था, जो अब 942 रुपए का हो चुका है, यानी एक सिलेंडर 89 रुपए महंगा हो चुका है। और इसकी कीमतें लगभग 10.4% बढ़ चुकी हैं। ये कीमतें भी दिल्ली की है और दूसरे राज्यों में इसी सिलेंडर की कीमत 1000 के आसपास भी है। यहाँ बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यूपीए के मुकाबले मौजूदा सरकार में रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ी हैं, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक ये जानकारी पूरी तरह से सही नहीं है। ये बात सही है कि 1 मई 2014 को एक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 928.50 रुपए थी, जबकि 7 जून 2026 को इसकी कीमत 942 रुपए है। इससे ऐसा ही लगता है कि पिछले 12 साल में रसोई गैस सिलेंडर ज्यादा महंगा नहीं हुआ, लेकिन इसका एक और पहलू यह भी है कि यूपीए सरकार में हर रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी, जिससे यह सिलेंडर तब सिर्फ 412 रुपए का पड़ता था, लेकिन आज सभी सिलेंडर्स पर सरकारी सब्सिडी नहीं मिलती। बिना सब्सिडी का एक सिलेंडर दिल्ली में 942 रुपए का है, जबकि उज्ज्वला योजना के तहत जरूर, जब आप देखें तो उज्ज्वला योजना के तहत जितने सिलेंडर मिलते हैं वो पूरे साल में 4 सिलेंडर पर, जो अगर आप घर में 4 सिलेंडर साल में ले रहे हैं तब आपको सब्सिडी मिलती है, 300 रुपए की मिलती है, और इस सब्सिडी से सिलेंडर की कीमत हो जाती है 642 रुपए। अब इस सवाल पर आते हैं कि सरकार को गैस सिलेंडर महंगा क्यों करना पड़ा, सरकार की सबसे बड़ी दुविधा क्या है। देखिए, रसोई गैस सिलेंडर में एलपीजी गैस भरी जाती है और हम अपनी 60% एलपीजी गैस अकेले सऊदी अरब से आयात करते हैं। अब युद्ध से पहले 1 टन एलपीजी गैस भारत को लगभग $542.5 में मिलती थी, लेकिन अब यही गैस प्रति टन हमें 46% महंगी मिल रही है और इसके दाम $790 पर पहुंच गए हैं। वैश्विक परिस्थितियों ने ऐसी मजबूरी पैदा की है, इससे एक रसोई गैस सिलेंडर हमारी तेल कंपनियों को लगभग 1600 रुपए का पड़ रहा है, जबकि आपको ये मिल रहा है 942 रुपए का दिल्ली में। यानी गैस महंगी होने से हर सिलेंडर पर तेल कंपनियों को 700 रुपए का घाटा हो रहा है, जिसके कारण घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 2 बार इजाफा कर दिया गया है। हालांकि यहां एक सवाल यह भी आता है कि अगर सरकार गैस की कीमतें बढ़ने से सिलेंडर के दाम बढ़ा सकती है तो क्या वो अपने टैक्स को कम नहीं कर सकती। दिल्ली में 942 रुपए के एलपीजी सिलेंडर पर 5% जीएसटी लगता है, जिससे सरकार को हर सिलेंडर पर 45.19 रुपए मिलते हैं। और जानते हैं इस जीएसटी में आधा हिस्सा केंद्र सरकार का होता है, आधा हिस्सा राज्य का। लेकिन सोचिए, आपने किसी भी सरकार को ये कहते हुए सुना है कि जब तक ये संकट है तब तक वो घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर पर टैक्स नहीं लेगी। साल 2025-26 में भारत में 3,32,00,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस की खपत हुई थी, जिसमें 90% गैस घरेलू सिलेंडर में इस्तेमाल हुई थी और इस पर सरकारों ने 5% का जीएसटी वसूला था, जिससे उसे 4,000 करोड़ रुपए ये ज्यादा की कमाई हुई थी। यहां एक और बड़ा बिंदु यह है कि सरकारें सिलेंडर पर जीएसटी को वसूलती हैं, वही सरकारें चुनाव में जब जाती हैं तो जनता को मुफ्त सिलेंडर देने का वादा भी करती हैं, जैसे 2022 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, 2023 में राजस्थान, साल 2024 में झारखंड, साल 2025 में दिल्ली, साल 2026 में तमिलनाडु में टीवी के पार्टी, असम में बीजेपी ने मुफ्त सिलेंडर देने का चुनाव में वादा किया। लेकिन जब बात इन्हीं सिलेंडर्स पर जीएसटी लेने की आती है तो किसी भी पार्टी की सरकार ये नहीं कहती कि संकट के दौरान टैक्स छोड़ देते हैं। यहां इन आंकड़ों को भी देखना होगा कि भारत में सब्सिडी वाला सिलेंडर 642 रुपए का है और बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 942 रुपए का। ये कीमतें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में मिलने वाले गैस सिलेंडर से कम है, लेकिन फिर भी हमारे देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। हमने इसीलिए सारी जगहों का जो कन्वर्जन है वो रुपए में कर दिया आपके लिए। इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत भारत में हर व्यक्ति साल भर में 4.71 सिलेंडर इस्तेमाल करता है, लगभग 4.5 सिलेंडर। आम उपभोक्ता भी हर कनेक्शन पर लगभग 6.74 सिलेंडर्स का इस्तेमाल करता है और हमारे देश में औसत हर एक कनेक्शन पर 6.1 सिलेंडर की सालाना खपत होती है। यानी देश में रसोई गैस का औसत सालाना खर्च 5,652 रुपए है, जबकि देश में 7,52,00,000 लोग ऐसे हैं जो 20 दिन काम करके इतना पैसा कमा पाते हैं। मौजूदा सरकार में गैस सिलेंडर की खपत बहुत तेजी से बढ़ी है और देश में लगभग सभी लोगों के पास एलपीजी गैस है, लेकिन ईरान युद्ध के कारण संकट बहुत बड़ा है और इस संकट में महंगाई लोगों को बुरी तरह घेर रही है और ये बात सरकार भी समझती है, जिसके कारण दूसरे देशों के मुकाबले रसोई गैस की कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिशें हो रही हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हम लोग पूरे विश्व में जो युद्ध के हालात चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन अलग भिड़े हुए हैं, इधर ईरान इसराइल के बीच फिर से स्थिति खराब है। वहीं तीसरी तरफ अगर आप देखिए तो चीन पर सबकी नजर है कि आखिर चीन क्या कर रहा है, क्योंकि आपको यह बताते हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग क्यों जाना पड़ा। जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोविड के बाद दूसरे देशों के दौरे पर जाना कम कर दिया या लगभग बंद ही कर दिया, तब वो उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचे और वहां जिस तरह सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने उनका स्वागत किया है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए।

0: 间6月8号下午，中共中央总书记、国家主席习近平在平壤锦绣山迎宾馆同朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩举行会谈。
1: तो प्योंगयांग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत करने के लिए जो भीड़ जुटाई गई है और जिस तरह की परेड निकली वो सामान्य नहीं है। प्योंगयांग उत्तर कोरिया का वो शहर है जहां आम लोगों को बसने की इजाजत नहीं है। इस शहर में सिर्फ सुप्रीम लीडर किम जोंग उनके करीबी, सेना के बड़े अधिकारी, प्रभावशाली लोग, उत्तर कोरिया का इलीट क्लास रह सकता है। लेकिन शी जिनपिंग का स्वागत करने के लिए राजधानी प्योंगयांग में हजारों लोगों को इकट्ठा किया गया और वहां लोगों ने इस तरह से फूल झंडे अपने हाथों में लेकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आभार जताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर कोरिया की सेना ने एक पूरी परेड वहां पर उनके लिए निकाली। उत्तर कोरिया और चाइना में इस तरह के स्वागत को मास मोबिलाइजेशन का हिस्सा माना जाता है, जिसे बड़ी भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन भी करना एक पुरानी परंपरा रही है। और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत के लिए भी इसी तरह की मास मोबिलाइजेशन, यानी चाइना और नॉर्थ कोरिया की एक साथ ताकत। साल 2013 से 2019 के बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने औसतन हर साल 14 विदेश यात्राएं की थी, लेकिन कोविड के बाद बहुत कम कर दी उन्होंने यात्राएं। पिछले कुछ वक्त से स्थिति यह है कि दुनिया के ज्यादातर बड़े नेता खुद बीजिंग जाकर उनसे मिलते हैं। और इसीलिए आज ये समझना जरूरी है कि जब शी जिनपिंग खुद प्योंगयांग पहुंचे हैं तो इसके पीछे असली वजह क्या है। तो पहला कारण हो सकता है रशिया। पारंपरिक रूप से चाइना और उत्तर कोरिया का रिश्ता ऐसा था जिसमें चाइना बड़ा भाई था और उत्तर कोरिया आर्थिक रूप से चाइना पर निर्भर था, उसका छोटा भाई समझ लीजिए। एक समय उत्तर कोरिया का लगभग 95% व्यापार अकेले चाइना से होता था, लेकिन 2022 में रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद स्थिति बदल गई और रशिया उत्तर कोरिया के करीब जाने लगा। नॉर्थ कोरिया ने रशिया को तोप के गोले दिए, मिसाइलें दी, हथियार, यहां तक कि सैनिकों की टुकड़ियां भेजी। कई विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर कोरिया की मदद ने रशिया की युद्ध क्षमता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बदले में रशिया ने भी उत्तर कोरिया को काफी मदद दी। रशिया ने उत्तर कोरिया को लगभग $14.4 बिलियन तक का भुगतान किया, जिनमें सैन्य मदद भी शामिल थी। और यहीं से चाइना चिंतित है। वो उत्तर कोरिया को रशिया के करीब जाता देखकर उसे अपने पाले में खींचना चाहता है। दूसरा कारण यह है कि चाइना खुद भी बहुत शक्तिशाली उत्तर कोरिया नहीं चाहता। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है कि चाइना नहीं चाहता कि उत्तर कोरिया बहुत ज्यादा सैन्य रूप से ताकतवर हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर उत्तर कोरिया ज्यादा परमाणु हथियार बना ले, ज्यादा आधुनिक मिसाइलें हासिल कर ले, अधिक आक्रामक हो जाए, तो इससे पूरे कोरियाई क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है और इसका नुकसान चाइना को भी हो सकता है। तीसरा कारण यह है कि उत्तर कोरिया तेजी से हथियार बढ़ा रहा है। 2026 की शुरुआत से उत्तर कोरिया 8 मिसाइल परीक्षण कर चुका है, AI से ऑपरेट होने वाली नई क्रूज मिसाइल्स बना चुका है, अपने नए परमाणु फैक्ट्री का प्रदर्शन कर चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम तेजी से बढ़ सकता है और चाइना इस पूरी गतिविधि को बहुत ध्यान से देख रहा है। चौथा कारण यह है कि दक्षिण कोरिया और जापान एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। हाल के महीनों में साउथ कोरिया और जापान सुरक्षा सैन्य सहयोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं और चाइना पहले से ही जापान के सैन्य विस्तार को लेकर बहुत असहज रहा है। अगर जापान दक्षिण कोरिया और अमेरिका के एक मजबूत ब्लॉक बना लेते हैं तो चाइना के लिए चैलेंज है और इसीलिए चाइना उत्तर कोरिया को अपने पाले में मजबूती से बनाए रखना चाहता है। और पांचवा कारण यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात की काफी संभावनाएं हैं, जिससे शी जिनपिंग असहज है और चाइना नहीं चाहता कि उत्तर कोरिया के साथ उसके ऐतिहासिक रिश्ते बिल्कुल भी कमजोर पड़े। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। शामली की यह खबर है जहां पर धर्म परिवर्तन का ऐसा मामला सामने आया, इस वक्त यूपी की सबसे बड़ी खबर है। यहां एक बड़े दावे के हिसाब से कारोबारी देवराज मलिक का बेटा आयुष मलिक अचानक एक दिन मुस्लिम टोपी पहनकर बकरीद की नमाज पढ़ने ईदगाह पहुंच गया, जिसके बाद उसकी एक तस्वीर वायरल हुई। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद उसके परिवार को पता चला कि आयुष मलिक अब खुद को मोहम्मद अली बताता है। उसका नाम अभी भी आयुष मलिक है, लेकिन जो अलग अलग तरीकों में वो मोहम्मद अली बन चुका है। परिवार ने जबरन धर्म परिवर्तन की शिकायत दर्ज कराई है। उसकी फैमिली ने ही कराई है। परिवार की शिकायत है कि आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया गया है और ये काम उसकी जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी ने किया है। पुलिस ने शिकायत के बाद जांच शुरू की तो पता चला कि साल 2022 में आयुष और चांदनी कुरैशी की मुलाकात एक फिजियोथेरेपी सेंटर में हुई थी। यहां पर दोनों ने एक दूसरे से फोन नंबर एक्सचेंज किए, फिर दोनों की बातचीत शुरू हुई। जल्द ही दोनों ने कुरैशी प्लस नाम का एक जिम ज्वाइन कर लिया, जिसमें चांदनी कुरैशी आयुष मलिक की जिम ट्रेनर बन गई। आयुष मलिक के बारे में ज्यादातर लोग जानते थे कि वो करोड़पति परिवार से ताल्लुक रखता है। आरोप है कि प्रॉपर्टी और पैसे के लालच में चांदनी ने आयुष से नजदीकियां बढ़ाई और बाद में उसका धर्म परिवर्तन करवाकर चोरी छिपे उससे निकाह कर लिया। ये परिवार का आरोप है। धर्म परिवर्तन के बाद आयुष मलिक मोहम्मद अली बन चुका था, लेकिन उसकी खबर किसी को नहीं थी। पिछले 6 महीने से आयुष पर मुस्लिम दिखने का दबाव था, इसलिए वो अपनी दाढ़ी बढ़ा रहा था, मस्जिद में जाकर 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा था, टोपी लगा रहा था, मेडिकल स्टोर पर भी बैठने लगा था। परिवार को उसकी इन हरकतों पर शक था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो मुस्लिम धर्म अपना चुका है, इस्लाम धर्म अपना चुका है। इस साल बकरीद के दिन जब ईदगाह पर उसकी नमाज पढ़ते हुए तस्वीर वायरल हुई तो इलाके के हिंदू संगठनों को शक हुआ और हंगामा शुरू हुआ। इस बीच आयुष मलिक के पिता देवराज पर प्रॉपर्टी में हिस्सा देने का दबाव डाला जाने लगा। ये दबाव चांदनी कुरैशी के परिवार की तरफ से दिया जा रहा था। देवराज को हिदायत दी गई कि वो सारी प्रॉपर्टी आयुष उर्फ मोहम्मद अली और चांदनी कुरैशी के नाम कर दें। सिर्फ यही नहीं, देवराज मलिक का आरोप है कि चांदनी कुरैशी और उसके परिवार की तरफ से उन पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा था। देवराज ने हिंदू संगठनों की मदद ली, पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी और उसके परिवार के 6 सदस्यों, 3 मौलवियों पर जबरन धर्म परिवर्तन, अवैध वसूली का केस दर्ज किया है। पुलिस को जांच में पता चला है कि आयुष मलिक का धर्म परिवर्तन लंबे समय तक ब्रेन वॉश करके किया गया था। इस काम में चांदनी कुरैशी, उनका परिवार, दिल्ली के कुछ मौलवी, पाकिस्तान के एक धर्मगुरु इसरार अहमद के कट्टरपंथी वीडियोस का हाथ है। आयुष मलिक धार्मिक किस्म का इंसान नहीं है, वो मंदिर भी नहीं जाता था। चांदनी कुरैशी को इसके बारे में पता था, इसलिए मौका देखकर उसने आयुष से नजदीकियां बढ़ाने के बाद उसको मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। चांदनी ने आयुष मलिक को पाकिस्तान के धर्मगुरु डॉक्टर इसरार अहमद का वीडियोस दिखाने की सलाह दी, देखने की सलाह दी। इसरार अहमद की मौत साल 2010 में हो चुकी है, लेकिन गैर मुस्लिमों के ब्रेन वॉश करने से जुड़े सैकड़ों वीडियोस इस वक्त यूट्यूब पर मौजूद है। इसरार अहमद दावत देने के प्रसिद्ध था। दावत का मतलब एक ऐसी बैठक आयोजित करना जिसमें गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। इसरार अहमद की वीडियोस देखने के बाद सलाह देने के अलावा चांदनी कुरैशी, उनका परिवार, मौलवियों के इशारे पर आयुष मलिक की बातचीत पाकिस्तान के कुछ मौलानाओं से भी कराई गई और अब ये मामला ऐसा बन गया है। आयुष मलिक केवल 4-5 साल पहले ही चांदनी कुरैशी के संपर्क में आया था। परिवार के मुताबिक वो बहुत धार्मिक व्यक्ति भी नहीं था, लेकिन जब हमने उनसे बात की तो उसने किसी कट्टर धार्मिक व्यक्ति की तरह जवाब दिया। उसने हमें कुछ ऐसी बातें कही जिससे पता चला कि उसका ब्रेन वॉश किस हद तक हो चुका है। जैसे हमने आयुष से पूछा कि उसके दिमाग में मुस्लिम बन जाने का ख्याल कब आया। इस सवाल के जवाब में उसने कहा कि जब वो 13 साल का था तभी से वो मुस्लिम बनना चाहता था। जब हमने उससे पूछा कि धर्म परिवर्तन कहां पर कराया गया तो उसने कहा कि धर्म परिवर्तन कहीं होता नहीं है, ये अपने आप हो जाता है, अंदर से हो जाता है। अब हम आपको हमारे संवाददाता अरविंद ओझा और आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली की बातचीत का कुछ हिस्सा दिखाते हैं।
2: आपका नाम क्या हो चुका है?
3: आयुष मलिक नाम है, डॉक्यूमेंट्स में वही नाम है, मोहम्मद अली जो मैंने नाम अपनाया।
2: अच्छा, तो किस तरह से आप मोहम्मद अली बने इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए।
3: मोहम्मद अली नाम तो मैंने अभी रखा, इस्लाम में मैं कैसे आया वो धीरे धीरे करके सीख कर आया।
2: अच्छा, कैसे कांटेक्ट में आए आप चांदनी कुरैशी के, पूरा अगर आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं। आप
3: फिजियोथेरेपिस्ट थी, वो शोल्डर इंजरी थी मुझे, लिगामेंट टियर था, फिजियोथेरेपी कराने जाता था। कभी कभार चले गए तो कांटेक्ट में, पता लग गया कि हाँ वो फिजियोथेरेपी है, मुसलमान है। वैसे
2: तो आपका मुस्लिम धर्म का जो परिवर्तन है वो कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में? कहाँ?
3: धर्म परिवर्तन कहीं पे नहीं होता, धर्म परिवर्तन तो अंदर से होगा, कभी भी करवा कर सको आप, इसमें कोई मौलवी प्रोफेशन काम नहीं होता।
2: और किसका वीडियो, किस पाकिस्तानी मौलाना का वीडियो देखते थे? मतलब
3: किस... देखता था ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी का देखता था, डॉक्टर इशरार अहमद का ज्यादा देखता था।
2: डॉक्टर इशरार अहमद पाकिस्तानी मौलाना है जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो
3: धर्म परिवर्तन की तरफ।
2: अच्छा,
3: धर्म की बात बताते हैं। अब आप किसी की बात सुनकर उससे प्रभावित हो गया और आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आप कैसे होगे?
2: चांदनी कुरैशी से आप कैसे मिले और किस तरह से नजदीकियां हुई? सुना शादी भी कर लिया आपने।
3: अल्हम्दुलिल्लाह, 4 साल पहले निकाह हुआ था सर।
2: ऐसा क्या कनेक्टिविटी था कि आप मोहम्मद अली
3: कुछ सीखता था? ऐसा कोई कनेक्टिविटी नहीं है कि मुझे आज पसंद आया।
1: आयुष के पिता देवराज मलिक इस मामले को सीधे सीधे प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश मानते हैं। उनका कहना है कि आयुष को चांदनी कुरैशी और उसके परिवार ने फंसाया, मुस्लिम बनाकर उसके हिस्से की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की एक साजिश रची है। पिता को सुनिए।
4: आयुष के पास नाम काम दाम सब चीज पर्याप्त मात्रा में है, और तो उन्होंने इसे ब्रेन वॉश करके मौलवी वगैरह वगैरह और फर्जी दस्तावेज करके शादी का निकाह नम्मा करा के और उसकी संपत्ति हड़पने का मामला मेरे संज्ञान में जो स्थानीय स्तर पर मैं अपनी जानकारी से अपने ईस्ट मिस्ट घनिष्ठ से जो बात पता लगाई, मुख्य उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का है।
1: फिलीपींस में कुदरत ने ऐसा खौफनाक तांडव मचाया जिसने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को हिलाकर रख दिया। सोमवार सुबह आए रिक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप ने मिंडानाओ आइलैंड को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगे। स्कूल के पहले ही दिन मासूम बच्चे मौत के साए में चीखते नजर आए, पलब झपकते बड़े बड़े मॉल्स, इमारतें जमींदोज। अब तक 32 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सुनामी के अलर्ट के बीच लाखों लोग पलायन कर रहे हैं। फिलीपींस में सोमवार की वो सुबह बाकी दिनों की तरह नहीं थी। बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे, बाजार खुलने लगे थे कि अचानक जमीन इस कदर, देखिए ये तस्वीरें देखिए, महाभूकंप ने दक्षिणी फिलीपींस को जद में लिया। कुदरत का एक कहर यही नहीं रुका, मुख्य झटके के बीच बाद में पूरा इलाका 6.5 तीव्रता के शक्तिशाली आफ्टर शॉक से भी लगातार कांपता रहा। 32 लोगों की मौत के अलावा सैकड़ों लोग मलबे के नीचे जिंदगी और मौत की जंग इस वक्त भी लड़ रहे हैं। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और कर्म का गणित बहुत सीधा है, वक्त आने पर जिंदगी का मानचित्र बदल देता है। नमस्कार।
5: पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी के हाथ से क्या पार्टी भी जाने वाली है? विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसद भी टूट रहे हैं। ममता के 20 सांसदों ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा आज टीएमसी के एक राज्यसभा सांसद ने भी इस्तीफा दे दिया।
6: जिस वक्त ममता बनर्जी विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटती हैं, ठीक उसी वक्त उन्हीं की पार्टी के सांसद बगावत की नई कहानी लिख रहे होते हैं। विधायकों के बाद अब टीएमसी के सांसदों ने भी ममता का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। मतलब जिस वक्त सोनिया गांधी से गले मिलकर ममता बनर्जी गठबंधन को मजबूत करने में जुटी थी, उसी वक्त टीएमसी में विद्रोह की नई पटकथा लिखी जाती है। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए का हिस्सा बनकर सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। सांसद और टीएमसी की पूर्व नेता काकोली घोष ने यह दावा किया कि 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। इस बारे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी भेज दिया गया है। बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन की जहां बैठक हो रही थी उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर ममता बनर्जी के 14 बागी सांसद दोपहर में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक करते हैं। इस दौरान सुबह ही टीएमसी के राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके सुखेंदु शेखर राय भी मौजूद रहे। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनसे मिलने पहुंचे। इसी बैठक में लोकसभा सांसद काकोली घोष, शताब्दी रॉय, अबू ताहिर, अरूप चक्रवर्ती, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, असित मल, कालीपत सोरेन, जगदीश बसुनिया और प्रसून बनर्जी भी मौजूद होते हैं।
7: एमपी हो या एमएलए हो, ये तृणमूल कांग्रेस से दीदी का सिंबल लेकर 2 दिन पहले दीदी दीदी दीदी दीदी, आज क्या एनडीए के साथ मैं सुन रहा हूँ, तो ये क्या पॉलिटिक्स हुआ?
6: लोकसभा में टीएमसी के भी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इससे पहले 3 जून को पश्चिम बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। इस गुट ने ऋतुव्रत को अपना नेता बनाया है। ये इत्तफाक नहीं है कि जब ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली में मौजूद होते हैं, उसी मौके पर पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु भी दिल्ली पहुंचते हैं।
8: 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना, आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा।
6: इससे पहले राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर रॉय की तस्वीर सामने आई, जिसमें वो टीएमसी के कुछ बागी लोकसभा सांसदों के साथ देखे जाते हैं। सुखेंदु ने इस्तीफे के बाद मीडिया से कहा कि पार्टी के कई लोग ममता के मनमाने ढंग से पार्टी चलाने से नाराज थे और इसीलिए इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 2029 तक का था, अब सीट खाली हो चुकी है, अब इस पर उपचुनाव कराया जा सकता है।
9: अभी तो मैं पार्टी से बाहर हूँ, हमारा पार्टी का जो हम जब पार्टी में थे उस समय वो लोग जो थे कोई इसका विचार विमर्श कुछ नहीं किया गया इतना, क्योंकि उसका पावर मस्तिष्क माथे पे अंदर चला गया कि हमको कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया में। अरे भाई आम जनता ने तुमको चुन के भेजा है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने तुमको नीचे गिरा दिया, अब देखो कैसे गिराया।
10: शुकेंदु दा का जो उन्होंने बोले है मैं मेजोरिटी जगह में उनके साथ एकमत हूँ, और खास करके जहां तक पार्लियामेंट का अपर हाउस का फंक्शनिंग था, शुकेंदु दा जो बोले है वो एकदम सही है।
6: इस बगावत ने तब और गंभीर रूप ले लिया है जब बागी सांसद शर्मिला सरकार ने एनडीए को समर्थन दिए जाने की घोषणा की है और कहा है कि वो मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष को बताने वाली हैं कि वही असली तृणमूल कांग्रेस है।
11: हम 20 लोग थे जो जिनमें सिग्नेचर किए हैं, तो हम लोग एक सिफारिश ब्लॉक मतलब तैयार किए हैं, हम लोगों का वॉइस यहाँ से मतलब सेपरेट ब्लॉक से उठ गया।
6: टीएमसी में विद्रोह का आलम यह कि जो नेता कल तक ममता बनर्जी को दीदी दीदी कहकर संबोधित करते थे वो अब खुलेआम उनका नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं। इसे ममता बनर्जी के सियासी कदमे आई कमी के तौर पर देखा जा रहा है।
10: 2/3 से ज्यादा एमपी साइन किए हैं, उसका मतलब है 20 एमपी मतलब 2/3 से ज्यादा, तो लोग क्यों किए हैं ये बोल नहीं पाऊंगा, मगर एक तानाशाही के खिलाफ लोगों का आवाज उठ रहा है और ये जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है।
12: सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी, तो टूट गया।
6: टीएमसी में 28 साल के इतिहास में पहली बार औपचारिक तौर पर टूट सामने आई है। पहले 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए, विधायक ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता चुना, विधानसभा स्पीकर रतिंद्र बोस को समर्थन पत्र दिया, इसमें मांग की गई कि ऋतव्रत को नेता विपक्ष घोषित किया जाए, और अब ममता बनर्जी के 20 सांसदों ने दिल्ली में विद्रोह करके ममता को राजनीतिक रूप से सबसे कमजोर हालत में पहुंचा दिया है।
5: इंडिया गठबंधन फिर एकजुटता दिखाने के लिए जुटा, और परसों यानी कि बुधवार को एनडीए गठबंधन अपनी ताकत दिखाने वाला है। उससे पहले इंडिया अलायंस ने मीटिंग की 5 मुद्दों पर सहमति बनाई, लेकिन आज तक के पास इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी भी है, जिसमें पता ये चला है कि भीतर कई दलों ने कांग्रेस को लेकर सवाल किए हैं।
6: ममता बनर्जी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाती है, चुप मतलब एकदम चुप, शीशा बंद कर देती है, मीडिया के सवालों से बचती है। इससे कुछ देर पहले इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी सोनिया गांधी से गले मिलती हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान ममता बनर्जी को सोनिया गांधी के ठीक बगल में बैठाया जाता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में ममता बनर्जी बैठती हैं। इंडिया ब्लॉक की 2 साल बाद हुई 7वीं बैठक में 25 दलों के नेता शामिल होते हैं, 2 घंटे बैठक चलती है, 5 मुद्दों पर आपसी सहमति बनती है। पहला मुद्दा SIR में करोड़ों वोटर के नाम कटे, SIR और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर अब CGI को इंडिया गठबंधन चिट्ठी लिखेगा, दूसरा मुद्दा, नीट में देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ, नीट और सीबीएसई की गड़बड़ी के लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं, वो इस्तीफा दें। तीसरे मुद्दे पर जो आपसी सहमति इंडिया गठबंधन में बनी है वो ये कि सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। चौथा मुद्दा है कि हर दो महीने पर अब इंडिया गठबंधन की मुलाकात होगी, अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी। और पांचवा मुद्दा, संसद में इंडिया गठबंधन का समन्वय जारी रहेगा, रोज नेता विपक्ष के दफ्तर में बैठक की जाएगी। विपक्षी गठबंधन की हालत इस बात से समझिए कि जिन पांच मुद्दों पर सहमति अगर बनी तो दो मुद्दे यही हैं, बैठक बहुत लंबा टालो मत, समन्वय जल्दी करो। असल में विपक्षी गठबंधन की समस्या है समन्वय की, क्योंकि दिल्ली में ममता को गले लगाती कांग्रेस के विचार ममता को ही लेकर डेढ़ महीने पहले क्या थे, इसको आज याद करिए।
13: बीजेपी को मौका कौन दे रहा है? तृणमूल कांग्रेस दे रही है। तृणमूल कांग्रेस भी अपने काम में लगी हुई है, वो भी बंगाल के लिए काम नहीं कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट हैं, तो तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। बंगाल की जनता का फायदा नहीं होता है, यहां पे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का जो सिंडिकेट है उसको ये 24 घंटा पैसा देते रहते हैं, हिंसा फैलाते हैं, मारपीट करते हैं और झूठे वायदे। ममता जी ने बंगाल की पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। महिलाओं की बात करें तो आरजी कार रेप एंड मर्डर केस की भी बात करनी होगी।
6: जिन ममता के खिलाफ बंगाल में नाम लेकर राहुल गांधी भ्रष्टाचार से लेकर महिला अपराध तक पर घेरते रहे, उसी पश्चिम बंगाल में अब उन्हीं ममता बनर्जी के पास जब न सत्ता बच रही न पार्टी बचती नजर आ रही, तो इंडिया गठबंधन बैठक करके ये कहता है कि चुनाव एसआईआर और वोट चोरी से हार रहे हैं।
14: एसआईआर मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा, ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा।
15: पहले यही सब बैठक स्टेडियम में होती थी, आप सब देखे होंगे कैसे बेंगलुरु के स्टेडियम में एक दूसरे के हाथ पकड़ करके सभी लोग खड़े थे। धीरे धीरे अब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक रूम में होती है। उन्होंने कहा कि एसआईआर हुआ, वोट चोरी हुई, मुझे तो समझ में नहीं आता है ये एक ही टेप रिकॉर्डर ये कब से चला रहे हैं। मगर एसआईआर तो तमिलनाडु में भी हुआ, एसआईआर तो केरल में भी हुआ। तमिलनाडु में आप झटपट से वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर लिया और सरकार बना लिया, और डीएमके वहां बोल रही है यहां तो वोट चोरी नहीं, यहां तो एलआई ही चोरी हो गई, वहां तो एलआई चोरी हो गई। केरल में आपने सरकार बना लिया तो एसआईआर को कोस नहीं रहे, बंगाल में हार गए तो एसआईआर का रोना रो रहे। तो ये जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है ये सब हम और हिंदुस्तान देख रहा है।
6: बीजेपी इंडिया गठबंधन की बैठक को अस्तित्व बचाओ मोर्चा तक कहती है।
15: अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं, सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है।
6: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर सवाल राहुल गांधी भी उठा रहे थे, तमिलनाडु में कांग्रेस चुनाव हारी तो डीएमके से अलग होकर टीवीके के साथ सरकार बना ली, केरल में लेफ्ट पर चुन चुन कर वार करके ही कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद जब इंडिया गठबंधन की बैठक होती है तो दावा है कि भीतर कांग्रेस पर उन्हीं के साथ ही सवाल उठाते हैं। कई पार्टियों ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं के बीच तालमेल की कमी का सवाल उठाया। कुछ दलों ने कांग्रेस पर इसलिए सवाल उठाया कि वो अपने ही साथियों पर राज्य के चुनाव में तीखे आरोप लगाकर वोट मांगती है। दावा कि सबसे पहले अखिलेश ने ये बात उठाई और फिर बाकी नेताओं, खासकर लेफ्ट के दलों ने ये बात कही है। इस पर राहुल गांधी ने जवाब ये दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर हम साथ हैं, लेकिन जब मेरे राज्य इकाई के नेता मुझे हालात और चुनाव प्रचार के बारे में बताते हैं तो मुझे उनकी बात भी सुननी पड़ती है।
16: इंडिया गठबंधन ऐसे चलना है तो कांग्रेस के ओर से कुछ एडजस्टमेंट होना चाहिए, ये अभी तक हुआ नहीं। केरल में वो खतरनाक काम किया, अलग अलग राज्यों में वो किया, पुदुचेरी में वो काम किया, अपना अलाइंस को खत्म करने के लिए वो कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा सोच चाहिए।
17: वी हैव आवर सीरियस रिजर्वेशंस विद रिगार्ड टू कांग्रेस पार्टीज कॉन्टेक्ट एंड अप्रोच, वी विल रेज दोस इश्यूज इन द मीटिंग अनडाउटेडली। आवर जनरल सेक्रेटरी आल्सो हैज रिटन अ लेटर।
18: कांग्रेस के तरीकों पर उन्हीं के गठबंधन के लोगों ने मीटिंग के पहले से लेकर मीटिंग के बाद तक सवाल उठाया। समन्वय यानी आपसी साथ कितना है, इसका सबूत देख लीजिए पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी वाले युवाओं के साथ प्रदर्शन पर, जहां कांग्रेस के नेता प्रश्न उठाते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की मीटिंग में उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि अगर मुद्दा समान हो तो आंदोलन का समर्थन किया जाना चाहिए। डीएमके से कांग्रेस के अलग होने पर भी सवाल उठा है। दावा एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा कि डीएमके का गठबंधन में ना होना चिंताजनक है। अखिलेश यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि हम वो नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ दें। पिछले साल दिल्ली चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की रणनीति और नेतृत्व तक पर शिवसेना यूबीटी के नेता सवाल उठाते आए।
19: जो भी डिफरेंसेस, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंसेस हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म है।
18: आपसी डिफरेंस ही इंडिया गठबंधन की वो कमजोर नब्ज है, जिसे मीटिंग से पहले दिल्ली में ऐसे लगे पोस्टर से पुरजोर दबाने की कोशिश की गई। ऐसे पोस्टर जिस पर ये नहीं लिखा था कि किसने लगवाया, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते इंडिया गठबंधन के ही नेताओं के पुराने बयान इन पोस्टर पर दिखाए गए, जिन्हें बाद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आकर हटा दिया। पोस्टर तो हट गया, अब हर दो महीने पर मीटिंग करके आपसी समन्वय सुधारने की बात भी कर ली गई, लेकिन सवाल है कब तक। उत्तर प्रदेश का मोर्चा खुलने वाला है, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लोकसभा जैसी एकता दिखेगी, या फिर चार दिन की एकता और फिर वही आपसी विवाद चलता रहेगा।
5: अब वो खबर जो बड़ी चिंता पैदा करती है। उत्तर प्रदेश के शामली में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया जिसमें आयुष मलिक नाम का एक हिंदू नौजवान मोहम्मद अली बन गया। आयुष के पिता ने बेटे के धर्मांतरण का आरोप चांदनी कुरैशी नाम की जिम ट्रेनर पर लगाया है। आयुष के परिवार का कहना यह है कि जब उन्होंने बेटे के धर्म परिवर्तन का विरोध किया तो चांदनी के परिवार ने उन पर भी धर्म बदलने का दबाव बनाया।
4: जब मैंने FIR दर्ज की पुलिस प्रशासन में, तो इसके बाद पता लगा कि उसके बाद आप मोहम्मद अली बता रहे, कोई रहमान बता रहा, कोई कुर्बान बता रहा, मुझे तो कुछ नहीं, मेरे लिए तो आयुष मलिक है। इस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया गया,
20: अल्हम्दुलिल्लाह।
18: उत्तर प्रदेश का शामली, यहाँ पर एक करोड़पति हिंदू परिवार का इकलौता लड़का आयुष मलिक मुसलमान बनकर मोहम्मद अली हो जाता है। इस धर्म परिवर्तन के बाद एक जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी सवालों के घेरे में आती है, जिस पर आयुष मलिक के दवा कारोबारी पिता आरोप लगाते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए चांदनी कुरैशी ने उनके बेटे को प्यार के जाल में फंसाकर मुसलमान बनाकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया।
4: चांदनी नामक एक लड़की ने चांदनी कुरैशी उस लड़के को प्रेम जाल में फंसा, और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे मौलवियों का और बाह्य लोगों का कुछ जो अंतर्राज्य स्तर पे काम कर रहे और अपने परिवार से सभी से वो करके उसको ब्रेन वॉश किया।
18: खबरदार करता सवाल है कि क्या करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए एक हिंदू नौजवान को मुसलमान बना दिया गया, ताकि उसके परिवार को भी आगे जाकर हिंदू से मुस्लिम बनाकर प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जा सके।
4: ब्रेन वॉश करने के बाद उसका मुख्य उद्देश्य ये था, लड़के तो उसके समुदाय में भी बहुत मिलते, इससे भी स्मार्ट मिल जाते, लेकिन उसकी निगाह एक नामचीन बच्चे पे थी, क्योंकि आयुष के पास नाम काम दाम सब चीज पर्याप्त मात्रा में है, और तो उन्होंने इसे ब्रेन वॉश करके मौलवी वगैरह वगैरह और फर्जी दस्तावेज करके शादी का निकाहनामा फर्जी निकाहनामा करा कर और उसकी संपत्ति हड़पने का मामला मेरे संज्ञान में जो स्थानीय स्तर पर मैं अपनी जानकारी से अपने ईस्ट मिस्ट घनिष्ठ जो बात पता लगाई, मुख्य उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का है।
18: आयुष मलिक का परिवार शामली के संपन्न लोगों में से एक है। मेडिकल होलसेल की इसी दुकान पर आयुष मलिक बैठता था। दुकान के ऊपर ही रहने का घर भी है। आयुष के पिता का दावा है कि चांदनी नाम की जिम ट्रेनर फर्जी निकाह के आधार पर अब इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करने का दबाव डाल रही है।
2: कैसा लड़का था आयुष बचपन में, कैसे?
4: आयुष स्वभाव से बहुत ही बढ़िया, जिसे लोग ये कहते हैं कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बहुत संस्कारिक, बहुत मेहनती, बहुत निष्ठावान, बहुत ही मिलनसार और हर तरह से ईमानदार, सब खूबियां उसमें थी जितने एक बच्चे में हूं। इस चांदनी कुरैशी ने मेरे घर का प्रॉपर्टी के चक्कर में और मेरा सब घर बर्बाद कर दिया।
18: शामली के इस पिता की लाचारगी की वजह उसका बेटा है, जो न माँ की बात सुनने को तैयार है न तीन बहनों की। उसके दिलो दिमाग पर चांदनी छाई हुई है।
20: जो कुरैशी है हमारे यहाँ ठेले पे जूस बेचते शामली में, ये लोग मिल करके पिछले सप्ताह हमसे इन लोगों ने क्लेम किया कि साहब चूंकि शादी निकाह इसकी हो गई है, संपत्ति में मेरा भी हिस्सा है, आप ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी बेटी के नाम कर दीजिए आप, जिससे कि बहू और आपके हमारी बेटी आपका बेटा लोग ठीक से रहे और आप भी कन्वर्ट हो जाए कि हमारे धर्म में आ जाइए आप लोग।
2: आपको पता है कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पे नजर थी किसी की?
3: किसकी?
2: किसी की थी।
3: किसकी थी सर?
2: चांदनी कुरैशी और उसके परिवार की।
3: ये आप टारगेट कर रहे हैं सर, ये आप उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, न तो मेरी है इस पे, मैंने खुद भी कहा था आपको जो करना पेरेंट्स को अपने आप वो कर लो इस प्रॉपर्टी का, और न उनके साथ कोई ऐसा मसला है, उन्होंने भी साफ मना कर रखा।
2: और कोर्ट किन किस किस मौलाना की आपने वीडियो देखी इशरार अहमद के अलावा?
3: ऑल ऑफ द वर्ल्ड के सभी मोटिवेशनल स्पीकर रीजनल।
2: नाम बताइए दो चार।
3: डॉक्टर इशरार अहमद के मैं ज्यादा देखता था, ऐसे तो रैंडमली नाम नहीं याद रहते।
18: आमतौर पर धर्म परिवर्तन की खबरों में लोगों को लालच दिया जाता है, लेकिन शामली की कहानी पूरी तरह उल्टी है। यहाँ पर हिंदू नौजवान को मुसलमान बनाने के पीछे दावा है, उसकी संपत्ति पर कब्जा करके उसके पूरे परिवार को मुसलमान बनाने का मकसद।
4: रूप से उसका इतना उसे वो कर दिया गया कि वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। फिर भी मैं उसे बीच बीच में समय अंतराल कुछ अंतराल पर बात करता रहा, बात करने से समाधान नहीं निकला।
18: शामली में धर्म परिवर्तन की यह कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये शहर के सबसे रईस परिवार से जुड़ी है, जिसकी प्रॉपर्टी की कीमत 100 करोड़ के आसपास बताई जाती है।
21: मैं शामली के उसी मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ जहाँ फिलहाल आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली रहता है। अगर आप ये देखेंगे तो इस मेडिकल स्टोर का नाम है भारत मेडिक शॉप, और ये जो प्रॉपर्टी है केवल यही ही प्रॉपर्टी 20 करोड़ से ज्यादा की मानी जाती है, और इस तरह की कई प्रॉपर्टी आयुष मलिक और उसके पिता की है। पुलिस की तहकीकात में ये सामने आया है कि इन्हीं प्रॉपर्टी को किसी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए पहले आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, फर्जी निकाहनामा भी तैयार किया गया था।
18: आयुष के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में जांच की, जिसमें यह बात सामने आती है कि इस पूरे मामले के लिए एक फर्जी निकाहनामा तैयार किया गया, जिससे दावा है कि चांदनी कुरैशी और उसके परिवार ने मिलकर अंजाम दिया है।
20: फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गया है इसमें। अभी इसका जो भाई है जो उसकी दुकान

0: ने इस स्थल की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए, उन पे हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे, जिनके माध्यम से फंसाए इसको। और इसकी दुकान पे लड़के जो काम कर रहे थे उसमें इसका एक भाई था, वो हेड ही था इनकी दुकान का, शोरूम का, इसके आयुष के, उसने इसको प्रलोभन दिया।
1: शामली पुलिस का कहना है कि जब किसी का इस स्तर पर ब्रेन वॉश कर दिया जाता है तो उसे दोबारा डी रेडिकलाइज करना बेहद मुश्किल और चुनौती भरा होता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो SIT बनाई गई है वो हर पहलू पर बारीकी से काम कर रही है ताकि सुनियोजित रैकेट की तह तक पहुंचा जा सके। अरविंद ओझा, शामली आज तक।
2: और अब खबर नीट इम्तिहान से जुड़ी हुई। पिछली बार पेपर लीक की वजह से एग्जाम रद्द हो गया था, अब के 21 जून को परीक्षा होनी है, लेकिन इस बार पेपर लीक रोकने के लिए वायुसेना की मदद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ले रही है। दावा यह है कि नीट का पेपर ले जाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: सेना का वो हेलीकॉप्टर जो अब तक बाढ़ बारिश के खतरे के बीच वहां फंसे नागरिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता से उतरता रहा। भारतीय वायुसेना की वो ताकत जो जंगलों की आग तक को बुझाने में इस्तेमाल होता आया है। कठिन से कठिन हालात में जिंदगी बचाने वाला भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर, जिसके जरिए अब की दावा है कि नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा में पेपर पहुंचाया जाएगा। सूत्र कहते कि इंडियन एयरफोर्स देश भर के 18 जगहों से नीट की दोबारा परीक्षा में प्रश्न पत्र के पैकेट पहुंचाएगी ताकि उनकी सुरक्षित और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। यानी 21 जून को इस बार नीट का जब पेपर होगा तो उसे MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुंचाया जा सकता है।
2: देश में पहली बार भारतीय वायुसेना नीट के रीटेस्ट के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाली है। पूरे देश में 18 रीजनल हब्स पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स प्रश्न पत्र पहुंचाएंगे। ये पैकेट्स को पूरी सुरक्षा के साथ इन रीजनल हब्स तक ड्रॉप करेंगे और उसके बाद इन रीजनल हब से सड़क के रास्ते एग्जामिनेशन सेंटर्स तक ये क्वेश्चन पेपर्स पहुंचाए जाएंगे। पहली बार देश के इतिहास में इस तरह की पहल हो रही है जब भारतीय वायुसेना किसी एग्जाम के लिए मदद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरी परीक्षा की निगरानी कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमाम दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर इसकी रिव्यू मीटिंग्स ले चुके हैं और अब भारतीय वायुसेना 18 अलग अलग रीजनल हब्स पर Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए इन पेपर्स को पहुंचाएगी। Mi-17 हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर फ्लीट के सबसे रिलायबल हेलीकॉप्टर्स हैं। बड़े विमानों से इन केंद्रों पर पहुंचना मुश्किल है, लिहाजा इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन पैकेट्स को जिनमें क्वेश्चन पेपर्स होंगे उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ इन एग्जामिनेशन सेंटर्स के रीजनल हब्स पर पहुंचाया जाएगा, जहां से इन्हें अलग अलग एग्जामिनेशन केंद्रों पर भेजा जाएगा।
1: नीट UG परीक्षा में केवल 12 दिन का समय बचा है, इसलिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ी तैयारी की बैठक पहले हो चुकी है। सरकार सवालों के लीक होने की किसी भी आशंका को खत्म करने के लिए एयरफोर्स की मदद से पेपर को अलग अलग शहरों तक पहुंचाने की योजना बना चुकी है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ऐसा क्या है कि एयरफोर्स की मदद से नीट का पेपर पहुंचाया जाएगा। दावा है कि नई व्यवस्था के तहत प्रश्न पत्रों को वायुसेना के जरिए सीधे प्रमुख केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा, इसके बाद कड़ी निगरानी में उन्हें दूसरे एग्जाम सेंटर तक भेजा जाएगा। पेपर लीक होने की 3 सबसे बड़ी जगह होती हैं। पहली, जहां से पेपर बनता है, दूसरा, पेपर जहां छपता है, तीसरा, रास्ते में पेपर लाने ले जाने के दौरान। इस बार नीट का पेपर चूंकि पेपर बनाने के दौरान ही लीक हुआ तो उस रास्ते को नीट री एग्जाम में बंद करके बाकी 2 रास्तों को बंद करने की तैयारी NTA की है। इसीलिए एयरफोर्स के सख्त प्रोटोकॉल और सीमित बाहरी हस्तक्षेप के चलते सुरक्षा बढ़ाने की पूरी तैयारी की गई, जिससे लीक की गुंजाइश कहीं ना रहे। 22,89,000 बच्चों को दोबारा नीट का पेपर देना है। एक बार पेपर लीक हुआ लाखों बच्चे टूट चुके हैं। इस बार एयरफोर्स की मदद से पेपर पहुंचाने की प्रक्रिया के जरिए ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि सरकार कहीं भी रत्ती भर भी चूक नहीं होने देना चाहती।
2: फिलीपींस में आए भूकंप से 32 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फिलीपींस में रिक्टर स्केल पर 7.8 का भूकंप आया था जिसने भारी तबाही मचाई है। भूकंप भारतीय समय अनुसार सुबह 5 बजे आया, जो इस साल फिलीपींस में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। भूकंप के बाद सुनामी भी आई, सबसे ऊंची लहर करीब 4.5 फीट की रही।

0: फिलीपींस में भूकंप से ताश की पत्तों की तरह गिरती गई इमारतें। फिलीपींस में ढह गई स्कूल की बिल्डिंग। फिलीपींस में भूकंप से मिट्टी में मिला आलीशान मॉल। फिलीपींस का मिंडानाओ द्वीप, जहां भूकंप के रूप में तबाही ने ऐसी दस्तक दी पूरी दुनिया डर गई, सहम गई। भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:07 पर फिलीपींस में इमारतें हिलने लगी। अब आप ही सोचिए, भूकंप के दौरान 36 मंजिला इस इमारत में रहने वाले लोगों की क्या हालत हुई होगी। भूकंप से आप इस इमारत को हिलते हुए देख सकते हैं। 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने जमीन को इस कदर झकझोरा कि सब कुछ हिला दिया। भूकंप के तेज झटकों से एक वाटर टैंक से पानी बाहर गिरने लगा। जमीन के ऊपर सब कुछ हिलता है। ताश के पत्ते की तरह इमारतें भरभराकर मानो गिरती चली गई। ये तस्वीर फिलीपींस के एक स्कूल की है, जिसमें पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भूकंप की कभी ना भूलने वाली यादों से रूबरू हुए। भूकंप आते ही बच्चे स्कूल परिसर में इकट्ठा हो गए। इस दौरान टीचर और स्कूल के स्टाफ ने बहादुरी से समझबूझ दिखाते हुए छोटे छोटे बच्चों को अपने पास बैठाए रखा। इस दौरान कुछ बच्चे और स्कूल का स्टाफ कैंपस में बने शेड के नीचे डूबते रहे। अचानक शेड हिलने लगता है और सबके सामने भरभराकर गिर पड़ता है। कुछ लोग उसमें से निकलकर भागने में कामयाब हो गए तो कई इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि ज्यादातर स्कूलों में प्रशासन ने भूकंप की चेतावनी के मद्देनजर बच्चों को खुली जगह पर इकट्ठा कर लिया था। भूकंप की एक और डरावनी तस्वीर शॉपिंग मॉल की है, जिसकी इमारत भूकंप के झटकों को ज्यादा वक्त तक झेल नहीं पाई और गिर जाती है। इलाके की दूसरी इमारतों का भी वही हाल रहा। जमीन में मच रही तेज हलचलों ने इमारतों की नींव इस कदर हिला दी, एक के बाद एक इमारतें जमींदोज होती रही। धूल का गुबार चारों तरफ फैलता रहा। लोगों में चीख पुकार मची रही और सब बचने के लिए खुली जगहों पर भागते रहे। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने कई लोग दहशत में सड़क पर ही बैठ गए। कई लोग गाड़ियों को पकड़ कर खड़े हो गए। अचानक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग ढह जाती। 5 सेकंड में इस इमारत का नामो निशान मिट गया। अपनी आंखों से इस विनाश लीला को देख रहे लोगों की चीखने की आवाजें तेज होती गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। भूकंप की तबाही दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर देखने को मिली, जहां सोमवार को 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे होने की वजह से भारी नुकसान देखने को मिला है।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: ममता की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट की आशंका, शताब्दी रॉय के घर बैठक, शुभेंदु अधिकारी भी रहे मौजूद। काकोली का दावा, हमारे साथ भी सांसद भूपेंद्र यादव से भी मिला था नाराज सांसदों का दल। नीट पेपर लीक पर इंडिया गठबंधन का बड़ा दाव, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सर्वदलीय बैठक की मांग, सीजीआई को लिखेंगे पत्र, 5 सूत्री एजेंडा तय, बीजेपी ने विपक्ष पर उठाए सवाल। पटना में गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हुआ फैजल खान, फायरिंग मामले में लगातार दबिश दे रही है एसआईटी की टीम, पुलिस ने कोर्ट में सौंपी केस डायरी। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, पिघला स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत, मौके पर उठी आग की तेज लपटें। और ईरान इजराइल में युद्ध फिर से शुरू, तेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्ला की ओर से भी हमले, आईडीएफ ने इस्फहान पर किया जवाबी प्रहार। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी के हाथ से क्या पार्टी भी जाने वाली है? विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसद भी टूट रहे हैं। ममता के 20 सांसदों ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा आज टीएमसी के एक राज्यसभा सांसद ने भी इस्तीफा दे दिया।
1: जिस वक्त ममता बनर्जी विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटती हैं, ठीक उसी वक्त उन्हीं की पार्टी के सांसद बगावत की नई कहानी लिख रहे होते हैं। विधायकों के बाद अब टीएमसी के सांसदों ने भी ममता का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। मतलब जिस वक्त सोनिया गांधी से गले मिलकर ममता बनर्जी गठबंधन को मजबूत करने में जुटी थी, उसी वक्त टीएमसी में विद्रोह की नई पटकथा लिखी जाती है। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए का हिस्सा बनकर सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। सांसद और टीएमसी की पूर्व नेता काकोली घोष ने यह दावा किया कि 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। इस बारे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी भेज दिया गया है। बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन की जहां बैठक हो रही थी उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर ममता बनर्जी के 14 बागी सांसद दोपहर में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक करते हैं। इस दौरान सुबह ही टीएमसी के राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके सुखेंदु शेखर राय भी मौजूद रहे। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनसे मिलने पहुंचे। इसी बैठक में लोकसभा सांसद काकोली घोष, शताब्दी रॉय, अबुताहिर, अरूप चक्रवर्ती, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, असितमल, कालीपत सोरेन, जगदीश बसुनिया और प्रसून बनर्जी भी मौजूद होते हैं।
2: एमपी हो या एमएलए हो, ये तृणमूल कांग्रेस से दीदी का सिंबल लेकर 2 दिन पहले दीदी दीदी दीदी दीदी, आज क्या एनडीए के साथ मैं सुन रहा हूँ, तो ये क्या पॉलिटिक्स हुआ?
1: लोकसभा में टीएमसी के भी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इससे पहले 3 जून को पश्चिम बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। इस गुट ने ऋतुव्रत को अपना नेता बनाया है। ये इत्तेफाक नहीं है कि जब ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली में मौजूद होते हैं उसी मौके पर पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु भी दिल्ली पहुंचते हैं।
3: 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना, आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा।
1: इससे पहले राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर रॉय की तस्वीर सामने आई जिसमें वो टीएमसी के कुछ बागी लोकसभा सांसदों के साथ देखे जाते हैं। सुखेंदु ने इस्तीफे के बाद मीडिया से कहा कि पार्टी के कई लोग ममता के मनमाने ढंग से पार्टी चलाने से नाराज थे और इसीलिए इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 2029 तक का था, अब सीट खाली हो चुकी है, अब इस पर उपचुनाव कराया जा सकता है।
4: अभी तो मैं पार्टी से बाहर हूँ, हमारा पार्टी का जो हम जब पार्टी में थे उस समय वो लोग जो थे कोई इसका विचार विमर्श कुछ नहीं किया गया इतना, क्योंकि उसका पावर मस्तिष्क मथे पे अंदर चला गया कि हमको कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया में। अरे भाई, आम जनता ने तुमको चुन के भेजा है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने तुमको नीचे गिरा दिया, अब देखो कैसे गिराया।
5: शुकेंदु दा का जो उन्होंने बोले है, मैं मेजोरिटी जगह में उनके साथ एकमत हूँ, और खास करके जहां तक पार्लियामेंट का अपर हाउस का फंक्शनिंग था, शुकेंदु दा जो बोले है वो एकदम सही है।
1: इस बगावत ने तबाह और गंभीर रूप ले लिया है जब बागी सांसद शर्मिला सरकार ने एनडीए को समर्थन दिए जाने की घोषणा की है और कहा है कि वो मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष को बताने वाली हैं कि वही असली तृणमूल कांग्रेस है।
6: हम 20 लोग थे जिन्होंने सिग्नेचर किए हैं, तो हम लोग एक सेपरेट ब्लॉक मतलब तैयार किए हैं। हम लोगों का वॉइस यहाँ से मतलब सेपरेट ब्लॉक से उठ गया।
1: टीएमसी में विद्रोह का आलम यह कि जो नेता कल तक ममता बनर्जी को दीदी दीदी कहकर संबोधित करते थे, वो अब खुलेआम उनका नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं। इसे ममता बनर्जी के सियासी कद में आई कमी के तौर पर देखा जा रहा है।
5: 2/3 से ज्यादा एमपी साइन किए हैं, उसका मतलब है 20 एमपी, मतलब 2/3 से ज्यादा। तो वो लोग क्यों किए हैं ये बोल नहीं पाऊंगा, मगर एक तानाशाही के खिलाफ लोगों का आवाज उठ रहा है और ये जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है।
7: सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी, टूट गया।
1: टीएमसी में 28 साल के इतिहास में पहली बार औपचारिक तौर पर टूट सामने आई है। पहले 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए, विधायक ऋतुव्रत बनर्जी को अपना नेता चुना, विधानसभा स्पीकर रतींद्र बोस को समर्थन पत्र दिया। इसमें मांग की गई कि ऋतुव्रत को नेता विपक्ष घोषित किया जाए और अब ममता बनर्जी के 20 सांसदों ने दिल्ली में विद्रोह करके ममता को राजनीतिक रूप से सबसे कमजोर हालत में पहुंचा दिया है।
0: इंडिया गठबंधन फिर एकजुटता दिखाने के लिए जुटा और परसों यानी कि बुधवार को एनडीए गठबंधन अपनी ताकत दिखाने वाला है। उससे पहले इंडिया अलायंस ने मीटिंग की 5 मुद्दों पर सहमति बनाई, लेकिन आज तक के पास इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी भी है जिसमें पता ये चला है कि भीतर कई दलों ने कांग्रेस को लेकर सवाल किए हैं।
1: ममता बनर्जी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाती है, चुप मतलब एकदम चुप, शीशा बंद कर देती है, मीडिया के सवालों से बचती है। इससे कुछ देर पहले इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी सोनिया गांधी से गले मिलती हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान ममता बनर्जी को सोनिया गांधी के ठीक बगल में बैठाया जाता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में ममता बनर्जी बैठती हैं। इंडिया ब्लॉक की 2 साल बाद हुई 7वीं बैठक में 25 दलों के नेता शामिल होते हैं। 2 घंटे बैठक चलती है, 5 मुद्दों पर आपसी सहमति बनती है। पहला मुद्दा एसआईआर में करोड़ों वोटर के नाम कटे, एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर अब सीजीआई को इंडिया गठबंधन चिट्ठी लिखेगा। दूसरा मुद्दा नीट में देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ, नीट और सीबीएसई की गड़बड़ी के लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं, वो इस्तीफा दें। तीसरे मुद्दे पर जो आपसी सहमति इंडिया गठबंधन में बनी है वो ये कि सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। चौथा मुद्दा है कि हर 2 महीने पर अब इंडिया गठबंधन की मुलाकात होगी, अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी। और पांचवा मुद्दा संसद में इंडिया गठबंधन का समन्वय जारी रहेगा, रोज नेता विपक्ष के दफ्तर में बैठक की जाएगी। विपक्षी गठबंधन की हालत इस बात से समझिए कि जिन 5 मुद्दों पर सहमति अगर बनी तो 2 मुद्दे यही हैं, बैठक बहुत लंबा टालो मत, समन्वय जल्दी करो। असल में विपक्षी गठबंधन की समस्या है समन्वय की, क्योंकि दिल्ली में ममता को गले लगाती कांग्रेस के विचार ममता को ही लेकर 1.5 महीने पहले क्या थे इसको आज याद करिए।
8: बीजेपी को मौका कौन दे रहा है? तृणमूल कांग्रेस दे रही है। तृणमूल कांग्रेस भी अपने काम में लगी हुई है, वो भी बंगाल के लिए काम नहीं कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट हैं, तो तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। बंगाल की जनता का फायदा नहीं होता है, यहां पे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का जो सिंडिकेट है उसको ये 24 घंटा पैसा देते रहते हैं, हिंसा फैलाते हैं, मारपीट करते हैं और झूठे वायदे। ममता जी ने बंगाल की पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। महिलाओं की बात करें तो आरजी कार रेप एंड मर्डर केस की भी बात करनी होगी।
1: जिन ममता के खिलाफ बंगाल में नाम लेकर राहुल गांधी भ्रष्टाचार से लेकर महिला अपराध तक पर घेरते रहे, उसी पश्चिम बंगाल में अब उन्हीं ममता बनर्जी के पास जब न सत्ता बच रही न पार्टी बचती नजर आ रही, तो इंडिया गठबंधन बैठक करके ये कहता है कि चुनाव SIR और वोट चोरी से हार रहे हैं।
9: SIR मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा।
10: पहले यही सब बैठक स्टेडियम में होती थी, आप सब देखे होंगे कैसे बेंगलुरु के स्टेडियम में एक दूसरे के हाथ पकड़ करके सभी लोग खड़े थे। धीरे धीरे अब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक रूम में होती है। उन्होंने कहा कि SIR हुआ, वोट चोरी हुई। मुझे तो समझ में नहीं आता है ये एक ही टेप रिकॉर्डर ये कब से चला रहे हैं। मगर SIR तो तमिलनाडु में भी हुआ, SIR तो केरल में भी हुआ। तमिलनाडु में आप झटपट से वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर ली और सरकार बना लिया। और DMK वहां बोल रही है यहां तो वोट चोरी नहीं, यहां तो LI ही चोरी हो गई, वहां तो LI चोरी हो गई। केरल में आपने सरकार बना लिया तो SIR को कोस नहीं रहे, बंगाल में हार गए तो SIR का रोना रो रहे। तो ये जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है ये सब हम और हिंदुस्तान देख रहा है।
1: BJP इंडिया गठबंधन की बैठक को अस्तित्व बचाओ मोर्चा तक कहती है।
10: अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है।
1: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर सवाल राहुल गांधी भी उठा रहे थे। तमिलनाडु में कांग्रेस चुनाव हारी तो DMK से अलग होकर TVK के साथ सरकार बना ली। केरल में लेफ्ट पर चुन चुन कर वार करके ही कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद जब इंडिया गठबंधन की बैठक होती है तो दावा है कि भीतर कांग्रेस पर उन्हीं के साथ ही सवाल उठाते हैं। कई पार्टियों ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं के बीच तालमेल की कमी का सवाल उठाया। कुछ दलों ने कांग्रेस पर इसलिए सवाल उठाया कि वो अपने ही साथियों पर राज्य के चुनाव में तीखे आरोप लगाकर वोट मांगती है। दावा कि सबसे पहले अखिलेश ने ये बात उठाई और फिर बाकी नेताओं, खासकर लेफ्ट के दलों ने ये बात कही है। इस पर राहुल गांधी ने जवाब ये दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर हम साथ हैं, लेकिन जब मेरे राज्य इकाई के नेता मुझे हालात और चुनाव प्रचार के बारे में बताते हैं तो मुझे उनकी बात भी सुननी पड़ती है।
11: इंडिया गठबंधन ऐसे चलना है तो कांग्रेस के ओर से कुछ एडजस्टमेंट होना चाहिए। ये अभी तक हुआ नहीं। केरल में वो खतरनाक काम किया, अलग अलग राज्यों में वो किया, पुदुचेरी में वो काम किया, अपना अलाइस को खत्म करने के लिए वो कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा सोच चाहिए।
12: वी हैव आवर सीरियस रिजर्वेशंस विद रिगार्ड टू कांग्रेस पार्टीज कॉन्टेक्ट एंड अप्रोच। वी विल रेज दोस इश्यूज इन द मीटिंग अनडाउटेडली। आवर जनरल सेक्रेटरी आल्सो हैज रिटन अ लेटर।
1: कांग्रेस के तरीकों पर उन्हीं के गठबंधन के लोगों ने मीटिंग के पहले से लेकर मीटिंग के बाद तक सवाल उठाया। समन्वय यानी आपसी साथ कितना है, इसका सबूत देख लीजिए पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी वाले युवाओं के साथ प्रदर्शन पर, जहां कांग्रेस के नेता प्रश्न उठाते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की मीटिंग में उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि अगर मुद्दा समान हो तो आंदोलन का समर्थन किया जाना चाहिए। DMK से कांग्रेस के अलग होने पर भी सवाल उठा है। दावा एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा कि DMK का गठबंधन में ना होना चिंताजनक है। अखिलेश यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि हम वो नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ दें। पिछले साल दिल्ली चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की रणनीति और नेतृत्व तक पर शिवसेना UBT के नेता सवाल उठाते आए।
13: जो भी डिफरेंसेस है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंसेस है, उसके लिए प्लेटफॉर्म है।
1: आपसी डिफरेंस ही इंडिया गठबंधन की वो कमजोर नब्ज है जिसे मीटिंग से पहले दिल्ली में ऐसे लगे पोस्टर से पुरजोर दबाने की कोशिश की गई। ऐसे पोस्टर जिस पर ये नहीं लिखा था कि किसने लगवाया, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते इंडिया गठबंधन के ही नेताओं के पुराने बयान इन पोस्टर पर दिखाए गए, जिन्हें बाद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आकर हटा दिया। पोस्टर तो हट गया, अब हर 2 महीने पर मीटिंग करके आपसी समन्वय सुधारने की बात भी कर ली गई, लेकिन सवाल है कब तक। उत्तर प्रदेश का मोर्चा खुलने वाला है, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लोकसभा जैसी एकता दिखेगी या फिर 4 दिन की एकता और फिर वही आपसी विवाद चलता रहेगा।
0: अब वो खबर जो बड़ी चिंता पैदा करती है। उत्तर प्रदेश के शामली में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया जिसमें आयुष मलिक नाम का एक हिंदू नौजवान मोहम्मद अली बन गया। आयुष के पिता ने बेटे के धर्मांतरण का आरोप चांदनी कुरैशी नाम की जिम ट्रेनर पर लगाया है। आयुष के परिवार का कहना यह है कि जब उन्होंने बेटे के धर्म परिवर्तन का विरोध किया तो चांदनी के परिवार ने उन पर भी धर्म बदलने का दबाव बनाया।
14: जब मैंने FIR दर्ज की पुलिस प्रशासन में तो इसके बाद पता लगा कि उसके बाद आप मोहम्मद अली बता रहे, कोई रहमान बता रहा, कोई कुर्बान बता रहा, मुझे तो कुछ नहीं, मेरे लिए तो आयुष मलिक है। इस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया गया,
15: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: उत्तर प्रदेश का शामली, यहाँ पर एक करोड़पति हिंदू परिवार का इकलौता लड़का आयुष मलिक मुसलमान बनकर मोहम्मद अली हो जाता है। इस धर्म परिवर्तन के बाद एक जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी सवालों के घेरे में आती है, जिस पर आयुष मलिक के दवा कारोबारी पिता आरोप लगाते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए चांदनी कुरैशी ने उनके बेटे को प्यार के जाल में फंसाकर मुसलमान बनाकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया।
14: चांदनी नामक एक लड़की ने चांदनी कुरैशी उस लड़के को प्रेम जाल में फंसा, और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे मौलवियों का और बाह्य लोगों का कुछ जो अंतर्राज्य स्तर पे काम कर रहे और अपने परिवार से सभी से वो करके उसको ब्रेन वॉश किया।
1: खबरदार करता सवाल है कि क्या करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए एक हिंदू नौजवान को मुसलमान बना दिया गया ताकि उसके परिवार को भी आगे जाकर हिंदू से मुस्लिम बनाकर प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जा सके।
14: ब्रेन वॉश करने के बाद उसका मुख्य उद्देश्य ये था, लड़के तो उसके समुदाय में भी बहुत मिलते, इससे भी स्मार्ट मिल जाते, लेकिन उसकी निगाह एक नामचीन बच्चे पे थी, क्योंकि आयुष के पास नाम काम दाम सब चीज पर्याप्त मात्रा में है, और तो उन्होंने इसे ब्रेन वॉश करके मौलवी वगैरह वगैरह और फर्जी दस्तावेज करके शादी का निकाहनामा फर्जी निकाहनामा करा कर और उसकी संपत्ति हड़पने का मामला मेरे संज्ञान में जो स्थानीय स्तर पर मैं अपनी जानकारी से अपने ईस्ट मिस्ट घनिष्ठ से जो बात पता लगाई, मुख्य उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का है।
1: आयुष मलिक का परिवार शामली के संपन्न लोगों में से एक है। मेडिकल होलसेल की इसी दुकान पर आयुष मलिक बैठता था। दुकान के ऊपर ही रहने का घर भी है। आयुष के पिता का दावा है कि चांदनी नाम की जिम ट्रेनर फर्जी निकाह के आधार पर अब इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करने का दबाव डाल रही है।
16: कैसा लड़का था आयुष बचपन में, कैसे?
14: आयुष स्वभाव से बहुत ही बढ़िया, जिसे लोग ये कहते हैं कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बहुत संस्कारी, बहुत मेहनती, बहुत निष्ठावान, बहुत ही मिलनसार और हर तरह से ईमानदार, सब खूबियां उसमें थी जितने एक बच्चे में हो। इस चांदनी कुरैशी ने मेरे घर का प्रॉपर्टी के चक्कर में और मेरा सब घर बर्बाद कर दिया।
1: शामली के इस पिता की लाचारगी की वजह उसका बेटा है, जो न माँ की बात सुनने को तैयार है न तीन बहनों की। उसके दिलो दिमाग पर चांदनी छाई हुई है।
17: जो कुरैशी है हमारे यहाँ ठेले पे जूस बेचते शामली में, और ये लोग मिल करके पिछले सप्ताह हमसे इन लोगों ने क्लेम किया कि साहब चूंकि शादी निकाह इसकी हो गई है, संपत्ति में मेरा भी हिस्सा है, आप ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी बेटी के नाम कर दीजिए आप, जिससे कि बहू और आपके हमारी बेटी आपका बेटा लोग ठीक से रहे और आप भी कन्वर्ट हो जाए कि हमारे धर्म में आ जाइए आप लोग।
16: आपको पता है कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पे नजर थी किसी की?
15: किसकी?
16: किसी की थी।
15: किसकी थी सर?
16: चांदनी कुरैशी और उसके परिवार की।
15: ये आप टारगेट कर रहे हैं सर, ये आप उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। न तो मेरी है इस पे, मैंने खुद भी कहा था आपको जो करना पेरेंट्स को अपने आप वो कर लो इस प्रॉपर्टी का, और न उनके साथ कोई ऐसा मसला है, उन्होंने भी साफ मना कर रखा।
16: और किन किस किस मौलाना की आपने वीडियो देखी इशरार अहमद के अलावा?
15: ऑल ऑफ द वर्ल्ड के सभी मोटिवेशनल स्पीकर, रीजनल।
16: नाम बताइए दो चार।
15: डॉक्टर इशरार अहमद के मैं ज्यादा देखता था, ऐसे तो रैंडमली नाम नहीं याद रहते।
1: आमतौर पर धर्म परिवर्तन की खबरों में लोगों को लालच दिया जाता है, लेकिन शामली की कहानी पूरी तरह उल्टी है। यहाँ पर हिंदू नौजवान को मुसलमान बनाने के पीछे दावा है उसकी संपत्ति पर कब्जा करके उसके पूरे परिवार को मुसलमान बनाने का मकसद।
14: रूप से उसका इतना उसे वो कर दिया गया कि वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। फिर भी मैं उसे बीच बीच में समय अंतराल कुछ अंतराल पर बात करता रहा, बात करने से समाधान नहीं निकला।
1: शामली में धर्म परिवर्तन की यह कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये शहर के सबसे रईस परिवार से जुड़ी है जिसकी प्रॉपर्टी की कीमत 100 करोड़ के आसपास बताई जाती है।
18: मैं शामली के उसी मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ जहाँ फिलहाल आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली रहता है। अगर आप ये देखेंगे तो इस मेडिकल स्टोर का नाम है भारत मेडिक शॉप और ये जो प्रॉपर्टी है केवल यही ही प्रॉपर्टी 20 करोड़ से ज्यादा की मानी जाती है और इस तरह की कई प्रॉपर्टी आयुष मलिक और उसके पिता की है। पुलिस की तहकीकात में ये सामने आया है कि इन्हीं प्रॉपर्टी को किसी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए पहले आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, फर्जी निकाहनामा भी तैयार किया गया था।
1: आयुष के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में जांच की जिसमें यह बात सामने आती कि इस पूरे मामले के लिए एक फर्जी निकाहनामा तैयार किया गया जिससे दावा है कि चांदनी कुरैशी और उसके परिवार ने मिलकर अंजाम दिया है।
17: फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गया है। इसमें अभी इसका जो भाई है जो उसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है और भी तमाम जो इसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व है जिन्होंने इस ढंग की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए, उन पे हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। जिम के माध्यम से फंसाए इसको और इसकी दुकान पे लड़के जो काम कर रहे थे उसमें इसका एक भाई था, वो हेड ही था इनकी दुकान का, शोरूम का इसके आयुष के, उसने इसको प्रलोभन दिया।
1: शामली पुलिस का कहना है कि जब किसी का इस स्तर पर ब्रेन वॉश कर दिया जाता है तो उसे दोबारा डी रेडिकलाइज करना बेहद मुश्किल और चुनौती भरा होता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो SIT बनाई गई है वो हर पहलू पर बारीकी से काम कर रही है ताकि सुनियोजित रैकेट की तह तक पहुंचा जा सके। अरविंद ओझा, शामली आज तक।
0: और अब खबर नीट इम्तिहान से जुड़ी हुई। पिछली बार पेपर लीक की वजह से एग्जाम रद्द हो गया था, अब के 21 जून को परीक्षा होनी है, लेकिन इस बार पेपर लीक रोकने के लिए वायुसेना की मदद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ले रही है। दावा यह है कि नीट का पेपर ले जाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: सेना का वो हेलीकॉप्टर जो अब तक बाढ़ बारिश के खतरे के बीच वहां फंसे नागरिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता से उतरता रहा। भारतीय वायुसेना की वो ताकत जो जंगलों की आग तक को बुझाने में इस्तेमाल होता आया है। कठिन से कठिन हालात में जिंदगी बचाने वाला भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर, जिसके जरिए अब की दावा है कि नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा में पेपर पहुंचाया जाएगा। सूत्र कहते कि इंडियन एयरफोर्स देश भर के 18 जगहों से नीट की दोबारा परीक्षा में प्रश्न पत्र के पैकेट पहुंचाएगी ताकि उनकी सुरक्षित और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। यानी 21 जून को इस बार नीट का जब पेपर होगा तो उसे MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुंचाया जा सकता है।
0: देश में पहली बार भारतीय वायुसेना नीट के रीटेस्ट के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाली है। पूरे देश में 18 रीजनल हब्स पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स प्रश्न पत्र पहुंचाएंगे। ये पैकेट्स को पूरी सुरक्षा के साथ इन रीजनल हब्स तक ड्रॉप करेंगे और उसके बाद इन रीजनल हब से सड़क के रास्ते एग्जामिनेशन सेंटर्स तक ये क्वेश्चन पेपर्स पहुंचाए जाएंगे। पहली बार देश के इतिहास में इस तरह की पहल हो रही है जब भारतीय वायुसेना किसी एग्जाम के लिए मदद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरी परीक्षा की निगरानी कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमाम दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर इसकी रिव्यू मीटिंग्स ले चुके हैं और अब भारतीय वायुसेना 18 अलग अलग रीजनल हब्स पर Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए इन पेपर्स को पहुंचाएगी। Mi-17 हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर फ्लीट के सबसे रिलायबल हेलीकॉप्टर्स हैं। बड़े विमानों से इन केंद्रों पर पहुंचना मुश्किल है, लिहाजा इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन पैकेट्स को जिनमें क्वेश्चन पेपर्स होंगे उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ इन एग्जामिनेशन सेंटर्स के रीजनल हब्स पर पहुंचाया जाएगा जहां से इन्हें अलग अलग एग्जामिनेशन केंद्रों पर भेजा जाएगा।
1: नीट UG परीक्षा में केवल 12 दिन का समय बचा है, इसलिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ी तैयारी की बैठक पहले हो चुकी है। सरकार सवालों के लीक होने की किसी भी आशंका को खत्म करने के लिए एयरफोर्स की मदद से पेपर को अलग अलग शहरों तक पहुंचाने की योजना बना चुकी है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ऐसा क्या है कि एयरफोर्स की मदद से नीट का पेपर पहुंचाया जाएगा। दावा है कि नई व्यवस्था के तहत प्रश्न पत्रों को वायुसेना के जरिए सीधे प्रमुख केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद कड़ी निगरानी में उन्हें दूसरे एग्जाम सेंटर तक भेजा जाएगा। पेपर लीक होने की तीन सबसे बड़ी जगह होती हैं। पहली जहां से पेपर बनता है, दूसरा पेपर जहां छपता है, तीसरा रास्ते में पेपर लाने ले जाने के दौरान। इस बार नीट का पेपर चूंकि पेपर बनाने के दौरान ही लीक हुआ तो उस रास्ते को नीट री एग्जाम में बंद करके बाकी दो रास्तों को बंद करने की तैयारी एनटीए की है। इसीलिए एयरफोर्स के सख्त प्रोटोकॉल और सीमित बाहरी हस्तक्षेप के चलते सुरक्षा बढ़ाने की पूरी तैयारी की गई जिससे लीक की गुंजाइश कहीं ना रहे। 22,89,000 बच्चों को दोबारा नीट का पेपर देना है। एक बार पेपर लीक हुआ लाखों बच्चे टूट चुके हैं। इस बार एयरफोर्स की मदद से पेपर पहुंचाने की प्रक्रिया के जरिए ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि सरकार कहीं भी रत्ती भर भी चूक नहीं होने देना चाहती।
0: फिलीपींस में आए भूकंप से 32 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फिलीपींस में रिक्टर स्केल पर 7.8 का भूकंप आया था जिसने भारी तबाही मचाई है। भूकंप भारतीय समय अनुसार सुबह 5 बजे आया जो इस साल फिलीपींस में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। भूकंप के बाद सुनामी भी आई, सबसे ऊंची लहर करीब 4.5 फीट की रही।
1: फिलीपींस में भूकंप से ताश के पत्तों की तरह गिरती गई इमारतें। फिलीपींस में ढह गई स्कूल की बिल्डिंग। फिलीपींस में भूकंप से मिट्टी में मिला आलिशान मॉल। फिलीपींस का मिंडानाओ द्वीप जहां भूकंप के रूप में तबाही ने ऐसी दस्तक दी पूरी दुनिया डर गई सहम गई। भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:07 पर फिलीपींस में इमारतें हिलने लगी। अब आप ही सोचिए भूकंप के दौरान 36 मंजिला इस इमारत में रहने वाले लोगों की क्या हालत हुई होगी। भूकंप से आप इस इमारत को हिलते हुए देख सकते हैं। 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने जमीन को इस कदर झकझोरा कि सब कुछ हिला दिया। भूकंप के तेज झटकों से एक वाटर टैंक से पानी बाहर गिरने लगा। जमीन के ऊपर सब कुछ हिलता है, ताश के पत्ते की तरह इमारतें भरभराकर मानो गिरती चली गई। ये तस्वीर फिलीपींस के एक स्कूल की है जिसमें पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भूकंप की कभी ना भूलने वाली यादों से रूबरू हुए। भूकंप आते ही बच्चे स्कूल परिसर में इकट्ठा हो गए। इस दौरान टीचर और स्कूल के स्टाफ ने बहादुरी से समझबूझ दिखाते हुए छोटे छोटे बच्चों को अपने पास बैठाए रखा। इस दौरान कुछ बच्चे और स्कूल का स्टाफ कैंपस में बने शेड के नीचे डूबके रहे। अचानक शेड हिलने लगता है और सबके सामने भरभरा कर गिर पड़ता है। कुछ लोग उसमें से निकल कर भागने में कामयाब हो गए तो कई इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। राहत की बात ये रही कि ज्यादातर स्कूलों में प्रशासन ने भूकंप की चेतावनी के मद्देनजर बच्चों को खुली जगह पर इकट्ठा कर दिया। भूकंप की एक और डरावनी तस्वीर शॉपिंग मॉल की है जिसकी इमारत भूकंप के झटकों को ज्यादा वक्त तक झेल नहीं पाई और गिर जाती है। इलाके की दूसरी इमारतों का भी वही हाल रहा। जमीन में मच रही तेज हलचलों ने इमारतों की नींव इस कदर हिला दी। एक के बाद एक इमारतें जमींदोज होती रही। धूल का गुबार चारों तरफ फैलता रहा। लोगों में चीख पुकार मची रही और सब बचने के लिए खुली जगहों पर भागते रहे। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने कई लोग दहशत में सड़क पर ही बैठ गए। कई लोग गाड़ियों को पकड़ कर खड़े हो गए। अचानक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग ढह जाती। 5 सेकंड में इस इमारत का नामो निशान मिट गया। अपनी आंखों से इस विनाश लीला को देख रहे लोगों की चीखने की आवाजें तेज होती गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। भूकंप की तबाही दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर देखने को मिली जहां सोमवार को 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे होने की वजह से भारी नुकसान देखने को मिला है। फिलीपींस के ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान ने बताया कि स्थानीय भूकंप के बाद 138 आफ्टर शॉक दर्ज किए गए। इन झटकों की तीव्रता 1.3 से 6.7 के बीच रही।
19: फिलीपींस की धरती एक बार फिर भीषण भूकंप से दहल उठी। करीब 7.8 तीव्रता का ये भूकंप बताया जा रहा है, जो सोमवार की सुबह फिलीपींस में आया सरंगरी इलाके के अंदर, और उसके बाद लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिलीपींस के लिए भूकंप कोई नई बात नहीं है। फिलीपींस दुनिया के नक्शे पर उस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मौजूद है जिसे भूकंप और ज्वालामुखी के लिहाज से दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका कहा जाता है। लेकिन लगातार ये आ रही ये तस्वीरें लोगों को डराने वाली भी हैं, और जिस तरीके से वहां पर ये एक घंटे के भीतर लगातार भूकंप के झटके सामने आते रहे हैं, यानी मुख्य भूकंप के बाद लगातार आफ्टरशॉक्स पूरे फिलीपींस को भी दहला रहे हैं, और लगातार पूरे पूर्वी एशिया के अंदर इस बात की आशंका बढ़ गई है कि कहीं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक्टिवेट तो नहीं हो गई है, जिसके कारण पूरा इलाका एक बड़े प्राकृतिक आपदा की सद में आ सकता है।
1: भूकंप के बाद सुनामी भी आई। सबसे ऊंची लहर 4.6 फीट रही। एहतियात के तौर पर इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी सुनामी की चेतावनी जारी की, जिसे कुछ घंटों बाद वापस ले लिया गया।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: ममता की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट की आशंका, शताब्दी रॉय के घर बैठक, शुभेंदु अधिकारी भी रहे मौजूद। काकोली का दावा, हमारे साथ 20 सांसद भूपेंद्र यादव से भी मिला था नाराज सांसदों का दल। नीट पेपर लीक पर इंडिया गठबंधन का बड़ा दाव, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सर्वदलीय बैठक की मांग, सीजीआई को लिखेंगे पत्र, 5 सूत्री एजेंडा तय, बीजेपी ने विपक्ष पर उठाए सवाल। पटना में गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हुआ फैजल खान, फायरिंग मामले में लगातार दबिश दे रही है एसआईटी की टीम, पुलिस ने कोर्ट में सौंपी केस डायरी। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, पिघला स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत, मौके पर उठी आग की तेज लपटें। और ईरान इजराइल में युद्ध फिर से शुरू, तेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्ला की ओर से भी हमले, आईडीएफ ने इस्फहान पर किया जवाबी प्रहार। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी के हाथ से क्या पार्टी भी जाने वाली है? विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसद भी टूट रहे हैं। ममता के 20 सांसदों ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा आज टीएमसी के एक राज्यसभा सांसद ने भी इस्तीफा दे दिया।
1: जिस वक्त ममता बनर्जी विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटती हैं, ठीक उसी वक्त उन्हीं की पार्टी के सांसद बगावत की नई कहानी लिख रहे होते हैं। विधायकों के बाद अब टीएमसी के सांसदों ने भी ममता का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। मतलब जिस वक्त सोनिया गांधी से गले मिलकर ममता बनर्जी गठबंधन को मजबूत करने में जुटी थी, उसी वक्त टीएमसी में विद्रोह की नई पटकथा लिखी जाती है। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए का हिस्सा बनकर सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। सांसद और टीएमसी की पूर्व नेता काकोली घोष ने यह दावा किया कि 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। इस बारे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी भेज दिया गया है। बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन की जहां बैठक हो रही थी उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर ममता बनर्जी के 14 बागी सांसद दोपहर में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक करते हैं। इस दौरान सुबह ही टीएमसी के राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके सुखेंदु शेखर राय भी मौजूद रहे। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनसे मिलने पहुंचे। इसी बैठक में लोकसभा सांसद काकोली घोष, शताब्दी रॉय, अबू ताहिर, अरूप चक्रवर्ती, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, असितमल, कालीपत सोरेन, जगदीश बसुनिया और प्रसून बनर्जी भी मौजूद होते हैं।
2: एमपी हो या एमएलए हो, ये तृणमूल कांग्रेस से दीदी का सिंबल लेकर 2 दिन पहले दीदी दीदी दीदी दीदी, आज क्या एनडीए के साथ मैं सुन रहा हूँ, तो ये क्या पॉलिटिक्स हुआ?
1: लोकसभा में टीएमसी के भी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इससे पहले 3 जून को पश्चिम बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। इस गुट ने ऋतुव्रत को अपना नेता बनाया है। ये इत्तेफाक नहीं है कि जब ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली में मौजूद होते हैं उसी मौके पर पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु भी दिल्ली पहुंचते हैं।
3: 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना, आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा।
1: इससे पहले राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर रॉय की तस्वीर सामने आई जिसमें वो टीएमसी के कुछ बागी लोकसभा सांसदों के साथ देखे जाते हैं। सुखेंदु ने इस्तीफे के बाद मीडिया से कहा कि पार्टी के कई लोग ममता के मनमाने ढंग से पार्टी चलाने से नाराज थे और इसीलिए इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 2029 तक का था, अब सीट खाली हो चुकी है, अब इस पर उपचुनाव कराया जा सकता है।
4: अभी तो मैं पार्टी से बाहर हूँ, हमारा पार्टी का जो हम जब पार्टी में थे उस समय वो लोग जो थे कोई इसका विचार विमर्श कुछ नहीं किया गया इतना, क्योंकि उसका पावर मस्तिष्क मथे पे अंदर चला गया कि हमको कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया में। अरे भाई, आम जनता ने तुमको चुन के भेजा है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने तुमको नीचे गिरा दिया, अब देखो कैसे गिराया।
5: शुकेंदुदा का जो उन्होंने बोले है, मैं मेजोरिटी जगह में उनके साथ एकमत हूँ, और खास करके जहां तक पार्लियामेंट का अपर हाउस का फंक्शनिंग था, शुकेंदुदा जो बोले है वो एकदम सही है।
1: इस बगावत ने तबाह और गंभीर रूप ले लिया है जब बागी सांसद शर्मिला सरकार ने एनडीए को समर्थन दिए जाने की घोषणा की है और कहा है कि वो मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष को बताने वाली हैं कि वही असली तृणमूल कांग्रेस है।
6: हम 20 लोग थे जो जिनमें सिग्नेचर किए हैं, तो हम लोग एक सिफारिश ब्लॉक मतलब तैयार किए हैं। हम लोगों का वॉइस यहाँ से मतलब सेपरेट ब्लॉक से उठ गया।
1: टीएमसी में विद्रोह का आलम यह कि जो नेता कल तक ममता बनर्जी को दीदी दीदी कहकर संबोधित करते थे, वो अब खुलेआम उनका नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं। इसे ममता बनर्जी के सियासी कदमे आई कमी के तौर पर देखा जा रहा है।
5: 2/3 से ज्यादा एमपी साइन किए हैं, उसका मतलब है 20 एमपी, मतलब 2/3 से ज्यादा। तो वो लोग क्यों किए हैं ये बोल नहीं पाऊंगा, मगर एक तानाशाही के खिलाफ लोगों का आवाज उठ रहा है और ये जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है।
7: सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी, तो टूट गया।
1: टीएमसी में 28 साल के इतिहास में पहली बार औपचारिक तौर पर टूट सामने आई है। पहले 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए, विधायक ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता चुना, विधानसभा स्पीकर रतींद्र बोस को समर्थन पत्र दिया। इसमें मांग की गई कि ऋतव्रत को नेता विपक्ष घोषित किया जाए और अब ममता बनर्जी के 20 सांसदों ने दिल्ली में विद्रोह करके ममता को राजनीतिक रूप से सबसे कमजोर हालत में पहुंचा दिया है।
0: इंडिया गठबंधन फिर एकजुटता दिखाने के लिए जुटा और परसों यानी कि बुधवार को एनडीए गठबंधन अपनी ताकत दिखाने वाला है। उससे पहले इंडिया अलायंस ने मीटिंग की 5 मुद्दों पर सहमति बनाई, लेकिन आज तक के पास इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी भी है जिसमें पता यह चला है कि भीतर कई दलों ने कांग्रेस को लेकर सवाल किए हैं।
1: ममता बनर्जी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाती है, चुप मतलब एकदम चुप, शीशा बंद कर देती है, मीडिया के सवालों से बचती है। इससे कुछ देर पहले इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी सोनिया गांधी से गले मिलती हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान ममता बनर्जी को सोनिया गांधी के ठीक बगल में बैठाया जाता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में ममता बनर्जी बैठती हैं। इंडिया ब्लॉक की 2 साल बाद हुई 7वीं बैठक में 25 दलों के नेता शामिल होते हैं। 2 घंटे बैठक चलती है, 5 मुद्दों पर आपसी सहमति बनती है। पहला मुद्दा, एसआईआर में करोड़ों वोटर के नाम कटे, एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर अब सीजीआई को इंडिया गठबंधन चिट्ठी लिखेगा। दूसरा मुद्दा, नीट में देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ, नीट और सीबीएसई की गड़बड़ी के लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं, वो इस्तीफा दें। तीसरे मुद्दे पर जो आपसी सहमति इंडिया गठबंधन में बनी है वो ये कि सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। चौथा मुद्दा है कि हर 2 महीने पर अब इंडिया गठबंधन की मुलाकात होगी, अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी। और पांचवा मुद्दा, संसद में इंडिया गठबंधन का समन्वय जारी रहेगा, रोज नेता विपक्ष के दफ्तर में बैठक की जाएगी। विपक्षी गठबंधन की हालत इस बात से समझिए कि जिन 5 मुद्दों पर सहमति अगर बनी तो 2 मुद्दे यही हैं, बैठक बहुत लंबा टालो मत, समन्वय जल्दी करो। असल में विपक्षी गठबंधन की समस्या है समन्वय की, क्योंकि दिल्ली में ममता को गले लगाती कांग्रेस के विचार ममता को ही लेकर 1.5 महीने पहले क्या थे, इसको आज याद करिए।
8: बीजेपी को मौका कौन दे रहा है? तृणमूल कांग्रेस दे रही है। तृणमूल कांग्रेस भी अपने काम में लगी हुई है, वो भी बंगाल के लिए काम नहीं कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट हैं, तो तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। बंगाल की जनता का फायदा नहीं होता है, यहां पे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का जो सिंडिकेट है उसको ये 24 घंटा पैसा देते रहते हैं, हिंसा फैलाते हैं, मारपीट करते हैं और झूठे वायदे। ममता जी ने बंगाल की पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। महिलाओं की बात करें तो आरजी कार रेप एंड मर्डर केस की भी बात करनी होगी।
1: जिन ममता के खिलाफ बंगाल में नाम लेकर राहुल गांधी भ्रष्टाचार से लेकर महिला अपराध तक पर घेरते रहे, उसी पश्चिम बंगाल में अब उन्हीं ममता बनर्जी के पास जब न सत्ता बच रही न पार्टी बचती नजर आ रही, तो इंडिया गठबंधन बैठक करके ये कहता है कि चुनाव एसआईआर और वोट चोरी से हार रहे हैं।
9: एसआईआर मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा।
10: पहले यही सब बैठक स्टेडियम में होती थी, आप सब देखे होंगे कैसे बेंगलुरु के स्टेडियम में एक दूसरे के हाथ पकड़ करके सभी लोग खड़े थे। धीरे धीरे अब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक रूम में होती है। उन्होंने कहा कि एसआईआर हुआ, वोट चोरी हुई। मुझे तो समझ में नहीं आता है ये एक ही टेप रिकॉर्डर ये कब से चला रहे हैं। मगर एसआईआर तो तमिलनाडु में भी हुआ, एसआईआर तो केरल में भी हुआ। तमिलनाडु में आप झटपट से वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर लिया और सरकार बना लिया। और डीएमके वहां बोल रही है यहां तो वोट चोरी नहीं, यहां तो एलआई ही चोरी हो गई, वहां तो एलआई चोरी हो गई। केरल में आपने सरकार बना लिया तो एसआईआर को कोस नहीं रहे, बंगाल में हार गए तो एसआईआर एसआईआर का रोना रो रहे। तो ये जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है ये सब हम और हिंदुस्तान देख रहा है।
1: बीजेपी इंडिया गठबंधन की बैठक को अस्तित्व बचाओ मोर्चा तक कहती है।
10: अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है।
1: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर सवाल राहुल गांधी भी उठा रहे थे। तमिलनाडु में कांग्रेस चुनाव हारी तो डीएमके से अलग होकर टीवीके के साथ सरकार बना ली। केरल में लेफ्ट पर चुन चुन कर वार करके ही कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद जब इंडिया गठबंधन की बैठक होती है तो दावा है कि भीतर कांग्रेस पर उन्हीं के साथ ही सवाल उठाते हैं। कई पार्टियों ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं के बीच तालमेल की कमी का सवाल उठाया। कुछ दलों ने कांग्रेस पर इसलिए सवाल उठाया कि वो अपने ही साथियों पर राज्य के चुनाव में तीखे आरोप लगाकर वोट मांगती है। दावा कि सबसे पहले अखिलेश ने ये बात उठाई और फिर बाकी नेताओं खासकर लेफ्ट के दलों ने ये बात कही है। इस पर राहुल गांधी ने जवाब ये दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर हम साथ हैं, लेकिन जब मेरे राज्य इकाई के नेता मुझे हालात और चुनाव प्रचार के बारे में बताते हैं तो मुझे उनकी बात भी सुननी पड़ती है।
11: इंडिया गठबंधन ऐसे चलना है तो कांग्रेस के ओर से कुछ एडजस्टमेंट होना चाहिए, ये अभी तक हुआ नहीं। केरल में वो खतरनाक काम किया, अलग अलग राज्यों में वो किया, पुदुचेरी में वो काम किया, अपना अलाइंस को खत्म करने के लिए वो कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा सोच चाहिए।
12: वी हैव आवर सीरियस रिजर्वेशंस विद रिगार्ड टू कांग्रेस पार्टीज कॉन्टेक्ट एंड अप्रोच, वी विल रेज दोस इश्यूज इन द मीटिंग अनडाउटेडली। आवर जनरल सेक्रेटरी आल्सो हैज रिटन लेटर।
1: कांग्रेस के तरीकों पर उन्हीं के गठबंधन के लोगों ने मीटिंग के पहले से लेकर मीटिंग के बाद तक सवाल उठाया। समन्वय यानी आपसी साथ कितना है, इसका सबूत देख लीजिए पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी वाले युवाओं के साथ प्रदर्शन पर, जहां कांग्रेस के नेता प्रश्न उठाते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की मीटिंग में उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि अगर मुद्दा समान हो तो आंदोलन का समर्थन किया जाना चाहिए। डीएमके से कांग्रेस के अलग होने पर भी सवाल उठा है। दावा है कि एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा कि डीएमके का गठबंधन में ना होना चिंताजनक है। अखिलेश यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि हम वो नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ दें। पिछले साल दिल्ली चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की रणनीति और नेतृत्व तक पर शिवसेना यूबीटी के नेता सवाल उठाते आए।
13: जो भी डिफरेंसेस, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंसेस हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म है।
1: आपसी डिफरेंस ही इंडिया गठबंधन की वो कमजोर नब्ज है जिसे मीटिंग से पहले दिल्ली में ऐसे लगे पोस्टर से पुरजोर दबाने की कोशिश की गई। ऐसे पोस्टर जिस पर ये नहीं लिखा था कि किसने लगवाया, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते इंडिया गठबंधन के ही नेताओं के पुराने बयान इन पोस्टर पर दिखाए गए, जिन्हें बाद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आकर हटा दिया। पोस्टर तो हट गया, अब हर दो महीने पर मीटिंग करके आपसी समन्वय सुधारने की बात भी कर ली गई, लेकिन सवाल है कब तक। उत्तर प्रदेश का मोर्चा खुलने वाला है, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लोकसभा जैसी एकता दिखेगी या फिर चार दिन की एकता और फिर वही आपसी विवाद चलता रहेगा।
0: अब वो खबर जो बड़ी चिंता पैदा करती है। उत्तर प्रदेश के शामली में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया जिसमें आयुष मलिक नाम का एक हिंदू नौजवान मोहम्मद अली बन गया। आयुष के पिता ने बेटे के धर्मांतरण का आरोप चांदनी कुरैशी नाम की जिम ट्रेनर पर लगाया है। आयुष के परिवार का कहना यह है कि जब उन्होंने बेटे के धर्म परिवर्तन का विरोध किया तो चांदनी के परिवार ने उन पर भी धर्म बदलने का दबाव बनाया।
14: जब मैंने FIR दर्ज की पुलिस प्रशासन में तो इसके बाद पता लगा कि उसके बाद आप मोहम्मद अली बता रहे, कोई रहमान बता रहा, कोई कुर्बान बता रहा, मुझे तो कुछ नहीं, मेरे लिए तो आयुष मलिक है। इस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया गया,
15: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: उत्तर प्रदेश का शामली, यहाँ पर एक करोड़पति हिंदू परिवार का इकलौता लड़का आयुष मलिक मुसलमान बनकर मोहम्मद अली हो जाता है। इस धर्म परिवर्तन के बाद एक जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी सवालों के घेरे में आती है, जिस पर आयुष मलिक के दवा कारोबारी पिता आरोप लगाते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए चांदनी कुरैशी ने उनके बेटे को प्यार के जाल में फंसाकर मुसलमान बनाकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया।
14: चांदनी नामक एक लड़की ने चांदनी कुरैशी उस लड़के को प्रेम जाल में फंसा, और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे मौलवियों का और बाह्य लोगों का कुछ जो अंतर्राज्य स्तर पे काम कर रहे और अपने परिवार से सभी से वो करके

0: नामचीन बच्चे पे थी, क्योंकि आयुष के पास नाम काम दाम सब चीज पर्याप्त मात्रा में है, और तो उन्होंने इसे ब्रेन वॉश करके मौलवी वगैरह वगैरह और फर्जी दस्तावेज करके शादी का निकाहनामा फर्जी निकाहनामा करा कर और उसकी संपत्ति हड़पने का मामला मेरे संज्ञान में जो स्थानीय स्तर पर मैं अपनी जानकारी से अपने ईस्ट मिस्ट घनिष्ठ जो बात पता लगाई, मुख्य उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का है।
1: आयुष मलिक का परिवार शामली के संपन्न लोगों में से एक है। मेडिकल होलसेल की इसी दुकान पर आयुष मलिक बैठता था। दुकान के ऊपर ही रहने का घर भी है। आयुष के पिता का दावा है कि चांदनी नाम की जिम ट्रेनर फर्जी निकाह के आधार पर अब इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करने का दबाव डाल रही है।
2: कैसा लड़का था आयुष बचपन में? कैसे
0: आयुष स्वभाव से बहुत ही बढ़िया, जिसे लोग ये कहते हैं कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बहुत संस्कारिक, बहुत मेहनती, बहुत निष्ठावान, बहुत ही मिलनसार और हर तरह से ईमानदार, सब खूबियां उसमें थी जितने एक बच्चे में हो। इस चांदनी कुरैशी ने मेरे घर का प्रॉपर्टी के चक्कर में और मेरा सब घर बर्बाद कर दिया।
1: शामली के इस पिता की लाचारगी की वजह उसका बेटा है, जो न माँ की बात सुनने को तैयार है न तीन बहनों की। उसके दिलो दिमाग पर चांदनी छाई हुई है।
3: जो कुरैशी है हमारे यहाँ ठेले पे जूस बेचते शामली में, और ये लोग मिल करके पिछले सप्ताह हमसे इन लोगों ने क्लेम किया कि साहब चूंकि शादी निकाह की हो गई है, संपत्ति में मेरा भी हिस्सा है, आप ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी बेटी के नाम कर दीजिए आप, जिससे कि बहू और आपके हमारी बेटी आपका बेटा लोग ठीक से रहे और आप भी कन्वर्ट हो जाए कि हमारे धर्म में आ जाइए आप लोग।
2: आपको पता है कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पे नजर थी किसी की?
4: किसकी?
2: किसी की थी।
4: किसकी थी सर?
2: चांदनी कुरैशी उसके परिवार की।
4: ये आप टारगेट कर रहे हैं सर, ये आप उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो मेरी है इस पे, मैंने खुद भी कहा था आपको जो करना पेरेंट्स को अपने आप वो कर लो इस प्रॉपर्टी का, और ना उनके साथ कोई ऐसा मसला है, उन्होंने भी साफ मना कर रखा।
2: और कोर्ट किन किस किस मौलाना की आपने वीडियो देखी है इशरार अहमद के अलावा?
4: ऑल ऑफ द वर्ल्ड के सभी मोटिवेशनल स्पीकर, रीजनल
2: नाम बताइए दो चार।
4: डॉक्टर इशरार अहमद के मैं ज्यादा देखता था, ऐसे तो बस रैंडमली नाम नहीं याद रहते।
1: आमतौर पर धर्म परिवर्तन की खबरों में लोगों को लालच दिया जाता है, लेकिन शामली की कहानी पूरी तरह उल्टी है। यहाँ पर हिंदू नौजवान को मुसलमान बनाने के पीछे दावा है, उसकी संपत्ति पर कब्जा करके उसके पूरे परिवार को मुसलमान बनाने का मकसद
0: रूप से उसका इतना उसे वो कर दिया गया कि वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। फिर भी मैं उसे बीच बीच में समय अंतराल कुछ अंतराल पर बात करता रहा, बात करने से समाधान नहीं निकला।
1: शामली में धर्म परिवर्तन की ये कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये शहर के सबसे रईस परिवार से जुड़ी है, जिसकी प्रॉपर्टी की कीमत 100 करोड़ के आसपास बताई जाती है।
2: मैं शामली के उसी मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ जहाँ फिलहाल आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली रहता है। अगर आप ये देखेंगे तो इस मेडिकल स्टोर का नाम है भारत मेडिक शॉप, और ये जो प्रॉपर्टी है केवल यही ही प्रॉपर्टी 20 करोड़ से ज्यादा की मानी जाती है। और इस तरह की कई प्रॉपर्टी आयुष मलिक और उसके पिता की है। पुलिस की तहकीकात में ये सामने आया है कि इन्हीं प्रॉपर्टी को किसी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए पहले आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, फर्जी निकाहनामा भी तैयार किया गया था।
1: आयुष के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में जांच की, जिसमें बात सामने आती है कि इस पूरे मामले के लिए एक फर्जी निकाहनामा तैयार किया गया, जिससे दावा है कि चांदनी कुरैशी और उसके परिवार ने मिलकर अंजाम दिया है।
3: फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गया है इसमें। अभी इसका जो भाई है जो उसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है, और भी तमाम जो इसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने इस ढंग की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए, उन पर हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। जिम के माध्यम से फंसाए इसको, और इसकी दुकान पे लड़के जो काम कर रहे थे उसमें इसका एक भाई था, वो हेड ही था इनकी दुकान का, शोरूम का, इसके आयुष के, उसने इसको प्रलोभन दिया।
1: शामली पुलिस का कहना है कि जब किसी का इस स्तर पर ब्रेन वॉश कर दिया जाता है तो उसे दोबारा डी रेडिकलाइज करना बेहद मुश्किल और चुनौती भरा होता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो SIT बनाई गई है वो हर पहलू पर बारीकी से काम कर रही है, ताकि सुनियोजित रैकेट की तह तक पहुंचा जा सके। अरविंद ओझा, शामली आज तक।
5: और अब खबर नीट

0: इम्तिहान से जुड़ी हुई। पिछली बार पेपर लीक की वजह से एग्जाम रद्द हो गया था, आपके 21 जून को परीक्षा होनी है, लेकिन इस बार पेपर लीक रोकने के लिए वायुसेना की मदद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ले रही है। दावा यह है कि नीट का पेपर ले जाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: सेना का वो हेलीकॉप्टर जो अब तक बाढ़ बारिश के खतरे के बीच वहां फंसे नागरिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता से उतरता रहा। भारतीय वायुसेना की वो ताकत जो जंगलों की आग तक को बुझाने में इस्तेमाल होता आया है, सफलता से उतरता रहा। भारतीय वायुसेना की वो ताकत जो जंगलों की आग तक को बुझाने में इस्तेमाल होता आया है, कठिन से कठिन हालात में जिंदगी बचाने वाला भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर, जिसके जरिए अब की दावा है कि नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा में पेपर पहुंचाया जाएगा। सूत्र कहते कि इंडियन एयरफोर्स देश भर के 18 जगहों से नीट की दोबारा परीक्षा में प्रश्न पत्र के पैकेट पहुंचाएगी, ताकि उनकी सुरक्षित और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। यानी 21 जून को इस बार नीट का जब पेपर होगा तो उसे MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुंचाया जा सकता है।
0: देश में पहली बार भारतीय वायुसेना नीट के रीटेस्ट के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाली है। पूरे देश में 18 रीजनल हब्स पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स प्रश्न पत्र पहुंचाएंगे। ये पैकेट्स को पूरी सुरक्षा के साथ इन रीजनल हब्स तक ड्रॉप करेंगे और उसके बाद इन रीजनल हब से सड़क के रास्ते एग्जामिनेशन सेंटर्स तक ये क्वेश्चन पेपर्स पहुंचाए जाएंगे। पहली बार देश के इतिहास में इस तरह की पहल हो रही है जब भारतीय वायुसेना किसी एग्जाम के लिए मदद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरी परीक्षा की निगरानी कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमाम दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर इसकी रिव्यू मीटिंग्स ले चुके हैं और अब भारतीय वायुसेना 18 अलग अलग रीजनल हब्स पर Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए इन पेपर्स को पहुंचाएगी। Mi-17 हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर फ्लीट के सबसे रिलायबल हेलीकॉप्टर्स हैं। बड़े विमानों से इन केंद्रों पर पहुंचना मुश्किल है, लिहाजा इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन पैकेट्स को जिनमें क्वेश्चन पेपर्स होंगे उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ इन एग्जामिनेशन सेंटर्स के रीजनल हब्स पर पहुंचाया जाएगा, जहां से इन्हें अलग अलग एग्जामिनेशन केंद्रों पर भेजा जाएगा।
1: नीट यूजी परीक्षा में केवल 12 दिन का समय बचा है, इसलिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ी तैयारी की बैठक पहले हो चुकी है। सरकार सवालों के लीक होने की किसी भी आशंका को खत्म करने के लिए एयरफोर्स की मदद से पेपर को अलग अलग शहरों तक पहुंचाने की योजना बना चुकी है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ऐसा क्या है कि एयरफोर्स की मदद से नीट का पेपर पहुंचाया जाएगा। दावा है कि नई व्यवस्था के तहत प्रश्न पत्रों को वायुसेना के जरिए सीधे प्रमुख केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद कड़ी निगरानी में उन्हें दूसरे एग्जाम सेंटर तक भेजा जाएगा। पेपर लीक होने की 3 सबसे बड़ी जगह होती हैं। पहली जहां से पेपर बनता है, दूसरा पेपर जहां छपता है, तीसरा रास्ते में पेपर लाने ले जाने के दौरान। इस बार नीट का पेपर चूंकि पेपर बनाने के दौरान ही लीक हुआ, तो उस रास्ते को नीट री एग्जाम में बंद करके बाकी 2 रास्तों को बंद करने की तैयारी NTA की है। इसीलिए एयरफोर्स के सख्त प्रोटोकॉल और सीमित बाहरी हस्तक्षेप के चलते सुरक्षा बढ़ाने की पूरी तैयारी की गई, जिससे लीक की गुंजाइश कहीं ना रहे। 22,89,000 बच्चों को दोबारा नीट का पेपर देना है। एक बार पेपर लीक हुआ, लाखों बच्चे टूट चुके हैं। इस बार एयरफोर्स की मदद से पेपर पहुंचाने की प्रक्रिया के जरिए ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि सरकार कहीं भी रत्ती भर भी चूक नहीं होने देना चाहती।
0: फिलीपींस में आए भूकंप से 32 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फिलीपींस में रिक्टर स्केल पर 7.8 का भूकंप आया था, जिसने भारी तबाही मचाई है। भूकंप भारतीय समयानुसार सुबह 5 बजे आया, जो इस साल फिलीपींस में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। भूकंप के बाद सुनामी भी आई, सबसे ऊंची लहर करीब 4.5 फीट की रही।
1: फिलीपींस में भूकंप से ताश के पत्तों की तरह गिरती गई इमारतें। फिलीपींस में ढह गई स्कूल की बिल्डिंग। फिलीपींस फिलीपींस में भूकंप से मिट्टी में मिला आलिशान मॉल। फिलीपींस का मिंडानाओ द्वीप जहां भूकंप के रूप में तबाही ने ऐसी दस्तक दी, पूरी दुनिया डर गई, सहम गई। भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:07 पर फिलीपींस में इमारतें हिलने लगी। अब आप ही सोचिए, भूकंप के दौरान 36 मंजिला, पूरी दुनिया डर गई, सहम गई। भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:07 पर फिलीपींस में इमारतें हिलने लगी। अब आप ही सोचिए, भूकंप के दौरान 36 मंजिला इस इमारत में रहने वाले लोगों की क्या हालत हुई होगी। भूकंप से आप इस इमारत को हिलते हुए देख सकते हैं। 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने जमीन को इस कदर झकझोरा कि सब कुछ हिला दिया। भूकंप के तेज झटकों से एक वाटर टैंक से पानी बाहर गिरने लगा। जमीन के ऊपर सब कुछ हिलता है, ताश के पत्ते की तरह इमारतें भरभराकर मानो गिरती चली गई। ये तस्वीर फिलीपींस के एक स्कूल की है जिसमें पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भूकंप की कभी ना भूलने वाली यादों से रूबरू हुए। भूकंप आते ही बच्चे स्कूल परिसर में इकट्ठा हो गए। इस दौरान टीचर और स्कूल के स्टाफ ने बहादुरी से समझबूझ दिखाते हुए छोटे छोटे बच्चों को अपने पास बैठाए रखा। इस दौरान कुछ बच्चे और स्कूल का स्टाफ कैंपस में बने शेड के नीचे दुबके रहे। अचानक शेड हिलने लगता है और सबके सामने भरभरा कर गिर पड़ता है। कुछ लोग उसमें से निकल कर भागने में कामयाब हो गए तो कई इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि ज्यादातर स्कूलों में प्रशासन ने भूकंप की चेतावनी के मद्देनजर बच्चों को खुली जगह पर इकट्ठा कर दिया। भूकंप की एक और डरावनी तस्वीर शॉपिंग मॉल की है जिसकी इमारत भूकंप के झटकों को ज्यादा वक्त तक झेल नहीं पाई और गिर जाती है। इलाके की दूसरी इमारतों का भी वही हाल रहा। जमीन में मच रही तेज हलचलों ने इमारतों की नींव इस कदर हिला दी, एक के बाद एक इमारतें जमींदोज होती रही। धूल का गुबार चारों तरफ फैलता रहा, लोगों में चीख पुकार मची रही और सब बचने के लिए खुली जगहों पर भागते रहे। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने कई लोग दहशत में सड़क पर ही बैठ गए। कई लोग गाड़ियों को पकड़ कर खड़े हो गए। अचानक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग ढह जाती। 5 सेकंड में इस इमारत का नामो निशान मिट गया। अपनी आंखों से इस विनाश लीला को देख रहे लोगों की चीखने की आवाजें तेज होती गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। भूकंप की तबाही दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर देखने को मिली जहां सोमवार को 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे होने की वजह से भारी नुकसान देखने को मिला है। फिलीपींस के ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान ने बताया कि स्थानीय भूकंप के बाद 138 आफ्टरशॉक दर्ज किए गए। इन झटकों की तीव्रता 1.3 से 6.7 के बीच रही।
2: फिलीपींस की धरती एक बार फिर भीषण भूकंप से दहल उठी। करीब 7.8 तीव्रता का ये भूकंप बताया जा रहा है जो सोमवार की सुबह फिलीपींस में आया सरंगरी इलाके के अंदर, और उसके बाद लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिलीपींस के लिए भूकंप कोई नई बात नहीं है। फिलीपींस दुनिया के नक्शे पर उस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मौजूद है जिसे भूकंप और ज्वालामुखी के लिहाज से दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका कहा जाता है। लेकिन लगातार ये आ रही ये तस्वीरें लोगों को डराने वाली भी हैं, और जिस तरीके से वहां पर ये 1 घंटे के भीतर लगातार भूकंप के झटके सामने आते रहे हैं, यानी मुख्य भूकंप के बाद लगातार आफ्टरशॉक्स पूरे फिलीपींस को भी दहला रहे हैं, और लगातार पूरे पूर्वी एशिया के अंदर इस बात की आशंका बढ़ गई है कि कहीं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक्टिवेट तो नहीं हो गई है जिसके कारण पूरा इलाका एक बड़े प्राकृतिक आपदा की सद में आ सकता है।
1: भूकंप के बाद सुनामी भी आई। सबसे ऊंची लहर 4.6 फीट रही। एहतियात के तौर पर इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी सुनामी की चेतावनी जारी की जिसे कुछ घंटों बाद वापस ले लिया गया।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: ममता की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट की आशंका, शताब्दी रॉय के घर बैठक, शुभेंदु अधिकारी भी रहे मौजूद। ममता की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट की आशंका, शताब्दी रॉय के घर बैठक, शुभेंदु अधिकारी भी रहे मौजूद। काकोली का दावा, हमारे 7-20 सांसद भूपेंद्र यादव से भी मिला था नाराज सांसदों का दल। नीट पेपर लीक पर इंडिया गठबंधन का बड़ा दाव, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सर्वदलीय बैठक की मांग, सीजीआई को लिखेंगे पत्र, 5 सूत्री एजेंडा तय, बीजेपी ने विपक्ष पर उठाए सवाल। पटना में गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हुआ फैजल खान, फायरिंग मामले में लगातार दबिश दे रही है एसआईटी की टीम, पुलिस ने कोर्ट में सौंपी केस डायरी। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, पिघला स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत, मौके पर उठी आग की तेज लपटें। और ईरान इजराइल में युद्ध फिर से शुरू, तेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्ला की ओर से भी हमले, आईडीएफ ने इस्फहान पर किया जवाबी प्रहार। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी के हाथ से क्या पार्टी भी जाने वाली है? विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसद भी टूट रहे हैं। ममता के 20 सांसदों ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा आज टीएमसी के एक राज्यसभा सांसद ने भी इस्तीफा दे दिया।
1: जिस वक्त ममता बनर्जी विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटती हैं, ठीक उसी वक्त उन्हीं की पार्टी के सांसद बगावत की नई कहानी लिख रहे होते हैं। विधायकों के बाद अब टीएमसी के सांसदों ने भी ममता का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। मतलब जिस वक्त सोनिया गांधी से गले मिलकर ममता बनर्जी गठबंधन को मजबूत करने में जुटी थी, उसी वक्त टीएमसी में विद्रोह की नई पटकथा लिखी जाती है। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए का हिस्सा बनकर सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। सांसद और टीएमसी की पूर्व नेता काकोली घोष ने यह दावा किया कि 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। इस बारे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी भेज दिया गया है। बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन की जहां बैठक हो रही थी उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर ममता बनर्जी के 14 बागी सांसद दोपहर में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक करते हैं। इस दौरान सुबह ही टीएमसी के राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके सुखेंदु शेखर राय भी मौजूद रहे। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनसे मिलने पहुंचे। इसी बैठक में लोकसभा सांसद काकोली घोष, शताब्दी रॉय, अबू ताहिर, अरूप चक्रवर्ती, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, असित मल, कालीपत सोरेन, जगदीश बसुनिया और प्रसून बनर्जी भी मौजूद होते हैं।
2: एमपी हो या एमएलए हो, ये तृणमूल कांग्रेस से दीदी का सिंबल लेकर 2 दिन पहले दीदी दीदी दीदी दीदी आज क्या एनडीए के साथ, मैं सुन रहा हूँ तो ये क्या पॉलिटिक्स हुआ।
1: लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इससे पहले 3 जून को पश्चिम बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। इस गुट ने ऋतुव्रत को अपना नेता बनाया है। ये इत्तेफाक नहीं है कि जब ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली में मौजूद होते हैं उसी मौके पर पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु भी दिल्ली पहुंचते हैं।
3: 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना। आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा।
1: इससे पहले राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर रॉय की तस्वीर सामने आई जिसमें वो टीएमसी के कुछ बागी लोकसभा सांसदों के साथ देखे जाते हैं। सुखेंदु ने इस्तीफे के बाद मीडिया से कहा कि पार्टी के कई लोग ममता के मनमाने ढंग से पार्टी चलाने से नाराज थे और इसीलिए इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 2029 तक का था, अब सीट खाली हो चुकी है, अब इस पर उपचुनाव कराया जा सकता है।
4: अभी तो मैं पार्टी से बाहर हूँ, हमारा पार्टी का जो हम जब पार्टी में थे उस समय वो लोग जो थे कोई इसका विचार विमर्श कुछ नहीं किया गया इतना, क्योंकि उसका पावर मस्तिष्क मथे में अंदर चला गया कि हमको कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया में। अरे भाई आम जनता ने तुमको चुन के भेजा है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने तुमको नीचे गिरा दिया, अब देखो कैसे गिराया जाए।
5: शुकेंदुदा का जो उन्होंने बोले है, मैं मेजोरिटी जगह में उनके साथ एकमत हूँ, और खास करके जहां तक पार्लियामेंट का अपर हाउस का फंक्शनिंग था, शुकेंदुदा जो बोले है वो एकदम सही है।
1: इस बगावत ने तबाह और गंभीर रूप ले लिया है जब बागी सांसद शर्मिला सरकार ने एनडीए को समर्थन दिए जाने की घोषणा की है और कहा है कि वो मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष को बताने वाली है कि वही असली तृणमूल कांग्रेस है।
6: हम 20 लोग थे जो जिनमें सिग्नेचर किए हैं, तो हम लोग एक सिफारिश ब्लॉक मतलब तैयार किए हैं, हम लोगों का वॉइस यहाँ से मतलब सेपरेट ब्लॉक से उठ गया।
1: टीएमसी में विद्रोह का आलम ये कि जो नेता कल तक ममता बनर्जी को दीदी दीदी कहकर संबोधित करते थे वो अब खुलेआम उनका नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं। इसे ममता बनर्जी के सियासी कद में आई कमी के तौर पर देखा जा रहा है।
5: 2/3 से ज्यादा एमपी साइन किए हैं, उसका मतलब है 20 एमपी मतलब 2/3 से ज्यादा, तो लोग क्यों किए हैं ये बोल नहीं पाऊंगा, मगर एक तानाशाही के खिलाफ लोगों का आवाज उठ रहा है और ये जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है।
7: सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी, टूट गया।
1: टीएमसी में 28 साल के इतिहास में पहली बार औपचारिक तौर पर टूट सामने आई है। पहले 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए, विधायक ऋतुव्रत बनर्जी को अपना नेता चुना, विधानसभा स्पीकर रतींद्र बोस को समर्थन पत्र दिया, इसमें मांग की गई कि ऋतुव्रत को नेता विपक्ष घोषित किया जाए, और अब ममता बनर्जी के 20 सांसदों ने दिल्ली में विद्रोह करके ममता को राजनीतिक रूप से सबसे कमजोर हालत में पहुंचा दिया है।
0: इंडिया गठबंधन फिर एकजुटता दिखाने के लिए जुटा, और परसों यानी कि बुधवार को एनडीए गठबंधन अपनी ताकत दिखाने वाला है। उससे पहले इंडिया अलायंस ने मीटिंग की 5 मुद्दों पर सहमति बनाई, लेकिन आज तक के पास इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी भी है, जिसमें पता ये चला है कि भीतर कई दलों ने कांग्रेस को लेकर सवाल किए हैं।
1: ममता बनर्जी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाती है, चुप मतलब एकदम चुप, शीशा बंद कर देती है, मीडिया के सवालों से बचती है। इससे कुछ देर पहले इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी सोनिया गांधी से गले मिलती हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान ममता बनर्जी को सोनिया गांधी के ठीक बगल में बैठाया जाता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में ममता बनर्जी बैठती हैं। इंडिया ब्लॉक की 2 साल बाद हुई 7वीं बैठक में 25 दलों के नेता शामिल होते हैं, 2 घंटे बैठक चलती है, 5 मुद्दों पर आपसी सहमति बनती है। पहला मुद्दा, एसआईआर में करोड़ों वोटर के नाम कटे, एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर अब सीजीआई को इंडिया गठबंधन चिट्ठी लिखेगा। दूसरा मुद्दा, नीट में देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ, नीट और सीबीएसई की गड़बड़ी के लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं, वो इस्तीफा दें। तीसरे मुद्दे पर जो आपसी सहमति इंडिया गठबंधन में बनी है वो ये कि सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। चौथा मुद्दा है कि हर 2 महीने पर अब इंडिया गठबंधन की मुलाकात होगी, अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी। और पांचवा मुद्दा, संसद में इंडिया गठबंधन का समन्वय जारी रहेगा, रोज नेता विपक्ष के दफ्तर में बैठक की जाएगी। विपक्षी गठबंधन की हालत इस बात से समझिए कि जिन 5 मुद्दों पर सहमति अगर बनी तो 2 मुद्दे यही हैं, बैठक बहुत लंबा टालो मत, समन्वय जल्दी करो। असल में विपक्षी गठबंधन की समस्या है समन्वय की, क्योंकि दिल्ली में ममता को गले लगाती कांग्रेस के विचार ममता को ही लेकर 1.5 महीने पहले क्या थे, इसको आज याद करिए।
8: बीजेपी को मौका कौन दे रहा है? तृणमूल कांग्रेस दे रही है। तृणमूल कांग्रेस भी अपने काम में लगी हुई है, वो भी बंगाल के लिए काम नहीं कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट हैं, तो तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। बंगाल की जनता का फायदा नहीं होता है, यहां पे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का जो सिंडिकेट है उसको ये 24 घंटा पैसा देते रहते हैं, हिंसा फैलाते हैं, मारपीट करते हैं और झूठे वायदे। ममता जी ने बंगाल की पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। महिलाओं की बात करें तो आरजी कार रेप एंड मर्डर केस की भी बात करनी होगी।
1: जिन ममता के खिलाफ बंगाल में नाम लेकर राहुल गांधी भ्रष्टाचार से लेकर महिला अपराध तक पर घेरते रहे, उसी पश्चिम बंगाल में अब उन्हीं ममता बनर्जी के पास जब न सत्ता बच रही न पार्टी बचती नजर आ रही, तो इंडिया गठबंधन बैठक करके ये कहता है कि चुनाव एसआईआर और वोट चोरी से हार रहे हैं।
9: एसआईआर मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा।
10: पहले यही सब बैठक स्टेडियम में होती थी, आप सब देखे होंगे कैसे बेंगलुरु के स्टेडियम में एक दूसरे के हाथ पकड़ करके सभी लोग खड़े थे। धीरे धीरे अब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक रूम में होती है। उन्होंने कहा कि एसआईआर हुआ, वोट चोरी हुई। मुझे तो समझ में नहीं आता है ये एक ही टेप रिकॉर्डर ये कब से चला रहे हैं। मगर एसआईआर तो तमिलनाडु में भी हुआ, एसआईआर तो केरल में भी हुआ। तमिलनाडु में आप झटपट से वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर लिया और सरकार बना लिया। और डीएमके वहां बोल रही है यहां तो वोट चोरी नहीं, यहां तो एलआई ही चोरी हो गई, वहां तो एलआई चोरी हो गई। केरल में आपने सरकार बना लिया तो एसआईआर को कोस नहीं रहे, बंगाल में हार गए तो एसआईआर का रोना रो रहे। तो ये जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है ये सब हम और हिंदुस्तान देख रहा है।
1: बीजेपी इंडिया गठबंधन की बैठक को अस्तित्व बचाओ मोर्चा तक कहती है।
10: अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है।
1: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर सवाल राहुल गांधी भी उठा रहे थे। तमिलनाडु में कांग्रेस चुनाव हारी तो डीएमके से अलग होकर टीवीके के साथ सरकार बना ली। केरल में लेफ्ट पर चुन चुन कर वार करके ही कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद जब इंडिया गठबंधन की बैठक होती है तो दावा है कि भीतर कांग्रेस पर उन्हीं के साथ ही सवाल उठाते हैं। कई पार्टियों ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं के बीच तालमेल की कमी का सवाल उठाया। कुछ दलों ने कांग्रेस पर इसलिए सवाल उठाया कि वो अपने ही साथियों पर राज्य के चुनाव में तीखे आरोप लगाकर वोट मांगती है। दावा कि सबसे पहले अखिलेश ने ये बात उठाई और फिर बाकी नेताओं, खासकर लेफ्ट के दलों ने ये बात कही है। इस पर राहुल गांधी ने जवाब ये दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर हम साथ हैं, लेकिन जब मेरे राज्य इकाई के नेता मुझे हालात और चुनाव प्रचार के बारे में बताते हैं तो मुझे उनकी बात भी सुननी पड़ती है।
11: इंडिया गठबंधन ऐसे चलना है तो कांग्रेस के ओर से कुछ एडजस्टमेंट होना चाहिए, ये अभी तक हुआ नहीं। केरल में वो खतरनाक काम किया, अलग अलग राज्यों में वो किया, पुदुचेरी में वो काम किया, अपना अलाइस को खत्म करने के लिए वो कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा सोच चाहिए।
12: वी हैव आवर सीरियस रिजर्वेशंस विद रिगार्ड टू कांग्रेस पार्टीज कॉन्टेक्ट एंड अप्रोच, वी विल रेज दोस इश्यूज इन द मीटिंग अनडाउटेडली। आवर जनरल सेक्रेटरी आल्सो हैज रिटन अ लेटर।
1: कांग्रेस के तरीकों पर उन्हीं के गठबंधन के लोगों ने मीटिंग के पहले से लेकर मीटिंग के बाद तक सवाल उठाया। समन्वय यानी आपसी साथ कितना है, इसका सबूत देख लीजिए पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी वाले युवाओं के साथ प्रदर्शन पर, जहां कांग्रेस के नेता प्रश्न उठाते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की मीटिंग में उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि अगर मुद्दा समान हो तो आंदोलन का समर्थन किया जाना चाहिए। डीएमके से कांग्रेस के अलग होने पर भी सवाल उठा है। दावा के एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा कि डीएमके का गठबंधन में ना होना चिंताजनक है। अखिलेश यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि हम वो नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ दें। पिछले साल दिल्ली चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की रणनीति और नेतृत्व तक पर शिवसेना यूबीटी के नेता सवाल उठाते आए।
13: जो भी डिफरेंसेस, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंसेस हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म है।
1: आपसी डिफरेंस ही इंडिया गठबंधन की वो कमजोर नब्ज है जिसे मीटिंग से पहले दिल्ली में ऐसे लगे पोस्टर से पुरजोर दबाने की कोशिश की गई। ऐसे पोस्टर जिस पर ये नहीं लिखा था कि किसने लगवाया, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते इंडिया गठबंधन के ही नेताओं के पुराने बयान इन पोस्टर पर दिखाए गए। जिन्हें बाद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आकर हटा दिया। पोस्टर तो हट गया, अब हर दो महीने पर मीटिंग करके आपसी समन्वय सुधारने की बात भी कर ली गई। लेकिन सवाल है कब तक? उत्तर प्रदेश का मोर्चा खुलने वाला है क्या? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लोकसभा जैसी एकता दिखेगी या फिर चार दिन की एकता और फिर वही आपसी विवाद चलता रहेगा?
0: अब वो खबर जो बड़ी चिंता पैदा करती है। उत्तर प्रदेश के शामली में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया जिसमें आयुष मलिक नाम का एक हिंदू नौजवान मोहम्मद अली बन गया। आयुष के पिता ने बेटे के धर्मांतरण का आरोप चांदनी कुरैशी नाम की जिम ट्रेनर पर लगाया है। आयुष के परिवार का कहना यह है कि जब उन्होंने बेटे के धर्म परिवर्तन का विरोध किया तो चांदनी के परिवार ने उन पर भी धर्म बदलने का दबाव बनाया।
14: जब मैंने FIR दर्ज की पुलिस प्रशासन में, तो इसके बाद पता लगा कि उसके बाद आप मोहम्मद अली बता रहे, कोई रहमान बता रहा, कोई कुर्बान बता रहा, मुझे तो कुछ नहीं, मेरे लिए तो आयुष मलिक है। इस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह।
1: उत्तर प्रदेश का शामली, यहाँ पर एक करोड़पति हिंदू परिवार का इकलौता लड़का आयुष मलिक मुसलमान बनकर मोहम्मद अली हो जाता है। इस धर्म परिवर्तन के बाद एक जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी सवालों के घेरे में आती है, जिस पर आयुष मलिक के दवा कारोबारी पिता आरोप लगाते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए चांदनी कुरैशी ने उनके बेटे को प्यार के जाल में फंसाकर मुसलमान बनाकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया।
14: चांदनी नामक एक लड़की ने चांदनी कुरैशी उस लड़के को प्रेम जाल में फंसा, और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे मौलवियों का और बाह्य लोगों का कुछ जो अंतर्राज्य स्तर पे काम कर रहे और अपने परिवार से सभी से वो करके उसको ब्रेन वॉश किया।
1: खबरदार करता सवाल है कि क्या करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए एक हिंदू नौजवान को मुसलमान बना दिया गया ताकि उसके परिवार को भी आगे जाकर हिंदू से मुस्लिम बनाकर प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जा सके?
14: ब्रेन वॉश करने के बाद उसका मुख्य उद्देश्य ये था, लड़के तो उसके समुदाय में भी बहुत मिलते, इससे भी स्मार्ट मिल जाते, लेकिन उसकी निगाह एक नामचीन बच्चे पे थी। चूंकि आयुष के पास नाम काम दाम सब चीज पर्याप्त मात्रा में है, और तो उन्होंने इसे ब्रेन वॉश करके मौलवी वगैरह वगैरह और फर्जी दस्तावेज करके शादी का निकाहनामा फर्जी निकाहनामा करा कर और उसकी संपत्ति हड़पने का मामला मेरे संज्ञान में, जो स्थानीय स्तर पर मैं अपनी जानकारी से अपने ईस्ट मिस्ट घनिष्ठ जो बात पता लगाई, मुख्य उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का है।
1: आयुष मलिक का परिवार शामली के संपन्न लोगों में से एक है। मेडिकल होलसेल की इसी दुकान पर आयुष मलिक बैठता था। दुकान के ऊपर ही रहने का घर भी है। आयुष के पिता का दावा है कि चांदनी नाम की जिम ट्रेनर फर्जी निकाह के आधार पर अब इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करने का दबाव डाल रही है।
15: कैसा लड़का था आयुष बचपन में? कैसे?
14: आयुष स्वभाव से बहुत ही बढ़िया, जिसे लोग ये कहते हैं कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बहुत संस्कारिक, बहुत मेहनती, बहुत निष्ठावान, बहुत ही मिलनसार और हर तरह से ईमानदार, सब खूबियां उसमें थी जितने एक ये कहते हैं कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बहुत संस्कारिक, बहुत मेहनती, बहुत निष्ठावान, बहुत ही मिलनसार और हर तरह से ईमानदार, सब खूबियां उसमें थी जितने एक बच्चे में हूँ। इस चांदनी कुरैशी ने मेरे घर का प्रॉपर्टी के चक्कर में और मेरा सब घर बर्बाद कर दिया।
1: शामली के इस पिता की लाचारगी की वजह उसका बेटा है, जो न माँ की बात सुनने को तैयार है न तीन बहनों की। उसके दिलो दिमाग पर चांदनी छाई हुई है।
16: जो कुरैशी है हमारे यहाँ ठेले पे जूस बेचते शामली में, ये लोग मिल करके पिछले सप्ताह हमसे इन लोगों ने क्लेम किया कि साहब चूंकि शादी निकाह की हो गई है, संपत्ति में मेरा भी हिस्सा है, आप ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी बेटी के नाम कर दीजिए आप, जिससे कि बहू और आपके हमारी बेटी आपका बेटा लोग ठीक से रहे और आप भी कन्वर्ट हो जाए कि हमारे धर्म में आ जाइए आप लोग।
15: आपको पता है कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पे नजर थी किसी की?
17: किसकी?
15: किसी की थी।
17: किसकी थी सर?
15: चांदनी कुरैशी और उसके परिवार की।
17: ये आप टारगेट कर रहे हैं सर, ये आप उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तो मेरी है इस पे। मैंने खुद भी कहा था आपको जो करना पेरेंट्स को अपने आप वो कर लो इस प्रॉपर्टी का, और ना उनके साथ कोई ऐसा मसला है, उन्होंने भी साफ मना कर रखा।
15: और किन किस किस मौलाना की आपने वीडियो देखी है इशरार अहमद के अलावा?
17: ऑल ओवर द वर्ल्ड के सभी मोटिवेशनल स्पीकर रीजनल।
15: नाम बताइए दो चार।
17: डॉक्टर इशरार अहमद के मैं ज्यादा देखता था, ऐसे तो बस रैंडमली नाम नहीं याद रहते।
1: आमतौर पर धर्म परिवर्तन की खबरों में लोगों को लालच दिया जाता है, लेकिन शामली की कहानी पूरी तरह उल्टी है। यहाँ पर हिंदू नौजवान को मुसलमान बनाने के पीछे दावा है, उसकी संपत्ति पर कब्जा करके उसके पूरे परिवार को मुसलमान बनाने का मकसद।
14: एक रूप से उसका इतना उसे वो कर दिया गया कि वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। फिर भी मैं उसे बीच बीच में समय अंतराल कुछ अंतराल पर बात करता रहा, बात करने से समाधान नहीं निकला।
1: शामली में धर्म परिवर्तन की यह कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये शहर के सबसे रईस परिवार से जुड़ी है, जिसकी प्रॉपर्टी की कीमत 100 करोड़ के आसपास बताई जाती है।
18: मैं शामली के उसी मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ जहाँ फिलहाल आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली रहता है। अगर आप ये देखेंगे तो इस मेडिकल स्टोर का नाम है भारत मेडिक शॉप, और ये जो प्रॉपर्टी है केवल यही ही प्रॉपर्टी 20 करोड़ से ज्यादा की मानी जाती है, और इस तरह की कई प्रॉपर्टी आयुष मलिक और उसके पिता की है। पुलिस की तहकीकात में ये सामने आया है कि इन्हीं प्रॉपर्टी को किसी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए पहले आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, फर्जी निकाहनामा भी तैयार किया गया था।
1: आयुष के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में जांच की, जिसमें यह बात सामने आती कि इस पूरे मामले के लिए एक फर्जी निकाहनामा तैयार किया गया, जिससे दावा है कि चांदनी कुरैशी और उसके परिवार ने मिलकर अंजाम दिया है।
16: फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गया है इसमें। अभी इसका जो भाई है, जो उसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है, और भी तमाम जो इसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने इस ढंग की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए, उन पे हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। टीम के माध्यम से फंसाए इसको, और इसकी दुकान पे लड़के जो काम कर रहे थे उसमें इसका एक भाई था, वो हेड ही था इनकी दुकान का, शोरूम का इसके आयुष के, उसने इसको प्रलोभन दिया।
1: शामली पुलिस का कहना है कि जब किसी का इस स्तर पर ब्रेन वॉश कर दिया जाता है तो उसे दोबारा डी रेडिकलाइज करना बेहद मुश्किल और चुनौती भरा होता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो SIT बनाई गई है वो हर पहलू पर बारीकी से काम कर रही है ताकि सुनियोजित रैकेट की तह तक पहुंचा जा सके। अरविंद ओझा, शामली आज तक।
0: फिलीपींस में आए भूकंप से 32 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फिलीपींस में रिक्टर स्केल पर 7.8 का भूकंप आया था जिसने भारी तबाही मचाई है। भूकंप भारतीय समयानुसार सुबह 5 बजे आया, जो इस साल फिलीपींस में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। भूकंप के बाद सुनामी भी आई, सबसे ऊंची लहर करीब 4.5 फीट की रही।
1: फिलीपींस में भूकंप से ताश के पत्तों की तरह गिरती गई इमारतें। फिलीपींस में ढह गई स्कूल की बिल्डिंग। फिलीपींस में भूकंप से मिट्टी में मिला आलीशान मॉल। फिलीपींस का मिंडानाओ द्वीप, जहां भूकंप के रूप में तबाही ने ऐसी दस्तक दी, पूरी दुनिया डर गई, सहम गई। भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:07 पर फिलीपींस में इमारतें हिलने लगी। अब आप ही सोचिए, भूकंप के दौरान 36 मंजिला इस इमारत में रहने वाले लोगों की क्या हालत हुई होगी। भूकंप से आप इस इमारत को हिलते हुए देख सकते हैं। 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने जमीन को इस कदर झकझोरा कि सब कुछ हिला दिया। भूकंप के तेज झटकों से एक वाटर टैंक से पानी बाहर गिरने लगा। जमीन के ऊपर सब कुछ हिलता है, ताश के पत्ते की तरह इमारतें भरभराकर मानो गिरती चली गई। ये तस्वीर फिलीपींस के एक स्कूल की है, जिसमें पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भूकंप की कभी ना भूलने वाली यादों से रूबरू हुए। भूकंप आते ही बच्चे स्कूल परिसर में इकट्ठा हो गए। इस दौरान टीचर और स्कूल के स्टाफ ने बहादुरी से समझबूझ दिखाते हुए छोटे छोटे बच्चों को अपने पास बैठाए रखा। इस दौरान कुछ बच्चे और स्कूल का स्टाफ कैंपस में बने शेड के नीचे दुबके रहे। अचानक शेड हिलने लगता है और सबके सामने भरभरा कर गिर पड़ता है। कुछ लोग उसमें से निकल कर भागने में कामयाब हो गए।
19: तो कई इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। राहत की बात ये रही कि ज्यादातर स्कूलों में प्रशासन ने भूकंप की चेतावनी के मद्देनजर बच्चों को खुली जगह पर इकट्ठा कर लिया। भूकंप की एक और डरावनी तस्वीर शॉपिंग मॉल की है, जिसकी इमारत भूकंप के झटकों को ज्यादा वक्त तक झेल नहीं पाई और गिर जाती। इलाके की दूसरी इमारतों का भी वही हाल रहा। जमीन में मच रही तेज हलचलों ने इमारतों की नींव इस कदर हिला दी, एक के बाद एक इमारतें जमींदोज होती रही। धूल का गुबार चारों तरफ फैलता रहा, लोगों में चीख पुकार मची रही और सब बचने के लिए खुली जगहों पर भागते रहे। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने कई लोग दहशत में सड़क पर ही बैठ गए, कई लोग गाड़ियों को पकड़ कर खड़े हो गए। अचानक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग ढह जाती। 5 सेकंड में इस इमारत का नाम निशान मिट गया। अपनी आंखों से इस विनाश लीला को देख रहे लोगों की चीखने की आवाजें तेज होती गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। भूकंप की तबाही दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर देखने को मिली, जहां सोमवार को 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे होने की वजह से भारी नुकसान देखने को मिला है। फिलीपींस के ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान ने बताया कि स्थानीय भूकंप के बाद 138 आफ्टरशॉक दर्ज किए गए। इन झटकों की तीव्रता 1.3 से 6.7 के बीच रही।
20: फिलीपींस की धरती एक बार फिर भीषण भूकंप से दहल उठी। करीब 7.8 तीव्रता का ये भूकंप बताया जा रहा है, जो सोमवार की सुबह फिलीपींस में आया सरंगनी इलाके के अंदर, और उसके बाद लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिलीपींस के लिए भूकंप कोई नई बात नहीं है। फिलीपींस दुनिया के नक्शे पर उस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मौजूद है, जिसे भूकंप और ज्वालामुखी के लिहाज से दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका कहा जाता है। लेकिन लगातार ये आ रही ये तस्वीरें लोगों को डराने वाली भी हैं, और जिस तरीके से वहां पर ये 1 घंटे के भीतर लगातार भूकंप के झटके सामने आते रहे हैं, यानी मुख्य भूकंप के बाद लगातार आफ्टरशॉक्स पूरे फिलीपींस को भी दहला रहे हैं, और लगातार पूरे पूर्वी एशिया के अंदर इस बात की आशंका बढ़ गई है कि कहीं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक्टिवेट तो नहीं हो गई है, जिसके कारण पूरा इलाका एक बड़े प्राकृतिक आपदा की सद में आ सकता है।
19: भूकंप के बाद सुनामी भी आई। सबसे ऊंची लहर 4.6 फीट रही। एहतियात के तौर पर इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी सुनामी की चेतावनी जारी की, जिसे कुछ घंटों बाद वापस ले लिया गया।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।

0: ममता की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट की आशंका, शताब्दी रॉय के घर बैठक, शुभेंदु अधिकारी भी रहे मौजूद। काकोली का दावा, हमारे साथ भी सांसद भूपेंद्र यादव से भी मिला था नाराज सांसदों का दल। नीट पेपर लीक पर इंडिया गठबंधन का बड़ा दाव, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सर्वदलीय बैठक की मांग, सीजीआई को लिखेंगे पत्र, 5 सूत्री एजेंडा तय, बीजेपी ने विपक्ष पर उठाए सवाल। पटना में गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हुआ फैजल खान, फायरिंग मामले में लगातार दबिश दे रही है एसआईटी की टीम, पुलिस ने कोर्ट में सौंपी केस डायरी। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, पिघला स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत, मौके पर उठी आग की तेज लपटें। और ईरान इजराइल में युद्ध फिर से शुरू, तेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्ला की ओर से भी हमले, आईडीएफ ने इस्फहान पर किया जवाबी प्रहार। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी के हाथ से क्या पार्टी भी जाने वाली है? विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसद भी टूट रहे हैं। ममता के 20 सांसदों ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा आज टीएमसी के एक राज्यसभा सांसद ने भी इस्तीफा दे दिया।
1: जिस वक्त ममता बनर्जी विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटती हैं, ठीक उसी वक्त उन्हीं की पार्टी के सांसद बगावत की नई कहानी लिख रहे होते हैं। विधायकों के बाद अब टीएमसी के सांसदों ने भी ममता का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। मतलब जिस वक्त सोनिया गांधी से गले मिलकर ममता बनर्जी गठबंधन को मजबूत करने में जुटी थी, उसी वक्त टीएमसी में विद्रोह की नई पटकथा लिखी जाती है। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए का हिस्सा बनकर सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। सांसद और टीएमसी की पूर्व नेता काकोली घोष ने यह दावा किया कि 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। इस बारे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी भेज दिया गया है। बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन की जहां बैठक हो रही थी उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर ममता बनर्जी के 14 बागी सांसद दोपहर में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक करते हैं। इस दौरान सुबह ही टीएमसी के राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके सुखेंदु शेखर राय भी मौजूद रहे। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनसे मिलने पहुंचे। इसी बैठक में लोकसभा सांसद काकोली घोष, शताब्दी रॉय, अबुताहिर, अरूप चक्रवर्ती, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, असितमल, कालीपत सोरेन, जगदीश बसुनिया और प्रसून बनर्जी भी मौजूद होते हैं।
2: एमपी हो या एमएलए हो, ये तृणमूल कांग्रेस से दीदी का सिंबल लेकर 2 दिन पहले दीदी दीदी दीदी दीदी, आज क्या एनडीए के साथ मैं सुन रहा हूँ, तो ये क्या पॉलिटिक्स हुआ?
1: लोकसभा में टीएमसी के भी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इससे पहले 3 जून को पश्चिम बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। इस गुट ने ऋतुव्रत को अपना नेता बनाया है। ये इत्तेफाक नहीं है कि जब ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली में मौजूद होते हैं उसी मौके पर पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु भी दिल्ली पहुंचते हैं।
3: 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना, आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा।
1: इससे पहले राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर रॉय की तस्वीर सामने आई जिसमें वो टीएमसी के कुछ बागी लोकसभा सांसदों के साथ देखे जाते हैं। सुखेंदु ने इस्तीफे के बाद मीडिया से कहा कि पार्टी के कई लोग ममता के मनमाने ढंग से पार्टी चलाने से नाराज थे और इसीलिए इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 2029 तक का था, अब सीट खाली हो चुकी है, अब इस पर उपचुनाव कराया जा सकता है।
4: अभी तो मैं पार्टी से बाहर हूं। हमारा पार्टी का जो हम जब पार्टी में थे उस समय वो लोग जो थे कोई इसका विचार विमर्श कुछ नहीं किया गया इतना, क्योंकि उसका पावर मस्तिष्क मथे पे अंदर चला गया कि हमको कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया में। अरे भाई, आम जनता ने तुमको चुन के भेजा है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने तुमको नीचे गिरा दिया, अब देखो कैसे गिराया।
5: शुकेंदु दा का जो उन्होंने बोले है, मैं मेजोरिटी जगह में उनके साथ एकमत हूँ, और खास करके जहां तक पार्लियामेंट का अपर हाउस का फंक्शनिंग था, शुकेंदु दा जो बोले है वो एकदम सही है।
1: इस बगावत ने तबाह और गंभीर रूप ले लिया है जब बागी सांसद शर्मिला सरकार ने एनडीए को समर्थन दिए जाने की घोषणा की है और कहा है कि वो मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष को बताने वाली है कि वही असली तृणमूल कांग्रेस है।
6: हम 20 लोग थे जिन्होंने सिग्नेचर किए हैं, तो हम लोग एक सिफारिश ब्लॉक मतलब तैयार किए हैं। हम लोगों का वॉइस यहाँ से मतलब सेपरेट ब्लॉक से उठ गया।
1: टीएमसी में विद्रोह का आलम यह कि जो नेता कल तक ममता बनर्जी को दीदी दीदी कहकर संबोधित करते थे, वो अब खुलेआम उनका नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं। इसे ममता बनर्जी के सियासी कद में आई कमी के तौर पर देखा जा रहा है।
5: 2/3 से ज्यादा एमपी साइन किए हैं, उसका मतलब है 20 एमपी, मतलब 2/3 से ज्यादा। तो वो लोग क्यों किए हैं ये बोल नहीं पाऊंगा, मगर एक तानाशाही के खिलाफ लोगों का आवाज उठ रहा है और ये जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है।
7: सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी, तो टूट गया।
1: टीएमसी में 28 साल के इतिहास में पहली बार औपचारिक तौर पर टूट सामने आई है। पहले 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए, विधायक ऋतुव्रत बनर्जी को अपना नेता चुना, विधानसभा स्पीकर रतींद्र बोस को समर्थन पत्र दिया। इसमें मांग की गई कि ऋतुव्रत को नेता विपक्ष घोषित किया जाए और अब ममता बनर्जी के 20 सांसदों ने दिल्ली में विद्रोह करके ममता को राजनीतिक रूप से सबसे कमजोर हालत में पहुंचा दिया है।
0: इंडिया गठबंधन फिर एकजुटता दिखाने के लिए जुटा और परसों यानी कि बुधवार को एनडीए गठबंधन अपनी ताकत दिखाने वाला है। उससे पहले इंडिया अलायंस ने मीटिंग की 5 मुद्दों पर सहमति बनाई, लेकिन आज तक के पास इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी भी है जिसमें पता ये चला है कि भीतर कई दलों ने कांग्रेस को लेकर सवाल किए हैं।
1: ममता बनर्जी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाती है, चुप मतलब एकदम चुप, शीशा बंद कर देती है, मीडिया के सवालों से बचती है। इससे कुछ देर पहले इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी सोनिया गांधी से गले मिलती हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान ममता बनर्जी को सोनिया गांधी के ठीक बगल में बैठाया जाता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में ममता बनर्जी बैठती हैं। इंडिया ब्लॉक की 2 साल बाद हुई 7वीं बैठक में 25 दलों के नेता शामिल होते हैं। 2 घंटे बैठक चलती है, 5 मुद्दों पर आपसी सहमति बनती है। पहला मुद्दा एसआईआर में करोड़ों वोटर के नाम कटे, एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर अब सीजीआई को इंडिया गठबंधन चिट्ठी लिखेगा। दूसरा मुद्दा नीट में देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ, नीट और सीबीएसई की गड़बड़ी के लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं, वो इस्तीफा दें। तीसरे मुद्दे पर जो आपसी सहमति इंडिया गठबंधन में बनी है वो ये कि सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। चौथा मुद्दा है कि हर 2 महीने पर अब इंडिया गठबंधन की मुलाकात होगी, अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी। और पांचवा मुद्दा संसद में इंडिया गठबंधन का समन्वय जारी रहेगा, रोज नेता विपक्ष के दफ्तर में बैठक की जाएगी। विपक्षी गठबंधन की हालत इस बात से समझिए कि जिन 5 मुद्दों पर सहमति अगर बनी तो 2 मुद्दे यही हैं, बैठक बहुत लंबा टालो मत, समन्वय जल्दी करो। असल में विपक्षी गठबंधन की समस्या है समन्वय की, क्योंकि दिल्ली में ममता को गले लगाती कांग्रेस के विचार ममता को ही लेकर 1.5 महीने पहले क्या थे इसको आज याद करिए।
8: बीजेपी को मौका कौन दे रहा है? तृणमूल कांग्रेस दे रही है। तृणमूल कांग्रेस भी अपने काम में लगी हुई है, वो भी बंगाल के लिए काम नहीं कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट हैं, तो तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। बंगाल की जनता का फायदा नहीं होता है, यहां पे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का जो सिंडिकेट है उसको ये 24 घंटा पैसा देते रहते हैं, हिंसा फैलाते हैं, मारपीट करते हैं और झूठे वायदे। ममता जी ने बंगाल की पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। महिलाओं की बात करें तो आरजी कार रेप एंड मर्डर केस की भी बात करनी होगी।
1: जिन ममता के खिलाफ बंगाल में नाम लेकर राहुल गांधी भ्रष्टाचार से लेकर महिला अपराध तक पर घेरते रहे, उसी पश्चिम बंगाल में अब उन्हीं ममता बनर्जी के पास जब न सत्ता बच रही न पार्टी बचती नजर आ रही, तो इंडिया गठबंधन बैठक करके ये कहता है कि चुनाव एसआईआर और वोट चोरी से हार रहे हैं।
9: एसआईआर मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा।
10: पहले यही सब बैठक स्टेडियम में होती थी, आप सब देखे होंगे कैसे बेंगलुरु के स्टेडियम में एक दूसरे के हाथ पकड़ करके सभी लोग खड़े थे। धीरे धीरे अब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक रूम में होती है। उन्होंने कहा कि एसआईआर हुआ, वोट चोरी हुई। मुझे तो समझ में नहीं आता है ये एक ही टेप रिकॉर्डर ये कब से चला रहे हैं। मगर एसआईआर तो तमिलनाडु में भी हुआ, एसआईआर तो केरल में भी हुआ। तमिलनाडु में आप झटपट से वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर लिया और सरकार बना लिया। और डीएमके वहां बोल रही है यहां तो वोट चोरी नहीं, यहां तो एलआई ही चोरी हो गई, वहां तो एलआई चोरी हो गई। केरल में आपने सरकार बना लिया तो एसआईआर को कोस नहीं रहे, बंगाल में हार गए तो एसआईआर एसआईआर का रोना रो रहे। तो ये जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है ये सब हम और हिंदुस्तान देख रहा है।
1: बीजेपी इंडिया गठबंधन की बैठक को अस्तित्व बचाओ मोर्चा तक कहती है।
10: अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है।
1: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर सवाल राहुल गांधी भी उठा रहे थे। तमिलनाडु में कांग्रेस चुनाव हारी तो डीएमके से अलग होकर टीवीके के साथ सरकार बना ली। केरल में लेफ्ट पर चुन चुन कर वार करके ही कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद जब इंडिया गठबंधन की बैठक होती है तो दावा है कि भीतर कांग्रेस पर उन्हीं के साथ ही सवाल उठाते हैं। कई पार्टियों ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं के बीच तालमेल की कमी का सवाल उठाया। कुछ दलों ने कांग्रेस पर इसलिए सवाल उठाया कि वो अपने ही साथियों पर राज्य के चुनाव में तीखे आरोप लगाकर वोट मांगती है। दावा कि सबसे पहले अखिलेश ने ये बात उठाई और फिर बाकी नेताओं, खासकर लेफ्ट के दलों ने ये बात कही है। इस पर राहुल गांधी ने जवाब ये दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर हम साथ हैं, लेकिन जब मेरे राज्य इकाई के नेता मुझे हालात और चुनाव प्रचार के बारे में बताते हैं तो मुझे उनकी बात भी सुननी पड़ती है।
11: इंडिया गठबंधन ऐसे चलना है तो कांग्रेस के ओर से कुछ एडजस्टमेंट होना चाहिए। ये अभी तक हुआ नहीं। केरल में वो खतरनाक काम किया, अलग अलग राज्यों में वो किया, पुदुचेरी में वो काम किया, अपना अलाइंस को खत्म करने के लिए वो कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा सोच चाहिए।
12: वी हैव आवर सीरियस रिजर्वेशंस विद रिगार्ड टू कांग्रेस पार्टीज कॉन्टेक्ट एंड अप्रोच। वी विल रेज दोस इश्यूज इन द मीटिंग अनडाउटेडली। आवर जनरल सेक्रेटरी आल्सो हैज रिटन लेटर।
1: कांग्रेस के तरीकों पर उन्हीं के गठबंधन के लोगों ने मीटिंग के पहले से लेकर मीटिंग के बाद तक सवाल उठाया। समन्वय यानी आपसी साथ कितना है, इसका सबूत देख लीजिए पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी वाले युवाओं के साथ प्रदर्शन पर, जहां कांग्रेस के नेता प्रश्न उठाते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की मीटिंग में उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि अगर मुद्दा समान हो तो आंदोलन का समर्थन किया जाना चाहिए। डीएमके से कांग्रेस के अलग होने पर भी सवाल उठा है। दावा एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा कि डीएमके का गठबंधन में ना होना चिंताजनक है। अखिलेश यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि हम वो नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ दें। पिछले साल दिल्ली चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की रणनीति और नेतृत्व तक पर शिवसेना यूबीटी के नेता सवाल उठाते आए।
13: जो भी डिफरेंसेस, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंसेस हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म है।
1: आपसी डिफरेंस ही इंडिया गठबंधन की वो कमजोर नब्ज है जिसे मीटिंग से पहले दिल्ली में ऐसे लगे पोस्टर से पुरजोर दबाने की कोशिश की गई। ऐसे पोस्टर जिस पर ये नहीं लिखा था कि किसने लगवाया, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते इंडिया गठबंधन के ही नेताओं के पुराने बयान इन पोस्टर पर दिखाए गए, जिन्हें बाद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आकर हटा दिया। पोस्टर तो हट गया, अब हर दो महीने पर मीटिंग करके आपसी समन्वय सुधारने की बात भी कर ली गई, लेकिन सवाल है कब तक। उत्तर प्रदेश का मोर्चा खुलने वाला है, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लोकसभा जैसी एकता दिखेगी या फिर चार दिन की एकता और फिर वही आपसी विवाद चलता रहेगा।
0: अब वो खबर जो बड़ी चिंता पैदा करती है। उत्तर प्रदेश के शामली में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया जिसमें आयुष मलिक नाम का एक हिंदू नौजवान मोहम्मद अली बन गया। आयुष के पिता ने बेटे के धर्मांतरण का आरोप चांदनी कुरैशी नाम की जिम ट्रेनर पर लगाया है। आयुष के परिवार का कहना यह है कि जब उन्होंने बेटे के धर्म परिवर्तन का विरोध किया तो चांदनी के परिवार ने उन पर भी धर्म बदलने का दबाव बनाया।
14: जब मैंने FIR दर्ज की पुलिस प्रशासन में तो इसके बाद पता लगा कि उसके बाद आप मोहम्मद अली बता रहे, कोई रहमान बता रहा, कोई कुर्बान बता रहा, मुझे तो कुछ नहीं, मेरे लिए तो आयुष मलिक है। इस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया गया,
15: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: उत्तर प्रदेश का शामली, यहाँ पर एक करोड़पति हिंदू परिवार का इकलौता लड़का आयुष मलिक मुसलमान बनकर मोहम्मद अली हो जाता है। इस धर्म परिवर्तन के बाद एक जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी सवालों के घेरे में आती है, जिस पर आयुष मलिक के दवा कारोबारी पिता आरोप लगाते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए चांदनी कुरैशी ने उनके बेटे को

0: को हड़पने का है।
1: आयुष मलिक का परिवार शामली के संपन्न लोगों में से एक है। मेडिकल होलसेल की इसी दुकान पर आयुष मलिक बैठता था। दुकान के ऊपर ही रहने का घर भी है। आयुष के पिता का दावा है कि चांदनी नाम की जिम ट्रेनर फर्जी निकाह के आधार पर अब इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करने का दबाव डाल रही है।
2: कैसा लड़का था आयुष बचपन में? कैसे?
0: आयुष स्वभाव से बहुत ही बढ़िया, जिसे लोग ये कहते हैं कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बहुत संस्कारिक, बहुत मेहनती, बहुत निष्ठावान, बहुत ही मिलनसार और हर तरह से ईमानदार। सब खूबियां उसमें थी जितने एक बच्चे में हूँ। इस चांदनी कुरैशी ने मेरे घर का प्रॉपर्टी के चक्कर में और मेरा सब घर बर्बाद कर दिया।
1: शामली के इस पिता की लाचारगी की वजह उसका बेटा है, जो न माँ की बात सुनने को तैयार है न तीन बहनों की। उसके दिलो दिमाग पर चांदनी छाई हुई है।
3: जो कुरैशी है हमारे यहाँ ठेले पे जूस बेचते शामली में, ये लोग मिल करके पिछले सप्ताह हमसे इन लोगों ने क्लेम किया कि साहब चूंकि शादी निकाह की हो गई है, संपत्ति में मेरा भी हिस्सा है, आप ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी बेटी के नाम कर दीजिए आप, जिससे कि बहू और आपके हमारी बेटी आपका बेटा लोग ठीक से रहे और आप भी कन्वर्ट हो जाए कि हमारे धर्म में आ जाइए आप लोग।
2: आपको पता है कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पे नजर थी किसी की?
4: किसकी?
2: किसी की थी।
4: किसकी थी सर?
2: चांदनी कुरैशी और उसके परिवार की।
4: ये आप टारगेट कर रहे हैं सर, ये आप उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो मेरी है इस पे, मैंने खुद भी कहा था आपको जो करना पेरेंट्स को अपने आप वो कर लो इस प्रॉपर्टी का, और ना उनके साथ कोई ऐसा मसला है, उन्होंने भी साफ मना कर रखा।
2: और किन किस किस मौलाना की आपने वीडियो देखी है इशरार अहमद के अलावा?
4: ऑल ओवर द वर्ल्ड के सभी मोटिवेशनल स्पीकर, रीजनल।
2: नाम बताइए दो चार।
4: डॉक्टर इशरार अहमद के मैं ज्यादा देखता था, ऐसे तो बस रैंडमली नाम नहीं याद रहते।
1: आमतौर पर धर्म परिवर्तन की खबरों में लोगों को लालच दिया जाता है, लेकिन शामली की कहानी पूरी तरह उल्टी है। यहाँ पर हिंदू नौजवान को मुसलमान बनाने के पीछे दावा है, उसकी संपत्ति पर कब्जा करके उसके पूरे परिवार को मुसलमान बनाने का मकसद।
0: रूप से उसका इतना उसे वो कर दिया गया कि वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। फिर भी मैं उसे बीच बीच में समय अंतराल, कुछ अंतराल पर बात करता रहा, बात करने से समाधान नहीं निकला।
1: शामली में धर्म परिवर्तन की ये कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये शहर के सबसे रईस परिवार से जुड़ी है, जिसकी प्रॉपर्टी की कीमत 100 करोड़ के आसपास बताई जाती है।
2: मैं शामली के उसी मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ जहाँ फिलहाल आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली रहता है। अगर आप ये देखेंगे तो इस मेडिकल स्टोर का नाम है भारत मेडिक शॉप, और ये जो प्रॉपर्टी है केवल यही ही प्रॉपर्टी 20 करोड़ से ज्यादा की मानी जाती है। और इस तरह की कई प्रॉपर्टी आयुष मलिक और उसके पिता की है। पुलिस की तहकीकात में ये सामने आया है कि इन्हीं प्रॉपर्टी को किसी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए पहले आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, फर्जी निकाहनामा भी तैयार किया गया था।
1: आयुष के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में जांच की, जिसमें यह बात सामने आती कि इस पूरे मामले के लिए एक फर्जी निकाहनामा तैयार किया गया, जिससे दावा है कि चांदनी कुरैशी और उसके परिवार ने मिलकर अंजाम दिया है।
3: फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गया है इसमें। अभी इसका जो भाई है, जो उसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है, और भी तमाम जो इसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने इस ढंग की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए, उन पर हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। जिम के माध्यम से फंसाए इसको, और इसकी दुकान पे लड़के जो काम कर रहे थे उसमें इसका एक भाई था, वो हेड ही था इनकी दुकान का, शोरूम का इसके आयुष के, उसने इसको प्रलोभन दिया।
1: शामली पुलिस का कहना है कि जब किसी का इस स्तर पर ब्रेन वॉश कर दिया जाता है तो उसे दोबारा डी रेडिकलाइज करना बेहद मुश्किल और चुनौती भरा होता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो SIT बनाई गई है वो हर पहलू पर बारीकी से काम कर रही है ताकि सुनियोजित रैकेट की तह तक पहुँचा जा सके। अरविंद ओझा, शामली आज तक।
5: और अब खबर नीट इम्तिहान से जुड़ी हुई। पिछली बार पेपर लीक की वजह से एग्जाम रद्द हो गया था, अब के 21 जून को परीक्षा होनी है, लेकिन इस बार पेपर लीक रोकने के लिए वायुसेना की मदद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ले रही है। दावा यह है कि नीट का पेपर ले जाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: सेना का वो हेलीकॉप्टर जो अब तक बाढ़ बारिश के खतरे के बीच वहां फंसे नागरिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता से उतरता रहा।

0: भारतीय वायुसेना की वो ताकत जो जंगलों की आग तक को बुझाने में इस्तेमाल होता आया है। कठिन से कठिन हालात में जिंदगी बचाने वाला भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर, जिसके जरिए अब की दावा है कि नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा में पेपर पहुंचाया जाएगा। सूत्र कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स देश भर के 18 जगहों से नीट की दोबारा परीक्षा में प्रश्न पत्र के पैकेट पहुंचाएगी, ताकि उनकी सुरक्षित और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। यानी 21 जून को इस बार नीट का जब पेपर होगा तो उसे MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुंचाया जा सकता है।
1: देश में पहली बार भारतीय वायुसेना नीट के रीटेस्ट के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाली है। पूरे देश में 18 रीजनल हब्स पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स प्रश्न पत्र पहुंचाएंगे। ये पैकेट्स को पूरी सुरक्षा के साथ इन रीजनल हब्स तक ड्रॉप करेंगे और उसके बाद इन रीजनल हब से सड़क के रास्ते एग्जामिनेशन सेंटर्स तक ये क्वेश्चन पेपर्स पहुंचाए जाएंगे। पहली बार देश के इतिहास में इस तरह की पहल हो रही है जब भारतीय वायुसेना किसी एग्जाम के लिए मदद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरी परीक्षा की निगरानी कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमाम दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर इसकी रिव्यू मीटिंग्स ले चुके हैं और अब भारतीय वायुसेना 18 अलग अलग रीजनल हब्स पर Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए इन पेपर्स को पहुंचाएगी। Mi-17 हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर फ्लीट के सबसे रिलायबल हेलीकॉप्टर्स हैं। बड़े विमानों से इन केंद्रों पर पहुंचना मुश्किल है, लिहाजा इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन पैकेट्स को जिनमें क्वेश्चन पेपर्स होंगे उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ इन एग्जामिनेशन सेंटर्स के रीजनल हब्स पर पहुंचाया जाएगा, जहां से इन्हें अलग अलग एग्जामिनेशन केंद्रों पर भेजा जाएगा।
0: नीट यूजी परीक्षा में केवल 12 दिन का समय बचा है, इसलिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ी तैयारी की बैठक पहले हो चुकी है। सरकार सवालों के लीक होने की किसी भी आशंका को खत्म करने के लिए एयरफोर्स की मदद से पेपर को अलग अलग शहरों तक पहुंचाने की योजना बना चुकी है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ऐसा क्या है कि एयरफोर्स की मदद से नीट का पेपर पहुंचाया जाएगा। दावा है कि नई व्यवस्था के तहत प्रश्न पत्रों को वायुसेना के जरिए सीधे प्रमुख केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद कड़ी निगरानी में उन्हें दूसरे एग्जाम सेंटर तक भेजा जाएगा। पेपर लीक होने की 3 सबसे बड़ी जगह होती हैं। पहली जहां से पेपर बनता है, दूसरा पेपर जहां छपता है, तीसरा रास्ते में पेपर लाने ले जाने के दौरान। इस बार नीट का पेपर चूंकि पेपर बनाने के दौरान ही लीक हुआ, तो उस रास्ते को नीट री एग्जाम में बंद करके बाकी 2 रास्तों को बंद करने की तैयारी NTA की है। इसीलिए एयरफोर्स के सख्त प्रोटोकॉल और सीमित बाहरी हस्तक्षेप के चलते सुरक्षा बढ़ाने की पूरी तैयारी की गई, जिससे लीक की गुंजाइश कहीं ना रहे। 22,89,000 बच्चों को दोबारा नीट का पेपर देना है। एक बार पेपर लीक हुआ, लाखों बच्चे टूट चुके हैं। इस बार एयरफोर्स की मदद से पेपर पहुंचाने की प्रक्रिया के जरिए ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि सरकार कहीं भी रत्ती भर भी चूक नहीं होने देना चाहती।
2: फिलीपींस में आए भूकंप से 32 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फिलीपींस में रिक्टर स्केल पर 7.8 का भूकंप आया था, जिसने भारी तबाही मचाई है। भूकंप भारतीय समय अनुसार सुबह 5 बजे आया, जो इस साल फिलीपींस में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। भूकंप के बाद सुनामी भी आई, सबसे ऊंची लहर करीब 4.5 फीट की रही।
0: फिलीपींस में भूकंप से ताश के पत्तों की तरह गिरती गई इमारतें। फिलीपींस में ढह गई स्कूल की बिल्डिंग। फिलीपींस में भूकंप से मिट्टी में मिला आलिशान मॉल। फिलीपींस का मिंडानाओ द्वीप, जहां भूकंप के रूप में तबाही ने ऐसी दस्तक दी, पूरी दुनिया डर गई, सहम गई, सहम गई। भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:07 पर फिलीपींस में इमारतें हिलने लगी। अब आप ही सोचिए, भूकंप के दौरान 36 मंजिला इस इमारत में 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने जमीन को इस कदर झकझोरा कि सब कुछ हिला दिया। भूकंप के तेज झटकों से एक वाटर टैंक से पानी बाहर गिरने लगा। जमीन के ऊपर सब कुछ हिलता है। ताश के पत्ते की तरह इमारतें भरभराकर मानो गिरती चली जाए। ये तस्वीर फिलीपींस के एक स्कूल की है, जिसमें पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भूकंप की कभी ना भूलने वाली यादों से रूबरू हुए। भूकंप आते ही बच्चे स्कूल परिसर में इकट्ठा हो गए। इस दौरान टीचर और स्कूल के स्टाफ ने बहादुरी से समझबूझ दिखाते हुए छोटे छोटे बच्चों को अपने पास बैठाए रखा। इस दौरान कुछ बच्चे और स्कूल का स्टाफ कैंपस में बने शेड के नीचे दुबके रहे। अचानक शेड हिलने लगता है और सबके सामने भरभराकर गिर पड़ता है। कुछ लोग उसमें से निकलकर भागने में कामयाब हो गए तो कई इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि ज्यादातर स्कूलों में प्रशासन ने भूकंप की चेतावनी के मद्देनजर बच्चों को खुली जगह पर इकट्ठा कर दिया। भूकंप की एक और डरावनी तस्वीर शॉपिंग मॉल की है, जिसकी इमारत भूकंप के झटकों को ज्यादा वक्त तक झेल नहीं पाई और गिर जाती है। इलाके की दूसरी इमारतों का भी वही हाल रहा। जमीन में मच रही तेज हलचलों ने इमारतों की नींव इस कदर हिला दी, एक के बाद एक इमारतें जमींदोज होती रही। धूल का गुबार चारों तरफ फैलता रहा। लोगों में चीख पुकार मची रही और सब बचने के लिए खुली जगहों पर भागते रहे। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने कई लोग दहशत में सड़क पर ही बैठ गए। कई लोग गाड़ियों को पकड़कर खड़े हो गए। अचानक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग ढह जाती। 5 सेकंड में इस इमारत का नाम निशान मिट गया। अपनी आंखों से इस विनाश लीला को देख रहे लोगों की चीखने की आवाजें तेज होती गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। भूकंप की तबाही दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर देखने को मिली, जहां सोमवार को 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे होने की वजह से भारी नुकसान देखने को मिला है। फिलीपींस के ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान ने बताया कि स्थानीय भूकंप के बाद 138 आफ्टरशॉक दर्ज किए गए। इन झटकों की तीव्रता 1.3 से 6.7 के बीच रही।
3: फिलीपींस की धरती एक बार फिर भीषण भूकंप से दहल उठी। करीब 7.8 तीव्रता का ये भूकंप बताया जा रहा है, जो सोमवार की सुबह फिलीपींस में आया सरंगनी इलाके के अंदर, और उसके बाद लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिलीपींस के लिए भूकंप कोई नई बात नहीं है। फिलीपींस दुनिया के नक्शे पर उस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मौजूद है, जिसे भूकंप और ज्वालामुखी के लिहाज से दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका कहा जाता है। लेकिन लगातार ये आ रही ये तस्वीरें लोगों को डराने वाली भी हैं, और जिस तरीके से वहां पर ये एक घंटे के भीतर लगातार भूकंप के झटके सामने आते रहे हैं, यानी मुख्य भूकंप के बाद लगातार आफ्टरशॉक्स पूरे फिलीपींस को भी दहला रहे हैं, और लगातार पूरे पूर्वी एशिया के अंदर इस बात की आशंका बढ़ गई है कि कहीं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक्टिवेट तो नहीं हो गई है, जिसके कारण पूरा इलाका एक बड़े प्राकृतिक आपदा की सद में आ सकता है।
0: भूकंप के बाद सुनामी भी आई। सबसे ऊंची लहर 4.6 फीट रही। एहतियात के तौर पर इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी सुनामी की चेतावनी जारी की, जिसे कुछ घंटों बाद वापस ले लिया गया।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: ममता की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट की आशंका, शताब्दी रॉय के घर बैठक, शुभेंदु अधिकारी भी रहे मौजूद। काकोली का दावा, हमारे साथ 20 सांसद भूपेंद्र यादव से भी मिला था नाराज सांसदों का दल। नीट पेपर लीक पर इंडिया गठबंधन का बड़ा दाव, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सर्वदलीय बैठक की मांग, सीजीआई को लिखेंगे पत्र, 5 सूत्री एजेंडा तय, बीजेपी ने विपक्ष पर उठाए सवाल। पटना में गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हुआ फैजल खान, फायरिंग मामले में लगातार दबिश दे रही है एसआईटी की टीम, पुलिस ने कोर्ट में सौंपी केस डायरी। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, पिघला स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत, मौके पर उठी आग की तेज लपटें। और ईरान इजराइल में युद्ध फिर से शुरू, तेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्ला की ओर से भी हमले, आईडीएफ ने इस्फहान पर किया जवाबी प्रहार। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी के हाथ से क्या पार्टी भी जाने वाली है? विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसद भी टूट रहे हैं। ममता के 20 सांसदों ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा आज टीएमसी के एक राज्यसभा सांसद ने भी इस्तीफा दे दिया।
1: जिस वक्त ममता बनर्जी विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटती हैं, ठीक उसी वक्त उन्हीं की पार्टी के सांसद बगावत की नई कहानी लिख रहे होते हैं। विधायकों के बाद अब टीएमसी के सांसदों ने भी ममता का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। मतलब जिस वक्त सोनिया गांधी से गले मिलकर ममता बनर्जी गठबंधन को मजबूत करने में जुटी थी, उसी वक्त टीएमसी में विद्रोह की नई पटकथा लिखी जाती है। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए का हिस्सा बनकर सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। सांसद और टीएमसी की पूर्व नेता काकोली घोष ने यह दावा किया कि 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। इस बारे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी भेज दिया गया है। बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन की जहां बैठक हो रही थी उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर ममता बनर्जी के 14 बागी सांसद दोपहर में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक करते हैं। इस दौरान सुबह ही टीएमसी के राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके सुखेंदु शेखर राय भी मौजूद रहे। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनसे मिलने पहुंचे। इसी बैठक में लोकसभा सांसद काकोली घोष, शताब्दी रॉय, अबू ताहिर, अरूप चक्रवर्ती, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, असित मल, कालीपत सोरेन, जगदीश बसुनिया और प्रसून बनर्जी भी मौजूद होते हैं।
2: एमपी हो या एमएलए हो, ये तृणमूल कांग्रेस से दीदी का सिंबल लेकर 2 दिन पहले दीदी दीदी दीदी दीदी आज क्या एनडीए के साथ, मैं सुन रहा हूँ तो ये क्या पॉलिटिक्स हुआ।
1: लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इससे पहले 3 जून को पश्चिम बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। इस गुट ने ऋतुव्रत को अपना नेता बनाया है। ये इत्तफाक नहीं है कि जब ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली में मौजूद होते हैं उसी मौके पर पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु भी दिल्ली पहुंचते हैं।
3: 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना। आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा।
1: इससे पहले राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर रॉय की तस्वीर सामने आई जिसमें वो टीएमसी के कुछ बागी लोकसभा सांसदों के साथ देखे जाते हैं। सुखेंदु ने इस्तीफे के बाद मीडिया से कहा कि पार्टी के कई लोग ममता के मनमाने ढंग से पार्टी चलाने से नाराज थे और इसीलिए इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 2029 तक का था, अब सीट खाली हो चुकी है, अब इस पर उपचुनाव कराया जा सकता है।
4: अभी तो मैं पार्टी से बाहर हूँ, हमारा पार्टी का जो हम जब पार्टी में थे उस समय वो लोग जो थे कोई इसका विचार विमर्श कुछ नहीं किया गया इतना, क्योंकि उसका पावर मस्तिष्क मथे में अंदर चला गया कि हमको कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया में। अरे भाई, आम जनता ने तुमको चुन के भेजा है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने तुमको नीचे गिरा दिया, अब देखो कैसे गिराया।
5: शुकेंदु दा का जो उन्होंने बोले है मैं मेजोरिटी जगह में उनके साथ एकमत हूँ, और खास करके जहां तक पार्लियामेंट का अपर हाउस का फंक्शनिंग था, शुकेंदु दा जो बोले है वो एकदम सही है।
1: इस बगावत ने तबाह और गंभीर रूप ले लिया है जब बागी सांसद शर्मिला सरकार ने एनडीए को समर्थन दिए जाने की घोषणा की है और कहा है कि वो मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष को बताने वाली है कि वही असली तृणमूल कांग्रेस है।
6: हम 20 लोग थे जो जमने सिग्नेचर किए हैं, तो हम लोग एक सिफारिश ब्लॉक मतलब किए हैं, हम लोगों का वॉइस यहाँ से मतलब सिफारिश ब्लॉक से उठ गया।
1: टीएमसी में विद्रोह का आलम ये कि जो नेता कल तक ममता बनर्जी को दीदी दीदी कहकर संबोधित करते थे वो अब खुलेआम उनका नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं। इसे ममता बनर्जी के सियासी कदमियाई कमी के तौर पर देखा जा रहा है।
5: 2/3 से ज्यादा एमपी साइन किए हैं, उसका मतलब है 20 एमपी मतलब 2/3 से ज्यादा, तो लोग क्यों किए हैं ये बोल नहीं पाऊंगा, मगर एक तानाशाही के खिलाफ लोगों का आवाज उठ रहा है और ये जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है।
7: सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी, तो टूट गया।
1: टीएमसी में 28 साल के इतिहास में पहली बार औपचारिक तौर पर टूट सामने आई है। पहले 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए, विधायक ऋतुव्रत बनर्जी को अपना नेता चुना, विधानसभा स्पीकर रतींद्र बोस को समर्थन पत्र दिया, इसमें मांग की गई कि ऋतुव्रत को नेता विपक्ष घोषित किया जाए, और अब ममता बनर्जी के 20 सांसदों ने दिल्ली में विद्रोह करके ममता को राजनीतिक रूप से सबसे कमजोर हालत में पहुंचा दिया है।
0: इंडिया गठबंधन फिर एकजुटता दिखाने के लिए जुटा और परसों यानी कि बुधवार को एनडीए गठबंधन अपनी ताकत दिखाने वाला है। उससे पहले इंडिया अलायंस ने मीटिंग की 5 मुद्दों पर सहमति बनाई, लेकिन आज तक के पास इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी भी है जिसमें पता ये चला है कि भीतर कई दलों ने कांग्रेस को लेकर सवाल किए हैं।
1: ममता बनर्जी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाती है, चुप मतलब एकदम चुप, शीशा बंद कर देती है, मीडिया के सवालों से बचती है। इससे कुछ देर पहले इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी सोनिया गांधी से गले मिलती हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान ममता बनर्जी को सोनिया गांधी के ठीक बगल में बैठाया जाता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में ममता बनर्जी बैठती हैं। इंडिया ब्लॉक की 2 साल बाद हुई 7वीं बैठक में 25 दलों के नेता शामिल होते हैं, 2 घंटे बैठक चलती है, 5 मुद्दों पर आपसी सहमति बनती है। पहला मुद्दा एसआईआर में करोड़ों वोटर के नाम कटे, एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर अब सीजीआई को इंडिया गठबंधन चिट्ठी लिखेगा। दूसरा मुद्दा नीट में देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ, नीट और सीबीएसई की गड़बड़ी के लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं, वो इस्तीफा दें। तीसरे मुद्दे पर जो आपसी सहमति इंडिया गठबंधन में बनी है वो ये कि सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। चौथा मुद्दा है कि हर 2 महीने पर अब इंडिया गठबंधन की मुलाकात होगी, अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी। और 5वां मुद्दा संसद में इंडिया गठबंधन का समन्वय जारी रहेगा, रोज नेता विपक्ष के दफ्तर में बैठक की जाएगी। विपक्षी गठबंधन की हालत इस बात से समझिए कि जिन 5 मुद्दों पर सहमति अगर बनी तो 2 मुद्दे यही हैं, बैठक बहुत लंबा टालो मत, समन्वय जल्दी करो। असल में विपक्षी गठबंधन की समस्या है समन्वय की, क्योंकि दिल्ली में ममता को गले लगाती कांग्रेस के विचार ममता को ही लेकर 1.5 महीने पहले क्या थे इसको आज याद करिए।
8: बीजेपी को मौका कौन दे रहा है? तृणमूल कांग्रेस दे रही है। तृणमूल कांग्रेस भी अपने काम में लगी हुई है, वो भी बंगाल के लिए काम नहीं कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट हैं, तो तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। बंगाल की जनता का फायदा नहीं होता है, यहां पे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का जो सिंडिकेट है उसको ये 24 घंटा पैसा देते रहते हैं, हिंसा फैलाते हैं, मारपीट करते हैं और झूठे वायदे। ममता जी ने बंगाल की पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। महिलाओं की बात करें तो आरजी कार रेप एंड मर्डर केस की भी बात करनी होगी।
1: जिन ममता के खिलाफ बंगाल में नाम लेकर राहुल गांधी भ्रष्टाचार से लेकर महिला अपराध तक पर घेरते रहे, उसी पश्चिम बंगाल में अब उन्हीं ममता बनर्जी के पास जब न सत्ता बच रही न पार्टी बचती नजर आ रही, तो इंडिया गठबंधन बैठक करके ये कहता है कि चुनाव SIR और वोट चोरी से हार रहे हैं।
9: SIR मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा।
10: पहले यही सब बैठक स्टेडियम में होती थी, आप सब देखे होंगे कैसे बेंगलुरु के स्टेडियम में एक दूसरे के हाथ पकड़ करके सभी लोग खड़े थे। धीरे धीरे अब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक रूम में होती है। उन्होंने कहा कि SIR हुआ, वोट चोरी हुई। मुझे तो समझ में नहीं आता है ये एक ही टेप रिकॉर्डर ये कब से चला रहे हैं। मगर SIR तो तमिलनाडु में भी हुआ, SIR तो केरल में भी हुआ। तमिलनाडु में आप झटपट से वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर ली और सरकार बना लिया। और DMK वहां बोल रही है यहां तो वोट चोरी नहीं, यहां तो LI ही चोरी हो गई, वहां तो LI चोरी हो गई। केरल में आपने सरकार बना लिया तो SIR को कोस नहीं रहे, बंगाल में हार गए तो SIR का रोना रो रहे। तो ये जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है ये सब हम और हिंदुस्तान देख रहा है।
1: बीजेपी इंडिया गठबंधन की बैठक को अस्तित्व बचाओ मोर्चा तक कहती है।
10: अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है।
1: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर सवाल राहुल गांधी भी उठा रहे थे। तमिलनाडु में कांग्रेस चुनाव हारी तो DMK से अलग होकर TVK के साथ सरकार बना ली। केरल में लेफ्ट पर चुन चुन कर वार करके ही कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद जब इंडिया गठबंधन की बैठक होती है तो दावा है कि भीतर कांग्रेस पर उन्हीं के साथ ही सवाल उठाते हैं। कई पार्टियों ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं के बीच तालमेल की कमी का सवाल उठाया। कुछ दलों ने कांग्रेस पर इसलिए सवाल उठाया कि वो अपने ही साथियों पर राज्य के चुनाव में तीखे आरोप लगाकर वोट मांगती है। दावा कि सबसे पहले अखिलेश ने ये बात उठाई और फिर बाकी नेताओं खासकर लेफ्ट के दलों ने ये बात कही है। इस पर राहुल गांधी ने जवाब ये दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर हम साथ हैं, लेकिन जब मेरे राज्य इकाई के नेता मुझे हालात और चुनाव प्रचार के बारे में बताते हैं तो मुझे उनकी बात भी सुननी पड़ती है।
11: इंडिया गठबंधन ऐसे चलना है तो कांग्रेस के ओर से कुछ एडजस्टमेंट होना चाहिए, ये अभी तक हुआ नहीं। केरल में वो खतरनाक काम किया, अलग अलग राज्यों में वो किया, पुदुचेरी में वो काम किया, अपना अलाइस को खत्म करने के लिए वो कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा सोच चाहिए।
12: वी हैव आवर सीरियस रिजर्वेशंस विद रिगार्ड टू कांग्रेस पार्टीज कॉन्टेक्ट एंड अप्रोच, वी विल रेज दोस इश्यूज इन द मीटिंग अनडाउटेडली। आवर जनरल सेक्रेटरी आल्सो हैज रिटन अ लेटर।
1: कांग्रेस के तरीकों पर उन्हीं के गठबंधन के लोगों ने मीटिंग के पहले से लेकर मीटिंग के बाद तक सवाल उठाया। समन्वय यानी आपसी साथ कितना है इसका सबूत देख लीजिए पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी वाले युवाओं के साथ प्रदर्शन पर, जहां कांग्रेस के नेता प्रश्न उठाते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की मीटिंग में उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि अगर मुद्दा समान हो तो आंदोलन का समर्थन किया जाना चाहिए। DMK से कांग्रेस के अलग होने पर भी सवाल उठा है। दावा के एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा कि DMK का गठबंधन में ना होना चिंताजनक है। अखिलेश यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि हम वो नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ दे। पिछले साल दिल्ली चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की रणनीति और नेतृत्व तक पर शिवसेना UBT के नेता सवाल उठाते आए।
13: जो भी डिफरेंसेस है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंसेस हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म है।
1: आपसी डिफरेंस ही इंडिया गठबंधन की वो कमजोर नब्ज है जिसे मीटिंग से पहले दिल्ली में ऐसे लगे पोस्टर से पुरजोर दबाने की कोशिश की गई। ऐसे पोस्टर जिस पर ये नहीं लिखा था कि किसने लगवाया, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते इंडिया गठबंधन के ही नेताओं के पुराने बयान इन पोस्टर पर दिखाए गए, जिन्हें बाद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आकर हटा दिया। पोस्टर तो हट गया, अब हर दो महीने पर मीटिंग करके आपसी समन्वय सुधारने की बात भी कर ली गई, लेकिन सवाल है कब तक। उत्तर प्रदेश का मोर्चा खुलने वाला है, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लोकसभा जैसी एकता दिखेगी या फिर चार दिन की एकता और फिर वही आपसी विवाद चलता रहेगा।
0: अब वो खबर जो बड़ी चिंता पैदा करती है। उत्तर प्रदेश के शामली में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया जिसमें आयुष मलिक नाम का एक हिंदू नौजवान मोहम्मद अली बन गया। आयुष के पिता ने बेटे के धर्मांतरण का आरोप चांदनी कुरैशी नाम की जिम ट्रेनर पर लगाया है। आयुष के परिवार का कहना यह है कि जब उन्होंने बेटे के धर्म परिवर्तन का विरोध किया तो चांदनी के परिवार ने उन पर भी धर्म बदलने का दबाव बनाया।
14: जब मैंने FIR दर्ज की पुलिस प्रशासन में तो इसके बाद पता लगा कि उसके बाद आप मोहम्मद अली बता रहे, कोई रहमान बता रहा, कोई कुर्बान बता रहा, मुझे तो कुछ नहीं, मेरे लिए तो आयुष मलिक है। इस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह।
1: उत्तर प्रदेश का शामली, यहाँ पर एक करोड़पति हिंदू परिवार का इकलौता लड़का आयुष मलिक मुसलमान बनकर मोहम्मद अली हो जाता है। इस धर्म परिवर्तन के बाद एक जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी सवालों के घेरे में आती है, जिस पर आयुष मलिक के दवा कारोबारी पिता आरोप लगाते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए चांदनी कुरैशी ने उनके बेटे को प्यार के जाल में फंसाकर मुसलमान बनाकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया।
14: चांदनी नामक एक लड़की ने चांदनी कुरैशी उस लड़के को प्रेम जाल में फंसा और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे मौलवियों का और बाह्य लोगों का कुछ जो अंतर्राज्यीय स्तर पे काम कर रहे और अपने परिवार से सभी से वो करके उसको ब्रेन वॉश किया।
1: खबरदार करता सवाल है कि क्या करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए एक हिंदू नौजवान को मुसलमान बना दिया गया ताकि उसके परिवार को भी आगे जाकर हिंदू से मुस्लिम बनाकर प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जा सके।
14: ब्रेन वॉश करने के बाद उसका मुख्य उद्देश्य ये था, लड़के तो उसके समुदाय में भी बहुत मिलते, इससे भी स्मार्ट मिल जाते, लेकिन उसकी निगाह एक नामचीन बच्चे पे थी। चूंकि आयुष के पास नाम काम दाम सब चीज पर्याप्त मात्रा में है और तो उन्होंने इसे ब्रेन वॉश करके मौलवी वगैरह वगैरह और फर्जी दस्तावेज करके शादी का निकाहनामा फर्जी निकाहनामा करा कर और उसकी संपत्ति हड़पने का मामला मेरे संज्ञान में जो स्थानीय स्तर पर मैं अपनी जानकारी से अपने ईस्ट मिस्ट घनिष्ठ से जो बात पता लगाई, मुख्य उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का है।
1: आयुष मलिक का परिवार शामली के संपन्न लोगों में से एक है। मेडिकल होलसेल की इसी दुकान पर आयुष मलिक बैठता था। दुकान के ऊपर ही रहने का घर भी है। आयुष के पिता का दावा है कि चांदनी नाम की जिम ट्रेनर फर्जी निकाह के आधार पर अब इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करने का दबाव डाल रही है।
15: कैसा लड़का था आयुष बचपन में? कैसे?
14: आयुष स्वभाव से बहुत ही बढ़िया, जिसे लोग ये कहते हैं कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बहुत संस्कारिक, बहुत मेहनती, बहुत निष्ठावान, बहुत ही मिलनसार और हर तरह से ईमानदार, सब खूबियां उसमें थी जितने एक बच्चे में हूँ। इस चांदनी कुरैशी ने मेरे घर का प्रॉपर्टी के चक्कर में और मेरा सब घर बर्बाद कर दिया।
1: शामली के इस पिता की लाचारगी की वजह उसका बेटा है, जो न माँ की बात सुनने को तैयार है न तीन बहनों की। उसके दिलो दिमाग पर चांदनी छाई हुई है।
16: जो कुरैशी है हमारे यहाँ ठेले पे जूस बेचते शामली में, ये लोग मिल करके पिछले सप्ताह हमसे इन लोगों ने क्लेम किया कि साहब चूंकि शादी निकाह की हो गई है, संपत्ति में मेरा भी हिस्सा है, आप ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी बेटी के नाम कर दीजिए आप, जिससे कि बहू और आपके हमारी बेटी आपका बेटा लोग ठीक से रहे और आप भी कन्वर्ट हो जाए कि हमारे धर्म में आ जाइए आप लोग।
15: आपको पता है कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पे नजर थी किसी की?
17: किसकी?
15: किसी की थी।
17: किसकी थी सर?
15: चांदनी कुरैशी और उसके परिवार की।
17: ये आप टारगेट कर रहे हैं सर, ये आप उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो मेरी है इस पे, मैंने खुद भी कहा था आपको जो करना पेरेंट्स को अपने आप वो कर लो इस प्रॉपर्टी का, और ना उनके साथ कोई ऐसा मसला है, उन्होंने भी साफ मना कर रखा।
15: और किस किस मौलाना की आपने वीडियो देखी है इशरार अहमद के अलावा?
17: ऑल ऑफ द वर्ल्ड के सभी मोटिवेशनल स्पीकर रीजनल।
15: नाम बताइए दो चार।
17: डॉक्टर इशरार अहमद के मैं ज्यादा देखता था, ऐसे तो रैंडमली नाम नहीं याद रहते।
1: आमतौर पर धर्म परिवर्तन की खबरों में लोगों को लालच दिया जाता है, लेकिन शामली की कहानी पूरी तरह उल्टी है। यहाँ पर हिंदू नौजवान को मुसलमान बनाने के पीछे दावा है उसकी संपत्ति पर कब्जा करके उसके पूरे परिवार को मुसलमान बनाने का मकसद।
14: रूप से उसका इतना उसे वो कर दिया गया कि वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। फिर भी मैं उसे बीच बीच में समय अंतराल कुछ अंतराल पर बात करता रहा, बात करने से समाधान नहीं निकला।
1: शामली में धर्म परिवर्तन की यह कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये शहर के सबसे रईस परिवार से जुड़ी है जिसकी प्रॉपर्टी की कीमत 100 करोड़ के आसपास बताई जाती है।
18: मैं शामली के उसी मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ जहाँ फिलहाल आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली रहता है। अगर आप ये देखेंगे तो इस मेडिकल स्टोर का नाम है भारत मेडिक शॉप और ये जो प्रॉपर्टी है केवल यही ही प्रॉपर्टी 20 करोड़ से ज्यादा की मानी जाती है और इस तरह की कई प्रॉपर्टी आयुष मलिक और उसके पिता की है। पुलिस की तहकीकात में ये सामने आया है कि इन्हीं प्रॉपर्टी को किसी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए पहले आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, फर्जी निकाहनामा भी तैयार किया गया था।
1: आयुष के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में जांच की जिसमें यह बात सामने आती कि इस पूरे मामले के लिए एक फर्जी निकाहनामा तैयार किया गया जिससे दावा है कि चांदनी कुरैशी और उसके परिवार ने मिलकर अंजाम दिया है।
16: फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गया है। इसमें अभी इसका जो भाई है जो उसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है और भी तमाम जो इसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व है जिन्होंने इस ढंग की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए, उन पे हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। टीम के माध्यम से फंसाए इसको और इसकी दुकान पे लड़के जो काम कर रहे थे उसमें इसका एक भाई था, वो हेड ही था इनकी दुकान का, शोरूम का इसके आयुष के, उसने इसको प्रलोभन दिया।
1: शामली पुलिस का कहना है कि जब किसी का इस स्तर पर ब्रेन वॉश कर दिया जाता है तो उसे दोबारा डी रेडिकलाइज करना बेहद मुश्किल और चुनौती भरा होता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो SIT बनाई गई है वो हर पहलू पर बारीकी से काम कर रही है ताकि सुनियोजित रैकेट की तह तक पहुंचा जा सके। अरविंद ओझा, शामली आज तक।
0: फिलीपींस में आए भूकंप से 32 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फिलीपींस में रिक्टर स्केल पर 7.8 का भूकंप आया था जिसने भारी तबाही मचाई है। भूकंप भारतीय समयानुसार सुबह 5 बजे आया जो इस साल फिलीपींस में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। भूकंप के बाद सुनामी भी आई, सबसे ऊंची लहर करीब 4.5 फीट की रही।
1: फिलीपींस में भूकंप से ताश की पत्तों की तरह गिरती गई इमारतें। फिलीपींस में ढह गई स्कूल की बिल्डिंग। फिलीपींस में भूकंप से मिट्टी में मिला आलिशान मॉल। फिलीपींस का मिंडानाओ द्वीप जहां भूकंप के रूप में तबाही ने ऐसी दस्तक दी, पूरी दुनिया डर गई, सहम गई। भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:07 पर फिलीपींस में इमारतें हिलने लगी। अब आप ही सोचिए भूकंप के दौरान 36 मंजिला इस इमारत में रहने वाले लोगों की क्या हालत हुई होगी। भूकंप से आप इस इमारत को हिलते हुए देख सकते हैं। 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने जमीन को इस कदर झकझोरा कि सब कुछ हिला दिया। भूकंप के तेज झटकों से एक वाटर टैंक से पानी बाहर गिरने लगा। जमीन के ऊपर सब कुछ हिलता है, ताश के पत्ते की तरह इमारतें भरभराकर मानो गिरती चली गई। ये तस्वीर फिलीपींस के एक स्कूल की है जिसमें पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भूकंप की कभी ना भूलने वाली यादों से रूबरू हुए। भूकंप आते ही बच्चे स्कूल परिसर में इकट्ठा हो गए। इस दौरान टीचर और स्कूल के स्टाफ ने बहादुरी से समझबूझ दिखाते हुए छोटे छोटे बच्चों को अपने पास बैठाए रखा। इस दौरान कुछ बच्चे और स्कूल का स्टाफ कैंपस में बने शेड के नीचे दुबके रहे। अचानक शेड हिलने लगता है और सबके सामने भरभरा कर गिर पड़ता है। कुछ लोग उसमें से निकल कर भागने में कामयाब हो गए तो कई इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि ज्यादातर स्कूलों में प्रशासन ने भूकंप की चेतावनी के मद्देनजर बच्चों को खुली जगह पर इकट्ठा कर दिया था। भूकंप की एक और डरावनी तस्वीर शॉपिंग मॉल की है जिसकी इमारत भूकंप के झटकों को ज्यादा वक्त तक झेल नहीं पाई और गिर जाती है। इलाके की दूसरी इमारतों का भी वही हाल रहा। जमीन में मच रही तेज हलचलों ने इमारतों की नींव इस कदर हिला दी, एक के बाद एक इमारतें जमीन दोज होती रही। धूल का गुबार चारों तरफ फैलता रहा। लोगों में चीख पुकार मची रही और सब बचने के लिए खुली जगहों पर भागते रहे। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने कई लोग दहशत में सड़क पर ही बैठ गए। कई लोग गाड़ियों को पकड़ कर खड़े हो गए। अचानक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग ढह जाती। 5 सेकंड में इस इमारत का नाम निशान मिट गया। अपनी आंखों से इस विनाश लीला को देख रहे लोगों की चीखने की आवाजें तेज होती गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। भूकंप की तबाही दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर देखने को मिली, जहां सोमवार को 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे होने की वजह से भारी नुकसान देखने को मिला है। फिलीपींस के ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान ने बताया कि स्थानीय भूकंप के बाद 138 आफ्टरशॉक दर्ज किए गए। इन झटकों की तीव्रता 1.3 से 6.7 के बीच रही।
19: फिलीपींस की धरती एक बार फिर भीषण भूकंप से दहल उठी। करीब 7.8 तीव्रता का ये भूकंप बताया जा रहा है, जो सोमवार की सुबह फिलीपींस में आया सरंगरी इलाके के अंदर, और उसके बाद लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिलीपींस के लिए भूकंप कोई नई बात नहीं है। फिलीपींस दुनिया के नक्शे पर उस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मौजूद है जिसे भूकंप और ज्वालामुखी के लिहाज से दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका कहा जाता है। लेकिन लगातार ये आ रही ये तस्वीरें लोगों को डराने वाली भी हैं, और जिस तरीके से वहां पर ये 1 घंटे के भीतर लगातार भूकंप के झटके सामने आते रहे हैं, यानी मुख्य भूकंप के बाद लगातार आफ्टरशॉक्स पूरे फिलीपींस को भी दहला रहे हैं, और लगातार पूरे पूर्वी एशिया के अंदर इस बात की आशंका बढ़ गई है कि कहीं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक्टिवेट तो नहीं हो गई है, जिसके कारण पूरा इलाका एक बड़े प्राकृतिक आपदा की सद में आ सकता है।
1: भूकंप के बाद सुनामी भी आई। सबसे ऊंची लहर 4.6 फीट रही। एहतियात के तौर पर इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी सुनामी की चेतावनी जारी की, जिसे कुछ घंटों बाद वापस ले लिया गया।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: ममता की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट की आशंका, शताब्दी रॉय के घर बैठक, शुभेंदु अधिकारी भी रहे मौजूद। काकोली का दावा, हमारे साथ 20 सांसद भूपेंद्र यादव से भी मिला था नाराज सांसदों का दल। नीट पेपर लीक पर इंडिया गठबंधन का बड़ा दाव, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सर्वदलीय बैठक की मांग, सीजीआई को लिखेंगे पत्र, 5 सूत्री एजेंडा तय, बीजेपी ने विपक्ष पर उठाए सवाल। पटना में गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हुआ फैजल खान, फायरिंग मामले में लगातार दबिश दे रही है एसआईटी की टीम, पुलिस ने कोर्ट में सौंपी केस डायरी। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, पिघला स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत, मौके पर उठी आग की तेज लपटें। और ईरान इजराइल में युद्ध फिर से शुरू, तेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्ला की ओर से भी हमले, आईडीएफ ने इस्फहान पर किया जवाबी प्रहार। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी के हाथ से क्या पार्टी भी जाने वाली है? विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसद भी टूट रहे हैं। ममता के 20 सांसदों ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा आज टीएमसी के एक राज्यसभा सांसद ने भी इस्तीफा दे दिया।
1: जिस वक्त ममता बनर्जी विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटती हैं, ठीक उसी वक्त उन्हीं की पार्टी के सांसद बगावत की नई कहानी लिख रहे होते हैं। विधायकों के बाद अब टीएमसी के सांसदों ने भी ममता का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। मतलब जिस वक्त सोनिया गांधी से गले मिलकर ममता बनर्जी गठबंधन को मजबूत करने में जुटी थी, उसी वक्त टीएमसी में विद्रोह की नई पटकथा लिखी जाती है। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए का हिस्सा बनकर सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। सांसद और टीएमसी की पूर्व नेता काकोली घोष ने यह दावा किया कि 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। इस बारे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी भेज दिया गया है। बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन की जहां बैठक हो रही थी उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर ममता बनर्जी के 14 बागी सांसद दोपहर में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक करते हैं। इस दौरान सुबह ही टीएमसी के राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके सुखेंदु शेखर राय भी मौजूद रहे। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनसे मिलने पहुंचे। इसी बैठक में लोकसभा सांसद काकोली घोष, शताब्दी रॉय, अबू ताहिर, अरूप चक्रवर्ती, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, असित मल, कालीपत सोरेन, जगदीश बसुनिया और प्रसून बनर्जी भी मौजूद होते हैं।
2: एमपी हो या एमएलए हो, ये तृणमूल कांग्रेस से दीदी का सिंबल लेकर 2 दिन पहले दीदी दीदी दीदी दीदी आज क्या एनडीए के साथ मैं सुन रहा हूँ, तो ये क्या पॉलिटिक्स हुआ?
1: लोकसभा में टीएमसी के भी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इससे पहले 3 जून को पश्चिम बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। इस गुट ने ऋतुव्रत को अपना नेता बनाया है। ये इत्तेफाक नहीं है कि जब ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली में मौजूद होते हैं उसी मौके पर पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु भी दिल्ली पहुंचते हैं।
3: 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना। आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा।
1: इससे पहले राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर रॉय की तस्वीर सामने आई जिसमें वो टीएमसी के कुछ बागी लोकसभा सांसदों के साथ देखे जाते हैं। सुखेंदु ने इस्तीफे के बाद मीडिया से कहा कि पार्टी के कई लोग ममता के मनमाने ढंग से पार्टी चलाने से नाराज थे और इसीलिए इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 2029 तक का था, अब सीट खाली हो चुकी है, अब इस पर उपचुनाव कराया जा सकता है।
4: अभी तो मैं पार्टी से बाहर हूँ, हमारा पार्टी का जो हम जब पार्टी में थे उस समय वो लोग जो थे कोई इसका विचार विमर्श कुछ नहीं किया गया इतना, क्योंकि उसका पावर मस्तिष्क मथे में अंदर चला गया कि हमको कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया में। अरे भाई, आम जनता ने तुमको चुन के भेजा है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने तुमको नीचे गिरा दिया, अब देखो कैसे गिराया।
5: शुकेंदु दा का जो उन्होंने बोले है मैं मेजोरिटी जगह में उनके साथ एकमत हूँ, और खास करके जहां तक पार्लियामेंट का अपर हाउस का फंक्शनिंग था, शुकेंदु दा जो बोले है वो एकदम सही है।
1: इस बगावत ने तबाह और गंभीर रूप ले लिया है जब बागी सांसद शर्मिला सरकार ने एनडीए को समर्थन दिए जाने की घोषणा की है और कहा है कि वो मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष को बताने वाली है कि वही असली तृणमूल कांग्रेस है।
6: हम 20 लोग थे जो जिनमें सिग्नेचर किए हैं, तो हम लोग एक सिफारिश ब्लॉक मतलब किए हैं, हम लोगों का वॉइस यहाँ से मतलब सेपरेट ब्लॉक से उठ गया।
1: टीएमसी में विद्रोह का आलम ये कि जो नेता कल तक ममता बनर्जी को दीदी दीदी कहकर संबोधित करते थे वो अब खुलेआम उनका नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं। इसे ममता बनर्जी के सियासी कद में आई कमी के तौर पर देखा जा रहा है।
5: 2/3 से ज्यादा एमपी साइन किए हैं, उसका मतलब है 20 एमपी मतलब 2/3 से ज्यादा। वो लोग क्यों किए हैं ये बोल नहीं पाऊंगा, मगर एक तानाशाही के खिलाफ लोगों का आवाज उठ रहा है और ये जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है।
7: सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी, टूट गया।
1: टीएमसी में 28 साल के इतिहास में पहली बार औपचारिक तौर पर टूट सामने आई है। पहले 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए, विधायक ऋतुव्रत बनर्जी को अपना नेता चुना, विधानसभा स्पीकर रतींद्र बोस को समर्थन पत्र दिया, इसमें मांग की गई कि ऋतुव्रत को नेता विपक्ष घोषित किया जाए, और अब ममता बनर्जी के 20 सांसदों ने दिल्ली में विद्रोह करके ममता को राजनीतिक रूप से सबसे कमजोर हालत में पहुंचा दिया है।
0: इंडिया गठबंधन फिर एकजुटता दिखाने के लिए जुटा और परसों यानी कि बुधवार को एनडीए गठबंधन अपनी ताकत दिखाने वाला है। उससे पहले इंडिया अलायंस ने मीटिंग की 5 मुद्दों पर सहमति बनाई, लेकिन आज तक के पास इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी भी है जिसमें पता ये चला है कि भीतर कई दलों ने कांग्रेस को लेकर सवाल किए हैं।
1: ममता बनर्जी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाती है, चुप मतलब एकदम चुप, शीशा बंद कर देती है, मीडिया के सवालों से बचती है। इससे कुछ देर पहले इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी सोनिया गांधी से गले मिलती हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान ममता बनर्जी को सोनिया गांधी के ठीक बगल में बैठाया जाता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में ममता बनर्जी बैठती हैं। इंडिया ब्लॉक की 2 साल बाद हुई 7वीं बैठक में 25 दलों के नेता शामिल होते हैं, 2 घंटे बैठक चलती है, 5 मुद्दों पर आपसी सहमति बनती है। पहला मुद्दा एसआईआर में करोड़ों वोटर के नाम कटे, एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर अब सीजीआई को इंडिया गठबंधन चिट्ठी लिखेगा। दूसरा मुद्दा नीट में देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ, नीट और सीबीएसई की गड़बड़ी के लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं, वो इस्तीफा दें। तीसरे मुद्दे पर जो आपसी सहमति इंडिया गठबंधन में बनी है वो ये कि सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। चौथा मुद्दा है कि हर 2 महीने पर अब इंडिया गठबंधन की मुलाकात होगी, अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी। और 5वां मुद्दा संसद में इंडिया गठबंधन का समन्वय जारी रहेगा, रोज नेता विपक्ष के दफ्तर में बैठक की जाएगी। विपक्षी गठबंधन की हालत इस बात से समझिए कि जिन 5 मुद्दों पर सहमति अगर बनी तो 2 मुद्दे यही हैं, बैठक बहुत लंबा टालो मत, समन्वय जल्दी करो। असल में विपक्षी गठबंधन की समस्या है समन्वय की, क्योंकि दिल्ली में ममता को गले लगाती कांग्रेस के विचार ममता को ही लेकर 1.5 महीने पहले क्या थे इसको आज याद करिए।
8: बीजेपी को मौका कौन दे रहा है? तृणमूल कांग्रेस दे रही है। तृणमूल कांग्रेस भी अपने काम में लगी हुई है, वो भी बंगाल के लिए काम नहीं कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट हैं, तो तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। बंगाल की जनता का फायदा नहीं होता है, यहां पे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का जो सिंडिकेट है उसको ये 24 घंटा पैसा देते रहते हैं, हिंसा फैलाते हैं, मारपीट करते हैं और झूठे वायदे। ममता जी ने बंगाल की पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। महिलाओं की बात करें तो आरजी कार रेप एंड मर्डर केस की भी बात करनी होगी।
1: जिन ममता के खिलाफ बंगाल में नाम लेकर राहुल गांधी भ्रष्टाचार से लेकर महिला अपराध तक पर घेरते रहे, उसी पश्चिम बंगाल में अब उन्हीं ममता बनर्जी के पास जब न सत्ता बच रही न पार्टी बचती नजर आ रही, तो इंडिया गठबंधन बैठक करके ये कहता है कि चुनाव SIR और वोट चोरी से हार रहे हैं।
9: SIR मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा।
10: पहले यही सब बैठक स्टेडियम में होती थी, आप सब देखे होंगे कैसे बेंगलुरु के स्टेडियम में एक दूसरे के हाथ पकड़ करके सभी लोग खड़े थे। धीरे धीरे अब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक रूम में होती है। उन्होंने कहा कि SIR हुआ, वोट चोरी हुई। मुझे तो समझ में नहीं आता है ये एक ही टेप रिकॉर्डर ये कब से चला रहे हैं। मगर SIR तो तमिलनाडु में भी हुआ, SIR तो केरल में भी हुआ। तमिलनाडु में आप झटपट से वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर ली और सरकार बना लिया। और DMK वहां बोल रही है यहां तो वोट चोरी नहीं, यहां तो LI ही चोरी हो गई, वहां तो LI चोरी हो गई। केरल में आपने सरकार बना लिया तो SIR को कोस नहीं रहे, बंगाल में हार गए तो SIR का रोना रो रहे। तो ये जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है ये सब हम और हिंदुस्तान देख रहा है।
1: बीजेपी इंडिया गठबंधन की बैठक को अस्तित्व बचाओ मोर्चा तक कहती है।
10: अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है।
1: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर सवाल राहुल गांधी भी उठा रहे थे। तमिलनाडु में कांग्रेस चुनाव हारी तो DMK से अलग होकर TVK के साथ सरकार बना ली। केरल में लेफ्ट पर चुन चुन कर वार करके ही कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद जब इंडिया गठबंधन की बैठक होती है तो दावा है कि भीतर कांग्रेस पर उन्हीं के साथ ही सवाल उठाते हैं। कई पार्टियों ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं के बीच तालमेल की कमी का सवाल उठाया। कुछ दलों ने कांग्रेस पर इसलिए सवाल उठाया कि वो अपने ही साथियों पर राज्य के चुनाव में तीखे आरोप लगाकर वोट मांगती है। दावा कि सबसे पहले अखिलेश ने ये बात उठाई और फिर बाकी नेताओं, खासकर लेफ्ट के दलों ने ये बात कही है। इस पर राहुल गांधी ने जवाब ये दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर हम साथ हैं, लेकिन जब मेरे राज्य इकाई के नेता मुझे हालात और चुनाव प्रचार के बारे में बताते हैं तो मुझे उनकी बात भी सुननी पड़ती है।
11: इंडिया गठबंधन ऐसे चलना है तो कांग्रेस के ओर से कुछ एडजस्टमेंट होना चाहिए, ये अभी तक हुआ नहीं। केरल में वो खतरनाक काम किया, अलग अलग राज्यों में वो किया, पुदुचेरी में वो काम किया, अपना अलाइस को खत्म करने के लिए वो कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा सोच चाहिए।
12: वी हैव आवर सीरियस रिजर्वेशंस विद रिगार्ड टू कांग्रेस पार्टीज कॉन्टेक्ट एंड अप्रोच, वी विल रेज दोस इश्यूज इन द मीटिंग अनडाउटेडली। आवर जनरल सेक्रेटरी आल्सो हैज रिटन अ लेटर।
1: कांग्रेस के तरीकों पर उन्हीं के गठबंधन के लोगों ने मीटिंग के पहले से लेकर मीटिंग के बाद तक सवाल उठाया। समन्वय यानी आपसी साथ कितना है, इसका सबूत देख लीजिए पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी वाले युवाओं के साथ प्रदर्शन पर, जहां कांग्रेस के नेता प्रश्न उठाते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की मीटिंग में उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि अगर मुद्दा समान हो तो आंदोलन का समर्थन किया जाना चाहिए। DMK से कांग्रेस के अलग होने पर भी सवाल उठा है। दावा के एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा कि DMK का गठबंधन में ना होना चिंताजनक है। अखिलेश यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि हम वो नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ दे। पिछले साल दिल्ली चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की रणनीति और नेतृत्व तक पर शिवसेना UBT के नेता सवाल उठाते आए।
13: जो भी डिफरेंसेस है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंसेस हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म है।
1: आपसी डिफरेंस ही इंडिया गठबंधन की वो कमजोर नब्ज है जिसे मीटिंग से पहले दिल्ली में ऐसे लगे पोस्टर से पुरजोर दबाने की कोशिश की गई। ऐसे पोस्टर जिस पर ये नहीं लिखा था कि किसने लगवाया, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते इंडिया गठबंधन के ही नेताओं के पुराने बयान इन पोस्टर पर दिखाए गए, जिन्हें बाद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आकर हटा दिया। पोस्टर तो हट गया, अब हर दो महीने पर मीटिंग करके आपसी समन्वय सुधारने की बात भी कर ली गई, लेकिन सवाल है कब तक। उत्तर प्रदेश का मोर्चा खुलने वाला है, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लोकसभा जैसी एकता दिखेगी या फिर चार दिन की एकता और फिर वही आपसी विवाद चलता रहेगा।
0: अब वो खबर जो बड़ी चिंता पैदा करती है। उत्तर प्रदेश के शामली में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया जिसमें आयुष मलिक नाम का एक हिंदू नौजवान मोहम्मद अली बन गया। आयुष के पिता ने बेटे के धर्मांतरण का आरोप चांदनी कुरैशी नाम की जिम ट्रेनर पर लगाया है। आयुष के परिवार का कहना यह है कि जब उन्होंने बेटे के धर्म परिवर्तन का विरोध किया तो चांदनी के परिवार ने उन पर भी धर्म बदलने का दबाव बनाया।
14: जब मैंने FIR दर्ज की पुलिस प्रशासन में तो इसके बाद पता लगा कि उसके बाद आप मोहम्मद अली बता रहे, कोई रहमान बता रहा, कोई कुर्बान बता रहा, मुझे तो कुछ नहीं, मेरे लिए तो आयुष मलिक है। इस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह।
1: उत्तर प्रदेश का शामली, यहाँ पर एक करोड़पति हिंदू परिवार का इकलौता लड़का आयुष मलिक मुसलमान बनकर मोहम्मद अली हो जाता है। इस धर्म परिवर्तन के बाद एक जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी सवालों के घेरे में आती है, जिस पर आयुष मलिक के दवा कारोबारी पिता आरोप लगाते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए चांदनी कुरैशी ने उनके बेटे को प्यार के जाल में फंसाकर मुसलमान बनाकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया।
14: चांदनी नामक एक लड़की ने चांदनी कुरैशी उस लड़के को प्रेम जाल में फंसा और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे मौलवियों का और बाह्य लोगों का कुछ जो अंतर्राज्यीय स्तर पे काम कर रहे और अपने परिवार से सभी से वो करके उसको ब्रेन वॉश किया।
1: खबरदार करता सवाल है कि क्या करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए एक हिंदू नौजवान को मुसलमान बना दिया गया ताकि उसके परिवार को भी आगे जाकर हिंदू से मुस्लिम बनाकर प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जा सके।
14: ब्रेन वॉश करने के बाद उसका मुख्य उद्देश्य ये था, लड़के तो उसके समुदाय में भी बहुत मिलते, इससे भी स्मार्ट मिल जाते, लेकिन उसकी निगाह एक नामचीन बच्चे पे थी। चूंकि आयुष के पास नाम काम दाम सब चीज पर्याप्त मात्रा में है और तो उन्होंने इसे ब्रेन वॉश करके मौलवी वगैरह वगैरह और फर्जी दस्तावेज करके शादी का निकाहनामा फर्जी निकाहनामा करा कर और उसकी संपत्ति हड़पने का मामला मेरे संज्ञान में जो स्थानीय स्तर पर मैं अपनी जानकारी से अपने ईस्ट मिस्ट घनिष्ठ जो बात पता लगाई मुख्य उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का है।
1: आयुष मलिक का परिवार शामली के संपन्न लोगों में से एक है। मेडिकल होलसेल की इसी दुकान पर आयुष मलिक बैठता था। दुकान के ऊपर ही रहने का घर भी है। आयुष के पिता का दावा है कि चांदनी नाम की जिम ट्रेनर फर्जी निकाह के आधार पर अब इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करने का दबाव डाल रही है।
15: कैसा लड़का था आयुष बचपन में? कैसे
14: आयुष स्वभाव से

0: बहुत ही मिलनसार और हर तरह से ईमानदार, सब खूबियां उसमें थी जितने एक बच्चे में हूं। इस चांदनी कुरैशी ने मेरे घर का प्रॉपर्टी के चक्कर में और मेरा सब घर बर्बाद कर दिया।
1: शामली के इस पिता की लाचारगी की वजह उसका बेटा है, जो न माँ की बात सुनने को तैयार है न तीन बहनों की। उसके दिलो दिमाग पर चांदनी छाई हुई है।
2: जो कुरैशी है हमारे यहाँ ठेले पे जूस बेचते शामली में, और ये लोग मिल करके पिछले सप्ताह हमसे इन लोगों ने क्लेम किया कि साहब चूंकि शादी निकाह इसकी हो गई है, संपत्ति में मेरा भी हिस्सा है, आप ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी बेटी के नाम कर दीजिए आप, जिससे कि बहू और आपके हमारी बेटी आपका बेटा लोग ठीक से रहे और आप भी कन्वर्ट हो जाए हमारे धर्म में आ जाइए आप लोग।
3: आपको पता है कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पे नजर थी किसी की?
4: किसकी?
3: किसी की थी।
4: किसकी थी सर?
3: चांदनी कुरैशी उसके परिवार की।
4: ये आप टारगेट कर रहे हैं सर, ये आप उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तो मेरी है इस पे। मैंने खुद भी कहा था आपको जो करना पेरेंट्स को अपने आप वो कर लो इस प्रॉपर्टी का, और ना उनके साथ कोई ऐसा मसला है, उन्होंने भी साफ मना कर रखा।
3: और किस किस मौलाना की आपने वीडियो देखी है इशरार अहमद के अलावा?
4: ऑल ऑफ द वर्ल्ड के सभी मोटिवेशनल स्पीकर, रीजनल
3: नाम बताइए दो चार।
4: डॉक्टर इशरार अहमद के मैं ज्यादा देखता था, ऐसे तो बस रैंडम ही नाम नहीं याद रहते।
1: आमतौर पर धर्म परिवर्तन की खबरों में लोगों को लालच दिया जाता है, लेकिन शामली की कहानी पूरी तरह उल्टी है। यहाँ पर हिंदू नौजवान को मुसलमान बनाने के पीछे दावा है, उसकी संपत्ति पर कब्जा करके उसके पूरे परिवार को मुसलमान बनाने का मकसद।
0: एक रूप से उसका इतना उसे वो कर दिया गया कि वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। फिर भी मैं उसे बीच बीच में समय अंतराल कुछ अंतराल पर बात करता रहा, बात करने से समाधान नहीं निकला।
1: शामली में धर्म परिवर्तन की यह कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये शहर के सबसे रईस परिवार से जुड़ी है, जिसकी प्रॉपर्टी की कीमत 100 करोड़ के आसपास बताई जाती है।
3: मैं शामली के उसी मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ जहाँ फिलहाल आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली रहता है। अगर आप ये देखेंगे तो इस मेडिकल स्टोर का नाम है भारत मेडिक शॉप, और ये जो प्रॉपर्टी है केवल यही ही प्रॉपर्टी 20 करोड़ से ज्यादा की मानी जाती है। और इस तरह की कई प्रॉपर्टी आयुष मलिक और उसके पिता की है। पुलिस की तहकीकात में ये सामने आया है कि इन्हीं प्रॉपर्टी को किसी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए पहले आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, फर्जी निकाहनामा भी तैयार किया गया था।
1: आयुष के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में जांच की, जिसमें यह बात सामने आती है कि इस पूरे मामले के लिए एक फर्जी निकाहनामा तैयार किया गया, जिससे दावा है कि चांदनी कुरैशी और उसके परिवार ने मिलकर अंजाम दिया है।
2: फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गया है इसमें। अभी इसका जो भाई है, जो उसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है, और भी तमाम जिसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने इस ढंग की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए, उन पे हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे, जिनके माध्यम से फंसाए इसको। और इसकी दुकान पे लड़के जो काम कर रहे थे उसमें इसका एक भाई था, वो हेड ही था इनकी दुकान का, शोरूम का, इसके आयुष के, उसने इसको प्रलोभन दिया।
1: शामली पुलिस का कहना है कि जब किसी का इस स्तर पर ब्रेन वॉश कर दिया जाता है तो उसे दोबारा डी रेडिकलाइज करना बेहद मुश्किल और चुनौती भरा होता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो SIT बनाई गई है वो हर पहलू पर बारीकी से काम कर रही है, ताकि सुनियोजित रैकेट की तह तक पहुंचा जा सके। अरविंद ओझा, शामली आज तक।
5: और अब खबर नीट इम्तिहान से जुड़ी हुई। पिछली बार पेपर लीक की वजह से एग्जाम रद्द हो गया था, अब के 21 जून को परीक्षा होनी है, लेकिन इस बार पेपर लीक रोकने के लिए वायुसेना की मदद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ले रही है। दावा यह है कि नीट का पेपर ले जाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: सेना का वो हेलीकॉप्टर जो अब तक बाढ़ बारिश के खतरे के बीच वहां फंसे नागरिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता से उतरता रहा। भारतीय वायुसेना की वो ताकत जो जंगलों की आग तक को बुझाने में इस्तेमाल होता आया है। कठिन से कठिन हालात में जिंदगी बचाने वाला भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर, जिसके जरिए अब की दावा है कि नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा में पेपर पहुंचाया जाएगा। सूत्र कहते कि इंडियन एयरफोर्स देश भर के 18 जगहों से नीट की दोबारा परीक्षा में प्रश्न पत्र के पैकेट पहुंचाएगी ताकि उनकी सुरक्षित और समय पर

0: डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। यानी 21 जून को इस बार नीट का जब पेपर होगा तो उसे MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुंचाया जा सकता है।
1: देश में पहली बार भारतीय वायुसेना नीट के रीटेस्ट के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाली है। पूरे देश में 18 रीजनल हब्स पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स प्रश्न पत्र पहुंचाएंगे। ये पैकेट्स को पूरी सुरक्षा के साथ इन रीजनल हब्स तक ड्रॉप करेंगे और उसके बाद इन रीजनल हब से सड़क के रास्ते एग्जामिनेशन सेंटर्स तक ये क्वेश्चन पेपर्स पहुंचाए जाएंगे। पहली बार देश के इतिहास में इस तरह की पहल हो रही है जब भारतीय वायुसेना किसी एग्जाम के लिए मदद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरी परीक्षा की निगरानी कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमाम दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर इसकी रिव्यू मीटिंग्स ले चुके हैं और अब भारतीय वायुसेना 18 अलग अलग रीजनल हब्स पर Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए इन पेपर्स को पहुंचाएगी। Mi-17 हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर फ्लीट के सबसे रिलायबल हेलीकॉप्टर्स हैं। बड़े विमानों से इन केंद्रों पर पहुंचना मुश्किल है, लिहाजा इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन पैकेट्स को जिनमें क्वेश्चन पेपर्स होंगे उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ इन एग्जामिनेशन सेंटर्स के रीजनल हब्स पर पहुंचाया जाएगा, जहां से इन्हें अलग अलग एग्जामिनेशन केंद्रों पर भेजा जाएगा।
0: नीट यूजी परीक्षा में केवल 12 दिन का समय बचा है, इसलिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ी तैयारी की बैठक पहले हो चुकी है। सरकार सवालों के लीक होने की किसी भी आशंका को खत्म करने के लिए एयरफोर्स की मदद से पेपर को अलग अलग शहरों तक पहुंचाने की योजना बना चुकी है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ऐसा क्या है कि एयरफोर्स की मदद से नीट का पेपर पहुंचाया जाएगा। दावा है कि नई व्यवस्था के तहत प्रश्न पत्रों को वायुसेना के जरिए सीधे प्रमुख केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद कड़ी निगरानी में उन्हें दूसरे एग्जाम सेंटर तक भेजा जाएगा। पेपर लीक होने की 3 सबसे बड़ी जगह होती हैं। पहली जहां से पेपर बनता है, दूसरा पेपर जहां छपता है, तीसरा रास्ते में पेपर लाने ले जाने के दौरान। इस बार नीट का पेपर चूंकि पेपर बनाने के दौरान ही लीक हुआ तो उस रास्ते को नीट री एग्जाम में बंद करके बाकी 2 रास्तों को बंद करने की तैयारी NTA की है। इसीलिए एयरफोर्स के सख्त प्रोटोकॉल और सीमित बाहरी हस्तक्षेप के चलते सुरक्षा बढ़ाने की पूरी तैयारी की गई, जिससे लीक की गुंजाइश कहीं ना रहे। 22,89,000 बच्चों को दोबारा नीट का पेपर देना है। एक बार पेपर लीक हुआ, लाखों बच्चे टूट चुके हैं। इस बार एयरफोर्स की मदद से पेपर पहुंचाने की प्रक्रिया के जरिए ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि सरकार कहीं भी रत्ती भर भी चूक नहीं होने देना चाहती।
1: फिलीपींस में आए भूकंप से 32 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फिलीपींस में रिक्टर स्केल पर 7.8 का भूकंप आया था जिसने भारी तबाही मचाई है। भूकंप भारतीय समयानुसार सुबह 5 बजे आया, जो इस साल फिलीपींस में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। भूकंप के बाद सुनामी भी आई, सबसे ऊंची लहर करीब 4.5 फीट की रही।
0: फिलीपींस में भूकंप से ताश की पत्तों की तरह गिरती गई इमारतें। फिलीपींस में ढह गई स्कूल की बिल्डिंग। फिलीपींस में भूकंप से मिट्टी में मिला आलीशान मॉल। फिलीपींस का मिंडानाओ द्वीप, जहां भूकंप के रूप में तबाही ने ऐसी दस्तक दी पूरी दुनिया डर गई, सहम गई। भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:07 पर फिलीपींस में इमारतें हिलने लगी। अब आप ही सोचिए भूकंप के दौरान 36 मंजिला इस इमारत में रहने वाले लोगों की क्या हालत हुई होगी। भूकंप से आप इस इमारत को हिलते हुए देख सकते हैं। 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने जमीन को इस कदर झकझोरा कि सब कुछ हिला दिया। भूकंप के तेज झटकों से एक वाटर टैंक से पानी बाहर गिरने लगा। जमीन के ऊपर सब कुछ हिलता है, ताश के पत्ते की तरह इमारतें भरभराकर मानो गिरती चली गई। ये तस्वीर फिलीपींस के एक स्कूल की है, जिसमें पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भूकंप की कभी ना भूलने वाली यादों से रूबरू हुए। भूकंप आते ही बच्चे स्कूल परिसर में इकट्ठा हो गए। इस दौरान टीचर और स्कूल के स्टाफ ने बहादुरी से समझबूझ दिखाते हुए छोटे छोटे बच्चों को अपने पास बैठाए रखा। इस दौरान कुछ बच्चे और स्कूल का स्टाफ कैंपस में बने शेड के नीचे दुबकी रहे। अचानक शेड हिलने लगता है और सबके सामने भरभरा कर गिर पड़ता है। कुछ लोग उसमें से निकल कर भागने में कामयाब हो गए तो कई इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि ज्यादातर स्कूलों में प्रशासन ने भूकंप की चेतावनी के मद्देनजर बच्चों को खुली जगह पर इकट्ठा कर दिया। भूकंप की एक और डरावनी तस्वीर शॉपिंग मॉल की है, जिसकी इमारत भूकंप के झटकों को ज्यादा वक्त तक झेल नहीं पाई और गिर जाती है। इलाके की दूसरी इमारतों का भी वही हाल रहा। जमीन में मच रही तेज हलचलों ने इमारतों की नींव इस कदर हिला दी, एक के बाद एक इमारतें जमींदोज होती रही। धूल का गुबार चारों तरफ फैलता रहा, लोगों में चीख पुकार मची रही और सब बचने के लिए खुली जगहों पर भागते रहे। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने कई लोग दहशत में सड़क पर ही बैठ गए। कई लोग गाड़ियों को पकड़ कर खड़े हो गए। अचानक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग ढह जाती। 5 सेकंड में इस इमारत का नामोनिशान मिट गया। अपनी आंखों से इस विनाश लीला को देख रहे लोगों की चीखने की आवाजें तेज होती गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। भूकंप की तबाही दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर देखने को मिली, जहां सोमवार को 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे होने की वजह से भारी नुकसान देखने को मिला है। फिलीपींस के ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान ने बताया कि स्थानीय भूकंप के बाद 138 आफ्टरशॉक दर्ज किए गए। इन झटकों की तीव्रता 1.3 से 6.7 के बीच रही।
2: फिलीपींस की धरती एक बार फिर भीषण भूकंप से दहल उठी। करीब 7.8 तीव्रता का ये भूकंप बताया जा रहा है, जो सोमवार की सुबह फिलीपींस में आया सरंगरी इलाके के अंदर, और उसके बाद लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिलीपींस के लिए भूकंप कोई नई बात नहीं है। फिलीपींस दुनिया के नक्शे पर उस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मौजूद है, जिसे भूकंप और ज्वालामुखी के लिहाज से दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका कहा जाता है। लेकिन लगातार ये आ रही ये तस्वीरें लोगों को डराने वाली भी हैं, और जिस तरीके से वहां पर ये एक घंटे के भीतर लगातार भूकंप के झटके सामने आते रहे हैं, यानी मुख्य भूकंप के बाद लगातार आफ्टरशॉक्स पूरे फिलीपींस को भी दहला रहे हैं, और लगातार पूरे पूर्वी एशिया के अंदर इस बात की आशंका बढ़ गई है कि कहीं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक्टिवेट तो नहीं हो गई है, जिसके कारण पूरा इलाका एक बड़े प्राकृतिक आपदा की सद में आ सकता है।
0: भूकंप के बाद सुनामी भी आई। सबसे ऊंची लहर 4.6 फीट रही। एहतियात के तौर पर इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी सुनामी की चेतावनी जारी की, जिसे कुछ घंटों बाद वापस ले लिया गया।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।

0: ममता की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट की आशंका, शताब्दी रॉय के घर बैठक, शुभेंदु अधिकारी भी रहे मौजूद। काकोली का दावा, हमारे साथ 20 सांसद भूपेंद्र यादव से भी मिला था नाराज सांसदों का दल। नीट पेपर लीक पर इंडिया गठबंधन का बड़ा दाव, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सर्वदलीय बैठक की मांग, सीजीआई को लिखेंगे पत्र, 5 सूत्री एजेंडा तय, बीजेपी ने विपक्ष पर उठाए सवाल। पटना में गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हुआ फैजल खान, फायरिंग मामले में लगातार दबिश दे रही है एसआईटी की टीम, पुलिस ने कोर्ट में सौंपी केस डायरी। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, पिघला स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत, मौके पर उठी आग की तेज लपटें। और ईरान इसराइल में युद्ध फिर से शुरू, तेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्ला की ओर से भी हमले, आईडीएफ ने इस्फहान पर किया जवाबी प्रहार। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी के हाथ से क्या पार्टी भी जाने वाली है? विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसद भी टूट रहे हैं। ममता के 20 सांसदों ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा आज टीएमसी के एक राज्यसभा सांसद ने भी इस्तीफा दे दिया।
1: जिस वक्त ममता बनर्जी विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटती हैं, ठीक उसी वक्त उन्हीं की पार्टी के सांसद बगावत की नई कहानी लिख रहे होते हैं। विधायकों के बाद अब टीएमसी के सांसदों ने भी ममता का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। मतलब जिस वक्त सोनिया गांधी से गले मिलकर ममता बनर्जी गठबंधन को मजबूत करने में जुटी थी, उसी वक्त टीएमसी में विद्रोह की नई पटकथा लिखी जाती है। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए का हिस्सा बनकर सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। सांसद और टीएमसी की पूर्व नेता काकोली घोष ने यह दावा किया कि 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। इस बारे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी भेज दिया गया है। बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन की जहां बैठक हो रही थी उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर ममता बनर्जी के 14 बागी सांसद दोपहर में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक करते हैं। इस दौरान सुबह ही टीएमसी के राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके सुखेंदु शेखर राय भी मौजूद रहे। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनसे मिलने पहुंचे। इसी बैठक में लोकसभा सांसद काकोली घोष, शताब्दी रॉय, अबू ताहिर, अरूप चक्रवर्ती, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, असितमल, कालीपत सोरेन, जगदीश बसुनिया और प्रसून बनर्जी भी मौजूद होते हैं।
2: एमपी हो या एमएलए हो, ये तृणमूल कांग्रेस से दीदी का सिंबल लेकर 2 दिन पहले दीदी दीदी दीदी दीदी, आज क्या एनडीए के साथ मैं सुन रहा हूँ, तो ये क्या पॉलिटिक्स हुआ?
1: लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इससे पहले 3 जून को पश्चिम बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। इस गुट ने ऋतुव्रत को अपना नेता बनाया है। ये इत्तफाक नहीं है कि जब ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली में मौजूद होते हैं उसी मौके पर पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु भी दिल्ली पहुंचते हैं।
3: 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना, आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा।
1: इससे पहले राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर रॉय की तस्वीर सामने आई जिसमें वो टीएमसी के कुछ बागी लोकसभा सांसदों के साथ देखे जाते हैं। सुखेंदु ने इस्तीफे के बाद मीडिया से कहा कि पार्टी के कई लोग ममता के मनमाने ढंग से पार्टी चलाने से नाराज थे और इसीलिए इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 2029 तक का था, अब सीट खाली हो चुकी है, अब इस पर उपचुनाव कराया जा सकता है।
4: अभी तो मैं पार्टी से बाहर हूँ, हमारा पार्टी का जो हम जब पार्टी में थे उस समय वो लोग जो थे कोई इसका विचार विमर्श कुछ नहीं किया गया इतना, क्योंकि उसका पावर मस्तिष्क माथे पे अंदर चला गया कि हमको कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया में। अरे भाई, आम जनता ने तुमको चुन के भेजा है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने तुमको नीचे गिरा दिया, अब देखो कैसे गिराया।
5: शुकेंदुदा का जो उन्होंने बोले है, मैं मेजोरिटी जगह में उनके साथ एकमत हूँ, और खास करके जहां तक पार्लियामेंट का अपर हाउस का फंक्शनिंग था, शुकेंदुदा जो बोले है वो एकदम सही है।
1: इस बगावत ने तबाह और गंभीर रूप ले लिया है जब बागी सांसद शर्मिला सरकार ने एनडीए को समर्थन दिए जाने की घोषणा की है और कहा है कि वो मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष को बताने वाली हैं कि वही असली तृणमूल कांग्रेस है।
6: हम 20 लोग थे जो जिनने सिग्नेचर किए हैं, तो हम लोग एक सिफारिश ब्लॉक मतलब तैयार किए हैं। हम लोगों का वॉइस यहाँ से मतलब सेपरेट ब्लॉक से उठ गया।
1: टीएमसी में विद्रोह का आलम यह कि जो नेता कल तक ममता बनर्जी को दीदी दीदी कहकर संबोधित करते थे, वो अब खुलेआम उनका नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं। इसे ममता बनर्जी के सियासी कद में आई कमी के तौर पर देखा जा रहा है।
5: 2/3 से ज्यादा एमपी साइन किए हैं, उसका मतलब है 20 एमपी मतलब 2/3 से ज्यादा। तो वो लोग क्यों किए हैं ये बोल नहीं पाऊंगा, मगर एक तानाशाही के खिलाफ लोगों का आवाज उठ रहा है और ये जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है।
7: सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी, तो टूट गया।
1: टीएमसी में 28 साल के इतिहास में पहली बार औपचारिक तौर पर टूट सामने आई है। पहले 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए, विधायक ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता चुना, विधानसभा स्पीकर रतिंद्र बोस को समर्थन पत्र दिया। इसमें मांग की गई कि ऋतव्रत को नेता विपक्ष घोषित किया जाए और अब ममता बनर्जी के 20 सांसदों ने दिल्ली में विद्रोह करके ममता को राजनीतिक रूप से सबसे कमजोर हालत में पहुंचा दिया है।
0: इंडिया गठबंधन फिर एकजुटता दिखाने के लिए जुटा और परसों यानी कि बुधवार को एनडीए गठबंधन अपनी ताकत दिखाने वाला है। उससे पहले इंडिया अलायंस ने मीटिंग की 5 मुद्दों पर सहमति बनाई, लेकिन आज तक के पास इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी भी है जिसमें पता यह चला है कि भीतर कई दलों ने कांग्रेस को लेकर सवाल किए हैं।
1: ममता बनर्जी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाती है, चुप मतलब एकदम चुप, शीशा बंद कर देती है, मीडिया के सवालों से बचती है। इससे कुछ देर पहले इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी सोनिया गांधी से गले मिलती हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान ममता बनर्जी को सोनिया गांधी के ठीक बगल में बैठाया जाता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में ममता बनर्जी बैठती हैं। इंडिया ब्लॉक की 2 साल बाद हुई 7वीं बैठक में 25 दलों के नेता शामिल होते हैं। 2 घंटे बैठक चलती है, 5 मुद्दों पर आपसी सहमति बनती है। पहला मुद्दा एसआईआर में करोड़ों वोटर के नाम कटे, एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर अब सीजीआई को इंडिया गठबंधन चिट्ठी लिखेगा। दूसरा मुद्दा नीट में देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ, नीट और सीबीएसई की गड़बड़ी के लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं, वो इस्तीफा दें। तीसरे मुद्दे पर जो आपसी सहमति इंडिया गठबंधन में बनी है वो ये कि सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। चौथा मुद्दा है कि हर 2 महीने पर अब इंडिया गठबंधन की मुलाकात होगी, अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी। और पांचवा मुद्दा संसद में इंडिया गठबंधन का समन्वय जारी रहेगा, रोज नेता विपक्ष के दफ्तर में बैठक की जाएगी। विपक्षी गठबंधन की हालत इस बात से समझिए कि जिन 5 मुद्दों पर सहमति अगर बनी तो 2 मुद्दे यही हैं, बैठक बहुत लंबा टालो मत, समन्वय जल्दी करो। असल में विपक्षी गठबंधन की समस्या है समन्वय की, क्योंकि दिल्ली में ममता को गले लगाती कांग्रेस के विचार ममता को ही लेकर 1.5 महीने पहले क्या थे इसको आज याद करिए।
8: बीजेपी को मौका कौन दे रहा है? तृणमूल कांग्रेस दे रही है। तृणमूल कांग्रेस भी अपने काम में लगी हुई है, वो भी बंगाल के लिए काम नहीं कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट हैं, तो तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। बंगाल की जनता का फायदा नहीं होता है, यहां पे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का जो सिंडिकेट है उसको ये 24 घंटा पैसा देते रहते हैं, हिंसा फैलाते हैं, मारपीट करते हैं और झूठे वायदे। ममता जी ने बंगाल की पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। महिलाओं की बात करें तो आरजी कार रेप एंड मर्डर केस की भी बात करनी होगी।
1: जिन ममता के खिलाफ बंगाल में नाम लेकर राहुल गांधी भ्रष्टाचार से लेकर महिला अपराध तक पर घेरते रहे, उसी पश्चिम बंगाल में अब उन्हीं ममता बनर्जी के पास जब न सत्ता बच रही न पार्टी बचती नजर आ रही, तो इंडिया गठबंधन बैठक करके ये कहता है कि चुनाव एसआईआर और वोट चोरी से हार रहे हैं।
9: एसआईआर मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा।
10: पहले यही सब बैठक स्टेडियम में होती थी, आप सब देखे होंगे कैसे बेंगलुरु के स्टेडियम में एक दूसरे के हाथ पकड़ करके सभी लोग खड़े थे। धीरे धीरे अब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक रूम में होती है। उन्होंने कहा कि एसआईआर हुआ, वोट चोरी हुई। मुझे तो समझ में नहीं आता है ये एक ही टेप रिकॉर्डर ये कब से चला रहे हैं। मगर एसआईआर तो तमिलनाडु में भी हुआ, एसआईआर तो केरल में भी हुआ। तमिलनाडु में आप झटपट से वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर लिया और सरकार बना लिया। और डीएमके वहां बोल रही है यहां तो वोट चोरी नहीं, यहां तो एलआई ही चोरी हो गई, वहां तो एलआई चोरी हो गई। केरल में आपने सरकार बना लिया तो एसआईआर को कोस नहीं रहे, बंगाल में हार गए तो एसआईआर का रोना रो रहे। तो ये जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है ये सब हम और हिंदुस्तान देख रहा है।
1: बीजेपी इंडिया गठबंधन की बैठक को अस्तित्व बचाओ मोर्चा तक कहती है।
10: अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है।
1: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर सवाल राहुल गांधी भी उठा रहे थे। तमिलनाडु में कांग्रेस चुनाव हारी तो डीएमके से अलग होकर टीवीके के साथ सरकार बना ली। केरल में लेफ्ट पर चुन चुन कर वार करके ही कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद जब इंडिया गठबंधन की बैठक होती है तो दावा है कि भीतर कांग्रेस पर उन्हीं के साथ ही सवाल उठाते हैं। कई पार्टियों ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं के बीच तालमेल की कमी का सवाल उठाया। कुछ दलों ने कांग्रेस पर इसलिए सवाल उठाया कि वो अपने ही साथियों पर राज्य के चुनाव में तीखे आरोप लगाकर वोट मांगती है। दावा कि सबसे पहले अखिलेश ने ये बात उठाई और फिर बाकी नेताओं, खासकर लेफ्ट के दलों ने ये बात कही है। इस पर राहुल गांधी ने जवाब ये दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर हम साथ हैं, लेकिन जब मेरे राज्य इकाई के नेता मुझे हालात और चुनाव प्रचार के बारे में बताते हैं तो मुझे उनकी बात भी सुननी पड़ती है।
11: इंडिया गठबंधन ऐसे चलना है तो कांग्रेस के ओर से कुछ एडजस्टमेंट होना चाहिए, ये अभी तक हुआ नहीं। केरल में वो खतरनाक काम किया, अलग अलग राज्यों में वो किया, पुदुचेरी में वो काम किया, अपना अलाइंस को खत्म करने के लिए वो कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा सोच चाहिए।
12: वी हैव आवर सीरियस रिजर्वेशंस विद रिगार्ड टू कांग्रेस पार्टी कॉन्टेक्ट एंड अप्रोच, वी विल रेज दोस इश्यूज इन द मीटिंग अनडाउटेडली। आवर जनरल सेक्रेटरी आल्सो हैज रिटन लेटर।
1: कांग्रेस के तरीकों पर उन्हीं के गठबंधन के लोगों ने मीटिंग के पहले से लेकर मीटिंग के बाद तक सवाल उठाया। समन्वय यानी आपसी साथ कितना है, इसका सबूत देख लीजिए पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी वाले युवाओं के साथ प्रदर्शन पर, जहां कांग्रेस के नेता प्रश्न उठाते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की मीटिंग में उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि अगर मुद्दा समान हो तो आंदोलन का समर्थन किया जाना चाहिए। डीएमके से कांग्रेस के अलग होने पर भी सवाल उठा है। दावा है कि एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा कि डीएमके का गठबंधन में ना होना चिंताजनक है। अखिलेश यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि हम वो नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ दें। पिछले साल दिल्ली चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की रणनीति और नेतृत्व तक पर शिवसेना यूबीटी के नेता सवाल उठाते आए।
13: जो भी डिफरेंसेस, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंसेस है, उसके लिए प्लेटफॉर्म है।
1: आपसी डिफरेंस ही इंडिया गठबंधन की वो कमजोर नब्ज है जिसे मीटिंग से पहले दिल्ली में ऐसे लगे पोस्टर से पुरजोर दबाने की कोशिश की गई। ऐसे पोस्टर जिस पर ये नहीं लिखा था कि किसने लगवाया, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते इंडिया गठबंधन के ही नेताओं के पुराने बयान इन पोस्टर पर दिखाए गए, जिन्हें बाद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आकर हटा दिया। पोस्टर तो हट गया, अब हर दो महीने पर मीटिंग करके आपसी समन्वय सुधारने की बात भी कर ली गई, लेकिन सवाल है कब तक। उत्तर प्रदेश का मोर्चा खुलने वाला है, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लोकसभा जैसी एकता दिखेगी या फिर चार दिन की एकता और फिर वही आपसी विवाद चलता रहेगा।
0: अब वो खबर जो बड़ी चिंता पैदा करती है। उत्तर प्रदेश के शामली में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया जिसमें आयुष मलिक नाम का एक हिंदू नौजवान मोहम्मद अली बन गया। आयुष के पिता ने बेटे के धर्मांतरण का आरोप चांदनी कुरैशी नाम की जिम ट्रेनर पर लगाया है। आयुष के परिवार का कहना यह है कि जब उन्होंने बेटे के धर्म परिवर्तन का विरोध किया तो चांदनी के परिवार ने उन पर भी धर्म बदलने का दबाव बनाया।
14: जब मैंने FIR दर्ज की पुलिस प्रशासन में तो इसके बाद पता लगा कि उसके बाद आप मोहम्मद अली बता रहे, कोई रहमान बता रहा, कोई कुर्बान बता रहा, मुझे तो कुछ नहीं, मेरे लिए तो आयुष मलिक है। इस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया गया,
15: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: उत्तर प्रदेश का शामली, यहाँ पर एक करोड़पति हिंदू परिवार का इकलौता लड़का आयुष मलिक मुसलमान बनकर मोहम्मद अली हो जाता है। इस धर्म परिवर्तन के बाद एक जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी सवालों के घेरे में आती है, जिस पर आयुष मलिक के दवा कारोबारी पिता आरोप लगाते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए चांदनी कुरैशी ने उनके बेटे को प्यार के जाल में फंसाकर मुसलमान बनाकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया।
14: चांदनी नामक एक लड़की ने चांदनी कुरैशी उस लड़के को प्रेम जाल में फंसा, और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे मौलवियों का और बाह्य लोगों का कुछ जो अंतर्राज्य स्तर पे काम कर रहे और अपने परिवार से सभी से वो करके उसको ब्रेन वॉश किया।
1: खबरदार करता सवाल है कि क्या करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए एक हिंदू नौजवान को मुसलमान बना दिया गया ताकि उसके परिवार को भी आगे जाकर हिंदू से मुस्लिम बनाकर प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जा सके।
14: ब्रेन वॉश करने के बाद उसका मुख्य उद्देश्य ये था, लड़के तो उसके समुदाय में भी बहुत मिलते, इससे भी स्मार्ट मिल जाते, लेकिन उसकी निगाह एक नामचीन बच्चे पे थी, क्योंकि आयुष के पास नाम काम दाम सब चीज पर्याप्त मात्रा में है, और तो उन्होंने इसे ब्रेन वॉश करके मौलवी वगैरह वगैरह और फर्जी दस्तावेज करके शादी का निकाहनामा फर्जी निकाहनामा करा कर और उसकी संपत्ति हड़पने का मामला मेरे संज्ञान में जो स्थानीय स्तर पर मैं अपनी जानकारी से अपने ईस्ट मिस्ट घनिष्ठ जो बात पता लगाई, मुख्य उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का है।
1: आयुष मलिक का परिवार शामली के संपन्न लोगों में से एक है। मेडिकल होलसेल की इसी दुकान पर आयुष मलिक बैठता था। दुकान के ऊपर ही रहने का घर भी है। आयुष के पिता का दावा है कि चांदनी नाम की जिम ट्रेनर फर्जी निकाह के आधार पर अब इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करने का दबाव डाल रही है।
16: कैसा लड़का था आयुष बचपन में, कैसे?
14: आयुष स्वभाव से बहुत ही बढ़िया, जिसे लोग ये कहते हैं कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बहुत संस्कारिक, बहुत मेहनती, बहुत निष्ठावान, बहुत ही मिलनसार और हर तरह से ईमानदार, सब खूबियां उसमें थी जितने एक बच्चे में हूँ। इस चांदनी कुरैशी ने मेरे घर का प्रॉपर्टी के चक्कर में और मेरा सब घर बर्बाद कर दिया।
1: शामली के इस पिता की लाचारगी की वजह उसका बेटा है, जो न माँ की बात सुनने को तैयार है न तीन बहनों की। उसके दिलो दिमाग पर चांदनी छाई हुई है।
17: जो कुरैशी है हमारे यहाँ ठेले पे जूस बेचते शामली में, ये लोग मिल करके पिछले सप्ताह हमसे इन लोगों ने क्लेम किया कि साहब चूंकि शादी निकाह इसकी हो गई है, संपत्ति में मेरा भी हिस्सा है, आप ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी बेटी के नाम कर दीजिए आप, जिससे कि बहू और आपके हमारी बेटी आपका बेटा लोग ठीक से रहे और आप भी कन्वर्ट हो जाए कि हमारे धर्म में आ जाइए आप लोग।
16: आपको पता है कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पे नजर थी किसी की?
18: किसकी?
16: किसी की थी।
18: किसकी थी सर?
16: चांदनी कुरैशी, उसके परिवार की।
18: ये आप टारगेट कर रहे हैं सर, ये आप उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तो मेरी है इस पे। मैंने खुद भी कहा था आपको जो करना पेरेंट्स को अपने आप वो कर लो इस प्रॉपर्टी का, और ना उनके साथ कोई ऐसा मसला है, उन्होंने भी साफ मना कर रखा।
16: और कोर्ट किन किस किस मौलाना की आपने वीडियो देखी इशरार अहमद के अलावा?
18: ऑल ऑफ द वर्ल्ड के सभी मोटिवेशनल स्पीकर, रीजनल।
16: नाम बताइए दो चार।
18: डॉक्टर इशरार अहमद के मैं ज्यादा देखता था, ऐसे तो मुझे रैंडम ही नाम नहीं याद रहते।
1: आमतौर पर धर्म परिवर्तन की खबरों में लोगों को लालच दिया जाता है, लेकिन शामली की कहानी पूरी तरह उल्टी है। यहाँ पर हिंदू नौजवान को मुसलमान बनाने के पीछे दावा है उसकी संपत्ति पर कब्जा करके उसके पूरे परिवार को मुसलमान बनाने का मकसद।
14: रूप से उसका इतना उसे वो कर दिया गया कि वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। फिर भी मैं उसे बीच बीच में समय अंतराल कुछ अंतराल पर बात करता रहा, बात करने से समाधान नहीं निकला।
1: शामली में धर्म परिवर्तन की यह कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये शहर के सबसे रईस परिवार से जुड़ी है, जिसकी प्रॉपर्टी की कीमत 100 करोड़ के आसपास बताई जाती है।
15: मैं शामली के उसी मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ जहाँ फिलहाल आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली रहता है। अगर आप ये देखेंगे तो इस मेडिकल स्टोर का नाम है भारत मेडिक शॉप, और ये जो प्रॉपर्टी है केवल यही ही प्रॉपर्टी 20 करोड़ से ज्यादा की मानी जाती है। और इस तरह की कई प्रॉपर्टी आयुष मलिक और उसके पिता की है। पुलिस की तहकीकात में ये सामने आया है कि इन्हीं प्रॉपर्टी को किसी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए पहले आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, फर्जी निकाहनामा भी तैयार किया गया था।
1: आयुष के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में जांच की, जिसमें यह बात सामने आती है कि इस पूरे मामले के लिए एक फर्जी निकाहनामा तैयार किया गया, जिससे दावा है कि चांदनी कुरैशी और उसके परिवार ने मिलकर अंजाम दिया है।
17: फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गया है इसमें। अभी इसका जो भाई है, जो उसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है, और भी तमाम जो इसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने इस ढंग की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए, उन पर हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। जिम के माध्यम से फंसाए इसको, और इसकी दुकान पे लड़के जो काम कर रहे थे उसमें इसका एक भाई था, वो हेड ही था इनकी दुकान का, शोरूम का इसके आयुष के, उसने इसको प्रलोभन दिया।
1: शामली पुलिस का कहना है कि जब किसी का इस स्तर पर ब्रेन वॉश कर दिया जाता है तो उसे दोबारा डी रेडिकलाइज करना बेहद मुश्किल और चुनौती भरा होता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो SIT बनाई गई है वो हर पहलू पर बारीकी से काम कर रही है ताकि सुनियोजित रैकेट की तह तक पहुंचा जा सके। अरविंद ओझा, शामली आज तक।
0: फिलीपींस में आए भूकंप से 32 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फिलीपींस में रिक्टर स्केल पर 7.8 का भूकंप आया था जिसने भारी तबाही मचाई है। भूकंप भारतीय समय अनुसार सुबह 5 बजे आया, जो इस साल फिलीपींस में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। भूकंप के बाद सुनामी भी आई, सबसे ऊंची लहर करीब 4.5 फीट की रही।
1: फिलीपींस में भूकंप से ताश के पत्तों की तरह गिरती गई इमारतें। फिलीपींस में ढह गई स्कूल की बिल्डिंग। फिलीपींस में भूकंप से मिट्टी में मिला आलिशान मॉल। फिलीपींस का मिंडानाओ द्वीप, जहां भूकंप के रूप में तबाही ने ऐसी दस्तक दी पूरी दुनिया डर गई, सहम गई। भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:07 पर फिलीपींस में इमारतें हिलने लगी। अब आप ही सोचिए भूकंप के दौरान 36 मंजिला इस इमारत में रहने वाले लोगों की क्या हालत हुई होगी। भूकंप से आप इस इमारत को हिलते हुए देख सकते हैं। 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने जमीन को इस कदर झकझोरा कि सब कुछ हिला दिया। भूकंप के तेज झटकों से एक वाटर टैंक से पानी बाहर गिरने लगा। जमीन के ऊपर सब कुछ हिलता है, ताश के पत्ते की तरह इमारतें भरभराकर मानो गिरती चली गई। ये तस्वीर फिलीपींस के एक स्कूल की है, जिसमें पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भूकंप की कभी ना भूलने वाली यादों से रूबरू हुए। भूकंप आते ही बच्चे स्कूल परिसर में इकट्ठा हो गए। इस दौरान टीचर और स्कूल के स्टाफ ने बहादुरी से समझबूझ दिखाते हुए छोटे छोटे बच्चों को अपने पास बैठाए रखा। इस दौरान कुछ बच्चे और स्कूल का स्टाफ कैंपस में बने शेड के नीचे डूबते रहे। अचानक शेड हिलने लगता है और सबके सामने भरभराकर गिर पड़ता है। कुछ लोग उसमें से निकलकर भागने में कामयाब हो गए तो कई इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि ज्यादातर स्कूलों में प्रशासन ने भूकंप की चेतावनी के मद्देनजर बच्चों को खुली जगह पर इकट्ठा कर दिया। भूकंप की एक और डरावनी तस्वीर शॉपिंग मॉल की है, जिसकी इमारत भूकंप के झटकों को ज्यादा वक्त तक झेल नहीं पाई और गिर जाती है। इलाके की दूसरी इमारतों का भी वही हाल रहा। जमीन में मच रही तेज हलचलों ने इमारतों की नींव इस कदर हिला दी, एक के बाद एक इमारतें जमींदोज होती रही। धूल का गुबार चारों तरफ फैलता रहा। लोगों में चीख पुकार मची रही और सब बचने के लिए खुली जगहों पर भागते रहे। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने कई लोग दहशत में सड़क पर ही बैठ गए। कई लोग गाड़ियों को पकड़ कर खड़े हो गए। अचानक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग ढह जाती। 5 सेकंड में इस इमारत का नाम निशान मिट गया। अपनी आंखों से इस विनाश लीला को देख रहे लोगों की चीखने की आवाजें तेज होती गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। भूकंप की तबाही दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर देखने को मिली, जहां सोमवार को 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे होने की वजह से भारी नुकसान देखने को मिला है। फिलीपींस के ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान ने बताया कि स्थानीय भूकंप के बाद 138 आफ्टर शॉक दर्ज किए गए। इन झटकों की तीव्रता 1.3 से 6.7 के बीच रही।
19: फिलीपींस की धरती एक बार फिर भीषण भूकंप से दहल उठी। करीब 7.8 तीव्रता का ये भूकंप बताया जा रहा है, जो सोमवार की सुबह फिलीपींस में आया सरंगरी इलाके के अंदर, और उसके बाद लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिलीपींस के लिए भूकंप कोई नई बात नहीं है। फिलीपींस दुनिया के नक्शे पर उस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मौजूद है जिसे भूकंप और ज्वालामुखी के लिहाज से दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका कहा जाता है। लेकिन लगातार ये आ रही ये तस्वीरें लोगों को डराने वाली भी हैं, और जिस तरीके से वहां पर ये 1 घंटे के भीतर लगातार भूकंप के झटके सामने आते रहे हैं, यानी मुख्य भूकंप के बाद लगातार आफ्टर शॉक्स पूरे फिलीपींस को भी दहला रहे हैं, और लगातार पूरे पूर्वी एशिया के अंदर इस बात की आशंका बढ़ गई है कि कहीं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक्टिवेट तो नहीं हो गई है, जिसके कारण पूरा इलाका एक बड़े प्राकृतिक आपदा की सद में आ सकता है।
1: भूकंप के बाद सुनामी भी आई। सबसे ऊंची लहर 4.6 फीट रही। एहतियात के तौर पर इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी सुनामी की चेतावनी जारी की, जिसे कुछ घंटों बाद वापस ले लिया गया।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: ममता की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट की आशंका, शताब्दी रॉय के घर बैठक, शुभेंदु अधिकारी भी रहे मौजूद। काकोली का दावा, हमारे साथ 20 सांसद भूपेंद्र यादव से भी मिला था नाराज सांसदों का दल। नीट पेपर लीक पर इंडिया गठबंधन का बड़ा दाव, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सर्वदलीय बैठक की मांग, सीजीआई को लिखेंगे पत्र, 5 सूत्रीय एजेंडा तय, बीजेपी ने विपक्ष पर उठाए सवाल। पटना में गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हुआ फैजल खान, फायरिंग मामले में लगातार दबिश दे रही है एसआईटी की टीम, पुलिस ने कोर्ट में सौंपी केस डायरी। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, पिघला स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत, मौके पर उठी आग की तेज लपटें। और ईरान इजराइल में युद्ध फिर से शुरू, तेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्ला की ओर से भी हमले, आईडीएफ ने इस्फहान पर किया जवाबी प्रहार। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी के हाथ से क्या पार्टी भी जाने वाली है? विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसद भी टूट रहे हैं। ममता के 20 सांसदों ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा आज टीएमसी के एक राज्यसभा सांसद ने भी इस्तीफा दे दिया।
1: जिस वक्त ममता बनर्जी विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटती हैं, ठीक उसी वक्त उन्हीं की पार्टी के सांसद बगावत की नई कहानी लिख रहे होते हैं। विधायकों के बाद अब टीएमसी के सांसदों ने भी ममता का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। मतलब जिस वक्त सोनिया गांधी से गले मिलकर ममता बनर्जी गठबंधन को मजबूत करने में जुटी थी, उसी वक्त टीएमसी में विद्रोह की नई पटकथा लिखी जाती है। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए का हिस्सा बनकर सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। सांसद और टीएमसी की पूर्व नेता काकोली घोष ने यह दावा किया कि 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। इस बारे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी भेज दिया गया है। बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन की जहां बैठक हो रही थी उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर ममता बनर्जी के 14 बागी सांसद दोपहर में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक करते हैं। इस दौरान सुबह ही टीएमसी के राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके सुखेंदु शेखर राय भी मौजूद रहे। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनसे मिलने पहुंचे। इसी बैठक में लोकसभा सांसद काकोली घोष, शताब्दी रॉय, अबू ताहिर, अरूप चक्रवर्ती, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, असित मल, कालीपत सोरेन, जगदीश बसुनिया और प्रसून बनर्जी भी मौजूद होते हैं।
2: एमपी हो या एमएलए हो, ये तृणमूल कांग्रेस से दीदी का सिंबल लेकर 2 दिन पहले दीदी दीदी दीदी दीदी आज क्या एनडीए के साथ मैं सुन रहा हूँ, तो ये क्या पॉलिटिक्स हुआ?
1: लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इससे पहले 3 जून को पश्चिम बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। इस गुट ने ऋतुव्रत को अपना नेता बनाया है। ये इत्तेफाक नहीं है कि जब ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली में मौजूद होते हैं उसी मौके पर पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु भी दिल्ली पहुंचते हैं।
3: 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना। आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा।
1: इससे पहले राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर रॉय की तस्वीर सामने आई जिसमें वो टीएमसी के कुछ बागी लोकसभा सांसदों के साथ देखे जाते हैं। सुखेंदु ने इस्तीफे के बाद मीडिया से कहा कि पार्टी के कई लोग ममता के मनमाने ढंग से पार्टी चलाने से नाराज थे और इसीलिए इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 2029 तक का था, अब सीट खाली हो चुकी है, अब इस पर उपचुनाव कराया जा सकता है।
4: अभी तो मैं पार्टी से बाहर हूँ, हमारा पार्टी का जो हम जब पार्टी में थे उस समय वो लोग जो थे कोई इसका विचार विमर्श कुछ नहीं किया गया इतना, क्योंकि उसका पावर मस्तिष्क मथे में अंदर चला गया कि हमको कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया में। अरे भाई, आम जनता ने तुमको चुन के भेजा है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने तुमको नीचे गिरा दिया, अब देखो कैसे गिराया।
5: शुकेंदु दा का जो उन्होंने बोले है मैं मेजोरिटी जगह में उनके साथ एकमत हूँ, और खास करके जहां तक पार्लियामेंट का अपर हाउस का फंक्शनिंग था, शुकेंदु दा जो बोले है वो एकदम सही है।
1: इस बगावत ने तबाह और गंभीर रूप ले लिया है जब बागी सांसद शर्मिला सरकार ने एनडीए को समर्थन दिए जाने की घोषणा की है और कहा है कि वो मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष को बताने वाली हैं कि वही असली तृणमूल कांग्रेस है।
6: हम 20 लोग थे जो जिन्होंने सिग्नेचर किए हैं, तो हम लोग एक सिफारिश ब्लॉक मतलब तैयार किए हैं। हम लोगों का वॉइस यहाँ से मतलब सेपरेट ब्लॉक से उठ गया।
1: टीएमसी में विद्रोह का आलम ये कि जो नेता कल तक ममता बनर्जी को दीदी दीदी कहकर संबोधित करते थे वो अब खुलेआम उनका नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं। इसे ममता बनर्जी के सियासी कद में आई कमी के तौर पर देखा जा रहा है।
5: 2/3 से ज्यादा एमपी साइन किए हैं, उसका मतलब है 20 एमपी मतलब 2/3 से ज्यादा। तो लोग क्यों किए हैं ये बोल नहीं पाऊंगा, मगर एक तानाशाही के खिलाफ लोगों का आवाज उठ रहा है और ये जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है।
7: सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी, तो टूट गया।
1: टीएमसी में 28 साल के इतिहास में पहली बार औपचारिक तौर पर टूट सामने आई है। पहले 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए, विधायक ऋतुव्रत बनर्जी को अपना नेता चुना, विधानसभा स्पीकर रतींद्र बोस को समर्थन पत्र दिया, इसमें मांग की गई कि ऋतुव्रत को नेता विपक्ष घोषित किया जाए, और अब ममता बनर्जी के 20 सांसदों ने दिल्ली में विद्रोह करके ममता को राजनीतिक रूप से सबसे कमजोर हालत में पहुंचा दिया है।
0: इंडिया गठबंधन फिर एकजुटता दिखाने के लिए जुटा और परसों यानी कि बुधवार को एनडीए गठबंधन अपनी ताकत दिखाने वाला है। उससे पहले इंडिया अलायंस ने मीटिंग की 5 मुद्दों पर सहमति बनाई, लेकिन आज तक के पास इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी भी है जिसमें पता ये चला है कि भीतर कई दलों ने कांग्रेस को लेकर सवाल किए हैं।
1: ममता बनर्जी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाती है, चुप मतलब एकदम चुप, शीशा बंद कर देती है, मीडिया के सवालों से बचती है। इससे कुछ देर पहले इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी सोनिया गांधी से गले मिलती हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान ममता बनर्जी को सोनिया गांधी के ठीक बगल में बैठाया जाता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में ममता बनर्जी बैठती हैं। इंडिया ब्लॉक की 2 साल बाद हुई 7वीं बैठक में 25 दलों के नेता शामिल होते हैं। 2 घंटे बैठक चलती है, 5 मुद्दों पर आपसी सहमति बनती है। पहला मुद्दा एसआईआर में करोड़ों वोटर के नाम कटे, एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर अब सीजीआई को इंडिया गठबंधन चिट्ठी लिखेगा। दूसरा मुद्दा नीट में देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ, नीट और सीबीएसई की गड़बड़ी के लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं, वो इस्तीफा दें। तीसरे मुद्दे पर जो आपसी सहमति इंडिया गठबंधन में बनी है वो ये कि सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। चौथा मुद्दा है कि हर 2 महीने पर अब इंडिया गठबंधन की मुलाकात होगी, अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी। और 5वां मुद्दा संसद में इंडिया गठबंधन का समन्वय जारी रहेगा, रोज नेता विपक्ष के दफ्तर में बैठक की जाएगी। विपक्षी गठबंधन की हालत इस बात से समझिए कि जिन 5 मुद्दों पर सहमति अगर बनी तो 2 मुद्दे यही हैं, बैठक बहुत लंबा टालो मत, समन्वय जल्दी करो। असल में विपक्षी गठबंधन की समस्या है समन्वय की, क्योंकि दिल्ली में ममता को गले लगाती कांग्रेस के विचार ममता को ही लेकर 1.5 महीने पहले क्या थे इसको आज याद करिए।
8: बीजेपी को मौका कौन दे रहा है? तृणमूल कांग्रेस दे रही है। तृणमूल कांग्रेस भी अपने काम में लगी हुई है, वो भी बंगाल के लिए काम नहीं कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट हैं, तो तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। बंगाल की जनता का फायदा नहीं होता है, यहां पे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का जो सिंडिकेट है उसको ये 24 घंटा पैसा देते रहते हैं, हिंसा फैलाते हैं, मारपीट करते हैं और झूठे वायदे। ममता जी ने बंगाल की पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। महिलाओं की बात करें तो आरजी कार रेप एंड मर्डर केस की भी बात करनी होगी।
1: जिन ममता के खिलाफ बंगाल में नाम लेकर राहुल गांधी भ्रष्टाचार से लेकर महिला अपराध तक पर घेरते रहे, उसी पश्चिम बंगाल में अब उन्हीं ममता बनर्जी के पास जब न सत्ता बच रही न पार्टी बचती नजर आ रही, तो इंडिया गठबंधन बैठक करके ये कहता है कि चुनाव SIR और वोट चोरी से हार रहे हैं।
9: SIR मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा।
10: पहले यही सब बैठक स्टेडियम में होती थी, आप सब देखे होंगे कैसे बेंगलुरु के स्टेडियम में एक दूसरे के हाथ पकड़ करके सभी लोग खड़े थे। धीरे धीरे अब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक रूम में होती है। उन्होंने कहा कि SIR हुआ, वोट चोरी हुई। मुझे तो समझ में नहीं आता है ये एक ही टेप रिकॉर्डर ये कब से चला रहे हैं। मगर SIR तो तमिलनाडु में भी हुआ, SIR तो केरल में भी हुआ। तमिलनाडु में आप झटपट से वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर ली और सरकार बना लिया। और DMK वहां बोल रही है यहां तो वोट चोरी नहीं, यहां तो LI ही चोरी हो गई, वहां तो LI चोरी हो गई। केरल में आपने सरकार बना लिया तो SIR को कोस नहीं रहे, बंगाल में हार गए तो SIR का रोना रो रहे। तो ये जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है ये सब हम और हिंदुस्तान देख रहा है।
1: बीजेपी इंडिया गठबंधन की बैठक को अस्तित्व बचाओ मोर्चा तक कहती है।
10: अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है।
1: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर सवाल राहुल गांधी भी उठा रहे थे। तमिलनाडु में कांग्रेस चुनाव हारी तो DMK से अलग होकर TVK के साथ सरकार बना ली। केरल में लेफ्ट पर चुन चुन कर वार करके ही कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद जब इंडिया गठबंधन की बैठक होती है तो दावा है कि भीतर कांग्रेस पर उन्हीं के साथ ही सवाल उठाते हैं। कई पार्टियों ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं के बीच तालमेल की कमी का सवाल उठाया। कुछ दलों ने कांग्रेस पर इसलिए सवाल उठाया कि वो अपने ही साथियों पर राज्य के चुनाव में तीखे आरोप लगाकर वोट मांगती है। दावा कि सबसे पहले अखिलेश ने ये बात उठाई और फिर बाकी नेताओं खासकर लेफ्ट के दलों ने ये बात कही है। इस पर राहुल गांधी ने जवाब ये दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर हम साथ हैं, लेकिन जब मेरे राज्य इकाई के नेता मुझे हालात और चुनाव प्रचार के बारे में बताते हैं तो मुझे उनकी बात भी सुननी पड़ती है।
11: इंडिया गठबंधन ऐसे चलना है तो कांग्रेस के ओर से कुछ एडजस्टमेंट होना चाहिए, ये अभी तक हुआ नहीं। केरल में वो खतरनाक काम किया, अलग अलग राज्यों में वो किया, पुदुचेरी में वो काम किया, अपना अलाइस को खत्म करने के लिए वो कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा सोच चाहिए।
12: वी हैव आवर सीरियस रिजर्वेशंस विद रिगार्ड टू कांग्रेस पार्टी कॉन्टेक्ट एंड अप्रोच, वी विल रेज दोस इश्यूज इन द मीटिंग अनडाउटेडली। आवर जनरल सेक्रेटरी आल्सो हैज रिटन लेटर।
1: कांग्रेस के तरीकों पर उन्हीं के गठबंधन के लोगों ने मीटिंग के पहले से लेकर मीटिंग के बाद तक सवाल उठाया। समन्वय यानी आपसी साथ कितना है, इसका सबूत देख लीजिए पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी वाले युवाओं के साथ प्रदर्शन पर, जहां कांग्रेस के नेता प्रश्न उठाते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की मीटिंग में उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि अगर मुद्दा समान हो तो आंदोलन का समर्थन किया जाना चाहिए। DMK से कांग्रेस के अलग होने पर भी सवाल उठा है। दावा है कि एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा कि DMK का
0: अब वो खबर जो बड़ी चिंता पैदा करती है। उत्तर प्रदेश के शामली में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया जिसमें आयुष मलिक नाम का एक हिंदू नौजवान मोहम्मद अली बन गया। आयुष के पिता ने बेटे के धर्मांतरण का आरोप चांदनी कुरैशी नाम की जिम ट्रेनर पर लगाया है। आयुष के परिवार का कहना यह है कि जब उन्होंने बेटे के धर्म परिवर्तन का विरोध किया तो चांदनी के परिवार ने उन पर भी धर्म बदलने का दबाव बनाया।
13: जब मैंने FIR दर्ज की पुलिस प्रशासन में तो इसके बाद पता लगा कि उसके बाद आप मोहम्मद अली बता रहे, कोई रहमान बता रहा, कोई कुर्बान बता रहा, मुझे तो कुछ नहीं, मेरे लिए तो आयुष मलिक है। इस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह।
1: उत्तर प्रदेश का शामली, यहाँ पर एक करोड़पति हिंदू परिवार का इकलौता लड़का आयुष मलिक मुसलमान बनकर मोहम्मद अली हो जाता है। इस धर्म परिवर्तन के बाद एक जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी सवालों के घेरे में आती है, जिस पर आयुष मलिक के दवा कारोबारी पिता आरोप लगाते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए चांदनी कुरैशी ने उनके बेटे को प्यार के जाल में फंसाकर मुसलमान बनाकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया।
13: चांदनी नामक एक लड़की ने चांदनी कुरैशी उस लड़के को प्रेम जाल में फंसा और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे मौलवियों का और बाह्य लोगों का कुछ जो अंतर्राज्य स्तर पे काम कर रहे और अपने परिवार से सभी से वो करके उसको ब्रेन वॉश किया।
1: खबरदार करता सवाल है कि क्या करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए एक हिंदू नौजवान को मुसलमान बना दिया गया ताकि उसके परिवार को भी आगे जाकर हिंदू से मुस्लिम बनाकर प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जा सके।
13: ब्रेन वॉश करने के बाद उसका मुख्य उद्देश्य ये था, लड़के तो उसके समुदाय में भी बहुत मिलते, इससे भी स्मार्ट मिल जाते, लेकिन उसकी निगाह एक नामचीन बच्चे पे थी। चूंकि आयुष के पास नाम काम दाम सब चीज पर्याप्त मात्रा में है और तो उन्होंने इसे ब्रेन वॉश करके मौलवी वगैरह वगैरह और फर्जी दस्तावेज करके शादी का निकाहनामा फर्जी निकाहनामा करा कर और उसकी संपत्ति हड़पने का मामला मेरे संज्ञान में जो स्थानीय स्तर पर मैं अपनी जानकारी से अपने ईस्ट मिस्ट घनिष्ठ जो बात पता लगाई मुख्य उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का है।
1: आयुष मलिक का परिवार शामली के संपन्न लोगों में से एक है। मेडिकल होलसेल की इसी दुकान पर आयुष मलिक बैठता था। दुकान के ऊपर ही रहने का घर भी है। आयुष के पिता का दावा है कि चांदनी नाम की जिम ट्रेनर फर्जी निकाह के आधार पर अब इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करने का दबाव डाल रही है।
14: कैसा लड़का था आयुष बचपन में? कैसे?
13: आयुष स्वभाव से बहुत ही बढ़िया, जिसे लोग ये कहते हैं कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बहुत संस्कारिक, बहुत मेहनती, बहुत निष्ठावान, बहुत ही मिलनसार और हर तरह से ईमानदार, सब खूबियां उसमें थी जितने एक बच्चे में हो। इस चांदनी कुरैशी ने मेरे घर का प्रॉपर्टी के चक्कर में और मेरा सब घर बर्बाद कर दिया।
1: शामली के इस पिता की लाचारगी की वजह उसका बेटा है, जो न माँ की बात सुनने को तैयार है न तीन बहनों की। उसके दिलो दिमाग पर चांदनी छाई हुई है।
15: जो कुरैशी है हमारे यहाँ ठेले पे जूस बेचते शामली में, ये लोग मिल करके पिछले सप्ताह हमसे इन लोगों ने क्लेम किया कि साहब चूंकि शादी निकाह की हो गई है, संपत्ति में मेरा भी हिस्सा है, आप ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी बेटी के नाम कर दीजिए आप, जिससे कि बहू और आपके हमारी बेटी आपका बेटा लोग ठीक से रहे और आप भी कन्वर्ट हो जाए हमारे धर्म में आ जाइए आप लोग।
14: आपको पता है कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पे नजर थी किसी की?
16: किसकी?
14: किसी की थी।
16: किसकी थी सर?
14: चांदनी कुरैशी उसके परिवार की।
16: ये आप टारगेट कर रहे हैं सर, ये आप उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तो मेरी है इस पे। मैंने खुद भी कहा था आपको जो करना पेरेंट्स को अपने आप वो कर लो इस प्रॉपर्टी का, और ना उनके साथ कोई ऐसा मसला है, उन्होंने भी साफ मना कर रखा।
14: और किस किस मौलाना की आपने वीडियो देखी है इशरार अहमद के अलावा?
16: ऑल ऑफ द वर्ल्ड के सभी मोटिवेशनल स्पीकर, रीजनल।
14: नाम बताइए दो चार।
16: डॉक्टर इशरार अहमद के मैं ज्यादा देखता था, ऐसे तो बस रैंडमली नाम नहीं याद रहते।
1: आमतौर पर धर्म परिवर्तन की खबरों में लोगों को लालच दिया जाता है, लेकिन शामली की कहानी पूरी

0: इतना उसे वो कर दिया गया कि वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। फिर भी मैं उसे बीच बीच में समय अंतराल कुछ अंतराल पर बात करता रहा, बात करने से समाधान नहीं निकला।
1: शामली में धर्म परिवर्तन की यह कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये शहर के सबसे रईस परिवार से जुड़ी है जिसकी प्रॉपर्टी की कीमत 100 करोड़ के आसपास बताई जाती है।
2: मैं शामली के उसी मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ जहाँ फिलहाल आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली रहता है। अगर आप ये देखेंगे तो इस मेडिकल स्टोर का नाम है भारत मेडिक शॉप और ये जो प्रॉपर्टी है केवल यही ही प्रॉपर्टी 20 करोड़ से ज्यादा की मानी जाती है और इस तरह की कई प्रॉपर्टी आयुष मलिक और उसके पिता की है। पुलिस की तहकीकात में ये सामने आया है कि इन्हीं प्रॉपर्टी को किसी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए पहले आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, फर्जी निकाहनामा भी तैयार किया गया था।
1: आयुष के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में जांच की जिसमें बात सामने आती कि इस पूरे मामले के लिए एक फर्जी निकाहनामा तैयार किया गया जिससे दावा है कि चांदनी कुरैशी और उसके परिवार ने मिलकर अंजाम दिया है।
3: फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गया है। इसमें अभी इसका जो भाई है जो उसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है और भी तमाम जो इसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व है जिन्होंने इस ढंग की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए, उन पर हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। जिम के माध्यम से फंसाए इसको और इसकी दुकान पे लड़के जो काम कर रहे थे उसमें इसका एक भाई था, वो हेड ही था इनकी दुकान का, शोरूम का, इसके आयुष के, उसने इसको प्रलोभन दिया।
1: शामली पुलिस का कहना है कि जब किसी का इस स्तर पर ब्रेन वॉश कर दिया जाता है तो उसे दोबारा डी रेडिकलाइज करना बेहद मुश्किल और चुनौती भरा होता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो SIT बनाई गई है वो हर पहलू पर बारीकी से काम कर रही है ताकि सुनियोजित रैकेट की तह तक पहुंचा जा सके। अरविंद ओझा, शामली।
4: और अब खबर नीट इम्तिहान से जुड़ी हुई। पिछली बार पेपर लीक की वजह से एग्जाम रद्द हो गया था, अब के 21 जून को परीक्षा होनी है, लेकिन इस बार पेपर लीक रोकने के लिए वायुसेना की मदद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ले रही है। दावा यह है कि नीट का पेपर ले जाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: सेना का वो हेलीकॉप्टर जो अब तक बाढ़ बारिश के खतरे के बीच वहां फंसे नागरिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता से उतरता रहा। भारतीय वायुसेना की वो ताकत जो जंगलों की आग तक को बुझाने में इस्तेमाल होता आया है। कठिन से कठिन हालात में जिंदगी बचाने वाला भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर जिसके जरिए अब की दावा है कि नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा में पेपर पहुंचाया जाएगा। सूत्र कहते कि इंडियन एयरफोर्स देश भर के 18 जगहों से नीट की दोबारा परीक्षा में प्रश्न पत्र के पैकेट पहुंचाएगी ताकि उनकी सुरक्षित और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। यानी 21 जून को इस बार नीट का जब पेपर होगा तो उसे MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुंचाया जा सकता है।
4: देश में पहली बार भारतीय वायुसेना नीट के रीटेस्ट के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाली है। पूरे देश में 18 रीजनल हब्स पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स प्रश्न पत्र पहुंचाएंगे। ये पैकेट्स को पूरी सुरक्षा के साथ इन रीजनल हब्स तक ड्रॉप करेंगे और उसके बाद इन रीजनल हब से सड़क के रास्ते एग्जामिनेशन सेंटर्स तक ये क्वेश्चन पेपर्स पहुंचाए जाएंगे। पहली बार देश के इतिहास में इस तरह की पहल हो रही है जब भारतीय वायुसेना किसी एग्जाम के लिए मदद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरी परीक्षा की निगरानी कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमाम दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर इसकी रिव्यू मीटिंग्स ले चुके हैं और अब भारतीय वायुसेना 18 अलग अलग रीजनल हब्स पर Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए इन पेपर्स को पहुंचाएगी। Mi-17 हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर फ्लीट के सबसे रिलायबल हेलीकॉप्टर्स हैं। बड़े विमानों से इन केंद्रों पर पहुंचना मुश्किल है, लिहाजा इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन पैकेट्स को जिनमें क्वेश्चन पेपर्स होंगे उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ इन एग्जामिनेशन सेंटर्स के रीजनल हब्स पर पहुंचाया जाएगा जहां से इन्हें अलग अलग एग्जामिनेशन केंद्रों पर भेजा जाएगा।
1: नीट UG परीक्षा में केवल 12 दिन का समय बचा है, इसलिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ी तैयारी की बैठक पहले हो चुकी है। सरकार सवालों के लीक होने की किसी भी आशंका को खत्म करने के लिए एयरफोर्स की मदद से पेपर को अलग अलग शहरों तक

0: पहुंचाने की योजना बना चुकी है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ऐसा क्या है कि एयरफोर्स की मदद से नीट का पेपर पहुंचाया जाएगा। दावा है कि नई व्यवस्था के तहत प्रश्न पत्रों को वायुसेना के जरिए सीधे प्रमुख केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद कड़ी निगरानी में उन्हें दूसरे एग्जाम सेंटर तक भेजा जाएगा। पेपर लीक होने की तीन सबसे बड़ी जगह होती हैं। पहली जहां से पेपर बनता है, दूसरा पेपर जहां छपता है, तीसरा रास्ते में पेपर लाने ले जाने के दौरान। इस बार नीट का पेपर चूंकि पेपर बनाने के दौरान ही लीक हुआ तो उस रास्ते को नीट री एग्जाम में बंद करके बाकी दो रास्तों को बंद करने की तैयारी एनटीए की है। इसीलिए एयरफोर्स के सख्त प्रोटोकॉल और सीमित बाहरी हस्तक्षेप के चलते सुरक्षा बढ़ाने की पूरी तैयारी की गई, जिससे लीक की गुंजाइश कहीं ना रहे। 22,89,000 बच्चों को दोबारा नीट का पेपर देना है। एक बार पेपर लीक हुआ, लाखों बच्चे टूट चुके हैं। इस बार एयरफोर्स की मदद से पेपर पहुंचाने की प्रक्रिया के जरिए ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि सरकार कहीं भी रत्ती भर भी चूक नहीं होने देना चाहती।
1: फिलीपींस में आए भूकंप से 32 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फिलीपींस में रिक्टर स्केल पर 7.8 का भूकंप आया था जिसने भारी तबाही मचाई है। भूकंप भारतीय समय अनुसार सुबह 5 बजे आया, जो इस साल फिलीपींस में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। भूकंप के बाद सुनामी भी आई, सबसे ऊंची लहर करीब 4.5 फीट की रही।
2: फिलीपींस में भूकंप से ताश के पत्तों की तरह गिरती गई इमारतें। फिलीपींस में ढह गई स्कूल की बिल्डिंग। फिलीपींस में भूकंप से मिट्टी में मिला आलीशान मॉल। फिलीपींस का मिंडानाओ द्वीप, जहां भूकंप के रूप में तबाही ने ऐसी दस्तक दी, पूरी दुनिया डर गई, सहम गई। भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:07 पर फिलीपींस में इमारतें हिलने लगी। अब आप ही सोचिए, भूकंप के दौरान 36 मंजिला इस इमारत में रहने वाले लोगों की क्या हालत हुई होगी। भूकंप से आप इस इमारत को हिलते हुए देख सकते हैं। 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने जमीन को इस कदर झकझोरा कि सब कुछ हिला दिया। भूकंप के तेज झटकों से एक वाटर टैंक से पानी बाहर गिरने लगा। जमीन के ऊपर सब कुछ हिलता है। ताश के पत्ते की तरह इमारतें भरभराकर मानो गिरती चली गई। ये तस्वीर फिलीपींस के एक स्कूल की है, जिसमें पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भूकंप की कभी ना भूलने वाली यादों से रूबरू हुए। भूकंप आते ही बच्चे स्कूल परिसर में इकट्ठा हो गए। इस दौरान टीचर और स्कूल के स्टाफ ने बहादुरी से समझबूझ दिखाते हुए छोटे छोटे बच्चों को अपने पास बैठाए रखा। इस दौरान कुछ बच्चे और स्कूल का स्टाफ कैंपस में बने शेड के नीचे दुबके रहे। अचानक शेड हिलने लगता है और सबके सामने भरभरा कर गिर पड़ता है। कुछ लोग उसमें से निकल कर भागने में कामयाब हो गए तो कई इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि ज्यादातर स्कूलों में प्रशासन ने भूकंप की चेतावनी के मद्देनजर बच्चों को खुली जगह पर इकट्ठा कर दिया। भूकंप की एक और डरावनी तस्वीर शॉपिंग मॉल की है, जिसकी इमारत भूकंप के झटकों को ज्यादा वक्त तक झेल नहीं पाई और गिर जाती है। इलाके की दूसरी इमारतों का भी वही हाल रहा। जमीन में मच रही तेज हलचलों ने इमारतों की नींव इस कदर हिला दी, एक के बाद एक इमारतें जमींदोज होती रही। धूल का गुबार चारों तरफ फैलता रहा। लोगों में चीख पुकार मची रही और सब बचने के लिए खुली जगहों पर भागते रहे। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने कई लोग दहशत में सड़क पर ही बैठ गए। कई लोग गाड़ियों को पकड़ कर खड़े हो गए। अचानक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग ढह जाती। 5 सेकंड में इस इमारत का नामोनिशान मिट गया। अपनी आंखों से इस विनाश लीला को देख रहे लोगों की चीखने की आवाजें तेज होती गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। भूकंप की तबाही दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर देखने को मिली, जहां सोमवार को 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे होने की वजह से भारी नुकसान देखने को मिला है। फिलीपींस के ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान ने बताया कि स्थानीय भूकंप के बाद 138 आफ्टरशॉक दर्ज किए गए, इन झटकों की तीव्रता 1.3 से 6.7 के बीच रही।
3: फिलीपींस की धरती एक बार फिर भीषण भूकंप से दहल उठी। करीब 7.8 तीव्रता का ये भूकंप बताया जा रहा है, जो सोमवार की सुबह फिलीपींस में आया सरंगरी इलाके के अंदर, और उसके बाद लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिलीपींस के लिए भूकंप कोई नई बात नहीं है। फिलीपींस दुनिया के नक्शे पर उस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मौजूद है जिसे भूकंप और ज्वालामुखी के लिहाज से दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका कहा जाता है। लेकिन लगातार ये आ रही ये तस्वीरें लोगों को डराने वाली भी हैं, और जिस तरीके से वहां पर ये एक घंटे के भीतर लगातार भूकंप के झटके सामने आते रहे हैं, यानी मुख्य भूकंप के बाद लगातार आफ्टरशॉक्स पूरे फिलीपींस को भी दहला रहे हैं, और लगातार पूरे पूर्वी एशिया के अंदर इस बात की आशंका बढ़ गई है कि कहीं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक्टिवेट तो नहीं हो गई है, जिसके कारण पूरा इलाका एक बड़े प्राकृतिक आपदा की सद में आ सकता है।
2: भूकंप के बाद सुनामी भी आई। सबसे ऊंची लहर 4.6 फीट रही। एहतियात के तौर पर इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी सुनामी की चेतावनी जारी की, जिसे कुछ घंटों बाद वापस ले लिया गया।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: ममता की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट की आशंका, शताब्दी रॉय के घर बैठक, शुभेंदु अधिकारी भी रहे मौजूद। काकोली का दावा, हमारे साथ भी सांसद भूपेंद्र यादव से भी मिला था नाराज सांसदों का दल। नीट पेपर लीक पर इंडिया गठबंधन का बड़ा दाव, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सर्वदलीय बैठक की मांग, सीजीआई को लिखेंगे पत्र, 5 सूत्री एजेंडा तय, बीजेपी ने विपक्ष पर उठाए सवाल। पटना में गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हुआ फैजल खान, फायरिंग मामले में लगातार दबिश दे रही है एसआईटी की टीम, पुलिस ने कोर्ट में सौंपी केस डायरी। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, पिघला स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत, मौके पर उठी आग की तेज लपटें। और ईरान इजराइल में युद्ध फिर से शुरू, तेल अवीव पर बरसती रही मिसाइलें, हिजबुल्ला की ओर से भी हमले, आईडीएफ ने इस्फहान पर किया जवाबी प्रहार। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी के हाथ से क्या पार्टी भी जाने वाली है? विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसद भी टूट रहे हैं। ममता के 20 सांसदों ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा आज टीएमसी के एक राज्यसभा सांसद ने भी इस्तीफा दे दिया।
1: जिस वक्त ममता बनर्जी विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटती हैं, ठीक उसी वक्त उन्हीं की पार्टी के सांसद बगावत की नई कहानी लिख रहे होते हैं। विधायकों के बाद अब टीएमसी के सांसदों ने भी ममता का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। मतलब जिस वक्त सोनिया गांधी से गले मिलकर ममता बनर्जी गठबंधन को मजबूत करने में जुटी थी, उसी वक्त टीएमसी में विद्रोह की नई पटकथा लिखी जाती है। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए का हिस्सा बनकर सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। सांसद और टीएमसी की पूर्व नेता काकोली घोष ने यह दावा किया कि 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। इस बारे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी भेज दिया गया है। बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन की जहां बैठक हो रही थी उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर ममता बनर्जी के 14 बागी सांसद दोपहर में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक करते हैं। इस दौरान सुबह ही टीएमसी के राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके सुखेंदु शेखर राय भी मौजूद रहे। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनसे मिलने पहुंचे। इसी बैठक में लोकसभा सांसद काकोली घोष, शताब्दी रॉय, अबू ताहिर, अरूप चक्रवर्ती, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, असितमल, कालीपत सोरेन, जगदीश बसुनिया और प्रसून बनर्जी भी मौजूद होते हैं।
2: एमपी हो या एमएलए हो, ये तृणमूल